0: का काम नहीं किया तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
1: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे? चोर को अंडा फेंक के मारेंगे? अभी तो हाँ, वो भी बहुत कम हो गया। वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था। बांग्लादेश वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
2: वो लोग भय मारने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, उस टाइम वो भेजा नहीं। अभी एक तो चमचा मर गया, इसलिए भेजा है यहाँ? किसके लिए भेजा है? हमारा रास्ता देखता है आज पुंतुर माधो में, ये रास्ता कैसे चलता है? हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
0: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
3: बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मूड में नहीं है, जबकि पिछले 6 महीनों में उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
4: हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के हमारा 10 नंबर खाली करा दे। हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने।
5: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगी। पिछले 6 महीने से 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
6: अरे कहाँ, इसमें वो कह रही, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
5: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड घर को खाली नहीं किया है। ये बंगला पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर यादव का आवंटित है, जिसे लेकर राबड़ी देवी को 29 मई को नया नोटिस भेजा गया।
7: मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, 1-2 साल नहीं, 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है, और क्या बात करते हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा।
5: राबड़ी देवी करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहती आई हैं। यह आवास काफी बड़ा है, इससे लालू परिवार की यादें भी जुड़ी हैं।
8: राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है। आपको इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो आप बिहार में रहना चाहते हैं।
5: नवंबर 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाई कोर्ट गए, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया, जिसे अब उन्हें खाली करना होगा। शशि भूषण, पटना, आज तक।
3: अब बात एनटीए की, जिसकी भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए की ओर से आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा में एक बार फिर तकनीकी खराबी का मामला सामने आया।
9: अभी निकल के आना 2 घंटे।
10: परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर एनटीए के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। आज सीयूईटी यूजी परीक्षा के केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:23 पर शुरू हुई। वहीं एनटीए ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम भी बदल दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों और अभिभावक परेशान नजर आए। अब एनटीए इस पर माफी मांग रहा है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
11: ये देखने में आ रहा है कि एनटीए ने सीयूईटी टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। सीयूईटी टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं। आज सेंटर पे पहुंचे, उनका टाइम बदल दिया गया, किसी का सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है। ऐसी डेट पे एग्जाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है। पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है।
10: उधर सरकार के नीट पेपर में सेना की मदद के फैसले पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
12: कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है?
10: बहरहाल परीक्षाओं को लेकर एनटीए पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां उसकी नाकामी एक बार फिर आज सीयूईटी यूजी के पेपर में खुलकर सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।
3: यूपी के जहां गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का इसने रंग रूप ले लिया। परिवार का आरोप है कि बकरीद के बहाने बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई।
13: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
5: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
13: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
5: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है। क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया, उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता।
13: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
5: यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से न जोड़ा जाए।
14: जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो। अभी तीन दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को ही हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
5: 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा, इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है? इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
15: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5: योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीए समीकरण पर वार करते हैं।
16: अखिलेश यादव जी को उस पे बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका एमओआई जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका असफल है सिर्फ एमओआई फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ एमओआई कहा जाता था, इस नाते पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं।
5: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है?
3: बात दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए मर्डर की, जहां बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया।
0: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या। सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
17: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट ला के दे। तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरा क्या, तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या? तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने, 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसा क्यों कहा।
0: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
18: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पर कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने घेर रखा है, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5-6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने के बाद आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर उसमें घुसा दिया। तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार।
0: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात राजस्थान के, जहां पर मौसम की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दिया और इस पूरे धूल के गुबार ने पूरे शहर में अंधेरा सा कर दिया।
10: एक आम रिहायशी इलाका और सामने से आया रेत का बवंडर मानो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। ये हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के चुरू की है। रेत का गुब्बार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है, आसमान में सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है, फिर शहर की गलियां, सड़क, घर, छत, हर कहीं ये धूल कब्जा करने लगती है। दिन में अंधेरा छाने लगता है। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई।
19: इस सीजन का जबरदस्त आंधी तूफान भयंकर है, उसमें मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ है, और उसके बाद में जबरदस्त बारिश और पेड़ों का गिरना, बिजली का नुकसान होना, बहुत ही जबरदस्त, मतलब इस मौसम में जो आंधी आई है बहुत ही जबरदस्त आई है।
20: और इस तूफान में आज आपको देखने को मिला कि मतलब कि तूफान की में आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी, जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षी वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ।
10: इसके कई वीडियो सामने आए हैं, इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर दिया। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जो करीब 30 मिनट तक इलाके में कोहरा मचाती रही। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। श्री गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और सीकर के आसमान में रेत का गुब्बार देखने को मिले। करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित नजर आया।
21: रेत का बाउंडर बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था, और दिन में एकदम अंधी आई, ऐसे तो मानो साफ हो गई। ये कहीं ना कहीं अपने प्रकृति से जो पर्यावरण पौधे अपने काट रहे हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए अपने सजग रहने की जरूरत है।
22: एकदम से बिल्कुल काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात होगी होती है एकदम से, इतनी तेज अंधेरी थी। उसका जो किलोमीटर के हिसाब से बताया गया था वो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से उसका विंड का बताया गया था, और एकदम से फुल अंधेरी थी। और जहाँ पर जो दरखत है छोटे छोटे वो हिलने लगे, कुछ दरखत है वो टूट भी गए थे।
10: पाकिस्तान से उठे इस तूफान ने रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह से बदल दिया। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। अगर अमेरिका और ईरान डील के इतने ही करीब हैं तो दोनों के सुर अलग अलग क्यों हैं? आखिर क्यों अमेरिका लगातार कह रहा कि वो समझौते के बेहद करीब है, जबकि ईरान आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे हुए है?
23: डील पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान, सुर अलग हैं, तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है, या फिर महायुद्ध पार्ट 2 जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
24: That we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially step back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening.
23: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक ना हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
25: And when you do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down and you create a whole bunch of options for America. The president of what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program, and that's a whole bunch of options for America and the president of what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program, and as the president said, I'm lost on time. 2 days ago now. In the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera. He says, well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me. It's you guys. It's what you're ready to do.
23: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि होर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा उसे होर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है ताकि होर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।
3: उसको लेकर बातें कितनी भी हो रही हो, लेकिन सच है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस मुद्दे पर अड़े हैं। कहने को अमेरिकी नाकेबंदी चरणबद्ध तरीके से हट जाएगी, लेकिन यूएस नेवी की ताजा चेतावनी ने हालात हाहाकारी होने के संकेत दिए हैं।

0: डील पर काम तेज, कहां फंसा है पेच। हॉर्मुज में यूएस का प्रण, ईरान के खिलाफ आखिरी रण। जहाजों को चेताया, समंदर में आने वाला है बवंडर। इस चेतावनी को ध्यान से पढ़िए, इसे यूएस नेवी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। यह हॉर्मुज में मौजूद सारे जहाजों के लिए है। अमेरिकन नेवी ने चेतावनी जारी की है कि ईरान के खतरनाक और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए जल्द ही बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हो सकता है कि जवाब में ईरान भी हमला करे, लिहाजा हॉर्मुज में जहाजों को मुश्किल हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। चेतावनी में जिन इलाकों में सतर्क रहने की बात कही गई है, उनमें अरब की खाड़ी, हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और उत्तरी अरब सागर शामिल है। संकेत साफ है, हॉर्मुज की लहरें अंदर से भी अशांत है और अब ऊपर से भी एक बार फिर शांति भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। ईरान हर हाल में अमेरिका की नाकेबंदी को जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहा है और अमेरिका की मांग है कि टोल वसूली बंद की जाए और जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। इस बीच डील को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ना तो हॉर्मुज को लेकर अभी कोई फैसला हुआ है और ना ही यूरेनियम को लेकर। अब आपको दिखाते हैं ईरान के लोग इस डील को लेकर क्या कह रहे हैं। यह है तेहरान का इनकलाब स्क्वाड। अमेरिका के खिलाफ और ईरान की लीडरशिप के साथ अपनी भावनाओं के इजहार के लिए हजारों लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। हाथों में झंडे हैं, जुबां पर देशभक्ति के नारे हैं। जगह जगह ईरान के नेताओं की तस्वीरें हैं। इस भीड़ में सिर्फ उन्माद नहीं है, बल्कि अमेरिका को कोसने के लिए तथ्यों पर आधारित इनके अपने तर्क हैं।
1: اگر این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصرش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته، از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست میگه. اصلا من حتی میگم ما همون سال 2015 هم اشتباه کردیم، اون اورانیوم ها رو چند تن اورانیوم تحلیل دادیم، بسیار اشتباه بود. اورانیوم غنی سازی شده ارزش مادی بالایی داره، هم معنوی هم مادی، حکم بخشی از خاک ماه. چرا بعد بریم به اون؟ هیچ ربطی نداره، برای ماه، برای ملت ایرانه و ما تصمیم میگیریم. نه نخواهیم داد.
0: هرمز کو لیکر بھی لوگ ایک مت ہیں، یعنی هرمز فی الحال بند ہی رہے تو ایران کے لیے اچھا ہے.
2: حرف رهبرمونه، تنگه باید بسته بمونه تا وقتی که رهبرمون اعلام کنن. ما هم همین رو
0: میگیم. هرمز پر خود ایران مشکلوں میں گھرا ہوا ہے. امریکی ناکبندی کی وجہ سے اس کا لاکھوں ٹن تیل نریات نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ اکلوتا ایسا ہتھیار ہے جو 28 فروری سے شروع ہوئے مہا یدھ میں اس کی طاقت بڑھاتا رہا ہے. ظاہر ہے وہ کسی بھی قیمت پر اس کا نینترن امریکی شرطوں پر نہیں چھوڑے گا. آج تک پیرو.
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर. आप देखते रहिए आज तक.
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमले से बवाल, लोगों ने फेंके पत्थर, अंडे, कपड़े फाड़े, कहा मुझे मारने की साजिश की गई थी। बीजेपी पर विपक्ष का बड़ा हमला, ममता, राहुल, अखिलेश, केजरीवाल समेत कई नेताओं ने उठाए सवाल, आज टीएमसी का प्रदर्शन, सोमवार को ममता बनर्जी का मोर्चा।

0: सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति। समाजवादी पार्टी बोली यूपी में बढ़ रहा है अपराध। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने के आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में ही छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है। अभिषेक बनर्जी चुनावी हिंसा पीड़ित से मिलने के लिए वहां पहुंचे थे, जो घायल हो गया था, और इसी दौरान अभिषेक के साथ हाथापाई हुई है। जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की गई है, उन पर अंडे फेंके गए, काफी देर तक भारी सुरक्षा के बीच उन्हें वहां से निकाला गया। अब मामले में सियासत खूब की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब जबरदस्त तरीके से नारेबाजी, चोर चोर की बातें कही जा रही थी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, और जबरदस्त तरीके से हंगामा किया जा रहा था। अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि उन्हें मारने की साजिश रची गई थी, किसी तरह से उनकी जान बच गई है। ममता बनर्जी ने मुलाकात की है अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी से इस पूरे कांड के बाद। आपको बता दें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के बयान आने शुरू हो चुके हैं। अभिषेक बनर्जी ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है। देखिए किस तरीके से कपड़े उनके फाड़ डाले गए, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की गई उनके खिलाफ, अंडे फेंके गए, पत्थर फेंके गए, भारी सुरक्षा के बीच में उन्हें यहां से निकाला गया है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता के पीछे इस तरीके से जनता पड़ गई हो। कई जगहों पर वैसे भी अलग अलग आरोपों के मामले में नेताओं को दौड़ाकर जनता की तरफ से पश्चिम बंगाल के भीतर पीटा भी गया है।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा। गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: दे वांट टू किल मी। एरा आमादेर प्राणे मारते चाहे। मेरे दिख, अमर मृतदेह उद्धार हो केखान थेके। किन्तु आमी जायगा छेड़े जाबो ना।
1: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
3: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे? चोर को अंडा फेंक के मारेंगे? अभी तो हाँ, वो भी बहुत कम हो गया। वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था। बांग्लादेशी वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
4: वो लोग भाई मारने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, तो उस टाइम वो भेजा नहीं। अभी एक तो चमचा मर गया, इसलिए भेजा है यहाँ? किसके लिए भेजा है? हमारा रास्ता देखता है आज पंद्रह मौतों में, ये रास्ता कैसे चलता है? हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
1: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
0: और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से खबर है, सूर्या हत्याकांड के आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। मुख्य आरोपी था असद, आपको याद होगा जिस तरीके से उसकी तलाश की जा रही थी, कई लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई थी, जबरदस्त हंगामा हुआ था, तमाम हिंदुवादी संगठन यहां पहुंच गए थे। जिस तरीके से घर से बाहर निकालकर ईद वाले दिन चाकुओं से घोप कर सूर्या को मार डाला गया था, परिवार की तरफ से मांग थी कि इसमें सख्त एक्शन होना चाहिए, सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिलहाल जानकारी यह है कि जो मुख्य आरोपी था असद, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार लगी हुई थी, एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया है। जो वीडियो आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हत्या से कुछ देर पहले का वीडियो है, ईद वाले दिन का वीडियो है। परिवार की तरफ से बताया गया कि घर से जो झगड़ा हुआ था उसको सुलझाने के नाम पर सूर्या को बुलाया गया था और कुछ ही देर के बाद इन लड़कों ने मिलकर घेर कर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करके सूर्या की जान ले ली थी। इस पूरे मामले में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था, बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, तमाम हिंदुवादी संगठन खोड़ा पहुंच गए थे, कल पूरे दिन पुलिस बल वहां तैनात था क्योंकि तनाव की स्थिति थी, कई की गिरफ्तारी कर ली गई थी लेकिन मुख्य आरोपी की तलाश जारी थी। अब जानकारी यह है कि इस मामले में मुख्य आरोपी जो था असद, उसे पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। तो गाजियाबाद पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी असद मार गिराया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता अंशुल जुड़ गए। अंशुल, कल परिवार की भी यही मांग थी कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सख्त एक्शन हो, एनकाउंटर किया जाए।
5: ऐसा परिवार की मांग थी, वैसा ही कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस द्वारा कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि कल देर रात गाजियाबाद पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि असद अपने एक दोस्त के पास आ रहा है उससे कुछ पैसे लेने, ताकि वो यहां से फरार हो सके। इसी जानकारी को लेकर के गाजियाबाद पुलिस ने एक ट्रैप बिछाया और जब असद वहां पर अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर पहुंचा तो उसे रोकने की कोशिश की गई। गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि जब उसे रोका गया तो उसने एक देसी कट्टे से गाजियाबाद पुलिस की तरफ फायरिंग की, जिसमें एक कांस्टेबल को चोट भी लगी, उसे गोली भी लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि रिटेलिटरी फायरिंग में, डिफेंस, सेल्फ डिफेंस फायरिंग में उन्होंने असद पर गोली चलाई, जिसमें असद को गोली लगी और वो वहीं पर घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान बताया ये जा रहा है कि असद की अब मौत हो गई है। तो ये एक बड़ी सफलता है गाजियाबाद पुलिस के लिए। करीब 24 से 36 घंटे तक असद गाजियाबाद पुलिस को चकमा देने में सफल रहा, लेकिन उसका जो दोस्त था, जो पांचवा अभियुक्त भी हो सकता है, वो मौके से फरार होने में सफल रहा। तो अब गाजियाबाद पुलिस अब उस पांचवे अभियुक्त की तलाश में जुट गई है, लेकिन जिस तरीके से असद का ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं पूरे परिवार की और पूरे इलाके में जिस तरह का आक्रोश था पिछले दो दिनों से, वो आक्रोश कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ देखा जा सकता है।
0: एक और चीज अंशुल, क्योंकि इस पूरे मामले में जो वीडियो हम बार बार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें कई लड़के नजर आ रहे हैं, क्या उनमें से कितने की गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है?
5: जी, उस वीडियो में करीब 6 से 7 लोग हैं, लेकिन एफआईआर में जो लोग नाम

0: शुरू हुई और कुछ ही देर के भीतर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया गया था और उसे ढेर कर दिया गया था। इस पूरे मामले में मुख्य जो आरोपी था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी कल, असद, उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु लगातार बने हुए। अंशु, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इस पूरे मामले में परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभी?
1: जी, परिवार का ये कहना है कि जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस ने ये पूरा एनकाउंटर किया है और उसके बाद असद की मौत भी हो गई है, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन जो है वो परिवारजनों में देखा जा सकता है। उनकी कल से ही ये मांग थी कि असद के खिलाफ सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और उसका एनकाउंटर होना चाहिए, और गाजियाबाद पुलिस ने कहीं ना कहीं वो परिवार की मांग पूरी कर दी है। अब गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि वो उसे गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन एक देसी कट्टे से असद ने उनकी तरफ गोली चलाई, जिसके बाद उन्हें रिटेलिटी फायरिंग करनी पड़ी और उसमें असद को गोली लग गई। जब उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई है। तो ये काफी बड़ी सफलता है गाजियाबाद पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा बकरीद के दिन में होता है, उसके 36 घंटे के अंदर गाजियाबाद पुलिस इस पूरे पूरे मामले को क्रैक कर लेती है और जो मेन अक्यूज था, जो मेन अभियुक्त था असद, उसे भी एनकाउंटर में ढेर कर देती है। तो काफी बड़ी सफलता के तौर पर यह गाजियाबाद पुलिस के लिए देखा जा रहा है। और करीब ये सुबह 2 से 2:30 बजे के बीच ये पूरी घटना हुई है, जब असद एक बार फिर से खोरा पहुंचता है, अपने दोस्त के घर जाने की चेष्टा में रहता है कि वहां से उसे कुछ पैसे मिल जाए और फिर वो यहाँ गाजियाबाद से फरार हो सके। लेकिन उससे पहले ही गाजियाबाद पुलिस उसे उसके साथ ये एनकाउंटर करने में सफल रहती है, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि असद की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है।
0: आप बने रहे अंशुल हमारे साथ, दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए ये दो तस्वीरें, एक तरफ आज आधी रात की तस्वीर है, 2:30-3 बजे के करीब एनकाउंटर किया गया है, वो तस्वीर देखिए, और जरा दूसरी तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ईद वाले दिन की तस्वीर है, जब सूर्या को घर से बुलाया गया था। मामूली सी कहा सुनी कुछ दिन पहले हुई थी, कहा यह गया कि चलो बात को सुलझा लेते हैं। कई लड़कों ने ईद वाले दिन घर से बुलाया, कहा सुनी फिर शुरू हुई, घेरा बनाकर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया और इसमें सूर्या की जान चली गई थी। परिवार का कहना है कि उन्हें तो पता भी नहीं था कि यह किया गया है, और जिस तरीके से परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि मामूली सी कहा सुनी पर उनके बच्चे की जान ले ली गई, अब इस पूरे मामले में सख्त एक्शन की जरूरत है, क्योंकि यहां आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। भारी तनाव था, पुलिस बल पूरे दिन कल यहां तैनात रहा, तमाम हिंदुवादी संगठन यहां पहुंच गए थे और मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लिया जाए। आज पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है असद, उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। आधी रात को इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। पुलिस की तरफ से कहा यह गया कि पुलिस को जानकारी मिली कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए, कुछ पैसे लेने के लिए खोड़ा की तरफ आ रहा है। बीच में जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने देसी तमंचे से फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में वो मार गिराया गया है। आपको यह भी बता दें कि परिवार की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि इसमें सख्त एक्शन की जरूरत है, एनकाउंटर होना चाहिए इस तरह के आरोपी का। कल 3 की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई थी और एक मुख्य जो आरोपी था असद, उसकी तलाश की जा रही थी। बीच में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सूर्या की तस्वीरें हैं, और आपको बता दें कि परिवार का कहना यह था कि उनके बच्चे को बिना बात के छोटी सी मामूली सी वजह से जान से मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। ये जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, मौत से कुछ देर पहले का वीडियो है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ मिनट्स पहले का ये वीडियो है, जिसे लेकर ढेर सारे सवाल थे, क्योंकि 5-6 लोग इसमें साफ साफ नजर आ रहे हैं और घेरा बनाकर सूर्या से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद चाकू से लगातार कई बार वार करके सूर्या की जान ले ली गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल लगातार बने हुए। अंशुल, क्योंकि कल हमने देखा जबरदस्त भीड़ थी वहां पर, तमाम हिंदुवादी संगठन, तनाव बहुत ज्यादा था, कुल मिलाकर एक सख्त मैसेज तो प्रशासन की तरफ से दे दिया गया है।
1: जी हाँ, बिल्कुल, कल ही जिस तरीके से वहां काफी ज्यादा भीड़ थी और काफी ज्यादा आक्रोश था लोगों में, कल यहां तक बात पहुंच गई थी कि परिवार बिल्कुल मना कर रहा था कि हम अंतिम संस्कार तक नहीं करेंगे जब तक असद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन की वहां परिवार के साथ मीटिंग होती है, जिसमें गाजियाबाद पुलिस उन्हें सुनिश्चित करती है कि जो पूरी तफ्तीश है वो पूरी ईमानदारी से की जाएगी और उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। इसके अलावा कंपनसेशन की भी मांग की गई थी, जो कंपनसेशन के लिए भी गाजियाबाद पुलिस उन्हें आश्वस्त करती है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं पूरे परिवार में और जो वहां लोग आक्रोशित थे उनमें कहीं ना कहीं एक ये संतुष्टि देखी जा सकती है, क्योंकि सबकी यही मांग थी कि जिस तरीके से बकरीद के दिन पे ये पूरा हादसा हुआ था, उसमें सबकी एक सुर में एक ही मांग थी कि असद के साथ भी उसी तरीके का बर्ताव होना चाहिए और कहीं ना

0: कहीं गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि असद ने पहले उन पर गोली चलाई, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस फायरिंग में जाकर के असद को गोली लगी है। अभी पूरा जो ये एनकाउंटर हुआ है, अब इसकी तफ्तीश भी होगी, एक
1: जी
0: एसडीएम द्वारा तफ्तीश भी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी कामयाबी गाजियाबाद पुलिस को मिली है, कहीं ना कहीं परिवार में और आक्रोशित लोगों में एक संतोष का माहौल देखा जा सकता है।
1: अंशुला बने रहे हमारे साथ, अपने दर्शकों को यह भी सुना देते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है।
2: के द्वारा सूरज चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्य चौहान की डेथ हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और वो वांछित था। उसके ऊपर 50,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना थोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और उत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना कोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है। उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।
3: कोई इसकी सर प्रोफाइल थी पहले से कुछ?
2: नहीं, इसकी प्रोफाइल अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं, इसकी जानकारी की जा रही है।
3: क्या घटनाक्रम रहा है? पता चला है कि खोड़ा थाना क्षेत्र में जो सूर्य है उसकी हत्या का जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है।
2: कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना खोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुर्घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूरज चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्य चौहान की डेथ हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी, उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्य चौहान की डेथ हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और वो वांछित था। उसके ऊपर 50,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को आज
1: तो गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या ने हिंदू मुस्लिम का रंग ले लिया। परिवार का आरोप यह है कि बकरीद के बहाने बेटे को बुलाया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।
4: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
5: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
4: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच।
6: यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
5: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है? क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया, उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता।
6: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
5: यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से न जोड़ा जाए।
7: जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो, अभी 3 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को ही हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
5: 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा, इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है? इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
8: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5: योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीए समीकरण पर वार करते हैं।
9: अखिलेश यादव जी को उस पे बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका असफल है सिर्फ MOI फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MOI कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं।
5: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है?
1: और आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ कर दिया है, साफ संकेत दे दिए हैं राबड़ी देवी ने कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, जबकि पिछले 6 महीनों से उन्हें लगातार नोटिसेस भेजे जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर, सबसे पहले आपको बता दें दिल्ली के साकेत से, जहां 5 मंजिला बिल्डिंग के गिरने की खबर है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दिल्ली के साकेत इलाके से 10 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अभी तक लगातार काम रेस्क्यू का जारी है। 5 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया और कई लोग इस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। जो जगह है ये है महिपालपुर, जहां बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आसपास के लोगों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए तमाम जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम तुरंत ही शुरू कर दिया गया था। आसपास के लोगों की मदद से रेस्क्यू टीम लगातार यहां काम कर रही है। अभी तक 10 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि 5 मंजिला इमारत है। भरभराकर इस इमारत के गिरने से कई लोगों के अभी भी इसमें दबे होने की आशंका है। और इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
11: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: है सूर्य का रत्न और क्या हैं इसके फायदे, सूर्य का रत्न किनको धारण करना चाहिए और किनको बचना चाहिए, सूर्य का रत्न किन बीमारियों में लाभ भी पहुंचा देता है, जानिए सूर्य के रत्न की विशेषता मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
13: समर्स अ गिफ्ट, the gift of days that last a little longer, a brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event, with specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid, all backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Event ends 6/1/2016. Dealer for warranty details.
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
14: To thrive in today's tech world, you need more than coding tutorials. That's why WGU's computer science degree teaches you the building blocks behind AI and automation, like algorithms, data structures, architecture, and more. You'll learn multiple industry certifications, gain real experience, and graduate with a degree employers trust. Plus, it's flexible, affordable, and online. Move your tech career forward at wgu.edu.
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

दुष्कर्मों के आरोपी असद को पुलिस ने किया ढेर जवाबी फायरिंग में एक जवान घायल। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने के आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत, सोमवार को सड़क पर उतरेंगी ममता बनर्जी, केजरीवाल अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। दिल्ली के मैरोली इलाके में गिरी 5 मंजिला इमारत, मलबे से 7 लोगों को बाहर निकाला गया, कई लोगों के दबे होने की आशंका, मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने फिर दी ईरान को धमकी, कहा डील नहीं हुई तो फिर छिड़ेगा युद्ध। एक्सेट बोले, हमारे धैर्य की परीक्षा न ले तेहरान।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बड़ी और अहम खबर गाजियाबाद से, जहां सूर्या हत्याकांड का आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। मुख्य आरोपी असद, जिसको पुलिस खोज रही थी, उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया है। पुलिस के मुताबिक देर रात सूचना ये मिली कि असद अपने एक दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला है और इसके बाद शहर छोड़कर वो भागने की फिराक में था। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और इलाके में घेरेबंदी कर दी। गोली चली जिसमें असद घायल हो गया, अस्पताल में इसकी मौत हो गई है और एक पुलिसकर्मी भी इस गोलीकांड में घायल हुआ है। क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा यह गया है कि जब असद को पकड़ने की कोशिश की गई जाल बिछाकर, तो उसने देसी तमंचे से पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी थी और अपनी रक्षा में पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई जिसमें असद ढेर हो गया। तो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी असद था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई थी, अलग अलग जगहों पर छानबीन की जा रही थी और उसे आधी रात को एनकाउंटर में पुलिस की तरफ से ढेर कर दिया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एनकाउंटर की तस्वीर देखिए जहां पर पुलिस ने इस असद को ढेर किया, मुख्य आरोपी को। दूसरी तरफ ईद वाले दिन की तस्वीर है जब सूर्या को घर से बुलाया गया था मामला सुलझाने के नाम पर और लगातार ताबड़तोड़ चाकुओं के वार से उसकी जान ले ली थी। बुरी तरह से लहूलुहान अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था सूर्या को, जहां उसकी जान चली गई थी। गाजियाबाद के डीसीपी धवल जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हम उनसे बात करेंगे। धवल जी, ये कितने बजे की घटना है और मुख्य आरोपी असद ही था इस पूरे मामले में?
1: ये देखिए, आज सुबह की घटना है। पुलिस टीम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद, जो इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, वो अपने साथियों से मिलने के लिए आ रहा है, जहां वो उनसे पैसे लेकर कहीं भागने की फिराक में था। और इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की थी और जब ये असद अपने साथी के साथ आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम इसको रोकने का प्रयास करती है और इसने अपनी बाइक ना रोक करके बल्कि पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई थी जिसमें असद को गोली लगी थी। तत्काल इसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इसको मृत घोषित कर दिया गया है। इसका एक साथी मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा है। इसके पास से जो तमंचा था और जो बाइक थी उसको बरामद किया गया है।
0: ये अकेला था बाइक पर?
1: नहीं, दो लोग थे, ये और इसका एक साथी और था जिसमें असद को गोली लगी है और उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है।
0: क्या किसी पुलिसकर्मी के भी घायल होने की कोई जानकारी है?
1: हाँ, हमारे थाना खोड़ा क्षेत्र का एक कांस्टेबल है जिसको गोली लगी है, जिसका उपचार हॉस्पिटल में भी चल रहा है।
0: धवल जी, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि पूरा का पूरा मामला क्या था, क्योंकि कहा यह गया परिवार की तरफ से कि कोई बात थी नहीं, कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन तस्वीरों में कई लड़के घेर कर सूर्या से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हत्याकांड से बस कुछ देर पहले का ये वीडियो है जो वायरल हुआ है।
1: देखिए, 28 तारीख को, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि असद नामक युवक के द्वारा, जो सूर्या चौहान है, उनको चाकू मार दी गई थी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 29 तारीख को इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारे लोग आपस में एक दूसरे से पहले से पूर्व परिचित थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कुछ समय पूर्व विवाद भी हुआ था। 28 तारीख को जब ये मिले थे तब असद काफी ज्यादा इसमें एग्रेसिव हो गया था और उसने चाकू से हमला किया था चौहान के ऊपर, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 29 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर तत्काल 5 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में, जिसमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था, उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी और आज सुबह पुलिस एनकाउंटर में उसकी डेथ हो गई है।
0: इसके अलावा कितने क्या 4 जो बाकी के आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है पहले, क्योंकि कल तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर थी?
1: जी, अभी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक की पुलिस एनकाउंटर में उसकी मृत्यु हो गई है और एक आरोपी अभी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस टीम ने प्रयास किया।
0: क्योंकि कल बहुत ज्यादा तनाव था, तमाम हिंदुवादी संगठन यहाँ पहुंचे हुए थे और उनका कहना था कि आए दिन इस तरह की चाकूबाजी की घटनाएं यहाँ देखने को मिलती रहती हैं, इसीलिए पुलिस बल भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा वहां तैनात था। अभी स्थिति पूरी तरह से काबू में है?
1: जी, अभी पूरी स्थिति सामान्य है। यहाँ पे परिजन भी हमारे कॉन्फिडेंस में हैं, उनसे लगातार बातचीत भी की जा रही है, पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट भी हैं और इस प्रकरण में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा की जा रही है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका धवल जायसवाल, जो कि डीसीपी हैं गाजियाबाद के। उनका कहना यह है कि इस एनकाउंटर में जो मुख्य आरोपी है उसे ढेर कर दिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि आरोपी असद ही मुख्य था जिसने ताबड़तोड़ चाकू से वार किया था। और आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में ये आरोपी यहां से भागने की फिराक में था, खोड़ा पहुंचने की जानकारी मिली। जब इसे पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की गई तो इसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक और साथी इसके साथ मौजूद था जिसे पकड़ लिया गया है। और आपको बता दें कि इस मामले में 5 नामजद आरोपी थे जिनमें से 3 की गिरफ्तारी कल कर ली गई थी। एक की एनकाउंटर, जो मुख्य आरोपी है, उसकी एनकाउंटर में मौत हो गई है और एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। हालांकि जो स्थिति थी कल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण, वो भी काबू में है। पुलिस की तरफ से तमाम जो जरूरी काम है वो किए जा रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई से परिवार भी संतुष्ट है, क्योंकि कल परिवार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जिस तरीके से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और जिस तरीके से सूर्या को मौत के घाट उतारा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी सूर्या जुड़ गए हैं, अंशुल जुड़ गए हैं सूर्या की खबर पर। अंशुल, यहाँ पे पुलिस की तरफ से बहुत साफ कहा गया है कि 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, एक को मौत के घाट उतार दिया गया है और अभी भी एक आरोपी फरार है, क्या उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाई है अभी?
2: जी हाँ, पुलिस टीम अभी कई जगह इस 5वां आरोपी के लिए दबिश और छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जो 5वां आरोपी है उसे भी गाजियाबाद पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको लेकर के ही अभी अभी गाजियाबाद के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर कई टीमें जो है छापेमारी कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो 5वां आरोपी भी है जो इस पूरे घटना में मौजूद था उसे भी जल्दी से जल्दी हिरासत में लिया जाए, ताकि जो पीड़ित परिवार है वो जिस तरीके से इंसाफ की मांग कर रहा है उनको जो इंसाफ है वो पूरी तरीके से दिलाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से आज तड़के जो ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं पूरे परिवार में, पीड़ित परिवार में और उनके परिवार वालों में भी काफी ज्यादा खुशी की लहर है, काफी ज्यादा संतुष्टि है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने ये उनसे वादा किया था कल की उन्हें पूरी तरीके से इंसाफ दिलाया जाएगा। और जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, जहां गाजियाबाद पुलिस ये कह रही है कि पहले असद ने उन पर फायरिंग की और सेल्फ डिफेंस में जब उन्होंने रिटेलिएटिव फायरिंग की तब की जान चली गई, तो ये काफी बड़ी सफलता के तौर पे देखा जा रहा है गाजियाबाद पुलिस के लिए। और अब ये देखना होगा कि गाजियाबाद पुलिस कितनी जल्दी 5वें अभियुक्त को भी हिरासत में लेती है, ताकि ये जो पूरा केस है, जो 5वां अभियुक्त है, वो जल्दी हिरासत में लिए जाए और उसके बाद परिवार में जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, वो कहीं ना कहीं अब शांत होता हुआ देखा जा सकता है।
0: बहुत शुक्रिया अंशुल। अंशुल लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, कल भी मौके पर मौजूद थे जब वहां तनाव की स्थिति थी। और जैसा कि अंशुल कह रहे हैं कि 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और एक आरोपी की तलाश लगातार जारी है इस पूरे मामले में। ईद वाले दिन की घटना है जब सूर्या को घर से बुलाकर चाकुओं से हमला करके उसकी जान ले ली गई थी। और ये बड़ी और अहम खबर है लखनऊ से, जहां 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल हो गए। विकासनगर और कृष्णा नगर थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। आपको ये भी बता दें कि यहां बदमाशों के घायल होने की खबर है। तो लखनऊ में 2 जगहों पर पुलिस ने एनकाउंटर किया है, मुठभेड़ में 3 बदमाशों के घायल होने की खबर है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, तो सरकार और प्रशासन की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि किसी भी तरह से बदमाशों को शह नहीं दी जाएगी और ना ही उनको बख्शा जाएगा। कल ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहुत साफ संदेश दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था अहिंसा परमो धर्म, लेकिन जहां राज्य और शासन को खतरा हो वहां हिंसा अपनानी पड़ती है। बहुत साफ संकेत था कि बदमाशों को बेखौफ नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ के विकास नगर में मुठभेड़ हुई है और जानकारी है 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई है जहां 3 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। विकास नगर और कृष्णा नगर, इन दोनों ही इलाकों में अलग अलग जगहों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बदमाशों के घायल होने की खबर है और कुल 3 बदमाश हैं जिन्हें गोली लगी है। अब बंगाल की हम बात करेंगे, क्योंकि सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया। अभिषेक पर हमला जब हुआ तो चुनावी हिंसा के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वो वहां पहुंचे हुए थे। इस दौरान भीड़ अचानक से उग्र हो गई और अभिषेक बनर्जी के साथ हाथापाई करने लगी, उन पर अंडे फेंके गए। पत्थर फेंके गए, नारेबाजी की गई, वहां से जाने के लिए उन्हें कहा गया। स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें किसी तरह से मौके से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद अभिषेक बनर्जी को प्राथमिक उपचार दिया गया, बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इस घटना के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो चुका है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि हमला सुनियोजित था और इसके पीछे राजनीतिक साजिश थी। वहीं बीजेपी ने इस आरोपों को तमाम अलग अलग बयानों के थ्रू खारिज कर दिया है और इसे बताया है जनता का गुस्सा। फिलहाल इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, राजनीतिक तनाव लगातार गहराता जा रहा है। तो तमाम विपक्षी दलों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि ममता बनर्जी तुरंत ही अभिषेक बनर्जी से मिलने के लिए पहुंची थी। और आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी ने भी कहा है कि ये हिंसा सुनियोजित थी, उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। तस्वीरें देखिए जरा कि किस तरीके से उन पर हमला बोला गया। सुरक्षा के बीच उन्हें थप्पड़ी थप्पड़ मारने की कोशिश की गई है, अंडे फेंके गए, पत्थर फेंके गए, नारेबाजी की गई है। वापस जाने के लिए अभिषेक बनर्जी को यहां से कहा गया। तो शुभेंदु सरकार बन जाने के बाद अलग अलग जगहों पर टीएमसी के नेताओं के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और आपको यह भी बता दें कि इस जगह पर एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी यहां पहुंचे थे। तो बड़ी और अहम खबर कोलकाता से। सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी से मारपीट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अभिषेक से ममता बनर्जी ने अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। जांच के बाद अभिषेक बनर्जी को छुट्टी मिल गई है और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा गया है। तो डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें सलाह दी गई है कि वो थोड़ा आराम करें। अभिषेक बनर्जी पर हमले से जुड़ी बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी उनसे मिलने के लिए अस्पताल के भीतर पहुंची थी। अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने भी उसी बयान को, उसी बात को दोहराया जिसका जिक्र अभिषेक बनर्जी कर चुके थे कि हत्या करने की कोशिश की गई थी, सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें घेरा गया था। तो ममता बनर्जी ने भतीजे अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की है और आपको यह भी बता दें कि अस्पताल में कुछ देर रखने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। आराम करने की सलाह डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें दी गई है। तो ममता बनर्जी की उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने बयान दिया है कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले को सुनियोजित तरीके से साजिशन रचा गया था अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। अस्पताल पहुंची थी अभिषेक बनर्जी को देखने के लिए वो, और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी उन्हीं बातों को दोहराया। आपको यह भी बता दें कि सोनारपुर में एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे। सुरक्षा होने के बावजूद लोगों ने हाथापाई की, पीटने पर उतर आए, अंडे फेंके गए, बहुत जबरदस्त तरीके से उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा इसी तरह से अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, जहां पत्थरबाजी, नारेबाजी, कटमनी को लेकर हंगामा, दौड़ा दौड़ा कर नेताओं को पीटा जा रहा है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद टीएमसी के नेताओं के साथ इस तरह की घटनाएं आम चली हैं। अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों ही की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले पर वो सड़क पर उतरेंगी, जनता के बीच जाएंगी।
3: इस समय अपोलो हॉस्पिटल में जो ममता बनर्जी है तृणमूल सुप्रीमो, वो यहाँ पे आए थे क्योंकि जो आज अभिषेक बनर्जी जिसके ऊपर हमला हुआ था वो इस वक्त इमरजेंसी में मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ सामने देखा जा रहा है कि ये जो गाड़ी है ममता बनर्जी का गाड़ी, ये गाड़ी निकल रहा है, ये गाड़ी निकल रहा है अभी। ममता बनर्जी वो गाड़ी में आ रही है। अभिषेक बनर्जी वो अपोलो पर आए थे, उसके ऊपर हमला हुआ था आज सोनारपुर में। जो पब्लिक ने उनके ऊपर जो उसके ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद ममता बनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ममता बनर्जी वो खुद यहाँ पे देखने के लिए आए थे। अभिषेक बनर्जी वो गाड़ी में मौजूद है। अभिषेक बैनर्जी वो खुद गाड़ी में मौजूद है। अभी अभी अभी अभी जो जो अपेलो हॉस्पिटल से वो निकल के यहाँ से जा रही है। ममता बैनर्जी यहाँ पे मौजूद थे, गाड़ी में शोभन देव चट्टोपाध्याय है। ये ममता बैनर्जी वो भी गाड़ी में आ चुकी है। ये गाड़ी लेके अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी वो सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। अभी वो लोग ट्रीटमेंट करा के यहाँ से निकल रहे हैं। ये अपेलो हॉस्पिटल से यहाँ से अपेलो हॉस्पिटल से ये बाहर निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे ममता बैनर्जी है गाड़ी में, अभिषेक बैनर्जी है गाड़ी में, शोभन देव चट्टोपाध्याय है गाड़ी में। ये गाड़ी अभी निकल रहा है यहाँ से। जैसा कि देखा जा रहा है कि ये सभी लोग यहाँ से निकल रहा है, और ये गाड़ी अभी अपोलो हॉस्पिटल से निकल के जा रहा है। सामने ही गाड़ी है, उस गाड़ी में ही ममता बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी और शोभन देव चटर्जी वो सब लोग मौजूद थे।
0: तो अभी हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, और तस्वीरों में सब कुछ तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए अभिषेक बनर्जी यहां पहुंचे थे, और उसके बाद भीड़ में किस तरीके से वो घिर गए वो भी जरा देखिए, और किस तरीके से जबरदस्त उसके बाद हंगामा देखने को मिला है। हेलमेट से बचाव वो करते हुए नजर आए, भीड़ उनके पीछे पड़ गई थी, खींचातानी भीड़ ने शुरू कर दी, मारपीट पर भीड़ उतर आई, नारेबाजी की गई उनके खिलाफ, चोर चोर के नारे लगाए गए, अंडे फेंके गए, पत्थर भी फेंके गए। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि अभिषेक को स्ट्रेचर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ देर तक अस्पताल में उन्हें रखा गया, हालत स्थिर होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, और साथ ही आराम करने की सलाह डॉक्टर्स की तरफ से दी गई। और जो 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल अभिषेक बनर्जी से मिलने के लिए ममता बनर्जी पहुंची थी, और उन्होंने कहा था कि अभिषेक बनर्जी ने सही कहा है, पूरी तरह से सुनियोजित साजिश ये बीजेपी की थी, मारने की साजिश रची गई थी। दरअसल अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में चुनावी हिंसा में पीड़ित से मिलने के लिए पहुंचे थे, और तभी उनके ऊपर हमला किया गया। इस दौरान अभिषेक से हाथापाई की गई, उन पर अंडे फेंके गए, काफी देर के बाद सुरक्षा के बीच अभिषेक को वहां से बाहर निकाला गया।
4: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
5: They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না।
4: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
6: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे, चोर को अंडा फेंक के मारेंगे। अभी तो हाँ वो भी बहुत कम हो गया, वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था बांग्लादेश से, वो खुद है उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
7: वो लोग भाई मरने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ उस टाइम वो भेजा नहीं, अभी एक तो चमचा मर गया इसलिए भेजा है यहाँ, इसके लिए भेजा है हमारा रास्ता देखता है आज पंद्रह माधो में ये रास्ता कैसे चलता है हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
4: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता दक्षिण 24 परगना आज तक।
0: तो कुछ देर के बाद अभिषेक बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी गई है और ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इसी को लेकर जनता के बीच जरूर जाएंगी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, ooh, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Me, baby, one more time. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
11: है सूर्य का रत्न और क्या हैं इसके फायदे, सूर्य का रत्न किनको धारण करना चाहिए और किनको बचना चाहिए, सूर्य का रत्न किन बीमारियों में लाभ भी पहुंचा देता है, जानिए सूर्य के रत्न की विशेषता मेरे साथ सिर्फ।
12: दिस इज द साउंड ऑफ जैक buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
13: Oh, ouch.
12: However you make money work, we can work with that.
14: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
15: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
16: Jack, you're killing me.
15: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
17: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
11: Bhagya Chakra.

0: नौकरी पेशा लोगों के लिए अप्रेजल यानी इंक्रीमेंट का वक्त किसी त्योहार से कम नहीं होता। साल भर की मेहनत के बाद जब सैलरी बढ़ती है तो चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि हाथ में लेटर आने के बावजूद भी लोग उतने खुश नहीं हैं। दरअसल दफ्तरों में चर्चा है कि कागजों पर तो 10% तक का इजाफा दिख रहा है, लेकिन जब सैलरी बैंक अकाउंट में आई तो उम्मीद से कम निकली। इस मायूसी के पीछे की वजह कोई मंदी या कंपनी की कंजूसी नहीं है, ये तो देश के नए लेबर कोड सिस्टम का असर है। नए नियमों के गणित को अगर समझें तो न्यू लेबर कोड के तहत अब कुल CTC का 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होना जरूरी है, यानी अगर किसी की मंथली सैलरी 50,000 रूपए है तो उसकी बेसिक सैलरी सीधे 25,000 रूपए तय हो जाएगी, जबकि पहले कंपनीज बेसिक सैलरी कम रखकर मोबाइल बिल या हाउस अलाउंस जैसे भत्तों में ज्यादा पैसा देती थी और पुराने सिस्टम में कर्मचारियों को घर ले जाने के लिए टेक होम सैलरी ज्यादा मिल जाती थी। अब कंपनीज के इस नए सैलरी स्ट्रक्चर की वजह से टेक होम अमाउंट भले ही कम हुआ हो, लेकिन इसके पीछे कर्मचारियों का एक बड़ा फायदा भी छुपा हुआ है। दरअसल कर्मचारियों के PF और ग्रेच्युटी का पैसा हमेशा उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय किया जाता है। नियमों के अनुसार बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने PF अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, यानी बेसिक सैलरी का ग्राफ ऊपर जाने से कर्मचारी के साथ साथ कंपनी का PF योगदान भी बढ़ जाएगा, जिसका सीधा फायदा रिटायरमेंट के समय दिखेगा जब कर्मचारियों के हाथ में एक बहुत बड़ा सेविंग फंड आएगा। इसके साथ ही जो लोग किसी एक कंपनी में लंबा समय बिताते हैं उन्हें मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़कर मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो सरकार के इस कदम का मकसद नौकरी पेशा लोगों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। फिलहाल जेब में आने वाले पैसे में थोड़ी कटौती जरूर खल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बेहद फायदेमंद सौदा है। कागजों पर सैलरी का बढ़ना और अकाउंट में कम आना आने वाले दिनों में एक बड़ी बचत के तौर पर सामने आने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

दुष्कर्मों के आरोपी असद को पुलिस ने किया ढेर जवाबी फायरिंग में एक जवान घायल। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने के आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई है सियासत, सोमवार को सड़क पर उतरेंगी ममता बनर्जी, केजरीवाल अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। दिल्ली के मैरोली इलाके में गिरी 5 मंजिला इमारत, मलबे से 7 लोगों को बाहर निकाला गया, कई लोगों के दबे होने की आशंका, मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने फिर दी ईरान को धमकी, कहा डील नहीं हुई तो फिर छिड़ेगा युद्ध। एक्सेट बोले, हमारे धैर्य की परीक्षा न ले तेहरान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सूर्य के रत्न के बारे में जिसका नाम है माणिक्य। सूर्य का ये रत्न कैसे काम करता है, किन मामलों में फायदा पहुंचाता है और इसको पहनने का तरीका क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 2:14 तक, नक्षत्र है अनुराग।

संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सूर्य के रत्न के बारे में, जिसका नाम है माणिक्य और अंग्रेजी में कहते हैं रूबी, बांग्ला में कहते हैं चुन्नी। तो सूर्य के रत्न की विशेषता क्या है? सूर्य अग्नि प्रधान ग्रह है, फायर एलिमेंट का प्लेनेट है, और माणिक्य सूर्य का प्रमुख रत्न है। ये मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कंपाउंड है। माणिक्य अत्यधिक शक्तिशाली होता है, और जब आप माणिक्य पहनते हैं तो ये आपकी आंखों पर, हड्डियों पर, हृदय पर और नाम और यश पर सीधा असर डालता है। वैसे तो माणिक्य कई रंगों का होता है, लेकिन ज्योतिष में जिस माणिक्य का हम प्रयोग करते हैं वो गुलाबी रंग का माणिक्य है और वो सर्वोत्तम होता है। माणिक्य अगर पहना जाए तो इसका प्रभाव तुरंत आने लगता है। ये तुरंत प्रभावशाली होने वाला रत्न है, इसका इम्पैक्ट जल्दी आता है। माणिक्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में बड़ा निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपने माणिक्य पहना तो माणिक्य पहनने से अगर लाभ होगा तो किस तरह का लाभ होगा और अगर नुकसान होगा तो किस तरह का नुकसान होगा। माणिक्य पहनने पर अगर लाभ पहुंचाए तो चेहरा चमकने लगता है और आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। राजकीय कार्यों में, गवर्नमेंट से संबंधित मामलों में और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में विशेष लाभ होता है। माणिक्य अगर फायदा पहुंचाए तो पिता के साथ और परिवार के साथ रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। अगर माणिक्य नुकसान करे तो लगातार सर में दर्द और सर में भारीपन होने लगता है। हड्डियों में और आंखों में समस्या आने लगती है, हड्डियों और आंखों में दिक्कत होती है। अगर माणिक्य नुकसान करे तो आप अपयश के शिकार हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। माणिक्य फायदा करेगा तो स्वास्थ्य और मन दोनों मजबूत होगा और माणिक्य अगर नुकसान करेगा तो स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। माणिक्य पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताओं से आपको

टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

लोग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, संतान की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न प्रीति वर्मा ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। 17 फरवरी 1990 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 7:55। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रीति कह रही हैं कि 1 साल से मैं अपने मायके में रह रही हूं और वहीं नौकरी भी कर रही हूं। मेरा विवाह नहीं चल पा रहा है, दिक्कतें बहुत हो रही हैं। तो क्या मेरी ये शादी चल पाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? प्रीति, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपने अपने पतिदेव की और अपनी कुंडली भेजी है उसके हिसाब से शादी चल पाने की संभावना नहीं लगती है। आपसी सुलह समझौते से आपका विवाह अगले साल के शुरुआत तक ब्रेक होगा और दूसरी शादी आप करेंगी 2027 के आखिरी तक, और आगे विवाह में या वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है।

एक ओपल पहने, रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, जीवन में सुधार होगा। अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को माणिक्य धारण करना चाहिए और इन लोगों को माणिक्य से कैसे फायदा होगा। देखिए, वैसे तो कुंडली दिखा लीजिए और कुंडली दिखा करके जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से अगर माणिक्य धारण करें तो सबसे बढ़िया होगा। मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न में माणिक्य धारण करना सबसे बेहतर होता है। इनका स्वास्थ्य, इनका मन और इनका करियर बेहतर हो जाता है। कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न के लोग भी सलाह लेकर के माणिक्य पहन सकते हैं, हालांकि इनको माणिक्य से एवरेज फायदा होगा। वृषभ लग्न में विशेष दशाओं में माणिक्य पहना जा सकता है और वृष लग्न वालों को माणिक्य पहनने से संपत्ति का और पद प्रतिष्ठा का लाभ होता है। अगर कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखा करके जरूरत के अनुसार माणिक्य पहन सकते हैं, लेकिन पहले माणिक्य की जांच कर लीजिए कि माणिक्य में कोई काला धब्बा ना हो और माणिक्य टूटा फूटा ना हो। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, सांवले रंग के लोगों को

माणिक पहनने से आम तौर पर फायदा होता है ऐसा देखा गया है। माणिक पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि किन लोगों को माणिक्य सामान्यतः नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को माणिक्य पहनने से नुकसान हो सकता है। कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ लग्न में, लग्न की बात कर रहा हूं मैं, कन्या लग्न, मकर लग्न, मिथुन लग्न, तुला लग्न और कुंभ लग्न में सामान्यतः माणिक्य न पहने, क्योंकि यहां पर माणिक्य पहनना खतरनाक हो सकता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है या जिन लोगों को हृदय रोग है, ऐसे लोगों को सोच समझ कर माणिक्य पहनना चाहिए। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जिनको हृदय रोग है, अगर सोच समझ के उनको माणिक्य पहनाया जाए तो लाभ हो सकता है। जिन लोगों का संबंध पिता के साथ ठीक नहीं है या जो लोग पिता के साथ संबंध बेहतर नहीं रखते, उनको भी माणिक्य नुकसान कर सकता है। सामान्यतः जो लोग शनि से संबंधित क्षेत्रों में हैं, लोहे में, मशीनरी में, इन क्षेत्रों में हैं, उन्हें भी माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को हृदय रोग है, हड्डियों की गंभीर समस्या है या आंखों की ज्यादा समस्या है, तो सलाह लेकर अगर इनको माणिक्य पहनाया जाए तो हड्डियों, हृदय और आंखों के मामले में लाभ अवश्य हो सकता है। देखिए, जब भी आप माणिक्य धारण करते हैं, माणिक्य के साथ मोती, पीला पुखराज, मूंगा और पन्ना पहना जा सकता है, लेकिन माणिक्य के साथ नीलम, हीरा और गोमेद, ये कतई धारण नहीं किया जा सकता। और माणिक्य के साथ अगर आप गोमेद पहनते हैं या माणिक्य के साथ अगर हीरा या ओपल पहनते हैं, तो जीवन में अपयश की संभावना बढ़ जाती है। माणिक्य के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है पीले पुखराज का। तो अगर आप माणिक्य पहनते हैं तो सलाह लेकर के आप पीला पुखराज पहन सकते हैं और उससे आपको लाभ हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में कोई शुभ कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

लोग बन रहे हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सूर्य का रत्न तांबे या सोने दोनों में पहना जाता है, लेकिन सूर्य का रत्न किस धातु में पहनना ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, सोना जो है इसको भी कहीं कहीं पर सूर्य की धातु मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सूर्य की धातु है तांबा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सोने में या तांबे में दोनों में माणिक्य बनवा के पहन सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप तांबे की अंगूठी में माणिक्य पहने। तांबे की अंगूठी में माणिक्य पहनने के फायदे ज्यादा होते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर 7, मानसिक तनाव दूर होगा। नंबर 8, करियर में लाभ के योग हैं। और नंबर 9, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6:07:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न जलज ने हमें लिखा है और जलज हमें मेल लिखते हैं बड़ौदा गुजरात से। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1994। जन्म का समय सुबह के 10 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ। जलज कह रहे हैं कि मैं अभी गुजरात में पोस्टेड हूं, बैंकिंग की नौकरी करता हूं। मैं नौकरी बदल करके प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता हूं। क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? जलज, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी बदलने की मैं सलाह नहीं दूंगा। अगले साल आपका प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों होगा। आप अपने घर के निकटवर्ती इलाके में पहुंच जाएंगे और इस नौकरी में आपकी तरक्की बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो बेवजह नौकरी ना बदलें, वही आपके लिए बेहतर होगा। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मन की चिंताओं को, तनाव को दूर करने के लिए
एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाकर तब जाइएगा, काम आपका बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।

शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि वालों के लिए, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा मेष राशि के लोगों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, दुर्घटना हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो इस समय शुभ कार्यों की शुरुआत ना करें। आज जल और गुड़ का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

अभिषेक बनर्जी को अस्पताल ले जाया गया। गाजियाबाद के सूर्य चौहान हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी खोड़ा इलाके में आएगा, पैसे लेने और शहर से भागने की फिराक में था। खोड़ा इलाके में घेरेबंदी के बाद पुलिस ने फरार आरोपी असद को दबोचा। आरोपी बाइक से अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचा, पुलिस का दावा, रोकने पर आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की कार्रवाई में पुलिस ने असद को मार गिराया, मौके से देसी पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की गई। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, दबाव में अस्पताल में अभिषेक को डिस्चार्ज किया गया, आज से टीएमसी का प्रदर्शन। अभिषेक की सेहत पर सियासत तेज हुई, ममता बनर्जी बोली बीजेपी ने अस्पताल को धमकाया था। आईसीयू से घर पहुंचे अभिषेक, ममता ने कहा कुछ हुआ तो अस्पताल होंगे जिम्मेदार। लोकतंत्र की हत्या बताकर ममता का हमलावर वार, सोमवार को ममता बनर्जी का मोर्चा। ममता ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताया, कहा हेलमेट नहीं होता तो अभिषेक को मौके पर ही मार दिया गया होता। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, भीड़ ने अंडे फेंके, फाड़ दी थी शॉट, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। हमले के आया का हेलमेट नहीं होता तो अभिषेक को मौके पर ही मार दिया गया होता। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, भीड़ ने अंडे फेंके, फाड़ दी थी शॉट, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, वो मुझे मारना चाहते थे, बोले घटना के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। अभिषेक ने लगाया जानलेवा हमले का आरोप, क्लिनिक का दावा, मेडिकल जांच में चोट के कोई निशान नहीं है। सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर विपक्ष आक्रामक है, राहुल गांधी बोले यह हमला लोकतंत्र पर हमला है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी हिंसा के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अभिषेक बनर्जी के घर अचानक से पहुंची थी सीआईडी, विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में थमाया कानूनी नोटिस। डीके शिव कुमार 3 जून को लेंगे कर्नाटक के सीएम पद की शपथ, राज्यपाल ने भेजा है निमंत्रण। सिद्धरमैया ने डीके शिव कुमार का नाम बढ़ाया, गुरुवार को कर्नाटक के सीएम पद से सिद्धरमैया ने इस्तीफा दिया था। लखनऊ में बोले सीएम आदित्यनाथ, अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म, लेकिन कोई समाज और देश के लिए बने खतरा तो हिंसा अपनानी पड़ती है। आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 134वां एपिसोड, पश्चिम एशिया संकट, ऊर्जा बचत, पद्म पुरस्कार पर रख सकते हैं अपनी बात। सीआईटी यूजी 2026 में तकनीकी गड़बड़ी से परीक्षा शुरू होने में देरी हुई, 3,765 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा छोड़कर गए थे अभ्यर्थी, एनटीए ने पुनर्परीक्षा कराने का फैसला किया। एनटीए का दावा 95% परीक्षार्थियों ने परीक्षा को पूरा किया, प्रभावित केंद्रों पर परीक्षा समय में बदलाव किया गया। छात्रों ने केंद्रों पर सूचना के अभाव में लगाया था आरोप, पेरेंट्स ने घंटों इंतजार किया और शिकायत भी की। सीयूईटी यूजी मामले में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बीजेपी का भ्रष्टाचार कई रूपों में दिखता है, आज के अभ्यर्थी कह रहे हैं हमें बीजेपी नहीं चाहिए। नीट पेपर लीक पर सियासी बयानबाजी तेज हुई, पवन खेड़ा का सवाल, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन। अरविंद केजरीवाल का भी तंज, क्या वायुसेना के विमान पेपर लीक को रोक लेंगे, शिक्षा व्यवस्था माफिया के चंगुल में फंसी हुई है। संदीप दीक्षित ने शिक्षा मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाया, कहा सरकार का शिक्षा मंत्री पर भरोसा कम हुआ है। मनीष सिसोदिया का आरोप, एनडीए परीक्षा कराने में नाकाम है, सीयूईटी का मजाक बना दिया गया है। संजय झा ने परीक्षा रद्द करने के फैसले का जिक्र किया, संजय झा बोले सरकार ने मामला छुपाने की कोशिश नहीं की, सरकार समाधान निकालेगी। मुंबई में सीएनजी के दाम फिर से बढ़े, 2 रुपए प्रति किलो हुआ है इजाफा, 1 किलो सीएनजी की कीमत हुई है 86 रुपए। भ्रष्टाचार पर बिहार सरकार की कार्रवाई, आईएएस योगेश सागर, अभिलाषा शर्मा सस्पेंड किए गए, टेंडर माफिया ऋषु श्री गिरफ्तार। उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेताओं की जमीन से हथियार बरामद किए गए, अजीत साहा गिरफ्तार। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन, 12 मित्र देशों की सेनाओं के 60 जवान शामिल। पुणे के खड़गवासला में नेशनल डिफेंस अकेडमी के 150वें फोर्स की पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों ही अंगों को मिले नए ऑफिसर्स। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान का खौफ, चूरू के आसमान में रेत का बवंडर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी धूल भरी आंधी, दिन में ही छा गया था अंधेरा। दिल्ली में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, शाम को बारिश से तापमान गिरा, अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट, कड़ाके की ठंड जारी।
मनाली में रोहतांग में अभी भी बर्फ की कई फीट मोटी चादर, सैलानियों का भारी जमावड़ा लग रहा है लंबा जाम। तेज बारिश के बाद दिल्ली में चली धूप भरी आंधी, कनॉट प्लेस इलाके में झमाझम बारिश। चंडीगढ़ में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तापमान में भी गिरावट आई। चंडीगढ़ में बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ, मशहूर सुखना लेक से तस्वीरें सामने आई। हरियाणा के अम्बाला में झमाझम बारिश के बाद मौसम खुशगुवार, भीषण गर्मी से मिली राहत। तिरुवनंतपुरम के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, सड़कों पर लबालब पानी, बारिश से बचने के लिए छाता और रेनकोट का सहारा। कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरुग्राम के विश्व शांति केंद्र में सनातन धर्म की जय हो गीत का भव्य लोकार्पण, धर्माचार्यों ने विश्व शांति में इसकी भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी, विकसित गोवा और विकसित भारत 2047 का जताया लक्ष्य। दिल्ली के करावल नगर में विकास कार्यों का निरीक्षण, कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के साथ पार्षद ब्रिजेश सिंह ने जायजा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक पहुंचेगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची, दिल्ली रवाना हुई 2000 कातम। दिल्ली के हमीरपुर में 6 मजदूरों की मौत के मामले में FIR दर्ज, पुल निर्माण कंपनी मालिक और सुपरवाइजर फंसे। गाजियाबाद में पैरा खिलाड़ी को मारी गई गोली, साई उपवन में शव मिलने के बाद हड़कंप। धनबाद की टुंडी में पुलिस के साथ झड़प हुई, प्रतिबंधित मांस मिलने पर ग्रामीणों का बवाल, हिरासत में लिए गए थे 3 आरोपी। पुणे में जहरीली शराब मिलने के बाद मौत के मामलों की संख्या बढ़ गई है, पहुंची 17, CID जांच के आदेश, पुलिस और आबकारी विभाग के 22 कर्मचारी सस्पेंड। दिल्ली के मैरोली इलाके में सईदुल्ला जवाब इमारत गिरी है, कई लोगों के दबे होने की आशंका। लखनऊ में डबल एनकाउंटर, विकास नगर में छेड़खानी का आरोप, कृष्णा नगर में 2 लुटेरे गोली लगने से घायल हुए। महिला से मारपीट करने वाले आरोपी और 2 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए, लखनऊ पुलिस का एक साथ 2 जगहों पर एक्शन। नवसारी में नेशनल हाईवे से कच्चे तेल की चोरी के बड़े घोटाले का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार। सुल्तानपुर में सपा नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष और उनके परिजनों पर जमीन कब्जा करने के आरोप, विरोध करने पर सपा नेता की मौजूदगी में जमकर मारपीट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 26 साल के अरबाज की चाकू मारकर हत्या, 3 नाबालिग हिरासत में लिए गए। गाजियाबाद में युवक की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार, चाकू से हमले का CCTV फुटेज भी सामने आया। यूपी के हापुड़ में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, CCTV कैमरे में कैद हुई थी तस्वीरें। झांसी में दीवार गिरने के बाद खूनी संघर्ष वायरल, CCTV फुटेज में लाठी डंडों से युवक की पिटाई। गुजरात के जामनगर में टला बड़ा हादसा, विज्ञापन टावर गिरा, CCTV वीडियो सामने आया। वडोदरा में दोस्त ने कैटरिंग व्यवसायी दोस्त को चाकू मारकर हत्या कर डाली, आरोपी गिरफ्तार किया गया। बिहार के बगहा में पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या का खुलासा किया, 27 मई को युवक का शव मिला था। दानापुर पुणे स्पेशल ट्रेन ने महिला बोगी में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अयोध्या में पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार हुआ, हत्या की कोशिश में नामजद था यह आरोपी। कुल्लू के कसौल में बाजार में सैलानियों की दबंग गई, पार्किंग विवाद में स्थानीय युवक पर चलाई थी गोली, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। उदयपुर में 2 स्थानों पर बड़ी कार्रवाई, मिलावट के संदेह में 18,000 लीटर घी जब्त किया गया। दिल्ली के झारखंड शव ले जा रही एम्बुलेंस का कौशाम्बी में ट्रक से टक्कर हुई, 6 घायल हुए, हादसा CCTV कैमरे में कैद। जलंधर में RTI एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह की गोली मारकर हत्या, हत्या की वजह का पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। बेंगलुरु में एक स्कूल में भीषण आग लगी, छुट्टी के दिन हादसे की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के हापुड़ में घर में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने काबू पाया, शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ। आज IPL का फाइनल मुकाबला है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगे रॉयल बैंगलोर चैलेंजर्स और गुजरात टाइटंस। लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए उतरेगी बेंगलुरु की टीम, पहले प्लेऑफ में गुजरात को 92 रनों से मात दे चुकी है। ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा सकते हैं गुजरात टाइटंस का कप्तान शुभमन गिल, फिलहाल 722 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी से 54 रन पीछे हैं। बबल कैप की दौड़ में गुजरात के कासिगो रवाड़ा 28 विकेट के साथ सबसे आगे, 26 विकेट झटककर दूसरे नंबर पर बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वैभव सूर्यवंशी, मंत्री इरफान अंसारी ने किया ऐलान, देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। फिल्म काले रंग का पोस्टर जारी किया गया, सलमान खान लॉरेंस विवाद पर बनी है फिल्म, 20 जून को आएगा टीजर।
रणबीर कपूर की रामायण के एक्शन सीन होंगे इंटरनेशनल लेवल के। एवेंजर्स फेम टेरी नोट्री जुड़ेंगे प्रोजेक्ट से। ये जवानी है दीवानी के पूरे कर लिए रिलीज के 13 साल। फैंस के बीच फिल्म के सॉन्ग बलम पिचकारी की क्रेज अभी भी बरकरार। 10 जुलाई को मुंबई में सन्मुखानंद हॉल में होगा द ड्रीम गर्ल्स डायमंड जुबली कॉन्सर्ट। लाइव कॉन्सर्ट में गाना गाएंगी हेमा मालिनी। वेब सीरीज ब्राउन का ट्रेलर रिलीज किया गया। अब नए अवतार में नजर आएंगी करिश्मा कपूर। सन्मुखानंद हॉल में होगा द ड्रीम गर्ल्स डायमंड जुबली कॉन्सर्ट। लाइव कॉन्सर्ट में गाना गाएंगी हेमा मालिनी। वेब सीरीज ब्राउन का ट्रेलर रिलीज किया गया। अब नए अवतार में नजर आएंगी करिश्मा कपूर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर ईरान का बड़ा बयान। अमेरिकी नाकेबंदी हटने के बाद हॉर्मुज खोलने का फैसला लेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट के भविष्य को लेकर ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों के बीच अहम बातचीत। दोनों ही देशों के बीच सुरक्षा की गारंटी, क्षेत्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रशासन चलाने पर बनी सहमति। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान को बड़ा आर्थिक झटका। अमेरिका ने जब्त किए $1 अरब के क्रिप्टो फंड्स। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हिट्सिग ने सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग के अलग जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर बात। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की है। लेबनान के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम और अमेरिका से दखल की मांग की है। शांग्रीला डायलॉग में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के लिए एंटी न्यूक्लियर क्षमता बढ़ाएगा दक्षिण कोरिया। सिंगापुर में ऑकस देशों का बड़ा ऐलान। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर बनाएंगे हाईटेक अंडरवाटर ड्रोन्स। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मेडिकल जांच में पूरी तरह से स्वस्थ घोषित किए गए। डॉक्टर्स ने कहा ट्रंप की सेहत बिल्कुल ठीक है। पूर्वी अफगानिस्तान में दर्दनाक सड़क हादसा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान लौट रहे शरणार्थियों का वहां ट्रक पलट गया था। 22 की मौत हुई, 36 लोग घायल हुए। ऑस्ट्रेलिया और इटली को जोड़ने वाले ब्रेनो अल्पाइन पास बंद कर दिया गया है। रास्ता बंद होने की वजह से भारी ट्रैफिक।

0: और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी का एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें उस अस्पताल के सीईओ पर गुस्सा करने की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है जहां अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। वीडियो कोलकाता के बेले व्यू अस्पताल का है जो अस्पताल के सीईओ प्रदीप टंडन पर नाराज नजर आ रही है। वीडियो में सिर्फ ममता बनर्जी की आवाज है, उनकी तस्वीरें साफ नजर नहीं आ रही। तो दावा ये किया जा रहा है कि ममता बनर्जी की आवाज है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र जुड़ गए। अनुपम, ये आवाज साफ पता चल रहा है ममता बनर्जी की है और उन्होंने ये भी कहा कि दबाव में अस्पताल ने डिस्चार्ज किया अभिषेक बनर्जी को।
1: ये देखिए, ये वायरल वीडियो है और आवाज ममता बनर्जी की ही लग रही है, लेकिन जो बातें हैं उसमें से बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो अभी तक समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में बात कर रही है मिस्टर टंडन से और कह रही है कि आपने जो किया है सही नहीं किया है, हमने आप भूल गए, हमने आपको बहुत मदद की थी लेकिन अब भगवान आपको माफ नहीं करेगा। और जब कल को बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं रहेगी केंद्र में, तब आपको देख लिया जाएगा। बीच में पुलिस को लेकर भी कुछ कन्वर्सेशन है लेकिन वो क्लियर नहीं है, देखना हुआ कि एग्जैक्टली उसमें वो क्या बोल रही है। पर ये वायरल वीडियो कल का बताया जा रहा है, जब बेलवी अस्पताल से अभिषेक बनर्जी को वापस निकाला जा रहा था, या उसी वक्त का है जब बेलवी अस्पताल में अभिषेक बनर्जी को लाया गया था।
0: अब एक और चीज अनुपम, हमें बताइए कि क्या अभिषेक बनर्जी की हालत वाकई में खराब थी और जबरदस्ती उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, दूसरे अस्पताल उनको ले जाया गया, अभी उनकी स्थिति क्या है और क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी कोई सफाई दी गई है?
1: देखिए, दो तरह के दावे हैं। टीएमसी की ओर से दावा किया जा रहा है अस्पताल ने बीजेपी के दबाव में ऐसा किया है, जबकि बीजेपी जो प्रेस्क्रिप्शन आया है उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सीरियस इंजरी अभिषेक बनर्जी को नहीं है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं पेरिस के बारे में, जहां जश्न और उपद्रव एक साथ देखा गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएसजी की चैंपियंस लीग जीत के बाद जश्न के बीच बवाल मच गया, हजारों प्रशंसक सड़कों पर उतर आए, कई जगहों पर आगजनी हुई है, पुलिस के साथ झड़पों की भी खबरें सामने आई हैं। उधर पीएसजी ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया है। ये तस्वीरें आगजनी की दिखा रहे हैं, ये जीत के बाद जब लोग सड़कों पर उतर आए थे, अलग अलग जगहों पर आगजनी की खबरें हैं। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की है तो पुलिस के साथ भी झड़पें हुई हैं। पीएसजी ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया है, लगातार दूसरी बार चैंपियंस लीग अपने नाम की है। उसके बाद जश्न मनाने के बाद ये तस्वीरें देखने को मिली हैं पेरिस में। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: जैक एफएम इज नाउ स्ट्रीमिंग कमर्शियल फ्री ऑन ट्यून इन प्रीमियम।
5: Jack, you're killing me.
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
7: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
8: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
9: विक्रम एक हिंट तो देते
10: विक्रम
9: हिंट
8: बड़े आराम से
11: आगे आगे
12: अरे उधर
11: उधर किधर
12: करेक्ट करेक्ट
13: मिल गया आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा
14: लायन ओज फैमिली सुपर एक्शन फैमिली
15: इसमें है फाइबर बीटा ग्लूकोन प्रोटीन मैग्नीशियम तत्व इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली
16: और वही कहाँ गए थे घूमने
17: जीके मैक्स
18: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
17: जीके मैक्स बेस्ट फुटी
18: जेके वॉल मैक्स
17: बेस्ट पेंट
18: जेके मैक्स
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
19: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो
20: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है
21: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही
22: In association with Samakul Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful. Hint, bade aaram se.
23: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
22: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
24: Vimal, bolo zuban kesri.
25: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर ये है खबरें 7 तक देखते रहिए आज तक

0: नौकरी पेशा लोगों के लिए अप्रेजल यानी इंक्रीमेंट का वक्त किसी त्योहार से कम नहीं होता। साल भर की मेहनत के बाद जब सैलरी बढ़ती है तो चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि हाथ में लेटर आने के बावजूद भी लोग उतने खुश नहीं हैं। दरअसल दफ्तरों में चर्चा है कि कागजों पर तो 10% तक का इजाफा दिख रहा है, लेकिन जब सैलरी बैंक अकाउंट में आई तो उम्मीद से कम निकली। इस मायूसी के पीछे की वजह कोई मंदी या कंपनी की कंजूसी नहीं है, ये तो देश के नए लेबर कोड सिस्टम का असर है। नए नियमों के गणित को अगर समझें तो न्यू लेबर कोड के तहत अब कुल CTC का 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होना जरूरी है, यानी अगर किसी की मंथली सैलरी 50,000 रूपए है तो उसकी बेसिक सैलरी सीधे 25,000 रूपए तय हो जाएगी, जबकि पहले कंपनीज बेसिक सैलरी कम रखकर मोबाइल बिल या हाउस अलाउंस जैसे भत्तों में ज्यादा पैसा देती थी और पुराने सिस्टम में कर्मचारियों को घर ले जाने के लिए टेक होम सैलरी ज्यादा मिल जाती थी। अब कंपनीज के इस नए सैलरी स्ट्रक्चर की वजह से टेक होम अमाउंट भले ही कम हुआ हो, लेकिन इसके पीछे कर्मचारियों का एक बड़ा फायदा भी छुपा हुआ है। दरअसल कर्मचारियों के PF और ग्रेच्युटी का पैसा हमेशा उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय किया जाता है। नियमों के अनुसार बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने PF अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, यानी बेसिक सैलरी का ग्राफ ऊपर जाने से कर्मचारी के साथ साथ कंपनी का PF योगदान भी बढ़ जाएगा, जिसका सीधा फायदा रिटायरमेंट के समय दिखेगा जब कर्मचारियों के हाथ में एक बहुत बड़ा सेविंग फंड आएगा। इसके साथ ही जो लोग किसी एक कंपनी में लंबा समय बिताते हैं उन्हें मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़कर मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो सरकार के इस कदम का मकसद नौकरी पेशा लोगों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। फिलहाल जेब में आने वाले पैसे में थोड़ी कटौती जरूर खल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बेहद फायदेमंद सौदा है। कागजों पर सैलरी का बढ़ना और अकाउंट में कम आना आने वाले दिनों में एक बड़ी बचत के तौर पर सामने आने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: If teaching is what you're meant to do, WGU is where you can become great at it. Earn your bachelor's or master's in education online on your schedule and with support that's available when you need it. Make your passion your profession. Learn more at WGU.edu.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
6: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
7: विक्रम, एक हिंट तो देते।
8: विक्रम!
7: हिंट
6: बड़े आराम से।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
11: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही है।

जल्द ही गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त लोगों को पेट्रोल पंप पर खड़े होकर खुद तय करना होगा कि उनकी गाड़ी के लिए कौन सा पेट्रोल सही रहेगा। इसकी वजह है कि सरकार ऐसा सिस्टम लाने की तैयारी में है जहां पेट्रोल भी इंजन के हिसाब से चुना जाएगा। दरअसल देश में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत पेट्रोल पंपों पर अलग अलग तरह के इथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिल सकते हैं, जिससे लोग अपनी गाड़ी की जरूरत के हिसाब से विकल्प चुन सकें। आने वाले समय में E20, E22, E25 और E30 जैसे फ्यूल ऑप्शन पेट्रोल पंप्स पर मिल सकते हैं। इनमें नाम के हिसाब से 20, 22, 25 और 30 फीसदी इथेनॉल जबकि बाकी पेट्रोल होता है। सरकार की कोशिश है कि पेट्रोल पर निर्भरता कम की जाए और देश में तैयार होने वाले इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में पूरी तरह इथेनॉल से चलने वाले व्हीकल्स को लेकर भी तैयारी चल रही है, लेकिन पेट्रोल पंप्स पर कई तरह के फ्यूल आने की खबर के साथ लोगों के मन में सवाल भी बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चिंता माइलेज को लेकर है, क्योंकि ज्यादा इथेनॉल मिक्स फ्यूल में माइलेज कम होने का डर रहता है। वहीं पुरानी गाड़ियों के इंजन पार्ट्स पर असर की आशंका बढ़ जाती है, जबकि रबर और प्लास्टिक पार्ट्स के भी जल्दी खराब होने की आशंका जताई गई है। इसकी वजह है कि इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले अलग तरीके से जलता है। ऐसे में पुराने इंजन वाले व्हीकल्स में परफॉर्मेंस और पार्ट्स की लाइफ को लेकर लोगों में दुविधा बनी हुई है। यही वजह है कि सरकार पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों के हिसाब से जानकारी देने की तैयारी कर रही है, जिससे लोग सही फ्यूल चुन सकेंगे। इस पूरे प्लान में सबसे बड़ा रोल पेट्रोल पंप्स पर लगने वाली उस लिस्ट का होगा, जिसमें बताया जाएगा कि कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा इथेनॉल ब्लेंड सही रहेगा। इससे लोगों को अंदाजा रहेगा कि उनकी बाइक, कार या स्कूटर किस फ्यूल के साथ बेहतर चलेगी, यानी पेट्रोल पंप्स पर व्हीकल कंपैटिबिलिटी लिस्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं नई गाड़ियों को हाई इथेनॉल ब्लेंड के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है और पुराने व्हीकल्स के लिए लोअर ब्लेंड फ्यूल ऑप्शन रहने की संभावना है। सरकार की नजर फ्यूल इंपोर्ट बिल घटाने पर भी है, क्योंकि इथेनॉल का बड़ा हिस्सा देश में तैयार होता है। ऐसे में ज्यादा ब्लेंडिंग होने पर कच्चे तेल पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ किसानों के लिए भी इसे बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि गन्ने और दूसरी फसलों से बनने वाले इथेनॉल की डिमांड बढ़ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव के साथ लोगों को सही जानकारी देना सबसे जरूरी होगा। इसकी वजह है कि गलत फ्यूल चुनने पर इंजन पर असर पड़ सकता है। फिलहाल तस्वीर यही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप का पूरा सिस्टम बदलता दिखाई दे सकता है। जहां पहले लोग पेट्रोल और डीजल में फर्क देखते थे, वहीं आगे चलकर फ्यूल का चुनाव इंजन की जरूरत देखकर किया जाएगा। ऐसे में गाड़ी मालिकों के लिए ये समझना जरूरी होगा कि उनकी जेब, माइलेज और इंजन तीनों के लिए कौन सा फ्यूल सबसे सही बैठता है। आदित्य के राणा आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने का दावा। बकरीद के दिन घेर कर सूर्या का किया गया था कत्ल। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या। साथी खिलाड़ी यश खटीक पर गोली मारने के आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। चिराग की शिकायत पर खटीक टूर्नामेंट से हुआ था बाहर। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले से कोलकाता से दिल्ली तक उबाल। सोमवार को सड़क पर उतरेंगी ममता बनर्जी। राहुल गांधी अखिलेश केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। और दिल्ली के मेहरौली इलाके में गिरी 5 मंजिला इमारत। मलबे से 7 लोगों को बाहर निकाला गया। कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह के 8 बज गए हैं और इस बुलेटिन में हम तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी गाजियाबाद की सूर्या मर्डर केस की, जिसका मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। वहीं लखनऊ में हुई 2 मुठभेड़ में 3 बदमाशों के घायल होने की खबर है। इसके साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में, जो अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद ज्यादा गर्मा गई है। साथ ही बात करेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज के बारे में भी, क्योंकि उत्तर भारत के कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश की आफत लगातार जारी है। इसके साथ आपको बताएंगे कि गर्मियों में मौसम पहाड़ों पर सैलानियों का सैलाब कैसे मुसीबत बन गया है, कैसे पहाड़ों का रुख करते हुए सैलानी मुसीबतों में फंस गए हैं। तो सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली सटे गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या के मामले का एनकाउंटर किया गया। मुख्य आरोपी का असद मार गिराया गया है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार असद को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई थी। पुलिस ने असद को गिरफ्तार करने के लिए जाल भी बिछाया। इस दौरान असद ने पुलिस पर फायरिंग कर डाली। जवाबी कार्रवाई में असद घायल हुआ। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो इस मामले में 5 नामजद थे, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस ने कल ही कर ली थी। असद मुख्य आरोपी था, जिसे लगातार खोजा जा रहा था। तो इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा कल खोड़ा में देखा गया था। तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। और एक वीडियो भी आज तक पर हमने आपको दिखाया था, जो हत्या से कुछ ही मिनट्स पहले का था। पूरी खबर जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए।

0: बकरीद के दिन जिस बेरहमी से सूर्या चौहान की हत्या हुई, चाकू से गोद कर उसकी जान ली गई। अब इस हत्याकांड के एक एक आरोपी का यूपी पुलिस हिसाब कर रही है। सूर्या का कत्ल करने वाले मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। दरअसल गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। एक दिन पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच गाजियाबाद पुलिस को खबर लगी कि मुख्य आरोपी असद अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला था। पता यह भी लगा कि पैसे लेने के बाद उसका प्लान शहर छोड़कर भागने का था। सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस ने असद को दबोचने के लिए जाल बिछाया। कुछ ही समय बाद असद एक दूसरे व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो असद ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी एक्शन में असद को गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
1: असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना कोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है, उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है।
0: सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी मारा जा चुका है। अब परिवार आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहा है।
2: ये भी एक मांग पूरी हुई है, वो ये भी मेरे आगे तस्वीर नहीं आई है। ठीक है, मुझे तस्वीर देख लेंगे तभी मुझे तसल्ली आएगी।
3: पुलिस ने कहा है कि असद को हमने उठाकर उसके एनकाउंटर कर दिया, उसको ढेर कर दिया, तो आप उससे संतुष्ट हैं?
2: पूरी अभी संतुष्ट हैं, पर पूरी संतुष्टि नहीं जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे। और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए।
0: सूर्या चौहान की हत्या की वारदात बेहद सनसनीखेज है। जिस तरह उसका कत्ल किया गया वो बेरहमी की इंतहा है। पुलिस आरोपियों पर एक्शन ले रही है और सूर्या के परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश में लगी है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अभी जो खबर है वो है यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पुलिस से मुठभेड़ में 3 बदमाशों के घायल होने की खबर है। ये मुठभेड़ राजधानी लखनऊ के विकासनगर और कृष्णा नगर इलाके में हुई है। विकासनगर में महिला से छेड़खानी का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। वहीं कृष्णा नगर इलाके में एनकाउंटर में 2 लुटेरे घायल हुए हैं और तीनों को ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो 2 एनकाउंटर हुए लखनऊ में, कृष्णा नगर में और साथ ही विकासनगर में। विकासनगर में महिला से छेड़खानी के आरोपी को गोली लगी है जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो गाजियाबाद से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य पैरा एथलीट को हिरासत में ले लिया है, जिसने पूछताछ में हत्या की बात कबूल करने का दावा किया है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट से जानिए।
0: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साई कुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
1: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे।
5: यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला ले

0: ये गाड़ी निकल रहा है, ये जो ये गाड़ी निकल रहा है अभी, ममता बनर्जी वो गाड़ी में आ रही है। अभिषेक बनर्जी वो एपलो पर आए थे, उसके ऊपर हमला हुआ था आज सोनरपुर में, जो जो पब्लिक ने उनके ऊपर जो जो उसके ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद ममता बनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ममता बनर्जी वो खुद यहाँ पे देखने के लिए आए थे। अभिषेक बनर्जी वो गाड़ी में मौजूद है, अभिषेक बनर्जी वो खुद गाड़ी में मौजूद है। अभी अभी अभी अभी जो जो, जो अपेलो हॉस्पिटल से वो निकल के यहाँ से जा रही है। ममता बनर्जी यहाँ पे मौजूद थे गाड़ी में, शोभन देव चट्टोपाध्याय है, ये ममता बनर्जी वो भी गाड़ी में आ चुकी है। ये गाड़ी लेके अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी वो सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। अभी वो लोग ट्रीटमेंट करा के यहाँ से निकल रहे हैं। ये अपेलो हॉस्पिटल से यहाँ से अपेलो हॉस्पिटल से ये बाहर निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे ममता बनर्जी है गाड़ी में, अभिषेक बनर्जी है गाड़ी में, शोभन देव चट्टोपाध्याय है गाड़ी में। ये गाड़ी अभी निकल रहा है यहाँ से। जैसा कि देखा जा रहा है कि ये सभी लोग यहाँ से निकल रहा है, और ये गाड़ी अभी अपोलो हॉस्पिटल से निकल के जा रहा है। सामने ही गाड़ी है, उस गाड़ी में ही ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और सोनदेव चटर्जी वो सब लोग मौजूद थे।
1: और अब बड़ी और अहम खबर भी आपको बता दें, ममता बनर्जी का एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें अस्पताल के सीईओ पर वो गुस्सा करते हुए नजर आ रही है, मतलब उनकी आवाज है उसमें, वीडियो तो नजर नहीं आ रहा है, और कहा यह जा रहा है कि ये ममता बनर्जी की ही आवाज है। अभिषेक बनर्जी के इलाज के लिए जहां जिस अस्पताल में ले जाया गया था, कोलकाता के बेलेव्यू अस्पताल की ये वीडियो बताई जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि अस्पताल के जो सीईओ हैं प्रदीप टंडन, उन पर नाराज नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। ये ऑडियो सुनिए। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम जुड़ गए। अनुपम, इस ऑडियो में ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो हमारे थोड़ा दर्शकों को बताइए, और वो इतनी नाराज क्यों नजर आ रही हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी कहा गया है कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि उनकी हालत अच्छी नहीं है, उन पर सुनियोजित हमला किया गया है।
2: जी देखिए, वायरल वीडियो है जहां पर ममता बनर्जी को जो वेलव्यू अस्पताल के सीईओ हैं मिस्टर टंडन, उनको संबोधित करते हुए देखा जा रहा है कि वो बोल रही हैं कि आपने जो किया है सही नहीं किया है, हमने आप भूल गए हमने आपके लिए क्या क्या किया, और आपको शर्म आनी चाहिए। कुछ बातें स्पष्ट भी हैं, ठीक से समझ में भी नहीं आ रही हैं, लेकिन अंत में एक बात जरूर सुनते हुए कहा जा रहा है ममता बनर्जी को कि अगर कल को बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं रहती है तब मैं टेक केयर करूंगी, मैं देख लूंगी। तो इस तरह का एक ऑडियो है जो कल जब वेलव्यू अस्पताल में अभिषेक बनर्जी को ले जाया गया था, चूंकि पहले तो अपोलो में ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद अपोलो से निकाला गया, टीएमसी की ओर से आरोप लगाया गया कि वहां पर चिकित्सा नहीं हो पा रही है, नहीं दी जा रही है चिकित्सा, इसके बाद बेलव्यू अस्पताल में लाया गया, बेलव्यू अस्पताल से भी ले जाया गया। तो ऐसे में ये ऑडियो वायरल हुआ है ममता बनर्जी का, जो सीईओ हैं मिस्टर टंडन उनको कहा जा रहा है, खाली ऑडियो है, ममता बनर्जी इसमें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी जब बाद में निकली तो यहां पर भी आरोप लगाया है कि अस्पताल की ओर से नहीं दी जा रही है, दबाव डाला जा रहा है, बीजेपी की ओर से

0: ट्रीटमेंट न हो, इसका इसके लिए दबाव डाला जा रहा है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी को घर में ले जाया गया है और जहां घर में ले जाके वहां पर ही उपचार उनका किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान ये ऑडियो वायरल हुआ है।
1: और क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस ऑडियो के बारे में कुछ कहा गया है?
0: जी देखिए, अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से इस ऑडियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया है,
1: जी
0: चूंकि ये फिलहाल तो वायरल वीडियो है। इसमें जो आवाज सुनी जा सकती है ममता बनर्जी से ही रिजेंबल करती हुई दिखती है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अस्पताल प्राधिकरण थोड़ी देर में या हो सकता है कुछ इस पर रिएक्शन जरूर दे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में घमासान और तेज हो चुका है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के साथ कथित मारपीट और धक्का मुक्की के मामले के बाद अब ममता बनर्जी खुलकर बीजेपी पर हमलावर हो चुकी हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी पर सुनियोजित हमला करवाया गया, उन्हें चोटें आई हैं, शरीर में ब्लड क्लॉट्स तक बन गए हैं। कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंडे भी फेंके गए थे अभिषेक बनर्जी पर। और ममता बनर्जी की तरफ से भी यही कहा गया है कि अगर उनके भतीजे ने हेलमेट न पहना होता तो उसकी जान बचना भी मुश्किल हो जाता। आपको यह भी बता दें कि चुनावी हिंसा में जो लोग घायल हुए थे उन परिवारों से मुलाकात के लिए पहुंचे हुए थे अभिषेक बनर्जी। भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ उग्र हो गई, नारेबाजी शुरू हुई, मारपीट शुरू हुई और भारी सुरक्षा के बीच में अभिषेक बनर्जी को यहां से निकाला गया। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर अब राजनीति गरमा चुकी है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने कहा कि अस्पताल ने भी बिना इलाज किए पहले ही डिस्चार्ज कर दिया। पहले अब अपोलो अस्पताल में जब भर्ती करवाया गया था तभी भी तमाम टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कहना यह था कि वहां भी सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा अभिषेक बनर्जी का।
2: अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था।
3: जब आप उनसे मिले तो उनकी क्या कंडीशन थी, क्योंकि वो अपोलो में थे और अपोलो से आपको निकाल के बेल्व्यू लाना पड़ा उनको यहाँ भी।
2: क्यों उसको उधर में थ्रेट किया और जो डॉक्टर के साथ जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं वो बोलते इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है? Do you think that I don't know anything? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमारा पार्टी डिसाइड करेंगे। बीच ऑफ सिक्योरिटी तो है ही, जानबूझ के पुलिस का एनकरेज नहीं हुआ, ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला।
1: और अब इस घटना को लेकर पूरे राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने विपक्ष लोकतंत्र पर हमला इसे बताते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इतना ही नहीं, केजरीवाल और साथ ही साथ अखिलेश यादव की तरफ से भी इस पूरे मामले में बयान दिया गया है, नाराजगी जाहिर की गई है। इसी के साथ हम यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट क्लासिक सोल म्यूजिक दैट गेट्स यू मूविंग एंड ट्यून इन एक्सक्लूसिव सोल ग्रूव स्टेशन हैज ऑल द राइट मूव्स। हिट प्ले ऑन द ग्रूवियस्ट 70s सिलेक्शन, गेट योर मास्टर्स इन मेलोडी विद मोटाउन क्लासिक्स or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
9: Sokudo.
10: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
9: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
11: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
12: विक्रम एक हिंट तो देते।
13: विक्रम
12: हिंट
11: बड़े आराम से

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
9: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
10: सवाल नीट के लाखों छात्रों के भविष्य का है, सवाल परीक्षा कराने वाली संस्थाओं का है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो एक बार फिर NTA की भूमिका सवालों के घेरे में नजर आई। ऐसे मामलों में जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाएगी ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। UPSC में तो ऐसी समस्या नहीं आई, NTA को उनसे सीखने की जरूरत है।
11: सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला मैटर स्टार्ट होते ही कि अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, बिकॉज अगर कोई अकाउंटेबल ही नहीं होगा तो एट एवरी लेवल ये बार बार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए।
10: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के बाद बड़े लेवल पर सुरक्षा सुधार की बात कोर्ट के सामने रखी। पेपर सेट करने वालों से लेकर मॉडरेटरों, जांचकर्ताओं, अनुवादकों, प्रूफ रीडरों के लिए रैंड रोटेशन नीति लागू की जा रही है। अनुवाद जैसे काम के लिए 85% काम में AI का इस्तेमाल हो रहा है। लीक प्रूफ परीक्षा कराने के लिए आगे 1000 सरकारी सुरक्षित परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। क्लाउड आधारित बुनियादी ढांचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लेकर ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा रहा है। उन्नत साइबर सिक्योरिटी और नेक्स्ट जेन फायरवॉल लगाए जा रहे हैं।
12: NEET UG परीक्षा में पेपर लीक के मामले को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। उधर संसद में संसदीय समिति पूछताछ कर रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई हुई जिसमें सरकार ने फिर वही दोहराया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब सारी चीजें दुरुस्त होंगी, कील कांटे दुरुस्त कर लिए गए हैं और अब जो एग्जाम होंगे वो बिल्कुल फुल प्रूफ होंगे जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश होगी ही नहीं।
10: हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष राधा कृष्णन व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरसिम्हा ने शिक्षा मंत्रालय से NEET UG परीक्षाओं की जाँच प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। से सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरसिम्हा ने शिक्षा मंत्रालय से NEET UG परीक्षाओं की जांच प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
13: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव TV को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
15: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: और जामनगर रोड पर भारी भरकम होर्डिंग गिरा है, इस हादसे की खौफनाक तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। तेज आवाज के साथ भारी भरकम स्ट्रक्चर सड़क पर आ गिरा जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही है कि उस वक्त वहां कोई वाहन या राहगीर नहीं इसकी चपेट में आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद नगर निगम की एस्टेट शाखा ने जांच इस पूरे मामले में शुरू कर दी है। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
15: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
15: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
2: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
3: विक्रम, एक हिंट तो देते।
4: विक्रम!
3: हिंट
5: बड़े आराम से।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
4: डील पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान। सुर अलग हैं, तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है, या फिर महायुद्ध पार्ट टू जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
5: That we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening.
4: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक ना हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
6: And when you do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down and you create a whole bunch of options for America. The president of what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time. 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, "Well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me." But it's not me, it's you guys. It's what you're ready to do.
4: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि हॉर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही। ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि हॉर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके अलावा उसे हॉर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है ताकि हॉर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी यश खटीक पर गोली मारने के आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। चिराग की शिकायत पर खटीक टूर्नामेंट से हो गया था बाहर। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले से कोलकाता से लेकर दिल्ली तक उबाल, सोमवार को सड़क पर उतरेंगी ममता बनर्जी, राहुल गांधी अखिलेश केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। दिल्ली के मेहरौली इलाके में गिरी 5 मंजिला इमारत, मलबे से 7 लोगों को बाहर निकाला गया, कई लोगों के दबे होने की आशंका, मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएसजी की चैंपियंस लीग में जीत के जश्न पर हिंसा, आगजनी, पथराव, कई लोग जख्मी हुए, पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। वक्त है नॉनस्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। पेरिस की एक खास तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां जश्न और उपद्रव आपको एक साथ नजर आएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएसजी की चैंपियंस लीग जीत के बाद जश्न के बीच बवाल हुआ है। हजारों प्रशंसक सड़कों पर उतर आए थे, कई जगहों पर आगजनी की है, पुलिस के साथ झड़पों की भी खबरें हैं। तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। 400 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उधर पीएसजी ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग अपने नाम किया है। तो इस जीत के बाद कैसे जश्न मनाया गया और कैसे आगजनी की गई है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी पुलिस को छोड़ने पड़े हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई जगहों पर आगजनी की खबरें हैं, अलग अलग जगहों पर जबरदस्त तरीके से हिंसा पेरिस की सड़कों पर देखने को मिली है। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं। 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि जबरदस्त तरीके से नारेबाजी के साथ उपद्रव इन तमाम लोगों की तरफ से शुरू कर दिया गया था पेरिस की सड़कों पर। आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम किया गया है पीएसजी की तरफ से। और उसके बाद किस तरह का हंगामा सड़कों पर देखने को मिला पेरिस में, जरा ये देखिए। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चैंपियंस लीग का फाइनल जश्न देखिए जरा, उसके बाद आगजनी की तस्वीरें देखिए, और पुलिस किस तरीके से इन तमाम जगहों पर पहुंचकर आग बुझाने और लोगों को शांत करने में लगी हुई नजर आई। इसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। 400 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के साथ झड़प और आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हजारों प्रशंसक सड़कों पर उतर आए थे। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएसजी की चैंपियंस लीग जीत के बाद जश्न के बीच बवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ आगजनी की तस्वीरें हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि हालात अभी काबू में हैं, लेकिन हजारों की संख्या में प्रशंसक सड़कों पर उतर आए थे। पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई है, भिड़ंत हुई है, कई जगहों पर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि पीएसजी ने फाइनल्स में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में हराया है 4-3 से, और दूसरी बार चैंपियंस लीग अपने नाम किया है। और इस जश्न के बाद, इस जीत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। देखिए जरा किस तरीके से जश्न मनाया गया है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थिति को काबू में करने के लिए काफी मशक्कत प्रशासन को यहां करनी पड़ी है। कई जगहों पर वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। अलग अलग लैंप पोस्ट पर लोग चढ़े हुए नजर आए और कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। अब तीन तस्वीरें देखिए जरा, एक तरफ जीत का जश्न, किस तरीके से जश्न मनाया गया, खुशी से सराबोर नजर आए तमाम प्रशंसक, दूसरी तरफ कैसे सड़कों पर उतर आए और उसके बाद आगजनी की गई, तीसरी तस्वीर पुलिस ने किस तरीके से तमाम हालातों को काबू में किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई वाहनों को आके वाले कर दिया गया था। 400 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात की तस्वीरें हैं। आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में पीएसजी की तरफ से हराया गया था और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें नॉनस्टॉप 100 में।

0: गाजियाबाद के सूर्य चौहान हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी खोड़ा इलाके में आएगा, पैसे लेने और शहर से भागने की फिराक में है, उसी दौरान उसे रोकने की कोशिश हुई। खोड़ा इलाके में घेरेबंदी के बाद पुलिस ने फरार आरोपी असद को दबोचा। आरोपी बाइक से अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचा। पुलिस का दावा है कि रोकने पर आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने असद को मार गिराया। मौके पर देसी पिस्टल और वारदात की इस्तेमाल बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, दबाव में अस्पताल ने अभिषेक बनर्जी को डिस्चार्ज कर दिया था। आज से टीएमसी का प्रदर्शन। अभिषेक की सेहत पर सियासत तेज हुई, ममता बनर्जी बोली बीजेपी ने अस्पताल को धमकाया। आईसीयू से घर पहुंचे अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने कहा कुछ हुआ तो अस्पताल ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। लोकतंत्र की हत्या बताकर ममता बनर्जी का हमला, सोमवार को ममता बनर्जी का मोर्चा। ममता ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताया, कहा हेलमेट नहीं होता तो अभिषेक की मौके पर मौत हो सकती थी। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया, भीड़ ने अंडे फेंके, शर्ट फाड़ दी, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, वो मुझे मारना चाहते थे, बोले घटना के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। अभिषेक बनर्जी ने लगाया जानलेवा हमले का आरोप, क्लिनिक का दावा, मेडिकल जांच में चोटों के निशान नहीं है। सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर विपक्ष आक्रामक है, राहुल गांधी बोले हमला लोकतंत्र पर हमला है जो हम सबकी साझी विरासत। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी हिंसा के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अभिषेक बनर्जी के घर अचानक से पहुंची सीआईडी, विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में थमाया गया कानूनी नोटिस। डीके शिव कुमार 3 जून को लेंगे कर्नाटक के सीएम पद की शपथ, राज्यपाल ने भेजा है निमंत्रण। सिद्धरमैया ने डीके शिव कुमार का नाम बढ़ाया है आगे, गुरुवार को कर्नाटक सीएम पद से सिद्धरमैया ने इस्तीफा दे दिया था। लखनऊ में बोले योगी आदित्यनाथ, अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म, लेकिन कोई समाज और देश के लिए बने खतरा तो हिंसा अपनानी ही पड़ती है। आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 134वां एपिसोड, पश्चिम एशिया संकट, ऊर्जा बचत, पद्म पुरस्कार पर रख सकते हैं अपनी बात। सीयूईटी यूजी 2026 की तकनीकी गड़बड़ी से परीक्षा शुरू होने में देरी हुई, 3,765 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा छोड़कर चले गए थे अभ्यर्थी, एनटीए ने पुनर्परीक्षा कराने का फैसला किया। एनटीए का दावा 95% अभ्यर्थियों ने परीक्षा पूरी की थी, पर प्रभावित केंद्रों पर परीक्षा समय में बदलाव किया गया था। छात्रों ने केंद्र पर सूचना के अभाव के आरोप लगाए हैं, पेरेंट्स को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। सीयूईटी यूजी मामले में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बीजेपी का भ्रष्टाचार कई रूपों में दिखता है, आज के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें बीजेपी नहीं चाहिए। नीट पेपर लीक पर सियासी घमासान तेज हुआ, पवन खेड़ा का सवाल, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन। अरविंद केजरीवाल का तंज, क्या वायुसेना के विमान पेपर लीक को रोक लेंगे, शिक्षा व्यवस्था माफिया के चंगुल में है। संदीप दीक्षित ने शिक्षा मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाया, कहा सरकार का शिक्षा मंत्री पर भरोसा कम हुआ है। मनीष सिसोदिया का आरोप, एनडीए परीक्षा कराने का में नाकाम रही, सीयूईटी का मजाक बना दिया गया। संजय झा ने परीक्षा रद्द करने के फैसले का जिक्र किया, कहा सरकार ने मामला छुपाने की कोशिश नहीं की, सरकार समाधान निकालेगी। भ्रष्टाचार पर बिहार सरकार की कार्रवाई, आईएएस योगेश सागर, अभिलाषा शर्मा सस्पेंड किए गए, टेंडर माफिया ऋषु श्री गिरफ्तार। उधर 24 परगना में टीएमसी नेताओं की जमीन से हथियार बरामद, सुजीत शाह और अजीत शाह को गिरफ्तार किया गया। मेघालय की उमरोई में भारतीय सेना के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन, 12 मित्र देशों की सेनाओं के जवान शामिल। पुणे के खगड़वासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 150वें फोर्स की पासिंग आउट परेड, सेना के तीनों ही अंगों को मिले नए ऑफिसर्स। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से खौफ, चुरू के आसमान में रेत का बवंडर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी धूल भरी आंधी, दिन में ही छा गया था अंधेरा। दिल्ली में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, शाम में बारिश से गिर गया था तापमान, अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट, कड़ाके की ठंड। मनाली के रोहतांग में अभी भी बर्फ की कई फीट मोटी चादर है, सैलानियों का भारी जमावड़ा, लग रहा है लंबा जाम। तेज बारिश के साथ ही दिल्ली में चली धूल भरी आंधी, कनॉट प्लेस इलाके में भी झमाझम बारिश। चंडीगढ़ में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई। चंडीगढ़ में बारिश से मौसम सुहाना हुआ है, मशहूर सुखना लेक से तस्वीरें सामने आई। हरियाणा के अंबाला में झमाझम बारिश से मौसम खुशगवार हुआ, भीषण गर्मी से राहत मिली। तिरुवनंतपुरम के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, सड़कों पर लबालब पानी, बारिश से बचने के लिए छाता और रेनकोट का सहारा लेते हुए नजर आए लोग। यूपी के हमीरपुर में 6 मजदूरों की मौत के मामले में FIR दर्ज, पुल निर्माण कंपनी मालिक और सुपरवाइजर फंसे। गाजियाबाद में पैरा खिलाड़ी को मारी गई थी गोली, साई उपवन में शव मिलने के बाद हड़कंप। धनबाद के टुंडी में पुलिस के साथ झड़प हुई, प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद ग्रामीणों का बवाल, हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। पुणे में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 17 पहुंचा, CID जांच के आदेश, पुलिस और आबकारी विभाग के 22 कर्मचारी सस्पेंड। दिल्ली के मैरोली इलाके में सईदुल्लाह जाब में एक इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका। लखनऊ में डबल एनकाउंटर, विकास नगर में छेड़खानी का आरोपी, कृष्णा नगर में 2 लुटेरे गोली लगने से घायल हुए। महिला से मारपीट करने वाले आरोपी और 2 शातिर लुटेरे मुठभेड़ में घायल हुए, लखनऊ पुलिस का एक साथ 2 जगहों पर एक्शन। नवसारी में नेशनल हाईवे से कच्चे तेल की चोरी के बड़े घोटाले का भंडाफोड़, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सुल्तानपुर में सपा नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष और उनके परिजनों पर जमीन कब्जे का आरोप, विरोध करने पर सपा नेता की मौजूदगी में मारपीट की गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 साल के अरबाज को चाकुओं से गोदकर मार डाला गया, 3 नाबालिग हिरासत में लिए गए। गाजियाबाद में युवक की हत्या में 3 आरोपी गिरफ्तार, चाकुओं के हमले में CCTV फुटेज में भी साफ तस्वीरें नजर आई। यूपी के हापुड़ में युवक पर चाकुओं से जानलेवा हमला बोला गया, CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। झांसी में दीवार गिराने के बाद खूनी संघर्ष हुआ, वायरल CCTV फुटेज, लाठी डंडों से युवक की पिटाई। गुजरात के जामनगर में टला बड़ा हादसा, विज्ञापन टावर गिरा, CCTV वीडियो भी सामने आया है। वडोदरा में दोस्त ने कैटरिंग व्यवसायी दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर डाली, आरोपी गिरफ्तार किया गया। बिहार के बगहा में पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या का खुलासा किया, 27 मई को युवक का शव मिला था। दानापुर पुणे स्पेशल ट्रेन के महिला बोगी में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, युवक की नहीं हो पाई है शिनाख्त। अयोध्या में पुलिस की गिरफ्त में आरोपी फरार हुआ, हत्या की कोशिश में नामजद था यह आरोपी। कुल्लू के कसोल बाजार में सैलानियों की दबंगई, पार्किंग विवाद में स्थानीय युवक पर गोली चलाई, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। उदयपुर में 2 स्थानों पर बड़ी कार्रवाई, मिलावट के संदेह में 18,000 लीटर घी जब्त। दिल्ली से झारखंड शव ले जा रही एम्बुलेंस का कौशाम्बी में ट्रक से टक्कर हुई, 6 लोग घायल हुए, हादसा CCTV कैमरे में कैद हुआ। जलंधर के RTI एक्टिविस्ट सरमनजीत की गोली मारकर हत्या की गई, हत्या की वजह का पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। बेंगलुरु के एक स्कूल में भीषण आग की घटना सामने आई, छुट्टी का दिन होने की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के हापुड़ में घर में भीषण आग लगी, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरुग्राम के विश्व शांति केंद्र में सनातन धर्म की जय हो गीत का भव्य लोकार्पण, धर्माचार्यों ने विश्व शांति में इसकी भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी, विकसित गोवा और विकसित भारत 2047 का जताया लक्ष्य। दिल्ली के करावल नगर में विकास कार्यों का निरीक्षण, कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के साथ पार्षद बृजेश सिंह ने जायजा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक पहुंचेंगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची, दिल्ली रवाना हुए हैं 2000 कार्टन्स। आज IPL का होगा फाइनल मुकाबला, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगे RCB और गुजरात टाइटंस। लगातार दूसरी बार खिताबी जीत के लिए उतरेगी बेंगलुरु की टीम, पहले प्लेऑफ में गुजरात को 92 रनों से मात दी थी। ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा सकते हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल, फिलहाल 722 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी से 54 रन पीछे। बबल कैप की दौड़ में गुजरात के कासी गोरवाड़ा 28 विकेट के साथ सबसे आगे हैं, 26 विकेट झटक कर दूसरे नंबर पर बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वैभव सूर्यवंशी, मंत्री इरफान अंसारी ने ऐलान किया, देश के युवाओं के लिए बताया उन्हें प्रेरणा स्रोत। फिल्म कारागिरन का पोस्टर जारी किया गया, सलमान खान लॉरेंस विवाद पर बनी है ये फिल्म, 20 जून को आएगा टीजर। रणबीर कपूर की रामायण के एक्शन सीन होंगे इंटरनेशनल लेवल के। एवेंजर्स फेम टेरी नोट्री इस प्रोजेक्ट से जुड़े। फिल्म ये जवानी है दीवानी ने पूरे कर लिए 13 साल। फैंस के बीच अभी भी फिल्म का सॉन्ग बलम पिचकारी का क्रेज बरकरार है। 10 जुलाई को मुंबई के शंखानो हॉल में होगा द ड्रीम गर्ल डायमंड जुबली कॉन्सर्ट। लाइव कॉन्सर्ट में गाना गाएंगी हेमा मालिनी। वेब सीरीज ब्राउन का ट्रेलर रिलीज किया गया। अब नए अवतार में नजर आएंगी करिश्मा कपूर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर ईरान का बड़ा बयान। अमेरिकी नाकेबंदी हटने के बाद हॉर्मुज का खोलने का फैसला करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट के भविष्य को लेकर ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों ने अहम बातचीत की है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा की गारंटी, क्षेत्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रशासन पर बात बनी। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान को बड़ा आर्थिक संकट। अमेरिका ने जब्त किए $1 अरब के क्रिप्टो फंड्स। अमेरिका के ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी अभियान के तहत की गई है कार्रवाई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट सिंह ने सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग के अलग जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो से मुलाकात की है। दोनों ही नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सैन्य खर्च बढ़ाने पर चर्चा। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की। लेबनान के राष्ट्रपति युद्ध विराम और अमेरिका के दखल की मांग कर चुके हैं। कहा तनाव कम करने के लिए युद्ध विराम पहली प्राथमिकता। शांग्रीला डायलॉग में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के लिए एंटी न्यूक्लियर क्षमता बढ़ाएगा दक्षिण कोरिया। सिंगापुर में ऑकस देशों का बड़ा ऐलान। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर बनाएंगे हाईटेक अंडरवाटर ड्रोन्स। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा समुद्र में बढ़ेगी हमारी ताकत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मेडिकल जांच में पूरी तरह से स्वस्थ घोषित किए गए। डॉक्टर्स ने कहा ट्रंप की सेहत बिल्कुल ठीक है लेकिन उन्हें वजन कम करना चाहिए। उनके पैर में सूजन और हाथ में चोट के निशान हैं लेकिन ठीक हैं। पूर्वी अफगानिस्तान में दर्दनाक सड़क हादसा। पाकिस्तान से अफगानिस्तान लौट रहे शरणार्थियों का ट्रक पलट गया था जिससे 22 लोगों की मौत हुई, 36 लोग घायल हुए। ऑस्ट्रिया और इटली को जोड़ने वाला ब्रीनर अल्पाइन पास बंद किया गया। रास्ता बंद होने की वजह से भारी ट्रैफिक, ट्रकों और पर्यटकों के शोर शराबे से परेशान स्थानीय लोगों का प्रदर्शन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सूर्य के रत्न के बारे में जिसका नाम है माणिक्य। सूर्य का ये रत्न कैसे काम करता है, किन मामलों में फायदा पहुंचाता है और इसको पहनने का तरीका क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 2:14 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र शाम के 4:12 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सूर्य के रत्न के बारे में जिसका नाम है माणिक्य और अंग्रेजी में कहते हैं रूबी, बांग्ला में कहते हैं चुन्नी। तो सूर्य के रत्न की विशेषता क्या है? सूर्य अग्नि प्रधान ग्रह है, फायर एलिमेंट का प्लेनेट है और माणिक्य सूर्य का प्रमुख रत्न है। ये मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कंपाउंड है। माणिक्य अत्यधिक शक्तिशाली होता है और जब आप माणिक्य पहनते हैं तो ये आपकी आंखों पर, हड्डियों पर, हृदय पर और नाम और यश पर सीधा असर डालता है। वैसे तो माणिक्य कई रंगों का होता है, लेकिन ज्योतिष में जिस माणिक्य का हम प्रयोग करते हैं वो गुलाबी रंग का माणिक्य है और वो सर्वोत्तम होता है। माणिक्य अगर पहना जाए तो इसका प्रभाव तुरंत आने लगता है। ये तुरंत प्रभावशाली होने वाला रत्न है, इसका इम्पैक्ट जल्दी आता है। माणिक्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में बड़ा निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें
बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि,

परिवर्तन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपने माणिक्य पहना तो माणिक्य पहनने से अगर लाभ होगा तो किस तरह का लाभ होगा और अगर नुकसान होगा तो किस तरह का नुकसान होगा। माणिक्य पहनने पर अगर लाभ पहुंचाए तो चेहरा चमकने लगता है और आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। राजकीय कार्यों में, गवर्नमेंट से संबंधित मामलों में और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में विशेष लाभ होता है। माणिक्य अगर फायदा पहुंचाए तो पिता के साथ और परिवार के साथ रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। अगर माणिक्य नुकसान करे तो लगातार सर में दर्द और सर में भारीपन होने लगता है। हड्डियों में और आंखों में समस्या आने लगती है, हड्डियों और आंखों में दिक्कत होती है। अगर माणिक्य नुकसान करे तो आप अपयश के शिकार हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। माणिक्य फायदा करेगा तो स्वास्थ्य और मन दोनों मजबूत होगा और माणिक्य अगर नुकसान करेगा तो स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। माणिक्य पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

सी व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम आज टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न प्रीति वर्मा ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। 17 फरवरी 1990 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 7:55। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रीति कह रही हैं कि 1 साल से मैं अपने मायके में रह रही हूं और वहीं नौकरी भी कर रही हूं। मेरा विवाह नहीं चल पा रहा है, दिक्कतें बहुत हो रही हैं। तो क्या मेरी ये शादी चल पाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? प्रीति, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपने अपने पतिदेव की और अपनी कुंडली भेजी है उसके हिसाब से शादी चल पाने की संभावना नहीं लगती है। आपसी सुलह समझौते से आपका विवाह अगले साल के शुरुआत तक ब्रेक होगा और दूसरी शादी आप करेंगी 2027 के आखिरी तक, और आगे विवाह में या वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है।

को एक ओपल पहने, रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, जीवन में सुधार होगा। अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को माणिक्य धारण करना चाहिए और इन लोगों को माणिक्य से कैसे फायदा होगा। देखिए, वैसे तो कुंडली दिखा लीजिए और कुंडली दिखा करके जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से अगर माणिक्य धारण करें तो सबसे बढ़िया होगा। मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न में माणिक्य धारण करना सबसे बेहतर होता है। इनका स्वास्थ्य, इनका मन और इनका करियर बेहतर हो जाता है। कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न के लोग भी सलाह लेकर के माणिक्य पहन सकते हैं, हालांकि इनको माणिक्य से एवरेज फायदा होगा। वृषभ लग्न में विशेष दशाओं में माणिक्य पहना जा सकता है और वृष लग्न वालों को माणिक्य पहनने से संपत्ति का और पद प्रतिष्ठा का लाभ होता है। अगर कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखा करके जरूरत के अनुसार माणिक्य पहन सकते हैं, लेकिन पहले माणिक्य की जांच कर लीजिए कि माणिक्य में कोई काला धब्बा ना हो और माणिक्य टूटा फूटा ना हो। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, सांवले रंग के लोगों को माणिक्य पहनने से आम तौर पर फायदा होता है, ऐसा देखा गया है। माणिक्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

किसी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि किन लोगों को माणिक्य सामान्यतः नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को माणिक्य पहनने से नुकसान हो सकता है। कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ लग्न में, लग्न की बात कर रहा हूं मैं, कन्या लग्न, मकर लग्न, मिथुन लग्न, तुला लग्न।

होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

बन रहे हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सूर्य का रत्न तांबे या सोने दोनों में पहना जाता है, लेकिन सूर्य का रत्न किस धातु में पहनना ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, सोना जो है इसको भी कहीं कहीं पर सूर्य की धातु मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सूर्य की धातु है तांबा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सोने में या तांबे में दोनों में माणिक्य बनवा के पहन सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप तांबे की अंगूठी में माणिक्य पहने। तांबे की अंगूठी में माणिक्य पहनने के फायदे ज्यादा होते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर 7, मानसिक तनाव दूर होगा। नंबर 8, करियर में लाभ के योग हैं। और नंबर 9, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न जलज ने हमें लिखा है और जलज

हमें मेल लिखते हैं बड़ौदा गुजरात से। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1994। जन्म का समय सुबह के 10 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ। जलज कह रहे हैं कि मैं अभी गुजरात में पोस्टेड हूँ, बैंकिंग की नौकरी करता हूँ। मैं नौकरी बदल करके प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता हूँ। क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? जलज, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी बदलने की मैं सलाह नहीं दूंगा। अगले साल आपका प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों होगा। आप अपने घर के निकटवर्ती इलाके में पहुंच जाएंगे और इस नौकरी में आपकी तरक्की बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो बेवजह नौकरी ना बदलें, वही आपके लिए बेहतर होगा। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मन की चिंताओं को, तनाव को दूर करने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाकर तब जाइएगा, काम आपका बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।

वृश्चिक राशि वालों के लिए हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। मकर राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा मेष राशि के लोगों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, दुर्घटना हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो इस समय शुभ कार्यों की शुरुआत ना करें। आज जल और गुड़ का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: और इस वक्त बड़ी और अहम खबर मैरोली से, जहां पर एक 5 मंजिला इमारत ढह गई है। बिल्डिंग के अंदर कई लोगों के फंसने की आशंका है। अब तक 9 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। एक शख्स की मौत की भी खबर है। रात में बिल्डिंग की धराशायी हुई थी और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दमकल विभाग, डीडीएमए और साथ ही एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आसपास के लोगों ने तुरंत ही प्रशासन को इत्तला करने के बाद यहां मदद करनी शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। 5 मंजिला इमारत थी ये जो गिरी है। कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और एक शख्स के जान जाने की खबर है और कई लोग इसमें दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ गए। आशुतोष, क्या जानकारी मिल पाई है, कितने लोग और दबे हो सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है?
1: दरअसल इस संख्या के बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर आप ये समझें कि ये पूरा एजुकेशन हब है, मेहरौली साकेत का जो इलाका है ये एक एजुकेशन हब है। हर इमारतें यहाँ 4 से 5 मंजिला ऊंची हैं, और अगर मैं आपको मलबे की तरफ की तस्वीरें ले जाऊं तो आप देखेंगे कि 4 से 5 मंजिला ऊंची इमारत है, तो इसमें मेस भी चलता था। अभी बताया गया कि दरअसल कई लोगों के घर भी थे और इसमें से कुछ स्ट्रक्चर जो बचा खुचा है, ये अंदाजा लग रहा है कि हाँ कई सारे कमरे ऐसे हैं जिसमें लग रहा है कि ये रिहायशी इलाका भी था। इसी के साथ साथ ऊपर की मंजिलों पर भी निर्माण चल रहा था और नीचे मेस के साथ साथ दरअसल कोचिंग सेंटर भी था। तो ऐसे में पूरी संभावना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब उस समय हादसा हुआ, जब जो मेस का मालिक या कई लोगों को फोन करने की कोशिश की तो फोन लगा नहीं है। तो अब इसीलिए दरअसल प्राथमिकता क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि जब मलबा गिरता है या इस तरह के कोलैप्स के हादसे होते हैं तो शुरुआती 24 घंटे जो है जिसको गोल्डन आवर कहा जाता है, तो अभी उस गोल्डन आवर में कोशिश ये है कि अगर कोई संभावित व्यक्ति है जिसकी सांस चल रही हो उसको यहां से निकाल दिया जाए। और इसीलिए तमाम सारी जो एजेंसियां हैं, मेरे पीछे आप देखिए लंबा कल से ही दरअसल एनडीआरएफ को यहां पर लगाया गया था, जो अपने पूरे तामझाम के साथ जो स्निफर डॉग्स हैं उनको लाया गया है, कटर मशीनें, हैवी लिफ्टिंग मशीनें, अर्थ मूविंग मशीनें, सब कुछ लाई गई हैं ताकि मलबा निकाला जा सके। अब तक 8 लोग इसमें जो है जो निकाले गए हैं वो घायल हैं, तो उनको ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। 26 साल के एक लड़के की मौत हुई है, लेकिन हाँ ये संभावना जरूर, अभी जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो लगातार मैनफोर्स यहाँ पर मैनपावर बढ़ाया भी गया है, हालांकि कुछ लोग ये भी इकट्ठा हुए जिनको जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। और जाहिर है कि अभी जानकारी से ज्यादा जो दबाव है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए। जो लोग जमा है वो चाहते हैं अपनों के बारे में जानकारी, जिनका ना फोन लग रहा है, जिनके बारे में वो पता नहीं कर पा रहे, तो उनके बीच भी थोड़ी नाराजगी दिख रही है, तो चाहते हैं कम से कम कोई स्पष्ट जवाब मिले, किसी तरह की जानकारी दी जाए। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो है कि 24 घंटा बीतने के पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में अधिकतम कोशिश ये हो कि चाहे स्निफर डॉग्स हों या फिर जो AI रोबोट्स हों, स्नेकिंग रोबोट्स, इन सब का इस्तेमाल करके अंदर भेजा जाए, और अगर किसी तरह की जानकारी मिले, कहीं पर हार्ट बीट अगर मिल जाती है तो वो कोशिश करें उन्हें जिंदा निकाल देने के लिए। और इसीलिए 14 घंटे बीतने के बाद अब जो 10 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और ये राहत बचाव कार्य जो है अभी पूरी रफ्तार पर यहां पर चल रहा है। शशि
0: आशुतोष बने रहे हमारे साथ, साथ ही अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा दें। देखिए 5 मंजिला इमारत थी जो भरभराकर गिरी है और एक शख्स के जान चली गई है जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल बताई जा रही है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। आज से 9 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है, लोकल प्रशासन मौके पर मौजूद है। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। आपको यह भी बता दें कि लगातार कई घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन मलबे का ढेर सब कुछ बयां करने के लिए काफी, आशुतोष वाकई में बहुत मुश्किलें आती हैं इस तरह की हालातों में। खास तौर से ये देखिए किस तरीके से क्रेन की मदद से लगातार मलबे को हटाया जा रहा है। स्निफर डॉग्स यहां पर मौजूद हैं जिससे कि कोई भी जिंदगी अगर इस मलबे में फंसी हुई है तो वहां तक पहुंचा जा सके। 5 मंजिला इमारत थी, हालांकि साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोग इस इमारत में उस वक्त थे जिस वक्त ये धराशायी हुई। तो दमकल विभाग, डीडीएमए, एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं रात से ही, और 5 मंजिला इमारत है जो धराशायी हुई है। 9 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और कई और लोगों के इसमें फंसे होने की आशंका है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। अब तक 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि आगे भी जांच जारी है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आई थी, जिस तरीके से मारपीट की गई थी, कपड़े फाड़ दिए गए थे, और जबरदस्त तरीके से पथराव यहां पर किया गया था, नारेबाजी की गई थी उस पर। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम लोगों की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि किस तरीके से यहां अलग अलग जगहों पर पश्चिम बंगाल के भीतर गुंडागर्दी जारी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। अब इस पूरे मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वो तस्वीरें हैं जब चुनाव पीड़ितों से मिलने के लिए, हिंसा जो हुई थी उनसे मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे और उसी दौरान वहां जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया था। उनके खिलाफ नारेबाजी, पत्थरबाजी, अंडे फेंके गए थे, शर्ट फाड़ दी गई थी और उसके बाद जबरदस्त सियासी हंगामा देखने को मिला था। आरोप तो ये भी लगाया गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया अपोलो में। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वहां ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, दूसरे अस्पताल ले जाया गया। वहां भी ममता बनर्जी नाराजगी दिखाती हुई नजर आई कि ठीक से इलाज बिना किए ही अभिषेक बनर्जी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 6 तस्वीरें काफी कुछ बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरह की सरगर्मियां और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये अभिषेक बनर्जी के साथ हाथापाई या हंगामे की पहली तस्वीर नहीं थी। इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के पीछे जनता इसी तरह से दौड़ती हुई, हंगामा करती हुई नजर आई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस जुड़ गए। तापस, क्या जानकारी मिल रही है? कहा जा रहा है 5 की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ और पता चल पाया है? क्योंकि टीएमसी का साफ साफ कहना है कि ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सुनियोजित साजिश के तहत ये किया गया था। तापस, आप सुन पा रहे हैं?
2: जी देखिए, जिस तरीके से कल अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया था उसमें कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था। थोड़ी देर पहले पुलिस की तरफ से किया गया कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन 5 लोगों से पूछताछ किया जा रहा है इस समय कि क्या वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या थे, या किसी कल जो घटना हुई थी उसके पीछे कोई प्लानिंग के तहत इसे अंजाम दिया गया था या नहीं। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि इनमें से कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन सामने नहीं आया है। अब कल रात भर रेड चला है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उन्हें भी ढूंढा जा रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तापस इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अभिषेक पर हमले के बाद सियासत गर्मा चुकी है। बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि वो हीरो बनने के लिए गए थे। तो दिलीप घोष ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी वहां पर हीरो बनने के लिए गए थे।
3: तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है, देखिए फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इसी को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा? तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी, आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के 2-2 MLA हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी, जनता ने सब देखा है। तो जनता की जो
0: बिना ब्रेक के खबरें लगातार जारी हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा लेते हैं हेडलाइंस।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर 5 गिरफ्तार। राहुल गांधी, अखिलेश केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष बोले, क्यों गए थे हीरो बनने। गाजियाबाद सूर्य हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर। जवाबी फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने की खबर। बकरीद के दिन घेर कर सूर्या का किया गया था कत्ल। दिल्ली के मैरोली में गिरी 5 मंजिला इमारत, एक की मौत हुई। मलबे से 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब भी जारी है राहत और बचाव का काम। नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने संभाला कार्यभार। साउथ ब्लॉक के लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रक्षा मामलों के विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएसजी की चैंपियंस लीग में जीत के जश्न पर हिंसा और आगजनी, पथराव, कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया।

पीएसजी बना यूरोप का बादशाह, पेनल्टी शूटआउट में आर्सेनल को हराकर जीती चैंपियंस लीग, 4-3 से हराकर लगातार दुनिया चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया। हजारों फैंस ने मनाया खिताबी जश्न, पूरे स्टेडियम में जलाए गए फ्लेयर्स।

हजारों प्रशंसक सड़कों पर उतर आए थे, कई जगहों पर आगजनी हुई, पुलिस के साथ झड़पों की भी खबरें सामने आई, 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज आईपीएल का होगा फाइनल मुकाबला, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगे आरसीबी और गुजरात टाइटंस। लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए उतरेगी बेंगलुरु की टीम, पहले प्लेऑफ में गुजरात को 92 रन से दे चुकी है मात। ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा सकते हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल, फिलहाल 722 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी से 54 रन पीछे। पर्पल कैप की दौड़ में गुजरात के कासीगो रबाडा 28 विकेट के साथ सबसे आगे हैं, 26 विकेट झटक कर दूसरे नंबर पर बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वैभव सूर्यवंशी, मंत्री इरफान अंसारी ने किया ऐलान, देश के युवाओं के लिए बताया उन्हें प्रेरणा स्रोत। गाजियाबाद के सूर्य चौहान हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी खोड़ा इलाके में आएगा, पैसे लेने और शहर से भागने की फिराक में था। खोड़ा इलाके में घेरेबंदी के बाद पुलिस ने फरार आरोपी असद को दबोचा। आरोपी बाइक से अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचा, पुलिस का दावा, रोकने पर आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने असद कुमार गिराया, मौके से देसी पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल बाइक को बरामद किया गया। लखनऊ में डबल एनकाउंटर, विकास नगर में छेड़खानी का आरोपी, कृष्णा नगर में दो लुटेरी गोली लगने से घायल हुए। महिला से मारपीट करने वाले आरोपी और दो शातिर लुटेरों को पुलिस मुठभेड़ में घायल किया गया, लखनऊ पुलिस का एक साथ दो जगहों पर एक्शन। नवसारी में नेशनल हाईवे से कच्चे तेल की चोरी के बड़े घोटाले का भंडाफोड़, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता की पूर्व पालिका अध्यक्ष और उनके परिजनों पर जमीन कब्जाने के आरोप, विरोध करने पर सपा नेता की मौजूदगी में मारपीट की खबर। झांसी पुलिस का बड़ा खुलासा, लाखों के जेवरात और नकदी सहित 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया, अवैध तमंचा भी बरामद। दिल्ली के मैरौली में 5 मंजिला इमारत गिरी, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। घटनास्थल की तस्वीरें सामने आई, मलबे में फंसे 9 लोगों को बाहर निकाला गया। गुजरात के आणंद में निर्माणाधीन पुल ढाल, कोई हताहत होने की खबर नहीं। रामनगर में गिरे होर्डिंग मामले में जांच शुरू कर दी गई, जांच के दौरान होर्डिंग के स्ट्रक्चर, निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की समीक्षा होगी। सुल्तानपुर में बेटे ने अपने पिता की हत्या कर डाली, जमीन के लिए पिता को मौत के घाट उतारा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के कई इलाकों में फिर से हो सकती है बारिश, बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कल से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू होने के संकेत हैं, अगले हफ्ते मध्य तक 40 डिग्री सेल्सियस था, उससे अधिक पहुंच सकता है पारा। दिल्ली में बारिश के बाद भी हवा हुई साफ, 5 साल में पहली बार मई में संतोषजनक हुआ है AQI। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद दिल्ली में AQI में सुधार हुआ है, मई के महीने में राजधानी में औसत AQI 161 रहा। दिल्ली में शनिवार को दर्ज किया गया था मई में 3 साल में सबसे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगले कुछ दिनों तक हवा की स्थिति मध्यम श्रेणी में रहने के आसार। मई के आखिर दिन भी दिल्ली NCR में मौसम ठंडा बने रहने के आसार, गर्मी का असर काफी हद तक कम रहेगा। दिल्ली NCR में आज 36 से 38 डिग्री के आसपास रह सकता है अधिकतम तापमान, लोगों को भीषण गर्मी और लू से मिल सकती है राहत। दिल्ली में न्यूनतम तापमान आज 22 से 24 डिग्री तक रहने के आसार है, मौसम बना रहेगा सुहावना। आज भी दिल्ली NCR में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी रहने की संभावना, कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने के आसार। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज भी जारी किया येलो अलर्ट, हो सकती है हल्की बारिश और 60 किलोमीटर तक रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। मुंबई के कई इलाकों में आज सुबह से रिमझिम बारिश, मौसम सुहाना। मुंबई में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने के आसार है, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहने के अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक महाराष्ट्र में हो सकती है हल्की बारिश, फिलहाल कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज के साथ बौछारों की संभावना। चंडीगढ़ में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तापमान में भी आई है गिरावट। हरियाणा के अम्बाला में झमाझम बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, दबाव में अस्पताल ने अभिषेक बनर्जी को डिस्चार्ज किया, से TMC का प्रदर्शन। अभिषेक की सेहत पर सियासत तेज हुई, ममता बनर्जी बोली बीजेपी ने अस्पताल को धमकाया था। ICU से घर पहुंची अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने कहा कुछ हुआ तो इसके लिए अस्पताल जिम्मेदार होंगे। लोकतंत्र की हत्या को बताकर ममता का हमला, सोमवार को ममता बनर्जी का मोर्चा।
ममता ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताया, कहा हेलमेट अगर नहीं होता तो अभिषेक की मौके पर मौत हो सकती थी। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया था, भीड़ ने अंडे फेंके थे, शर्ट फाड़ दी थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे थे। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, वो मुझे मारना चाहते थे, बोले घटना के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। अभिषेक ने आरोप लगाया कि जानलेवा हमले का प्लान था, क्लिनिक का दावा, मेडिकल जांच में चोटों के निशान नहीं आए। सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर विपक्ष आक्रामक है, राहुल गांधी बोले ये हमला लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती।

अभिषेक बनर्जी के घर अचानक से पहुंची थी सीआईडी। विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में थमाया गया कानूनी नोटिस। डीके शिव कुमार 3 जून को लेंगे कर्नाटक के सीएम पद की शपथ, राज्यपाल ने भेजा है निमंत्रण। सिद्धरमैया ने डीके शिव कुमार का नाम बढ़ाया, गुरुवार को कर्नाटक सीएम पद से सिद्धरमैया ने इस्तीफा दिया था। लखनऊ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म है, लेकिन कोई समाज और देश के लिए बने खतरा तो हिंसा अपनानी पड़ती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 134वां एपिसोड है। पश्चिम एशिया संकट, ऊर्जा बजट, पद्म पुरस्कारों पर रख सकते हैं अपनी बात। सीयूईटी यूजी 2026 में तकनीकी गड़बड़ी में परीक्षा शुरू होने में देरी हुई थी, 3,765 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा छोड़कर गए थे अभ्यर्थी, एनटीए ने पुनर्परीक्षा कराने का फैसला किया। एनटीए का दावा है कि 95% अभ्यर्थियों ने परीक्षा पूरी कर ली थी, प्रभावित केंद्रों पर परीक्षा समय में बदलाव किया गया था। छात्रों ने केंद्रों पर सूचना के अभाव का आरोप भी लगाया है, पेरेंट्स ने घंटों तक इंतजार किया। सीयूईटी यूजी मामले में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बीजेपी का भ्रष्टाचार कई रूपों में दिखता है, आज के अभ्यर्थी कह रहे हैं हमें बीजेपी पर भरोसा ही नहीं है। नीट पेपर लीक पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई, पवन खेड़ा का सवाल, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन। अरविंद केजरीवाल का तंज, क्या वायुसेना के विमान पेपर लीक को रोक पाएंगे, शिक्षा व्यवस्था माफिया के चंगुल में फंसी है। संदीप दीक्षित ने शिक्षा मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाया, कहा शिक्षा मंत्री पर भरोसा सरकार का काम हो गया है। मनीष सिसोदिया का आरोप, एनडीए परीक्षा कराने में नाकाम रहा, सीयूईटी का मजाक बना दिया गया है। संजय झा ने परीक्षा रद्द करने के फैसले का जिक्र करते हुए कहा सरकार ने मामला छुपाने की कोशिश नहीं की है, सरकार समाधान निकालेगी। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियन नागरिक का मिला है शव, मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। दिल्ली के जहांगीरपुर में 26 साल के अरबाज की चाकू मारकर हत्या, 3 हमलावर हिरासत में लिए गए। यूपी के हापुड़ में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला बोला गया, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। झांसी में दीवार गिराने के बाद खूनी संघर्ष देखा गया, वायरल सीसीटीवी फुटेज में लाठी डंडों से युवक की पिटाई। गुजरात के जामनगर में डला बड़ा हादसा, विज्ञापन टावर गिरा था, सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है, जांच जारी। वडोदरा में दोस्त ने केटरिंग व्यवसायी दोस्त को चाकू मारकर हत्या कर डाली, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बिहार के बगहा में पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या का खुलासा किया, 27 मई को युवक का शव मिला था। दानापुर पुणे स्पेशल ट्रेन की महिला बोगी में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुल्लू के कसोल बाजार में सैलानियों की दबंगई सामने आई, पार्किंग विवाद में स्थानीय युवक पर चला दी थी गोलियां, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। उदयपुर में 2 स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई, मिलावट के संदेह में 18,000 लीटर घी जब्त किया गया। दिल्ली से झारखंड शव ले जा रही एम्बुलेंस की कौशाम्बी में ट्रक के साथ टक्कर हुई, 6 लोग घायल हो गए, हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। जलंधर में आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की वजह का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। बेंगलुरु में एक स्कूल में भीषण आग लगी थी, छुट्टी का दिन होने की वजह से सभी लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के हापुड़ में घर में लग गई थी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ था। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन दिन है, पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र स्नान के लिए लगी श्रद्धालु की भीड़, डुबकी लगाकर पूजा पाठ कर रहे हैं लोग। प्रयागराज में भी संगम पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से होता है विशेष पुण्य। चारधाम यात्रा में अब तक करीब 27 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, पहुंचे 2,40,000 टूरिस्ट व्हीकल। केदारनाथ धाम में एक दिन में 24,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, कुल संख्या पहुंची है 10 लाख के पार। फिल्म काला हिरण का पोस्टर जारी किया गया, सलमान खान लॉरेंस विवाद पर बनी है ये फिल्म, 20 जून को टीजर रिलीज किया जाएगा। रणबीर कपूर की रामायण के एक्शन सीन होंगे इंटरनेशनल लेवल के, एवेंजर्स फेम टेरी नोटरी जुड़े हैं प्रोडक्शन से। फिल्म ये जवानी है दीवानी ने पूरे कर लिए हैं रिलीज के 13 साल, फैंस के बीच फिल्म के सॉन्ग बलम पिचकारी का क्रेज अभी भी बरकरार है। 10 जुलाई को मुंबई के शनमुगनाथन हॉल में होगा द ड्रीम गर्ल्स डायमंड का जुबली कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट में गाएंगी हेमा मालिनी। वेब सीरीज ब्राउन का ट्रेलर रिलीज किया गया, आप नए अवतार में नजर आएंगी करिश्मा कपूर।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर ईरान का बड़ा बयान, अमेरिकी नाकेबंदी हटने के बाद हॉर्मुज खोलने का फैसला लिया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट के भविष्य को लेकर ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों के बीच अहम बातचीत हुई है। दोनों ही देशों के बीच सुरक्षा की गारंटी, क्षेत्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रशासन चलाने पर बात बनी। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान को बड़ा आर्थिक झटका, अमेरिका ने जब्त किए $1 अरब के क्रिप्टो फंड्स। अमेरिका के ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी अभियान के तहत की गई है कार्रवाई। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेक ने सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग के अलग जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और सैन्य खर्च को बढ़ाने पर बात हुई। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की। लेबनान के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम और अमेरिका से दखल की मांग की है। कहा, तनाव कम करने के लिए युद्ध विराम पहली प्राथमिकता है।

0: और आज देश को नया CDS मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमणि ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। राजा सुब्रमणि देश के तीसरे CDS हैं। कल जनरल अनिल चौहान रिटायर हुए थे और अब नए CDS ने अपना कार्यभार संभाला है। नए CDS सुब्रमणि कार्यभार संभालते हुए गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजा सुब्रमणि देश के तीसरे CDS बने हैं। कल ही जनरल अनिल चौहान रिटायर हुए थे और अब नए CDS के तौर पर कार्य संभाला है राजा सुब्रमणि ने। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर दैट्स 50 बक्स राइट इन हिज पॉकेट। If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
4: Oh, ouch.
3: However you make money work, we can work with that.
5: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
6: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites. New discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: Sokudo.
9: आगे आगे
10: अरे उधर
9: उधर किधर
10: करेक्ट करेक्ट
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
13: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
14: एक हिंट तो देते।
15: विक्रम!
14: हिंट।
13: बड़े आराम से।
16: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
19: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
10: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: इन एसोसिएशन विद
5: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
4: हिंट, बड़े आराम से
6: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
7: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
8: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: विमल बोलो जुबा केसरी।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
4: इन एसोसिएशन विद
13: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@। तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
10: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
9: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
10: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है। क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता। यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से न जोड़ा जाए। 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा, इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है? इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं उनके पीडीएस समीकरण पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर 5 गिरफ्तार। राहुल गांधी, अखिलेश, केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष बोले, क्यों गए थे हीरो बनने। गाजियाबाद सूर्य हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर। जवाबी फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने की खबर। बकरीद के दिन घेर कर किया गया था सूर्य का कत्ल। दिल्ली के मैरौली में गिरी 5 मंजिला इमारत, 2 की मौत हुई। मलबे से 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी जारी है राहत और बचाव का काम। नए CDS जनरल NS राजा सुब्रमणि ने संभाला कार्यभार। साउथ ब्लॉक के लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रक्षा मामलों के विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में PSG की चैंपियंस लीग में जीत के जश्न पर हिंसा और आगजनी, पथराव। कई लोग जख्मी। पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं वॉर रूम। वॉर रूम बिग ब्रेकिंग में आज हम आपको दिखाएंगे कि पश्चिम एशिया में क्यों कहा जा रहा है कि फिर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और इजराइल आक्रामक हैं। दावा किया जा रहा है कि यूरेनियम की आग में अब खुद ईरान जलने लगा है। ट्रंप की टीम ईरान को झुकाने के लिए नए प्लान पर काम कर रही है। उधर नेतन्याहू की नई चेतावनी से लेबनन में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका इजराइल के लिए एब्राहम अकॉर्ड वाला तैयार कर रहा है। वहीं एक समझौते पर हस्ताक्षर न करने के कारण पाकिस्तान अमेरिका के निशाने पर आ गया है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान खुद घिरता जा रहा है? लेकिन सबसे पहले वॉर अपडेट।
1: कुवैत में यूएस बेस पर ईरान का हमला, 5 सैनिक घायल। ईरान की फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल ने कुवैत के अली अल साले हवाई अड्डे पर मौजूद अमेरिकी बेस को बनाया निशाना। एयर डिफेंस से तबाही के बावजूद मिसाइल के मलबे से 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जबकि एक MQ-9 रीपर ड्रोन पूरी तरह नष्ट और दूसरा भारी क्षतिग्रस्त हो गया। ईरानी सेना का दावा, नष्ट किया ड्रोन। ईरान की सेना की तरफ से कहा गया है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने दक्षिणी ईरान के केशम द्वीप के आसमान में एक ड्रोन को मार गिराया। ईरान का दावा है कि केशम में दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन का मलबा भी बरामद हुआ है। ट्रंप की सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक, नहीं बन पाई अंतिम सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाने के फ्रेमवर्क पर फैसला लेने के लिए व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में टॉप अधिकारियों के साथ 2 घंटे तक अहम बैठक की। हालांकि ये बैठक बिना किसी अंतिम नतीजे या स्पष्टता के समाप्त हो गई। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत से इनकार। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अमेरिका के साथ समझौता अभी अंतिम रूप नहीं ले पाया है। ईरान का कहना है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि उसका ये कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक उद्देश्यों के लिए है। ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान कभी न बनाए परमाणु बम। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम के विस्तार के लिए ईरान के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी देनी होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना होगा और वहां बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट करना होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी, ईरान पर दोबारा हमले के लिए यूएस तैयार। सिंगापुर डिफेंस समिट में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। ईरान के कट्टरपंथियों ने समझौते के खिलाफ खोला मोर्चा। ईरान के भीतर एक राजनीतिक जंग छिड़ गई है। वहां के कट्टरपंथी गुटों ने सरकारी मीडिया, रैलियों और बयानों के जरिए अमेरिका के साथ संभावित समझौते और बातचीत को नाकाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ईरान के बीच गतिरोध बरकरार। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो ना तो पूरी तरह शांति है और ना ही खुला युद्ध। दोनों देश पानी के रास्ते एक दूसरे की आर्थिक घेराबंदी करने में जुटे हैं। लेबनान में और अंदर घुसी इजरायली सेना, लिटानी नदी को किया पार। एक तरफ अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम की बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि उनकी जमीनी सेना लेबनान की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिटानी नदी को पार कर आगे बढ़ चुकी है। गाजा के 70% हिस्से पर नियंत्रण करेगा इजराइल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल गाजा के 70% हिस्से पर अपना नियंत्रण रखेगा। युद्ध विराम के बावजूद इजरायली सेना गाजा में लगातार सैन्य ऑपरेशन और हवाई हमले कर रही है।
0: वेस्ट एशिया में इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा माइंड गेम चल रहा है और इस पूरी जंग की एक ही जड़ है, यूरेनियम। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि सारा एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दो या फिर अमेरिकी बमों से इसे तबाह होते देखो। ट्रंप का स्टैंड क्लियर है, या तो बहुत बड़ी डील होगी या फिर आर पार का युद्ध। उधर ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके सर्वोच्च नेता ने साफ कह दिया कि यूरेनियम देश से बाहर जाएगा ही नहीं। बातचीत के बीच ये बमबारी और शांति के बीच ये धमकियां आखिर किस तरफ इशारा कर रही हैं?

0: not let Iran have a nuclear weapon. That's all it is. We can't let it.
1: एक तरफ शांति समझौते की बात, तो दूसरी तरफ मिसाइलें भी पूरी तरह लोड। वेस्ट एशिया में दुनिया का सबसे बड़ा माइंड गेम चल रहा है।
2: Iran cannot have a nuclear weapon, and right now we are negotiating to make sure that very thing happens.
1: जंग की असली जड़ यूरेनियम।
3: Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon.
1: वही एनरिच्ड यूरेनियम जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दो टूक अल्टीमेटम दे दिया है, या तो यूरेनियम हमें सौंप दो या फिर इसे अपनी आंखों के सामने तबाह होते देखो। ट्रंप का कहना है कि यूरेनियम को तुरंत अमेरिका लाया जाए और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सामने नष्ट किया जाए। ट्रंप ने साफ कर दिया है, या तो एक बहुत बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी।
4: समझौता तो मुझे लगता है होगा और होना भी चाहिए। पूरा विश्व इस परेशानी से दुखी है, लेकिन इसका समझौता होगा कैसे? इसको समझौता कराने के लिए मेरे विचार में एक अच्छा मीडिएटर चाहिए, और वो मीडिएटर ऐसा होना चाहिए जिसके पास कुछ काबिलियत हो। पाकिस्तान का क्या मीडिएशन करेगा? पाकिस्तान के पास क्या ताकत है जो मीडिएशन कराएगा? मे बी चाइना कैन हेल्प इन दिस। सो मीडिएशन इज द ओनली आंसर, फाइटिंग अगेन इज नॉट द आंसर।
1: पर असली सवाल यह है कि क्या ईरान इतनी आसानी से मान जाएगा? वो ईरान जिसने पहले भी अपने न्यूक्लियर प्लांट को जमींदोज होते देखा है, जिसने अपने सुप्रीम लीडर से लेकर पूरे शासन तंत्र को हमले के पहले मिनट में ही मिट्टी में मिलते देखा है, क्या वो इसके लिए तैयार होगा?
5: इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात है कि ये देखना पड़ेगा कि ये यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम जो ईरान के पास है, उसका उसके लिए क्या महत्व है। वो उसको इस्तेमाल कर रहा है एज डिटरेंट, उसके एक डिटरेंस के लिए काम होता है, डिप्लोमेसी में काम हो रहा है, और दूसरा उसकी अपनी डिग्निटी के लिए भी काम हो रहा है। जो सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर हैं वहाँ के, उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये भी दिखाना है कि वो ना हारे हैं ना झुके हैं। तो अपने आप में एक ये मुद्दा बन चुका है। ट्रंप चाहते हैं इसको विक्ट्री ट्रॉफी की तरह, और ईरान इसको अपनी डिग्निटी से जोड़ के देख रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी आसानी से बिना किसी खास मुद्दे को लिए हुए ईरान अपने एनरिच यूरेनियम को सौंप देगा यूएस को।
1: पर्दे के पीछे का सच बेहद खौफनाक है। रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत के बीच भी अमेरिका के पास ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट को बंकर बस्टर बमों से उड़ाने का पूरा प्लान तैयार है। इसी साइट पर पिछले साल जून में अमेरिका ने मिसाइलें भी दागी थी। यानी पेंटागन और लैंगली ने पूरी तैयारी कर ली। ट्रंप को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के कई प्लान और उनका पूरा लेआउट दिखा दिया है। माना जा रहा है कि ईरान का ज्यादातर परमाणु भंडार इस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट में रखा है। अब बस ट्रंप की हरी झंडी मिलना बाकी है।
4: इस समय जो युद्ध चल रहा है अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, उसके तकरीबन 40-45 दिन होने वाले हैं सीज फायर के। थ्रू आउट द सीज फायर एक तरीके से धमकी चल रही है। एक तरफ से ट्रंप साहब धमकी देते हैं, दूसरी तरफ से उसका जवाब देता है ईरान। बीच में मीडिएशन की कोशिश होती है, पाकिस्तान उसमें एक जोकर की तरह ऊपर नीचे भागता रहता है, कुछ उसका नतीजा तो निकला नहीं है। सो ये समझ के चलिए आप कि दिस इज सम काइंड ऑफ अ थ्रेट, कि अगर तुम नहीं मानोगे मेरी बात तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है। उसके जवाब में ईरान कहता है कि आप मार के तो देखिए, हम आपको और मारेंगे। ईरान इस समय काफ़ी डैमेज सफ़र कर चुका है, उसकी रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है। वो ही इज़ प्रिपेयर टू एक्सेप्ट मोर डैमेज, बट ही विल नॉट सरेंडर। सो ये धमकी दे रहे हैं ट्रंप साहब, मेरे ख्याल से तो ये काम नहीं करेगी।
1: इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अनुसार ईरान के पास इस वक्त 60% तक एनरिच किया हुआ करीब 970 पाउंड यूरेनियम का स्टॉक है। खबरें ये भी हैं कि ईरान इस यूरेनियम को चीन भेजने के फिराक में है और चीन इसके लिए तैयार भी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन इसके लिए कभी राजी हो ये मुश्किल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अगले 20 साल का बैन लगे। दावा है कि ईरान का यूरेनियम भंडार अब ओबामा न्यूक्लियर डील से पहले वाले स्तर से भी ज्यादा हो गया है। IAEA के अनुसार 2008 से ईरान का यूरेनियम स्टॉक लगातार बढ़ता गया, तब ओबामा राष्ट्रपति थे। 2015 में JCPOA परमाणु समझौता हुआ, जिसके बाद स्टॉक अचानक बहुत कम हो गया। 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया। उसके बाद ईरान ने फिर से यूरेनियम जमा करना शुरू किया और मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। 2025 तक स्टॉक करीब 9,875 किलो पहुंच गया, जो समझौते से पहले के स्तर से भी ज्यादा है। 2025 में यूरेनियम की मात्रा एनरिचमेंट के हिसाब से देखिए, 2% एनरिच यूरेनियम की मात्रा 2,391 किलो है, 5% 6,024 किलो

0: शांति चाहिए या युद्ध की आग।
1: सवाल सीधा है और बेहद खतरनाक भी। अगर ईरान नहीं झुका तो ट्रंप के पास क्या है आखिरी विकल्प? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या वो आखिरी जवाब ईरान को पसंद आएगा? दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और फैसलों का विश्लेषण करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ट्रंप अपने से पहले के सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों से वेस्ट एशिया के मामले में सिर्फ अलग ही नहीं, बिल्कुल अलग है। वो लीक से हटकर फैसला लेते हैं और उनका यही अंदाज इस वक्त ईरान की रातों की नींद उड़ाए हुए है।

0: सुनिए ट्रंप का यह बयान जो बताता है कि उनके दिमाग में ईरान को लेकर आखिर क्या चल रहा है।
1: Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them.
0: ट्रंप जिस कन्विक्शन के साथ बात करते हैं वो दुनिया को डराता भी है और चौंकाता भी है। जून 2025 में हुई 12 दिन की वो भीषण जंग हो या फिर अमेरिका इसराइल और ईरान के युद्ध की शुरुआत में ही सुप्रीम लीडर समेत पूरे के पूरे ईरानी सुप्रीम काउंसिल को नेस्तनाबूद करना, ट्रंप ने अपने हर फैसले से दुनिया के होश उड़ाए हैं।
2: ये सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि अमेरिका का पलड़ा भारी है और अमेरिका कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ईरान जो शर्तें अमेरिका ने रखी हैं उन पे साइन करने के लिए तैयार है, मगर असलियत जो है वो काफी अलग है। ईरान की जो रेड लाइन है, स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ऊपर टोल लेने की, और कहीं ना कहीं जो बात है कि यूरेनियम प्रोग्राम और एनरिचमेंट यूरेनियम देने की, उस पर ईरान अड़ा हुआ है। और ऐसे में ऐसा लगता है कि यूं तो कहा जा रहा है कि ये डील साइन होने के बहुत नजदीक है, मगर ऐसा नजर नहीं आ रहा। अगर ये डील साइन नहीं होती तो ऐसा लगता है लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाएगी।
0: अब एक तरफ जहां पीस टॉक यानी शांति की बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप लगातार ईरान को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर जो लिखा वो ईरान के लिए किसी सीधे सरेंडर नोट जैसा है। अगर ईरान सरेंडर कर दे, मान ले कि उसकी नेवी खत्म हो चुकी है और उसकी एयरफोर्स खत्म हो गई है, और अगर उसकी पूरी सेना हथियार डालकर तेहरान से बाहर निकल आए, हाथ ऊपर करके मैं सरेंडर करता हूँ चिल्लाए और सफेद झंडा लहराए, और अगर उसका बचा हुआ पूरा नेतृत्व हार मानने वाले सारे दस्तावेजों पर साइन कर दे और अमेरिका की ताकत के सामने अपनी हार स्वीकार कर ले, तभी बात बनेगी। लेकिन सवाल तो वही है, डिप्लोमेसी अपनी जगह है, धमकियां अपनी जगह। अगर इस बातचीत के बाद भी ईरान टस से मस नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ईरान ने अमेरिका की इन शर्तों पर हामी नहीं भरी तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? सच यह है कि इस जंग में अब बेहद सीमित विकल्प ही बचे हैं। पानी सिर से ऊपर जा चुका है और अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो डोनाल्ड ट्रंप के पास प्लान बी के तौर पर तीन सबसे बड़े और विनाशकारी विकल्प तैयार हैं। ट्रंप के तर्कश में वो कौन से तीन तीर हैं जो ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं? विकल्प नंबर एक, पूर्ण सैन्य हमला। ये ट्रंप का सबसे बड़ा और आखिरी हथियार है। अगर राजनीतिक प्रयास और सौदेबाजी पूरी तरह फेल हो जाती है तो ट्रंप अमेरिकी कमांडरों को ईरान के परमाणु संयंत्रों और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी का सीधा आदेश दे सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी सेना को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा जा चुका है। विकल्प नंबर दो, आर्थिक प्रतिबंधों को चरम पर पहुंचाना। अगर ट्रंप सीधे मिलिट्री एक्शन से बचना चाहेंगे तो वो मैक्सिमम प्रेशर की नीति को इस हद तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा जिससे ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से पूरी तरह पंगु हो जाएगा। विकल्प नंबर तीन, क्षेत्रीय गठबंधनों से ईरान की घेराबंदी। अमेरिका अकेले नहीं लड़ेगा, वो खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और अपने सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल के साथ मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरेगा। रणनीति साफ है, ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया जाए।
2: कोई चांस ज्यादा नजर नहीं आ रहा। अगर ईरान इस डील को मानने के लिए मना कर देता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, फिर लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी। और इस बार जो

0: लड़ाई है वो बहुत भयानक होगी। और ये भी सच्चाई है कि जो ईरान के पास मिसाइल रॉकेट ड्रोन्स हैं उसका भंडार अब 60 से 70% अभी भी है, जबकि अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी है।
1: यानी साफ है, ट्रंप ने अपनी लाइन खींच दी है। अब गेंद ईरान के पाले में है। या तो वो सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर कर दे, या फिर अमेरिकी सेना के उस भीषण प्रहार को झेलने के लिए तैयार रहे जो वेस्ट एशिया का पूरा भूगोल बदल सकता है, जिसकी तस्दीक ट्रंप पहले ही पोस्ट कर चुके हैं।
2: इब्राहिम अकॉर्ड, दो शब्द, लेकिन इन दो शब्दों ने पश्चिम एशिया की रेत में ऐसी दरार डाल दी जिसकी गूंज तेहरान से इस्लामाबाद और अंकारा तक सुनाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा है, अगर अमन चाहिए तो पहले इसराइल को स्वीकार करो। यही है इब्राहिम अकॉर्ड की पहली शर्त, और यहीं से शुरू होता है वो भूचाल जिसने मुस्लिम दुनिया की दशकों पुरानी राजनीति को उलट कर रख दिया है। अब तक इसराइल का विरोध ही इस्लामी जगत की साझा जमीन थी। अरब हो या गैर अरब, सबकी जुबान पर एक ही बात रहती थी, इसराइल को मान्यता नहीं, उससे रिश्ते नहीं। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि शांति की कीमत इसराइल की स्वीकार्यता होगी, यानी लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं रही, विचार की हो गई है। और ट्रंप ने यही चाल चलकर खाड़ी के पानी में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसमें हर मुल्क अपने किनारे बचाने में लग गया है।
3: I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know that the
1: ट्रंप का अंदाज किसी रिक्वेस्ट का नहीं है, बल्कि एक सीधे ऑर्डर का है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की डील तभी होगी जब अब्राहम अकॉर्ड पर बात होगी।
3: I would like to have the countries we were talking about with Saudi Arabia, UAE, Qatar and the others. We'd like to have them immediately join the, and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us.
1: अब तक दुनिया समझ रही थी कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन ईरान का यूरेनियम और उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अब तक वॉशिंगटन इसी बात पर आक्रामक था कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपनी शर्तें बढ़ाकर पूरे खाड़ी और मुस्लिम जगत को एक ऐसे धर्म संकट में डाल दिया है जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा है। पहले हम आपको बताते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या। अब्राहम अकॉर्ड्स इसराइल और अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने वाले समझौते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2020 में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इसराइल को मान्यता देकर इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बाद में मोरक्को, सूडान और 2025 में कजाकिस्तान भी इसमें शामिल हुए। इन समझौतों से पहले सिर्फ मिस्र और जॉर्डन ही मुस्लिम बहुल देश थे जो इसराइल को मान्यता देते थे। लंबे समय तक अरब देशों का कहना था कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा मिलने तक वो इसराइल से संबंध नहीं बनाएंगे। फिलिस्तीनी नेताओं ने इन समझौतों को विश्वासघात बताया, जबकि ईरान और पाकिस्तान में भी इसका विरोध हुआ। इसराइल को सबसे बड़ा फायदा यूएई के साथ समझौते से मिला। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा। अब अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब भी इस समझौते में शामिल हो, लेकिन सऊदी अरब ने साफ कहा है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र के बिना वो इसराइल से रिश्ते सामान्य नहीं करेगा।
4: अब्राहम अकॉर्ड 15 सितंबर 2020 को साइन हुआ था बिटवीन अरब नेशंस एंड इसराइल। दिस मींस कि दे आर रिकॉग्नाइजिंग इसराइल एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। कुछ देश हैं उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने से मना कर दिया, उसमें पाकिस्तान है, उसमें ईरान है, उसमें कुछ हद तक सऊदी अरेबिया, हालांकि सऊदी अरेबिया शायद मानने को तैयार है लेकिन फिजिकली उसने अभी तक साइन नहीं किया है। अब्राहम अकॉर्ड कहता है कि आप इसराइल को एक्सेप्ट कीजिए, रिकग्नाइज कीजिए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो अभी जो लेटेस्ट डिमांड, लेटेस्ट बयान आया है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मस्ट एक्सेप्ट अब्राहम अकॉर्ड एंड साइन इट, ईरान मस्ट एक्सेप्ट अब्राहम अकॉर्ड एंड साइन इट। अगर ईरान ने इसको साइन कर दिया तो फिर ये न्यूक्लियर की जो प्रॉब्लम है 60%, इस पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा।
1: दरअसल ये मुस्लिम देशों के गले की फांस क्यों बन गया है, इसे क्रोनोलॉजी से समझिए। साल 1948 में इसराइल के आजाद होने के बाद से पूरा मुस्लिम जगत उसके अस्तित्व को खारिज करता रहा है। लेकिन आज ट्रंप ने इसी अकॉर्ड को ईरान पीस डील की पहली शर्त बना दिया है। सुनने में ये भले छोटी बात लगे, लेकिन इसको इस तरह समझिए, जो जंग आज दुनिया देख रही है वो दरअसल 28 फरवरी 2026 को शुरू नहीं हुई, इसकी बुनियाद पड़ी थी 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इसराइल पर एक बड़ा प्लान्ड अटैक किया था।

0: और तब से इसराइल लगातार, कभी वो गाजा में हमास लड़ता है, कभी लेबनान में हिजबुल्ला से, और इस पूरे प्रॉक्सी टेरर नेटवर्क को पर्दे के पीछे से जो मुल्क रिमोट कंट्रोल चला रहा है उसका नाम है ईरान। ईरान की कुछ फोर्स खाड़ी के आसपास इसराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ लड़ने वाले प्रॉक्सी ग्रुप्स को पैसा और हथियार देती है। अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है, इसलिए ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड पर अड़े हैं। अमेरिका मानता है कि ईरान माने या ना माने, लेकिन खाड़ी के कई देशों को इसमें शामिल होना पड़ेगा, खासकर वो देश जो अब तक ईरान से सीधे टकराव से बचते रहे। अगर ट्रंप अपनी इस नीति पर टिके रहे तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। खाड़ी के बड़े मुस्लिम देशों पर भी अकॉर्ड में शामिल होने का दबाव बढ़ेगा। ऐसा होने पर ईरान काफी हद तक अलग थलग पड़ सकता है। अभी तक सीधा हमला अमेरिका और इसराइल कर रहे थे, जबकि बाकी मुस्लिम देश दूरी बनाए हुए थे, लेकिन इस अकॉर्ड के बाद पूरा समीकरण बदल सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू और भी खतरनाक है। खाड़ी के जो मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपने ही देश के अंदर होगा। इन देशों की जनता में इसराइल को लेकर भारी गुस्सा है। नेतन्याहू इस मुद्दे पर चुप है, चुनाव का माहौल है और जंग में मुस्लिम देशों का खुला समर्थन मिलना मुश्किल है। अमेरिका का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर करना या अब्राहम समझौते से इसराइल की सुरक्षा बढ़ाना है, लेकिन अरब देशों में गुस्सा बढ़ रहा है, खासकर गाजा और लेबनान की तबाही के बाद। ऐसे में दबाव बढ़ने से इसराइल की स्वीकार्यता और मुश्किल हो सकती है।
1: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी दुनिया के संघर्ष का विश्लेषण जारी है इस वॉर रूम में।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: जेके मैक्स पेंट्स।
12: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इन एसोसिएशन विद
2: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
1: हिंट, बड़े आराम से
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
5: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: विमल बोलो जुबां केसरी।

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर 5 गिरफ्तार। राहुल गांधी, अखिलेश केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष बोले, क्यों गए थे हीरो बनने। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर। जवाबी फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने की खबर। बकरीद के दिन घेर कर किया गया था सूर्या का कत्ल। दिल्ली के महरौली में गिरी 5 मंजिला इमारत, 2 की मौत हुई। मलबे से 8 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। मौके पर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने संभाला कार्यभार। साउथ ब्लॉक के लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। एडमिरल केजी स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएसजी के चैंपियंस लीग में जीत के जश्न पर हिंसा, आगजनी और पथराव। कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार।

0: दक्षिणी लेबनन फिर धधक रहा है। इसराइल ने साफ कह दिया है कि हिजबुल्ला के अंत तक हमला रुकेगा नहीं। नेतन्याहू का गुस्सा अब खुली चेतावनी में बदल चुका है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनन के बड़े इलाके को कॉम्बैट जोन घोषित कर लोगों को तुरंत उत्तर की ओर जाने का आदेश दे दिया है। यानी साफ संदेश कि अब जंग और तेज होगी। नेतन्याहू कह रहे हैं हिजबुल्ला पर हमलों की तीव्रता और बढ़ेगी। उधर लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। सवाल यही है कि क्या लेबनन अब पूरी तरह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है?
1: लेबनन का दक्षिणी हिस्सा एक बार फिर धधक रहा है। आसमान से बरसते बारूद और जमीन पर गरजते टैंकों ने साफ कर दिया है कि युद्ध अब किसी अंतिम अंजाम की ओर बढ़ रहा है। हिजबुल्ला को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू की गई ये जंग अब लेबनान के सीमा के अंदर आ गई है। इसराइल ने दो टूक कह दिया है कि जब तक हिजबुल्ला का अंत नहीं होता ये हमला रुकेगा नहीं।
2: ये जो शांति वार्ता अमेरिका इसराइल और ईरान के झगड़े के बीच में हो रही है, जब 7 अप्रैल को जब पहली बार ये वार्ता शुरू हुई थी पाकिस्तान में, तो उस टाइम पे भी अगर हम उस टाइम के जो इवेंट्स हैं उन पर एक नज़र लें तो पाकिस्तान इसराइल को मान्यता नहीं देता है, ना ही पाकिस्तान में इसराइल की एम्बेसी है, और उस शांति वार्ता में इसराइल कभी उसका हिस्सा भी नहीं था। जब भी कोई सीज़फ़ायर या शांति वार्ता की बात शुरू होती है तो इसराइल ये चीज तय करता है कि उससे पहले पहले जितना नुकसान वो प्रोक्सीज का कर सके वो कर ले। तो इसराइल इस शांति वार्ता में किसी तरह से भी विनर नहीं है। इसराइल विनर है जब जितने भी प्रोक्सीज, चाहे वो हिजबुल्ला है, चाहे वो हमस है, चाहे वो हौथीज हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए, और ईरान जो कि उन सबको सपोर्ट करता है उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए। तो इसलिए शांति वार्ता एक तरफ चलती रहेगी, इसराइल अपनी कार्रवाई साथ साथ करता रहेगा।
1: इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के एक बहुत बड़े हिस्से को कॉम्बैट जोन यानी युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। सेना ने स्थानीय नागरिकों को तुरंत जहरानी नदी के उत्तर की ओर जाने का हुक्म सुनाया है। ये कोई मामूली आदेश नहीं है। इसराइल की सीमा से 40 किलोमीटर दूर बहने वाली इस नदी के दक्षिण का पूरा इलाका, जो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, अब इसराइल के निशाने पर है। संदेश बिल्कुल साफ है, जंग अब और ज्यादा खतरनाक होने वाली है।

0: लेकिन इस बारूदी खेल के बीच पिस रही है आम जनता। हालत यह है कि सिडन शहर के राहत कैंप पूरी तरह भर चुके हैं, वहां तिल रखने की जगह नहीं बची है। मार्च से लेकर अब तक 12 लाख से ज्यादा लेबनानी नागरिक बेघर हो चुके हैं। सवाल यही है कि आखिर ये लोग जाए तो कहां जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर युद्ध विराम के बाद भी इस क्षेत्र में हमले क्यों हो रहे हैं। तो समझिए, 16 अप्रैल को युद्ध विराम का ऐलान तो कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाते रहे। लेबनान का कहना है कि इजरायली हमलों में अब तक 3,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें युद्ध विराम के बाद मारे गए 608 लोग भी शामिल हैं। दूसरी तरफ इजरायल का दावा है कि मार्च से अब तक उसके 23 सैनिक और 4 नागरिक मारे गए हैं। इजरायल के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने के बाद भी हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों में उसके 10 सैनिकों की जान गई।
1: सच्चाई यह है कि अमेरिका इसको चाहता है कि कोई डील हो, ईरान भी चाहता डील हो, मगर इजराइल नहीं चाहता। इजराइल चाहता है कि ये लड़ाई लंबी चले। पहली बात वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान कमजोर हो, और दूसरा वो लेबनान को जो हिजबुल्ला है उसको वो धकेलना चाहता है मिडल ऑफ जो लेबनान तक, और वो लिटानी नदी तक पहले ही पहुंच गए। तो ये सच्चाई है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इजराइल इस लड़ाई को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहता।
0: दोनों पक्ष एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप मढ़ रहे हैं। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों ने समझौते को तोड़ा है, इसलिए वो उत्तरी इसराइल की सुरक्षा के लिए अपनी जमीनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है।
2: October 7th, Hamas invaded us, butchered our men, beheaded our men, raped our women and then killed them, burnt our babies, did the worst massacre against the Jewish people since the Holocaust. And guess what? On the other border, Hezbollah from Lebanon was planning to do even more. They had 5,000 Redwan Force terrorists ready to invade the Galilee. So we pushed them back. We've got a security belt now that prevents them from doing that or shooting anti-tank missiles into our kitchens, into our living rooms. But it's not over yet. We still have missiles. We have drones, killer drones. We have to do.
0: Israeli सैनिक अब येलो लाइन यानी पहले बनाए गए बफर जोन को पार कर आगे बढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
3: दूसरों के घर में आग लगाने की नीति अब पाकिस्तान के अपने आंगन को जलाने लगी है। बलूचिस्तान में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दी। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने दावा किया है कि उसने क्वेटा कैंट के पास पाकिस्तानी सैन्य ट्रेन को निशाना बनाया, जिसमें 82 सैनिक मारे गए। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने अभी तक इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इतना तय है कि बलूचिस्तान अब इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ा जख्म बन चुका है। सीपीईसी ठप पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान सेना का मनोबल गिर रहा है, और अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर हर हमले के पीछे भारत का नाम लेकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान अब उसी आग में जल रहा है जिसे उसने वर्षों तक दूसरों के लिए तैयार किया।
0: पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके आतंकवाद की आग से अब तक दूसरों का घर चलता आया है, लेकिन अब उस आग की आंच उसके घर तक आने लगी तो वो छटपटाने लगा। बलूचिस्तान की क्वेटा छावनी के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बलूच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तानी सेना के एक स्पेशल मिलिट्री ट्रेन को उड़ा दिया। दावा की इस फिदायीन हमले में पाकिस्तानी सेना के 82 जवान ढेर हो गए और 121 से ज्यादा घायल। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बीएलए ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस हमले को चमन फाटक के पास क्वेटा कंटोनमेंट के नजदीक अंजाम दिया गया। बीएलए के खुफिया विंग जिराब ने इस हमले की सटीक जानकारी मुहैया करवाई थी। सुबह ठीक 8 बजे एक सुसाइड हमलावर ने इस मिलिट्री ट्रेन को ही निशाना बना डाला। लेकिन हमेशा की तरह इस दर्दनाक बर्बादी के बाद भी पाकिस्तान का दोगला रवैया नहीं बदला। हमेशा की तरह अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की आदत सामने आ गई है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिफ मुनीर की। खुद को संविधान बदल कर बड़ा पद तो दे दिया, लेकिन अपनी फौज को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। इस हमले के बाद जब अपनी जनता को जवाब देने की औकात नहीं बची तो मुनीर साहब भागे भागे बलूचिस्तान सीमा पर पहुंचे और वहां जाकर क्या किया, वही पुराना घिसा पिटा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। मुनीर ने इस तबाही का आरोप सीधा भारत पर मढ़ दिया, नाम दे दिया फितना अल हिंदुस्तान।
4: जो मिलिट्री स्पेशल ट्रेन के ऊपर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर ने हमला किया और उसमें जितनी भी कैजुअल्टी हुई वो तमाम कैजुअल्टीज मोस्टली जो है जेसीओ और जवानों की थी, ऑफिसर्स के नाम उसमें नहीं आए। तो ये कोई नई बात नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब हम लोग वहां पे रहते हैं, हमारे ऑफिसर करीब करीब हर पोस्ट के ऊपर ऑफिसर रहते हैं और सामने जो पाकिस्तान के पोस्ट देखते हैं उनका ऑफिसर कभी 2 महीने में 3 महीने में एक बार विजिट के लिए आता है, यंग ऑफिसर्स कैप्टन मेजर भी। उनकी तमाम पोस्टें जो हैं वो जेसीओ या एनसीओ या हवलदार ही मैन करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर जो हैं उनके अफसरान साहिबान हैं वो, तो वो अपने जैसे इंडियन आर्मी का एक तरतीब है, एक ऑनर कोड है, ऑफिसर लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप आईपीकेएफ की कैजुअल्टीज देख लीजिए, आप जेएनके की इंसर्जेंसी की काउंटर टेररिज्म कैजुअल्टी देख लीजिए, ऑफिसर्स की जो फिजिकल कैजुअल्टीज हैं, जो एक्चुअल ऑफिसर्स की जो उन्होंने अपने प्राण गुवाए हैं उनका अगर आप देखें तो हमारे ऑफिसर्स की कैजुअल्टी हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि हमारे ऑफिसर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहते हैं।
0: अब हम बताते हैं कि पाकिस्तान हर हमले के पीछे भारत का हाथ तो बता देता है लेकिन सबूत नहीं दे पाता है। भारत पर आरोप लगाना सिर्फ एक तरीका है ताकि पाकिस्तान अपनी प्रशासनिक नाकामी छुपा सके। पाकिस्तानी फौज का मनोबल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। आम पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान के गुरिल्ला हमलों और वहां की स्थानीय जनता के गुस्से के बीच पिस रहा है।
4: पाकिस्तान की मिलिट्री के जो अंदरूनी हालात इस वक्त है, देश के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जो हालत है उसी का एक फॉलोअर्ड होता है कि मिलिट्री का क्या कंडीशन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाहे उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्डिंग कुछ भी किया हो लेकिन अंदरूनी हालात मिलिट्री को मालूम है, अंदरूनी हालात देश की पब्लिक को मालूम है। जिन्होंने उनके एयर बेसिस को जलते हुए देखा है, जिन्होंने टेरर टारगेट को ध्वस्त होते हुए देखा है, तो उन सबको मालूम है कि पाकिस्तान मिलिट्री अंदर से खोखली हो चुकी है। और यही बात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस जो पहले हुआ था, चाहे जो अभी उन्होंने ट्रेन पे हमला किया मिलिट्री स्पेशल के ऊपर, और जहां वैसे भी जो पाकिस्तान मिलिट्री की कैजुअल्टी कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बीएलए पूरी तरह से हावी है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के ऊपर।
0: सोचिए उस आम पाकिस्तानी फौजी का क्या कसूर है जिसे रावलपिंडी के एयर कंडीशन कमरों में बैठे आकाओं की गलत नीतियों की वजह से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस में मारे गए सारे नाम जेसीओ या उससे नीचे के रैंक के सैनिक है, यानी पाक सेना के ऑफिसर और सैनिकों के स्टेटस का अंतर आज भी है। पाक फौज का हौसला टूटने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह है। इसलिए आसिम मुनीर जैसे नकली फील्ड मार्शल अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए भारत का नाम जपने लगते हैं।
3: दावा मसीहा बनने का था, पैरवी पश्चिमी एशिया में शांति दूत बनने की थी, लेकिन अब जो खेल हुआ है उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, अब्राहम अकॉर्ड के चक्रव्यूह में पाकिस्तान ऐसा फंसा है कि अब उसे काटो तो खून नहीं। एक तरफ अंदरूनी हालात, बदहाली की मार, आतंकवाद, और दूसरी तरफ महाशक्ति अमेरिका का वो सीधा फरमान जिसने पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को दुनिया के सामने सरेआम बेनकाब कर दिया।
0: ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति का महाप्रस्ताव आया उसमें पाकिस्तान ब्रोकर यानी दलाल की भूमिका में था, लेकिन अब इसको पार्टी बनाने की प्रस्तावना लिखी जा रही है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा पासा फेंका है कि पाकिस्तान के हुक्मरान कांप रहे हैं। ट्रंप का साफ आदेश है, या तो इसराइल को मान्यता दो, अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करो, या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। डोनाल्ड ट्रंप का आदेश हमेशा से लीक से हट कर रहा है। इस बार उन्होंने पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति के लिए एक नया और बेहद कड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरा मानना है कि इस पेचीदा पहेली को सुलझाने के लिए अमेरिका ने जो मेहनत की है, उसके बाद ये जरूरी होना चाहिए कि ये सभी देश एक ही समय पर अब्राहम समझौते पर दस्तखत कर दें। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन को ईरान के साथ समझौते को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। ट्रंप इसे पश्चिमी एशिया में शांति बहाली की पहली और ऐतिहासिक शर्त मान रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है।
5: साहब जो है उनकी दिल के बड़ी करीब चीज है, और वो पीस अकॉर्ड के बाद अगला स्टेप उनका ये होना है कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों को कायल करें कि अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने।
6: मैं तो ज़ाती तौर पे तो मेरा इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे, और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। तो आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन जिन लोगों का जो है वो एक दिन का भी इतबार नहीं किया जा सकता?
5: हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से?
6: वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है, हम वाहिद मुल्क हैं जिनके ऊपर जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इसराइल का नाम।
7: सर, कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स का पाकिस्तान हिस्सा बनने जा रहा है, इस सबके नतीजे में ऐसा कुछ होने जा रहा है?
8: नहीं, हम किसी अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। हमारी पॉलिसी जो है अपनी विज़ इसराइल रिमेन्स एज इट इज, लेकिन वी आर पार्टनर इन एट कंट्रीज, ताकि हम वहां खून जो बह रहा है मासूम लोगों का, 64,000 बह चुका है लोगों का, उसको हम रोक लें।
0: ट्रंप के अल्टीमेटम के बीच अमेरिका के सबसे रसूखदार रिपब्लिकन सीनेटर और ट्रंप के बेहद करीबी लिंडसे ग्राहम ने जो खुलासा किया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सीनेटर ग्राहम ने पाकिस्तान के दोहरे चेहरे पर से पर्दा उठाते हुए साफ कह दिया कि पाकिस्तान कोई मीडिएटर नहीं बल्कि खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल ये विवाद आज का नहीं है, पिछले साल अक्टूबर में ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि उन्हें इसराइल पर भरोसा नहीं है, लेकिन कूटनीति के जानकार यहां दो कारण देखते हैं। पहला, पाकिस्तान के अंदर आतंकियों और अवाम का दबाव, और दूसरा कि पाकिस्तान का अपना कोई स्वतंत्र स्टैंड नहीं है।
4: अब्राहम अकॉर्ड किसी भी हालत में पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। देखिए, एक मुल्क ने पिछले 80 साल से इसराइल को मान्यता नहीं दी है, उनकी एम्बेसी नहीं है, उनके साथ में कोई डील नहीं है। हर रोज उनका दिन शुरू होता है कि हमने इसराइल को तहस नहस करना है, ज्यूस को हमने खत्म करना है, और अचानक अभी क्योंकि अमेरिका बोल रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड कीजिए, तो पाकिस्तान में अंदरूनी रिवॉल्ट इतना बुरा होगा अगर इसराइल के साथ किसी तरह की भी संधि या समझौता या हैंडशेक होता है। जो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ जाकर के इसराइल के साथ समझौता करेंगे तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, और ये पाकिस्तान की लीडरशिप को मालूम है, पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों को। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर चाहे अमेरिका का कितना भी दबाव हो, इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना उनके लिए अंदरूनी हालात को बहुत ज्यादा नाजुक बना देगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पैसे के लिए कुछ भी करेगा, तो लेट्स सी।
0: इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान को आर्थिक मदद या कर्ज की जरूरत होती है वो अपने फैसले बदल लेता है। जानकारों का कहना है कि अगर आने वाले समय में सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर कर दिए तो पाकिस्तान भी मजबूरी में दुम हिलाता हुआ इस समझौते पर साइन कर देगा।
9: अब्राहम अकॉर्ड्स का कन्फ्यूजन पाकिस्तान के लिए तो होना ही था। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना अलाइनमेंट अमेरिका और इसराइल के साथ किया है, एक्चुअली पाकिस्तान का अलाइनमेंट नहीं है, ये वहां के मिलिट्री डिस्पेंसेशन का अलाइनमेंट है जो उनके सहारे अपनी सत्ता वहां बचा के रखते हैं। तो जहां तक स्ट्रीट एंगर का सवाल है, फिलिस्तीन का मसला सुलझे बिना अगर अब्राहम अकॉर्ड्स को पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन या पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध होने की संभावना है। मुस्लिम्स इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
0: नाइन इलेवन के आतंकी हमले के बाद से ही दुनिया पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये को देख रही है। एक तरफ वो अमेरिका का सहयोगी बनने का ढोंग करता है तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे उसके काम कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। अब पाकिस्तान के सामने केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपने पुराने ढर्रे पर अड़ा रहे और वैश्विक स्तर पर पूरी तरह अलग थलग हो जाए, या फिर अमेरिका के इस फरमान के आगे घुटने टेक कर अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। देखना होगा कि शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए क्या रास्ता चुनते हैं।
3: वॉर रूम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, go back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: प्रधानमंत्री जी ने खुद निर्देश दिए हैं और राजनाथ सिंह जी की क्या बैठक भी हुई और ये चिंता की जा रही है कि अब ना लीक हो, जरूरत पड़े तो एयरफोर्स की भी जरूरत पड़े तो एयरफोर्स की भी यूज के हवाई जहाज भी यूज किए जाएं ताकि किसी प्रकार से कोई लीकेज ना हो। परंतु अंतगत इसका सोल्यूशन है जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने शुरू हो।
3: कितनी बार सुना है आपने इस सरकार में? 12 वर्षों से मैं कम से कम 1200 बार सुन चुका अलग अलग मुद्दों पे। अब तो सुना है कि सेना की मदद लेने वाले हैं, मतलब दुनिया में हम अकेला देश होंगे जहां की परीक्षाएं भी हमारी सेना कंडक्ट करेगी। अरे सेना को तो बकस दीजिए महाराज, उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है सरहद संभाल रहे, इस देश को सुरक्षित रख रहे। आप एक परीक्षा तक नहीं करवा रहे। ऊपर से ये भी सुना है कि स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रील बनाओ ओएसएम के फेवर में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर 5 गिरफ्तार। राहुल गांधी, अखिलेश, केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष बोले, क्यों गए थे हीरो बनने।

का एनकाउंटर, जवाबी फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने का भी दावा। बकरीद के दिन घेर कर किया गया था सूर्या का कत्ल। दिल्ली के मेहरौली में गिरी 5 मंजिला इमारत, 2 की मौत हुई, मलबे से 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मौके पर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने संभाला कार्यभार। साउथ ब्लॉक के लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। एडमिरल केजी स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। और अब आपको हम दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
2: नमस्कार सर। नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
1: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
4: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंड फादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, कभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
4: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
4: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे

कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा।

और लगातार किया गया प्रयास, इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप
और वर्कशॉप आयोजित करती हैं। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाए। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे,
जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: सुबह 11:30 बजे के बुलेटिन में बात चार बड़ी खबरों की हम करने जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। पहली जो बड़ी खबर है वो है पश्चिम बंगाल से, जहां कल टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद सियासत गर्मा चुकी है। और इसके साथ ही साथ बात करेंगे गाजियाबाद के भी बारे में, क्योंकि सूर्या चौहान मर्डर केस की, जिसके मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, उसके साथ ही आपको बताएंगे एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में क्यों आ गई है। इसके साथ ही दिल्ली के महरौली में बीती रात हुए बड़े हादसे का भी आपको अपडेट देंगे। सबसे तेज स्प्रिंटर हूं अभी मैं। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हंगामा जारी है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद बंगाल में सियासत तेज हो गई है। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। ममता बनर्जी अपने भतीजे पर अटैक को लेकर लगातार गुस्सा जता रही है, आरोप लगा रही है, तो शुभेंदु सरकार के मंत्री हमले को जनाक्रोश का नतीजा बता रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। वैसे आपको बता दें कि कल के हमले के बाद कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर आज सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको यह भी बता दें कि कल जबरदस्त हंगामा हुआ था, नारेबाजी की गई थी, शॉट फाट दी गई थी अभिषेक बनर्जी की, और बड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें वहां से बाहर निकाला गया था। अभिषेक बनर्जी पर कल हुआ था सोनारपुर में जबरदस्त हमला, और बीती रात वो अस्पताल में भर्ती कराए गए थे इलाज के लिए। बाद में वो अपने घर चले गए। आज सुबह से उनके कालीघाट स्थित आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि मोर्चा खोला हुआ है ममता बनर्जी ने, और कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घेर कर सुनियोजित तरीके से जान से मारने की अभिषेक बनर्जी को कोशिश की थी। अभिषेक बनर्जी ने भी यही बयान दिया था कि ये पूरी सुनियोजित साजिश थी। जिस तरीके से अंडे फेंके गए, मारपीट की गई, शर्ट उनकी फाट दी गई और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, तो चुनावी हिंसा के दौरान जो लोग घायल हुए थे उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनारघाट पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी, और इसी दौरान ये हंगामा देखने को मिला था। भीड़ उग्र हो गई थी, नारेबाजी की जाने लगी थी और उसके बाद अंडे फेंके गए थे, हाथापाई पर उतर आए थे तमाम लोग अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। तो चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर।
1: सोनारपुर में कल टीएमसी कार्यकर्ताओं को देखने गए अभिषेक बनर्जी जो हमले में घायल हुए, उसके बाद दो अस्पतालों में उनको ले जाया गया, कोलकाता के अपोलो और बेलव्यू अस्पताल में, लेकिन दोनों जगह से ही उनको डिस्चार्ज किया गया। और इसके बाद यही कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी का घर है जहां पर इस वक्त अभिषेक बनर्जी का इलाज चल रहा है। कल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अपोलो अस्पताल और बेलव्यू अस्पताल दोनों में ही बीजेपी की ओर से दबाव डाला गया ताकि उनको डिस्चार्ज किया जाए, चिकित्सा नहीं मिली उनको, और इसके बाद यहां पर लाकर सलाइन वगैरह या डॉक्टर्स की उपस्थिति वगैरह सब कुछ यहां पर घर में ही ट्रीटमेंट इस वक्त किया जा रहा है। कल देर रात इसी घर में अभिषेक बनर्जी को लाया गया और कल लगभग शाम 5 बजे के आसपास सोनारपुर में उन पर हमला हुआ था। उसके बाद उनको सेंट्रल फोर्सेज और पुलिस की टीम ने वहां से निकाला। निकालने के बाद सबसे पहले अपोलो अस्पताल ले जाया गया। अपोलो में कुछ देर रहने के बाद ममता बनर्जी बाहर आई, आरोप लगाया कि दबाव दिया जा रहा है, चिकित्सा नहीं हो रही है, उनको निकाल के बेलव्यू लाया गया, बेलव्यू के आईटीयू में भर्ती किया गया, लेकिन वहां से भी कुछ देर बाद ममता बनर्जी उन्हें लेकर निकल गई और आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि चिकित्सा मुहैया नहीं कराई जाए। ऐसे में एक वीडियो भी सामने आया जहां पर देखा गया कि जो बेलव्यू के सीईओ हैं प्रदीप टंडन, उनको धमकी भरा अंदाज में ममता बनर्जी बोल रही हैं कि आने वाले दिनों में जब सत्ता में दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तब देख लिया जाएगा, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन आप लोग मिसलीड कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी नेताओं की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की ओर से इन सारे आरोपों को खारिज किया गया।
0: एक दिन पहले टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था, जिसे लेकर पार्टी बौखलाई हुई है। वो सत्ताधारी शुभेंदु सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी इसे पिछली सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश बता रही है।
2: लड़का ने उसको मौसा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था।
3: काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों, घर में रहिए ना। अभिषेक बनर्जी पर थप्पड़ चले, उन पर भीड़ ने पत्थर से हमला किया, टीएमसी सांसद पर अंडे फेंके गए, धक्का मुक्की होती रही, अभिषेक जान बचाते रहे। उनके निजी सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाने की कोशिश की, उन्हें बचाने के लिए मशक्कत करते रहे, लेकिन सैकड़ों की भीड़ के गुस्से के आगे चंद गिने चुने सुरक्षा कर्मियों का घेरा टूट गया। उस घेरे के टूटने के बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में स्क्रीन पर दिख रहा है। बंगाल की सियासत में हिंसा की ये कोई नई तस्वीर नहीं, चुनाव से पहले भी बंगाल का रक्त चरित्र सामने आया है और चुनाव के बाद भी वो दौर जारी है। पहले टीएमसी सांसद पर हमला और फिर अस्पताल में इलाज में ढिलाई बरतने का गंभीर इल्जाम। पूर्व सीएम ममता बनर्जी गुस्से में हैं। ममता बनर्जी सवाल उठा रही है, पूछ रही है सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों किया गया।
2: बीच ऑफ सिक्योरिटी तो है ही, जानबूझ के पुलिस का एनकरेज नहीं हुआ, ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला।
3: टीएमसी के खिलाफ बीजेपी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। शुभेंदु सरकार के मंत्री टीएमसी की उनकी करनी को याद दिला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ममता सरकार में कैसे बीजेपी नेताओं पर हमले हुए, मंत्री पलटवार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि टीएमसी के सत्ता संभालने के दौरान कैसे कानून का राज खत्म हो गया था।
4: जनता कितना खपा हुआ है देखिए फलता इलेक्शन में, अब टीएमसी को फोर्थ पोजीशन मिला है, इसी को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा, तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के दो दो MLA हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी, जनता ने सब देखा है। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों, घर में रहिए ना शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए।
3: अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले के बाद टीएमसी गुस्से से भरी हुई, बंगाल के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हुगली की है, यहाँ पार्टी कार्यकर्ता गुस्से में दिखे, उन्होंने सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही हमलावरों पर एक्शन की मांग भी की। इस हमले को लेकर बंगाल पुलिस ने सोनारपुर में केस दर्ज किया है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
0: और इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, बंगाल से ही है, जहां पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अपने ऊपर हमले के आरोप लगाए हैं। हमला हुगली का है और आपको बता दें कि टीएमसी नेता अपनी गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। ज्ञापन सौंपने से पहले ही तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी नारेबाजी हुई, बहस शुरू हुई, इसी दौरान कल्याण बनर्जी पर हमला किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी मिल रही है टीएमसी नेता की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उन पर भी हमला किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र जुड़ गए। अनुपम, क्या जानकारी है?
1: जी देखिए, अभी अभी जो खबर आ रही है हुगली के चंडीतला से आ रही है, जहां पर कल्याण बनर्जी जो सांसद है उन पर हमला हुआ है और जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं, उनके सिर के पीछे चोट लगी है। कल्याण बनर्जी ने खुद कहा है कि उनके सिर के पीछे जो वो दावा कर रहे हैं कि किसी पत्थर या किसी बॉल के जरिए मारा गया है, जिससे खून बह रहा है। और ये जो हमला हुआ है ये उस वक्त हुआ है जब वो चंडीतला थाने में ज्ञापन देने जा रहे थे, उनके जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उसके खिलाफ ज्ञापन देने का एक कार्यक्रम था और इसी बीच वहां पर काफी सारे बीजेपी कार्यकर्ता भी एकत्रित हो गए, जैसा कि टीएमसी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। और ऐसे में धक्का मुक्की शुरू हुई, पुलिस भी थी, लेकिन इन सबके बीच में जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, कल्याण बनर्जी के सिर के पीछे एक वार किया गया है और उसी में वो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनको चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन इलाके में तनाव बरकरार है। और कल की घटना के बाद, कल भी एक सांसद को चोट लगी, आज दूसरे सांसद को चोट लगी है, तो ऐसे में पुलिस की व्यवस्था पर भी थोड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि पुलिस आखिर क्यों रोक नहीं पा रही है। कल भी सवाल उठे थे कि अभिषेक बनर्जी जब वहां पहुंचे थे तब पुलिस वहां मौजूद नहीं थी, आज भी ये सवाल उठ रहा है कि पुलिस आखिर क्यों नहीं रोक पा रही है इन सब घटनाओं को।
0: बिल्कुल, एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कल्याण बनर्जी की, तस्वीरें देखिए जरा। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अपने ऊपर हमले के आरोप लगाए हैं और मामला हुगली का बताया जा रहा है। टीएमसी नेता अपने गिरफ्तार नेताओं और साथी कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर यहां ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। ज्ञापन सौंपने से पहले तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में हुई है तीखी बहस और नारेबाजी, इसी दौरान कल्याण बनर्जी पर हमला किया गया है। तस्वीरें सामने आई हैं यहां, हालांकि पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि बुरी तरह से कल्याण बनर्जी घायल हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने अनुपम, अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ बयान दिया गया है क्या?
5: आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात
1: जी, देखिए घटना अभी थोड़ी देर पहले हुई है, इस वजह से अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि कल की घटना के बाद भी पुलिस की ओर से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। बीजेपी के नेताओं के बयान जरूर आए हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कल भी बयान नहीं आया था, आज की घटना के बाद भी ये बयान नहीं आया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही घटना हुई है। फिलहाल कल्याण बनर्जी को चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है, उपलब्ध कराई जा रही है, और एक तरह से छानबीन तो शुरू हुई है। कल की घटना में जैसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो सोनारपुर में घटना हुई थी, आज की घटना की भी जांच होगी। कल की घटना स्वतः स्फूर्त पुलिस ने शुरू की थी उसकी जांच प्रक्रिया। आज की घटना के बारे में थोड़ी देर बाद हो सकता है पुलिस की ओर से कोई इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये घटना अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है, लेकिन जो घटना हुई है उसमें कल्याण बनर्जी घायल हुए हैं, उनके सिर के पीछे चोट लगी है।
0: तो तस्वीरें बयां करने के लिए काफी, और अनुपम हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जिस तरीके से मोर्चा खोलने की बात तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कही गई है, और एक और ये जो तस्वीर है ये बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से जबरदस्त हंगामा अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। क्या ममता बनर्जी की तरफ से अभी इस पर बयान दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सोमवार से वो सड़कों पर उतरेंगे लोगों के बीच में?
1: जी बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस की ओर से कल की घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन की बात कही गई थी, और ममता बनर्जी खुद सोमवार को रानी रासमणी रोड में विरोध प्रदर्शन करने वाली हैं। तो ऐसे में अभी तक तो इस घटना के बाद तो ममता बनर्जी का बयान नहीं आया है, लेकिन कल उनका एक शेड्यूल प्रोग्राम जरूर है, रानी रासमणी रोड में उनका विरोध प्रदर्शन का एक कार्यक्रम है।
0: तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बने रहे अनुपम हमारे साथ। और कल अभिषेक बनर्जी पर जिस तरीके से हमला किया गया था, जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था, और ममता बनर्जी ने कई सवाल उठाए थे, कहा गया था सुनियोजित साजिश के तहत अभिषेक बनर्जी को मारने की कोशिश की गई थी, जिस पूरे मामले में 5 की गिरफ्तारी हुई है। आपको ये भी बता दें कि अभिषेक बनर्जी पर हमले के आरोप में बंगाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि सोनारपुर थाने में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। और सोनारपुर में ही अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे जो चुनावों के दौरान हिंसा हुई थी उसमें घायल परिवारों से मुलाकात करने के लिए, जिस दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी उन पर की गई थी, अंडे फेंके गए थे, नारेबाजी की गई थी और उनकी शर्ट को फाड़ दिया गया था। कहा यह गया था कि काफी चोटें अभिषेक बनर्जी को आई हैं, अस्पताल में उन्हें तुरंत ही भर्ती कराया गया था, जिस अस्पताल में अपोलो में उन्हें भर्ती कराया गया था उस पर भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आरोप यह था कि ठीक से उनका इलाज नहीं किया गया। फिर दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस अस्पताल से भी नाराजगी जाहिर की थी ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा था कि उनका बिना पूरा ट्रीटमेंट किए ही अभिषेक बनर्जी को डिस्चार्ज कर दिया गया, और अगर कुछ होता है तो इसके लिए अस्पताल जिम्मेदार होंगे। तो बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर दिल्ली तक सियासत तेज हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक आवाज में हमले को लेकर बीजेपी को घेरा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ममता राज में पार्टी के नेताओं पर हुए हमलों को गिना रही है।
6: अभिषेक बनर्जी बंगाल की सियासत में अब विपक्ष के दूसरे सबसे अहम चेहरा है। ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी टीएमसी के अघोषित उत्तराधिकारी हैं। लिहाजा पार्टी के अंदरूनी फैसलों में इनकी दखल काफी ज्यादा है।
7: चार मई से पहले तक वो बंगाल के सबसे पावरफुल नेताओं में शुमार थे। ये भले ही टीएमसी सांसद, लेकिन बंगाल में टीएमसी सरकार के दौरान शासन प्रशासन पर इनकी पकड़ जग जाहिर रही है। अब वही अभिषेक बनर्जी भीड़ के गुस्से का शिकार बने। ये हमला दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में हुआ, जहां हाल की विधानसभा चुनाव से पहले तक टीएमसी का दबदबा था। तीस मई को अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचे, वहां चुनाव के दौरान हुई हिंसा में मारे गए संजू कर्मकार के परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द साझा किया। इस मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी बाहर आते हैं। उनके खिलाफ नारेबाजी तेज हो जाती है। हालात को भांपते हुए अभिषेक बनर्जी बाइक पर सवार होकर निकलने की कोशिश करते हैं। निजी सुरक्षा कर्मी और समर्थक उन्हें घेरे रखते हैं, लेकिन सैकड़ों की भीड़ नारेबाजी करते करते धक्का मुक्की करने लगती है। वहां स्थिति ऐसी हो गई कि अभिषेक बनर्जी की बाइक भीड़ के बीच फंस गई। बिगड़ते हालात को देख टीएमसी सांसद ने बाइक छोड़ी और पैदल ही निकलना चाहा। उन्होंने हेलमेट पहनी और वहां से आगे बढ़ने लगे। तभी उन पर हमले शुरू हो गए। एक तरफ से उन्हें थप्पड़ मारे गए तो दूसरी तरफ से अंडे फेंके गए। भीड़ में मौजूद कुछ लोग अभिषेक बनर्जी को पत्थर मारते भी कैमरे में कैद। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को पहले अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ ही देर बाद उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज में सियासी दबाव का आरोप लगाती ममता बनर्जी देर रात उन्हें अपने साथ लेकर घर के लिए रवाना हो गई। बीजेपी और उसके मंत्री हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही गिना रहे हैं कि कैसे ममता राज में बीजेपी नेताओं को टारगेट किया गया। दिसंबर 2020 में डायमंड हार्बर जाते समय जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ था। मई 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कोलकाता में अमित शाह पर पथराव हुआ था। 2016 में दक्षिण 24 परगना में ही रूपा गांगुली को निशाना बनाया गया था। बीजेपी की माने तो पार्टी नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं पर हमले की लिस्ट लंबी है, और अभिषेक बनर्जी पर हमला जनाक्रोश का नतीजा है।
8: पर हुआ है गलत हुआ है। हम तो बार बार अपने कार्यकर्ता को भी बोले हैं और हर वक्त हम लोग बोलते आए हैं, हमारे नेतृत्व भी बोलता है कि आईन को हाथ में मत लीजिए। अब जो लोग भी किए हैं उनको बोलेंगे ये गलत किए हैं, लेकिन आज जो हुआ है वो इसके जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी है। तो आज ये जनरोष है पब्लिक का, जनता का, जिस जनता को आप लोग जूता का नीचे पीस दिए थे।
7: अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद एक बार फिर बंगाल की सियासत सुलग उठी है, जिसकी आहट अब दिल्ली की सियासत तक महसूस की जा रही है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
0: तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और साथ ही अरविंद केजरीवाल, सब विपक्ष के बड़े नेताओं की तरफ से इस हमले की निंदा की गई है और निशाना साधा गया है बीजेपी पर। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
12: Gone! Home run!
11: NHL.
12: Scores!
11: College basketball.
13: He shoots it immediately. He makes it in!
11: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
14: One lap to go.
11: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
14: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
2: आगे आगे
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
4: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
0: Vimal, bolo zuban kesri.
5: 25 saalon se jahan tiki hai desh ki nazar. Mere saath phir se shuru ho raha hai wahi safar. ये खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

0: नौकरी पेशा लोगों के लिए अप्रेजल यानी इंक्रीमेंट का वक्त किसी त्योहार से कम नहीं होता। साल भर की मेहनत के बाद जब सैलरी बढ़ती है तो चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि हाथ में लेटर आने के बावजूद भी लोग उतने खुश नहीं हैं। दरअसल दफ्तरों में चर्चा है कि कागजों पर तो 10% तक का इजाफा दिख रहा है, लेकिन जब सैलरी बैंक अकाउंट में आई तो उम्मीद से कम निकली। इस मायूसी के पीछे की वजह कोई मंदी या कंपनी की कंजूसी नहीं है, ये तो देश के नए लेबर कोड सिस्टम का असर है। नए नियमों के गणित को अगर समझें तो न्यू लेबर कोड के तहत अब कुल CTC का 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होना जरूरी है, यानी अगर किसी की मंथली सैलरी 50,000 रूपए है तो उसकी बेसिक सैलरी सीधे 25,000 रूपए तय हो जाएगी, जबकि पहले कंपनीज बेसिक सैलरी कम रखकर मोबाइल बिल या हाउस अलाउंस जैसे भत्तों में ज्यादा पैसा देती थी और पुराने सिस्टम में कर्मचारियों को घर ले जाने के लिए टेक होम सैलरी ज्यादा मिल जाती थी। अब कंपनीज के इस नए सैलरी स्ट्रक्चर की वजह से टेक होम अमाउंट भले ही कम हुआ हो, लेकिन इसके पीछे कर्मचारियों का एक बड़ा फायदा भी छुपा हुआ है। दरअसल कर्मचारियों के PF और ग्रेचुटी का पैसा हमेशा उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय किया जाता है। नियमों के अनुसार बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने PF अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, यानी बेसिक सैलरी का ग्राफ ऊपर जाने से कर्मचारी के साथ साथ कंपनी का PF योगदान भी बढ़ जाएगा, जिसका सीधा फायदा रिटायरमेंट के समय दिखेगा जब कर्मचारियों के हाथ में एक बहुत बड़ा सेविंग फंड आएगा। इसके साथ ही जो लोग किसी एक कंपनी में लंबा समय बिताते हैं उन्हें मिलने वाली ग्रेचुटी की रकम भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़कर मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो सरकार के इस कदम का मकसद नौकरी पेशा लोगों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। फिलहाल जेब में आने वाले पैसे में थोड़ी कटौती जरूर खल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बेहद फायदेमंद सौदा है। कागजों पर सैलरी का बढ़ना और अकाउंट में कम आना आने वाले दिनों में एक बड़ी बचत के तौर पर सामने आने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अभिषेक बनर्जी के बाद सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला। प्रदर्शन के दौरान सिर में लगी चोट ममता बनर्जी और विपक्ष ने बीजेपी को घेरा। दिलीप घोष बोले, हीरो क्यों बनने निकले। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर। जवाबी फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने का दावा। बकरीद के दिन घेर कर किया गया था सूर्या का खत्म। दिल्ली के मेहरौली में गिरी 5 मंजिला इमारत, 2 की मौत हुई। मलबे से 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने संभाला कार्यभार। साउथ ब्लॉक के लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। एडमिरल केजी स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएसजी की चैंपियंस लीग में जीत के जश्न में हिंसा, आगजनी, पथराव। कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया।

0: एक जंगल जहां कैमरा जैसे जैसे आगे बढ़ता है सभ्यताएं और सदियां पीछे छूटती जाती है।
1: ये जो पूरा वन क्षेत्र है ये किसी समय में गोंडकालीन राजाओं का गढ़ रहा है, गिन्नौरगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट में हमें कई अवशेष मिलते हैं जो परमारकालीन के भी हैं।
0: ऊंचे ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों के घने अंधेरों में से निकलकर सामने आता है वो हजारों हजार साल पुराना इतिहास जिसमें अद्भुत बाघ है।
2: कोई भी ह्यूमन डेड टाइगर अटैक से नहीं हुई।
0: अविश्वसनीय मंदिर है।
3: पानी इसमें से पहाड़ में से आता, कभी खत्म नहीं होता।
0: अकल्पनीय कहानियों से घिरा किला है और हैं वो दावे जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है।
2: गुप्ता जी से कई बार हमारा पैदल भी सामना हुआ, हम खड़े रहे, हम चुपचाप वो अपना रास्ते निकल गए।
4: जंगल में जब हम घूमते हैं तो हजारों आंखें हमें देखती हैं लेकिन हम किसी को नहीं देख पाते।
5: रहस्य और रोमांच के एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सफर पर आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। गिन्नौरगढ़ का ये किला जहां से एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है, रातापानी का ये टाइगर रिजर्व जो देश का सबसे नए टाइगर रिजर्व्स में से एक है। लेकिन यहां की कहानियां इतनी प्राचीन है, यहां के रहस्य इतने गहरे हैं कि पल पल आपको रोमांच से भर देगा।

दुनिया में जब अधिकांश सभ्यताएं या तो थीं ही नहीं, अगर थीं, तो उनका इतिहास अस्तित्व की लड़ाई के लिए जानवरों के साथ टकराव का रहा। लेकिन तब मध्य प्रदेश के बीचों बीच 10,000 साल पहले से बाघों और इंसानों के बीच रिश्ता कुछ और था। तब एक जंगल में इंसान और बाघ सह अस्तित्व की भावना के साथ रहा करते थे। सदियों पहले की वो कहानी आज भी भोपाल के बाघों के साथ दोहराई जाती है। आज मिलिए दुनिया के इकलौते शहरी बाघों से।

0: ये देखिए, ये भोपाल शहर दिख रहा है, भोपाल शहर से लगा हुआ टाइगर का मूवमेंट हुआ है।
1: टाइगर डेंसिटी में ये टाइगर रिजर्व एक अद्वितीय टाइगर रिजर्व है।
0: रातापानी टाइगर रिजर्व के टाइगर्स बाकी एरिया के टाइगर से मुझे लगता है ज्यादा हेल्दी है।
2: आज हम रहस्य और रोमांच के उस सफर पर चलेंगे जिसमें कदम कदम पर रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के दावे हैं। हमारी मंजिल भोपाल से बमुश्किल आधे घंटे की दूरी पर बाघों का वो अभयारण्य है जहां 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि 50 से अधिक बाघ। बाघ को दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी कहा जाता है। वो छुपकर ऐसे हमला करता है कि शिकार को भनक तक नहीं लग पाती। लेकिन यही बाघ इस क्षेत्र में अर्बन टाइगर्स यानी शहरी टाइगर के नाम से मशहूर क्यों है?

हमारे इस सफर में बेहद अद्भुत व्यवहार करने वाले बाघ हैं। बाघ के क्षेत्र के बीचों बीच अविश्वसनीय आस्था के प्रमाण देता महादेव मंदिर। और आज बाघ का घर बन चुका रहस्यमयी किला है, जो कभी बाघ के कलेजे से अकल्पनीय हिम्मत वाली रानी का महल था,

0: कहने को रातापानी टाइगर रिजर्व शहर से लगा हुआ एक जंगल क्षेत्र है, लेकिन हमने सुन रखा था कि यहाँ के चप्पे चप्पे में प्राचीन इतिहास उकेरा हुआ है। गुफाओं की दीवारों पर, पहाड़ों की चोटियों पर, घने पेड़ों के बीच, कुछ ऐसे जैसे शहर में विकास की दौड़ से बेपरवाह हजारों साल पुरानी एक पूरी की पूरी सभ्यता ही यहाँ अपने मूल रूप में रह गई, जिसे आज भी देखा और महसूस किया जा सकता है।
1: अगर आप एक रिजर्व एरिया में जाते हैं तो आप उस जंगल को समझने, उस जंगल को जीने, उस पूरे माहौल को समझने के लिए आप जाते हैं। अभी देखिए, अभी सनराइज हुआ नहीं है, सूर्योदय हुआ नहीं है, और इस समय हम बस निकलने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दिन के समय साइटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ये वो समय होता है जब मुमकिन है पानी पीने के लिए, या फिर जंगल में आराम से विचर रहे हों ये बाघ, और इसीलिए अपने चांसेस को ज़्यादा सुधारने के लिए हम इस समय का इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत को दुनिया का टाइगर कैपिटल कहा जाता है। दुनिया के लगभग 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। रातापानी उसके टाइगर मैप का नया हिस्सा बन चुका है।
2: रातापानी टाइगर रिजर्व में आप सभी का स्वागत है। यहाँ से कोर एरिया चालू हो जाता है। ये 12 किलोमीटर का अपना कोर एरिया रहेगा, जिसमें केरी महादेव तक अपने को टाइगर, तेंदुआ, भालू, ये तीन बड़े एनिमल्स दिखने की भी ज्यादा संभावना है।
0: ये भारत का नया टाइगर रिजर्व है, जिसे 2024 में भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बाद में 2025 में मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व के जुड़ने के बाद भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए। रातापानी का जंगल विंध्य और सतपुड़ा के बीच फैला हुआ ड्राई और मॉइस्ट डेसिड्यूअस फॉरेस्ट। यहाँ सागौन यानी टीक के घने जंगल, बांस के झुरमुट, पहाड़ियाँ, छोटे जल स्रोत और प्राकृतिक कॉरिडोर बाघों के लिए बेहतरीन आवास बनाते हैं। और जब आप ये सोचते हैं कि बस पहाड़ी के उस पार घनी आबादी वाला इंसानी शहर है, तो रातापानी का रहस्य और बढ़ जाता है। और इसी घने जंगल में हम निकल पड़े थे एक ऐसे शिकारी की तलाश में जो दिखता कम है, महसूस ज्यादा होता है।
1: ये पगमक्स है
3: सर, मेल फीमेल दोनों ही लग रहा है। लंबा
1: होता है।
0: हमें बताया जा रहा था कि एक बाघ और बाघिन के पैरों के निशान हैं, जो कुछ दूरी तक धूल भरे रास्ते में नजर आ रहे थे। हम उस ओर ही चल निकले।
2: ये फर्स्ट सुमसर में अभी ज्यादातर टाइगर, भालू, उसकी ज्यादा साइटिंग चल रही है। पानी पी के गया हुआ यहाँ से भी।
0: आगे बंदरों का झुंड था, मोरों का शोर था। जंगल बता रहा था शिकारी शिकार पर है, लेकिन सवाल है कि वो है कहाँ। हमें पता चला कि 2 दिन पहले एक किले के आसपास बाघ को कई लोगों ने देखा था। हम उस किले की ओर बढ़ चले।
1: ये गिन्नौरगढ़ किला, इसका पूरा इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। 18वीं शताब्दी में प्रमुखता में आया था, और जो गोंड राजा निज़ाम शाह का शासन था, उनकी पत्नी, जो बहुत अलग अलग जगह आप मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा, रानी कमलापति, उनका महल भोपाल में बड़ा तालाब की पाल पर आज भी है। और ये किला जो गोंडकालीन स्थापत्य कला का नमूना है।
0: करीब 700 फीट की ऊंचाई पर बना यह विशाल किला गोंड राजाओं के वैभवशाली साम्राज्य का प्रतीक हुआ करता था। ये क्या है?
4: क्लॉक पियर की विस्तार है। इसने

0: हमारा टाइगर एक क्षेत्र से किस क्षेत्र में जा रहा है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो टाइगर वैसे भी इतनी शांति से रहता है कि अगर अभी देख भी रहा हो तो पता नहीं चलेगा।
0: नहीं पता चलेगा,
1: वो छुप कर देख रहा हो।
0: जंगल की एक खास बात रहती है कि हम हजार बार जाएंगे तो हम किसी को नहीं देख पाए, लेकिन हजारों आके हमें देखती हैं।
2: मन में भय और रोमांच दोनों था ये सोचकर कि जिस रास्ते पर टाइगर चला था अभी हम उसी पर चल रहे थे।
3: यहाँ पे नीचे एक खदान है जिसे पहले के जमाने में किसी गुप्ता जी नामक बिल्डर थे, उनकी थी। वो टाइगर अक्सर उसी खदान के आसपास देखा गया टूरिस्टों को, तो उसका नाम पड़ गया गुप्ता खदान, और गुप्ता खदान में रहने वाले टाइगर का नाम गुप्ता जी, तो इसलिए उसे गुप्ता टाइगर कहा जाता है।
1: भले ही ऑफिशियली अलग अलग पहचान हो सबकी,
3: जी जी,
1: लेकिन लोकल्स अपने हिसाब से प्यार से नाम कोई
3: जी जी उसकी एक अलग पहचान है। मैं उसकी जो है, आप लेफ्ट हैंड की मैं आपको पिक्स दिखाऊंगा, तो उसमें स्ट्राइप नहीं है। टाइगर्स की जो पहचान होती है कि दोनों लेफ्ट और राइट की स्ट्राइप से होती है, लेकिन गुप्ता जी जो हम कहेंगे तो वो स्ट्राइपलेस टाइगर हैं।
1: अच्छा।
3: जो उनको एक अलग टाइगर बनाती है, और इसके अलावा वो अल्फा मेल हैं। हाँ। अल्फा मेल ये कहेंगे कि काफी सारी मेल यहाँ पे हैं टाइगर्स, उनमें वो डोमिनेंट है। हाँ। और काफी ज्यादा वेट, और उसने काफी लंबी टेरिटरी, क्योंकि वो यहाँ से लेके वो कम से कम टाइगर रिजर्व की 6 या 7 बीटे कवर करता है।
1: अच्छा।
3: जी औसतन उसका नॉर्मली एक टाइगर का एरिया 17-18 स्क्वायर किलोमीटर का हम मानते हैं, पर हाँ। गुप्ता जी जो जिनका हम नाम ले रहे हैं, हाँ। वो 25 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तो आसानी से उन करते। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हम आगे बढ़े और गुप्ता जी हमारे दीदार के लिए।
2: भोपाल के उदय के साथ गिन्नौरगढ़ रियासत का अस्तित्व खत्म होता चला गया। बाद में गोंड साम्राज्य का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में रह गया और अधिकांश हिस्सा अब छत्तीसगढ़ में शामिल हो चुका है। लेकिन रियासत के जाने के बाद भी बाघ बाकी रह गए, जो आज भी इस किले और जंगल में अपनी रियासत चला रहे हैं।
1: रातापानी में रहस्य और रोमांच की कहानी का एक सिरा जमीन के नीचे से भी जुड़ता है। ये एक सुरंग है, और ये सुरंग जो है ये जोड़ती है इस बावड़ी को जिस किले में हम, गिन्नौरगढ़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो यहाँ पर लोक कथाओं के अनुसार जो रानी कमलापति थी वो इसका इस्तेमाल किया करती थी आने के लिए। और अब अगर यहाँ पर आप इस बावड़ी को देखेंगे तो ये गर्मी के इस महीने में भी आपको पूरी तरीके से लबालब भरे हुए, ये और इसके साथ एक छोटा सा हिस्सा जलाशय का जो आपको नज़र आ जाता है। और केवल इतना नहीं है, वहाँ पर थोड़े थोड़े कुछ रुकावट है उसमें, लेकिन अगर हम पूरा नीचे की तरफ देखते हैं इसको, तो इसके नीचे 2 मंजिल और हैं, 2 मंजिल और इसके नीचे। और देखिए कितना सुंदर निर्माण यहाँ पर जंगल के बीचों बीच, ये चोर बावड़ी।
2: किले के ऐतिहासिक महत्व को बताते हुए अब भी कई अवशेष वहां मौजूद हैं। उनमें से एक है चोर बावड़ी। बताया जाता है कि चोर बावड़ी जैसे करीब 25 जल स्रोत किले में पानी की व्यवस्था के लिए पहाड़ों पर बनाए गए। अद्भुत है वो इंजीनियरिंग जो सैकड़ों साल पहले भी पानी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देती है। पर इतिहास की इन खूबसूरत धरोहरों के बीच भी हम प्रकृति के सबसे लाजवाब प्राणी को देखने को आतुर थे, और उन्हें ढूंढने के सफर के दौरान कई रोमांचक कहानियां सुन रहे थे।
1: तो यहाँ जो रातापानी टाइगर्स हैं,
4: जी,
1: वो बाकी एरिया के टाइगर्स से आपको क्यों डिफरेंट लगते हैं?
4: रातापानी टाइगर रिजर्व के टाइगर्स बाकी एरिया के टाइगर से मुझे लगता है ज्यादा हेल्दी हैं।
1: हाँ।
4: ज्यादा स्वस्थ हैं, और फिजिकल
1: खाना
4: उपलब्ध है। फिजिकल अपीयरेंस में भी आप देखेंगे इनका हेल्थ ज्यादा है।
1: टाइगर की वो कौन सी ट्रेट्स होती हैं जो बाकी वाइल्ड कैट से, बिग कैट से उसको अलग बनाती हैं?
4: सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा फुर्तीला है, और उसका अपना एक टेरिटरी होता है। जहाँ भी टाइगर टेरिटरी बनाता है, नया टाइगर नई टेरिटरी के लिए उसको कई जगह तरह से मार्क करता है। उसमें यूरिनेशन करेगा, खरोच का निशान बनाएगा, और वो दूसरे टाइगर्स के लिए इंडिकेशन होता है ये मेरा टेरिटरी है। वो तब तक उसका टेरिटरी होगा जब तक कि कोई उससे पावरफुल टाइगर वहां ना आ जाए, फिर दोनों में लड़ाई होती है।

0: हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फॉर्मूला यही लागू होता है। आकर जिस जो टेरिटरी जिसका होगा वो सबसे पावरफुल होगा।
1: आपका वो कौन सा अनुभव है जो आपके साथ रह गया यहाँ पे टाइगर्स के साथ?
0: एक बार हम लोग जंगल में ही थे तो एक मादा उनके साथ तीन टाइगर के बच्चे थे, वो हमारी गाड़ी को चेस करने लगे।
1: अच्छा,
0: बच्चे उनके कारण उनकी माँ को साथ में चलना पड़ा, आना पड़ा। हमने फिर अपनी गाड़ी को काफी पीछे तक लेकर गए, तब भी हमने देखा कि वो जो उनकी माँ थी वो बच्चों को खदेड़ के एक साइड लेके गई।
1: अच्छा।
0: नहीं तो वो हमारे तरफ ही चले आ रहे थे, वो उनको इंस्टिंक्ट है, बच्चे हैं।
1: वैसे जंगल में बाघ को देखना आसान नहीं होता, क्योंकि बाघ सिर्फ ताकतवर शिकारी ही नहीं छिपने में भी माहिर होता है। घने जंगल में वो इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। अक्सर बाघ ही पहले इंसान को देख लेता है। उसकी चाल इतनी शांत होती है कि सूखे पत्तों पर चलते हुए भी आवाज नहीं होती। बाघ कैमोफ्लाज का मास्टर होता है। उसके शरीर की काली पीली धारियां जंगल की घास, झाड़ियों और पेड़ों में ऐसे घुल जाती हैं कि वो आंखों के सामने होकर भी नजर नहीं आता।
2: टाइगर के ऊपर जो स्ट्राइप्स होती हैं वो अपने आप में यूनिक होती है। एक टाइगर से दूसरे टाइगर की स्ट्राइप्स कभी भी मिलती जुलती नहीं होती है। उसी से टाइगर का आइडेंटिफिकेशन होता है। और जो एस्टिमेशन अभी चल रहा है उसमें भी टाइगर की धारियों से, उनके चेहरे के मार्क से हम उनको पहचानते हैं। और धारियों का विशेषकर कारण होता है उनका कैमोफ्लाज। वो एक प्रेडेटर होता है, शिकारी है, शिकारी प्राणी है वो, तो उसको सबसे जरूरी होता है अपनी स्टेल्थ मोड को। उस स्टेल्थ मोड के लिए वो छुपना होता है, छुप के ही शिकार करता है। तो इसलिए वो छुपने के लिए वो धारियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जंगल आप जैसे ही देख रहे हैं वो छुपा रहता है लेकिन दिखता नहीं।
1: हमने बाघ को अब तक नहीं देखा था, इसका ये मतलब कतई नहीं कि बाघ ने हमको नहीं देखा था। गर्मी बढ़ रही थी और कुछ देर को सुस्ताने के लिए हम जंगल के बीचों बीच वन विभाग के कैंप ऑफिस पहुंचे।
3: ये जो दस्तावेज, मैं कहूँ कि ये रिकॉर्ड्स जो यहाँ पर हैं, टाइगर्स ऑफ भोपाल लैंडस्केप, इसमें काफ़ी मतलब खजाना है ये, मुझे लगता है कि यहाँ की जानकारियों का।
0: ये भोपाल, राजधानी भोपाल के आसपास के तीन डिवीज़न है, फॉरेस्ट डिवीज़न, भोपाल, सीहोर और अब्दुलगंज, ये मिलाकर भोपाल लैंडस्केप कहलाता है। ये देखिए, ये भोपाल शहर दिख रहा है, भोपाल शहर से लगा हुआ टाइगर का मूवमेंट हुआ है।
3: अच्छा, मतलब ये पूरा पीछे शहर है?
0: जी, भोपाल शहर है।
3: और इतना करीब टाइगर?
0: इतना करीब है। भोपाल में कलियासोत डैम है और जो भोपाल से लगे हुए शहरी क्षेत्र हैं,
3: हाँ,
0: वहाँ तक टाइगर का मूवमेंट होता है।
3: अच्छा
0: जी,
3: तो इसीलिए इन्हें अर्बन टाइगर्स,
0: अर्बन टाइगर्स
3: कहा जाता है,
0: इनको इसीलिए कहा जाता है। ये भोपाल के अर्बन एरियाज के फोटोग्राफ्स हैं,
3: हाँ,
0: जिनमें टाइगर का मूवमेंट है। जो भोपाल के नजदीक लगे हुए फॉरेस्ट एरियाज हैं,
3: हाँ,
0: इन फोटोज में वही दिखाएगा।
3: तो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट?
0: कॉन्फ्लिक्ट तो ऐसे सच नहीं हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग पर्याप्त काफी होती है, और जैसे ही मूवमेंट होता है,
3: हाँ,
0: तो लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरकत में आता है और फिर लोगों को उस हिसाब से जागरूक किया जाता है, समझाइश दिया जाता है। भोपाल,
3: हाँ,
0: के लोग भी काफी जागरूक हैं।
3: अच्छा।
0: वो एरिया को बंद कर देते हैं,
3: हाँ,
0: पब्लिक मूवमेंट बंद कर देते हैं, तो टाइगर को अपने आप मूव करके, क्योंकि जंगल का जानवर है, वो फिर वापस जंगल में चला जाता है।
3: अच्छा।
0: लेकिन मॉनिटरिंग और लोगों को समझाइश बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जंगल अच्छा है, सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त हैं, टाइगर्स को जिंदा रहने, सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छा पर्यावरण और वातावरण मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है।
1: जब तक हम वापस निकले तापमान थोड़ा कम हो रहा था, यानी अगर हम किसी वाटर होल के नजदीक जाकर इंतजार करें तो टाइगर देख पाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। पर चुनौती अब भी ये थी कि बाघ की मौजूदगी उसके पगमार्क अलार्म कॉल या शिकार के निशानों से ही पता चल सकती है। हमारी उम्मीद बढ़ी और जब हम आगे बढ़े तो हमारा उत्साह कुछ और बढ़ा।
3: दोनों तरफ बैम्बू इस तरह के हैं कि आपको एक बैम्बू टनल, एक नेचुरल बैम्बू टनल की तरह दिख रहा है। ये कुछ और निशान हमें दिख रहे हैं, पर ये सिंगल टाइगर के हैं। अभी जैसे हमने एक पैर देखा था, यानी एक टाइगर और टाइग्रेस को देखा था, लेकिन यहाँ पर और पैरों के निशान हैं। अब हम इस दिशा में जाकर इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पगमार्क्स हमने देखे हैं, फ्रेश पगमार्क्स हैं, इसीलिए क्योंकि गाड़ी के पहिए के निशान थे उसके ऊपर वो पगमार्क्स हैं। और इमरान भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी चीतल की कॉल उन्हें सुनाई पड़ी है। हम लोगों को चूंकि आदत नहीं है इसलिए समझ में नहीं आता है, लेकिन हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं। चलें,

0: आगे इधर क्या?
1: सर यहाँ पे अपने को ताजे पगमार्क तो मिले हैं, ये जंगल भी आप देख रहे हैं तो काफी घना है। हाँ। और ये ठंडा वाला एरिया है, आगे सूसर भी है, तो गर्मी में टाइगर को पानी पसंद रहता है और वो मतलब
0: अच्छा, पानी पीने की जगह है यहाँ पे।

0: देखिए बहुत ज्यादा छांव होती नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा घने पेड़ वाला हिस्सा आपको दिख रहा है तो वहां पर छाया है और पानी के पास थोड़ी सी, थोड़ा तो 1-2 डिग्री। अच्छा ओहो, पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे, थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल साइड में बैठा है।
1: जैसे अगर टाइगर बड़ा है और उसको शिकार करने में भी क्या ज्यादा समय लगता है, वो तो वो बड़े शिकार ढूंढता है, जैसे नीलगाय हुई।
0: अच्छा,
1: मतलब उसको हफ्ते में मतलब एक बार शिकार करना है तो 4 दिन तक वो भोजन करेगा। पहले दिन वो शिकार करके थोड़ी देर ऐसे जब सोसर पर बैठा हुआ है तो ये शिकार करके आके बैठेगा थोड़ी देर, फिर 2-1 दिन तक खाएगा।
0: क्या कहा जाता है, धीरे ही बोलना चाहिए।
2: क्योंकि क्या गाड़ी से या इनसे डिस्टर्ब नहीं होते, वो अपन लोगों की आवाज़ से ज़्यादा डिस्टर्ब होते। कोई भी ड्राइवर अभी जैसे ये बैठा मान लो, फिर बैठा रहेगा शांत, अपन है तो बैठा रहेगा घंटे, अपन बोलेंगे ना तो फिर वो उठ के चल जाएगा। इसलिए बोलते हैं साफ पानी, ज़्यादा हल्ला नहीं करनी, चुपचाप से देखते रहो बस शांति से।
0: वैसे भी हम लोग मेहमान हैं,
2: हम मेहमान हैं, सही है, घर उसका है।
0: अच्छा, जितनी देर वो यहाँ बैठा रहेगा
2: जी,
0: कोई नहीं आएगा और जानवर नहीं आएगा,
2: दूसरा कोई जानवर नहीं आएगा। जैसे बाई चांस कोई आएगा भी उसे देख के वापस हो जाएगा या कुछ चिल्ला के हो जाएगा, लेकिन आएगा नहीं यहाँ पर। लंगूर भरी ऊपर आ जाएंगे पेड़ों पर, पेड़ों पर से कॉलिंग करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन नीचे नहीं उतरेंगे। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना कि हमें कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, तो उससे निराश होने की वजह उनको ये सोचनी चाहिए कि उनके टाइगर के चांस और बढ़ गए। हाँ, क्योंकि टाइगर अगर हर भी बोर नहीं दिख रहा मतलब टाइगर मूवमेंट है आसपास। अगर टाइगर मूवमेंट है तो कोई भी शाकाहारी जानवर आसपास आपको नहीं दिखेगा।
0: दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं टाइगर। इतनी ताकत और इतनी फुर्ती किसी और में देखने को नहीं मिलती है। हाँ, अभी आप सुस्ताते हुए जरूर देख रहे हैं क्योंकि इस समय उसे शिकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये शिकार करने पर आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इन्हें जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। जितनी बड़ी संख्या में भारत में टाइगर्स मौजूद हैं, पूरी दुनिया में जो फ्री फॉरेस्ट्स होते हैं उसमें आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। कॉन्जर्वेशन की जो एफर्ट्स भारत में आपको दिखते हैं वो आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं दिखेंगे। हमारे जो बंगाल टाइगर्स हैं, हमारे जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, वो आपको भारत के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जंगलों में अगर दिखेंगे, जैसे रातापानी के इस जंगल में इस समय हमें नज़र आ रहा है।

0: बाघ सिर्फ एक बड़ी जंगली बिल्ली नहीं है, ये प्रकृति की सबसे परफेक्ट किलिंग मशीन है। इसे केवल ताकत के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि शांत, सटीक और बेहद असरदार शिकार के लिए तैयार किया गया है।
1: टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल होता है, अकेला रहता है और उसके क्षेत्र में वो इकलौता रहता है, वो सबसे टॉप प्रेडेटर। यदि उसके क्षेत्र में दूसरा टाइगर आता है जो उसी के बराबर का होता है, तो वो उसको मारता है, उसको फाइट करता है, तो या तो उनमें से एक टाइगर मर जाते हैं या वो टाइगर भाग जाता है।
0: बाघ के शरीर का हर हिस्सा शिकार करने के लिए बिल्कुल फिट है। उसकी मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो अपने से 3 से 4 गुना भारी शिकार को भी अकेले गिरा सकता है। उसके पैरों में इतनी ताकत होती है कि 250 किलो के इस शिकारी को एक छलांग में 10 से 12 मीटर तक उछाल देती है। उसका एक पंजा हिरण की गर्दन तोड़ सकता है और उसके जबड़े की ताकत 1050 PSI से भी ज्यादा है, इतनी ताकत कि हड्डियां कागज की तरह फट जाए। बाघ झुंड में शिकार नहीं करता, वो योजना बनाता है, समय का इंतजार करता है, हर कदम की गणना करता है। एक गलती का मतलब है भूखे रह जाना। कोई बैकअप नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। कम रोशनी में उसकी आंखें इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकती हैं। उसके कान पत्तियों की सबसे हल्की सरसराहट तक सुन लेते हैं। बाघ आक्रामक नहीं होता, वो सिर्फ अपने इलाके को लेकर सतर्क होता है। वो तब मारते हैं जब जरूरी हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है।
2: टाइगर को लेकर दरअसल बहुत सारी चीजें हैं जो कही जाती हैं। हम आपको ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातें और दिखाते हैं।
0: बाघ दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड कैट है। उसका वजन 350 किलो के पार जा सकता है। रातापानी के टाइगर भी बाकी टाइगरों की तुलना में काफी सेहतमंद होते हैं।
1: वेट तो अगर पाउंड्स में पूछेंगे तो मोर देन 400 पाउंड्स, एंड वेट अगर किलोज में पूछेंगे तो 230 टू 250 केजी का तो उसका वेट होता है। और उसकी जो हाइट रहती है फ्रॉम ग्राउंड से अगर उसकी हाइट देखेंगे तो वो 3.5 फीट के लगभग होता है, और उसकी लंबाई हेड टू टेल बोन तक जो उसकी लंबाई है तो 6 फीट से भी ऊपर है।
0: कैट फैमिली के बाकी सदस्यों से अलग टाइगर्स अच्छे तैराक होते हैं और उन्हें पानी में रहना काफी पसंद है।
3: पानी बहुत पसंद करता है टाइगर। आप देखेंगे सुंदरवन में तो आपको तैरते हुए टाइगर वहां पे दिखते ही हैं। यहाँ पे भी हमारे सोर्सर्स में आपको टाइगर, आप गर्मी के समय में अगर दोपहर में आएंगे तो आपको नहाते हुए और एंजॉय करते हुए टाइगर, मतलब बहुत अच्छा तैराक भी होता है। तो जब बाढ़ के पानी में आप देखेंगे तो वो कई कई किलोमीटर तैर जाते हैं।
0: फुल स्पीड पर टाइगर की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, यानी औसत गाड़ियों को वो अपनी रफ्तार से पछाड़ सकते हैं। आज पूरी दुनिया में टाइगर के 5 सब स्पीशी हैं: साउथ चाइना टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, सुमात्रन टाइगर, साइबेरियन टाइगर और बंगाल टाइगर। 100 साल पहले तक टाइगर पूरे एशिया में मिला करते थे, लेकिन शिकार और इंसानी अतिक्रमण की वजह से अब वो उस समय की तुलना में केवल 7% हिस्से में बच गए। तसल्ली भर बाघ को देखने और समझने के बाद हम वापसी की ओर निकल रहे थे, पर जरा रुकिए, इस रहस्यमयी जंगल का एक और पड़ाव बाकी है।
2: तो यहाँ बहुत मान्यता है।
4: हाँ, केरी महादेव की मान्यता है, इसको केरी महादेव भी बोलते हैं। यहाँ पे आम के पेड़ और पहले बहुत पुराने जो लोग रहते थे ना, मतलब टाइगर का भी यहाँ पे कहर था, इसलिए दोनों को मिला के केरी का पेड़ और महादेव जी का मंदिर को मिला के इसको केरी महादेव बोलते हैं।
2: अच्छा,
4: जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, उनका बहुत मान्यता है यहाँ पे
2: जलधारा के नीचे महादेव।
4: 14 किलोमीटर से ज्यादा की सफारी करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो जिसमें अपने को कोई सा भी नेचुरल वॉटरफॉल या नदी वगैरह कुछ भी नहीं मिली। पर यहाँ पे ये 12 महीने चलता रहता है, बस थोड़ी गर्मी के कारण थोड़ा कम हो जाता है। और यहाँ पे
2: लेकिन जल आना कभी भी खत्म नहीं होता है,
4: जल आना कभी भी खत्म नहीं होता। और यहाँ का जो जल है ना, अपन कभी अपने शरीर में भार वगैरह जाता है, बुखार वगैरह जाता है, या जो बोलते हैं किसी का थाया वगैरह जाता है यहाँ पे नहाने मात्र से दूर हो जाता है।
2: ऐसा नहीं है कि अभी बारिश का मौसम है, अभी बहुत भीषण गर्मी है, आप समझेंगे कहीं पर अगर पानी हो भी तो वो भी सूख गया हो, लेकिन यहाँ पर कभी भी पानी आना बंद नहीं होता है। ये इस पेड़ के जड़ों से होते हुए प्राकृतिक रूप से यहाँ पर महादेव का अभिषेक निरंतर चलता रहता है, बारहों महीने चलता रहता है। और ये टाइगर टेरिटरी ही है, लेकिन उस सब के बीच में ये एक अद्भुत रहस्य अपने आप में ये भी।

0: यहाँ बियावान जंगल में विराजमान महादेव का जल अभिषेक करने के लिए बारहों महीने जल की सहस्त्र धाराएं गिरती रहती हैं। चाहे जितनी भी गर्मी पड़े लेकिन जलाभिषेक का क्रम कभी नहीं टूटता।
1: चलो आगे चलते। प्रणाम बाबा जी। हर हर महादेव।

0: ये कहाँ से आता है पानी?
1: जी, पानी इसमें से पहाड़ में से आता है।
0: अच्छा, हाँ। कभी खत्म नहीं होता है?
1: कभी खत्म नहीं होता। ये तो जय अखंड धूनी धार जा रही, तुम नहाते होते जैसा शंकरी बजा रही। बहुत मन हो तो पार्वती मैया बाबा काल भैरव बाबा गुफा पार्वती, और जो जिंद बाबा को धूना जो जल रहा जो सामने, जो जिंद बाबा को धूना है
0: जी,
1: वो पीर निशान लग रहा, वो पीर बाबा को स्थान है।
0: अच्छा,
1: ये शनि महाराज को स्थान, कालका मैया को, पार्वती मैया, पूरे 64 योगनी का मंदिर है वो 64 योग। फिर इसके बाद में महाशिवरात्रि फागुन आता, फागुन में महाशिवरात्रि को 3 दिन को मेला भरता
0: जी।
1: 3 दिन का महाशिवरात्रि जो धार्मिक लोग आते हैं यहाँ भंडारे करते हैं।
2: कुछ लोगों का दावा है कि महादेव के जलाभिषेक के लिए पहाड़ों के ऊपर से पार्वती, गंगा, नर्मदा, जमुना, गोमती, क्षिप्रा और सरयू नदी का जल अपने आप आता है। यहाँ जो शिव स्थान है वहाँ एक आम का पेड़ है जिसे कैरी भी कहा जाता है, जो सैकड़ों साल पुराना है, जिसकी वजह से लोगों ने इस मंदिर को कैरी महादेव का मंदिर कहना शुरू कर दिया।
0: ऊपर का हिस्सा यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जैसे नीचे, अब हम उससे काफी ऊपर आ चुके हैं, लेकिन चूंकि ये एक पूजनीय स्थान है इसीलिए अपने जूतों को उतार कर हम ऊपर की ओर आगे बढ़े हैं। यहाँ पर, यहाँ से होता हुआ ये झरना नीचे की तरफ जा रहा है जहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है। ये पूरा पर्वत आप देखिए, मतलब ये चट्टान देखिए, और उन चट्टानों के बीच गुथे हुए वो जड़ देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं जटाशंकर महादेव यहाँ पर, जो शिव जी के जटाएं हैं वो आपको यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि प्रतीत होती है, और स्वयं साक्षात महादेव एक रूप में दिखते हैं क्योंकि वो जटाएं, उनमें से निकलती हुई गंगा की धारा, और यहाँ पर एक प्राकृतिक जलाभिषेक का दृश्य अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है।
2: ये ऐसे था जैसे एक पेड़ ने पहाड़ की शक्ल ले ली, या फिर जैसे पूरा पहाड़ ही पेड़ बन गया। कैरी महादेव सामने थे और उन पर गिरती प्राकृतिक जलधाराएं, जरा सोचिए। आज जिस तरह हम इस जंगल में आए हैं उस तरह सैकड़ों साल पहले जब ना रास्ते होते होंगे और कदम कदम पर बाघों सहित जंगली जानवरों का खतरा रहता होगा, तब कैसे पूजा संभव हो पाती होगी। टाइगर रिजर्व बनने के बाद अब यहाँ साल में 2 बार ये मंदिर खोला जाता है, एक शिवरात्रि को और दूसरा भूत अमावस्या के दिन। तब यहाँ मेला लगता है और खूब भक्त जुटते हैं। रातापानी के अनगिनत रहस्यों में ये भी एक अद्भुत रहस्य ही है, पर सबसे सुंदर पहलू वो कहानी है जो भारतीय परंपरा में सह अस्तित्व की, बाघों और इंसानों की कहानी, कभी गिन्नौर गढ़ के किले से निकलती हुई, आज भोपाल की सीमाओं से लगती हुई।
0: रातापानी के जंगलों में एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सफर के बाद अब हम वापस निकल रहे हैं इंसानी जंगलों की ओर, लौट रहे हैं इंसानी जंगलों की ओर। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन हितेश कुमार और मनीष झा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज के साथ फैंस ने जताया भरोसा। मैच एनालिसिस मस्ती मजाक और बैंटर मेरे साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक। कोई नहीं है दूर दूर तक मैदान में सिर्फ स्पोर्ट्स तक।
4: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या। सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे, लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
1: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट लाके दो। तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरा क्या, तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने, 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसा क्यों कहा।
0: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
2: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पर कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने घेर रखा है, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5 से 6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने की आवाज आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर, उसमें घुसा दिया। तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार दिया।
0: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।

आज आईपीएल का फाइनल मुकाबला है, गुजरात टाइटंस और डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के बीच में टक्कर है और आरसीबी पर खिताब बचाने का दबाव तो है ही, वहीं गुजरात की टीम 2022 को दोहराने का प्रयास करेगी।

0: सुपर संडे का सुपर मुकाबला आज होगा सितारों का हल्ला। विराट की टीम फिर बनेगी चैंपियन। फाइनल में शुभमन की सीना दिखाएगी दमखम। सालों की मेहनत, दो महीने का महायुद्ध, गुस्सा, खुशी, मायूसी, जोश, जुनून, आज सबका हिसाब होगा, क्योंकि आईपीएल में आज है कयामत की रात। और ये कितना दिलचस्प है कि लीग दौर की दो टॉप टीमें ही प्लेऑफ की चुनौती पार करते हुए खिताबी मुकाबले तक आ पहुंची हैं। एक तरफ है रजत पाटीदार की कप्तानी में 2025 में खिताब जीतने वाली बेंगलुरु की टीम, तो दूसरी तरफ 2022 में अपने पहले ही सीजन में चैंपियन बनने वाली गुजरात की टीम, जो आज अपने घरेलू मैदान पर सबसे बड़ा मुकाबला खेलने उतरेगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज दोनों ही टीमों के कई सितारों का जलवा देखने को मिलेगा। विराट कोहली के लिए ये सीजन शानदार रहा है। उन्होंने 15 मैच में 164 की स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर की स्विंग ने बल्लेबाजों को खासा परेशान किया है। इस सीजन 15 मैचों में उन्होंने 26 शिकार किए हैं। उधर गुजरात के सितारों ने भी इस साल खूब गदर काटा है। उसके दोनों सलामी बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में हैं। कप्तान शुभमन गिल ने इस सीजन 15 मैचों में 164 की स्ट्राइक रेट से 722 रन बनाए हैं, जबकि रबाडा ने 16 मैचों में 28 विकेट लिए हैं। बेंगलुरु ने कई सालों के लंबे संघर्ष के बाद चैंपियन होने का गौरव हासिल किया था, जबकि गुजरात की टीम अपने पहले ही सीजन में खिताब जीत गई थी। आज दोनों ही टीमें अपना दूसरा खिताब जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, तो तैयार हो जाइए एक शानदार शाम का गवाह बनने के लिए, जहां गेंद और बल्ले की जंग दिल की धड़कनें तेज करने वाले रोमांच की गारंटी लेकर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
1: और ये खबर है पेरिस से, जहां जश्न और उपद्रव एक साथ देखने को मिला है, क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएसजी की चैंपियंस लीग जीत के बाद जश्न के बीच हंगामा हुआ है। हजारों प्रशंसक सड़कों पर उतर आए थे, कई जगहों पर आगजनी हुई है, पुलिस के साथ झड़पों की खबरें हैं। और आपको बता दें कि कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था, 400 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर पीएसजी ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया है। उसके बाद जश्न की तस्वीरों के साथ साथ उपद्रव की तस्वीरें भी देखी गई हैं। जबरदस्त तरीके से हंगामा लोगों ने सड़कों पर उतर कर किया है, लैंप पोस्ट पर चढ़ गए थे, चारों तरफ जो वाहन थे उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस बल भारी मात्रा में सड़कों पर उतारना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, 400 से ज्यादा लोगों को, हंगामा करने वालों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जीत के जश्न में किस तरीके से लोग झूमते हुए नजर आए, जीत के जश्न में डूबे हुए लोग नजर आए, फैंस ने फिर कैसे आतिशबाजी की है, उसके बाद सड़कों पर उपद्रवी उतर आए, आगजनी की गई, आतिशबाजी के बाद वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि एफिल टावर को भी जीत के रंग बिरंग दिया गया था, बाद में कई जगहों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा आग बुझाने के लिए, और कई जगहों पर आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद लोगों को तितर बितर किया गया है। 400 से ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है गिरफ्तार किया गया है। और अब हम बात करेंगे देश में मौसम के मिजाज के बारे में, जो पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि राजस्थान में धूल भरी आंधी और तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है, तो कई इलाकों में दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी बड़ी कम हो गई थी। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई विजिबिलिटी कम होने की वजह से। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दे दी है, मौसम सुहाना हो चुका है और तापमान में गिरावट है। दूसरी ओर पहाड़ों की अगर हम बात करें तो वहां बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे ठंड एक बार फिर से लौट आई है और पर्यटक बर्फीले नजारों का आनंद ले रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का यह बदलाव अलग अलग अनुभव दे रहा है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेतीला तूफान, ताजा बर्फबारी, झमाझम बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर को गर्मी से राहत। तो राजस्थान में आज जो हुआ वो किसी आम आंधी का मंजर नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो थार का रेगिस्तान अपने पूरे रौद्र रूप में जाग उठा हो। दोपहर के उजाले को धूल के विशाल बवंडरों ने निगल लिया था, सूरज गायब हो गया था, दिन में ही रात उतर आई थी। कई लोगों को हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी तो कहीं आसमान में सिर्फ रेत का साम्राज्य नजर आया। चुरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर और सीकर समेत कई जिलों में धूल भरी तूफान की आंधियों ने जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया था।
2: धूल का बवंडर, जहां आसमान से बादल नहीं बल्कि रेत का कहर बरसा, कुछ ही मिनटों में सूरज गायब हो गया और पूरा प्रदेश धूल के समंदर में डूब गया। सबसे खौफनाक तस्वीरें सामने आईं चूरू और सरदार शहर से, जहां दोपहर 2 बजे ऐसा अंधेरा छाया कि वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा, कुछ मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो गया। जोधपुर में रेत की दीवार जैसी आंधी शहर पर टूट पड़ी, धूल के गुब्बार ने पूरे शहर को निगल लिया। अजमेर में पहले रेत का तूफान आया, फिर बारिश ने दस्तक दी, लेकिन तब तक जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। राजधानी जयपुर भी इस रेगिस्तानी तूफान से नहीं बची, आंधी ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बीकानेर, नोखा, कोलायत और खाजूवाला में तेज हवाओं के साथ काले बादलों और धूल के गुब्बार ने आसमान को ढक लिया। लोगों को दिन में रात जैसा मंजर देखने को मिला। फतेहपुर शेखावाटी में उठा रेत का महाबवंडर, जिसने सीकर, चूरू और आसपास के इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। हर तरफ सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दी। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान की तरफ से आया करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला रेत का बवंडर, 30 मिनट तक चलता रहा धूल का तूफान। कई जगह ट्रांसफार्मर गिरे, पेड़ उखड़े, होर्डिंग उड़ गए। हालांकि बाद में बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू से लेकर जयपुर, अजमेर से लेकर जोधपुर, राजस्थान का बड़ा हिस्सा इस रेगिस्तानी कहर की चपेट में रहा। रेत के बवंडरों ने सिर्फ आसमान नहीं ढका बल्कि कुछ देर के लिए जिंदगी की रफ्तार भी रोक दी और याद दिला दिया कि जब थार जागता है तो पूरा राजस्थान उसकी ताकत महसूस करता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
3: From the New York Times, I'm Michael Barro. This is The Daily.
2: Smartless.
4: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
2: Marketplace.
5: The big three on the program today, or, you know, the big three of
2: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

अभिषेक बनर्जी के बाद सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला। प्रदर्शन के दौरान सिर में लगी चोट। ममता बनर्जी और विपक्ष ने बीजेपी को घेरा। अब तक 5 गिरफ्तार। बीजेपी में बैठकों का दौर। शाम 5:30 बजे राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। कल 1 बजे नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान से पहले बुलाई गई बैठक। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर। जवाबी फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने का दावा। बकरीद के दिन घेर कर किया गया सूर्या का खून। दिल्ली के मेहरौली में 5 मंजिला इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या 4 पहुंची। मलबे से निकाले गए 8 लोग गंभीर। सीएम रेखा गुप्ता ने रेस्क्यू का जायजा लिया। और नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने संभाला कार्यभार। साउथ ब्लॉक के लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। एडमिरल केजी स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। 12 साल भारतीय राजनीति का एक ऐसा दौर जहां चुनाव से सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं रहे, बल्कि नेतृत्व, छवि और जन भावना की सबसे बड़ी लड़ाई बन गए। नरेंद्र मोदी ने हर चुनाव के साथ राजनीति की शैली, प्रचार का तरीका और जनता से संवाद का स्वर बदल दिया। 2014 में बदलाव की लहर, 2019 में राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व का संदेश और 2024 में तीसरी बार सत्ता तक वापसी। आज कहानी नरेंद्र मोदी की जीत की।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया।
2: 14 में जो लहर थी, क्या उसे आप देख रहे हैं? पिछली बार आप चैलेंजर थे, इस बार इनकम्बेंट है।
3: जो हमारे विरोधी थे, उनका गालियों का फोकस एक ही, नरेंद्र मोदी।
1: आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा। माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। भारत माता की, भारत माता की।
0: नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सिर्फ सत्ता नहीं संभाली, बल्कि देश की दिशा और चर्चा दोनों को बदल डाला। संघर्ष की जमीन से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को राष्ट्रनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। ये सफर समर्थकों के लिए विश्वास की कहानी रहा, तो विरोधियों के लिए लगातार चुनौती। कहानी सिर्फ सरकार के 12 साल की नहीं है, कहानी उस नेतृत्व की है जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर और तेवर दोनों बदल दिए।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
4: 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब अपने कान से दिया। हर उस हमले को ही हौसले में बदल दिया जिसने उन्हें घेरा। हर उस हवा का ही रुख बदल दिया जो उनके दामन को उड़ाने के लिए बही।
5: ये सारे विपक्षी दल सुबह शाम मोदी मोदी मोदी मोदी, बारिश नहीं आई मोदी जिम्मेवार, बस लेट आई मोदी जिम्मेवार, डॉक्टर नहीं आया मोदी जिम्मेवार, घर में खिचड़ी पकाई थोड़ी कच्ची रह गई मोदी जिम्मेवार।
1: चार पीढ़ी से देश पर राज करने वाले लोगों को कोर्ट के दरवाजे पर जाना पड़ा और करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी के मामले में जमानत पर बाहर निकले हैं, जमानत पर।
6: पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो गलत चीजें देश के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में घुसेड़ दिए हैं, देश को उससे मुक्ति दिलानी है।
4: अब ये तय हो चुका है कि पीएम मोदी का दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं समझ सकता। ये सिर्फ मोदी जानते हैं कि वो कब क्या करने वाले हैं।
7: उनका अहंकार चाय में भी और चौकीदार में भी, मुद्दा ये नहीं है कि चाय अच्छी है या चौकीदारी अच्छी है, मुद्दा ये है कि कांग्रेस की अहंकार की जो भाषा है, चाय वाले को हीन मानना, चौकीदार को हीन मानना, ये कांग्रेस का अहंकार जो सातवें आसमान पर है, ये देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है।
4: लगातार 3 चुनाव में मिली जीत ये बताती है कि मोदी हर बार और मजबूत हुए, हर दुश्वारी से और दृढ़ हुए और हर आलोचना से और शक्तिशाली हुए।
8: मोदी,
2: 2014 से पहले भी मैंने कश्मीर कवर किया है, उसके बाद भी किया है, और केवल एक शहर और डाउनटाउन नहीं बल्कि बॉर्डर्स तक, जहां पर लोगों ने को लगा कि वो इंक्लूसिव हो रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं मुख्य धारा के साथ। फिर 370 आया, उसके बाद से पत्थरबाजी नहीं हुई, हड़ताल नहीं हुई।
7: कि मेरी नीतियां सही है, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, मेरी सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है।
4: चुनाव दर चुनाव, शपथ दर शपथ, विपक्ष के लिए मोदी असाध्य होते चले गए हैं। पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे अंदाजों के तमाम अर्धविरामों पर पूर्ण विराम लगा दिया। लगातार तीसरी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे अभियान पर निकल चुके हैं जो बीजेपी का सपना रहा, जो संघ की प्रतिज्ञा रही, और जो उनके साथ साथ चलने वाले साथियों की उम्मीद रही।
8: 5 दशक पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था उस सपने को, एक एक करके साकार करती हुई यह मोदी सरकार उन्हें सब साकार करती हुई दिखाई देगी।
9: मैं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारी सेना के जवानों के प्रति, हमारे देश के वर्कर्स के प्रति उनके दिल में कितना सम्मान है, ये बताने की जरूरत नहीं है।
4: आज कहानी में देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात से दिल्ली की सत्ता तक का सफर कैसे तय किया, 2019 में पहले से भी बड़ा जनादेश कैसे मिला, और कैसे 2024 में तमाम राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज हुए।
10: मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है।
11: संविधान एवं भारत
4: 12 साल हो गए मोदी सरकार के। पीएम मोदी पार्टी और संगठन को बुलंदियों पर पहुंचा चुके हैं। पीएम मोदी का सियासी इतिहास कहता है कि जो बीड़ा उन्होंने उठाया उसमें कभी नाकाम नहीं हुए, परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हो।
12: मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
0: 2012 से 2014 ये सिर्फ 2 साल का राजनीतिक सफर नहीं था, ये उस नेता के राष्ट्रीय उदय की कहानी है जो गुजरात की सीमाओं को पार करके दिल्ली पहुंच चुका था। 2012 में चौथी बार गुजरात जीतने वाले नरेंद्र मोदी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता था, उन्होंने उम्मीद, आक्रामक प्रचार और मजबूत नेतृत्व की नई राजनीति गढ़ी थी। पार्टी के भीतर विरोध था, विपक्ष लगातार हमलावर था, लेकिन हर चुनौती के साथ मोदी का कद और बढ़ता गया, और फिर 2014 में देश ने ऐसा जनादेश दिया जिसने पूरे देश को चकित कर दिया।
12: 60 साल महास्वार्थ बंधन को दिए हैं आप, एनडीए को, बीजेपी को 60 महीने दीजिए, पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है।
9: मैंने ऐसी आंधी कभी नहीं देखी जो आज देखा।
12: पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है।
4: पूरा देश दंग था इस तस्वीर को देखकर। ये दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में एक दिन में आकर नहीं गिर गए थे, इसके लिए उन्होंने भारत की जनता का ये भरोसा हासिल किया था कि वही देश का भाग्य बदल सकते हैं। साल 2012 का गुजरात चुनाव नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर का ये वो पड़ाव था जहां से गुजरात का नेता दिल्ली की सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने लगा था। चुनौती छोटी नहीं थी, लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की चुनौती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का अंदाज बाकी नेताओं से अलग था। नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो अपने नाम को एक ब्रांड बना रहे थे।
5: पाकिस्तान ने हमला बोला, आतंकवादियों को भेजा, 26/11 करके मुंबई में निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया, पाकिस्तान गुनहगार है, उसका जवाब देने के बाद बजाय वो मुंबई की घटना को अयोध्या की राम मंदिर की घटना के साथ जोड़ करके वो जस्टिफाई कर रहा है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान की ये हरकतें, ये इसलिए पाकिस्तान है क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम नहीं।
13: जेमना निराला नेतृत्व ने दृष्टिवंत आयोजन, प्रगति और विकास,
4: नतीजे आए और एक बार फिर गुजरात ने नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा जता दिया। बीजेपी सत्ता में लौटी और नरेंद्र मोदी चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस जीत के बाद सवाल सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहे, अब सवाल दिल्ली को लेकर होने लगे थे। क्या नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति का अगला बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं?
14: खूब खूब आभार, भारत माता के।
15: नामो जी तैयार हैं यहाँ आने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, जो मर्जी आपके पार्टी करें।
16: मैं बताता हूँ, गुजरात मॉडल अच्छा लगता है तो जो भी बैठे हैं थोड़ा गुजरात से थोड़ा सीखना शुरू कर दे, अपने आप यहाँ लागू हो जाएगा, मेरी आने की जरूरत नहीं है।
15: आपने पूरा जवाब नहीं दिया, मैंने बोला आप आप इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहते हो कि नहीं, सीधी बात, जो जो मर्जी आपकी पार्टी बोले।
16: मैं बताता हूँ, मैंने अपने जीवन में मान करके चला हूँ, कभी कुछ बनने का सपना मत देखो, कुछ करने का जरूर सपने होने चाहिए और उस करते रहना चाहिए।
4: मोदी अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे, उनका

0: मोदी के आलोचक उन्हें कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा बताते रहे, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। तेज आर्थिक विकास, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और भ्रष्टाचार के आरोपों से लगभग बेदाग छवि थी गुजरात सरकार की। यही वजह थी कि समर्थकों के बीच मोदी सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे, वो बीजेपी के विकास पुरुष भी बन चुके थे।
1: पिछले 10 साल में महात्मा गांधी जी ने जो जिक्र किया था राम राज्य का, वैसे राम राज्य को नरेंद्र भाई ने पूरा गुजरात प्रदेश में स्थापित किया है।
0: 2012 की जीत के बाद बीजेपी के भीतर भले खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं की जुबान पर एक ही नाम था, नरेंद्र मोदी। साल 2013 आते आते मोदी का अंदाज बदल चुका था। अब वो सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहे थे, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे थे। गांधीनगर से दिल्ली को चुनौती दी जा रही थी। बार बार उनसे सवाल किया जा रहा था कि मोदी दिल्ली आने के लिए तैयार हैं, तो जवाब भले संतुलित था, लेकिन राजनीति समझ चुकी थी कि देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है।
2: मैं मणिनगर को ही अपना सब कुछ मानता हूँ, इसलिए मैं और दूरियों को नापता नहीं रहता हूँ। भैया, मैं तो मुख्यमंत्री का भी कभी दावेदार नहीं रहा, मैं किसी चीज का दावेदार नहीं हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में काम करना यही मेरा काम है, इससे अधिक मैं सोचता नहीं हूँ।
0: बीजेपी में अब मुद्दे बदल रहे थे, पार्टी में राजनीति का विमर्श बदल रहा था, और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि राजनीति का चेहरा बदल रहा था। साल 2013, गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की कैंपेन कमेटी का चीफ बना दिया गया। यह सिर्फ संगठन का फैसला नहीं था, यह बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव था। ऐसा लगने लगा कि मोदी की राह उनकी पार्टी में ही रोक दी जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने विरोध की हवा का रुख मोड़ दिया था। बीजेपी कार्यकर्ता खुलकर मोदी के समर्थन में उतर आए थे और साल 2013 आते आते बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था।
3: पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ बीजेपी मेट टुडे एंड डिसाइडेड दैट श्री नरेंद्र मोदी विल बी अवर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शन।
0: अब लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं थी, अब लड़ाई नेतृत्व की थी। 2014 का चुनाव आते आते नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति का पूरा स्टाइल बदल दिया था। देश की राजनीति पहली बार एक चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही थी। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, हर जगह मुकाबला मोदी बनाम बाकी सब होता जा रहा था। और अब इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के साथ लालकृष्ण आडवाणी भी खड़े थे।
4: 16 तारीख को परिणाम आएंगे और नरेंद्र भाई को
0: अब पार्टी में सारे मनभेद और मतभेद खत्म हो गए थे। अब नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में अलग अलग वर्गों की उम्मीदों को सीधे छूने की कोशिश कर रहे थे। चुनावी मंचों से वो सिर्फ भाषण नहीं दे रहे थे, बल्कि देश के हर तबके के लिए अपना विजन सामने रख रहे थे।
5: इस संकट में आए सभी किसानों से हम मिले, उनकी मुसीबत को समझे और सरकार के पास जाकर के उनके हक के लिए हम लड़ाई लड़े।
0: मोदी अपनी रैलियों में युवाओं से रोजगार की

0: बात कर रहे थे, किसानों से कमाई की बात कर रहे थे, कारोबारियों से विकास की बात कर रहे थे, मध्यम वर्ग से मजबूत अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे और पूरे देश से मजबूत नेतृत्व की बात कर रहे थे।
1: मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा।
0: मोदी जब 2014 में अपने सबसे बड़े राजनीतिक मिशन की शुरुआत कर रहे थे, तब उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। काशी पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने खुद को गंगा पुत्र की तरह पेश किया और एक बयान ने पूरे चुनावी माहौल को भावनात्मक रंग दे दिया।
2: न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है।
0: यही वो पल था जब नरेंद्र मोदी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं रहे, वो करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ते चले गए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान आया। उन्होंने कहा कि मोदी यहाँ चाय बेच सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते।
3: नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं।
0: कांग्रेस का यही हमला नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। चाय पर चर्चा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कैंपेन बन गया था। मोदी ने खुद को उस आम आदमी के तौर पर पेश किया जिसने संघर्ष से यहां तक का सफर तय किया था। विपक्ष ने गुजरात दंगों का मुद्दा उठाया, सोनिया गांधी ने जहर की खेती वाला बयान दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जवाब में एक नया राजनीतिक मुहावरा दे दिया।
4: आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है।
0: अब चुनाव सिर्फ पार्टियों का नहीं रहा था, ये चुनाव व्यक्तित्व का बन चुका था। एक तरफ यूपीए सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की आक्रामक और निर्णायक छवि, और फिर आया वो नारा जिसने 2014 के चुनाव को आंदोलन में बदल दिया। देश के गांव, शहर, सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मोदी। चौदह लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल गई। बीजेपी ने अपने दम पर 282 सीटें जीत ली थी, 3 दशक बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई।
5: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
0: ये सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं था, ये भारतीय राजनीति में सत्ता के केंद्र के बदलने का चुनाव था। नरेंद्र मोदी जो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। 2014 में मोदी सिर्फ चुनाव नहीं जीते थे, उन्होंने भारतीय राजनीति की भाषा, शैली और दिशा तीनों बदल दी थी।
6: वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे किया करिश्मा, कैसे बदल दी बीजेपी की रणनीति।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: Sokudo.
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे करेक्ट
2: करेक्ट मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
4: गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी
11: द बिगेस्ट क्लासिक रॉक हिट्स डू जस्ट दैट, दे हिट हार्ड, एंड ऑन TuneIn's क्लासिक रॉक हिट्स यू'ल फाइंड ओनली द बेस्ट इन हाई ऑक्टेन ऑसमनेस। वी आर टॉकिंग रॉक गॉड्स लाइक लेड ज़ेप्पेलिन, किस, AC/DC, लिनर्ड स्किनर्ड, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
12: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
14: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
15: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
16: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
14: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
17: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
15: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
14: जहाँ खबर वहाँ खबरदार,
18: इन एसोसिएशन विद
19: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: इन एसोसिएशन विद
20: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
18: हिंट, बड़े आराम से
21: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
22: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
23: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
24: Vimal, bolo zuba kesri.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

अभिषेक बनर्जी के बाद सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला। प्रदर्शन के दौरान सिर में लगी चोट। ममता बनर्जी और विपक्ष ने बीजेपी को घेरा। अब तक 5 गिरफ्तार। बीजेपी में बैठकों का दौर। शाम 5:30 बजे राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। कल 1 बजे नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान से पहले बुलाई गई बैठक। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर। जवाबी फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने का दावा। बकरीद के दिन घेर कर किया गया सूर्या का खून। दिल्ली के मेहरौली में 5 मंजिला इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या 4 पहुंची। मलबे से निकाले गए 8 लोग गंभीर। सीएम रेखा गुप्ता ने रेस्क्यू का। और नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने संभाला कार्यभार। साउथ ब्लॉक के लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। एडमिरल केजी स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख।

0: 2014 में देश ने नरेंद्र मोदी को बदलाव की उम्मीद के साथ दिल्ली की सत्ता सौंपी थी, लेकिन 2019 का रण अलग था। अब सवाल इरादों का नहीं, प्रदर्शन का था। एक तरफ विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए एकजुट हो रहा था, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हर चुनावी मंच को सीधे जनता से संवाद में बदल रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं और व्यक्तित्व आधारित राजनीति, इन सब ने चुनाव को पूरी तरह नया रंग दे दिया था। और फिर आया वो जनादेश जिसने साबित कर दिया कि भारतीय राजनीति का केंद्र अब पूरी तरह से बदल चुका है।
1: यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये उस नेता की अग्नि परीक्षा थी जिसने 2014 में उम्मीदों के दम पर सत्ता हासिल की थी और अब 5 साल बाद जनता के बीच अपने काम, अपने फैसलों और अपनी छवि के साथ खड़े थे।
2: 2014 में आप चाय वाला थे, 2019 में आप चौकीदार हैं। दोनों में से कौन सी उपाधि आपको पसंद है?
3: चाय वाला जो है, ये मैं इतने साल मुख्यमंत्री रहा, मेरे मुंह से मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन जब कांग्रेस के लोगों ने मेरी मजाक उड़ाना शुरू किया कि ये क्या चलाएगा, ये तो चाय वाला है, तब जाकर कोई इश्यू बना। और मैं गरीबी के नाम पर देश की जनता से वोट मांगने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो गरीब को भी सम्मान और स्वाभिमान से जीने सिखाना चाहता हूँ। तो मैं कौन होता हूँ कि जो गरीबी का रोता रहूंगा? गरीबी का रोना रोना मुझे मंजूर नहीं है।
1: 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश से बदलाव का वादा किया था। 2019 आते आते सवाल ये था कि क्या देश उस वादे पर दोबारा भरोसा करेगा। 2014 से 2019, इन 5 सालों में भारतीय राजनीति का चेहरा बदल चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सरकार चलाने वाले नेता नहीं रहे थे, वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। एक तो नहीं, कई सारी कल्याणकारी योजनाएं लेकर सरकार आई थी, स्वच्छ भारत, जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना। और सिर्फ मोदी सरकार योजनाएं लेकर नहीं आई थी, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में भी जुटी थी।
3: कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, गरीब को सशक्त कर रहे हैं, वंचितों को वरीयता दे रहे हैं, किसी भी गरीब को भूखे पेट सोना न पड़े इसलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, किसी गरीब को इलाज के लिए कर्ज ना लेना पड़े इसलिए हम 5 लाख रुपीस तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना चला रहे हैं, किसी गरीब को बेघरों की तरह फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में ना रहना पड़े इसलिए पीएम आवास के घर बनाकर उन्हें पक्का घर दे रहे।
1: नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता की बन गई थी जो फैसले लेने से डरता नहीं था। 2016 में उरी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, 19 जवानों की मौत हो गई थी और अब बारी थी बदले की। पीएम मोदी ने दुश्मन को बता दिया कि ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।
3: हमें सोने नहीं दिया, भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक।
4: उन्हें कुछ नहीं चाहिए, 125 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है।
1: लेकिन 2019 की राह आसान नहीं थी। नोटबंदी पर सवाल उठ रहे थे, जीएसटी को लेकर व्यापारियों में नाराजगी थी, बेरोजगारी विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी, राहुल गांधी लगातार हमलावर थे।
5: अभी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, एक के बाद एक युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। थक गया हिंदुस्तान का युवा। आपने नोटबंदी की, आप जीएसटी लाए, राजस्थान और हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया।
1: विपक्ष को लग रहा था कि इस बार मोदी सरकार को रोका जा सकता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आ चुके थे। महागठबंधन की राजनीति को बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनाव को अपने अंदाज में बदलने लगे थे। 2019 आते आते चुनाव सिर्फ सरकार के कामकाज का ही नहीं रहा था, ये चुनाव नेतृत्व बनाम गठबंधन में बदल रहा था।
0: पिछली बार जब आप चुनाव में उतरे थे तो 2014 में सर विपक्ष बिखरा हुआ था उत्तर प्रदेश में, इस बार लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन है, चुनौती होगी।
3: अभी तक जितने एनालिसिस आ रहे हैं, चर्चा देश में यह होनी चाहिए कि जब कर्नाटक के सीएम का शपथ समारोह हो रहा था और जिस प्रकार से एक दूसरे को गले लगाया जा रहा था, जिस प्रकार से हाथ पकड़ पकड़ करके 2019 के विजय की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, बेंगलोर से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जो गले लगने वाले थे वो जानी दुश्मन बन गए, एक दूसरे का गला काटने में लग गए।
1: पूरे देश में चुनाव का शोर था, रैलियां हो रही थी, चुनावी रण, राजनीतिक दाव और जनता अपना फैसला सुनाने की तैयारी कर रही थी। और तभी 14 फरवरी 2019 पुलवामा में आतंकियों का बड़ा हमला होता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पूरे देश गुस्से में था। देश जवाब चाहता था और कुछ ही दिनों बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दी।
4: जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ हैं। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
1: बालाकोट के बाद चुनाव का नैरेटिव पूरी तरह बदल चुका था। अब बहस सिर्फ बेरोजगारी या महंगाई पर नहीं थी, अब मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा था, मजबूत सरकार थी और निर्णायक नेतृत्व था।
6: एक बड़ा मुद्दा था राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, एक बड़ा मुद्दा बन गया और उससे पूरे देश में एक माहौल बना, पड़ोसी देश के खिलाफ एक माहौल बना और राष्ट्रवाद हिंदुस्तान का एक बड़ा मुद्दा बन गया, पॉलिटिकल इश्यू बन गया, कहना चाहिए केंद्र हो गया। लेकिन केवल ये केंद्र नहीं था, इसको समझना चाहिए कि जो पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो भी उसमें ऐड ऑन होता है।
1: देश भर में मोदी की रैलियों में एक अलग ही माहौल दिखाई देने लगा था, हर मंच पर राष्ट्रवाद की गूंज थी। मोदी खुद को देश की सुरक्षा के सबसे मजबूत प्रहरी के तौर पर पेश कर रहे थे।
4: बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, चोरी छुपी के नहीं किया, एयर स्ट्राइक कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया आज हमने ऐसा ऐसा किया है और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया।
1: 2019 के चुनाव को बीजेपी ने पूरी तरह हाईटेक बना दिया था। सोशल मीडिया, वीडियो कैंपेन, मोबाइल मैसेजिंग, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इधर कांग्रेस न्याय योजना लेकर आई थी, राहुल गांधी रोजगार और किसानों के मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव को सीधे नेतृत्व की लड़ाई बना दिया था।
5: कहीं भी आप जाके कह दीजिए चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार,
4: चौकीदार का काम दिया है, अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं,
7: उनको तकलीफ हो रही है, उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है।
1: राहुल गांधी के चौकीदार चोर है वाले हमले को बीजेपी ने जवाबी कैंपेन में बदल दिया। मैं भी चौकीदार देश भर में ट्रेंड करने लगा। बीजेपी कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के समर्थक सब अपने नाम के आगे चौकीदार लगाने लगे थे। 2014 में चायवाला, 2019 में चौकीदार, नरेंद्र मोदी हर राजनीतिक हमले को अपने पक्ष में मोड़ते दिखाई दे रहे थे।
6: चुनाव जीतने के लिए सरकार के खिलाफ गुस्सा काफी नहीं होता, उस गुस्से को आप कैसे मैच्योर करते हैं, कैसे परिपक्व करते हैं, कैसे पकाते हैं, और फिर क्या आप कोई अल्टरनेटिव देते हैं? क्या आपके पास कोई अल्टरनेट है कि ये सरकार जाए, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जाए, तो आपके पास कौन सा चेहरा है, आपके पास क्या एजेंडा है, आपके पास क्या सपने हैं, जो भारत आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ने के लिए किस तरह की योजना, किस तरह का विकास, किस तरह के सपने आपके पास हैं, वो सब दिन, और फिर क्या आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं, क्या आप एकजुट होकर इस सरकार को हटा सकते हैं, उन सब पैमानों पर विपक्ष खरा नहीं उतर रहा था।
1: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बीजेपी सिर्फ अपनी सीटें बचाने के लिए नहीं लड़ रही थी, वो नए राज्यों में भी विस्तार की लड़ाई लड़ रही थी। पश्चिम बंगाल में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बंगाल की राजनीति पहली बार बीजेपी बनाम तृणमूल में बदलती दिखाई देने लगी।
8: दीदी पीछे रहकर कैसे कैसे की दादागिरी और कैसे कैसे लोगों की हुकूमत चलवा रही है।
1: लेकिन नरेंद्र मोदी हर रैली में खुद को देश के सपनों से जोड़ रहे थे।
8: सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
1: अब चुनाव सिर्फ मुद्दों का नहीं रहा था, ये चुनाव भरोसे का बन चुका था। मोदी अपनी सभाओं में गरीबों के बैंक खाते गिना रहे थे, गैस कनेक्शन गिना रहे थे, शौचालय गिना रहे थे, और हर योजना के साथ एक संदेश दे रहे थे कि सरकार सीधे गरीब तक पहुंच रही है।
3: कहा है 5 साल में हम 100,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना चाहते हैं, और हमारे विकास के मॉडल साफ है। एक है ग्लोबल बेंचमार्क वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, हम आज जितने एयरपोर्ट हैं डबल एयरपोर्ट फंक्शनल करना चाहते हैं, हम किसान की इनकम डबल करना चाहते हैं, तो हमारा एक दूसरा वेलफेयर, सामान्य मानवीय की जरूरतें, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हिंदुस्तान का नागरिक शुद्ध पानी का पीना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले चाहेगा कि नहीं चाहेगा, उस पर हम बल देंगे।
9: देश के कोने कोने में पहुंच,
1: देश के गांवों से लेकर सोशल मीडिया तक एक बार फिर चुनाव मोदी केंद्रित हो चुका था।
9: पहुंचाए हम तक अपने मन की बात, आइए बनाए भविष्य का भारत मिलकर एक साथ।
1: 19 मई 2019 सात चरणों का चुनाव खत्म हुआ। 23 मई 2019
10: भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट जीतने वाली है और जीत चुकी है।
1: नतीजे आए और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ वापसी नहीं की, उन्होंने पहले से भी बड़ी जीत हासिल कर ली। बीजेपी 303 सीटें, एनडीए 350 से ज्यादा सीटें और कांग्रेस 52 सीटें।
10: देशवासियों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं।
1: 3 दशक बाद कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटा था।
10: निवेदन करूंगा कि सामूहिक रूप से
1: दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न था।
10: प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें।
1: मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे और मंच पर खड़े नरेंद्र मोदी अब सिर्फ 2014 वाले बदलाव के नेता नहीं थे, अब वो भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेता बन चुके थे।
11: लोकतांत्रिक विश्व में 2019 का ये जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। पूरे विश्व की ये सबसे बड़ी घटना है।
1: 2019 का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये उस छवि की जीत थी जिसे नरेंद्र मोदी ने 5 साल तक लगातार गढ़ा था। 2014 में मोदी उम्मीद बनकर आए थे, 2019 में मोदी भरोसा बन चुके थे। और यही वजह थी कि 2019 में नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव नहीं जीते, उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया।
0: 10 साल की सत्ता, लगातार 2 प्रचंड जीत और फिर 2024 का चुनाव। इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं था, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व और जन समर्थन की नई कसौटी का था। एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार इतिहास रचने के मिशन पर थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई बताने में जुटा था। चुनाव प्रचार, नारों, गठबंधनों और आरोप प्रत्यारोप के बीच देश ने एक ऐसा जनादेश दिया जिसे साफ कर दिया कि भारतीय राजनीति अब पुराने दौर में लौटने वाली नहीं है।
1: दो हजार चौदह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव का चेहरा बनकर आए थे, 2019 में भरोसे का नाम बन गए थे, और 2024 आते आते सवाल सिर्फ इतना था, क्या मोदी तीसरी बार इतिहास रच पाएंगे? पहले 2014, फिर 2019, इन 10 सालों में भारतीय राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सरकार चलाने वाले नेता नहीं रहे थे, वो भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी धुरी बन चुके थे।
3: मैं लाल किले से बोलता हूं, इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत होनी चाहिए। मेरे देश में जो सक्षम लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, इनकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। मैं मेरे 15 अगस्त के जो गेस्ट लिस्ट होता है उसमें मैं खिलाड़ी जो अचीवर्स हैं उनको बिठाता हूं। अगर देश अचीवर्स की पूजा नहीं करेगा, देश अचीवर्स का महात्मा ही नहीं करेगा, तो मेरे देश में पीएचडी करने वाले लोग कहां से निकलेंगे, साइंटिस्ट कहां से निकलेंगे? जीवन के हर क्षेत्र में अचीवर्स की इज्जत होनी चाहिए भाई।
1: बीजेपी हर मंच से कह रही थी मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी थी।
8: जब काम करता है तो सबके लिए करता है, और इसमें भी सबसे गरीब सबसे ऊपर रहते हैं। इसलिए आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी। पूरा देश जानता है कि ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है।
1: लेकिन 2024 की राह आसान नहीं थी। विपक्ष इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक था। कांग्रेस समेत कई दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक साथ आ चुके थे। विपक्ष का दावा था कि इस बार मुकाबला बराबरी का है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनाव को अपने अंदाज में ढाल रहे थे। 2024 आते आते चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं रहा था, ये चुनाव मोदी के तीसरे कार्यकाल पर जनमत संग्रह बनता जा रहा था। विपक्ष संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण के मुद्दे उठा रहा था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सीधे जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुनावी मैदान में एक बार फिर सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ही बने हुए थे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ने चुनावी माहौल को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ दिया था। हर रैली में राम मंदिर का जिक्र हो रहा था, हर मंच पर 500 साल के इंतजार की बात हो रही थी। इसी बीच चुनावी माहौल में संविधान और आरक्षण का मुद्दा भी गर्मा गया। विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि कि बीजेपी 400 पार के जरिए संविधान बदलना चाहती है। बीजेपी ने इसका जवाब विकास और स्थिर सरकार के मुद्दे से दिया। मोदी हर सभा में खुद को गरीबों, महिलाओं और लाभार्थियों से जोड़ रहे थे।
12: खुशहाल बनेंगे गांव किसान।
1: पीएम मोदी बता रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। हर रैली में बात कर रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, पीएम आवास योजना के जरिए घर दिया जा रहा है, जल जीवन मिशन के जरिए घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
13: फिर मुझे विचार आया कि जो गांव सबकी सब महिलाएं करेगा उसको मैं 7 लाख दूंगा। फिर मैंने कहा कि जो गांव में सबकी सब महिलाएं होगी तो वहां का जो गवर्नमेंट अफसर होंगे वो भी महिलाएं होगी, हो सके तो पुलिस भी मैं वहां महिला रखूंगा और मैं इनको पैसे भी दूंगा और तहसील लेवल तक मैं वहां महिलाओं की पूरी ऊपर से नीचे तक 45% विलेजेस सहमति से मेरे में हम होने लगे 45% विलेज और आज भी चल रहे हैं, हम पैसे भी देते हैं।
1: देश के गांवों से लेकर सोशल मीडिया तक एक बार फिर चुनाव मोदी केंद्रित हो चुका था, लेकिन इस बार विपक्ष भी पूरी ताकत से मैदान में था। कई राज्यों में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही थी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन दिखाई दे रहा था। 4 जून 2024 नतीजे आए और नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर ली। बीजेपी को 240 सीटें, एनडीए को 290 सीटें, कांग्रेस को 99 सीटें। बीजेपी अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई थी, लेकिन एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में थी। 3 दशक बाद पहली बार कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा था। दिल्ली में एनडीए खेमे में जश्न था, मोदी मोदी के नारे एक बार फिर गूंज रहे थे। लेकिन 2024 का जनादेश 2014 और 2019 से अलग था। जनता ने मोदी को सत्ता तो दी, लेकिन साथ ही एक राजनीतिक संदेश भी दिया। 2024 का चुनाव परिणाम सिर्फ जीत की कहानी नहीं कह रहा था, ये मोदी के होने का अर्थ बता रहा था। 2014 में मोदी उम्मीद थे, 2019 में भरोसा बने और 2024 में नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे लंबे और सबसे प्रभावशाली दौर के केंद्र में खड़े दिखाई दिए।
0: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
4: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
5: Oh, ouch.
4: However you make money work, we can work with that.
6: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan this on this station. Up. Ready to find your flow?
8: It's your boy,
7: just
8: Jay-Z.
7: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
9: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
10: अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था।
11: जब आप उनसे मिले तो उनकी क्या कंडीशन थी क्योंकि उस समय वो अपोलो में थे और अपोलो से आपको निकाल के बेलव्यू लाना पड़ा उनको यहाँ पे
10: क्यों उसको उधर में सेट किया। और जो डॉक्टर के साथ जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे कर रहे हैं और इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है। Do you think that I don't know anything? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमारा पार्टी डिसाइड करेंगे। बीच ऑफ सिक्योरिटी तो है ही जानबूझ के पुलिस का एनकरेज में ही हुआ ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला।
12: जो हमला हुआ वो प्री प्लान्ड वो कंस्पिरेसी है। ये लोग क्या कर रहे थे इसका पुलिस क्या कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन ये वही अभिषेक है जो कुछ दिन पहले देश का जब जरूरत था एमपी लोगों को टीम भेजना है हर एक देश में तब हमारा देश का जो फेस था उसमें एक था ये अभिषेक बैनर्जी उसका ऊपर हमला हुआ। कैसे चल रहा है बंगाल कैसे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है ये पूरा आज खुल्लम खुल्ला पूरा देश पूरा वर्ल्ड देख लिया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अभिषेक बनर्जी के बाद सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला। प्रदर्शन के दौरान सिर में लगी चोट, बीजेपी बोली ड्रामा कर रहे हैं। पिटाई कांड में गिरफ्तारी पर मेरा तेरा। शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। नई टीम के ऐलान से पहले कल नितिन नवीन की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक।

के आरोपी असद का एनकाउंटर, जवाबी फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने का दावा। बकरीद के दिन घेर कर किया गया सूर्या का खून। दिल्ली के मेहरौली में 5 मंजिला इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या 4 पहुंची। मलबे से निकाले गए 8 लोग गंभीर। सीएम रेखा गुप्ता ने रेस्क्यू का जायजा लिया। और पहाड़ों पर जाम ही जाम, सैलानी कर रहे हैं त्राहिमाम। उत्तराखंड के चमोली से लेकर हिमाचल प्रदेश के मनाली तक गाड़ियों का लगा रेला। घंटों सड़कों पर फंसे रहे लोग।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दोपहर के 2 बजे हैं और इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरों पर नजर होगी हमारी, लेकिन सबसे पहले बड़ी और अहम खबर पश्चिम बंगाल से, जहां टीएमसी के सांसदों पर हमले या दावे को लेकर सियासत अब शुरू हो चुकी है। शनिवार को पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ तो आज कल्याण बनर्जी ने भी दावा किया है कि हुगली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पत्थर मारे हैं। और ये दो तस्वीरें उन हमलों की हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी की एक तस्वीर है, दूसरी तरफ आज देखिए कल्याण बनर्जी की तस्वीर है जिनके सिर में चोट लगी है। आपको ये भी बता दें कि कल भी अभिषेक बनर्जी के कपड़े फाड़ दिए गए थे, जबरदस्त तरीके से उन पर हमला किया गया था। सबसे पहले अभिषेक बनर्जी की ये बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी ने सोनारपुर में हुए हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। पार्टी ने आरोप यह लगाया कि अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के सिलसिले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कथित तौर पर 1 महीने पहले तक पूर्व टीएमसी विधायक लवली मैत्रा के सहयोगी रहे थे। इस खुलासे को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि क्या ये महज घटना थी या फिर टीएमसी के भीतर जो गुटबाजी है उसके संकेत यहां नजर आए। उधर टीएमसी ने आरोप यह लगाया है कि अभिजीत विश्वास नाम का नेता हमले के दौरान मौके पर मौजूद था और वो लगातार भीड़ को उकसा रहा था। टीएमसी ने सवाल उठाए कि अगर ये जनाक्रोश था या उसका नतीजा था तो वहां बीजेपी के नेता की मौजूदगी थी क्यों। टीएमसी ने यह भी सवाल पूछा है कि आखिर उसे किससे निर्देश मिल रहे थे जिसके बिना पर उसने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकवाए, मारपीट करवाई, शर्ट फाड़ डाली गई और बुरी तरह से उन्हें घायल कर दिया। तो बीजेपी और टीएमसी दोनों ही तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। पूरा विपक्ष एकजुट है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल। और उधर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी का ही नतीजा है, लोगों का जनाक्रोश और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही जनाक्रोश तमाम नेता झेल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम जुड़ गए। अनुपम, अभी क्या जानकारी मिल रही है और बार बार कहा जा रहा है कि बड़े आंदोलन की बात ममता बनर्जी की तरफ से कह दी गई है, आज भी टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, कल कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी सड़कों पर उतरेंगी।
1: जी देखिए, ममता बनर्जी कल रानी राजबनी रोड जो है कोलकाता में, रानी राजबनी एवेन्यू, वहां पर आंदोलन करने की बात है उनकी। हालांकि अभी तक पुलिस की अनुमति वहां मिली है कि नहीं, इस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पहले ही पूर्व घोषित कार्यक्रम है ममता बनर्जी का रानी राजबनी पे, वो कल विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से। कल टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से हुगली में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, आज पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें टीएमसी के जो पूर्व विधायक हैं असित चक्रवर्ती, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कई काउंसलर्स हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल ममता बनर्जी किस पैमाने पर ये विरोध प्रदर्शन शुरू करती हैं, कितने लोगों की भीड़ जुटती है। दरअसल कल से आज तक जो हम देख रहे हैं, अब तक जो कल हमने देखा कि अपोलो अस्पताल में भी और दूसरे अस्पताल में जब ले जाया गया, टीएमसी के बहुत ज्यादा लीडर्स या कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे। ऐसे में अब ये सवाल भी है कि क्या ममता बनर्जी जब अब दोबारा सड़कों पर उतरेंगी तो क्या उनके साथ कार्यकर्ता और जो बाकी के विधायक हैं वो कितनी संख्या में मौजूद रहेंगे, इस पर भी देखने वाली बात होगी। आज 4 बजे के बाद ममता बनर्जी के घर पर एक मीटिंग भी हो सकती है, जहां ममता बनर्जी जो अभिषेक पर हमला हुआ है उसके बाद क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं उन पर चर्चा कर सकती हैं।
0: आप बने रहे हमारे साथ अनुपम। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि कल अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद इंडिया के सहयोगी दलों ने, तमाम बड़े नेताओं ने हमले की निंदा की है, साथ ही बीजेपी पर सवाल उठाए, राहुल गांधी भी उनमें से एक हैं। अब आज अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी को धन्यवाद भी बोला है इसके लिए। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा की रक्षा करने, इसके लोकतांत्रिक संस्थानों का बचाव करने और हमारे संविधान में निहित मूल्यों को कायम रखने में अपने संघर्ष में हम एकजुट और दृढ़ हैं। तो एक दिन पहले यानी कि कल टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था, जिसे लेकर पार्टी बौखलाई हुई है। वो सत्ताधारी शुभेंदु सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी इसे पिछली सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश बता रही है।
2: लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों, घर में रहिए ना।
3: अभिषेक बनर्जी पर थप्पड़ चले, उन पर भीड़ ने पत्थर से हमला किया, टीएमसी सांसद पर अंडे फेंके गए, धक्का मुक्की होती रही, अभिषेक जान बचाते रहे। उनके निजी सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाने की कोशिश की, उन्हें बचाने के लिए मशक्कत करते रहे, लेकिन सैकड़ों की भीड़ के गुस्से के आगे चंद गिने चुने सुरक्षा कर्मियों का घेरा टूट गया। उस घेरे के टूटने के बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में स्क्रीन पर दिख रहा है। बंगाल की सियासत में हिंसा की ये कोई नई तस्वीर नहीं, चुनाव से पहले भी बंगाल का रक्त चरित्र सामने आया है और चुनाव के बाद भी वो दौर जारी है। पहले टीएमसी सांसद पर हमला और फिर अस्पताल में इलाज में ढिलाई बरतने का गंभीर इल्जाम। पूर्व सीएम ममता बनर्जी गुस्से में हैं। ममता बनर्जी सवाल उठा रही है, पूछ रही है सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों किया गया।
4: बीच ऑफ सिक्योरिटी तो है ही, जानबूझ के पुलिस का एनकरेज नहीं हुआ, ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला।
3: टीएमसी के खिलाफ बीजेपी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। शुभेंदु सरकार के मंत्री टीएमसी की उनकी करनी को याद दिला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ममता सरकार में कैसे बीजेपी नेताओं पर हमले हुए, मंत्री पलटवार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि टीएमसी के सत्ता संभालने के दौरान कैसे कानून का राज खत्म हो गया था।
5: जनता कितना खपा हुआ है देखिए फलता इलेक्शन में, अब टीएमसी को फोर्थ पोजीशन मिला है, इसी को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा, तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के दो दो MLA हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी, जनता ने सब देखा है, मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों, घर में रहिए ना शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए।
3: अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले के बाद टीएमसी गुस्से से भरी हुई, बंगाल के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हुगली की है, यहाँ पार्टी कार्यकर्ता गुस्से में दिखे, उन्होंने सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही हमलावरों पर एक्शन की मांग भी की। इस हमले को लेकर बंगाल पुलिस ने सोनारपुर में केस दर्ज किया है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
0: अभिषेक बनर्जी पर कल सोनारपुर में हमला हुआ था, बीती रात वो अस्पताल से इलाज के बाद अपने घर चले गए थे। आज सुबह से उनके कालीघाट स्थित आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है।
1: सोनारपुर में कल टीएमसी कार्यकर्ताओं को देखने गए अभिषेक बनर्जी जो हमले में घायल हुए, उसके बाद दो अस्पतालों में उनको ले जाया गया, कोलकाता के अपोलो और बेलव्यू अस्पताल में, लेकिन दोनों जगह से ही उनको डिस्चार्ज किया गया और इसके बाद यही कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी का घर है जहां पर इस वक्त अभिषेक बनर्जी का इलाज चल रहा है। कल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अपोलो अस्पताल और बेलव्यू अस्पताल दोनों में ही बीजेपी की ओर से दबाव डाला गया ताकि उनको डिस्चार्ज किया जाए, चिकित्सा नहीं मिली उनको और इसके बाद यहां पर लाकर सलाइन वगैरह या डॉक्टर्स की उपस्थिति वगैरह सब कुछ यहां पर घर में ही ट्रीटमेंट इस वक्त किया जा रहा है। कल देर रात इसी घर में अभिषेक बनर्जी को लाया गया और कल लगभग शाम 5 बजे के आसपास सोनारपुर में उन पर हमला हुआ था, उसके बाद उनको सेंट्रल फोर्सेज और पुलिस की टीम ने वहां से निकाला। निकालने के बाद सबसे पहले अपोलो अस्पताल ले जाया गया, अपोलो में कुछ देर रहने के बाद ममता बनर्जी बाहर आई, आरोप लगाया कि दबाव दिया जा रहा है, चिकित्सा नहीं हो रही है, उनको निकाल के बेलव्यू लाया गया, बेलव्यू के ITU में भर्ती किया गया, लेकिन वहां से भी कुछ देर बाद ममता बनर्जी उन्हें

0: होनी चाहिए।
1: जो हमला हुआ वो प्री प्लान्ड, वो कंस्पिरेसी है। ये लोग क्या कर रहे थे, इसका पुलिस क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन, ये वही अभिषेक है जो कुछ दिन पहले देश का जब जरूरत था एमपी लोगों को टीम भेजना है हर एक देश में, तब हमारा देश का जो फेस था उसमें एक था ये अभिषेक बैनर्जी, उसका ऊपर हमला हुआ। कैसे चल रहा है बंगाल, कैसे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है, ये पूरा आज खुल्लम खुल्ला पूरा देश पूरा वर्ल्ड देख लिया।
2: बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये वो खुद भी तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रही है। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारे चीज बंद होना चाहिए।
0: और अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले को लेकर तेज होती सियासत के बीच आज टीएमसी ने एक और सांसद के अपने ऊपर हमले की आरोप लगे हैं, हमले की बात कही गई है। आपको बता दें कि पार्टी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने दावा यह किया कि उन पर भी हुगली में हमला किया गया है। उन्होंने बीजेपी का नाम लेकर हमले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके सिर पर पत्थर से हमला बोला गया। दरअसल हुगली में वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपने गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। ज्ञापन सौंपने से पहले ही तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नारेबाजी शुरू हुई, बहस शुरू हुई और इसी दौरान कल्याण बनर्जी पर हमला किया गया। हालांकि बीजेपी ने कल्याण बनर्जी पर ड्रामा करने के आरोप लगाए हैं।
3: That cloth. All of a sudden, shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. It is now 2 hours ago.
0: पार्टी सांसदों पर हमले को लेकर टीएमसी ने बीजेपी को घेरा है और आपको बता दें कि कई बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से। कीर्ति आजाद ने क्या कहा है सुनिए।
4: बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं। कल जो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला हुआ, हमने अपने पार्टी की तरफ से और सारे लीडरों ने दिखाया कि कैसे बीजेपी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष हाथ में अंडा लिए हुए इंतजार कर रही है और बोली कि हम इसे अभिषेक बैनर्जी का स्वागत करेंगे। ये बीजेपी की मंडल अध्यक्ष थी, कोई आम जनता नहीं थी जिसको प्रेस दिखा रही कि आम जनता ने ऐसा किया। जिसने पत्थर उठा के मारा वो बीजेपी का सदस्य है। सारा कुछ फुटेज कैमरे पर है, सामने है, लोग देख सकते हैं। लेकिन खेद इस बात का है कि बताया जा रहा है कि पब्लिक मार रही है। बिना बीजेपी के यह मामला हो ही नहीं सकता, खड़ा कर ही नहीं सकता। और सामने देख रहे हैं कि पुलिस उसको कुछ नहीं कर रही है। कल्याण बनर्जी को पीछे से मारा, उसका भी फुटेज आ जाएगा, उसमें पता लग जाएगा कि बीजेपी के लोग हैं।
0: और बड़ी और अहम खबर कोलकाता से, कल शुभेंदु कैबिनेट का पहला विस्तार होना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, सोमवार का दिन। आपको बता दें कि बड़ी और अहम खबर कोलकाता से, शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट का कल पहला विस्तार होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम जुड़े हुए हैं लगातार। अनुपम, क्या जानकारी है, किस किस को जगह मिल सकती है, किस तरह की खबर?
5: जी देखिए, कल सुबह 11 बजे के आसपास पश्चिम बंगाल जो राज्यपाल का भवन है, गवर्नर हाउस, वहां पर ये कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है। सुबह 11 बजे के आसपास राज्यपाल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शपथ दिलवाएंगे। ऐसे में कई नाम घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री कहिए या ऐसी भी मिनिस्ट्री कहिए वो बाकी है। सिर्फ अभी तक 4-5 लोगों को ही मिनिस्ट्री दी गई है, तो ऐसे में कई नाम घूम रहे हैं। अब आने कल सुबह तक और क्लियर हो जाएगा कि किनको किनको दिया जा सकता है, लेकिन बीजेपी के कम से कम छह

0: सात लोगों के नाम तो अभी सामने आने शुरू हो गए हैं जिनको कल मंत्रालय मिल सकता है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अनुपम। एक और बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी से जुड़ी हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव की बैठक शाम 5:30 बजे आज होने वाली है और ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली है। इस बैठक का एजेंट है राज्यसभा 22 सीटों पर चुनाव। जी हाँ, और ऐसे में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। समय रखा गया है 5:30 बजे का और प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक आज होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है? बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि 22 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव से पहले इस बैठक को रखा गया है।
2: देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इन 22 में से 11 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि आंध्र प्रदेश में जो 4 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी टीडीपी के साथ जो है गठबंधन में है, तो एक सीट वहां से बिछाएगी और अपनी नंबर ऑफ संख्या जो है उसको बढ़ाना चाहेगी, जिसका लॉस कर्नाटक में है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसको बढ़ाना चाहती है। और उसके साथ साथ जो है कई राज्यों के अंदर बिहार समेत जो है विधान परिषद के भी चुनाव है, तो उनके उम्मीदवारों के लिए भी जो है ये बैठक है और उसके बाद फोर ग्रुप बैठेगा। और ये इस बैठक के साथ साथ कल नितिन नवीन जो है वो अपनी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक करेंगे और उनकी टीम की घोषणा से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी बैठक है। तो ये दो महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नंबर्स हैं वो 100 से ज्यादा हो गए हैं। 60 राज्यसभा सांसद जो है वो आम आदमी पार्टी से आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की संख्या बढ़ के जो है 113 हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा के अंदर जो है संख्या बल हो और लगभग जो 50% है उससे नंबर ज्यादा हो, तो ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। और इसी में आंध्र प्रदेश में भी एक सीट भारतीय जनता पार्टी ऐसे सहयोगी दल के रूप में जो है वो चाहती है, अपने नंबर्स को बढ़ाना चाहती है राज्यसभा में। इसीलिए कौन उम्मीदवार हो, किस राज्य से होगा, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है दो राज्य मंत्री हैं जिनकी राज्यसभा का कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है, एक रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो रेलवे मंत्री हैं और जॉर्ज कुरियन है केरल से, तो क्या इन दोनों को दोबारा राज्यसभा में नामांकित किया जाएगा पार्टी की तरफ से, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और पंजाब में चुनाव है तो रवनीत सिंह बिट्टू क्योंकि एक केंद्र में पंजाब को रिप्रेजेंट भी करते हैं और सिख कम्युनिटी के तौर पर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखना जरूरी होगा कि
1: तो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है जो 5:30 बजे होने जा रही है आज प्रधानमंत्री आवास पर। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। सीबीएसई के ओएसएम के सिस्टम को लेकर उठे सवालों के बीच आज कुछ छात्रों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी कई अलग अलग बैचेस में लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, नीट के स्टूडेंट्स के साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी।
3: सोरोस आ गया इसमें बीच में, पाकिस्तान सोरोस एवरीबॉडी इज कम,
4: दे स्टार्टेड कॉलिंग अस एंटी नेशनल एंड पाकिस्तानी।
3: 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स, भैया दिखाओ टेररिस्ट के चेहरे दिखाओ जरा।
5: जब मैं शीट देखता हूँ फिजिक्स की, उसका मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके पास हमारे साथ ऑप्शन था कि अगर आपको अपने नंबर कम आते हैं तो आप करते हैं बुलाए फोटो कॉपी के लिए, लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटो कॉपी, यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थी, लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे एक बार खोलता हूँ फोटो कॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंड राइटिंग होती है। तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पर, लोगों का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है।
4: बट जब इस पर पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट एजेंट्स दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट इन इंडिया।
3: 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स, डीप स्टेट क्या होता है भाई?
4: सोरोस
3: आ गया है इसमें बीच में, पाकिस्तान सोरोस एवरीबॉडी इज कम,
4: दे स्टार्टेड कॉलिंग अस एंटी नेशनल एंड पाकिस्तानी, देन आफ्टर दैट
3: दैट्स क्रेजी,
4: दैट इज वेरी क्रेजी,
3: यू नो
4: दैट इज नॉट राइट।
3: एंड योर स्टूडेंट्स, आई मीन यू गॉट नथिंग टू डू विद एनीथिंग, यू आर आस्किंग फॉर योर आंसर शीट, दैट्स ऑल, नाउ सडनली यू बिकम एंटी नेशनल्स। You have to accept the problem if you want to solve the problem.
4: Right.
3: You're just refusing to accept that the problem, you're blaming the poor kids and saying, you know, you're deep state, you're spies or terrorists.
4: Then we are trying to be the best in India.
3: Terrorists.
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
6: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
11: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
10: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
12: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
14: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: 25 सालों से जहाँ टिकी है देश की नजर। मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
13: कानपुर की धरती से गूंजेगी यूपी के विकास की बुलंद आवाज। यूपी की तरक्की का क्या है रोड मैप? जनता के सवालों का सटीक जवाब। दिग्गजों के साथ सबसे बड़ा संवाद। विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ यूपी तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

अभिषेक बनर्जी के बाद सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला। प्रदर्शन के दौरान सिर में लगी चोट, बीजेपी बोली ड्रामा कर रहे हैं। पिटाई कांड में गिरफ्तारी पर मेरा तेरा। शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। नई टीम के ऐलान से पहले कल नितिन नवीन की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। गाजियाबाद सूर्य हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर, जवाब दी फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने का दावा। बकरीद के दिन घेर कर किया गया था सूर्य का कत्ल। दिल्ली के मेहरौली में 5 मंजिला इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या हुई 4। मलबे से निकाले गए 8 लोग गंभीर, सीएम रेखा गुप्ता ने रेस्क्यू का जायजा लिया। और पहाड़ों पर जाम ही जाम, सैलानी कर रहे हैं त्राईमाम। उत्तराखंड के चमोली से लेकर हिमाचल प्रदेश के मनाली तक गाड़ियां ही गाड़ियां, घंटों तक सड़कों पर फंसे हैं लोग।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन हुई सूर्या चौहान की हत्या के मामले का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस लगातार असद को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई थी। पुलिस ने असद को गिरफ्तार करने का जाल बिछाया और इसी दौरान असद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में असद घायल हो गया, अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। जानकारी ये मिली थी कि खोड़ा में वो अपने दोस्त के घर पैसे लेने के लिए आ रहा है और उसके बाद वो यहां से रफू चक्कर हो जाएगा।

0: बकरीद के दिन जिस बेरहमी से सूर्या चौहान की हत्या हुई, चाकू से गोद कर उसकी जान ली गई। अब इस हत्याकांड के एक एक आरोपी का यूपी पुलिस हिसाब कर रही है। सूर्या का कत्ल करने वाले मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है।
1: बकरीद के दिन हुए सूर्या चौहान हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां मेन अक्यूज्ड असद को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां ये पूरा एनकाउंटर हुआ, और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूं तो एक ये सुनसान सा इलाका है इंदिरापुरम में, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में, जहां मेन रोड से करीब 500 से 700 मीटर अंदर जो है ये पूरा एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि असद खोरा इलाके में एक बार दोबारा आ सकता है अपने एक दोस्त से पैसे लेने के लिए, ताकि वो यहां से फरार हो सके।
0: दरअसल गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की धर पकड़ में लगी है। एक दिन पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच गाजियाबाद पुलिस को खबर लगी कि मुख्य आरोपी असद अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला था। पता ये भी लगा कि पैसे लेने के बाद उसका प्लान शहर छोड़कर भागने का था। सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस ने असद को दबोचने के लिए जाल बिछाया। कुछ ही समय बाद असद एक दूसरे व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो असद ने फायरिंग शुरू कर दी।
1: असद से ये कोशिश की जाती है कि उसे रोका जाए, और जब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि असद उन पे एक देसी कट्टे से फायरिंग करता है। और अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो ये मार्किंग्स की हुई हैं यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा। ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे। और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है।
0: जवाबी एक्शन में असद को गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
2: असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना कोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है, उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है।
0: सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी मारा जा चुका है। अब परिवार आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहा है।
3: ये एक मांग पूरी हुई है, वो हुई अभी मेरे आगे तस्वीर नहीं आई है, ठीक है, मुझे तस्वीर देख लेंगे तभी मुझे तसल्ली आएगी। तुष्ट हैं पर पूरी तंत्री नहीं, जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे। और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए।
0: सूर्या चौहान की हत्या की वारदात बेहद सनसनीखेज है। जिस तरह उसका कत्ल किया गया वो बेरहमी की इंतहा है। पुलिस आरोपियों पर एक्शन ले रही है और सूर्या के परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश में लगी है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और गाजियाबाद से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 24 वर्षीय पैराओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक और अन्य पैरा एथलीट को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पूछताछ में हत्या की बात कबूल कर ली गई है। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए जानें।
0: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साई कुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
5: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
0: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में हुए हादसे के बारे में जहां देर रात 5 मंजिला इमारत ढह गई थी और इस हादसे में 4 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फायर ब्रिगेड, डीडीएमए और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने में। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गैर इरादतन मामला, हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मालिक की गिरफ्तारी के लिए रेड भी की जा रही है। फिलहाल तस्वीरें देखिए, यहाँ पर स्निफर डॉग्स के साथ साथ बाकी की टीमें मौजूद हैं। कोशिश है कि अगर कोई भी जिंदगी इस मलबे में दबी हुई है तो उसे निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जा सके। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आपको बता दें कि 4 की इस हादसे में जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले चुकी हैं और कई की हालत जो अस्पताल में भर्ती हैं गंभीर बताई जा रही है।
6: ये पूरा एजुकेशन हब है, मेहरौली साकेत का जो इलाका है ये एक एजुकेशन हब है। हर इमारतें यहाँ 4 से 5 मंजिला ऊंची हैं और अगर मैं आपको मलबे की तरफ की तस्वीरें ले जाऊं तो आप देखेंगे कि 4 से 5 मंजिला ऊंची इमारत है तो इसमें मेस भी चलता था। अभी बताया गया कि दरअसल कई लोगों के घर भी थे और इसमें से कुछ स्ट्रक्चर जो बचा खुचा है ये अंदाजा लग रहा है कि हाँ कई सारे कमरे ऐसे हैं जिसमें लग रहा है कि ये रिहायशी इलाका भी था। इसी के साथ साथ ऊपर की मंजिलों पर भी निर्माण चल रहा था और नीचे मेस के साथ साथ दरअसल कोचिंग सेंटर भी था। तो ऐसे में पूरी संभावना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब उस समय हादसा हुआ जब जो मेस का मालिक या कई लोगों को फोन करने की कोशिश की तो फोन लगा नहीं है। तो अब इसीलिए दरअसल प्राथमिकता क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि जब मलबा गिरता है या इस तरह के कोलैप्स के हादसे होते हैं तो शुरुआती 24 घंटे जो है जिसको गोल्डन आवर कहा जाता है, तो अभी उस गोल्डन आवर में कोशिश ये है कि अगर कोई संभावित व्यक्ति है जिसकी सांस चल रही हो उसको यहां से निकाल दिया जाए। और इसीलिए तमाम सारी जो एजेंसियां हैं, मेरे पीछे आप देखिए लंबा कल से ही दरअसल एनडीआरएफ को यहां पर लगाया गया था जो अपने पूरे तामझाम के साथ जो स्निफर डॉग्स हैं उनको लाया गया है, कटर मशीनें, हैवी लिफ्टिंग मशीनें, अर्थ मूविंग मशीनें सब कुछ लाई गई हैं ताकि मलबा निकाला जा सके। अब तक 8 लोग इसमें जो है जो निकाले गए हैं वो घायल हैं तो उनको ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। 26 साल के एक लड़के की मौत हुई है। लेकिन हाँ ये संभावना जरूर, अभी जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो लगातार मैनफोर्स यहाँ पर मैन पावर बढ़ाया भी गया है। हालांकि कुछ लोग ये भी इकट्ठा हुए जिनको जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है और जाहिर है कि अभी जानकारी से ज्यादा जो दबाव है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए। जो लोग जमा है वो चाहते हैं अपनों के बारे में जानकारी, जिनका ना फोन लग रहा है जिनके बारे में वो पता नहीं कर पा रहे हैं तो उनके बीच भी थोड़ी नाराजगी दिख रही है, तो चाहते हैं कम से कम कोई स्पष्ट जवाब मिले, किसी तरह की जानकारी दी जाए। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो है कि 24 घंटा बीतने के पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में अधिकतम कोशिश ये हो कि चाहे स्निफर डॉग्स हों या फिर जो एआई रोबोट्स हों, स्नेकिंग रोबोट्स, इन सब का इस्तेमाल करके अंदर भेजा जाए और अगर किसी तरह की जानकारी मिले, कहीं पर हार्ट बीट अगर मिल जाती है तो वो कोशिश करें उन्हें जिंदा निकाल देने के लिए। और इसीलिए 14 घंटे बीतने के बाद अब जो 10 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और ये राहत बचाव कार्य जो है अभी पूरी रफ्तार पर यहां पर चल रहा है।
4: और ये खबर है गुजरात किससे, जहां आणंद में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज गिरा है। पुल का बड़ा हिस्सा देर रात जमीन पर आ गिरा। हालांकि गनीमत ये रही है कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि एक हादसा कितना ज्यादा भयावह हो सकता था अगर दिन रहा होता या फिर यहां पर आवाजाही हो रही होती। तो निर्माणाधीन ये ब्रिज है जो बड़ा हिस्सा जिसका भरभराकर जमीन पर गिर गया है। आनंद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज के ढहने की तस्वीरें सामने आई हैं। अब कहा जा रहा है कि जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
7: इस महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम पूरा सेफ्टी मेजर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन आज एक माइनर इंसिडेंट मतलब हुआ है कि इसका जो अप्रोच गर्डर है, अप्रोच गर्डर जो स्टार्टिंग में मतलब होता है वो फेल मतलब हुआ है। तो क्या कहते हैं, लेकिन इससे क्या कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये साइट हमारे रेलवे ट्रैक से बहुत दूर है तो ट्रेन ऑपरेशंस पे उसका कोई असर नहीं हुआ है और हमारे रोड ट्रैफिक पे भी ऐसा कोई खास असर नहीं हुआ, नहीं कोई ऐसा डायवर्जन है।
4: अब बात मौसम की करेंगे क्योंकि देश भर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। एक दो दिन से उत्तर भारत के तमाम शहरों में लगातार बारिश हो रही है, गर्मी से राहत मिल गई है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के हिमाचल के ऊंचाई वाले पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और उधर कल राजस्थान में चली है धूल भरी आंधी और तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेतीला तूफान साथ ही साथ ताजा बर्फबारी और दिल्ली NCR में झमाझम बारिश से गर्मी से मिल गई है थोड़ी सी राहत। चकराता में शुरू हुई राहत की बारिश अब आफत की बारिश में बदलती हुई नजर आ रही है क्योंकि बारिश के चलते कालसी चकराता मोटर मार्ग पर जजरेट पहाड़ी से हुए भूस्खलन से मलबे ने लगातार रफ्तार पर ब्रेक लगाया हुआ है। सड़क जाम है, जहां तहां वाहन फंसे हुए नजर आ रहे हैं। JCB सड़क पर लगातार काम कर रही है जिससे कि रास्ते को बहाल किया जा सके। उधर उत्तराखंड के चंपावत में SDRF की सतर्कता और तुरंत एक्शन से एक बड़ा हादसा टला है। श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा में आयोजित जोड़ मेले के दौरान अचानक से हुई बारिश ने लदिया और रतिया नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया था जिससे 50 से ज्यादा श्रद्धालु नदी के बीच में फंस गए थे। पहले से तैनात SDRF की टीम ने उप निरीक्षक दीपक सावंत ने नेतृत्व करते हुए तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला तुरंत। पुलिस और प्रशासन के समन्वय से आवाजाही भी अब नियंत्रित की गई है। राहत की बात यह रही है कि इस पूरी घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, वरना फ्लैश फ्लड के बारे में आप सोच सकते हैं कि किस तरह ये जो तेज बहाव है एक साथ कई लोगों का जीवन समाप्त कर डालता है। देश के पहाड़ी इलाकों में आज भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की तस्वीरें फिर से सामने आई हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की ओर जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में ट्रैफिक के चलते लंबा जाम लगा। तस्वीरें देखिए, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है, वाहनों की कतारें दूर दूर तक देखी गई हैं। यात्रियों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा इसकी वजह से। धाम में यात्रियों की बड़ी ज्यादा भीड़ है जिसकी वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ रूट पर गाड़ियों का सैलाब देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा के लिए यहां रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी है और उधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी वीकेंड टूरिस्ट रश की वजह से पलचान से लेकर मनाली तक सड़कों पर भारी भीड़ है।
8: बीते दिनों पूरे उत्तर भारत में तपती गर्मी ने ऐसा कहर ढाया कि जीना मुहाल हो गया। शहर शहर पारा 45 के पार पहुंचा। लू के तेज थपेड़ों के बीच घर से निकलना तू भर हो गया। लिहाजा इस प्रचंड गर्मी से राहत के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने पहाड़ों का रुख किया। धीरे धीरे संख्या इतनी बढ़ी कि मानो सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। बात चाहे उत्तराखंड की हो या हिमाचल प्रदेश की, इन दिनों एक सी तस्वीर नजर आती है। टूरिस्ट प्लेस पर्यटकों से भरे पड़े हैं, रास्तों पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं।
9: श्री हेमकुंड साहब के लिए आए थे यात्रा के लिए, और हमने जहाँ पे जोशीमठ के लिए जहाँ पे जो बहुत बड़ा लंबा जाम है और तकरीबन जहाँ 3-4 किलोमीटर आगे और 3-4 किलोमीटर पीछे जाम लगा हुआ है, और मान लीजिए भी जो भी भाईजान जहाँ पे आना चाहता है जहाँ तो 2-4 दिन लेट आए और जहाँ मतलब कि अपना इस जाम के बारे में सोच के आए ताकि उसको आने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो सके।
10: केदारनाथ में रास्ता बहुत बुरा है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए। तो
8: पहले उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरों को देखिए, दूर तक गाड़ियों की कतार नजर आ रही है, रास्ते पर लंबा जाम है, लोग फंसे हुए हैं, घंटों इंतजार ने परेशानी बढ़ा दी है।
9: जहाँ पे 1.5 से 2 घंटे हो गए इस जाम में फंसे हुए हैं, और हमारे साथ बच्चे हैं और फैमिली के साथ आए हुए हैं जो कि हमें मान लो काफी परेशानी हो रही है और तकरीबन हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है।
8: अब मसूरी का हाल देखिए, बड़ी तादाद में पर्यटक मसूरी घूमने पहुंचे हैं। पूरा शहर सैलानियों से भरा हुआ है।
11: पूरे देश में नौतपा का कहर बरप रहा है। तापमान की बात करें तो 40 डिग्री से पार तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी जो है वो भारी संख्या में टूरिस्ट देखा जा रहा है। इस वक्त हम मसूरी में मौजूद हैं और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, लाइब्रेरी चौक का ये एरिया है जहां पर भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहा है, क्योंकि शनिवार और रविवार वीकेंड जो है उसमें जो है वो भारी संख्या टूरिस्ट की देखी जा रही है। और मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम खुशनुमा है जिसके चलते मसूरी में जो है वो भारी संख्या में जो है वो पर्यटक पहुँच रहा है। और ये वो कतारें हैं जो नीचे से पहुँच रही हैं। दिल्ली नंबर की गाड़ी हो, हरियाणा नंबर की गाड़ी हो, खासतौर से हरियाणा नंबर की गाड़ियां भी आज यहां पे देखी जा रही हैं और लोग जो है वो मौसम का लुत्फ लेने पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि आगे की तरफ दिखाते चलें। ये वो नज़ारा है जो लाइब्रेरी चौक का इस वक्त है। और वीकेंड्स की बात करें तो वीकेंड्स पे जो मसूरी है वो खचाखच है। होटल्स की अगर हम बात करें तो होटल्स भी जो हैं वो अच्छी संख्या में पैक हो रहे हैं। मध्यम वर्गीय होटल की बात करें या उच्च वर्गीय होटल की बात करें, तमाम जो होटल्स हैं वो पूरी तरीके से पैक चल रहे हैं। लगभग 80% ऑक्यूपेंसी मसूरी की वीकेंड्स पे बताई जा रही है और अनुमानित है कि अभी भी जो है वो भारी संख्या टूरिस्ट की पहुंचेगी। अब ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो है वो सावधानी पूर्वक यात्रा करें, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम बदलेगा और एक बार फिर से मसूरी में ठंडक लौटेगी।
12: मैं तो बहुत ही मतलब ज्यादा गर्मी हो रखी है, और अगर वहाँ से कंपेयर करें यहाँ का, तो यहाँ का बहुत अच्छा वेदर है। इवन यहाँ पे हवा चल रही है, बारिश हो रही है, मतलब मौसम एक घंटे में चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
13: बहुत डिफरेंस है, रात को तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन सुबह ठीक ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, तो रात का डिफरेंस बहुत ज्यादा है और रात को मजा है यहाँ।
14: हम तो मिला था लेकिन इतना भी नहीं मिला, नाइट में आए थे ना, इस वजह से तो बढ़िया लगा आगे।
1: बढ़िया लगा।
11: हाँ, तो दिल्ली के कंपैरिजन में टेम्परेचर थोड़ा लो है, धूप है बट हवा ठंडी है, तो बहुत रिलीफ है यहाँ तो, और बाकी सफर तो अच्छा रहा।
8: गर्मी से राहत पाने के लिए लाखों लोग पहाड़ों की ओर रुक कर रहे हैं। पहाड़ों के हर पर्यटन स्थल पर भारी भीड़ दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का दौर है, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट रोहतांग पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं।
15: पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे पर्यटकों ने पहाड़ी राज्यों का रुख करना शुरू कर दिया है। मैं समय मनाली के पर्यटन स्थल रोहतांग में हूँ। आप 13,000 फीट की ऊंचाई पर आप यहाँ का एक नजारा देख सकते हैं।
16: स्नो है ये, मैं पहली बार स्नो देख रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और तो सुबह से इतना ट्रैफिक था कि हम थोड़े से परेशान शुरू में हो रहे थे, बट हम जब से मस्ती करते हुए आ रहे हैं तब से हमें बहुत मजा आ रहा है।
15: आते ही मतलब ये जो 3-4 किलोमीटर लास्ट के थे, इस टाइम पे हमको ट्रैफिक मिला
16: और हम बहुत देर
15: मतलब
16: से यही हैं।
15: उसमें हम बहुत देर फंसे रहे, लेकिन फिर भी अब जाके थोड़ा आप लोग भी देख रहे हो,
16: मौसम
15: वर्थ इट है, लग जाएगी।
8: लेकिन बढ़ती भीड़ ने मनाली रोहतांग रोड की रफ्तार लगभग रोक दी है। शनिवार को इस रास्ते पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पर्यटकों का कहना है कि रास्ते में 3-4 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। मई महीने में 7 लाख से ज्यादा गाड़ियां शिमला पहुंच गई हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं।
17: 29 दिनों में मई महीने में जो है 7,80,000 के करीब जो है गाड़ियां हमारे डिफरेंट एंट्री पॉइंट से शिमला शहर में आ चुकी हैं, जो कि शोघी, बिलासपुर साइड और किन्नौर साइड से है। यदि मैं बात करूं कि इतने ह्यूज जो है नंबर होने के बावजूद, जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं, कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं है, ट्रैफिक इज गोइंग वेरी स्मूथली। जो टूरिस्ट्स हैं और आम लोग भी हैं शिमला के, उनको जो है किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और इतने ह्यूमंगस ह्यूज ट्रैफिक को जो मैनेज करने के लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हुई है।
8: पर्यटकों की भारी तादाद का सीधा फायदा लोकल टूरिज्म को मिल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल में पीएसजी ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद पेरिस की सड़कों पर लाखों प्रशंसकों का जश्न देखने को मिला, लेकिन इस जश्न के बीच कई जगहों पर लोगों का पागलपन हिंसा का रूप ले चुका था और पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए आप। तस्वीरें 6 दिखा रहे हैं हम आपको, किस तरीके से जश्न मनाया गया और जश्न के माहौल के बाद किस तरीके से लैंप पोस्ट पर लोग चढ़ गए जश्न मनाते हुए, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को इन तमाम लोगों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। कई जगहों पर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कहा जा रहा है 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने रात को किया है। अलग अलग जगहों पर आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। पब्लिक व्हीकल्स में आग लगा दी गई थी, जबरदस्त तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें काबू में करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
20: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
21: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.
22: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
18: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach In association with
19: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.
20: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
21: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
23: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
24: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
5: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: In association with
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अभिषेक बैनर्जी के बाद सांसद कल्याण बैनर्जी पर भी हमला, प्रदर्शन के दौरान सिर में लगी चोट, बीजेपी बोली ड्रामा कर रहे हैं। पिटाई कांड में गिरफ्तारी पर मेरा तेरा। शाम 5:30 बजे पीएम आवास पर राज्यसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग, नई टीम के ऐलान से पहले कल नितिन नवीन की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक।

जवाबी फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने का दावा बकरीद के दिन घेर कर किया था सूर्या का खून। दिल्ली के मैरोली में 5 मंजिल इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या पहुंची 4। मलबे से निकाले गए 8 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम रेखा गुप्ता ने रेस्क्यू का जायजा लिया। और पहाड़ों पर जाम ही जाम, सैलानी कर रहे त्राहिमाम। उत्तराखंड के चमोली से लेकर हिमाचल प्रदेश के मनाली तक गाड़ियों का रेला, घंटों सड़कों पर फंसे यात्री।

नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और शुरुआत करते हैं बुलेटिन के सुपर फास्ट अंदाज में। आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। दिल्ली के मेहरोली में 5 मंजिला इमारत गिरी, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल, बचाव अभियान जारी। घटनास्थल की तस्वीरें सामने आई, मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मामले में एफआईआर दर्ज, बिल्डिंग मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, मालिक की गिरफ्तारी के लिए अब रेड की जा रही है। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। गुजरात के आणंद में निर्माणाधीन पुल गिर गया, कोई हताहत की खबर नहीं। जामनगर में होल्डिंग गिरे हुए होल्डिंग के मामले में अब जांच शुरू, जांच के दौरान होल्डिंग के स्ट्रक्चर, निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों की समीक्षा। सुल्तानपुर में बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, जमीन के लिए पिता को मौत के घाट उतार दिया। सतना में पत्नी के घर न लौटने से आहत युवक ने पेड़ से लगाई फांसी, 3 दिन के बाद वायरल हुआ सुसाइड वीडियो, पुलिस अब जांच कर रही है।

प्रयागराज में कोचिंग सील, पीडी और अग्निशमन विभाग ने लगाई नोटिस। बच्चों ने कहा कि कोचिंग नहीं, उनका भविष्य सील हुआ है। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फाइनल में होगी भिड़ंत। लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए उतरेगी डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी। पहले प्लेऑफ में गुजरात को 92 रनों से हरा चुकी है। दोनों ही टीमें एक बार फिर से आईपीएल ट्रॉफी उठाने को बेकरार हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात दोनों ने एक एक बार जीता है खिताब। विराट कोहली और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार पर सबकी नजर। 2025 में पाटीदार की कप्तानी में ही भी आरसीबी ने आईपीएल जीता था। आरसीबी के कप्तान पाटीदार के पास धोनी और रोहित के क्लब में शामिल होने का एक मौका और जीत के साथ आईपीएल इतिहास में लगातार दो खिताब जीतने वाले वो तीसरे कैप्टन बन जाएंगे। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल के बल्ले से टीम और फैंस को बड़ी उम्मीद। क्वालिफायर टू में गिल ने 104 रनों की पारी खेली थी और टीम को जिताया था। ऑरेंज कैप पर कब्जा कर सकते हैं गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल। फिलहाल 722 रनों के साथ वैभव सूर्यवंशी से भी 54 रन पीछे हैं। पर्पल कैप की दौड़ में गुजरात के कसी को रबाड़ा 28 विकेट के साथ सबसे ऊपर। 26 विकेट झटक कर दूसरे नंबर पर बेंगलुरु के ही भुवनेश्वर कुमार। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वैभव सूर्यवंशी। मंत्री इरफान अंसारी ने इसका किया ऐलान। सूर्यवंशी के जुड़ने से स्वास्थ्य, फिटनेस और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अभियान को मिलेगी मजबूती। देश के युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत। पीएसजी बना यूरोप का बादशाह। पेनल्टी शूटआउट से आर्सेनल को हराकर जीती चैंपियंस लीग। 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियन लीग खिताब अपने नाम कर लिया। युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत। पीएसजी बना यूरोप का बादशाह। पेनल्टी शूटआउट से आर्सेनल को हराकर जीती चैंपियंस लीग। 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियन लीग खिताब अपने नाम कर लिया। हजारों फैंस से मनाया खिताबी जश्न। पूरे स्टेडियम में फ्लेयर्स जलाए गए। हजारों प्रशंसक सड़कों पर उतर आए और कई जगहों पर आगजनी भी हुई। पुलिस के साथ झड़पों की खबर भी। 400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई। मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी खोड़ा इलाके में आएगा पैसे लेने और शहर से भागने की योजना की जानकारी भी मिली थी। खोड़ा इलाके में घेराबंदी के बाद पुलिस ने फरार आरोपी असद को दबोच लिया। आरोपी बाइक से अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचा। पुलिस का दावा कि रोकने पर आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इस असद को मार गिराया। मौके से देसी पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। एनकाउंटर, ये डबल एनकाउंटर था। विकास नगर में भी छेड़खानी का आरोपी। कृष्णनगर में 2 लुटेरे गोली लगने से घायल हुए। महिला से मारपीट करने वाला आरोपी और 2 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में घायल। लखनऊ पुलिस का एक साथ 2 जगहों पर रिएक्शन। नवसारी में नेशनल हाईवे पर कच्चे तेल की चोरी के बड़े घोटाले का भंडाफोड़। 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में सपा नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष और उनके परिजनों पर जमीन कब्जा करने का आरोप। विरोध करने पर सपा नेता की मौजूदगी में जमकर मारपीट। झांसी पुलिस का बड़ा खुलासा। लाखों के जेवरात और नकदी समेत 3 शातिर चोर गिरफ्तार। अवैध तमंचा बरामद। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के कई इलाकों में फिर से बारिश। बदला मौसम का मिजाज। कल से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू होने के संकेत में अगले हफ्ते मध्यम तक जो है 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच सकता है पारा। दिल्ली में बारिश के साथ हवा भी साफ। 5 साल में अब पहली बार मई में संतोषजनक रहा AQI का लेवल। तेज हवाओं के साथ दिल्ली में बारिश। AQI में सुधार। राजधानी का औसत AQI रहा 161। दिल्ली में शनिवार को दर्ज किया गया 3 साल में सबसे कम AQI और अगले कुछ दिनों तक हवा की स्थिति मध्यम श्रेणी की बने रहने की उम्मीद है। मई के आखिरी दिन भी देश की राजधानी दिल्ली NCR में ठंडा बने रहने के इसके आसार। गर्मी का काफी हद तक इंपैक्ट रहेगा कम। दिल्ली NCR में आज 36 से 38 डिग्री के आसपास रह सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर। लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान। मौसम सुहाना। आज भी दिल्ली NCR में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी रहने की संभावना। कई इलाकों में बारिश, गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आज हो सकती है हल्की बारिश। 60 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। जोशीमठ में चारधाम यात्रियों की भारी भीड़। बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम।
चमोली में चारधाम यात्रा के चलते सड़कों पर सैलाब, यातायात व्यवस्था से प्रभावित। मनाली में वीकेंड टूरिस्ट रश से सड़कों पर भीषण जाम, पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी। कांगड़ा में पर्यटन सीजन के चलते ट्रैफिक दबाव बढ़ा है, प्रमुख मार्गों पर गाड़ियों की लंबी कतार। मसूरी में छुट्टियों के दौरान पर्यटकों की भारी भीड़, मॉल रोड और आसपास जाम की स्थिति दिखी। सांसद अभिषेक बैनर्जी के बाद अब सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, प्रदर्शन के दौरान सिर में चोट लगी है। ममता बैनर्जी और विपक्ष ने बीजेपी को घेरा, बताया कि भीड़ को उकसा रहे थे नेता। दिलीप घोष बोले कि हीरो बनने क्यों निकले थे। बंगाल में कल्याण बैनर्जी पर हमले पर बीजेपी ने कहा कि ये ड्रामा कर रहा है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हिंसात्मक राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी, विकास ही हमारे सरकार का लक्ष्य है। आसनसोल में अभिषेक बैनर्जी पर हमले के विरोध में सड़क पर उतरी तृणमूल कांग्रेस, नियामतपुर में धरना प्रदर्शन और जीटी रोड पर जाम। बीजेपी का आरोप, ममता ने अभिषेक बैनर्जी को अस्पताल में भर्ती कराने का दबाव बनाया। अभिषेक बैनर्जी पर हमले के बाद से सियासत, ममता पर अस्पताल को धमकाने का भी आरोप लगाया। अभिषेक बैनर्जी पर हमले के मामले में छह आरोपी गिरफ्तार, अमित मालवीय ने कहा कि पूर्व टीएमसी विधायक के जो है करीबी हैं ये आरोपी। अमित मालवीय ने कहा कि अभिषेक पर हमले के पीछे टीएमसी की ही अंदरूनी कला है। लोकतंत्र की हत्या बताकर ममता का हमला, कल ममता बैनर्जी का मोर्चा भी। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि देश के युवाओं में अद्भुत प्रतिभा है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा, कहा कि देश के एथलीट अब रिकॉर्ड बना रहे हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले सवाल पूछने वाले छात्रों को जवाब नहीं, अपमान मिला है। एंटी नेशनल सोरोस एजेंट टिप्पणी पर राहुल गांधी का तंज, राहुल गांधी ने छात्रों के समर्थन में बड़ा दावा किया। कल नितिन नवीन ने बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक की, 1 बजे बीजेपी ऑफिस में मीटिंग होगी। नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा से पहले केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। आज शाम 5:30 बजे बीजेपी के केंद्रीय चुनाव की बैठक है और आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर चर्चा भी। देश को आज नया सीडीएस भी मिल गया, लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमणी अपना कार्यभार उन्होंने संभाला। राजा सुब्रमणी देश के तीसरे सीडीएस बने। नए सीडीएस जनरल सुब्रमणी को दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सीडीएस बनने वाले देश के तीसरे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं। एडमिरल के स्वामीनाथन बने नए नौसेना अध्यक्ष, नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। झांसी में पलंग पर मरीज को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे परिवार वाले, वीडियो हुआ वायरल। राजकोट में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हथौड़े से हत्या की, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है जांच। लुधियाना में बुजुर्ग दंपति के डबल मर्डर से सनसनी मामले की जांच कर रही है पुलिस। चंपावत में एसडीआरएफ की सतर्कता से बड़ा हादसा टला, उफनती नदी में फंसे 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं का सकुशल रेस्क्यू किया गया। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियन नागरिक का मिला शव, मामले की जांच कर रही है पुलिस। आज है ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन तिथि, पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र स्नान के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़, डुबकी लगाकर पूजा पाठ भी कर रहे हैं। प्रयागराज में भी संगम पर स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान से विशेष पुण्य मिलता है। चारधाम यात्रा में अब तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे, 2,40,000 टूरिस्ट व्हीकल भी पहुंचे। केदारनाथ धाम में एक दिन में 24,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, कुल संख्या अब 10 लाख के पार। फिल्म कारा हिरण का पोस्टर हुआ जारी, सलमान खान लॉरेंस विवाद में बनी है फिल्म। 20 जून को इसका जो है टीजर आएगा। रणवीर कपूर की रामायण के एक्शन सीन होंगे इंटरनेशनल लेवल के, एवेंजर्स फेम टेरी नोटरी जुड़े हुए प्रोजेक्ट से। फिल्म ये जवानी है दीवाने ने पूरे कर लिए रिलीज के 13 साल। फैंस के बीच में फिल्म के सॉन्ग बलम पिचकारी के क्रेज का भी उतना ही क्रेज बना हुआ है। 10 जुलाई को मुंबई में षणमुखानंद हॉल में होगा द ड्रीम गर्ल डायमंड जुबली कॉन्सर्ट। लाइव कॉन्सर्ट में गाना गाएंगे हेमा मालिनी। वेब सीरीज ब्राउन कटवेला हुआ रिलीज, अब नैतार में अवतार में यहां करिश्मा कपूर दिखाई देंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पी के हेडसेट ने कहा कि अगर समझौता नहीं हो पाता तो अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है।
ईरान के एक सीनियर सांसद अलाउद्दीन सलीमी ने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट के प्रबंधन को औपचारिक रूप देने वाले विधेयक पर संसद में जलमतदान। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने इसराइल के हवाई हमलों और देश के कई इलाकों पर कब्जे की कड़ी निंदा की, कहा कि इसराइल लेबनान के इतिहास को मिटाने में जुटा है। इसराइल के तेल अविव में युद्ध के विरोध में सड़कों पर हजारों लोग, प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर देश को जानबूझकर युद्ध में धकेलने के गंभीर आरोप लगाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि उनका देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं करेगा, स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना होने तक इसराइल के साथ नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वो चर्चा का विषय बने। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर अपनी एक एआई जनरेटेड तस्वीर साझा की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने देश के लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा कि खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक आपको अलर्ट रहना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने तानाशाही के खिलाफ विपक्ष का भारी विरोध प्रदर्शन का दौर। अपदस्थ विपक्ष नेता ओज़गुर ओज़ेल के हजारों समर्थकों ने राजधानी अंकारा में मार्च निकाला। विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने पूर्वी कांगो में बुनिया शहर का दौरा किया और तेजी से फैल रहे इबोला वायरस को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा। चौथी वरीयता प्राप्त कुकु गॉफ और छठी वरीयता प्राप्त अमांडा फ्रेंच ओपन से बाहर। 28वीं वरीयता प्राप्त पोटापोवा ने कुकु गॉफ को हरा दिया।

और अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं। अभिषेक बैनर्जी पर जो हमला हुआ था उस पर दोनों ही तरफ से टीएमसी बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन अब बीजेपी ने सोनारपुर में हुए इस हमले को लेकर एक बड़ा दावा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के सिलसिले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कथित

0: एक दिन पहले टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, जिसे लेकर पार्टी बौखलाई हुई है और सत्ताधारी शुभेंदु सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी इसे पिछली सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश बता रही है।
1: लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था।
2: काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, रहते आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों, घर में रहिए ना।
3: अभिषेक बनर्जी पर थप्पड़ चले, उन पर भीड़ ने पत्थर से हमला किया, टीएमसी सांसद पर अंडे फेंके गए, धक्का मुक्की होती रही अभिषेक जान बचाते रहे। उनके निजी कर्मियों ने घेरा बनाने की कोशिश की, उन्हें बचाने के लिए मशक्कत करते रहे, लेकिन सैकड़ों की भीड़ के गुस्से के आगे चंद गिने चुने सुरक्षा कर्मियों का घेरा टूट गया। उस घेरे के टूटने के बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में स्क्रीन पर दिख रहा है। बंगाल की सियासत में हिंसा की ये कोई नई तस्वीर नहीं, चुनाव से पहले भी बंगाल का रक्त चरित्र सामने आया है और चुनाव के बाद भी वो दौर जारी है। पहले टीएमसी सांसद पर हमला और फिर अस्पताल में इलाज में ढिलाई बरतने का गंभीर इल्जाम। पूर्व सीएम ममता बनर्जी गुस्से में हैं। ममता बनर्जी सवाल उठा रही है, पूछ रही है सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों किया गया।
1: बीच ऑफ सिक्योरिटी तो है ही, जानबूझ के पुलिस का एनकरेज नहीं हुआ, ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला।
3: टीएमसी के खिलाफ बीजेपी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। शुभेंदु सरकार के मंत्री टीएमसी की उनकी करनी को याद दिला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ममता सरकार में कैसे बीजेपी नेताओं पर हमले हुए, मंत्री पलटवार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि टीएमसी के सत्ता संभालने के दौरान कैसे कानून का राज खत्म हो गया था।
2: जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को फोर्थ पोजीशन मिला है, इसी को देख के समझ जाना चाहिए। काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के दो दो MLA हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी, जनता ने सब देखा है। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों, घर में रहिए ना शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए।
3: अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले के बाद टीएमसी गुस्से से भरी हुई, बंगाल के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हुगली की हैं। यहाँ पार्टी कार्यकर्ता गुस्से में दिखे, उन्होंने सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही हमलावरों पर एक्शन की मांग भी की। इस हमले को लेकर बंगाल पुलिस ने सोनारपुर में केस दर्ज किया है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
0: अभिषेक बनर्जी ने वो कल सोनारपुर गए थे और वहीं पर उन पर ही हमला हुआ। बीती रात वो अस्पताल से इलाज के बाद अपने घर भी चले गए, लेकिन आज सुबह से उनके कालीघाट स्थित आवास के बाद बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात किए गए। इन पुलिस वालों को कल ढूंढा जा रहा था कि कहां है, कल पुलिस वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, उनके साथ जो सिक्योरिटी थी वही थी, लेकिन आज उनके कालीघाट स्थित आवास के बाहर बड़ी पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है।
4: सोनारपुर में कल टीएमसी कार्यकर्ताओं को देखने गए अभिषेक बनर्जी, जो हमले में घायल हुए, उसके बाद दो अस्पतालों में उनको ले जाया गया, कोलकाता के अपोलो और बेलव्यू अस्पताल में, लेकिन दोनों जगह से ही उनको डिस्चार्ज किया गया। और इसके बाद यही कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी का घर है जहां पर इस वक्त अभिषेक बनर्जी का इलाज चल रहा है। कल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अपोलो अस्पताल और बेलव्यू अस्पताल दोनों में ही बीजेपी की ओर से दबाव डाला गया ताकि उनको डिस्चार्ज

0: किया जाए, चिकित्सा नहीं मिली उनको और इसके बाद यहाँ पर लाकर सलाइन वगैरह या डॉक्टर्स की उपस्थिति वगैरह सब कुछ यहाँ पर घर में ही ट्रीटमेंट इस वक्त किया जा रहा है। कल देर रात इसी घर में अभिषेक बनर्जी को लाया गया और कल लगभग शाम 5 बजे के आसपास सोनारपुर में उन पर हमला हुआ था। उसके बाद उनको सेंट्रल फोर्सेज और पुलिस की टीम ने वहां से निकाला। निकालने के बाद सबसे पहले अपोलो अस्पताल ले जाया गया। अपोलो में कुछ देर रहने के बाद ममता बनर्जी बाहर आई, आरोप लगाया कि दबाव दिया जा रहा है, चिकित्सा नहीं हो रही है। उनको निकाल के बेलव्यू लाया गया, बेलव्यू के ITU में भर्ती किया गया, लेकिन वहां से भी कुछ देर बाद ममता बनर्जी उन्हें लेकर निकल गई और आरोप लगाया कि BJP की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि चिकित्सा मुहैया नहीं कराई जाए। ऐसे में एक वीडियो भी सामने आया जहां पर देखा गया कि जो बेलव्यू के CEO हैं प्रदीप टंडन, उनको धमकी भरा अंदाज में ममता बनर्जी बोल रही हैं कि आने वाले दिनों में जब सत्ता में दिल्ली में BJP की सरकार नहीं रहेगी तब देख लिया जाएगा।
1: अभिषेक बैनर्जी पर हमले के बाद से उनके ट्रीटमेंट को लेकर ममता बैनर्जी ने सवाल उठाए तो अब मंत्री अग्निमित्रा पॉल सामने आए और उन्होंने इन सवालों का जवाब दिया।
2: अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था।
3: जब आप उनसे मिले तो उनकी क्या कंडीशन थी, अपोलो में थे और अपोलो से आपको निकाल के बेलव्यू लाना पड़ा, उनको यहाँ भी
2: क्यों उसको उधर में थ्रेट किया? और जो डॉक्टर के साथ जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो बोलते इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है?
4: डॉक्टर अगर सोचेगा कि आपको कुछ हुआ नहीं है, आपको सिर्फ एक पैन 40 का जरूरत है, आपको क्या हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा? आपको बेड दिया जाएगा? हाँ, नाटक करने के लिए, राजनीति करने के लिए? अब डॉक्टर लास्ट बात बोलेगा ना, हम तो नहीं बोल सकते, CM साहब तो नहीं बोल सकते, ममता बनर्जी आप भी नहीं बोल सकते। आपका भाईपो को, आपका भांजा को पैन 40 का जरूरत था, उसके लिए भर्ती होना जरूरत नहीं था। राजनीति फिर से बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव राजनीति मत करिए।
1: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
10: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: आगे आगे उधर उधर करेक्ट करेक्ट
12: मिल गया। आपके पास 2 options हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: और वही कहां गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: इन एसोसिएशन विद
11: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
10: हिंट, बड़े आराम से
12: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
13: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
14: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
10: विमल बोलो जुबां केसरी।
15: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
18: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
19: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
20: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars.

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s Hits or ask your device to play 90s Hits on TuneIn.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

अभिषेक बैनर्जी के पास सांसद कल्याण बैनर्जी पर भी हमला, प्रदर्शन के दौरान सिर में लगी चोट, बीजेपी बोली ड्रामा कर रहे हैं, पिटाई कांड में गिरफ्तारी पर अब मेरा तेरा। शाम 5:30 बजे पीएम आवास पर राज्यसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, नई टीम के ऐलान से पहले कल नितिन नवीन की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर, 3 और आरोपी गिरफ्तार, बकरीद के दिन घेर कर किया था सूर्या का कत्ल। दिल्ली के मेहरोली में 5 मंजिला इमारत ढही, मरने वालों की संख्या पहुंची 4, मलबे से निकाले गए 8 लोग, अब गंभीर रूप से घायल, सीएम रेखा गुप्ता ने रेस्क्यू का लिया जायजा। और पहाड़ों पर जाम ही जाम, सैलानी कर रहे त्राही माम, उत्तराखंड के चमोली से लेकर हिमाचल प्रदेश के मनाली तक सिर्फ गाड़ियों का रेला, घंटों सड़कों पर फंसे रहे यात्री।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। देश के पहाड़ी इलाकों में भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की तस्वीरें आज फिर देखने को मिली हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की ओर जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के चलते ट्रैफिक जाम लग गया। कई कई किलोमीटर तक वाहनें कतारबद्ध दिखाई दी। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। धाम में यात्रियों की खूब भीड़ है, जिसकी वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ रूट पर यात्रियों का गाड़ियों का सैलाब देखने को मिल रहा है। चार धाम यात्रा के लिए यहां रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में वीकेंड टूरिस्ट रश के चलते पलचान से लेकर मनाली तक सड़कों पर भीड़ ही भीड़, जाम की स्थिति बनी हुई दिखाई दी।
1: बीते दिनों पूरे उत्तर भारत में तपती गर्मी ने ऐसा कहर ढाया कि जीना मुहाल हो गया। शहर शहर पारा 45 के पार पहुंचा। लू के तेज थपेड़ों के बीच घर से निकलना तू भर हो गया। लिहाजा इस प्रचंड गर्मी से राहत के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने पहाड़ों का रुख किया। धीरे धीरे संख्या इतनी बढ़ी कि मानो सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। बात चाहे उत्तराखंड की हो या हिमाचल प्रदेश की, इन दिनों एक सी तस्वीर नजर आती है। टूरिस्ट प्लेस पर्यटकों से भरे पड़े हैं। रास्तों पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं।
2: श्री हेमकुंड साहब के लिए आए थे यात्रा के लिए, और हमने जहां पे जोशीमठ के लिए, जहां पे जो बहुत बड़ा लंबा जाम है, और तकरीबन जहां 3-4 किलोमीटर आगे और 3-4 किलोमीटर पीछे जाम लगा हुआ है, और मान लीजिए भी जो भी भाईजान जहां पे आना चाहता है, जहां तो 2-4 दिन लेट आए और जाम, मतलब कि अपना इस जाम के बारे में सोच के आए ताकि उसको आने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो।
3: केदारनाथ में रास्ता बहुत बुरा है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए। तो उधर जो विजिटर है, बहुत लोग बाहर से भी, बाहर कंट्री से भी आ रहा है।
1: पहले उत्तराखंड के जोशीमठ की इन तस्वीरों को देखिए। दूर तक गाड़ियों की कतार नजर आ रही है। रास्ते पर लंबा जाम है, लोग फंसे हुए हैं। घंटों इंतजार ने परेशानी बढ़ा दी है।
2: जहाँ पे 1.5 से 2 घंटे हो गए इस जाम में फंसे हुए हैं, और हमारे साथ बच्चे हैं और फैमिली के साथ आए हुए हैं, जो कि हमें मान लो काफी परेशानी हो रही है और तकरीबन हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है।
1: अब मसूरी का हाल देखिए। बड़ी तादाद में पर्यटक मसूरी घूमने पहुंचे हैं। पूरा शहर सैलानियों से भरा हुआ है।
4: पूरे देश में नौतपा का कहर बरप रहा है। तापमान की बात करें तो 40 डिग्री से पार तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी जो है वो भारी संख्या में टूरिस्ट देखा जा रहा है। इस वक्त हम मसूरी में मौजूद हैं, और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, लाइब्रेरी चौक का ये एरिया है जहां पर भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहा है, क्योंकि शनिवार और रविवार वीकेंड जो है उसमें जो है वो भारी संख्या टूरिस्ट की देखी जा रही है। और मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम खुशनुमा है, जिसके चलते मसूरी में जो है वो भारी संख्या में जो है वो पर्यटक पहुंच रहा है। और ये वो कतारें हैं जो नीचे से पहुंच रही हैं। दिल्ली नंबर की गाड़ी और हरियाणा नंबर की गाड़ी, खासतौर से हरियाणा नंबर की गाड़ियां भी आज यहां पे देखी जा रही हैं, और लोग जो है वो मौसम का लुत्फ लेने पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि आगे की तरफ दिखाते चले। ये वो नज़ारा है जो लाइब्रेरी चौक का इस वक्त है। और वीकेंड्स की बात करें तो वीकेंड्स पे जो मसूरी है वो खचाखच है। होटल्स की अगर हम बात करें तो होटल्स भी जो हैं वो अच्छी संख्या में पैक हो रहे हैं। मध्यम वर्गीय होटल की बात करें या उच्च वर्गीय होटल की बात करें, तमाम जो होटल्स हैं वो पूरी तरीके से पैक चल रहे हैं। लगभग 80% ऑक्यूपेंसी मसूरी की वीकेंड्स पे बताई जा रही है, और अनुमानित है कि अभी भी जो है वो भारी संख्या टूरिस्ट की पहुंचेगी। अब ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो है वो सावधानी पूर्वक यात्रा करें, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम बदलेगा और एक बार फिर से मसूरी में ठंडक लौटेगी।
5: मैं तो बहुत ही मतलब ज्यादा गर्मी हो रखी है, और अगर वहाँ से कंपेयर करें यहाँ का, तो यहाँ का बहुत अच्छा वेदर है। इवन यहाँ पे हवा चल रही है, बारिश हो रही है, मतलब मौसम एक घंटे में चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
6: बहुत डिफरेंस है, रात को तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन सुबह ठीक ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, तो रात का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और रात को मजा है यहाँ।
7: हम तो मिला था लेकिन इतना भी नहीं मिला, नाइट में आए थे ना, इस वजह से तो बढ़िया लगा आगे।
8: बढ़िया लगा।
9: हाँ, तो दिल्ली के कंपैरिजन में टेम्परेचर थोड़ा लो है, धूप है बट हवा ठंडी है, तो बहुत रिलीफ है यहाँ तो, और बाकी सफर तो अच्छा रहा।
1: गर्मी से राहत पाने के लिए लाखों लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। पहाड़ों के हर पर्यटन स्थल पर भारी भीड़ दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का दौर है, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट रोहतांग पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं।
10: मैदानी इलाकों में जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ते जा रहा है वैसे वैसे पर्यटकों ने पहाड़ी राज्यों का रुख करना शुरू कर दिया है। मैं इस समय मनाली के पर्यटन स्थल रोहतांग में हूँ। आप 13,000 फीट की ऊंचाई पर आप यहाँ का एक नजारा देख सकते हैं।
11: फर्स्ट स्नो है ये, मैं पहली बार स्नो देख रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। ऑल्दो सुबह से इतना ट्रैफिक था कि हम थोड़े से परेशान शुरू में हो रहे थे, बट हम जब से मस्ती करते हुए आ रहे हैं तब से हमें बहुत मजा आ रहा है।
12: आते ही मतलब ये जो 3-4 किलोमीटर लास्ट के थे इस टाइम पे हमको ट्रैफिक मिला
11: और हम बहुत देर
12: मतलब
11: से यही
12: है। उसमें हम बहुत देर फंसे रहे लेकिन फिर भी अब जाके थोड़ा आप लोग भी देख रहे हो
11: मौसम
12: वर्थ इट है लग जाएगी।
1: लेकिन बढ़ती भीड़ ने मनाली रोहतांग रोड की रफ्तार लगभग रोक दी है। शनिवार को इस रास्ते पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पर्यटकों का कहना है कि रास्ते में 3-4 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। मई महीने में 7 लाख से ज्यादा गाड़ियां शिमला पहुंच गई हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं।
13: 29 दिनों में मई महीने में जो है 7,80,000 के करीब जो है गाड़ियां हमारे डिफरेंट एंट्री पॉइंट से शिमला शहर में आ चुकी हैं, जो कि शोघी बिलासपुर साइड और किन्नौर साइड से है। यदि मैं बात करूं कि इतने ह्यूज जो है नंबर होने के बावजूद, जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं, कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं है, ट्रैफिक इज गोइंग वेरी स्मूथली। जो टूरिस्ट हैं और आम लोग भी हैं शिमला के, उनको जो है किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और इतने ह्यूमंगस ह्यूज ट्रैफिक को जो मैनेज करने के लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हुई है।
1: पर्यटकों की भारी तादाद का सीधा फायदा लोकल टूरिज्म को मिल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: देशभर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है और एक दो दिनों से उत्तर भारत के तमाम शहरों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत बनी हुई है। दूसरी ओर उत्तराखंड और हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला दिखा है। उधर कल राजस्थान में धूल भरी आंधी चली, तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। 3 अलग-अलग जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन आप देखिए एक तरफ बारिश है, एक तरफ बर्फबारी है और एक तरफ रेतीला तूफान है। तो मौसम बदला हुआ है और उसका इम्पैक्ट क्षेत्र परिस्थिति के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल अलग है। मैदानी भागों में बारिश है, पहाड़ों पर बर्फबारी है और रेगिस्तान में रेतीला तूफान। और वहां पर भी मानो रेतीला तूफान ऐसा था कि पहाड़ जैसा विशाल काय दिखाई दिया। उत्तराखंड के चक्राता में शुरू हुई राहत की बारिश अब आफत में बदलती नजर आ रही, क्योंकि बारिश के चलते काल से चक्राता मोटर मार्ग पर जजरेड पहाड़ी से हुए भूस्खलन के मलबे ने अब लगातार रफ्तार पर ब्रेक लगा रखी है। सड़क पर जाम है, जहां तहां पर्यटक फंसे हैं, लोग भी फंसे, वाहन मौके पर हैं। अब जेसीबी सड़क को बहाल करने में जुटी हुई जरूर है। उत्तराखंड के चंपावत में एसडीआरएफ की सतर्कता और तुरंत एक्शन से एक बड़ा हादसा भी टल गया। श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा में आयोजित जोड़ मेले के दौरान अचानक बारिश हुई और उससे लदिया और रतिया नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे 50 से ज्यादा श्रद्धालु नदी के बीच में फंस गए। पहले से तैनात एसडीआरएफ की टीम ने उप निरीक्षक दीपक सामंत के नेतृत्व में तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी श्रद्धालुओं को तुरंत निकाला गया। पुलिस और प्रशासन में समन्वय से आवाजाही भी नियंत्रित की गई। अब इसमें राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। और राजस्थान में जो हुआ वो किसी आम आंधी का मंजर नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो थार का रेगिस्तान अपने पूरे रौद्र रूप में जाग उठा। दोपहर के उजाले में धूल के विशाल बवंडर ने शहर से निकल लिया, सूरज गायब हो गया, दिन में ही रात उतर आई और लोगों को हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। तो कहीं आसमान पर सिर्फ रेत का साम्राज्य नजर आया। चुरू, बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर और सीकर समेत कई जिलों में धूल भरे तूफान ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी। अब आप देखिए राजस्थान में रेत के इस प्रलय की सबसे खौफनाक तस्वीरें हैं।

0: धूल का बवंडर, जहां आसमान से बादल नहीं बल्कि रेत का कहर बरसा, कुछ ही मिनटों में सूरज गायब हो गया और पूरा प्रदेश धूल के समंदर में डूब गया। सबसे खौफनाक तस्वीरें सामने आई चूरू और सरदार शहर से, जहां दोपहर 2 बजे ऐसा अंधेरा छाया कि वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा, कुछ मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो गया। जोधपुर में रेत की दीवार जैसी आंधी शहर पर टूट पड़ी, धूल के गुब्बार ने पूरे शहर को निगल लिया। अजमेर में पहले रेत का तूफान आया, फिर बारिश ने दस्तक दी, लेकिन तब तक जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। राजधानी जयपुर भी इस रेगिस्तानी तूफान से नहीं बची, आंधी ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बीकानेर, नोखा, कोलायत और खाजूवाला में तेज हवाओं के साथ काले बादलों और धूल के गुब्बार ने आसमान को ढक लिया। लोगों को दिन में रात जैसा मंजर देखने को मिला। फतेहपुर शेखावाटी में उठा रेत का महाबवंडर, जिसने सीकर, चूरू और आसपास के इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। हर तरफ सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दी। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान की तरफ से आया करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला रेत का बवंडर, 30 मिनट तक चलता रहा धूल का तूफान। कई जगह ट्रांसफार्मर गिरे, पेड़ उखड़े, होर्डिंग उड़ गए। हालांकि बाद में बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू से लेकर जयपुर, अजमेर से लेकर जोधपुर, राजस्थान का बड़ा हिस्सा इस रेगिस्तानी कहर की चपेट में रहा। रेत के बवंडरों ने सिर्फ आसमान नहीं ढका बल्कि कुछ देर के लिए जिंदगी की रफ्तार भी रोक दी, और याद दिला दिया कि जब थार जागता है तो पूरा राजस्थान उसकी ताकत महसूस करता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: भीषण गर्मी से बेहाल देश का आखिरकार मौसम बदला और उसने राहत दी है। दिल्ली में झमाझम बारिश ने तपिश कम कर दी है, तो पहाड़ों पर मई के आखिरी दिनों में भी बर्फबारी और बर्फीले नजारों ने लोगों को हैरान कर दिया है। राजधानी से लेकर हेमकुंड साहिब और रोहतांग पास तक मौसम का बदला मिजाज लोगों के लिए राहत भी है, रोमांच भी है। अब आप देखिए मौसम की बदलती तस्वीरों पर यह खास रिपोर्ट।
0: कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस झेल रही दिल्ली में आखिरकार राहत की बारिश हुई। आरके पुरम, फिरोजशाह रोड और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्टेडियम समेत राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। ठंडी हवाओं और बादलों की दस्तक के साथ लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।
2: जो आज थंडरस्टॉर्म हुआ उससे जो है तापमान जो है कम से कम 4-5 डिग्री गिर गया, तो अब ये होगा कि अब ये 40 से नीचे ही रहेगा, 40 से ऊपर नहीं रहेगा, तो हीट वेव से आपको निजात मिल गई, तो वो एक बहुत बड़ा रेस्पाइट है। और आने वाले दिनों में छुटपुट होगी, वो ज़्यादा तो नहीं, छुटपुट डस्ट स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म जारी रह सकता है कहीं कहीं हुए स्टॉर्म।
0: दिल्ली में जहां बारिश राहत लेकर आई, वहीं उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में मौसम ने बर्फीला रूप धारण कर लिया। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिससे यात्रा चुनौतीपूर्ण बन गई है। हालांकि श्रद्धालुओं की आस्था के आगे मौसम की मुश्किलें छोटी पड़ती नजर आ रही हैं। और अब रुख हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे का। मई के आखिरी दिनों में भी यहां बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडी हवाएं, धुंध और बर्फीले नजारों के बीच पर्यटक गर्मी से राहत का आनंद ले रहे हैं। मैदानी इलाकों में जहां तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच रहा है, वहीं रोहतांग में लोग बर्फ के बीच जन्नत जैसा एहसास कर रहे हैं। दिल्ली में बारिश की राहत, हेमकुंड में बर्फबारी की चुनौती और रोहतांग में बर्फ का रोमांच, मौसम के ये अलग अलग रंग बता रहे हैं कि प्रकृति का मिजाज जब बदलता है तो हर तस्वीर अपने आप में एक नई कहानी बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दुर्नवी सूर्या चौहान की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो गया है, वो मारा गया है। पुलिस लगातार असद को गिरफ्तार करने की कोशिशें कर रही थी। पुलिस ने असद को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। इसी दौरान असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ। उसे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई।

0: बकरीद के दिन जिस बेरहमी से सूर्या चौहान की हत्या हुई, चाकू से गोद कर उसकी जान ली गई। अब इस हत्याकांड के एक एक आरोपी का यूपी पुलिस हिसाब कर रही है। सूर्या का कत्ल करने वाले मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है।
1: बकरीद के दिन हुए सूर्या चौहान हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां मेन अक्यूज्ड असद को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां ये पूरा एनकाउंटर हुआ, और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूं तो एक ये सुनसान सा इलाका है इंदिरापुरम में, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में, जहां मेन रोड से करीब 500 से 700 मीटर अंदर जो है ये पूरा एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि असद खोरा इलाके में एक बार दोबारा आ सकता है अपने एक दोस्त से पैसे लेने के लिए, ताकि वो यहां से फरार हो सके।
0: दरअसल गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की धर पकड़ में लगी है। एक दिन पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच गाजियाबाद पुलिस को खबर लगी कि मुख्य आरोपी असद अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला था। पता ये भी लगा कि पैसे लेने के बाद उसका प्लान शहर छोड़कर भागने का था। सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस ने असद को दबोचने के लिए जाल बिछाया। कुछ ही समय बाद असद एक दूसरे व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो असद ने फायरिंग शुरू कर दी।
1: असद से ये कोशिश की जाती है कि उसे रोका जाए, और जब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि असद उन पे एक देसी कट्टे से फायरिंग करता है। और अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो ये मार्किंग्स की हुई हैं यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा। ये वो जगह है जहां पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे। और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है।
0: जवाबी एक्शन में असद को गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
2: असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना कोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है, उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है।
0: सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी मारा जा चुका है। अब परिवार आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहा है।
3: ये एक मांग पूरी हुई है, वो ये भी मेरे आगे तस्वीर नहीं आई है, ठीक है, मुझे तस्वीर देख लेंगे तभी मुझे तसल्ली आएगी।
4: पुलिस ने कहा है कि असद को हमने उठाकर उसके एनकाउंटर कर दिया, उसको ढेर कर दिया, तो आप उससे संतुष्ट हैं?
3: पूरी अभी संतुष्ट हैं, पर पूरी संतुष्टि नहीं जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे। और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी एनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए।
0: सूर्या चौहान की हत्या की वारदात बेहद सनसनीखेज है। जिस तरह उसका कत्ल किया गया वो बेरहमी की इंतहा है। पुलिस आरोपियों पर एक्शन ले रही है और सूर्या के परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश में लगी है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: गाजियाबाद से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य पैरा एथलीट को ही हिरासत में लिया है, जिसने पूछताछ में हत्या की बात को कबूल करने का दावा किया। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं।
0: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साईकुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
6: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
0: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
5: अब कोलाबा से एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है जहां पर एक इमारत में बताया जा रहा है कि भीषण आग लग गई है और कई फ्लोर्स में आग लगने की समय खबर मिल रहे हैं। मुंबई के कोलाबा इलाके के हम उस बिल्डिंग की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी है। आग बताया जा रहा है कि पहले फ्लोर में लगी और आप धुएं का गुबार भी देख सकते हैं कितना ऊंचा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आग कितनी भीषण है ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है। आग से बिल्डिंग का भी जानकारी मिल रही है कि पहले फ्लोर को नुकसान पहुंचा है लेकिन जितनी तेजी से आग लग रही है पूरी की पूरी बिल्डिंग चपेट में आ सकती है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
11: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
10: Smartless.
12: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
10: Marketplace.
13: Big three on the program today, or, you know, the big three of
10: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
14: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach. In association with
8: Bharat Ki Apni Electric Sawari, Sokudo.
15: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
18: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. With this guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.

0: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साईकुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
1: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसका नाम यश खटीक है। यश खटीक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटीक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटीक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
0: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: अभिषेक बैनर्जी के बाद आज कल्याण बैनर्जी पर भी हमला। प्रदर्शन के दौरान सिर पर लगी चोट, बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर, पिता समेत तीन और आरोपी भी गिरफ्तार। पुलिस का दावा, पूछताछ में खुलासा, फरहान ने दिया था चाकू। पहाड़ों पर जाम ही जाम सैलानी कर रहे हैं त्राहिमाम। उत्तराखंड के चमोली से लेकर हिमाचल प्रदेश के मनाली तक गाड़ियों का लगा रेला, घंटों सड़कों पर फंसे रहे लोग। अहमदाबाद में आज आईपीएल फाइनल का महामुकाबला, गिल और कोहली के बल्ले की जंग। आरसीबी और गुजरात के पास दूसरी बार चैंपियन बनने का मौका।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घंटों घंटों वॉर रूम में रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात करते हैं, बड़ी बड़ी और चौंकाने वाली रणनीति का ऐलान कर देते हैं। लेकिन जब इससे कुछ नहीं होता, जब इससे ईरान झुकता नहीं है, तो फिर वो एआई पर जाकर अपनी एआई जनरेटेड अपनी योद्धा वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। आलम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग के मैदान में तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन सोशल मीडिया योद्धा के तौर पर जरूर उनकी वाहवाही हो रही। आज रणभूमि में बात करेंगे जंग में फेल और सोशल मीडिया पर हिट डोनाल्ड ट्रंप के इसी अवतार को लेकर। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रणभूमि स्पेशल में आज के लिए आपके लिए क्या कुछ खास है। सबसे पहले रणभूमि स्पेशल में आज हम युद्ध के तीन अलग अलग मोर्चों की बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे वहां पर तबाही मची हुई है, और आपको बताएंगे कैसे आने वाले दिनों में यहां पर हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। रणभूमि स्पेशल में आज की पहली खबर, हम आपको बताएंगे कि ट्रंप की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो संदेश और संकेत दोनों दे रही है कि ईरान को लेकर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा फैसला वो लेने वाले हैं। इस खबर में आपको ट्रंप के योद्धा अवतार की कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। रणभूमि स्पेशल की दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे हॉर्मुज में ईरान के समुद्री माइंस के जाल में फंसता जा रहा अमेरिका, और आखिरकार क्यों अब तक एक भी माइंस या फिर इन माइंस के बारे में जानकारी हासिल करने में अमेरिका नाकामयाब साबित हुआ है। रणभूमि स्पेशल की तीसरी खबर में अमेरिका को परेशान करने वाली खबर आपको दिखाएंगे कि कैसे ईरान ड्रोन युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहा है, वहां से जुड़ी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर में हम आपको दिखाएंगे कि रूस और यूक्रेन की जंग में एक बार फिर से रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के ऊपर बड़े ड्रोन और मिसाइलों से बड़े भीषण हमले किए हैं। रणभूमि स्पेशल में पांचवी बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे जलते सुलगते पेरिस के बारे में, बताएंगे कि आखिरकार कैसे एक फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने के बाद भी पेरिस सेंट जर्मेन ने टीम के समर्थकों ने जश्न के नाम पर पूरे शहर में ही आग लगा दी और कोहराम मचा दिया। आज रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर होंगे और हमारे साथ होंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव सर। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो आपको ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर पूरा अपडेट देगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ईरान अमेरिका तनातनी से जो किसी भी वक्त महायुद्ध में शक्ल ले सकती है, और इसका इशारा खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया है। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने योद्धा अवतार में सामने आए और बता रहे हैं कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिकी हमले के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान से डील बहुत करीब पहुंच चुकी है, बस कुछ मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये नया अवतार दुनिया के लिए संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए, जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये एआई रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है। तो क्या ये माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी।
1: Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our president, who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. Iran is the clear...
0: हेक्सिथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेच फंसा है और मुझ पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर, जिस पर ईरान टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक ब्यूरो।
2: अभी आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी जिसमें ईरान और अमेरिका को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है, ये हमने आपको दिखाया। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर ये चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे में 10 बड़े अपडेट क्या है दुनिया भर के तमाम युद्ध क्षेत्रों को लेकर। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ईरान अमेरिका को लेकर ही बात करेंगे। सबसे पहली बात, ईरान डील में बदलाव के मूड में डोनाल्ड ट्रंप है, यूरेनियम पर पूरा फोकस रखा हुआ लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं। दूसरा बड़ा अपडेट क्या है ये भी आपको दिखाते हैं कि देखिए, इसी युद्ध को जुड़े हुए, डील नहीं तो अमेरिका युद्ध के लिए तैयार है, ये पीट हेग्सेथ की तरफ से कहा गया। और देखिए, हम आपको ये लगातार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो फिर निश्चित तौर पर युद्ध के लिए वो तैयार है। तीसरा बड़ा अपडेट क्या है, तीसरा बड़ा अपडेट ये है कि कतर के तेल टैंकरों को अमेरिका ने दी है गुजरने की इजाजत, यानी कतर के तेल टैंकरों को अमेरिका की तरफ से अनुमति मिल गई है कि वो जो ब्लॉकेट था अमेरिका का उसको पास कर सकते हैं। अमेरिका कहता है कि देखिए, हमारे ब्लॉकेट के इजाजत के बिना कोई वहां से शिप नहीं गुजर सकता। ईरान अलग दावे करता है। अब अगली खबर क्या है, अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का ईरान ने एक बार फिर से दावा किया। दरअसल अमेरिका की तमाम ड्रोन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये वो ड्रोन है जो अमेरिका की शक्ति और क्षमता को दिखाते हैं, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम्स अब भी एक्टिवेटेड है और उसने एक और MQ-9 ड्रोन या MQ-1 ड्रोन को मार गिरा है। दरअसल ये अपडेट इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान को लगातार उसके एयर डिफेंस सिस्टम और उसके ड्रोन का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब तेहरान में ईरान ने स्पीड बोट का एक विजुअल निकाला है और विजय जुलूस के अंदर इन स्पीड बोट्स को दिखाया गया, लोगों के बीच जाकर दिखाया और ये दिखाने की कोशिश की है, देखिए हमारी ये छोटी छोटी क्षमताएं अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए कैसे बड़ी दिक्कत साबित हो रही है। और ये ईरान लगातार करता आ रहा है। ईरान अपनी मिसाइलें दिखाता था और अब ईरान ने अपनी स्पीड बोट का प्रदर्शन भी तेहरान में आम लोगों के लिए किया। छठा अपडेट क्या है, दक्षिणी लेबनान में इसराइल का अधावा और कलात अल शफीक पर कब्जा करने का दावा किया गया। लितानी रिवर के यानी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे के आगे बढ़कर IDF यानी इजरायली फोर्सेस लगातार वहां पर इलाकों पर कब्जे जमाती जा रहे हैं। पहले ये रेडियस सिर्फ 5-7 किलोमीटर था लेकिन अब ये 15 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। अब मानिए कि धीरे धीरे धीरे धीरे इसराइल की फोर्सेज साउथ लेबनन के इलाकों में जो हिजबुल्ला के गढ़ थे वहां पर बहुत तेजी से अपनी पकड़ बनाती जा रही है। सातवां बड़ा अपडेट क्या है? सातवां बड़ा अपडेट है उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला के रॉकेट और ड्रोन से हमले किए गए हैं। दरअसल हिजबुल्ला भी अभी लितानी रिवर के आगे नहीं उसके पीछे से भी बड़े हमले कर रहा है। उसकी जो ड्रोन कैपेबिलिटीज है वो इसराइल को चौंका रही है। वो लगातार इसराइल की फोर्सेस पर साउथ लेबनन पर और नॉर्थ ऑफ इसराइल के इलाकों में यानी गोलान हाइट्स के इलाकों में भी बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर रहा है। अब आठवां बड़ा पॉइंट क्या है? ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट पर यूक्रेन ने किया है हमला। दरअसल ज़ापोरिज़्या जो था वो यूक्रेन का ही पार्ट था लेकिन 2022 के अंदर रूस की फोर्सेज ने यहां जाकर अपना कब्जा कर लिया और पावर प्लांट को अपने हाथ में ले लिया। अब रूस के रोस्तोव इलाके में भी यूक्रेन का ड्रोन से अटैक किए गए हैं और ये वो इलाके हैं रोस्तोव यानी डॉनबास के वो इलाके रोस्तोव का वो इलाका जहां पे सदर्न कमांड जो है वो रूस की बहुत ज्यादा क्षमताओं के साथ बहुत शक्तिशाली तरीके से वहां बैठी रहती है और इन्हीं इलाकों में लगातार यूक्रेन अटैक कर रहा है क्योंकि वो सदर्न कमांड जो है रूस की उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये नौवा अपडेट मैंने आपको बताया और अब आपको आखिरी अपडेट बताता हूं कि यूक्रेन पर भी रूस का मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया गया है। यूक्रेन पर लगातार इससे पहले भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी थी कि वो कीव को सभी जो डिप्लोमेट्स है खाली कर दे क्योंकि रूस कोई बड़े अटैक करने वाला है और शायद इसी वजह से एक बार फिर से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में खासतौर पर कीव को फोकस रखकर रूस बड़े अटैक कर रहा है। अभी आपने तमाम बड़े अपडेट देखे। अब एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान से आ रही है जहां ईरान के IRGC ने ऐलान किया है कि फारस की खाड़ी में ईरानी जल क्षेत्र के ऊपर एक अमेरिकी MQ ड्रोन को निशाना बनाकर उसने मार गिराया है। जी हां IRGC ने दावा किया है कि कहा है कि आज सुबह ही अमेरिकी सेना के एक MQ ड्रोन को ईरानी जल क्षेत्र में घुसने की कोशिश के दौरान उन्होंने मार गिराया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए लगातार IRGC की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने इससे पहले भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया था उसको सेंट्रल कमांड ने डिनाय कर दिया लेकिन अब एक बार फिर से MQ ड्रोन को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। IRGC की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए हमने एक और अमेरिकी ड्रोन को अपने इलाके में यानी अपने समुद्री इलाके में मार गिराया है। और देखिए इसकी तस्वीरें भी लगातार सार्वजनिक की जा रही है और ये दिखाया जा रहा है कि देखिए हमने ऐसे ड्रोन्स को मार गिरा है जो लगातार हमारे क्षेत्र में आकर हमारे जल क्षेत्र या फिर हमारे हवाई क्षेत्र में आकर हमारा सर्विलेंस कर रहे थे और इसको लेकर बकायदा IRGC की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया जिसमें IRGC ने बताया कि हमने अमेरिका के एक और ड्रोन को अपने इलाके में मार गिरा है। इसके साथ ही IRGC ने और ईरान ने कुछ तस्वीरें भी सार्वजनिक की जिसमें उन्होंने बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से एक्टिवेटेड है और लगातार सर्विलेंस करने से अमेरिकी ड्रोन्स हो या फिर दूसरे इक्विपमेंट हो उनको निशाना बना रहे हैं। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है ओमान के समुद्री क्षेत्र में जहां पर हॉर्मुज में ईरान की नौसेना द्वारा बिछाई गई संदिग्ध माइंस देखी गई है। तस्वीरों से संकेत मिल रहा है कि ये ईरान की महमतीन माइंस हैं जो 300 किलोग्राम वजन की हो सकती है। अंदेशा यही है कि ईरान ने अलग अलग माइंस को लगातार अपने नेवल ब्लॉकेट के तौर पर इसे बिछाया हुआ था और यही अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न था लेकिन अब ये ओमान के पास भी देखी जा रही है। ओमान के समुद्री इलाकों में ऐसी एक माइंस देखी गई जिससे हड़कंप मच गया। मानिए कि कितना ज्यादा इलाका ईरान ने समय पूरा इलाका कैप्चर किया होगा इन माइंस के जरिए और इन इलाकों के अंदर कितनी ज्यादा भारी संख्या में माइंस को बिछाया गया है। महम तीन माइंस जो आपको बता रहे हैं 300 किलो वॉरहेड के साथ इसकी क्षमता है और यहां से गुजरने वाले शिप्स के लिए टैंकर्स के लिए कितना बड़ा खतरा होगा कि अभी तक अमेरिका भी इनको ना तो निष्क्रिय कर पाया है और ना ही इनको लोकेट कर पाया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल ये तस्वीरें खुद ओमान और ईरान की मीडिया द्वारा सार्वजनिक की गई जिसमें बताया गया कि एक ऐसी ही फ्लोटिंग माइंस महम तीन लगातार वहां के एक जल क्षेत्र के पास देखी गई और जिसके बाद वहां मौजूद जो वो शिप थे उसमें हड़कंप मच गया क्योंकि अगर 300 किलो वॉरहेड के साथ ये माइंस अगर उस शिप से उस टैंकर से टकरा जाती तो आप मान सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान वहां पहुंच सकता था। और देखिए ओमान के समुद्री क्षेत्र में जहां पे हॉर्मूज में ईरान की नौसेना द्वारा बिछाई गई संदिग्ध माइंस देखी जा रही है। तस्वीरों से संकेत मिल रहा है कि ईरान की यह महम 3 मिसाइल देखी गई है जो 300 किलो वॉरहेड के साथ है। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब आपको बताते हैं कि ईरान की बारूदी माइन से जुड़ा एक और बड़ी खबर आ रही है कि हॉर्मूज के समंदर में लगातार तलाशी के बावजूद अमेरिकी सेना ईरान द्वारा बिछाई गई है नेवल माइंस को नहीं पहचान पा रही है, लगातार इनको लोकेट नहीं कर पा रही है। यह खबर अमेरिका के एक बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि देखिए अमेरिका अब तक 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन हॉर्मूज और इसके आसपास के इलाकों में ईरान द्वारा बिछाई गई माइंस को लोकेट नहीं कर पा रही है, इनको खोज नहीं पा रही है। और शायद इसी वजह से अमेरिका यह बार बार कहता आया कि हमें हॉर्मूज खोलने दीजिए और अमेरिका ही इन माइंस को हटा सकता है, लेकिन अगर ये माइंस हट गई तो फिर ईरान की कैपेबिलिटीज को या फिर आप कह सकते हैं हॉर्मूज को लेकर उसके मजबूत पकड़ ढीली हो जाएगी, जो ईरान नहीं चाहता। दरअसल हॉर्मूज को खोलना बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि वहां पर ईरान ने कितनी माइंस बिछाई हैं ये ईरान को भी नहीं पता। अगर आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिरकार ईरान के पास जो माइंस कैपेबिलिटीज हैं वो कौन कौन सी है, आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि

0: तक है समंदर में सैकड़ों माइंस तुरंत बिछा सकता है ईरान। ये ईरान के पास कैपेबिलिटीज है और ईरान ने ये करके दिखा भी दिया, लेकिन वो माइंस अब कहां कहां पर है ये ईरान को भी नहीं पता। ईरान ये बताने को तैयार नहीं है और लगातार इन माइंस की क्षमताएं भी बहुत ज्यादा घातक। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ईरान के पास कौन कौन सी माइंस मौजूद है और उनकी क्षमताएं क्या क्या है, ये भी आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं महम वन, महम टू, महम थ्री और महम सेवन। महम तीन जिसके ऊपर हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि ये वो माइंस थी जो ओमान के आसपास देखी गई। अब सबसे पहले बात करते हैं वॉरहेड की, गहराई की, सक्रियता की और इसको कहां कहां से लॉन्च किया जा सकता है। अगर आप बात करें महम वन की, इसका वॉरहेड जो होता है वो 120 kg का होता है, महम टू 350 kg और महम थ्री 300 kg और महम सेवन 150 यानी 150 kg का। अब गहराई, कितनी गहराई में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, कितनी गहराई में रहते हैं, ये 100 मीटर की गहराई में रह सकती है महम वन। उसके बाद महम टू 10 से 15 मीटर यानी ये ऊपरी स्तर पे आपको नजर आ जाएंगी। इसके बाद 100 मीटर महम थ्री और महम सेवन जो है ये बहुत ऊपरी सतह पे रहती है, 35 मीटर के करीब करीब ये रहती है। अब कितने दिन तक ये माइंस सक्रिय रह सकते हैं यानी कितने दिन तक ये एक्टिव रह सकते हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। सक्रियता क्या है, 3 से 270 दिन के करीब इसकी जो क्षमता है, 270 ये है, करीबन 400 दिन महम फोर टू जो है ये 350 kg का वॉरहेड है, सबसे ज्यादा घातक है ये, बहुत नीचे तक इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। अब महम थ्री की बात करें 365 दिन के करीब इसको, और ये भी महम सेवन एक साल की इनकी क्षमताएं होती है, यानी अगर ईरान ने इनको फरवरी या मार्च के महीनों में लगाया तो अगले साल 2027-28 तक ये एक्टिव रह सकती है। अब लॉन्च कहां से किया जा सकता है, इसे भी सतह से हेलीकॉप्टर यानी हेलीकॉप्टर से भी ड्रॉप किया जा सकता है, सतह से और सतह प्लेन और हेलीकॉप्टर से भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप समझिए कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में नाकामयाब या इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है, क्योंकि इसकी क्षमता ही ईरान के लिए सबसे बड़ी ताकत है। ये वो माइंस हैं जो ईरान को पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब भी बंद करना पड़े तो यही माइंस उसके लिए सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि कारगर साबित होंगी, और इनका इस्तेमाल ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन सर भी हैं और हमारे साथ श्रीवास्तव सर भी मौजूद हैं, उनका रुख भी करते हैं। मेस्टन सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि देखिए या तो बातचीत से, लोप से, किसी भी तरीके से इसको खुलवा सके, लेकिन शायद अब ये बात ईरान के हाथ से भी निकल गई क्योंकि कितनी माइंस हैं, कहां कहां पर वो माइंस हैं, कहां कहां उसे लोकेट करना पड़े, इसमें बहुत लंबा समय लगेगा।
1: और देखिए सुमित, जिस प्रकार आपने ये माइंस का बयान किया है, साफ जाहिर है कि ईरान को भी आज नहीं पता है कि कितनी माइंस है और मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है उसकी जो डिप्लॉयमेंट या लगाई गई है। कहने का मतलब है, सबसे पहला सवाल यह उठता है कि ईरान ने किस मकसद से ये माइंस लगाई हैं। अमूमन तौर पे जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं या माइन सिस्टम होते हैं वो दुश्मन के खिलाफ होते हैं, और यहाँ उसके स्टेटेड दो दुश्मन बहुत क्लियर हैं, एक है अमेरिका और एक है इजराइल। लेकिन उसको भी पता है ईरान को कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर या जितने भी टैंकर जाते हैं एलपीजी टैंकर वगैरह, वो विश्व के सब देशों के जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चीन के हैं, फिर भारत के हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जापान वगैरह इन कंट्रीज के हैं, और साथ में कुछ यूरोपियन देश के भी माइंस जहाज जाते हैं। सवाल उठता है ये माइंस बिछाए क्यों हैं? अगर किसी भी शिप को टारगेट कर रहा है तो इसमें इसका नेट प्रभाव ये होगा, मान लीजिए कल एक भारत की शिप में डैमेज हो जाता है या चीन की शिप में या ईरान की भी शिप में डैमेज हो जाता है, जब ये लड़ाई बंद भी हो जाती है जिस प्रकार ये इतने अनकंट्रोल्ड माइंस लगा रखे हैं, तो ये तो साफ जाहिर है कि इनको ये नहीं पता है कि टारगेट क्या है, किसको उड़ाना है और इसका प्रभाव क्या होगा। एज अ रिजल्ट अगर कल कुछ भी शिप्स डैमेज हो जाती हैं, मर्चेंट शिप्स, इसमें सबसे ज्यादा तो आइसोलेट ईरान ही होता जाएगा, क्योंकि उसने बस वो मैं बोलूं हैप्जर्ड तरीके से ये माइने बिछा दी है, लेकिन उसका कोई इरादा और मुद्दा क्लियर नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: अमेरिका की आज तक कोई शिप उन्होंने डैमेज कर पाई है उसका इलाज नहीं, क्या अपने ड्रोन या जो भी उनके पास सिस्टम्स हैं मिसाइल, अभी तक किसी एयरक्राफ्ट कैरियर शिप को डैमेज किया है वो नहीं कर पाए हैं। तो ईरान भी मेरे ख्याल अभी वो ऐसी कंफ्यूजन में, और देखिए आईआरजीसी का मैं सवाल बताना चाहूंगा, आईआरजीसी का जो कमांड कंट्रोल है सब बोलते हैं बहुत सॉलिड है, लेकिन वो नीचे लेवल तक हर इंडिविजुअल सोल्जर क्या कर रहा है वो तो आपने सुना, एक महीने पहले उसने बोला था अराची इज अ स्टूपिड मैन, वी डोंट केयर टू हिज ऑर्डर्स। तो कहने का मतलब है जब एक आर्म फोर्सेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और खासकर उसके सबॉर्डिनेट, वो

0: मन मंशा
1: मन
0: से
1: कैसे
0: कुछ कर रहे
1: बिल्कुल
0: हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जो बहुत भयानक होगा पूरे विश्व के लिए और ईरान के लिए भी, उनकी भी
1: बिल्कुल
0: तो सबसे ज्यादा वहां से शिफ्ट जाएंगी
1: सर,
0: जब ये
1: बिल्कुल
0: स्ट्रेट ऑफ
1: सर
0: हॉर्मुज खुलेगा।
1: मिश्रण सर, ये कहा जाता था कि हमेशा ईरान के अंदर दो पैरेलल सरकारें काम करती थी, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, यानी IRGC के तौर पर वो बड़ा समन्वय के साथ चलती थी कि वो उनके काम में इंटरफेयर नहीं करती थी और वो उनके काम में इंटरफेयर नहीं करता। पीके श्रीवास्तव सर, अभी के तौर पर आपने तो लंबे समय से इन स्ट्रैटेजीज को, इन जो क्षेत्र को देखा है, इतना बेबस, इतना कमजोर अमेरिका आपको कभी दिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप घंटों वॉर कह सकते हैं वॉर रूम में रहते हो, सिचुएशन रूम में रहते हो, लेकिन जब बाहर निकलते हो सिर्फ और सिर्फ AI जनरेटेड एक वीडियो ट्वीट करते हो कि देखिए मैं आ रहा हूं, मैं छा जाऊंगा, मैं अटैक कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं। फिर दोबारा से वो कहते हैं कि हाँ बातचीत जारी है, बातचीत करने वाले हैं हम लोग।
0: सुमित, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की जो प्रतिष्ठा थी एज अ सुपर पावर, उसके ऊपर बहुत डेंट लगा है। अभी जो हम बात कर रहे थे सी माइंस की, और ये सी माइंस जो है वो तीन तरह की होती हैं। एक तो कॉन्टेक्ट सी माइंस होती हैं, जो कॉन्टेक्ट होने पर एक्सप्लोड करती हैं, दूसरी एकॉस्टिक वाली होती है, और तीसरी मैग्नेटिक होती है। जैसे ही शिप आता है उसका हल जो है वो आयरन का होता है, कंप्लीट आयरन का होता है, तो उससे वो चिपक जाती है, एक्सप्लोड करती है। तो ये जो जिसकी हम MH3 की बात कर रहे थे, ये एकाउस्टिक और मैग्नेटिक दोनों से ट्रिगर होती है। तो ये जो उन्होंने सी डिनायल वाला काम किया है, क्योंकि जब इन्होंने नेवल फ्लीट्स को और नेवल फ्लोटिला को वहां लाना शुरू किया, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और जो मेरीन कमांडो के जो स्मॉलर एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, तो उसको डिनाई करने के लिए कि पर्शियन गल्फ में एंटर नहीं कर सके, ये माइंस को बिछा दिया गया। अब ये सवाल जरूर उठता है, क्या माइंस की जो मैपिंग हुई है, जो नॉर्मली व्हेन यू पुट अप द माइंस, इधर दे आर मूव्ड माइंस और यू आर ड्रॉप, बट दे आर नॉट फ्लोटिंग अराउंड, आई दे हैव नॉट बीन मैप्ड, उनका हमारे पास मैप नहीं है, तो फिर उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको करना अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज बन जाएगी पोस्ट वॉर।
1: बिल्कुल
0: लेकिन अभी तो वॉर चल रही है, नेवल ब्लॉकेड है, तो नेवल ब्लॉकेड का जो इन्होंने हथियार उठाया, आप ठीक कह रहे हैं, अमेरिका जो है एक तरीके से बेबस हुआ। उन्होंने कहा कि हम जो जो ईरानियन पोर्ट से निकलेंगे हम उनको नहीं जाने देंगे, तो ईरान ने कहा फिर हम बाकी जो निकलेगा उसको हम नहीं जाने देंगे। तो जहां तक विश्व का सवाल है, जो विश्व पर संकट आया है, जो आर्थिक संकट में कन्वर्ट होगा कंप्लीटली अगर ये बहुत दिनों तक चलता रहा, जिसको ऑफ रैम करने के लिए आप खुद कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है सिचुएशन रूम में घंटों बिता रहे हैं, लेकिन इनडिटर्मिनेट होकर वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस की कमी हो गई है। एक ही ऑप्शन हो सकता है, और वो ऑप्शन है कि आप जो है ग्राउंड ऑपरेशंस करें। अगर आप ग्राउंड ऑपरेशंस करते हैं तो सी डिनायल में जो ईरान ने ये माइंस बिछाई हैं उसके बहुत काम आएंगी,
1: बिल्कुल
0: तो वो भी अपने आप में एक है। और एक चीज और याद रखिए कि जो इनके सेक्रेटरी नेवल सेक्रेटरी थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था इन बिटवीन द
1: और
0: वॉर,
1: सर
0: जिसका मतलब देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन।
1: बिल्कुल और बिल्कुल
0: ऊपर
1: और
0: से इनके चीफ ऑफ इंटेलिजेंस रिजाइन कर चुके हैं तुलसी गैबर्ट, और काउंटर इंटेलिजेंस चीफ जो थे वो पहले ही कर चुके हैं, और बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स भी जा चुके हैं
1: सर
0: इंक्लूडिंग
1: पीके
0: चीफ
1: श्रीवास्तव सर,
0: ऑफ
1: सबसे बड़ी दिक्कत है, ये आपको बीच में रोक रहा हूं, इन तमाम चीजें तो चैलेंजेस तो सारे के सारे हैं, चुनौतियां सारी तरफ से हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है वक्त की कमी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मिड टर्म से आने से पहले पहले इन चीजों को रिजोल्व कर लिया जाए, जो होता हुआ दिख नहीं रहा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन रणभूमि में आपको अगले ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दूसरे रणभूमि के क्षेत्रों से कैसे खबरें मिल रही है, कैसे वहां पर भी भीषण हमले किए जा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh yeah, you make my dreams come. Steely Dan, go back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search sailing. Tell your device to play sailing on TuneIn.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
4: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
5: इन एसोसिएशन विद समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल। हिंट, बड़े आराम से
6: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
7: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
8: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
1: विमल बोलो जुबा केसरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: बीस साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
6: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

पे होने की उपलब्धियों पर भी होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल में सियासी हंगामा जारी। कल अभिषेक बैनर्जी के बाद आज कल्याण बैनर्जी पर भी हमला। प्रदर्शन के दौरान सिर पर लगी चोट। बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार।

समेत तीन और आरोपी भी गिरफ्तार। पुलिस का दावा, पूछताछ में खुलासा, फरहान ने दिया था चाकू। पहाड़ों पर जाम ही जाम, सैलानी कर रहे हैं त्राही माम। उत्तराखंड के चमोली से लेकर हिमाचल प्रदेश के मनाली तक गाड़ियों का लगा रेला, घंटों सड़कों पर फंसे रहे लोग।

0: रणभूमि स्पेशल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बताएंगे ईरान और अमेरिका के युद्ध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन इस वक्त कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जो दिल्ली में एक इमारत के गिरने के बाद, यानी कल जो एक इमारत गिरी थी उसके बाद उसके रेस्क्यू ऑपरेशन और इमारत गिरने की तस्वीरें भी सामने आ रही है। दिल्ली में बिल्डिंग हादसे का लाइव वीडियो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं कि कैसे लगातार ताश के पत्तों की तरह ये इमारत गिर गई। बिल्डिंग गिरने में 5 लोगों की मौत भी हो गई थी। मेहरोली में ये बिल्डिंग गिरी थी जिसके बाद 5 लोगों की इसमें मौत हो गई। दिल्ली में बिल्डिंग हादसे का एक लाइव वीडियो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बिल्डिंग गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, यहां तक कि सीएम रेखा गुप्ता ने भी मौके पर पहुंचकर इसका जायजा लिया था। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे उस समय की दिखा रहे हैं जब ताश के पत्तों की तरह ये इमारत भरभराते हुए गिर गई। ये लाइव वीडियो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में बिल्डिंग हादसे का ये लाइव फुटेज, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बताया जा रहा है कि देखिए ये कल का वीडियो है और कैसे ये इमारत एकदम से गिर गई, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए उस समय वहां पर मौजूद एक कैमरा में एक कैप्चर हो गई। और ये तस्वीरें बताया जा रहा है कि कल की तस्वीरें हैं जब मेहरोली में स्थित ये बिल्डिंग, ये इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, देखिए लगातार ये तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे ये इमारत जो थी भरभरा कर एकदम गिर गई, लेकिन क्या इस इमारत के जर्जर होने के, कमजोर होने की जानकारी प्रशासन को पहले से नहीं थी या फिर कोई और वजह है इसके गिरने की?
1: लापरवाही थी, इसी वजह से जो एमसीडी का एक इंजीनियर है उसको सस्पेंड किया है। और अगर अब इस इमारत की बात करें तो ये आज तक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कल शाम के वक्त तकरीबन 7:30 बजे के लगभग जो फायर डिपार्टमेंट है उसको ये कॉल मिली थी जिसमें जो ये 5 मंजिला इमारत थी ये भरभरा कर गिर गई ताश के पत्तों की तरह, जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है। और जब बिल्डिंग गिरी तो उसकी वजह से काफी मलबा छिटका भी। रेस्क्यू ऑपरेशन कल चलाया गया था, अब तक 5 लोगों की मौत इस पूरे मामले में हो चुकी है। साथ ही साथ जो इस बिल्डिंग का मालिक है कर्मवीर, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है और उसको गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ रेड की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से कितना खतरनाक ये हादसा था जब जो ये बिल्डिंग है वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। और बिल्डिंग गिरने की वजह से जो उसका मलबा था वो काफी दूर तक छिटका। तो ये 5 मंजिला इमारत थी और इसमें लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। बिल्डिंग जब बन रही थी एमसीडी के इंजीनियर की, और इस वजह से जब रेखा गुप्ता वहां पर पहुंची उन्होंने इंक्वायरी की और उसके कुछ देर बाद जो एमसीडी का इंजीनियर था उसके सस्पेंड होने की जानकारी सामने आई।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद ओझा। देखिए तस्वीरें भी अरविंद ओझा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए कैसे लगातार इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हुई। इंजीनियर के साथ साथ कई और सरकारी मुलाजिमों पर भी इसकी गाज गिरनी शुरू हो गई। और चले आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी है। दरअसल ईरान अमेरिका से अब ड्रोन युद्ध की तैयारियां आगे बढ़ गई हैं। ईरान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्थापित एक ड्रोन सहायता केंद्र बनाया जा रहा है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने घोषणा की है कि मंत्रालय के भीतर एक ड्रोन सहायता केंद्र बनाया जाएगा। दरअसल ये इसलिए है क्योंकि आने वाला वक्त ड्रोन वॉरफेयर का है और ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर कैसे नए तकनीक और नए चीजों का इस्तेमाल हो रहा है इसको लेकर अब ईरान भी आगे बढ़ना चाहता है। ये केंद्र सरकारी और सैनिक दोनों संगठनों को ड्रोन से संबंधित सभी नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है। और इसका मकसद है कि ना सिर्फ कॉम्बैट ड्रोन, सर्विलेंस ड्रोन, बल्कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ड्रोन के इस्तेमाल या फिर उनको इस तकनीक के बारे में सिखाया जा सके। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो ईरान से ही आ रही है। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान से, जहां पर ईरानी सशस्त्र बलों ने अपनी एक 90 रात को यानी 90 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं उसके दौरान एक रैली निकाली। और उसी दौरान तेहरान के आजादी स्क्वायर के आसपास एक चौराहे पर एक बोट नजर आई। दरअसल ये IRGC की कॉम्बैट बोट है, जिस स्पीड बोट है जिसकी नुमाइश की गई थी। ये वही बोट है जिसका इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और ये दिखाने के पीछे का मकसद था अपने लोगों को बताना कि देखिए कैसे छोटी छोटी उपलब्धियों के साथ ईरान ने अमेरिका का मुकाबला किया और अमेरिका को ईरान के इलाकों में घुसने से रोक दिया। IRGC की ये नई आक्रमणकारी स्पीड बोट की मारक क्षमता 700 किलोमीटर की है, जो समुद्री क्रूज मिसाइलों को दागने में सक्षम है। 3 मीटर तक ऊंची लहरों में भी ये बहुत अच्छी तरीके से संचालन इसका हो सकता है। और लगातार ये दिखाने की कोशिश की गई कि ईरान द्वारा पूरी तरीके से निर्मित ये ड्रोन कैसे अमेरिका के बड़े बड़े शिप्स को मुकाबला करने के लिए वहां पर तैनात की गई है। और देखिए ईरान जो है अपने डिफेंस मोर्चों पर या रक्षा मोर्चों पर ही नहीं बल्कि अपने आर्थिक मोर्चों पर भी अपने नई नई तैयारियों को दिखा रहा है। ईरान से आ रही एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने रेल मार्ग से चीन को LNG और तेल भेजना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सिल्क रोड रेलवे का उपयोग करते हुए ईरान के रास्ते ईरान ने ये सारी सप्लाई जो है वो चीन को की है। ईरान का बड़ा रेल नेटवर्क अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को दरकिनार करने के लिए एक बड़ा सबूत है। आपको बता दें कि ये चीज जो है वो करीबन 3-4 साल पहले ही ईरान और चीन ने स्थापित कर ली थी। ये रेल लिंक सीधे तौर पर चीन के शहरों को जोड़ता है और युद्ध से पहले भी यह अंदेशा था कि चीन से मिलने वाली मदद, सैन्य मदद या ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज इसी रेल रूट से ईरान तक पहुंची थी। हमने आपको अमेरिका और ईरान के युद्ध मोर्चे को लेकर तो तमाम जानकारियां दे दी, लेकिन एक और मोर्चा है जो लगातार इजराइल और लेबनन यानी हिजबुल्ला के बीच में। आपको बताते हैं कि युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की सारी जानकारी कि कैसे इजराइल और लेबनन में फिर से युद्ध तेज हो गया। इजराइल ने लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों पर बड़े हमले किए और हिजबुल्ला ने भी पलटवार करते हुए उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे। क्या है पूरा मामला, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
2: धुआं बेरूत, ये लेबनन पर इसराइली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनन की राजधानी बेरूत पर इसराइल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनन पर इसराइली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनन और इसराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इसराइल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्ला ने इसराइल पर अपने हमले रोके। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनन की सीमा के अंदर कूच कर सकती है।
3: लेबनन के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। हिजबुल्ला द्वारा बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनन के सभी निवासियों से हिजबुल्ला के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्ला लेबनन में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनन के निवासियों को ज़हरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
2: इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनन की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं।
4: इजरायल का कहना है कि हिजबुल्ला को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनन में रहते हुए हिजबुल्ला लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा, वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्ला के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल की तरफ, और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं, इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से, ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव है जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती है, ड्रूस रहते हैं, और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।
5: अमेरिका की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को लेबनान और इसराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसे बाद में शांति वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर ये युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो,
0: यानी ये युद्ध का मोर्चा भी बहुत ज्यादा तेजी से सुलगता जा रहा। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय मेस्टन सर, ऐसा लगता है कि देखिए, अब तक ये बात की जा रही थी कि बेका वैली हो या फिर आप कह सकते हैं कि गोलान हाइट्स का इलाका 5 से 6 किलोमीटर का दायरा है जहां पर इजरायली फोर्सेज आकर बैठ गई हैं, लेकिन अब तो लितानी रिवर के आगे तक भी इजरायली फोर्सेज की मौजूदगी है। क्या माना जाए इसको कि इजरायल अपने बड़े गोल्स को, बड़े ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहता है?
6: देखिए, इस टाइम ये जो लड़ाई चल रही है, मेरे को लगता है इसराइल का मुद्दा बहुत क्लियर है। आपको याद है जब हमास के साथ लड़ाई चल रही थी और उस समय हिजबुल्ला के साथ भी, और फिर पिछले साल जो सीज फायर हुई थी अक्टूबर में हमास के साथ, उस दौरान तक इसराइल का एम था सिर्फ लितानी रिवर तक, लेकिन इस टाइम वो लितानी रिवर को भी पार करके और जहरीनी रिवर के आगे वो बोल रहा है कि नॉर्थ में लोग अब जाए, और उसने टायर में भी आपको देखा कितनी बम्बार्डमेंट की है। तो वो एक तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपनी बढ़ा रहा है, और जो उसकी येलो लाइन वो बढ़ती जा रही है, और ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसका साफ होता है कि हिजबुल्ला के जो रॉकेट्स हैं और ड्रोन्स हैं वो इजरायली नदन टेरिटरी में आके ना गिरे। लेकिन वो मेरे को लगता है शायद इसका इरादा पूरा होगा या नहीं, क्योंकि आज की तारीख में हिजबुल्ला के पास भी इतनी क्षमता है कि वो अपने डेप्थ के इलाके से भी उसने रॉकेट फायर किया, और कल आपने देखे एक दो रॉकेट्स का प्रभाव नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ इसराइल में हुआ था। साथ ही इसराइल ने सीरिया की टेरिटरी काफी ले ली है, और अभी हमास के साथ भी गाजा में आपने देखा है, कल ही प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बोला है कि 70%
0: तक बिल्कुल
6: वो टेरिटरी बढ़ा ले, वहां पर वो कब्जा करेंगे। तो कहने का मतलब है ये जो दोनों सीज फायर वो तो फेलियर है, जो अभी 16 अप्रैल वाली और पिछली अक्टूबर वाली गाजा के साथ, और इससे एक और सबक निकलता है जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में भी ये जो एक पेज का एमओयू वो होता है, वो भी मेरे को लगता है स्थिर नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक कागज में डॉक्यूमेंट जरूर रहेगा, लेकिन ऑन ग्राउंड जिस प्रकार हालात हैं, मेरे को लगता है ये छुटपुट घटनाएं चलती रहेंगी। जिस प्रकार अभी आप देख रहे हैं हिजबुल्ला में ये किस प्रकार अपने इसराइल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा रहा है, और आज की हालात में मेरे को लगता है कि लेबनान में भी अभी सिविलियंस के अंदर डिविजन है, कई लोग चाहते हैं कि हिजबुल्ला का एक बार खात्मा हो,
0: बिल्कुल,
6: और इसमें लेबनीज आर्म फोर्सेस भी शामिल हैं।
0: बिल्कुल सर, मुझे लगता है बिल्कुल सर, इस मुझे ऐसा लगता है कि लेबनान को मिलाकर, माफ कीजिएगा सर आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि पीके श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीके श्रीवास्तव सर, जैसा संजय मेस्टन सर भी बता रहे थे कि देखिए, तीन फ्रंट के ऊपर लगातार हिजबुल्ला के खिलाफ भी, लगातार साउथ ऑफ सीरिया के अंदर भी और गाजा के अंदर भी इसराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए कि इसमें ईरान का कितना नुकसान है, ईरान निश्चित तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका को दबाव बनाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, लेकिन जब उसके प्रॉक्सीज की बात होती है तो सारे प्रॉक्सीज को निष्क्रिय करता जा रहा है इसराइल।
7: बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जहां तक ईरान का सवाल है उसके लिए प्रॉक्सीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग इराकी मिलिशिया, हिजबुल्ला हमास और हूती की बात तो होती है, इराकी मिलिशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज That is the axis of resistance, जिसके थ्रू अपने पावर को असर्ट करता था फार ऑफ एरियाज में, तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक इसराइल का सवाल है, लितानी रिवर जो है वो यून रेजोल्यूशन के हिसाब से एक रेफरेंस लाइन बनी थी, अगर वो जहरानी रिवर तक जाते हैं तो उनको करीब 30-40 किलोमीटर की डेप्थ और मिलती है, लेकिन वो अपने आप में हिली एरिया है, रिवलेट्स हैं और बहुत सारे टेरेन के चैलेंजेस हैं जहां हिजबुल्ला जो है इंट्रेंच्ड है, तो उस जर्नी को तय करने में इसराइलीज का भी बहुत एक तरीके से मैं कहूंगा कि उनके नुकसान हो सकता है, उनकी क्षति हो सकती है, तो इन सबको देखते हुए कितना डेप्थ में जाएंगे, वो डेप्थ उनके लिए जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली जो उनके रॉकेट्स हैं या जो उनका असला है वो 30-40 किलोमीटर के लिए है, तो अगर वो रेंज उनको मिल जाती तो लितानी रिवर के जो साउथ में है वो एक तरीके से
0: बिल्कुल सर देखिए माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर जो पेरिस से आ रही है। कहते हैं ना कि जीत का नशा भी बहुत ज्यादा बड़ा नशा होता है। अब पेरिस से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जश्न और उपद्रव एक साथ देखने को मिला। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएसजी की चैंपियन लीग जीत के बाद जश्न के बीच बवाल मच गया। हजारों प्रशंसक सड़कों पर उतर आए और कई जगह आगजनी हुई। पुलिस के साथ झड़पों की खबरें भी सामने आई। 400 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। उधर पीएसजी ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियन लीग खिताब अपने नाम कर लिया। जब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये जीत का जश्न था, लेकिन इसी जीत के जश्न के बाद पेरिस की सड़कों पर आगजनी देखने को मिली। 400 ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया और देखिए कैसे बाहर जो लोग थे वो जीत के जश्न को मनाते मनाते वहां पर गाड़ियों को और दुकानों को भी नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए। चलिए रणभूमि में आज इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: कैश की कनेक्ट धीरे धीरे मोबाइल की नोटिफिकेशन टूल में बदल चुकी है। जेब में वॉलेट हो या ना हो, फोन में यूपीआई होना जरूरी है। चाय की टपरी से लेकर महंगे रेस्टोरेंट बड़े बिल तक हर पेमेंट चंद सेकंड्स में हो जाते हैं। ये कमाल भारत के डिजिटल इकोनॉमी का है, जिसमें यूपीआई की रफ्तार ने पूरे सिस्टम की तस्वीर बदल दी। लेकिन इस तेजी के साथ खतरे भी इसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी संसदीय समिति ने बड़ी चेतावनी दी। इसकी गंभीरता को समझने के लिए पहले डिजिटल ट्रांजेक्शन का डेटा जान लेना जरूरी, जो बताता है कि जनवरी में यूपीआई से 28,33,000 करोड़ के 21.7 अरब ट्रांजेक्शन हुए। वहीं फरवरी में ट्रांजेक्शन 27% बढ़कर 20.39 अरब तक पहुंच गया, यानी हर दिन औसतन 72,80,00,000 डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि यूपीआई देश की डिजिटल लाइफलाइन बन चुका है। गांव से शहर तक, हर वर्ग तक इसकी पहुंच हो चुकी है, लेकिन इसी तेजी के साथ सिस्टम पर दबाव भी बढ़ रहा है। संसदीय समिति का कहना है कि यूपीआई को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर ध्यान देना जरूरी है। फिलहाल यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 0 मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। इससे बैंक और पेमेंट कंपनियों की कमाई सीमित रहती है, जिससे लंबे समय में सिस्टम की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। यानी जिस सुविधा का फायदा हर यूजर उठा रहा है, वही मॉडल आगे चलकर सिस्टम पर बोझ बन सकता है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के साथ सबसे बड़ा खतरा साइबर फ्रॉड का तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में डेटा चोरी और फिशिंग अटैक बड़ी चुनौती बन गए हैं। इसीलिए बैंकों और फिनटेक कंपनियों को एडवांस एनक्रिप्शन अपनाने की सलाह दी जा रही है। रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम की जरूरत बढ़ती जा रही है। मतलब साफ है कि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से सिक्योरिटी को भी मजबूत करना होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फाइनेंशियल मॉडल और साइबर सिक्योरिटी दोनों पर बैलेंस बनाया गया, तो भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया में नई मिसाल बन सकता है। साफ है कि यूपीआई ने देश में पेमेंट का तरीका बदल दिया है, लेकिन इसकी असली ताकत तभी बरकरार रहेगी जब ये सुरक्षित और टिकाऊ बना रहे, वरना सुविधा के साथ जोखिम भी बढ़ता जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर दिग्गजों के साथ मंथन, सरकार के 12 साल पूरे होने की उपलब्धियों पर भी चर्चा। पश्चिम बंगाल में सियासी हंगामा जारी, कल अभिषेक के बाद आज कल्याण बैनर्जी पर हमला, प्रदर्शन के दौरान सिर में लगी चोट, बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार।

0: दिल्ली के मेहरौली में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या पहुंची 5। मलबे से निकाले गए 8 लोग गंभीर रूप से घायल। सामने आए बिल्डिंग के गिरने का भी लाइव वीडियो। अहमदाबाद में आज आईपीएल फाइनल का महामुकाबला। गिल और कोहली के बल्ले की जंग। आरसीबी और गुजरात के पास दूसरी बार चैंपियन बनने का मौका।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रमाणिक नंबर वन शो दंगल। गाजियाबाद की एक गली से उठी चीख यूपी की राजनीति के गलियारों में शोर मचा रही है। सूर्या की हत्या के बाद जिस असद की तलाश में यूपी पुलिस जुटी थी वो 48 से 72 घंटों के बीच एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन यह मामला सिर्फ एक अपराध और उसके आरोपी तक सीमित नहीं है। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था की बहस को एक बार फिर केंद्र में ला खड़ा किया। सूर्या की हत्या के बाद आक्रोश था, परिवार न्याय की मांग कर रहा था, सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दे रही थी। अब आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद सत्ता पक्ष इसे अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रमाण बता रहे। विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे। दिलचस्प बात यह है कि यह बहस ऐसे समय में तेज हुई जब 2027 के विधानसभा चुनावों की राजनीतिक जमीन तैयार हो रही। बीजेपी कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। विपक्ष सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि असद का अंत कैसे हुआ, बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था को किस नजरिए से देख रही है। क्या अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही जनता का भरोसा मजबूत कर रही है या फिर इस पर उठ रहे सवाल आगे चलकर सियासी मुद्दा बनेंगे। आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं रिपोर्ट।

0: गाजियाबाद में एक हत्या हुई, एक परिवार का बेटा चला गया, गुस्सा उठा, सवाल उठे और फिर पुलिस की कार्रवाई हुई। सूर्या की चिता की राख ठंडी होने से पहले ही पुलिस की बंदूक से निकली गोली ने एक नया संदेश लिख दिया। सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी अब असद एनकाउंटर में मारा गया।
1: असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना थोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है जिसमें असद को गोली लगती है।
0: गाजियाबाद में 17 साल के सूर्या की हत्या बकरीद वाले दिन यानी 28 मई को हुई। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीएम योगी इन 48 घंटे में दो बार संदेश दे चुके हैं कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है।
2: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
3: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरसों पहले विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार का ब्लूप्रिंट रख दिया था।
4: इसी हाउस में कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
0: यही वजह है कि यूपी में हर एनकाउंटर सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं रहता, वो राजनीतिक संदेश बन जाता है। लेकिन विपक्ष लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठाता रहा है और इस बार भी उठा रहा है।
5: एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं।
0: यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन नैरेटिव आकार लेने लगा है। कांग्रेस योगी राज को जंगल राज बता रही है।
6: ये घटनाएं, कई घटना भी वहां पर एक पैरा वो है रेसलर है, कोई त्यागी लड़का है, उसकी भी हत्या की गई है और ये हत्या हुई है। ये देखिए हत्या का क्रम चल रहा है। अभी यहाँ लखनऊ में हत्या की गई है, बिल्डर की हत्या कर दी गई, अभी ये गाजीपुर में हत्या हो गई है। ये क्या है, ये फर्जी इनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में अभी, गाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या हुई, गाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है, विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
0: गाजियाबाद का एनकाउंटर यूपी की राजनीति में ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि चुनावी रैलियों में भाषण भुलाए जा सकते हैं, लेकिन घर लौटते वक्त सुरक्षित महसूस करने का एहसास नहीं भुलाया जा सकता। तो क्या उत्तर प्रदेश को योगी का मॉडल पसंद है?
7: कुछ है पर पूरी तंत्री नहीं, जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए।
0: सूर्या की हत्या से मुस्लिम धर्म गुरु आहत है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन हत्यारे को शैतान बता रहे हैं।
8: इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान है जिन्होंने ये किया। किसी का भाई चला गया, जिसका बेटा चला गया, जिसका पोता चला गया, जिसका नवासा चला गया, उस पर क्या बीत रही होगी, बहुत तकलीफ हुई।
0: यूपी में अब सवाल नाम का नहीं अंजाम का पूछा जा रहा है। गोली गाजियाबाद में चली है लेकिन उसका राजनीतिक असर 2027 तक जाएगा। अपराधी का अंत हुआ है लेकिन बहस की शुरुआत अब होगी। योगी का दावा फिर चर्चा में है और विपक्ष हो गया है आग बबूला। अरविंद ओझा, मयंक गौर और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
9: और अब उन सवालों पर डालते हैं नजर जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी। सवाल नंबर एक, क्या असद का एनकाउंटर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा है? सवाल नंबर दो, क्या असद के एनकाउंटर में धर्म का एंगल देखना सही है? बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सवाल नंबर तीन, क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा 2027 चुनावों में बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बनेगा? हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर का भी जल्दी से रुख कर देते हैं। गाजियाबाद हत्याकांड में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 3 और आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। असद का एनकाउंटर हो चुका है, वो मारा गया है, जख्मी हुआ था, अस्पताल ले जाया गया था, वो मारा गया, लेकिन 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। और इसमें आरोपी असद का पिता नवाब भी बताया जा रहा शामिल है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी जुड़ गए। अरविंद, जो ये 3 और आरोपी पकड़े गए हैं, कौन है और उनकी क्या भूमिका थी इसमें?
10: देखिए, ये 3 आरोपी हैं जिनके नाम नवाब, जो असद का पिता है, उसके अलावा फरहान और आतिफ। ये 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और पूछताछ में फरहान ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। खुलासा ये कि 28 मई को सूर्या और असद का बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बाकी सभी ने मिलकर जो सूर्या है उसको ठिकाने लगाने की साजिश रची। 28 तारीख को ही 3:30 बजे जो सूर्या है उसको एक गली में पकड़ा। फरहान ने असद को चाकू दिया और असद का पिता नवाब उसने चीख कर कहा कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। पिता की ये बात सुनते ही जो असद है उसने ताबड़तोड़ जो सूर्या है उस पर चाकुओं से हमला किया, वो लहूलुहान होकर गिर गया। इन लोगों ने सोचा कि उसकी मौत हो चुकी है, ये फरार हो गए थे। असद का इनकाउंटर हो चुका है। असद का पिता नवाब, जिसने अपने बेटे को उकसाया सूर्या को चाकू मारने के लिए, उसको गिरफ्तार किया है। फरहान, जिसने चाकू दिया था, उसको गिरफ्तार किया है। और आतिफ, पूरी साजिश में शामिल था, उसको गिरफ्तार किया है। जी,
9: बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ईशान त्यागी जुड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान भी जुड़े हैं। इसके साथ साथ शादाब चौहान, जो कि AIMIM के नेता है, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ पूर्व DGP डॉक्टर विक्रम सिंह भी जुड़े हैं और कुछ देर बाद हमारे साथ विनय जी भी जुड़ेंगे। लेकिन आज चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं प्रदीप। ओपोजिशन कह रहा है एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर है, आप हत्या नहीं रोक पा रहे हैं। वो तो गाजियाबाद, जौनपुर, दूसरी जगहों पर जो हत्या हुए उनका भी जिक्र करें, लेकिन कुल मिलाकर एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर।
11: राजीव जी, आज सूर्या चौहान और उसके परिवार को न्याय मिला है और आज ये साबित हो गया है कि अगर कोई भी कट्टरपंथी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी युवा को, किसी भी हिंदू के ऊपर चाकू घोपेगा और ये सोचेगा कि वोट बैंक वाले राजनेता उसको बचाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आज सूर्या की मां को न्याय मिला है, तो आज जो भी न्याय में विश्वास रखते हैं उनको इसका स्वागत करना चाहिए। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू बात करने की यह है कि जो आज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जब दादरी के अंदर अखिलेश की मृत्यु हुई थी, 45 लाख का मुआवजा अखिलेश यादव, जिस वक्त मुख्तार अंसारी जैसा माफिया और अतीक अहमद जैसा माफिया जो सरकार चलाता था, 45 लाख का मुआवजा इन्होंने दिया, क्यों नहीं एक समाजवादी पार्टी का पार्षद जो उसी एरिया से है जहां के ऊपर ये घटनाक्रम हुआ है, वो अभी तक जाके परिवार के साथ मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के MLA लोनी के MLA वहां जाते हैं, लास्ट राइड्स में हिंदू परिवार के साथ में होते हैं। अखिलेश यादव ने एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी ने एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया?
9: हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों लेकर आ रहे हैं? नहीं, आप बताइए हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि अब तो क्लियर हो गया, क्योंकि दोस्त थे वो, बाइक को लेकर झगड़ा था उनका।
11: मैं बताता हूँ, अगर ये ऐसी बात है राजीव जी, तो फिर उसके पिता ने, जब आपने जो ब्रेकिंग करी कि भाई उसके पिता ने क्यों कहा उसको उसका इंतजाम कर दे, फिर ऐसी बात है तो दिल्ली के अंदर तरुण को जाके सिर्फ और सिर्फ होली के ऊपर क्यों मारा जाता है? और फिर 9 इंसिडेंट्स कम्युनल वायलेंस के बकरीद पे क्यों रिपोर्ट होते हैं? भले वो हैदराबाद के अंदर मुर्शिदाबाद हो गया, जहां के अंदर हिंदू घरों के सामने जो खून की नदियां बहा दी जाती है, रतलाम के अंदर एक गाय का सर काट दिया जाता है और हिंदू घरों के सामने छोड़ दिया जाता है, आप इसको सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं देख सकते हैं। आपको स्वीकारना पड़ेगा कि जो अखिलेश यादव यादव, राहुल गांधी जैसे तमाम नेता जो जहर की राजनीति करते हैं, जो मुसलमानों को भड़काने का प्रयास करते हैं, उसी के कारण असद और तमाम जो युवा
9: है हत्या रोक क्यों नहीं पाए? आप हत्या क्यों नहीं रोक पाए? क्या ये पुलिस का फेलियर नहीं है? सूर्य बच सकता था, आपका बुलडोजर, आपकी जो तमाम जो भी पॉलिसी है अपराध मुक्त प्रदेश की, कहीं ना कहीं भय तो है नहीं ना? उसने चाकू उठाया, उसके अंदर इतनी हिम्मत थी, उसके अंदर डर नहीं था पुलिस का, क्या आप स्वीकारेंगे कमी रही है आप में भी?
11: अरे कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी का इलाज हो चुका है और बुलडोजर वाली आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। आप सुनिए डेटा, उत्तर प्रदेश के अंदर हीनियस क्राइम 85% से कम हुआ है, डेकोइट्री 94% से कम हुई है, लूट 83% से कम हुई है, मर्डर जो है वो नेशनल एवरेज से कम है, महिलाओं के खिलाफ क्राइम के अंदर कन्विक्शन रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, अगर असद फरहाद या ऐसा कोई भी गुंडा या दहशतगर्द उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा घटनाक्रम करने का प्रयास करता है तो उसको पता है कि उसकी कानूनी रूप से या तो सजा होगी जेल के अंदर या उसके ऊपर एनकाउंटर होगा कानूनी रूप से। इसीलिए इनकी सरकार होती तो जाके इसके घर पे रहते, जाके केस जेल से इसको छुड़वा देते और इसको टिकट दे देते, ये फर्क है। सपा की सरकार होती तो जाके असद के परिवार को टिकट दे देते, जैसे बटला हाउस के अंदर सोनिया गांधी के आंसू आतंकवादी के लिए बहे थे। तो आज इनको
9: स्वीकार, आप क्यों कह रहे हैं इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर है? असद इस मामले में मुख्य आरोपी था, अगर वो मारा भी गया तो एनकाउंटर को फर्जी कहना कहां तक उचित है?
12: राजीव जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जब पूछा आपने, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात की। मैं हिंदू मुसलमान के बात को नहीं मानता हूं, इसलिए आपका डिबेट छोड़ रहा हूं। हिंदू मुसलमान मैं नहीं करूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की ला रहा है,
9: ये सवाल संविधान की धारणा है। मैं
12: छोड़ रहा हूँ, ये आपके आपके सामने इन्होंने कहा हिंदू को कोई नहीं मार सकता, क्या मुसलमानों को मारा जा सकता है? तो मैं ये डिबेट छोड़ रहा हूँ। नमस्कार
9: डॉक्टर अहमद खान, आप
12: हिंदू हिंदू
9: अलग संदर्भ में इसको लेकर जा रहे हैं,
12: हम नहीं बढ़ेंगे।
9: नहीं, आप उन्होंने क्या कहा उसका जवाब, उनका जवाब काउंटर करके दीजिए ना, तर्कों से दीजिए। आप काउंटर करके दीजिए ना उसका जवाब।
12: रोका नहीं, एक बार रोका नहीं, हिंदू कह रहे थे।
9: मैंने ही तो सवाल पूछा कि आप हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों लेकर आ रहे हैं? मैंने तो पूछा कि आप हिंदू मुस्लिम, क्योंकि वो दोस्त थे, तो मैंने तो ये बोला, ये बात तो मैंने ही बोली।
12: आपने बोली तो चुप तो नहीं हो रहे हैं,
9: अब आप बोलिए ना, आप बताइए, आप काउंटर कीजिए।
12: संविधान के हिसाब से हम संविधान के हिसाब से बात करेंगे।
9: हाँ बोलिए ना।
12: अरे यार भंडारी जी, आप क्या बात करते हो यार, आप संविधान के कसम खा के संविधान का उल्टा काम करते हो। विक्रम सिंह जी बैठे हैं यहाँ पर, बहुत ज्ञानी आदमी है, वो हिंदू मुसलमान नहीं करते।
9: डॉक्टर एम एस खान साहब, डॉक्टर एम एस खान साहब, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़िए, एक असद नाम का आरोपी, उसने सूर्या को मार दिया,
12: इन्होंने क्यों कहा हिंदू हिंदू हिंदू मारा जाएगा? तो नहीं, हम इस चीज में नहीं है,
9: कोई भी मारा जाएगा वो गलत है। मैंने तो सवाल पूछा ना कि कानून का क्या खौफ, आप कानून का खौफ नहीं है, बुलडोजर का खौफ नहीं है, मारा क्यों गया? मैंने तो सवाल पूछा था, आप ये बताए, आप हर एनकाउंटर को फर्जी बता देते हैं, आप किस आधार पर इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं?
12: अच्छा तो ये बताइए, रेसलर की हत्या नहीं हुई वो कौन था? आप बताइए, गाजीपुर में हत्या नहीं हुई वो कौन था? आप बताइए, लखनऊ में हत्या नहीं हुई, बिल्डर की हत्या नहीं हुई कौन था? आप बताइए, रोज रेप हो रहा है, रोज रोज ये सब चीजें हो रही है, कौन था? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं किसी के खिलाफ? हम संविधान की कसम खा के बैठे हैं और संविधान के हिसाब से हर जाति धर्म का आदमी बराबर हमारे लिए है। हमारे लिए हिंदू भी उतना ही बड़ा वो है भाई हमारा है, उतना ही क्रिश्चियन भी है।
9: आप ये बताएं डॉक्टर एम एस खान साहब, योगी सरकार ने जो अभी कार्रवाई की, असद का एनकाउंटर हुआ है, 3 और गिरफ्तार हुए हैं, क्या आप मानेंगे कि सरकार सही ट्रैक पर है, एक्शन ले रही है?
12: नहीं, नहीं तो क्या बिना बिना एनकाउंटर के थाने बंद कर दीजिए, थाने बंद कर दीजिए, अदालत बंद कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए, हाई कोर्ट बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए और एनकाउंटर सबका करते रहिए आप।
9: ठीक है,
12: ये अधिकार किसने दिया? क्यों नहीं पैर में गोली मारी आपने? आप किसी भी अधिकारी को, कोई भी अपराधी हो, उसको पकड़ के उससे पूरी बात पूछना चाहिए था। अब आप मनगढ़ंत बातें पूछिएगा, बताइएगा क्या करिएगा क्या नहीं। विक्रम सिंह जी की फिर मैं नाम दोबारा नाम ले रहा हूं, विक्रम सिंह जी बताएंगे कि अगर एनकाउंटर हुआ था तो पैर में गोली क्यों नहीं मारी गई, क्यों नहीं उससे बात पूछी गई, क्यों नहीं मारा?
9: प्रदीप आपके पास आते पहले डॉक्टर विक्रम सिंह के साथ उनके पास चलता हूं सर, क्या यूपी पुलिस इतनी पेशेवर नहीं रह गई है कि वो एनकाउंटर कैसे किया जाए उनको नहीं मालूम, कैसे एक सकुशल एक आरोपी को पकड़ा जाए वो नहीं कर पा रही? कई बार तो ये होता है कि आरोपी उनके बगल में बैठा होता है, उनकी पिस्टल ले लेता है, उन्हीं पर हमला करने का प्रयास करता है, फिर पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ती है, फिर एनकाउंटर हो जाता है। पेशेवर नहीं रह गए क्या यूपी पुलिस?
13: राजीव जी आपको सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा विनम्र नमस्कार, और मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूं कि डॉक्टर रमेश खान साहब तशरीफ फरमा है, वरना मैं बड़ा मायूस होता कि डिबेट बेदम का हो जाता अगर आप तशरीफ फरमा ना होते। तो बड़ी मेहरबानी की जो आपने तशरीफ रखी और हम सबकी सरपरस्ती फरमाई। राजीव जी आपके सवाल का जवाब यह है कि कहने को इनकाउंटर कर दिया, इनकाउंटर किया नहीं जाता, इनकाउंटर हो जाता जब पुलिस प्रोएक्टिव होती है, एक्टिव होती है, खूंखार होती है, जाल बिछाती है, तभी होता है। और इसकी धारा है धारा 34 से 44 भारतीय न्याय संहिता इंडियन पीनल कोड, धारा 96 से 104 अपनी या किसी और की जान माल की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग। डॉक्टर

0: कि अंजाम बड़ा बुरा होगा, ये संविधान की भाषा नहीं है,
1: ठीक है,
0: अंजाम बहुत बुरा होगा।
1: प्रदीप भंडारी, आपको सजा मिलनी चाहिए, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप तो संविधान के अनुकूल काम ही नहीं कर रहे हैं। और इस बीच में मैं पुरानी कोर्ट की टिप्पणियां भी याद करना चाहूंगा कि मतलब चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आपके एनकाउंटर पर वो सवाल उठा चुके हैं, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, मतलब पुलिस नहीं तय करेगी, न्यायपालिका तय करेगी न्याय क्या है, न्याय किसे दिया जाना है किसे नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: मैं आपको
0: राजू जी आपको धन्यवाद है,
2: ये भारतीय है, और
1: धन्यवाद
2: ये मैं इनके पहले बोल दूं, ये भारतीय है और ये तुष्टीकरण करने वाले नेता ही है जो आंसू जो है सूर्या के परिवार के लिए नहीं बहा रहे। असद जिसने जाके एक वीडियो के अंदर कबूला वो वीडियो करता और बोलता है कि 11:22 पर ये रहा उसका वीडियो, 11:22 पे हाँ मैंने मारा सूर्या को मारा और मैं थोड़े समय बाद जेल से बाहर निकल आऊंगा, ये इसके साथ खड़े हैं, ये इसी के कारण इनकी सरकार, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। राजीव जी,
1: डॉक्टर अमित खान साहब देखिए आप बहुत वरिष्ठ हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे डांट दिया, अब आप अपने टर्म का इस्तेमाल अपने जो है आपका जब नंबर आएगा तब आप बोले। नहीं प्रदीप भंडारी, जो आप वीडियो चला रहे मुझे मालूम नहीं कि वो क्या सच है, वही है नहीं आरोपी, आप क्या आप पुष्टि कर रहे हैं?
2: राजीव जी हाँ मैं पुष्टि कर रहा हूँ, आज तक की टीम को बोलिए जाके रिसर्च करें और देखें कि खुद ने जाके उसने वीडियो डाला था 11:22 में।
1: हाँ ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, देखा मैंने।
2: हाँ तो पुष्टि करिए ना, अरविंद ओझा को बोलिए कि पुष्टि करेंगे, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। और उसके बाद 11:22 के ऊपर
1: रूल ऑफ लॉ पे जवाब दीजिए ना कि आपकी पुलिस को एनकाउंटर की परिस्थितियां हर बार आपकी पुलिस के साथ क्यों होता है, मतलब ये संयोग है या प्रयोग है? हाँ
2: राजीव जी, या तो आप मेरे साथ डेटा पे बात करिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक डेटा पॉइंट कोट करिए कि अखिलेश यादव के शासनकाल और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में कौन से डेटा और पैरामीटर के अंदर उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ा है, बताइए बोलिए। कन्विक्शन रेट बढ़ा है कि कम हुआ है? कन्विक्शन रेट बढ़ा है। डेकोइटी कम हुई है कि बढ़ी है? डेकोइटी कम हुई है। मर्डर बढ़ी है कि कम हुए? कम हुए। ये सच्ची इनके समय में सरकार,
1: प्रदीप भंडारी
2: जी मैं
1: प्रदीप आप मूल सवाल से दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं मेरा सवाल ये है, नहीं नहीं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। डॉक्टर अहमद खान साहब प्लीज, मुझे मजबूरन फेडर डाउन करना पड़ेगा, आप जवाब नहीं दे रहे कि एनकाउंटर की परिस्थितियां क्यों हो, एनकाउंटर क्यों करना पड़ता है?
2: तो एक क्या करे पुलिस वाले के ऊपर जो है असद जाके गोली चलाने का प्रयास करे तो पुलिस जो है पीछे हाथ में बोले गोली चला दो मेरे पुलिस वाले को जान चले जाए, जैसे आज तक टिकट पे चला दे कि एक पुलिस वाले की मृत्यु हो गई उसको पकड़ा गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये शासन चाहते हैं कि आप लोग जिसके अंदर मुख्तार अंसारी और अफजल जैसे अतीक अहमद जैसे लोग शासन चलाए और गरीबों को मारे, कैसी बातें कर रहे हैं आज आप लोग? शर्म आनी चाहिए आज का मेवेज खान को, जस्ट बिकॉज की मारने वाला मुसलमान है और मरने वाला हिंदू है, तो हिंदू मुसलमान की बात आ गई है, कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल होगा अगर पुलिस के ऊपर आप हमला करने का प्रयास करोगे तो 43C के तहत।
1: प्रदीप ये आपका ये पॉइंट ठीक है कि पुलिस पर कोई हमला करेगा तो ऑब्वियस है पुलिस बचाव करेगी अपना। मैं ठीक है
2: जी भाई, आपके डिबेट में एमएच खान सबके बीच में उचक रहे हैं और एमएच खान में दम नहीं है तर्कों का, इसीलिए डर के मारे डिबेट में।
1: मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जब जिसका नंबर आएगा वही बोलेगा। ईशान ठीक है, अभी आप अपने टर्म का जो आप वेट करिए। ईशान मतलब प्रदीप क्लियरली कह रहे हैं कि भाई अगर पुलिस पर कोई हमला करेगा तो वो पुलिस का जवाब नहीं देगी, पुलिस क्या अपनी बचाव नहीं करेगी, और पुलिस ने कहा कि हमने आत्मरक्षा में फायरिंग की है जिसमें वो जख्मी हुआ है।
3: राजीव जी देखिए, मेरे घर से बहुत दूर नहीं है जहां पे घटना हुई है, मैं गाजियाबाद का ही निवासी हूं, और सबसे पहले तो सूर्य प्रताप चौहान जिस बच्चे के साथ ये दुष्कर्म हुआ है, ये बर्बरता से जिसको मारा गया है, उसके परिवार के साथ मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। देखिए राजीव जी, किसी भी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और प्रदीप भंडारी जैसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो अपराधी की जाति भी ढूंढ लेते हैं, जो अपराधी का धर्म भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इनको अपनी धार्मिक अराजकता। कांग्रेस पार्टी, अरे प्रदीप जी,
2: आतंकवाद शब्द का प्रयोग करती थी कांग्रेस पार्टी,
3: मैं
2: क्या पोल खोलू आपकी, यहाँ पे जाके कह रहा
3: मैं राजीव जी, इस तरह की डिबेट नहीं करता हूँ, बदतमीज लोगों के साथ मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता हूँ और एंगेज नहीं करता हूँ।
1: ईशान आप अपनी बात,
3: आपका बड़ा अच्छा चैनल है,
1: प्रदीप ऐसा मत करिए, मुझे मजबूरन फिर डिबेट
3: में एंगेज नहीं करता हूँ और बदतमीज लोगों के साथ मैं डिबेट नहीं करता हूँ।
1: आप सभ्यता के दायरे में सारी अपनी बात,
3: बदतमीज लोगों के साथ मैं डिबेट नहीं करता।
1: प्रदीप प्लीज ना, प्लीज आपका नंबर आएगा मैं आपको समय दूंगा ना, अभी उनको बात कम्प्लीट कर
3: दिखाइए की उन्होंने पूरा
2: तब नहीं चला था, बदतमीजी जरा
3: 20 मिनट बोल लिए इनको, बोलिए शांत रहे, थोड़ा सा शांत रहे, अब कलाई खुलने लगी है, कलाई खुलने लगी है तो अभी तिलमिलाने लगे हैं।

0: लड़ाई खुलने का मतलब क्या है?
1: जो मैं बात कह रहा था, मैं यही बात कह रहा था कि एक अपराधी के साथ अपराधी जैसा ही
0: कर रहे हो।
1: अरे भैया चुप हो जा प्रदीप भंडारी, बोलने को कुछ है नहीं तुम्हारे पास, तो बोले जा रहे हो बस।
0: बोलने को है,
1: तुमने शांत रह के सुन लो मेरी बात।
0: किया था कांग्रेस पार्टी ने, किया था हिंदू
1: कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास बोलने को, सिर्फ धार्मिक।
2: प्रदीप मुझे मजबूर है ना, फेडर डाउन करना पड़ेगा प्लीज। अब जो भी बीच में इंटरप्ट करेगा उसका फेडर डाउन कर दिया जाए। अभी ईशान त्यागी से बोलेंगे। ईशान,
1: ईशान हिंदू मुसलमान करने के अलावा
2: 289 एनकाउंटर में अपराधी मारे गए हैं, एक और अपराधी एनकाउंटर में मारा गया, चाहे परिस्थितियां कोई भी हो, पुलिस पर फायरिंग कर रहा था तो पुलिस को जवाब देना था, मारा गया। क्या यह सराहनीय काम नहीं है?
1: राजीव जी, मैं यही बात कह रहा था, एक अपराधी के साथ अपराधी जैसा बर्ताव होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सूरत हाल बताता हूं गाजियाबाद का। पिछले 3 दिन में इसको मिला के 3 हत्याएं हो चुकी हैं। लोनी में एक 21 साल के बच्चे को, जो नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा था, गुड़गांव जा रहा था, उसको 5 गोलियां मार दी गई। क्या ऐसी कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। मेरे ही समाज के एक लड़के को, जो पैरा एथलीट था और एशियन गेम्स में देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा था, चिराग त्यागी, उसको कल गोली मार दी गई। हिंडन पे उसका शव बरामद हुआ। क्या ऐसी कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। ये सब केसेस प्रदीप भंडारी नहीं जिक्र करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें धार्मिक रोटियां, हिंदू मुसलमान पे जो रोटियां वो सेकते हैं, धार्मिक उन्माद जो ये लोग फैलाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उसका मौका नहीं मिलेगा। 17 मई की आपको बताता हूं, विश्व हिंदू परिषद के यहां पे ये बैठे हुए हैं नेता हमारी पैनल में, विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता सुशील प्रजापति, उसको गाजियाबाद की दासना जेल में था वो 8 महीने से, रेप का आरोपी था, उसको जब जेल से छोड़ा गया, उसको बेल मिली तो मालाएं पहना के स्वागत किया गया। और मैं अब आपको इनका धौरा मापदंड बताता हूं, रुकिए, पूरे आंकड़ों के साथ सुनिए।
2: अब जल्दी से अगले 20 सेकंड में कंप्लीट करिए।
1: कहते हैं जीरो टॉलरेंस नहीं होगी। और एक मिनट, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई बंदूक लहराते हुए हिंदुओं को नहीं डरा सकता। अरे साहब, आपने संविधान की शपथ ली है, संविधान की अगर आपने शपथ ली है तो आपके लिए हिंदू भी एक समान है, मुसलमान भी एक समान है, और सभी जाति।
2: प्रदीप, मैंने उंगली देख ली है, मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले चूंकि इशारा उन्होंने विनोद बंसल जी की तरफ किया है,
1: एक मिनट, आखिरी दस सेकंड
2: कंप्लीट करिए।
1: आखिरी दस सेकंड ना जी, महोबा में जिस लड़की को 16 दिन तक जो अपराधी उसको अगवा करके ले गए, उसके साथ बलात्कार किया, कैसी कार्रवाई वहां पे हुई? नहीं हुई, उसका जिक्र नहीं हुआ। बीएचयू में वाराणसी के जो आईटी सेल के बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन उनको भी बेल पे छोड़ दिया गया, कोई ऐसी कार्रवाई हुई? नहीं।
2: ठीक है, ऐसा ना हो गया, आपकी बदनामी, अभी लौटूंगा आपके पास, मैं प्रदीप आपके पास लौटूंगा, एक बार विनोद जी का रिएक्शन इस पे लेना चाहूंगा।
1: एक धार्मिक समाज का
2: ओपोजिशन और कांग्रेस कह रहे हैं कि अपराधी का धर्म नहीं होता है,
1: इस तरह की धारणा
2: है, उसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पर धर्म देखा जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद भी धर्म देख रहा है।
1: ये तो योगी आदित्यनाथ और प्रदीप भंडारी जैसे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वैसे।
2: अब हो गया ईशान, प्लीज अभी आपको सुनिए।
3: ईशान जी, मैं आपको बता नहीं दूंगा,
1: क्योंकि इनको अपनी रोटियां सेकनी है, राजनीतिक रोटियां।
3: ईशान जी, आपका नाम विनोद बंसल नहीं है, प्लीज सुनिए मेरी बात को। आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए, लेकिन एक निंदा के शब्द जो है
2: ईशान, अभी आप दूसरों को नसीहत दे रहे थे, अब आप खुद बीच में टोक रहे हैं। नहीं नहीं ईशान, ये गलत बात है, अभी आप दूसरों उनको नसीहत दे रहे थे, अभी आप खुद बोल रहे हैं बीच में। नहीं नहीं, बहुत गलत बात है।
1: स्वागत किया कि नहीं किया जो रेप का अपराधी?
2: विनोद जी जवाब दे रहे हैं ना, उसका देंगे जवाब। विनोद जी बोलिए,
1: रेप के आरोपी को आप मालाओं से स्वागत करते हैं, उस पर जवाब दीजिए विनोद जी।
3: हो गई बात इनकी पूरी, बदतमीज की। मैं नहीं कहूंगा बदतमीज इनको, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये बदतमीज कह सकते हैं, इनकी संस्कृति है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। इतनी विवश घटना हुई, ईद के दिन हुई, बकरा काटने की बात को लेकर हुई, और ये कहकर हुई कि तुमने क्या तुमने ये बलि देखी है क्या, ये कुर्बानी देखी है क्या, और मित्र को बुला के की गई, लेकिन उसमें कोई धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, कोई मतपत संप्रदाय इन्वॉल्व नहीं है। आप देखिए, इतनी बड़ी घटनाओं के जिक्र अभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कर दिए, एक लंबी फहरिस्त सुना दी, लेकिन के एक निंदा के दो शब्द जो है ना, उस पीड़ित परिवार के लिए नहीं निकले, जिसके घर में आज कोई कमाने वाला नहीं है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, दो दो दो, दो दिन की रोटी कमाने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए उस फिर बीच में बोले, फिर बीच में बोले राजीव जी, मैं चुपचाप सुन रहा था। देखे
4: सूर्य प्रताप चौहान के परिवार,
2: ईशान ईशान मैं मुझे फिर आपका फिगर डाउन करना पड़ेगा, लेकिन विनोद जी, विनोद जी, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने तो विरोध कर दिया, उन्होंने कहा कि शैतान थे वो, और यही हर्ष होना चाहिए शैतानों का जो हुआ।
4: रेप का आरोपी उसको आपने,
2: ईशान प्लीज फिगर डाउन किया जाए। मैंने कहा कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, जिसका जिसका नाम लिया जाए बस वही बोलेंगे। विनोद जी आप अगले 30 सेकंड में कंप्लीट करिए प्लीज। जी
3: राजीव जी देखिए देखिए मैं कहना चाहता हूँ, एमएच खान जी ने जिस तरह से विक्टिम कार्ड शुरू किया अभी आपकी वक्तव्य शुरू करने से पहले और डिबेट में घुसने से पहले जाने की धमकी दी उन्होंने, और जिस प्रकार से एनकाउंटर का तो विरोध किया, लेकिन इनके मुंह में से दो शब्द ये नहीं निकले कि हाँ ये ईशान है और ईशान के तो 5 जिहादी साथी हैं, उनको इस्लाम से खारिज किया जाए, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है, इन्होंने बकरीद को बदनाम किया है, इन्होंने जो जो बकरीद की जो परंपरा है उसको बदनाम किया है, लेकिन ये इस बात का एंडोर्समेंट है कि हाँ ये तो काटेंगे। पहले पहले पहले शुरू किया था अपने बेटे को काटने की बात, और इन्होंने गौ काटने की बात करी, जब गौ नहीं काटी हिंदू समाज ने
2: पार्टियां
3: जो लगातार हिंदुओं पर हमलावर रहती है, आज जिहादियों के पक्ष में बोल रही है, परमानी की इनको आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा रिवर्स कांड हुआ, वो उसकी माँ बेचारी दर दर की ठोकर खा रही है, आप मुझे बताइए एक एनकाउंटर हो गया तो इनको बिलबिला रहे हो, ऐसे कई एनकाउंटर हो गए खान साहब, बचने वाला नहीं अब देश के अंदर ऐसा कोई अपराधी।
2: डॉक्टर एमएच खान साहब
3: मैं सीधा सीधा चेतावनी दे रहा हूँ, या तो सुधर जाओ नहीं तो इस मानसिकता को सुधारना हिंदू समाज पर चित रहता है।
2: डॉक्टर एमएच खान
5: देखिए देखिए फिर हिंदू समाज आ गया, हिंदू समाज मुस्लिम समाज क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो कांड ये जो हुआ है ये निंदनीय है। अब भाई बस सुन लीजिए ना, हम ये जो हत्या हुई है वो निंदनीय है, क्या करें बताइए, बताइए क्या करें। मैं कोई मुफ्ती हूँ,
2: विनोद जी अभी, अरे भाई मैं विनोद जी उनको सुन लेंगे भाई, विनोद विनोद जी अब आप उनको सुन लीजिए एक बार। हाँ मैं शादाब के पास ही आऊंगा इसके बाद। हाँ
5: मैं पहले से कह रहा हूँ कि किसी की भी हत्या हो वो हत्या जो निंदनीय है नहीं होना चाहिए, क्यों हो रही है आज किसी की भी इंसान की, किसी इंसान की, किसी इंसान की, किसी इंसान की, किसी इंसान की, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक जात बिरादरी के लिए ये देश नहीं बना है। ये सारे हिंदुओं ने, सारे मुसलमानों ने, सारे सिखों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है और उन्होंने देश को आजाद कराया है, और ये हिंदू महासभा हो चाहे आरएसएस के लोग हो, देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिए, और ये आप बात कर रहे हैं
2: आप दोनों की ही बातें लगभग लगभग आ गई। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास ही लौटूंगा, क्योंकि ऐसे लगातार सब बोलेंगे तो किसी की भी बात नहीं आएगी। लेकिन शादाब खान क्या काबिले तारीफ काम नहीं है कि एक अपराधी जो भागा भागा फिर रहा था उसका पुलिस एनकाउंटर कर दे, परिस्थिति ऐसे बन जाते एनकाउंटर हो जाता, आप अपराधी मारा तो गया ना, परिवार कह रहा है, स्वीकार कर रहा है कि हाँ न्याय है, थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि बाकी आरोपियों को भी होने चाहिए, लेकिन ये तो कम से कम मारा गया मुख्य आरोपी।
6: सबसे पहले दिल्ली में अरबाज की हत्या सौरभ ने की और सूर्य की हत्या असद ने की, हम दोनों घटनाओं की निंदा करते हैं, हम परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन पैरा रेसलर कार्तिक त्यागी हिंदू है, उसकी भी हत्या हुई, एनकाउंटर नहीं हुआ। गाजियाबाद में हत्या होती है, बीपीसीएल के कर्मचारी की हत्या होती है बदायूं में, वो भी हिंदू है लेकिन एनकाउंटर नहीं होता है। लखनऊ में उनेज की हत्या होती है लेकिन एनकाउंटर नहीं होता है। गोरखपुर में, वाराणसी में
2: सुन लीजिए, इस मामले में सारे एनकाउंटर थोड़ी हुए, एक ही आरोपी जिसने गोली चलाई उसका एनकाउंटर हुआ है, बाकी आरोपी तो गिरफ्तार हुए हैं ना, आज ही गिरफ्तार, हमने जानकारी दी भाई, इसमें फरहान, आतिफ, नवाब भी गिरफ्तार हुए हैं।
6: नहीं बोलूंगा, आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं, आपकी भाषा नहीं बोलूंगा, और मैं एडवोकेट हूं तो मैं न्यायपालिका के कार्य में बाधा डालने वालों का महिमा मंडन नहीं करने वाला हूं। न्यायपालिका का काम न्याय देना है, और अगर इनको इतनी चिंता है कि उत्तर प्रदेश में प्रदीप भंडारी को मैं चुनौती दे रहा हूं कि गीता पे हाथ रख करके शपथ लेकर के ये कहें कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की हत्या बंद हो गई, अगर हिंदुओं की हत्या करने वाले जितने लोग हैं ये उनका सबका एनकाउंटर कर दिया आपने, क्या अमित शाह जी के अंडर जो दिल्ली पुलिस आती है उसको आप काबिल नहीं मानते हैं कि अमित शाह जी नाकाम है और योगी जी कामयाब, यही कहना चाह रहे कि दिल्ली में और सेम टाइम पे घटनाएं हुई हैं, दोनों घटनाएं सेम समय पर हुई हैं, लेकिन सिर्फ एक घटना की बात करना यह दर्शाता है कि धार्मिक द्वेष का कार्य किया जा रहा है। धार्मिक द्वेष भड़काने वाले कितने लोगों पर कार्रवाई अब करने वाले हैं? प्रदीप भंडारी जी बताएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज घुंघरू पहनकर नंगा नाच कर रहा है और ये तमाशा देख रहे हैं। वो कार्तिक त्यागी इनको हिंदू नजर नहीं आता है, इनको बीपीसीएल के कर्मचारी मिश्रा जी हिंदू नजर नहीं आते हैं, बिल्डर नजर नहीं आता है लखनऊ का, वो हिंदू नहीं है। इनके लिए समस्या ये है कि जब अपराधी इनके राजनीतिक लाभ मिलेगा जिसका, उस पर ये कार्रवाई करके नौटंकी करेंगे। और मैं कभी भी न्याय का प्रतीक इस चीज को नहीं मानता, न्याय करने का काम न्यायपालिका का है। जो व्यक्ति न्यायपालिका को नहीं मानता है वो व्यक्ति संविधान विरोधी है, और संविधान विरोधी कोई भी कार्य।
2: प्रदीप भंडारी, मतलब सीधा सीधा आरोप है कि आप धर्म देखकर एनकाउंटर करते हैं, उन्होंने दूसरे जगहों का उदाहरण दिया, वहां क्यों नहीं एनकाउंटर हुए, यही एनकाउंटर क्यों हुआ? क्योंकि आप धर्म देखते हैं एनकाउंटर करते समय।
7: राजीव जी, मेरा निवेदन है कि मैंने आपकी बात को सुना और मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मेरे बीच में कोई बोलेगा तो आप उसके फेडर को कम कर दीजिए, मेरा
2: एकदम
7: सोच के
2: यही होगा।
7: बिल्कुल, पॉइंट नंबर वन, इन्होंने कहा भाई अगर धर्म देखकर दिया होता तो बाकी भी को अक्यूज तो मुसलमान ही है ना, तो बाकी का भी एनकाउंटर हो जाता। सिर्फ मेन एक्यूज का ही एनकाउंटर इसीलिए हुआ क्योंकि मेन एक्यूज ने जाके पुलिस के ऊपर जो है गोली चलाने का प्रयास किया, और ये तो 43(3) ऑफ बीएनएस कहता ही है कि अगर कोई पुलिस के ऊपर कार्रवाई करेगा तो पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है जवाबी कार्रवाई कर सकती है, जिसके अंदर असद जो है उसको उसकी मृत्यु हो गई और वो एक जिहादी आतंकवाद एक जिहादी था, इसको स्वीकारना होगा। क्योंकि मरने के मारने के पहले सूर्या को उसने पूछा था तुमने क्या कभी बकरा काटते हुए देखा है, उसने बोला नहीं देखा, देखो आओ दिखाता हूं, उसके बाद जाके इसकी मृत्यु हुई। दूसरी बात, इनको हिंदू मुसलमान जब भी हिंदू मरता है तभी क्यों दिखता है? जब अखलाक की मृत्यु हुई थी तब जाके तो ये नहीं कह रहे थे मुसलमान, तब अखलाक मुसलमान मुसलमान इस तरीके की बात कर रहे थे। तो हिंदू मुसलमान करने वाले तो ये लोग हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश के अंदर ये शासन चाहते हैं जिसके अंदर मुख्तार अंसारी, जिसके अंदर ये अतीक अहमद जैसे ये खूंखार आतंकवादी जिन्होंने गरीबों की दलितों की मृत्यु करी, उनको सरकार के अंदर क्या मंत्री बना दिया जाए क्या? इनकी सरकारें तो ये हुआ करती थी। हमें बात करी कानून की, सुनो कानून की बात करता हूँ। जब जनवरी 2026 को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश का धन्यवाद करा था ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा रूल ऑफ लॉ है, ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नहीं समझ सकती। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को तो दिक्कत हुई थी जब जाके अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना था, असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत हुई थी जब याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को, मुझे पता है आपकी दिक्कत ये है, आप इसके न्याय के साथ नहीं बोल सकते। याकूब मेनन के लिए
2: करके बोलेंगे मेहमान भी है। प्रदीप भंडारी कंप्लीट 30 सेकंड में जवाब दीजिए।
7: ये बहुत बचकानी और इलॉजिकल और गैर कानूनी बात है। कोई 10, 20, 30 नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, माफिया माफिया होता है। एक का भी कोई मर्डर करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, और अगर आप पुलिस वाले के ऊपर हमला करोगे तो पुलिस वाला 43(3) के अंदर जरूर जवाबी कार्रवाई के अंदर जो है एनकाउंटर कर सकता है। वो दिन गए कि पुलिस वालों को करते थे। अब मुझे बताओ जरा सूर्या के परिवार के साथ कब करोगे? असदुद्दीन ओवैसी कब गए? असदुद्दीन ओवैसी गए क्या? असदुद्दीन ओवैसी गए उसके परिवार के साथ
2: शादाब चौहान? शादाब चौहान
7: के परिवार के,
2: अगर इसमें तो सीधा सीधा सीधा सीधा सवाल है आपसे शादाब चौहान, ठीक है मैं प्रदीप आप ही का सवाल ले जा रहा हूँ, आप ही का सवाल। शादाब चौहान, अगर यहाँ पर जो पीड़ित है अगर वो मुस्लिम होता तो असदुद्दीन ओवैसी पहुंच जाते, लेकिन वो हिंदू है तो ना असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं ना शादाब चौहान जा रहे हैं।
6: अच्छा, मेरे जाना महत्वपूर्ण है या न्यायपालिका के माध्यम से न्याय की मांग करना महत्वपूर्ण है?
7: मुसलमान होगा तब जाने की बात आ जाएगी, मुसलमान होगा तो जाके मुआवजा दे दिया जाएगा, मुसलमान होगा तो जाके टिकट दे दिया जाएगा।
8: दोनों की बात कर रहा है, लेकिन प्रदीप भंडारी की हिम्मत नहीं है कि वो अरबाज के आरोपियों के खिलाफ बात करे, ये हिपोक्रेसी है।
7: क्योंकि वो हिंदू
8: रंजन सिंह का नाम नहीं ले सकते, ब्रजेश सिंह का नाम नहीं ले सकते प्रदीप भंडारी।
2: अब उनको उनको 30 सेकंड में कंप्लीट करना, फिर ईशान मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैंने देखी आपके आपके पास भी आऊंगा 30 सेकंड में। शादाब, हाँ
6: मैं प्रदीप भंडारी जी से कह रहा हूँ कि शादाब तो सूर्य के न्याय के लिए भी खड़ा है और अरबाज दिल्ली के वाले के लिए भी न्याय के लिए खड़ा है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि अरबाज के घर आपका कोई नेता जाए। आपकी हिम्मत नहीं, आपकी हिपोक्रेसी है। आप धनंजय सिंह के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप ब्रजेश सिंह के खिलाफ नहीं बोल सकते, टॉप 10 माफियाओं की सूची नहीं बता सकते।
2: ठीक है, ये बात आप रिपीट कर रहे हैं बातें, ये वाले पॉइंट आप कह चुके हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, विनोद जी आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन विक्रम सर, मैं विक्रम जी के पास जाना चाह रहा हूँ, आप उनको थोड़ा सा उनको भी सुने। विक्रम सर, मतलब क्या पुलिस के लिए बहुत मुश्किल समय है? क्यों बेचारी करी तो करे क्या, एनकाउंटर होता है तो सवाल, एनकाउंटर नहीं होता है अपराधी फरार रहता है तो सवाल।
3: राजीव जी, पुलिस और मुश्किल जो है ये कोई कंपैटिबल है ही नहीं। जहां पुलिस है वहां मुश्किलात नहीं है, और मुश्किलात से जीतना, उसको रौत के आगे बढ़ना, ये पुलिस का काम और धर्म, ये शब्द ही जो है कंपैटिबल है। अब मैं आपको एक लफ्ज में समझा देता हूं। हमारा तकिया कलाम है जो 1861 से आज तक केस डायरी में एनकाउंटर के बाद हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट, शादाब साहब और डॉक्टर खान साहब समझ होंगे, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के दस्तयाब किया, गैर मुनासिब नहीं। शादाब साहब, आप वकील हैं और हमने अगर गैर मुनासिब किया है तो आपके पास ऑप्शन है हमारे खिलाफ कत्ल का मुकदमा लिखा दें, अगर इतनी ही शौक है तो लिखा दें, ये आपका अख्तियार है और आपका अख्तियार और करना चाहिए। अगर पुलिस वाले
2: गलती से दे दिया उन्होंने, अहमद खान साहब ने आपको,
3: अहमद खान साहब तो मेरे भाई हैं, वो ना इत्तेफाकी कैसे करेंगे, इसीलिए मैं चाहता था तशरीफ फरमा रहे, हम सबकी सरपरस्ती फरमाएं। लेकिन राजीव जी, मैं ये चाहूंगा अगर पुलिस वाला गलती पे है आप मुकदमा जरूर का, ये आपका अख्तियार है।
2: ठीक है, समय कम है सर, मैं माफी के साथ, समय चूंकि कम है तो सबसे एक एक पॉइंट, विनोद जी अब 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करेगा, फिर ईशान आपके पास।
6: अदालत ने मुकदमा दर्ज किया है, फर्जी एनकाउंटर साबित हुए, ऐसी कितनी घटना।
2: मैंने विनोद जी का नाम लिया है शादाब, मैंने आपके पास आया था। हाँ विनोद जी, विक्रम
9: जी ने, राजीव जी देखिए, इस घटना से घटना को जोड़ना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि ये घटना एक्सक्लूसिवली इस्लाम के मानने वाले ने इस्लामिक पर्व पर और बाकायदा कुर्बानी का नाम लेके की है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये पहले गाय की कुर्बानी चाहते थे,
6: आपके चैनल का प्रयोग कर रहे हैं।
1: मर्डर केसेस का जिक्र किया लेकिन उसमें प्रदीप भंडारी और विनोद बंसल कुछ नहीं बोले। मैंने कई सारे ऐसे केसेस बताए जहां पे ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई, जहां पे बीजेपी के नेता भी इन्वॉल्व थे, जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा और दे देता हूं, सुमित, मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अरे भैया शांत हो जाइए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने चार ऐसे एनकाउंटर में आपको बताता हूं 2017 के बाद से,
2: जिनमें सुओ मोटो
1: नोएडा में, इरशाद अहमद का मर्डर हुआ मुजफ्फरनगर में,
2: ठीक है,
1: और जलौन में एक मर्डर हुआ, वहां पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके, जहां पे ये गलत तरीके से एनकाउंटर किया गया।
2: प्रदीप, लास्ट में आपके पास आऊंगा, सवाल आपकी तरफ से, डॉक्टर एमएच खान आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं आखिर में?
1: काम किया डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को, और ये विनोद बंसल जो बार बार बीच में बोल रहे हैं,
2: डॉक्टर एम एस खान तक भी शायद आवाज नहीं आ रही
1: है। जी बोले, ये आवाज स्वागत करते हैं रेप,
10: अरे मुझे बोलने के दीजिए, आवाज तो बंद कराइए इनकी, हम कैसे बोलेंगे।
2: अच्छा ठीक है, ये बोलिए, आपकी आ रही आवाज, आ रही है, आप बोलिए।
10: नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये देश, ये प्रदेश, ये संविधान के हिसाब से चलेगा। माननीय विक्रम सिंह जी बैठे हैं, साफ साफ बात उन्होंने कह दी, किसी के हजम नहीं हो रही है। सब अब जो आईपीएस अधिकारी है वो बोल रहे हैं, आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं कि कैसे
2: प्रदीप, लास्ट टेन सेकंड,
10: और जितनी भी हत्याएं हो रही है, किसी की हत्या हो रही है,
7: संविधान के हिसाब से ही चल रहा है, तभी अपराधियों के घर बुलडोजर चल रहे हैं जो पुलिस वाले।
2: मुझे माफी के साथ आप सबको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय इतनी ही इजाजत दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर, एनकाउंटर पर एक तरफ पीठ थपथपाए जा रहे हैं, इसे उपलब्धि बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से सवाल भी हैं जो खत्म नहीं हो रहा है। अब रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए, आप देख रहे हैं आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: In association with
14: Samakool Cooler, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। Samakool Cooler, life बनाए wonderful।
13: Hint, बड़े आराम से।
15: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
16: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans।
17: Sharda University, the world comes together at Sharda University, where are you?
13: विमल बोलो जुबां केसरी।
18: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: बकरीद के दिन जिस बेरहमी से सूर्या चौहान की हत्या हुई, चाकू से गोद कर उसकी जान ली गई। अब इस हत्याकांड के एक एक आरोपी का यूपी पुलिस हिसाब कर रही है। सूर्या का कत्ल करने वाले मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। दरअसल गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की धर पकड़ में लगी है। एक दिन पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच गाजियाबाद पुलिस को खबर लगी कि मुख्य आरोपी असद अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला था। पता ये भी लगा कि पैसे लेने के बाद उसका प्लान शहर छोड़कर भागने का था। सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस ने असद को दबोचने के लिए जाल बिछाया। कुछ ही समय बाद असद एक दूसरे व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो असद ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी एक्शन में असद को गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
1: असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, इसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे चेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना कोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है, उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है।
0: सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी मारा जा चुका है। अब परिवार आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहा है।
2: ये एक मांग पूरी हुई है, वो हुई अभी मेरे आगे तस्वीर नहीं आई है, ठीक है, मुझे तस्वीर देख लेंगे तभी मुझे तसल्ली आएगी।
3: पुलिस ने कहा है कि असद को हमने उठाकर उसके एनकाउंटर कर दिया, उसको ढेर कर दिया, तो आप उससे संतुष्ट हैं?
2: पूरी अभी संतुष्ट हैं, पर पूरी संतुष्टि नहीं जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे। और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए।
0: सूर्या चौहान की हत्या की वारदात बेहद सनसनीखेज है। जिस तरह उसका कत्ल किया गया वो बेरहमी की इंतहा है। पुलिस आरोपियों पर एक्शन ले रही है और सूर्या के परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश में लगी है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साईकुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
1: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
0: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था।
3: काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों? घर में रहिए ना।
0: अभिषेक बनर्जी पर थप्पड़ चले, उन पर भीड़ ने पत्थर से हमला किया, टीएमसी सांसद पर अंडे फेंके गए, धक्का मुक्की होती रही, अभिषेक जान बचाते रहे। उनके निजी सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाने की कोशिश की, उन्हें बचाने के लिए मशक्कत करते रहे, लेकिन सैकड़ों की भीड़ के गुस्से के आगे चंद गिने चुने सुरक्षा कर्मियों का घेरा टूट गया। उस घेरे के टूटने के बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में स्क्रीन पर दिख रहा है। बंगाल की सियासत में हिंसा की ये कोई नई तस्वीर नहीं, चुनाव से पहले भी बंगाल का रक्त चरित्र सामने आया है और चुनाव के बाद भी वो दौर जारी है। पहले टीएमसी सांसद पर हमला और फिर अस्पताल में इलाज में ढिलाई बरतने का गंभीर इल्जाम। पूर्व सीएम ममता बनर्जी गुस्से में हैं। ममता बनर्जी सवाल उठा रही है, पूछ रही है सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों किया गया।
2: बीच ऑफ सिक्योरिटी तो है ही, जानबूझ के पुलिस का एनकरेज नहीं हुआ, ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला।
0: टीएमसी के खिलाफ बीजेपी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। शुभेंदु सरकार के मंत्री टीएमसी की उनकी करनी को याद दिला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ममता सरकार में कैसे बीजेपी नेताओं पर हमले हुए। मंत्री पलटवार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि टीएमसी के सत्ता संभालने के दौरान कैसे कानून का राज खत्म हो गया था।
3: जनता कितना खपा हुआ है देखिए फलता इलेक्शन में, अब टीएमसी को फोर्थ पोजीशन मिला है, इसी को देख के समझ जाना चाहिए। काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के दो दो एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी, जनता ने सब देखा है। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए।
0: अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले के बाद टीएमसी गुस्से से भरी हुई। बंगाल के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हुगली की है, यहाँ पार्टी कार्यकर्ता गुस्से में दिखे। उन्होंने सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही हमलावरों पर एक्शन की मांग भी की। इस हमले को लेकर बंगाल पुलिस ने सोनारपुर में केस दर्ज किया है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: तो यूपी एनकाउंटर पर आपने देखा दंगल, अब आगे देखिए बहस बाजीगर अंजन ओम कश्यप के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर दिग्गजों के साथ मंथन, सरकार के 12 साल पूरे होने की उपलब्धियों पर भी चर्चा। पश्चिम बंगाल में सियासी हंगामा जारी, कल अभिषेक के बाद आज कल्याण बैनर्जी पर हमला, प्रदर्शन के दौरान सिर में लगी चोट, बीजेपी और टीएमसी में अब वार पलटवार। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का इनकाउंटर, पिता समेत तीनों और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस का दावा पूछताछ में खुलासा, फरहान ने दिया था चाकू। दिल्ली के मेहरोली में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या पहुंची 5, मलबे में निकाले गए 8 लोग अब गंभीर रूप से घायल, सामने आया बिल्डिंग के गिरने का भी वीडियो। अहमदाबाद में आज आईपीएल फाइनल का महामुकाबला, गिल और कोहली के बल्ले की जंग, आरसीबी और गुजरात के पास दूसरी बार चैंपियन बनने का मौका।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सागर में बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। छात्रों का बहुत स्वागत इस तरफ जो नीले गमछे के साथ बैठे हुए हैं, जो मोशन के पक्ष में आज बोलने वाले हैं। मोशन हम आपको बताएंगे, बड़ा ही दिलचस्प आज का मोशन है, लेकिन तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीले गमछे वाले। और ये है बीच में, ये लोग कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये सफेद गमछे वाले लोग हैं, ये शांति प्रिय लोग हैं, इनको मोक्ष मिल चुका है जीते जी। ये किसी बात पर, किसी मुद्दे पर अपनी कोई राय नहीं रखते, दोनों पक्षों को सुनते हैं। मैं आपको आदर्श मानती हूँ, गुस्से में मत देखो, मैं तुमको सही मानती हूँ। ये लोग हंस रहे हैं, ये जो लाल और नीला लिए हुए हंस रहे हैं। मैं तो मानती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। और तालियों के साथ स्वागत लाल गमछे वालों का, जो आज इस मोशन के पक्ष में। आज आपके लिए एक पहेली है, एक ऐसी पहेली है भारतीय पॉलिटिक्स की जो सबसे दिलचस्प पहेली है, और वो ये है कि कुछ मुद्दे इस पार्टी के होते हैं, कुछ मुद्दे उस पार्टी के होते हैं, और इधर वाले उसको नहीं छूते और उधर वाले इसको नहीं छूते। ये इसको अपना कोर बैंक बनाते हैं और ये अपने कोर पॉलिटिक्स पे रहते हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, अब कांग्रेस वाले भी कहते थे हाँ भाई बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, कभी राम मंदिर को मानते थे नहीं मानते, लेकिन बीजेपी अड़ी रही, मैनिफेस्टो में डालती रही राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, और फिर तारीख भी आ गई और राम मंदिर वहां पर बन गया। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी अडिग रही, धारा 370 बीजेपी ने अपना कोर इसको मुद्दा बनाया। ट्रिपल तलाक को, जो इंस्टेंट तलाक के बिद्दत है, जो इंस्टेंट तलाक होता है उसको खत्म करना, कि कोई किसी को बोलकर मौखिक रूप से तलाक नहीं दे सकता है, उसको खत्म करना। यूसीसी, अवैध घुसपैठ का मुद्दा आजकल आप सुन रहे होंगे, अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, इस मुद्दे को अब बीजेपी जोर शोर के साथ उठा रही है। कहती कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां भी हैं यहाँ पे घुसपैठिए हटना चाहिए, लेकिन वो घुसपैठ पर कोई आंदोलन नहीं करते हैं। मतलब कोई अवैध नागरिक किसी दूसरे देश का भारत के अंदर आकर रहे, उस पर आंदोलन या विरोध करने के लिए विपक्ष सड़कों पर नहीं निकलता है। लेकिन जहां सरकार में भी बीजेपी है, वहां पर घुसपैठ के खिलाफ वही बोलते हुए आपको नजर आएंगे। तो घुसपैठ का भी एक ऐसा ही मुद्दा है जो बीजेपी अपना कोर मुद्दा बना रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाता नहीं है, लेकिन कहता है हाँ भाई घुसपैठ नहीं होना चाहिए। आज ये सवाल हम पूछेंगे इस अपने बहसबाजीगर के डिबेट में कि घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है या बीजेपी का एजेंडा है? क्या बीजेपी के लिए ये सिर्फ वोट पाने का तरीका है या ये वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है? अगर 40-50-60% तक आबादी असम के कई जिलों में हो चुकी है घुसपैठियों की, मुस्लिम आबादी, तो ऐसे में क्या ये मुद्दा देश के लिए नहीं उठना चाहिए कि ऐसे जगहों पर 40, फिर धीरे धीरे 50, फिर धीरे धीरे 60% आबादी कैसे हो गई है? ऐसा ही बहुत सारे पश्चिम बंगाल के जिले हैं जो कि बांग्लादेश से लगे हुए हैं, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आश्चर्यजनक रूप से जो मुस्लिम वोट है उसकी आबादी बढ़ती जा रही है, कई जगहों पर 50-60% से ज्यादा हो चुकी है। तो इसकी वजह क्या है? क्या इस पर आंखें बंद कर ली गई थी पॉलिटिक्स के लिए? और बीजेपी क्या इस मुद्दे पर कुछ करेगी या सिर्फ वोट बटोरेगी? यही मुद्दा है आज जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। विपक्ष कहता है ये हिंदू मुस्लिम वोट करने का तरीका है, बीजेपी कहती है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इसीलिए आज हमने जो मोशन रखा है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज का मोशन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि घुसपैठियों भारत छोड़ो, गृहमंत्री अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि हर हाल में घुसपैठियों को निकालेंगे, तो आज का मोशन है क्या घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है? एक बार फिर से मोशन सुनिए, क्या घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है? इस बार दिलचस्प ये है कि चुनावी हथियार बना लिया है मोशन के पक्ष में वोट करने वाले इस तरफ है। आप लोग यही मानते हैं ना कि बीजेपी ने हथियार बना लिया है? कितने लोग मानते हैं, हाथ उठाइए। नीला गमछा लेके बैठे हो, मानते नहीं है मैडम? नहीं, वहां बैठना है अभी से पाला बदल लिया आपने? अब अल्लाह भाई यहाँ पे डिबेट होने के पहले ही पाला बदल रहे हैं। लीजिए गमछा, लीजिए, जाइए जाइए गमछा लीजिए, आपको ही बदलना है, उधर ही जाना है आपको भी। आइए मैडम लीजिए, हम कैसे रोक सकते हैं आपको, आइए। नहीं, आप यहाँ पे भी बैठ सकती है लाल गमछा लेकर, आइए आइए, बढ़ा दीजिए, कहाँ उठेंगी उस उम्र में, रुकिए हम ही आपको दे देते हैं। एकदम आपने पहले ही सोच लिया है। और कोई है नीला गमछा वाला? आप लोग भी लाल लाले हैं तो जाइए वहां से लीजिए। और बहस शुरू नहीं हुई है, लाल गमछा लेने के लिए सब तैयार हो गए। लीजिए, वाइट वाले को साइड में रख लीजिएगा, साथ में ले लीजिए। भाई आप लोगों के सामने आज चुनौती बड़ी है, आप लोगों को थोड़ा डबल चिल्लाना पड़ेगा, डबल ताली बजानी पड़ेगी ताकि आप लोगों को अपनी तरफ कर सके। देखिए उधर लाल गमछा रख के उन्होंने सफेद ले लिया है, बाप रे खतरा दोनों तरफ है। और शांति प्रिय लोग भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक है जिन्होंने लाल गमछा, मतलब अब ये मान रही हूं कि मैंने जैसे टॉपिक बताया ना उससे भी असर हुआ है थोड़ा। तो क्या घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है, आज बहसबाजीगर का यही मोशन है। हमारे तमाम दर्शक जो घर में इस वक्त मौजूद हैं, आप भी QR कोड स्कैन करके अपना वोट डाल सकते हैं। आइए बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मंच पर बुलाते हैं अपने तीनों जजेस को। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं। पेशे से पुलिस वाले हैं और आज भी इनके दिल में पुलिस फोर्स ही धड़कता है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए DGP उत्तर प्रदेश के डॉक्टर विक्रम सिंह साहब, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे रॉक स्टार गौरव सावंत का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। सीनियर मैनेजिंग एडिटर हैं इंडिया टुडे के, विदेशी मामलों के विशेष जानकार हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। गौरव है ये हमारे साथ, गौरव सावंत, गौरव तो फिर गौरव ही है। अब आइए बुलाते हैं अपने पहले दो कंटेस्टेंट्स। आइए अनिल यादव जी का स्वागत कीजिए तालियों के साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रोहन गुप्ता तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सोशल मीडिया में बड़े माहिर माने जाते हैं। गुजरात के चुनाव में जब मैं पिछली बार मिली थी तब, हाँ आइए बैठिए, स्वागत है। तो दोनों टीम लीडर्स हैं, अपनी अपनी टीम को लीड करेंगे। अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं तालियों के साथ, स्वागत कीजिए अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, सर्वोच्च न्यायालय के लॉयर हैं, और वहीं उनके साथ जुड़ रहे हैं विकास गुप्ता, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस करते हैं। हमने सोचा मुद्दा जरा कानून से भी जुड़ा हुआ है, तो इस बार आजकल देखिए जैसे हर पेशे में आप देखते होंगे आपको इधर के भी लोग मिलते हैं और उधर के भी लोग मिलते हैं, वैसे ही आजकल वकालत में भी आपको इधर के भी लोग मिलते हैं और उधर के भी लोग मिलते हैं। हमने सोचा एक जोड़ा बना लिया जाए, तो वो भी टीम में अपने शामिल हो गए। और अब आखिरी दो वक्ताओं को बुलाते हैं तालियों के साथ, स्वागत कीजिए प्रोफेसर साहब है पेशे से, लेकिन राजनीति पर जब बोलते हैं तो ज्यादा सुर संगीत दिखता नहीं है। संगीत रागी जी बहुत स्वागत है आपका, आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक वो दौर भी था जब टीवी पर यहां पर वो रहते थे जहां पर मैं हूं, लेकिन यहां से पहुंचते पहुंचते आज कुर्सी में उस छोर पर बैठे हैं। हम तो आपका हित चाहते हैं, आप अपना क्या चाहते हैं हमें पता नहीं। चलिए इस बहस की हम शुरुआत करें, क्या घुसपैठियों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी हथियार बना लिया है, पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: आज की बहस का मकसद और आधार बना है बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकारों का घुसपैठियों के खिलाफ महा एक्शन। जैसे ही बंगाल में बीजेपी को सत्ता मिली, घुसपैठ और घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। ये एक्शन सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि देश भर में शुरू हो गया।
2: गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा।
1: घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन पर विपक्ष सरकार पर बेवजह हल्ला मचाने का आरोप लगा रहा है।
3: एक दो तीन लगातार तीन दफे हिंदुस्तान की सरकार आप लोग ही बनाए हैं, आप लोग ही चलाते हैं, देश की प्रधानमंत्री आपका पार्टी के ही है। तो इतने दिन बांग्लादेशियों को भगाने के लिए किसने आपको रोका था, किसने रोका था? अजीब सी लग रहा है कि अचानक बांग्लादेशी को भगाने के लिए रोजाना।
1: बीजेपी घुसपैठियों को देश के लिए दीमक बता रही है, तो विपक्ष इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा। इसीलिए आज हम पूछेंगे कि क्या घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है।
0: आइए तालियों के साथ पहले दो वक्ताओं का स्वागत करते हैं। रोहन गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अनिल यादव जी तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों मुझे लगता है पहली बार शामिल हो रहे हैं।
4: नहीं, मैं पहले आया हूं।
0: तो आप आ चुके हैं यादव जी, आज गुप्ता जी पहली बार आ रहे हैं। रोहन जी, तो आज का विषय है कि क्या घुसपैठियों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी हथियार बना लिया है। आपका समर्थन करने वाले लोग यहां हैं जो मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये आपके हाथ का हथियार नहीं है। ये नीले गमछे वाले लोग, जिसमें पहले ही डिबेट इंट्रोड्यूस करते ही कुछ लोगों ने गमछा बदल लिया है, तो आज आपके लिए पिच अनुकूल दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन यहां पर नीले गमछे वाले लोग मानते हैं कि आपने इसको सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया है। तो इस मोशन पर बोलने का आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब।
5: देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, एक कहावत से शुरुआत करूंगा कि सरहदें चीखती हैं, सुरक्षा रोती है, जब देश में घुसपैठियों के नाम पे राजनीति होती है। देखिए, घुसपैठ का मुद्दा है, मुझे नहीं लगता है कोई ये डिबेट का मुद्दा है। जैसे आपने सही कहा कि कोई भी आदमी यहाँ पे, कोई भी भारत का नागरिक युवा बैठा है, घुसपैठ के मुद्दे पे तो बात ही नहीं है, ये तो राष्ट्र की नीति की बात है। जब राष्ट्र की नीति की मुद्दे को राजनीति में तब्दील किया जाए तब ये होता है। 60 साल तक तुष्टिकरण की राजनीति करके कांग्रेस और उनके साथी दलों ने तुष्टिकरण के नाम पे घुसपैठ की राजनीति का उपयोग किया। मुझे बताइए, कोई भी नागरिक, आप भी यहाँ पे बैठे हैं, क्या आप चाहेंगे देश के अंदर घुसपैठी हो? कोई भी नहीं चाहेगा। तब आप घुसपैठियों के नाम पर राजनीति करके, उनके साथ में रह के जब राजनीति करते हैं, तब देश की जनता उसके सामने खड़ी होती है। और उसका पर्चा आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में जनता ने करके दिखाया, जो इतने 60 साल में नहीं हुआ, जनता ने 20 दिन में करके दिखाया, क्या सारे घुसपैठी हकीमपुर बॉर्डर पर खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री को किसी ने रह के जब राजनीति करते हैं, तब देश की जनता उसके सामने खड़ी होती है। और उसका पर्चा आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में जनता ने करके दिखाया, जो इतने 60 साल में नहीं हुआ, जनता ने 20 दिन में करके दिखाया, क्या सारे घुसपैठी हकीमपुर बॉर्डर पर खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री को किसी ने गद्दार कहा? देश के गृह मंत्री को किसी ने गद्दार कहा? क्या मुझे बताइए कि देश को घुसपैठ या मुक्त बनाना देश से गद्दारी है? क्या मुझे बताइए कि 600 किलोमीटर 600 हेक्टर जमीन बीएसएफ को देना, क्या यह गद्दारी है? देश को नक्सल मुक्त करना, क्या यह गद्दारी है? मैं बताता हूं गद्दारी क्या होती है। गद्दारी वो होती है तब बार बार गृह मंत्री के बोलने के बावजूद भी आप 580 किलोमीटर की जमीन बॉर्डर के लिए नहीं देते। गद्दारी वो होती है कि जब भी आपको मौका मिलता है, कब घुसपैठियों के सहारे पे आप अपनी राजनीति करते हैं। गद्दारी वो होती है जब एसआईआर जैसी प्रक्रिया जो घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करता है इनिशियली, उसके सामने भी आप खड़े रहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, ये देश की राजनीति का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रनीति का मुद्दा है। और जब भी देश में जिस प्रकार की राजनीति होती है, जनता उसका प्रतिकार करती है। जिन्होंने भी घुसपैठियों को जिन्होंने भी घुसपैठियों खिलाई मलाई, जनता ने की उसकी धुलाई। और अब सारे घुसपैठे जाएंगे बॉर्डर पार, अगली बार भाजपा सरकार।
0: भाई, ओपनिंग बैट्समैन ने इधर से बॉर्डर संभाल लिया है, धुआंधार बल्लेबाजी हुई है। और ऐसी ही धुआंधार बल्लेबाजी हमें उम्मीद है अनिल यादव भी करेंगे। आपका इस विषय पर बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब।
4: देखिए, मैं समझता हूं कि घुसपैठ जो है वो किसी भी देश के लिए हानिकारक है, और हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि घुसपैठ को रोके और जो घुसपैठिए आए हुए हैं उनको वापस उनके जगह पे पहुंचाए। इसी कड़ी में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोगों ने अपने कार्यकाल में लगभग 90,000 घुसपैठियों को वापस पहुंचाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का, और मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मैं अपने साथी की तरह शेर व शायरी नहीं बताऊंगा, मैं तथ्यों की बात करूंगा और वही आंकड़े जो सरकार ने दे रखे हैं। इनकी सरकार आई है तो 2019 तक कुल 2600 लोगों के वापस कर। और बातें देखिए, डींगे देखिए कितने बड़े बड़े हांक रहे हैं। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि भाई आज मैंने हाई लेवल कमेटी बना दी है। अरे भैया, 12 साल से सरकार थी आपकी, क्या कर रहे थे आप? 7 साल उसमें गृह मंत्री रहे, 5 साल पहले राजनाथ सिंह थे, किसी और की जिम्मेदारी थोड़ी थी। बीएसएफ आपके अंडर आता है, आपका फुल कंट्रोल है, उसके बाद आपसे घुसपैठियां नहीं रुक रहे हैं, तो यह आपकी नाकामयाबी है। और मैं समझता हूं, देखिए, पूरे देश का इन्होंने मजाक बना दिया है। घुसपैठ जैसे मुद्दे को चुनावों में इन्होंने वोट के लिए इस्तेमाल किया, और आज इस्तेमाल पता है किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि आज जगह जगह पे लोग पेट्रोल डीजल की मार झेल रहे हैं, उनकी चेहरे दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, और वो कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं। तो उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वापस से घुसपैठ का मुद्दा ले आए हैं। अरे भाई, मुद्दा क्यों बताना क्या है, ये आपका काम है। किस बात के लिए ताली बजाएं हम आपकी कि हाई लेवल कमेटी बना दी है? आपका काम है, जिम्मेदारी है, निभाइए उसको। आपको इसमें भवावाई क्यों चाहिए? मैं समझता हूं कि आज पूरे देश का इन्होंने हर विभाग का, आप शिक्षा मंत्री को देखिए, वो कहते हैं कि भाई सीबीएसई के पेपर लीक की मार्कशीट खराब हो गई, नीट के पेपर लीक हो गए, लेकिन
0: समय समाप्त,
4: बस मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, पूरी बात हो जाए। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे। अरे कार्रवाई तो आप पे होनी चाहिए, आप जिम्मेदार है, किस पे करेंगे कार्रवाई? मजाक बना दिया है सरकार, थोड़ी मजाक चल रहा है।
0: दोनों तरफ से धुआंधार ओपनिंग हुई है, धुआंधार ओपनिंग हुई है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले राउंड में देखते हैं आप लोगों को कितना कन्विंस करते हैं। अब दो वकीलों को आपस में बहस करते हम देखेंगे। अश्विनी उपाध्याय जी आ जाइए और विकास गुप्ता जी आ जाइए, आप यहीं खड़े हो जाइए। लीजिए भाई, उधर से गमछा बदला जा रहा है सफेद। दो प्यार के शांति के पक्षी अच्छा नहीं, दो दो नीले ले रहे हैं, नीले ले रहे हैं, वाह। आइए इधर बैठेंगे, उधर बैठेंगे, उधर। पहन लो बाबू, गले में पहन लो। हाँ, या अब लगे हो पूरे हीरो। चलिए अब इस विषय पर बोलने का दो वकीलों को वक्त दिया जा रहा है, कानून के नजरिए से वो क्या बोलते हैं आपका इस विषय पर बोलने का। अश्विनी उपाध्याय जी, डेढ़ मिनट का समय शुरू होता है अब।
6: भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, टोटल होगा 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, इसका मतलब 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, इसका मतलब 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पर टोटल 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25 बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। घुसपैठ में मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था और राज्यवार मैंने आंकड़े दिए थे कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। 2026 चल रहा है, किसी राज्य सरकार ने, चाहे वो लेफ्ट की सरकार हो या राइट की सरकार, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं आके कहा कि जो मैंने आंकड़े दिए हैं गलत दिए हैं। तो भारत की डेमोग्राफी बदलने का 5 कारण है, लब जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिल जाती हैं पुलिस के प्रयास के बाद, 3.5 लाख बहन बेटियां साल में मिली नहीं रही हैं, इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां लब जिहाद का शिकार हो रही हैं। भारत में प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में

0: अपने टोटल एमएलए एमपी कोर्ट के माध्यम से, उनके मुकदमे चलते नहीं,
1: अलग अलग
0: एमएलए एमपी के मुकदमे चलते नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर और भी आरोप हुए तो उनके सजा हो गई। जहां तक कि सर इसकी बात है, मैंने अपनी जो पीआईएल फाइल किया उसमें कहा है कि आप घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, जिससे कि पुलिस एनएसए लगाए, अभी एनएसए लग नहीं रहा, घुसपैठ को आप अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए जिससे यूएपीए लगना शुरू हो जाए, अभी लग नहीं रहा।
1: उनको मान लीजिए काउंटर क्वेश्चन मेरा है, फिर एनएसए लगा दिया आपने, उनको जेल में बंद कर दिया
0: जी,
1: फिर क्या करेंगे, कितने जेलों में रखेंगे?
0: नहीं ऐसा होता है रंजना जी,
1: डिटेंशन सेंटर्स हमारे पे आ रहे
0: हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर में अगर 20 मच्छर आ जाएं तो आप एक मच्छर को मारिए, 19 मच्छर अपने आप भाग जाएंगे। आपके घर में 20 चूहे आ जाएं, एक चूहे को मारिए, 19 चूहे अपने आप भाग जाएंगे। ऐसे ही घुसपैठियों को जेल में भेजने से पहले ज्यादा जरूरी है घुसपैठियों का आधार बनाने वालों को, घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाने वालों को, घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वालों को, घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों का, घुसपैठियों को वोटर आईडी, केवल जो भारत में घुसपैठियों की मदद करते हैं, पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक, इनको जेल में डालिए, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
1: माफिया तोड़ना होगा।
2: मेरा प्रश्न तो पूरी पॉलिटिकल क्लास से है हमारे देश की, क्योंकि ये जो घुसपैठ का मुद्दा है ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, जो हमारे देश के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा इन सब बच्चों के लिए है, क्योंकि हम लोग की तो नौकरी लग गई, इनकी नौकरी में समस्या आएगी, क्योंकि वो घुसपैठिए वो नौकरी खाएंगे, वो घुसपैठिए इनकी जगह लेंगे, और ये इस देश के लिए बड़ी समस्या है। इस पर कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी तो होना ही नहीं चाहिए। ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इस पर हमारे पॉलिटिकल क्लास को एक होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा है।
1: मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर अनिल यादव की पार्टी सड़कों पर निकले विरोध करने,
2: अनिल यादव की पार्टी
1: और आंदोलन छेड़े बीजेपी के खिलाफ,
2: रोहन गुप्ता की पार्टी, सबको एकमत होना पड़ेगा। क्यों? मेरे को मालूम है कि वोट बैंक की राजनीति होती है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में हमारे देश का नुकसान होता है।
1: अनिल जी नहीं बोलेंगे,
2: वो अनिल जी को सोचना होगा,
1: क्योंकि क्यों विरोध
2: अनिल जी अगर बोल रहे हैं, अगर ये 5 करोड़ का आंकड़ा है, 5 करोड़ आ गए, आपने 90,000 भेज दिया, तो आपने सागर में से एक बाल्टी निकाल के वापस भेज दी। सागर तो आपके देश में आ रखा है ना, आपके बॉर्डर बेल्ट में,
1: डेमोग्राफिक प्रोफाइल,
2: और ये आज की बात नहीं है।
1: एक सेकंड, ये 5 करोड़ कहां से आया आपके पास?
0: 5 करोड़ आया, 2 करोड़ तो बताया था लोकसभा में, बताया था उस समय के गृह राज्य मंत्री जी ने, कांग्रेस के समय में, वो जायसवाल जी थे कानपुर वाले,
1: श्री प्रकाश जायसवाल
0: जी, उसके बाद किरण रिजिजू जी ने दोबारा उसको 2 करोड़ बताया था। मैंने उस पर और रिसर्च किया, राज्यवार मैंने आंकड़े दिए कि कितना यहाँ पे,
1: 11 के सेंसस के आधार पे उन्होंने बताया,
0: ग्यारह के सेंसस बताया था।
2: जनरल एस के सिन्हा की जो रिपोर्ट थी असम पर,
0: 1971 की रिपोर्ट,
2: कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जनरल एस के सिन्हा गवर्नर थे असम के, जनरल एस के सिन्हा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था बॉर्डर बेल्ट में आई कांट रिकॉग्नाइज वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, कि ये भारत है या ये बांग्लादेश है, इतनी डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल गई है। तब से अब तक हम 90,000 लोगों की बात या 2,000 लोगों की बात कर रहे हैं।
1: आपका दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए संगीत रागी जी, इस विषय पर बोलने का शुरुआती 1.5 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब। क्या घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है? टॉपिक पर रहिएगा।
3: देखिए बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1947 में देश का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर हुआ। अभी यहाँ पर कहा गया कि 85,000 कांग्रेस पार्टी के समय आए, आपको जानकारी में बता दूं कि हितेश्वर साकिया थे, जो उन्होंने मुख्यमंत्री थे आसाम के और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि 3 मिलियंस यानी 30 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर्फ आसाम में आ गए हैं। इंद्रजीत गुप्ता जो कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार में थे केंद्र के अंदर, और वो सीपीआई के थे, ऐसा नहीं था कि बीजेपी और बीजेपी रिलेटेड पार्टियों से थे, सीपीआई के गृह मंत्री रहते हुए केंद्र में रहते हुए उन्होंने कहा कि 1 करोड़ घुसपैठिए। आसाम के एक मंत्री हुआ करते थे देवकांत बरुआ, कांग्रेस से हुआ करते थे, वो कहते थे हमारे यहाँ घुसपैठिए इतने आ गए हैं, अली और कुली के सहारे हम देश में ये करते हैं, हम शासन चलाते हैं। ये आसाम के बारे में देवकांत बरुआ ने कहा था। अब जरा आ जाते हैं शिवप्रकाश जायसवाल के बाद, 2000 में पिटीशन फाइल किया था सर्वानंद सोनोवाल ने आसाम के अंदर, तब जाकर के आपको पता लगा 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 1983 के अंदर जो आईएमडीटी एक्ट लाया था वो घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लाया है, घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए नहीं, क्योंकि जो सिटीजनशिप का एक्ट है, जो फॉरनर्स एक्ट 1946 था, वो 2 प्रकार का, यहां पर ओनस किसको दिया गया, जो बगल के पड़ोसी को जताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये आदमी घुसपैठिया है, और उसको साबित भी करना पड़ेगा, यानी कांग्रेस पार्टी ने उनको सुरक्षा दे करके इस देश में बसाया है घुसपैठियों को।
1: 26 आए ही नहीं सर, उधर ही रह गए, 11 में ही फंस

0: के रह गए।
1: मिनट का आपने टाइम दिया, पहले 2 मिनट होता था।
0: हाँ ना, तो हमने इसीलिए 1.5 मिनट किया है क्योंकि आप लोग जितना समय दीजिए उतना ही दाएं बाएं खिसकने लगते हैं।
2: मास्टर को तो बैकग्राउंड बनाने में ही लग जाता है।
0: यही प्रॉब्लम है मास्टर्स के साथ। बच्चे कब सो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। आशुतोष जी, आपका इस विषय पर बोलने का टाइमर लगा दूं, 90 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब।
1: मैं आज कोई तकरीर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि हमारे जो साथी हैं, इन्होंने दरअसल मेरे उस मिथ को तोड़ दिया जब मैं मानता था कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की सबसे कॉम्पिटेंट सरकार है। इन लोगों ने साबित कर दिया कि सबसे कॉम्पिटेंट सरकार नहीं है, क्योंकि जो कुछ गिना रहे हैं उन 12 सालों में उसका निराकरण होना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको 5 साल का डेटा 2004 से लेकर 2009 और 2014 से 2019, अगर वाकई में घुसपैठियों के प्रति ईमानदार सरकार होती तो उनकी पहचान करके उनको अब तक देश के बाहर निकाल दिया गया होता, ये दर्शक तय करेंगे। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 14,916 लोगों घुसपैठियों को बाहर भेजा, 2006 में 13,692, 2008 में 12,135, 2009 में 10,602। अब आप इसका तुलना करिए, 2014 989, 2015 474, 2016 308, 2017 सोच नहीं सकते सिर्फ 51, और 2018 445, 2019 299। अगर यह सरकार ईमानदार होती घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर, तो मनमोहन सिंह की सरकार में अगर 50,000 के आसपास 5 साल के लोगों को घुसपैठियों के बाहर भेजा गया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वह आंकड़ा 2000 पर भी नहीं आता, 2500 पे आके रुक जाता है। क्यों? अगर आप वाकई में आपके लिए चुनाव में मुद्दा नहीं है, और आपने कहा झारखंड में बड़े बड़े घुसपैठिए थे, चुनाव के बाद कितनों की पहचान हुई, एसआईआर के बाद कितनी पहचान हुई?
0: क्लोजिंग दोनों तरफ से जबरदस्त है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा बोला। हाँ, बीच में बहुत परेशान हो रहे थे जब ये कुछ कुछ कह रहे थे, तो हमारे कान में फुसफुसा रहे, हमें कहीं जजेस नहीं सुन रहे, तो कोई फायदा नहीं। अब हो गया, अब सवाल पूछेंगे।
3: ध्यान से सुने, उसका उत्तर बिंदुवार दीजिएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगर हम गंभीर होते और इच्छा शक्ति होती, सबसे पहले इनको लाइन में खड़ा करके वोटिंग राइट समाप्त आपके हाथ से, दूसरे जो भी सरकारी संसाधन आपको मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना, गैस योजना और फ्री राशन, ये बंद आज से। आपको केवल एक अधिकार होगा, नागरिकता तो समाप्त हो ही गई, केवल जो बेसिक ह्यूमन राइट्स आपके हैं वही रहेंगे, बाकी आपके तमाम राइट्स। लेकिन राजनीतिक तुष्टिकरण को हम किस पराकाष्ठा पे ले गए कि हमने उनको वो सब सुविधाएं दी जो हमारे नागरिकों के नहीं है, और एक प्रधानमंत्री के सबसे पहले संसाधन ये इन लोगों को दिए जाएंगे।
0: देखिए विनोद जी, एक साथ ले लेते हैं। विनोद जी,
4: ये घुसपैठ का मुद्दा जो है चुनाव के समय ही आता है। जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, बिहार में चुनाव हो तो घुसपैठ, झारखंड में चुनाव हो तो घुसपैठ, पश्चिम बंगाल में हो चुनाव हो तो घुसपैठ। अभी हाल में एक होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है डेमोग्राफिक चेंजेस को स्टडी करने के लिए, उस पर रिपोर्ट देने के लिए। उस कमेटी का अगर आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखें तो उसमें खाली घुसपैठ की वजह से जो डेमोग्राफिक चेंजेस वही नहीं है, उसमें जो माइग्रेशन है मतलब देश के अंदर भी, वो भी उसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर के डेमोग्राफी खाली घुसपैठ से बदल रही हो ऐसा नहीं है, डेमोग्राफी राज्यों की बदल रही तमाम सारे कारणों से। इस पर क्या कहना है आप लोग?
5: गौरव, एक प्रश्न अगर मैं भी, और क्योंकि प्रश्न हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है, मैं सत्ता और विपक्ष दोनों से, क्योंकि ये राष्ट्र नीति का प्रश्न है, तो इसमें सत्ता और विपक्ष को एक मत हम क्यों नहीं कर पाते हैं कि सत्ता और विपक्ष मिलकर इस एक मुद्दे को डिसाइड करें कि तुमने नहीं किया और तुमने नहीं किया, बिल्कुल दोनों ने नहीं किया, लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान आपकी भावी पीढ़ी का है, तो उस भावी पीढ़ी के आगे के नुकसान को रोकने के लिए क्या वो कारगर कदम अब एक राष्ट्र नीति के तौर पर उठाए जाने की आवश्यकता है?
6: देखिए, मुझे लगता है विनोद जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव का रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा है। यदि 1971 से बाद से जितने भी रेजोल्यूशन है भारतीय जनता पार्टी के, 92, 93, 94, एक एक उठा करके दीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हर नेशनल एग्जीक्यूटिव में रेजोल्यूशन में भारतीय जनता पार्टी है। 2011 में भी, अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, जब नरेंद्र से भारतीय जनता पार्टी के 92, 93, 94, एक एक उठा करके दीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हर नेशनल एग्जीक्यूटिव में रेजोल्यूशन में भारतीय जनता पार्टी है। 2011 में भी, अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, जब नरेंद्र 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव में लेकर के आए, 2011 में भी था, और यही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी रेजोल्यूशंस हैं, यदि 1971 के बाद से आप निकाल करके देखेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हमेशा बनाए रखा है। दूसरी बात जिक्र कर देना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बांग्लादेशियों को घुसपैठियों को बाहर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भेजने के लिए कवायद की। महाराष्ट्र से बांग्लादेशी घुसपैठियों को ट्रेन में रख करके बांग्लादेश बॉर्डर की तरह कौन विरोध करने आ रहा है? समाजवादी पार्टी विरोध करने आई। कौन विरोध करने आ रहा है? कांग्रेस पार्टी विरोध करने आई। कौन विरोध करने आ रहा है? ये जितने विपक्षी गिरोह के लोग थे, ये जितने गिरोहबंद नेता हैं, उसमें ये भी चंद्रबाबू नायडू भी जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो भी उस समय उनका विरोध करने के लिए आ गए। आज के दिन में यदि सीएए की बात की जाती है, एनआरसी की बात की जाती है, तो इसीलिए आप कहते हैं एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था करने की बात थी। ये 2000, 4000 और 5000 जब आप करते हैं ना कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं उसको नहीं मानता। इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था करने की जरूरत है, जहां आपको पांच
0: मानेंगे
6: नहीं, इसलिए मानेंगे क्योंकि
0: वो वक्त में ज्यादा लोग भेजे गए। एंड गोल क्या है? घुसपैठियों को वापस भेजना? अरे आप ही का मौका है घुसपैठियों को भेजना। अरे भाई, तो तुलना तो की जाएगी ना कि उन्होंने ज्यादा भेजा जो नंबर्स इन्होंने, आपने कम भेजा, इस पर कोई तो जवाब होगा।
6: हाँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इसका बढ़िया अच्छा जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा कि जिस रफ्तार से कांग्रेस पार्टी ने और जिस तरीका लगाया है आईएमडीटी एक्ट, 300 साल लग जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट करने में और उनको बाहर घसाने में। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बता रहा हूँ।
1: मैं संगीत रागी जी की भावनाओं से 100% नहीं, 1000% सहमत हूँ। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉम्पिटेंट पार्टी है कि सिर्फ रिजोल्यूशन ही पास करती रहती है, सिर्फ रिजोल्यूशन पास कर रही। और अमित शाह ने
6: जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं थी। सर,
1: मैंने नहीं माना था, मैं आप
6: मनमोहन सिंह जी सत्ता में थे।
1: देखो, ये तो काउंटर हो गया,
0: ये गलत बात है।
1: अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष थे 2016 में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार घुसपैठियों के मसले पर नाकामयाब रही। अभी गूगल करके आपको मिल जाएगा, कारण भी बता दूंगा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, असम के अंदर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था, घुसपैठियों की पहचान की जा रही थी। शुरुआत में 45 लाख, फिर फिल्टर किया गया, 19.6 लाख घुसपैठिए पहचान किए गए, फिर फिल्टर किया गया, 16 लाख लोगों की पहचान हो चुकी।
0: जल्दी जल्दी, जल्दी
1: 16 लाख लोगों की पहचान हो चुकी है। उनमें से 7 लाख मुसलमान है, 9 लाख के आसपास उसमें हिंदू है। अब चलिए, मैं मान सकता हूं भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं से उसको प्रेम है, मुसलमानों से प्रेम नहीं, तो कम से कम जो 7 लाख घुसपैठियों की पहचान आपने कर रखी है असम के अंदर, उसके 10% को तो बाहर कर देते, क्यों नहीं किया आपने? इसका मतलब आपके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा। और तब जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान कहते हैं ये घुसपैठिए हमारी मां बहनों के मंगल सूत्र को छीन लेंगे, जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है और सिर्फ कहता है और उसके बाद वो अमल में नहीं होता है, तो क्यों ना माना जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है।
0: लोगों को भटकाने के लिए जल्दी से आइए, जल्दी से रिपोर्टिंग राउंड की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, टाइम कम है। रोहन जी आइए फटाफट, अनिल यादव जी जल्दी से, रिपोर्टिंग राउंड है, एक एक मिनट का समय मिलेगा। जो आपका कोई प्रश्न था आप पूछ सकते हैं, जिसको हम लोग अभी शामिल कर ले। पूछे,
5: मेरा प्रश्न इस समय बॉर्डर और बंगाल के बॉर्डर को लेकर है, और मैं क्योंकि इस पे सत्ता और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। अगर बंगाल में 450 किलोमीटर भूमि की आवश्यकता है और भारत की जो सीमा सुरक्षा बल है वो 10 सालों से मांग कर रही है, 10 सालों से, 2013 के एक्ट को लागू करने के लिए वो 2015 में रिक्वेस्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट से, 2016 में रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, 2026 में जाकर उनको ये लैंड क्यों मिलता है? ये पूरे देश के लिए आज के लिए सबसे बड़ा सवाल क्यों नहीं है? कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल क्यों नहीं है?
0: आपका इस विषय पर जवाब देने का, गौरव के सवाल का 60 सेकंड का समय शुरू होता है।
7: देखिए, मैं गौरव जी की बात से सहमत हूँ कि राष्ट्रनीति जो है उसमें पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि क्या राष्ट्रनीति जो है वो चुनाव की रैलियों में बनेगी? क्या जब आप वोट मांग रहे होंगे जनता से तब आपको घुसपैठियों का मुद्दा याद आएगा? आखिरकार आपने कब लीडर ऑफ अपोजिशन को या विपक्ष को कहा कि भाई हम एक कमेटी बना रहे हैं, हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं, इसमें आप अपने सुझाव दीजिए? नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ सिर्फ वोट बटोरना है। जहां तक बंगाल की बात है, क्या सिर्फ घुसपैठिया बंगाल में? दिल्ली के अंदर करोड़ों लोगों की संख्या है, दिल्ली के अंदर आपके सामने घुसपैठिया बैठे हुए आपकी नाक के नीचे, तब आपको नहीं समझ आता कि ये की घुसपैठियां हैं, तब अमित शाह जी कहां चले जाते हैं? आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में यही स्थिति है, क्योंकि समस्या यह है कि आपको सिर्फ सिर्फ वोट चाहिए घुसपैठियों से, और इन बच्चों के भविष्य से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वोट चाहिए। जहां तक बंगाल की बात है, छोटी सी बात कहूंगा, वहां तो ये भी कहते थे कि हमें चुनाव नहीं कराने दिया जाता, लेकिन आपने कराया ना, इलेक्शन कमीशन ने कराया ना, कोर्ट की भी मदद ली ना, तो जब अगर आपकी नियत थी जमीन लेने की तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने और जनता को मूर्ख बनाना है।
0: समय समाप्त हुआ, वाह, रिबटल राउंड में अब आपका एक मिनट का समय शुरू होता है।
8: देखिए, अभी जो सवाल पूछा उसका कोई जवाब नहीं आया कि ये पहली बार हुआ है कि कोई राज्य सरकार 10 साल तक बीएसएफ ने जगह मांगी और नहीं दे रही है। मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ा धोखा देश के साथ हो सकता है। आशुतोष जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि भाजपा ने क्या किया। आपको क्या हकीमपुर बॉर्डर पे दिखा नहीं आपको क्या हो रहा है? दो दिन से शायद आप लोग आराम में है चुनाव हारने के बाद में, वहां जो भीड़ है आशुतोष जी, आपको बोल के जाता हूं, ये अभी ट्रेलर है, अभी तो मेरे दोस्त पूरी पिक्चर बाकी है। जो छेद आपने पश्चिम बंगाल में छोड़ा था वो अब भर चुका है, अब भाजपा आपको दिखाएगी कि क्या करना है। आपने बहुत बड़े आंकड़े दिए, 2,000, 5,000, भाई जिन लाखों दामादों को आपने यहाँ पे करा था और 2,000 को वापस भेज के आप क्या साबित करना चाहते हैं? लाखों करोड़ों में दामाद इकट्ठे किए थे आपने, मैं आपकी सरकार का बताता हूँ, वो दामाद बाहर गए। IMDT एक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ क्या धोखा होता है देश के साथ में। इलीगल माइग्रेंट डिटेक्शन एक्ट 1983, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2005 में स्ट्राइक डाउन किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें यह कहा गया कि माइग्रेंट नहीं, सामने वाले को साबित करना पड़ेगा यह माइग्रेंट है। किसने किया था? कांग्रेस सरकार ने। श्री प्रकाश जायसवाल को जब संसद में पूछा गया कितने घुसपैठिए, तब उन्होंने आंकड़े दिए, दो राज्य के, आसाम में 50 लाख, बंगाल में 1 मिनट, बंगाल में 57 लाख। उनको आंकड़ा अपना वापस लेना पड़ा क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति चल रही
0: थी। दोनों ने रिबट राउंड में बहुत अच्छा बोला, दोनों, उन्होंने भी माइक रख दिया है, एकदम टाइम फिक्स्ड एकदम। अब एक 60 सेकंड्स के ऊपर नहीं मिलेगा, जल्दी से आए अश्विनी जी, विकास जी, जल्दी से, दोनों लॉयर्स आमने सामने, सबको डेढ़ डेढ़ मिनट, एक एक मिनट का टाइम दिया गया है, उसी में अपना धुआंधार बल्लेबाजी कीजिए, और उसमें सेकंड जितने सवाइए नहीं कि एक एक लाइन के बीच में रुक गए सोचने लगे। चलिए अश्विनी जी, आपका एक मिनट का रिबटल राउंड का समय शुरू होता है।
9: सवाल यह है अंजना की, चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती, दुबई में घुसपैठ क्यों नहीं होती, इसराइल में घुसपैठ क्यों नहीं होती? जिन देशों ने सठे साठम समाचार सिद्धांत अपनाया, लोहा लोहे को काटता है सिद्धांत अपनाया, वहां पे घुसपैठ नहीं होती। भारत में घुसपैठियों को मानवाधिकार की बात की जाती है, इसलिए यहाँ भारत में घुसपैठ होती है। सबसे बड़ा देशद्रोह किया गया 2012 में, भारत की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने बांग्लादेश के साथ एक नॉन लीथल TT किया, जो BSF पहले देखते ही गोली मार देता था, 2012 में उसके हाथ पैर बांध दिए गए, उसको छड़ी पकड़ा दी गई, डंडा पकड़ा दिया गया कि घुसपैठिया आएगा तुम केवल हवाई फायर करना, गोली मत मारना। ये 2012 में हुआ है, दुर्भाग्यवश सर वो नॉन लीथल TT आज भी चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। दूसरा, घुसपैठ का मूल कारण है घुसखोरी। चीन में और इसराइल में घुसपैठ करने पर आजीवन कारावास है और घुसपैठियों की मदद करने पर फांसी है। तो जब तक हम घुसपैठियों के मदद करने को जघन्य अपराध नहीं बनाएंगे, जो यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 में आधार बन रहा है, जो यहाँ RTO ऑफिस में 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, जो यहाँ नगर निगम में 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, जब तक ये घुसखोरी को जघन्य अपराध घोषित नहीं करेंगे।
10: अश्विनी जी जो कह रहे हैं कि अगर रिश्वत दे दे करके हो रहा है, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। अगर घुसपैठिया सिर्फ एक मुद्दा है और इलेक्शन का ही मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि उसमें क्या किया गया है, सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ स्टूडियो में चर्चा या लाल किले के प्राचीर से कहना से बात का समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार ने अभी तक कोई रोड मैप नहीं दिया, 12 साल से सरकार है, कि घुसपैठियों को कैसे रोका जाए, कैसे उन्हें चिन्हित किया जाए और कैसे उन्हें बाहर भेजा जाए। उस ठीक उसी तरह जिस तरह से 2014 में, 19 में, 24 में जिस तरह से इलेक्शन के मुद्दों में प्रोमिसेस किए गए और वो प्रोमिसेस अनफुलफिल्ड रहे, सिर्फ एक नारे बनकर के रह गए, वो भले ही आपकी 2 करोड़ नौकरियां हो, भले ही वो किसान की आय को दुगना करना हो, भले ही वो 100 स्मार्ट सिटी बनानी हो। अगर मैं ये अवश्य आपको दो टुक कह सकता हूं कि अगर 100 स्मार्ट सिटीज देश में बन गई होती तो 40 करोड़ मिडिल क्लास पॉपुलेशन खड़ी हो गई होती, गरीबी से जो लोग नीचे हैं।
0: वाह, बहुत अच्छा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एकदम अनुशासन से चलने के लिए डबल धन्यवाद। आइए फटाफट आइए संगीत रागी जी, और अब मैं तीनों हिस्सों से लाल गमछे से कोई एक सवाल, लड़की को प्रेफरेंस, आइए।
11: मैम, मेरा सवाल यह है कि विपक्ष ने जैसे कहा कि घुसपैठ जो है वो एक मुद्दा नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा, क्या वो एक मुद्दा हो सकता है इलेक्शन के टाइम पे? वहां पे जो संसाधन है, जिसकी विपक्ष खुद कहता है कि कमी पड़ रही है, उस संसाधन की जो कमी है उसे खत्म करने की कोशिश के लिए घुसपैठ हटाए गए, तो इसे इलेक्शन पे एक मुद्दा क्यों नहीं रखा जा सकता? सफेद गमछे वाले शांति प्रिय लोग आइए, मैम आइए।
12: मेरा सवाल विपक्ष से है कि जब देश की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जैसे मुद्दे सामने हैं, तो फिर क्यों विपक्ष सरकार से वोट बैंक की राजनीति पर सवाल करता है? मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और पक्ष और विपक्ष को एक होकर काम करना चाहिए।
0: बहुत अच्छा, पर आपने ये अच्छा किया है, लाल शर्ट पहन लिया है और फिर ऊपर से सफेद गमछा ले लिया है, कुछ तो डेस्टिनी फिक्स था आपका, बहुत अच्छा। चलिए इसका भी जवाब लेंगे नीले गमछे से। कोई लड़की प्रश्न नहीं करना चाहती है, पूछिए मैम।
13: क्या ये घुसपैठ का मुद्दा
0: यहाँ पर तो हो सकता है ना आरक्षण?
13: घुसपैठ का मुद्दा नया तो नहीं है, अचानक से जब 2027 में चुनाव आने वाले हैं तो ये इतना मतलब ऊपर क्यों आ रहा है, मेरा ये क्वेश्चन है।
0: चार चुनाव से चल रहा है मैम, कहाँ है आप? चलिए अब जवाब लेते हैं। अब हाँ, हमने 100% कर दिया है, आप लोग 33% करने से डरते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग डरपोक हैं सारे नेता। चलिए हमको घुसने तो दीजिए, वहां पे सब ठीक कर देंगे। 60 सेकंड्स आपका समय शुरू हो रहा है जवाब देने का, जो प्रश्न आया उनका कि चुनाव में काहे उठाते हैं ये मुद्दा। रागी जी
8: देखिए, मुझे लगता
0: 26 में रहिएगा सर, 26 2026 साल, तारीख बताइए इनको एक बार फिर से, तो हम लोग फिर इतिहास में ले जाएंगे प्रोफेसर साहब।
8: देखिए मैं इतना ही कह रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का यह मुद्दा है तो इसे हमेशा चुनाव का भी विमर्श बनना चाहिए। लोग सोचे तो सही, सेंसिटिव तो हों कि इस मुद्दे पर कितना हमको गंभीरता से इस बात को आगे ले चलनी है, इसका विरोध कौन करता है। जब SIR का मुद्दा था, SIR का मुद्दा एक बहुत अच्छा मुद्दा था, बंगाल के अंदर घुसपैठिए बाहर निकाल दें, कौन लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट लड़ने चला गया? कांग्रेस के गिरोह के सारे वकील लड़ने चले गए, कांग्रेस पार्टी लड़ने चले गई और सारे विपक्षी दे रहा गैर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां बचाने के लिए चले गए थे। CAA लेकर के आया था ना, एक वहां से आइडेंटिफिकेशन का इनडायरेक्टली हो सकता था ना, कौन विरोध शाहीन बाग कौन खड़ा किया? कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी मिलकर के देश में शाहीन बाग खड़ा कीजिए। तो अपने दुश्मनों को पहचानिए, कौन इन घुसपैठियों को शरण दे करके पिछले 70 साल में दामाद बना करके रखा है, ये देश के दुश्मन है। मैं फिर आपको बताऊं, आपके कई हिस्से कश्मीर बन जाएंगे यदि इन घुसपैठियों को आपने बाहर नहीं निकाला तो।
0: बार बार उनको दामाद कह रहे, कितने दामाद निकाले इन्होंने ये बताइए ना।
14: हम घुसने नहीं देते।
1: चलिए मैं बोलूं
0: आशुतोष जी, अब आपका टाइमर 60 सेकंड का रिबटल राउंड शुरू होता है अब।
1: बहुत अच्छा हुआ कि हमारे संगीत रागी जी ने कहा कि 70 साल में, यानी उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार भी शामिल है इस मुद्दे को ना टैकल करने
8: को, इसी में खुशी है।
1: अरे आपने कहा 70 साल में, तो
8: इसी में खुशी।
1: दूसरी बात, मैं एक बात तमाम दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आप सब मानते प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये घुसपैठिए है, हमारी मां बहन की मंगलसूत्र छीन के लेके जाएंगे, कहा ना? तो अगर यह है तो युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, डिटेक्ट होने चाहिए, बाहर किए जाने चाहिए, क्यों नहीं किए गए?
8: विरोध कौन किया? NRC पर विरोध कौन किया? कांग्रेस पार्टी, जिसका यह समर्थन करने आते हैं।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
8: कौन विरोध करता है घुसपैठियों को बाहर निकालने के विरोध कौन करता है?
0: आपका चलिए दीजिए माइक दीजिए,
1: हमारा 25 मिनट गायब
0: हुआ। जल्दी जल्दी 25 सेकंड आपको दे दूंगी मैं।
1: और मुझे अब ये गलतफहमी हो गई है कि 2014 से अभी तक सिर्फ मेरी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है। और मुझे ये भी गलतफहमी हो गई कि दरअसल ये इस देश की सबसे कमजोर सरकार है, क्योंकि ये कानून नहीं बना पाती, ये राज्य सरकारों से बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं करवा पाती। अरे जिस मुद्दे की वजह से हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, वैसी सरकारों को बर्खास्त करने की हिम्मत इस सरकार के अंदर क्यों नहीं है? बर्खास्त करिए उन सरकारों को, बर्खास्त करिए उन सरकारों को, बर्खास्त करिए। कानून क्यों नहीं बनाते आप?
0: अगर एक भी चुनी हुई सरकार को सरकार ने बर्खास्त कर दिया तो पता नहीं आप क्या कर दीजिएगा।
1: राष्ट्रीय
0: ताली बजाइए भाई, बहुत धन्यवाद।
1: सुरक्षा का सवाल है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो सरकार जो नेता इसके आड़े में है वो जेल की सलाखों के
0: गुरु जी हो गए।
1: गुरु
0: जी समय समाप्त हुआ, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आप
8: ये लग रहा है भाषण वैसा ही है जब आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, जब निकल करके भागे तब।
0: जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं वो कम से कम किसी भी बात पर देश में संविधान को दरकिनार करके चुनी हुई सरकार को सरकार बर्खास्त कर दे ऐसा ना ही कहें तो अच्छा होगा। हम मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, इट्स कम्प्लीटली योर थॉट, योर कोर्ट, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम चैनल के तौर पर कह रहे हैं कि सिरे से गलत है और इसकी वकालत कोई नहीं करता है। अब बारी है आपकी, जब आप डालेंगे वोट, हमारे तमाम दर्शक जो घर पर इस वक्त मौजूद हैं, अगर आप भी इस पर अपना वोट डालना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड है, उसे स्कैन करके आप अपनी राय डाल सकते हैं। और इस बीच यहां पर ऑडियंस में जितनी भी जनता बैठी है, क्या घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है? जो लोग मानते हैं हाँ, वो वोट करेंगे टीम अनिल यादव के लिए, तो टीम अनिल यादव को वोट जाएगा अगर आप हां पर वोट करेंगे। और जो लोग मानते हैं कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, सिर्फ चुनावी हथियार नहीं है, वो टीम रोहन गुप्ता जी को वोट करेंगे। और टीम रोहन गुप्ता के लिए आपको नहीं पर वोट करना है, लाल गमछे वाले और सफेद गमछे वाले। मुझे पता नहीं है कि आप लोगों का किधर दिल पिघल रहा है, जैसे मैडम ने लाल शर्ट पहनी थी, सफेद ले लिया था गमछा। हाँ, सफेद गमछों के लिए ऑल ऑप्शन आर ओपन। आप जोड़ लीजिए, जितना हाथ जोड़ना है जोड़ लीजिए, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो लोग आते हैं सफेद गमछे वाले भी वोट वही डालते हैं जहां उनका मन है। दिखते हैं 15-20, लेकिन 3-4% ही उनका वोट आता है। मोर और लेस दे आर डिसाइडेड बट दे डोंट वॉन्ट टू ओपनली टेक साइड्स। तो चलिए वोटिंग की शुरुआत करते हैं, और आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखेगा क्या घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है। अगर आप मानते हैं नहीं बनाया है तो नहीं पर वोट करेंगे, हां मानने वाले हां पर, और कह नहीं सकते वाले जीरो पर। आपका वोटिंग शुरू होता है अब, वोट डालिए। अभी तो कांटे की टक्कर चल रही है, 50% नहीं कह रहे हैं, 50%, 45% कह नहीं सकते वाले, 5%। आज मुझे लगता है कि जो सफेद गमछे वाले हैं वो ईमानदारी से कह नहीं सकते पर वोट डाल रहे हैं। पूरे डिबेट में आप लोगों का कोई राय नहीं बनी इस पर। 48 और 45 आखिरी के 25 सेकंड बचे हैं, 20 सेकंड, 49% नहीं वाले और 48 हो गया है, 46 हैं हाँ वाले और कह नहीं सकते वाले 6%, उनमें भी इजाफा हुआ है। इस बार राय बटी हुई निकली है और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। 48% के साथ रोहन गुप्ता की टीम जीत गई है, 49% हो गया, लेकिन टीम अनिल यादव भी ज्यादा पीछे नहीं है 46% वोट्स के साथ, वो भी बहुत करीब है, और कह नहीं सकते वाले तो 5% है ही।
4: कांटे की टक्कर रही इस बार,
0: हाँ कांटे की,
4: और अब ऐसी ही कांटे की टक्कर बहसबाजी कर चुनने में भी हुई है।
0: हाँ, आप लोगों को भी दिक्कत हुई होगी।
4: गौरव अनाउंस करेंगे रिजल्ट को।
0: गौरव बताइए, आज का इन 6 वक्ताओं में से सबसे अच्छा वक्ता कौन है?
5: तो हम तीनों ने काफी इस पर मंथन किया, सब बहुत अच्छा बोले,
0: हाँ,
5: और दिल से बोले,
0: हाँ,
5: उम्मीद हमारी यह है कि एक राष्ट्र नीति बने,
0: हाँ,
5: और विपक्ष और सत्ता पक्ष ना हो, देश का मत हो कि घुसपैठियों को, हाँ, बाहर किया जाए,
0: हाँ,
5: तो बहसबाजीगर में तीनों की राय,
0: हाँ,
5: हमारी यह है कि अश्विनी उपाध्याय जी, क्योंकि इस मुद्दे को काफी टंके की चोट पर उठाते हैं, और अनिल यादव जी, क्योंकि अनिल यादव जी बहुत दिल से बोले, अपना मत रखा,
0: जॉइंट विनर,
5: टाई, जॉइंट
0: टाई है अनिल यादव जी भी, वाह वाह बहुत। तो भाई अश्विनी उपाध्याय और अनिल यादव इस सप्ताह में दो बहसबाजीगर चुने गए हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट।
5: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट खुशियों के रंग।
6: In association with Samakul Cooler, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। Samakul Cooler, लाइफ बनाए वंडरफुल। Hint, बड़े आराम से।
7: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
8: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
9: विमल बोलो जुबां केसरी।
10: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज
11: तक। डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
12: सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान सोरोस एवरीबॉडी इज कम।
13: दे स्टार्टेड कॉलिंग अस एंटी नेशनल एंड पाकिस्तानी।
12: 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स भैया, दिखाओ टेररिस्ट के चेहरे दिखाओ जरा।
14: जब मैं शीट देखता हूँ फिजिक्स की, उसका मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके पास हमारे साथ ऑप्शन था कि अगर आपको अपने नंबर कम आते हैं तो आप करते हैं बुलाए फोटो कॉपी के लिए। लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटो कॉपी, यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थी। लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे एक बार खोलता हूँ फोटो कॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंड राइटिंग होती है। तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पे। लोगों का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है। बट जब इस पे पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट एजेंट्स दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट इन इंडिया।
12: 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई?
13: सोरोस इज।
12: सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान सोरोस एवरीबॉडी इज कम।
13: दे स्टार्टेड कॉलिंग अस एंटी नेशनल एंड पाकिस्तानी, देन आफ्टर दैट
12: दैट्स क्रेजी।
13: दैट इज वेरी क्रेजी,
12: यू नो,
13: दैट इज नॉट राइट।
12: And your students, I mean, you've got nothing to do with anything. You're asking for your answer sheet. That's all. Now suddenly you've become anti-nationals. You have to accept the problem if you want to solve the problem.
13: Right.
12: You're just refusing to accept that the problem. You're blaming the poor kids and saying, you know, you're deep state, you're spies or terrorists.
13: Then we are trying to be the best in India.
12: Terrorists. Shabash.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: गाजियाबाद में एक हत्या हुई, एक परिवार का बेटा चला गया, गुस्सा उठा, सवाल उठे और फिर पुलिस की कार्रवाई हुई। सूर्या की चिता की रात ठंडी होने से पहले ही पुलिस की बंदूक से निकली गोली ने एक नया संदेश लिख दिया। सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी अब असद एनकाउंटर में मारा गया।
1: असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना थोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है जिसमें असद को गोली लगती है।
0: गाजियाबाद में 17 साल के सूर्या की हत्या बकरीद वाले दिन यानी 28 मई को हुई। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीएम योगी इन 48 घंटे में दो बार संदेश दे चुके हैं कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरसों पहले विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार का ब्लूप्रिंट रख दिया था। यही वजह है कि यूपी में हर एनकाउंटर सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं रहता, वो राजनीतिक संदेश बन जाता है। लेकिन विपक्ष लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठाता रहा है और इस बार भी उठा रहा है।
2: एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था? पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए, बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं।
0: यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन नैरेटिव आकार लेने लगा है। कांग्रेस योगी राज को जंगल राज बता रही है। गाजियाबाद का एनकाउंटर यूपी की राजनीति में ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि चुनावी रैलियों में भाषण भुलाए जा सकते हैं, लेकिन घर लौटते वक्त सुरक्षित महसूस करने का एहसास नहीं भुलाया जा सकता। तो क्या उत्तर प्रदेश को योगी का मॉडल पसंद है?
3: कुछ है पर पूरी तरह नहीं, जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे। और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी एनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए।
0: सूर्या की हत्या से मुस्लिम धर्म गुरु आहत है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन हत्यारे को शैतान बता रहे हैं।
4: इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया। किसी का भाई चला गया, जिसका बेटा चला गया, जिसका पोता चला गया, जिसका नवासा चला गया, उस पर क्या बीत रही होगी? बहुत तकलीफ हुई।
0: यूपी में अब सवाल नाम का नहीं अंजाम का पूछा जा रहा है। गोली गाजियाबाद में चली है, लेकिन उसका राजनीतिक असर 2027 तक जाएगा। अपराधी का अंत हुआ है, लेकिन बहस की शुरुआत अब होगी। योगी का दावा फिर चर्चा में है और विपक्ष हो गया है आग बबूला। अरविंद ओझा, मयंक गौर और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: प्रधानमंत्री जी ने खुद निर्देश दिए हैं और राजनाथ सिंह जी की के यहाँ बैठक भी हुई और ये चिंता की जा रही कि अब ना लीक हो, जरूरत पड़े तो एयरफोर्स की भी जरूरत पड़े तो एयरफोर्स की भी यूज के हवाई जहाज भी यूज किए जाएं, ताकि किसी प्रकार से कहीं लीकेज ना हो। परंतु अंततः इसका सोल्यूशन है जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने शुरू हो।
6: कितनी बार सुना है आपने इस सरकार में? 12 वर्षों से मैं कम से कम 1200 बार सुन चुका हूं अलग अलग मुद्दों पे। अब तो सुना है कि सेना की मदद लेने वाले हैं, मतलब दुनिया में हम अकेला देश होंगे जहां की परीक्षाएं भी हमारी सेना कंडक्ट करेगी। अरे सेना को तो बकस दीजिए महाराज, उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है सरहद संभाल रहे, इस देश को सुरक्षित रख रहे। आप एक परीक्षा तक नहीं करवा रहे। ऊपर से ये भी सुना है कि स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रील बनाओ ओएसएम के फेवर में,

पर बीजेपी की बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर दिग्गजों के साथ मंथन, सरकार के 12 साल पूरे होने की उपलब्धियों पर भी चर्चा। पश्चिम बंगाल में सियासी हंगामा जारी, कल अभिषेक के बाद आज कल्याण बैनर्जी पर हमला, प्रदर्शन के दौरान सिर पर लगी चोट, बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार। गाजियाबाद सूर्य हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर, पिता समेत तीन और आरोपी भी गिरफ्तार, पुलिस का दावा पूछताछ से खुलासा, फरहान ने दिया था चाकू। दिल्ली के महरौली में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या पहुंची 6, मलबे से निकाले गए 8 लोग गंभीर, सामने आया बिल्डिंग के गिरने का लाइव वीडियो। अहमदाबाद में थोड़ी देर में आईपीएल फाइनल का महामुकाबला, गिल और कोहली के बल्ले की जंग, आरसीबी और गुजरात के पास दूसरी बार चैंपियन बनने का मौका।

0: बल्ला नहीं छूटा तो आरसीबी के हाथ से मैच छूट गया।
1: जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं।

0: नमस्कार, मैं विक्रांत गुप्ता। आज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का नया चैंपियन तय होगा। यह मुकाबला आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो पिछली बार टाइटल जीते थे और सामने है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने 2022 में आईपीएल जीता था, यानी कि दो बड़ी टीमें जो लीग में 1 और 2 थी, जो क्वालिफायर 1 खेली और उसके बाद आज फाइनल में आमने सामने है। होम क्राउड जो है वो गुजरात का होना चाहिए, लेकिन विराट कोहली का जो हवा है शायद वो सबके सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि इस वक्त मैंने सुना है कि पूरा मैदान आरसीबी के रंग से रंग चुका है। तो इस कार्यक्रम में आगे आने वाले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे सुनील गावस्कर के साथ कि कौन इस मुकाबले को जीत सकता है। आरसीबी ने टॉस भी जीत लिया है, ये बड़ी खबर है, क्योंकि आमतौर पर फाइनल में क्या होता है कि जो टीम टॉस जीतती है वो तय करती है कि मैच की रणनीति कैसी होगी। तो फिलहाल जो अहमदाबाद से खबर आ रही है वो ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस मुकाबले में टॉस जीत लिया है और वो पहले गेंदबाजी करेंगे, यानी कि वो गुजरात टाइटंस को पहले बैटिंग का न्योता दे चुके हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। हालांकि शुभमन गिल को बहुत अरसा प्रिंस कहा जाता था, विराट को किंग कहा जाता था, लेकिन आज चूंकि शुभमन गिल भारतीय टीम के किंग हैं, तो ये लड़ाई किंग वर्सेस किंग है, गिल वर्सेस विराट कोहली है। लेकिन फिलहाल पहला जो दाव है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खेला है। टॉस जीत के उन्होंने गुजरात को कहा कि आप बैटिंग करने आए, और कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि शुभमन गिल साई सुदर्शन इस जोड़ी पर अब दबाव है कि गुजरात कितने रन बोर्ड पर चाहता है इस टाइटल को जीतने के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास गेंदबाजी है, लेकिन अब सीधा सीधा जो मुकाबला है वो है पहला पावर प्ले, कौन जीतता है, क्या वो गुजरात जीतेगा या फिर वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाज जीतेंगे। तो मेरे साथ कौन रहेगा इस शो में, मेरे साथ सुनील गावस्कर रहेंगे, कहां से, अहमदाबाद से। मेरे साथ मेरे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव भी रहेंगे, कहां से, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ठीक बाहर से। और इस वक्त जो मैं देख रहा हूं पसीने से बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि नितिन की जो शक्ल है वो बदल गई है। गर्मी वहां पर नितिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा होगी, और आपके आसपास गुजरात और आरसीबी के फैंस भी दिख रहे हैं। भाई कौन जीत रहा है फैंस के मुताबिक?
1: आपको बताऊं, यहाँ अहमदाबाद के अंदर में ऐसा लग रहा है कि ये बैंगलोर है, क्योंकि यहाँ पे आरसीबी के हैं, राइट में देखिए, कहीं पर भी देखिए, बड़े फैंस आए हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोश यहाँ पर आरसीबी के फैंस का हाई है। उनको एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट टाइम परफॉर्मेंस की थी आरसीबी ने वो उसको रिपीट कर सकते हैं। कुछ फैंस मेरे पास यहाँ पर गुजरात के भी हैं,
2: हिस्ट्री रिपीट कर रही है।
3: आरसीबी जीतेगा,
2: आरसीबी
3: फेवर में,
2: आरसीबी
3: गुजरात जीतेगा। गुजरात फाइनल में पहले बैटिंग टीम, फाइनल में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती,
4: गुजरात जीतेगा। गुजरात
5: मैं बता दूं, देखो मैं बता देता हूँ आपको, 100% आज आरसीबी जीतने वाली है।
4: गुजरात जीतेगा, गुजरात, नो बेंगलोर, गुजरात ओनली गुजरात।
5: और वो इसलिए जीतेगी क्योंकि यहाँ पर 99% जो फैन फॉलोइंग है वो आरसीबी की है।
1: ओके, आरसीबी टॉस जीत कर उन्होंने बोला कि मैं पहले बॉलिंग करूंगा, यानी कि गुजरात को।
3: गुजरात इज विन बेस्ट, गुजरात चैलेंजर्स बेस्ट,
5: क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का
4: टी शर्ट पहनने से बेंगलोर जीतने जाएगा।
6: आरसीबी जीतेगी, मोदी जी ने बैंगलोर में मैच करा के गलत किया, ये अहमदाबाद में
4: दो विराट कोहली का 100 होगा और आरसीबी जीतेगी आज।
7: आरसीबी जीतेगी भाई,
5: गिल जीतेगी
6: वाले फैंस
4: जाएगा।
6: आरसीबी जीतेगी, मोदी जी ने बैंगलोर में मैच करा के गलत किया, ये अहमदाबाद में दो
4: विराट कोहली का 100 होगा और आरसीबी जीतेगी आज।
7: आरसीबी जीतेगी भाई,
5: गिल जीतेगी
6: वाले फैंस। भाई गुजरात को क्यों इतना लाइटली ले रहे हो, उन्होंने भी अच्छा किया हुआ है।
5: नहीं, आप गुजरात में मैच है, आप देखिए अहमदाबाद में मैच है, और यहाँ पे टी शर्ट और केप देखिए, 99% फैन फॉलोइंग तो आरसीबी की है यहाँ पर।
6: अब फैन फॉलोइंग की बात नहीं है, मैच तो गुजरात
5: फैन जीत के जाएगा यहाँ से। आज गुजरात जीते या आरसीबी, फैन जीत के जाएगा,
6: फैन तो जीत के जाएगा, सही बात है। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे
5: हैं? जीटी
6: को। मुझे बड़ी मुश्किल से
8: गुजरात ही नहीं, क्या जीटी
1: मुझे देखो फेवरेट हो सकती है यहाँ पर आरसीबी, लेकिन गुजरात भी अच्छी टीम है, गुजरात ने भी बेहतर किया है और आप उसको ऐसे दो वन साइडेड नहीं देख सकते।
5: जीटी जीटी
8: सुमन जी आरसीबी का बापे
9: विराट भाई के आगे
0: नितिन ये जो मैं जो दृश्य देख रहा हूँ, मतलब ये सबको हैरान करने वाले हैं। मुझे याद है कि नितिन श्रीवास्तव जो है 19 नवंबर 2023 इसी मैदान के बाहर खड़े थे जब वर्ल्ड कप फाइनल था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों इसी तरह का रश था। आज ये आईपीएल का मुकाबला है और आईपीएल के मुकाबले में मैच शुरू होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आप देखें किस तरह दर्शकों का हुजूम है। और जो एक चीज दिखती है वो ये है कि जहां जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जाती है भैया, वो विजिटिंग टीम तो कहलाई नहीं जाती, वो हमेशा होम टीम बन जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। वो मुल्लापुर में खेलें, वो धर्मशाला खेलें, वो बैंगलोर खेलें, अहमदाबाद खेलें, ज्यादा फैंस जो हैं वो आरसीबी के हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा वो ये है कि गुजरात टाइटंस फाइनल में क्रिकेट खेल के और कई मैच जीत के आया है। सनी भाई, आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, सामने गुजरात टाइटंस है। ये आखिरी दिन तय हुआ था कि लीग में वन एंड टू है, क्वालिफायर वन आरसीबी जीता और आज आरसीबी टॉस भी जीत गया है। क्या आप मानते हैं कि यह मुकाबला बराबर का है या आप आरसीबी को एज देते हैं?
10: देखिए, अगर लीग का जो आप रिजल्ट्स देखते हैं तो वहां भी जो टीमें नंबर एक और दो पर थी वो फाइनल में आई है, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे पता चलता है कि ये दोनों टीमें काफी डिजर्विंग थी नंबर वन और टू होने के लिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लीग में प्रदर्शन किया था, जिस तरह से परफॉर्मेंस किया था, जिस तरह से हमने उनकी बल्ले से और उनकी गेंदबाजी से जो मजा लिया था, वो मजा आज फाइनल में आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस टूर्नामेंट के खत्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: और बैंगलोर ने क्योंकि फाइनल भी जीत लिया सनी भाई, उन्होंने बैंगलोर ने फाइनल जीत के गुजरात को पहले बैटिंग का न्योता दिया है, यानी कि यहां पर शायद आरसीबी सेफ खेल रहा है कि भाई हम चेज करते हैं, गुजरात आप बताएं हमें बोर्ड पर कितने रन लगाते हैं। हालांकि इस साल अगर आंकड़े देखें तो अहमदाबाद में बहुत ज्यादा रन नहीं बने हैं और ये फाइनल भी है, कभी कभी 200 रन में भी फाइनल जीता जाता है। फिर भी टॉस के लिहाज से और चूंकि पिछले साल फाइनल जीत के आया है बैंगलोर, इसका कितना एडवांटेज उनको बनता है?
10: जी देखिए, मैं तो समझता हूँ कि आरसीबी फेवरेट है क्योंकि इसके पहले भी जो मैच हुई थी 5 दिन पहले 6 दिन पहले जहां पे आरसीबी और गुजरात के बीच में मैच हुई थी तो इतनी आसानी से उन्होंने जीत हासिल की थी, तो वो होता है तो साइकोलॉजिकली तो आरसीबी तो मतलब काफी मतलब मजबूत है। और गुजरात टाइटन्स, हाँ उन्होंने परसों जो जीत हासिल की आरआर के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने 214 को चेस किया तो उनके भी हौसले काफी बड़े हो गए। बट मुझे लगता है कि क्योंकि आरसीबी के पास एक बड़ी अच्छी ऑलराउंड टीम है, उनकी बैटिंग में काफी गहराई है, बॉलिंग में काफी वैरायटी है और इसी की वजह से मुझे लगता है कि आरसीबी शायद थोड़ी सी फेवरेट है।
0: यहां पर भी वही व्यू है सनी भाई की, एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो मर्क्यूरियल है, मतलब उसके पास उस तरह के मैच विनर्स ज्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ है गुजरात जो मेथोडिकल टीम है जिनका एक सेट पैटर्न है। और कभी कभी क्या होता है ना, जब आप सेट पैटर्न को देखते हैं आप कहते हैं अरे यार अगर गिल और साई सुदर्शन को आउट कर लिया, बटलर को आउट कर लिया तो गुजरात हार जाएगा, लेकिन हर मैच से पहले ये चर्चा होती है, लेकिन हर मैच फिर गुजरात जीतता भी है क्योंकि एक चीज जो शुभमन गिल ने और साई सुदर्शन ने की है वो है कंसिस्टेंसी। बटलर का बहुत ज्यादा नाम नहीं है लेकिन 500 से ज्यादा रन बटलर के भी हैं। विराट कोहली कितना बड़ा फैक्टर सनी भाई, क्योंकि पिछले साल तो मतलब ऐसे हमने दृश्य देखे कि वो रो पड़े आईपीएल टाइटल और इतनी टाइटल्स के बावजूद, वर्ल्ड टी20 जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, वर्ल्ड कप जीतना और विराट के लिए आईपीएल जीतना पिछले साल, वो रो पड़े थे। इस साल एक अलग तरह के विराट दिखे हैं, एक अलग तरह की बैंगलोर की टीम भी दिखी है, लेकिन विराट फाइनल में कितना बड़ा फैक्टर?
10: जी देखिए, हाँ बिल्कुल, जब आपके पास ऐसा रिजल्ट बनता है कि आपके 8 मतलब जो 14 मैचेस हुए उसमें 8 अलग अलग से मैन ऑफ द मैच प्लेयर बन गए हैं, उसका मतलब क्या है कि आप किसी एक प्लेयर पर आप डिपेंड नहीं करते, और वही तो हमने पूरी टूर्नामेंट में देखा है कि इनके पास बल्लेबाजी में भी जो बल्लेबाज आते हैं, सिर्फ कोहली नहीं, पतिदार को देखिए, नितिन डेविड को देखिए, कुणाल पांड्या को देखिए, वेंकटेश अय्यर को बहुत देर के बाद मौका मिला, सेकेंड हाफ में मौका मिला तो वहां पे भी उन्होंने किस तरह से बल्लेबाजी की, तो एक प्लेयर पर डिपेंडेंट है नहीं। बॉलिंग में भी भुवनेश्वर कुमार है, हेजलवुड है, रसिक दर अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, और कृणाल पांड्या तो बहुत चालाक बॉलर है, सूर्यश भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनके पास मतलब कोई एक प्लेयर पर वो डिपेंड नहीं करते, मतलब वो जो प्लेयर है वो फेल हो गया वो भी उनके पास कोई और एक ऐसा खिलाड़ी है वो कहते हैं कि आज मेरी बारी है, आज मैं आपको मैच जिता दूंगा।
0: सर भाई यही लेकिन सामने गुजरात है ना, मतलब हम ये बात सही है आपकी के ऑरेंज कैप जो है वो फिलहाल तो वैभव सूर्यवंशी के पास है, 776 रन उनके हैं, लेकिन उनसे 54 रन 54 रन पीछे शुभमन गिल हैं, और अगर शुभमन गिल के हाथ वो ऑरेंज कैप लग गई इसका मतलब आज वो एक बड़ी पारी भी खेलेंगे। आंकड़े ये भी बताते हैं कि आज तक 2008 से लेकर आज तक जो ऑरेंज कैप वाले बल्लेबाज हैं सिर्फ दो मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्हीं की टीम आईपीएल जीती हो। 2014 में आपको याद होगा रॉबिन उथप्पा थे और कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गया था, 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ थे ऑरेंज कैप उनको मिली थी और चेन्नई सुपर किंग्स भी जीता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीधा सीधा नितिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन, मैं दबाव भी मानता हूं कि उनके पास उनके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि शायद मौका भी गुजरात टाइटन्स के पास है कि पहला मूव पहला पासा वो किस तरह का रखते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर हेजलवुड बड़े जबरदस्त इंपैक्ट है उनका और बैंगलोर आएगा, लेकिन अगर पार प्ले गुजरात टाइटंस ने जीत लिया तो फिर इन दोनों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
11: जी बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर गुजरात के लिए एक ऐसा मौका है कि वो आप अब यहाँ पर पहले बैटिंग कर रहे हैं। अगर आप विकेट की बात करें, पिच की बात करें, तो रेड और ब्लैक सॉइल है, ये वही विकेट है जिस पर भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, और आपको याद होगा कि 255 रन भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया था और उसके बाद न्यूजीलैंड की बारी आई थी जहां पर वो हार गए थे। तो अगर आप उसी का अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो यहां पर पहले वाली बैटिंग करती हुई टीम को हो सकता है कि थोड़ा सा

0: बात है, लेकिन इस वक्त फैंस यही मानकर चल रहे हैं कि आरसीबी इस मुकाबले को जीतने वाला है।
1: नहीं नहीं, देखिए मुझे याद है कि 90 के दशक में इंग्लैंड में यह चीज हुई थी कि टेबिट टेस्ट, वहां के पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने कहा कि टेबिट टेस्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि इंडियंस और पाकिस्तानी जो इंग्लैंड जाए, इंग्लैंड के सिटीजन बन गए, भाई वो अपने इंडिया और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ये चीज तो आईपीएल में देखने को मिल रही है। गुजरात में मैच है, गुजरात की टीम खेल रही है, शुभमन गिल कप्तान है, लेकिन हर तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अच्छा, उसकी एक वजह ना सिर्फ उनका मतलब एक करियर है, बट इस साल भी देखें ना, विराट 600 रन पे बैठे हैं, 600 रन पर विराट कोहली बैठे हैं, लेकिन उनकी ताकत है उनके कप्तान रजत पाटीदार। इनका बहुत ज्यादा नाम नहीं डिस्कस होगा जब फैन फॉलोइंग की बात होगी, बट इन जनाब के जो 486 रन है, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट इन्होंने क्रिएट किया है। और फिर है भुवनेश्वर कुमार। हो सकता है कि आज हम ये कहें कि भाई पर्पल कैप भी ये ले गए, क्योंकि इनका और रबाडा का आपस में मुकाबला है, दोनों टीमें आमने सामने हैं, लेकिन भुवनेश्वर ने भी बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है। और आज भी आप देखें, आज जब दोनों टीमें खेलेंगी और टॉस चुकी आरसीबी ने जीत के पहले गुजरात को कहा कि आप बैटिंग करें, भुवी के हाथ में वो गेंद, शुभमन गिल सामने, साई सुदर्शन सामने, अगर पावर प्ले में दो विकेटें भुवनेश्वर और हेजलवुड ने ले ली तो फिर गुजरात के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन गुजरात के आंकड़े जो हैं ये मतलब कमाल के हैं। शुभमन गिल की आईपीएल की कंसिस्टेंसी जनाब, 722 रन पर बैठे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 776 हैं वैभव सूर्यवंशी के, लेकिन ये सिर्फ 54 रन पीछे हैं। उसके बाद है साई सुदर्शन। अब साई सुदर्शन को पिछले साल ऑरेंज कैप मिली थी, 710 रन पे ये दोनों बैठे हैं। और ये दोनों सलामी बल्लेबाज के तौर पर इनकी जो जोड़ी है, जो पार्टनरशिप्स हैं, अगर बैंगलोर ने नहीं तोड़ी तो ये टीम जो है ना बड़े मुकाबले में 210 215 220 बोर्ड पर लगाना जानती है। फिर आ जाते हैं रबाडा, मैंने आपको बोला ही था भुवनेश्वर और रबाडा, भाई इन दोनों के दरमियान ये लड़ाई है पर्पल कैप की। आमतौर पर ऑरेंज कैप जीतने वाले प्लेयर जो हैं वो शायद आईपीएल नहीं जीतते, लेकिन पर्पल कैप जीतने वाले यानी कि बॉलर के पास अगर पर्पल कैप है तो उसके ज्यादा इंस्टेंसेस हैं आईपीएल जीतने के। सो मजबूत ओपनिंग है, घरेलू मैदान यानी कि अहमदाबाद में उनका रिकॉर्ड अच्छा है। उसी लॉजिक से अब आरसीबी जब जब जाएगी, जहां जहां जाएगी वो उनका घरेलू मैदान हो जाता है। लास्ट ईयर उन्होंने, आपको याद होगा कि आईपीएल जीता भी यहीं पर था। अब उनकी कमजोरी क्या है? गुजरात की कमजोरी है कि द मोमेंट आप शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर के आगे चले जाएं, मिडल ऑर्डर में ना शायद वो ताकत नहीं दिखती। हालांकि जब से जेसन होल्डर आए हैं टीम में, थोड़ा सा बैलेंस जरूर बनता है। अब यही बात आ जाती है कि नया बॉल, पहले 6 ओवर आप गुजरात के लिहाज से देखें, शायद अगर गुजरात पहले 6 ओवर बैटिंग करेगा, पावर प्ले जीत के मैच नहीं जीतेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाज दफा ये होता है कि आप पावर प्ले हारते हैं, यानी कि आपकी दो विकेटें गिर गई तो आप मैच हार सकते हैं। तो गुजरात को शायद शुरू में संभल के फूक फूक के वो कदम लेना होगा। लेकिन बड़ा मुकाबला है, और इस साल का आईपीएल आप जानते ही हैं कि मतलब कट थ्रोट जिसे कहते हैं ना, तीन ऐसी टीमें थी जो 18-18 पॉइंट पे लीग में फिनिश हुई थी। हैदराबाद बाहर हो गया, राजस्थान बाहर हो गया, लेकिन अब बचे हैं सिर्फ दो। कट थ्रोट जिसे कहते हैं ना, तीन ऐसी टीमें थी जो 18-18 पॉइंट पे लीग में फिनिश हुई थी। हैदराबाद बाहर हो गया, राजस्थान बाहर हो गया, लेकिन अब बचे हैं सिर्फ दो।

सुपर संडे का सुपर मुकाबला आज होगा सितारों का हल्ला। विराट की टीम फिर बनेगी चैंपियन। फाइनल में शुभमन की सेना दिखाएगी दमखम। सालों की मेहनत, दो महीने का महायुद्ध, गुस्सा, खुशी, मायूसी, जोश, जुनून, आज सबका हिसाब होगा, क्योंकि आईपीएल में आज है कयामत की रात। और ये कितना दिलचस्प है कि लीग दौर की दो टॉप टीमें ही प्लेऑफ की चुनौती पार करते हुए खिताबी मुकाबले तक आ पहुंची हैं। एक तरफ है रजत पाटीदार की कप्तानी में 2025 में खिताब जीतने वाली बेंगलुरु की टीम, तो दूसरी तरफ 2022 में अपने पहले ही सीजन में चैंपियन बनने वाली गुजरात की टीम, जो आज अपने घरेलू मैदान पर सबसे बड़ा मुकाबला खेलने उतरेगी।

0: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज दोनों टीमों के कई सितारों का जलवा देखने को मिलेगा। विराट कोहली के लिए यह सीजन शानदार रहा है। उन्होंने 15 मैचों में 164 के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर के स्विंग ने गेंदबाजों को खासा परेशान किया है। इस सीजन 15 मैचों में उन्होंने 26 शिकार किए हैं। उधर गुजरात के सितारों ने भी इस साल खूब गदर काटा है। उसके दोनों सलामी बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में हैं। कप्तान शुभमन गिल ने इस सीजन 15 मैचों में 164 के स्ट्राइक रेट से 722 रन बनाए हैं, जबकि रबाडा ने 16 मैचों में 28 विकेट लिए हैं। बेंगलुरु ने कई सालों के लंबे संघर्ष के बाद चैंपियन होने का गौरव हासिल किया था, जबकि गुजरात की टीम अपने पहले ही सीजन में खिताब जीत गई थी। आज दोनों ही टीमें अपना दूसरा खिताब जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, तो तैयार हो जाइए एक शानदार शाम का गवाह बनने के लिए, जहां गेंद और बल्ले की जंग दिलों की धड़कने तेज करने वाले रोमांस की गारंटी लेकर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
1: टॉस बैंगलोर ने जीता है और बैंगलोर ने गुजरात को कहा कि आप ओपन करें। अब कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि एक तरफ भुवनेश्वर और हेजलवुड होंगे, सामने उनकी ताकत गुजरात की, उनके कप्तान इंडियन क्रिकेट के किंग शुभमन गिल और साई सुदर्शन। सनी भाई, ये हर मैच से पहले गुजरात की हम कहते हैं यार गुजरात ना एक बड़ी सेफ टीम है, बड़ी मेथोडिकल टीम है, अगर ओपनर आउट हो गए तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, कैसे जीतेंगे, लेकिन तकरीबन हर मैच में गुजरात उसी फॉर्मूला पे जीतता है। जो मर्जी कहें आप, इनके पास एक बड़ा सेफ फॉर्मूला है। शुभमन गिल साई सुदर्शन, ये फाइनल कितना बड़ा फैक्टर?
2: देखिए हाँ, देखिए पहले 6 ओवर की पावर प्ले में काफी बार मैच का रिजल्ट आपको दिखाई देता है। अगर आपने पहले 6 ओवर की पावर प्ले में आपने 2-3 विकेट आपकी जाती है तो फिर बाकी एक बड़ा स्कोर करने में मुश्किलें खड़ी होती है। और यही एक कारण है कि जो टीमें पहले पावर प्ले में, खास करके पहले पावर प्ले में विकेटे खोती है, तो उनके लिए मैच जीतना बड़ा मुश्किल बन जाता है। तो इसीलिए साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जो जोड़ी बनी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, वो अगर अच्छी शुरुआत दे पहले 6 ओवर में, ऐसा जरूरी नहीं कि उनको पहले 6 ओवर में 70 या 80 रन करने हैं, पर अगर पहले 6 ओवर में उन्होंने 50-55 तक भी रन बनाए तो उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है बाकी के जो नीचे जो बल्लेबाज आने वाले हैं उनके लिए जाके पूरी तरह से पहले गेंद से फ्रीली खेलने के लिए।
1: और यही फर्क भी है, अगर आप देखें, हम जब बात करते हैं कि पहले पावर प्ले में आप हार सकते हैं, यानी कि क्या आपकी 2-3 आउट ना हो जाए, होता है ना, इतना बड़ा मुकाबला है, 7:30 बजे पहला बॉल गिरता है, वो पहले जो 10-15 मिनट होते हैं ना, आपकी सांसें थोड़ी फूली होती हैं, आपको थोड़ा सा एड्रेनलिन फ्लो होता है, वहीं पर आप गलती कर सकते हैं। बट शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ताकत क्या है, ये मारधाड़ वाले ओपनर्स नहीं है, ये शायद फास्ट बॉलर्स को बेहतर खेलने वाले भी ओपनर्स हैं। भुवनेश्वर कुमार, रबाडा, सनी भाई, इन दोनों के दरमियान ये पर्पल कैप की लड़ाई है। भुवी ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है और नया गेंद यहां पर मैच का पहला, वो भी भुवी के हाथ में, उनके पास मूवमेंट भी है। इस विकेट पे क्या वो भी एक फैक्टर है, बड़े फैक्टर है, बिकॉज विकेट ड्राई है, लेकिन
2: हाँ जी बिल्कुल, भुवनेश्वर कुमार जिस तरह से अपना अनुभव, जो उनको इतने सालों का अनुभव है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने देखा है कि शायद जो एक टीम से बाहर निकले थे तो उस वक्त उनकी बॉलिंग की स्पीड 125-130 तक पहुंचती थी, अब वो 135 और कभी कभी 140 तक भी जाती है, और इसका कारण है कि उनको जो विश्राम मिला और उसके साथ उन्होंने जो मेहनत की उसी का ये फल है। उनके पास तो स्विंग करने की, हवा में स्विंग करने की और गेंद गिरने के बाद पिच से सीम करने की काबिलियत तो कब से है, और उसी की वजह से जो टेस्ट मैच की लेंथ वो बॉलिंग करते हैं और जिस तरह से गेंद हवा में स्विंग करते हैं और गिरने के बाद सीम करते हैं, इसी की वजह से तो पहले वो हमेशा पहले या दूसरे ओवर में विकेट ले रहे हैं।
1: और यहां पर क्या हुआ ना, इस साल अगर आप देखें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमेशा की तरह उतनी तेजी से रन नहीं बने हैं। कल अहमदाबाद में बरसात हुई थी, इस वक्त जो थोड़ी देर पहले आपने नितिन को देखा, पसीने पसीने हैं, इसका मतलब गर्मी भी है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी भी है, और जब ह्यूमिड होता है वेदर दोस्तों बॉल स्विंग करता है, अब देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन दोनों कप्तानों ने यानी कि शुभमन गिल ने और रजत पाटीदार ने यह तो माना कि सामने वाली टीम बेहतर है, लेकिन कहा यह कि जीतेंगे हम ही।
3: टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो वी हैव चेंज एनीथिंग और वी आर थिंकिंग इट डिफरेंटली, वी आर इन द सेम माइंडसेट, बट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो that we are not here to defend anything with the mindset of defending champion. We have opportunity to win one more title. We have to, you know, keep that sort of mindset that we are here to win the title, not defending anything that we have done in 2025. It's a new season. It's a new opportunity to again do it in 2026.
4: If we win, it's going to be a great season. If we don't win, I mean, it'll still be a good season, but... It'll be better if you win. There are advantages. That's how I see it. This familiarity when we play there. We know the wicket. We know the ground. So we know what kind of cricket we need to play there to be able to win. So in that context, yes, I see it as an advantage.
1: 2 महीने पहले IPL शुरू हुआ था, आज आप वहां पहुंच गए जहां पर अब से तकरीबन 4 घंटे बाद इस साल का नया चैंपियन मिल जाएगा। 2026 कौन जीतेगा वो तो अलग बात है, लेकिन 2026 का IPL याद रखा जाएगा 15 साल के इस लड़के के लिए, 15 साल के लड़के के लिए जिसने 776 रन बना लिए हैं। अभी भी ऑरेंज कैप इनके पास है, लेकिन स्ट्राइक रेट देखें जिस अंदाज से उन्होंने रन बनाए हैं, और दुनिया अभी से ये कहना शुरू हो चुकी है कि आने वाले दौर में 5, 10, 15, 20 साल ये लड़का शायद विश्व क्रिकेट पे राज करेगा। मैच शुरू होने में तकरीबन 2 मिनट का वक्त रह गया है दोस्तों, मैच शुरू होगा उसके बाद जब मैच खत्म होगा यहां पर आपसे मुलाकात होगी नए चैंपियन के साथ। लेकिन पूरे मैच में और जो मिड इनिंग शो होगा वो भी हमारा लाइव होगा स्पोर्ट्स तक पे हमारे YouTube चैनल पर, आप देखें और आए देखते हैं कि गुजरात कितने रन लगाता है। आपने अभी तक यूट्यूब पर अगर स्पोर्ट्स तक नहीं किया सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। चलिए आगे राजीव ढोंडियाल हैं और उनके पास है अभी की सबसे बड़ी हेडलाइंस।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसे इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

राज्यसभा सीटों पर चुनावों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर दिग्गजों के साथ मंथन, सरकार के 12 साल पूरे होने की उपलब्धियों पर भी चर्चा। सीबीएसई आंसर शीट मामले में केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का फिर हमला, कहा छात्रों के साथ हुआ धोखा, पीएम की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल में सियासी हंगामा जारी, कल अभिषेक के बाद बाज कल्याण बैनर्जी पर हमला, प्रदर्शन के दौरान सिर में लगी चोट, बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंट, अपिता समेत तीन और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस का दावा, पूछताछ में खुलासा, फरहान ने दिया था चाकू। दिल्ली के मेहरोली में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या पहुंची 6, मलबे से निकाले गए 8 लोग गंभीर रूप से घायल, सामने आया बिल्डिंग के गिरने का भी वीडियो।

0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 28 मई यानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं थे, सूर्या के दोस्त ही थे। उन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर पर बुलाया और उसके बाद उसका गला रेत दिया। इस हत्याकांड के बाद से लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर मुख्य आरोपी असद फरार था। पुलिस ने असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया था। वहीं असद आज पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है।
1: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला। मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी। मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत। मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद खोड़ा वापस लौटा था। ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी। जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
2: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी का भी अभियान चलाया गया था। उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
1: ये जो घेरे आप देख रहे हैं, यहाँ गोलियां नहीं। बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला, मगर असद मारा गया।
3: ये मार्किंग्स की हुई हैं यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा। ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे, और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है, और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है, जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है जो एफआईआर में नामजद है।
1: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये है वो तीनों। असद फरार था। असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
4: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। और जो 6 युवक है उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए, और 6 के 7 के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
1: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
5: असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए। और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती, और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
6: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, जैसे अन्य प्रदेशों में घटना हुई होगी, लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल का हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा।
1: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
3: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त, और पिछले दो दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
1: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी आरोपी भी उसके दोस्त थे, इसीलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर पर बुलाया तो उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके साथ कैसी कातिलाना साजिश उसके खिलाफ रची गई है। अब वो तस्वीरें भी सामने आ गई जिसमें सूर्या चौहान को असद और उसके साथी मिलकर मार रहे हैं, मगर बताया जा रहा है कि सूर्या को चाकू से रेतने वाला असद ही था। और हैरानी की बात यह है कि सूर्या का कत्ल करने के लिए असद को उसके पिता ने बोला था।
1: दहला देने वाली ये तस्वीरें बकरीद के दिन की हैं। असद और उसके दोस्त आतिफ, नवाब, फरहान और उसका एक साथी सब मिलकर सूर्या चौहान पर टूट पड़े थे, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर रहे थे। लेकिन सूर्या चौहान की हत्या के पीछे की जो साजिश है वो दहशत में डालने वाली है। बिल्कुल जानबूझकर असद ने सूर्या चौहान को घर बुलाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक था।
7: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्या चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरे की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे। और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्या चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो।
8: सूर्य प्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्य प्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्य प्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्य प्रताप को घेरा जाता है, फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्य प्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
0: सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी। अब असद का एनकाउंटर हो गया है तो उत्तर प्रदेश की सियासत उबल रही है। एक पक्ष वो है जो एनकाउंटर को सही बता रहा है और पुलिस को धन्यवाद दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी है जो आरोप लगा रहा है कि सूबे में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, यूपी पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है, सरकार की छवि को बचाने की कोशिश कर रही है।

0: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है, क्या तने कभी देखी है? और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कुओं से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस पे फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में बहुत दिन नहीं लगे।
3: और विशेष में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
3: somebody save me,
2: to timeless favorites,
3: and life is like a song,
2: and new discoveries.
3: So much more than a history. Wake up.
2: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
6: है। अरे भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
5: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
7: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स।
11: बेस्ट पुट्टी
12: जेके वॉल मैक्स।
13: बेस्ट पेंट
14: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
16: जेके मैक्स पेंट्स।
15: जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
8: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
5: एक हिंट तो देते।
9: विक्रम!
5: हिंट
10: बड़े आराम से।
11: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
12: आगे आगे,
13: अरे उधर
12: उधर,
13: करेक्ट करेक्ट।
14: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
16: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
17: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
18: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
16: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
19: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
17: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
16: जहां खबर वहां खबरदार।
20: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
22: SIR की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर, पिछले 2-3 दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है। एक पैनिक क्रिएट हो गया है, इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
23: ये माना जा रहा है कि ये होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोक के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक, हकीमपुर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर दिग्गजों के साथ मंथन। सरकार के 12 साल पूरे होने की उपलब्धियों पर चर्चा। सीबीएसई आंसर शीट मामले में केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का फिर हमला। कहा छात्रों के साथ हुआ धोखा। पीएम की चुप्पी पर भी उठाए सवाल।

फरहान ने दिया था चाकू। दिल्ली के महरौली में इमारत ढहने में मरने वालों की संख्या पहुंची छह, मलबे से निकाले गए छह लोग घायल, सामने आए बिल्डिंग के गिरने का भी वीडियो।

0: नमस्कार, आज तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। क्या देश में लगातार हिंदू आबादी की तुलना में मुस्लिम आबादी का बढ़ना आगे चिंताजनक हो सकता है? क्या देश में अलग अलग जगहों पर सीमा से सटे हुए इलाकों के पास अचानक मुस्लिम आबादी दूसरे धर्म या समाज के नागरिकों की तुलना में वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, या इसकी वजह घुसपैठ है? क्या हमारे देश में एक साल के बाद घुसपैठियों को बाहर निकालने, घुसपैठियों की वजह से आबादी का संतुलन बिगाड़ देने वाली बड़ी साजिश को रोकने के लिए सख्त कानून बन सकता है, जिस पर मोदी सरकार के कई बड़े फैसले, गृहमंत्री अमित शाह के बॉर्डर के पास होते दौरे और बंगाल में अचानक घुसपैठियों में मची भागम भाग के बीच में एक बड़ी बहस चल पड़ी है। इसीलिए आज हम एक एक करके जानेंगे कि क्या घुसपैठ और घुसपैठियों का वक्त अब खत्म हो चुका है, और अगर फैसले घुसपैठियों के खिलाफ होते रहे हैं तो फिर शंका क्यों कुछ लोगों के मन में पैदा हो रही है।
1: जो बांग्लादेश से आके यहाँ पर बैठ के हर इंसान का पेट पे लात मार रहा है और हर इंसान का नौकरी खुद ले ले रहा है,
2: ये एक राजनीतिक प्रोपेगंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पॉपुलेशन जैसा था वैसे ही है।
3: ये तो सही बात है, अगर अभी से इस घुसपैठिए को नहीं निकालना चाहते तो इंडिया का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा।
4: सिर्फ यहाँ पे लोगों को, मुसलमानों को उलझाने की बात हो रही है, सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने की बात हो रही है।
5: घुसपैठी की वजह से वही परेशानी हो रहा है, हम लोग यहाँ का बासिंदा, हम लोग यहाँ फंस रहे हैं, हम लोग को परेशानी हो रही है।
6: बीजेपी जो अभी देश में आया है तो ये सब मुसलमान को डरवा दिया है।
7: कोई भी मुसलमान किसी भी बांग्लादेशी मुसलमान का समर्थन नहीं करता है।
8: जो बांग्लादेशी है उसका आप कभी समर्थन करेंगे नहीं, और वाकई अगर बांग्लादेशी हमारे देश के अंदर में है तो उसे निकाला जाए, क्यों रहेगा हमारे देश के अंदर? डेमोक्रेसी मुस्लिम के बदले क्यों बदलेगी? मुस्लिम के रीजन क्या है जो मुस्लिम के बदले बदले? मुस्लिम क्या यहाँ पे मतलब क्या बोझ है क्या देश के अंदर में?
9: अल्लाहु अकबर।

0: बकरीद पर सड़क की जगह मस्जिद में नमाज करने वाले, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य में गोवंश की कुर्बानी पर पाबंदी को इस बार मानने वाले, देश के मुस्लिमों के मन से लेकर भारत के तमाम नागरिकों के मन में दो सवाल चल रहे हैं। क्या मुस्लिमों की वजह से आबादी का असंतुलन बढ़ रहा है, और क्या घुसपैठ करके डेमोग्राफी यानी किसी इलाके में आबादी का अनुपात बिगाड़ देने वाले अब किसी हालत में बचेंगे नहीं।
1: जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह के हर बयान, हर पोस्ट, हर दौरे को लेकर सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। क्या देश में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला जल्द होने वाला है, जिसकी एक झलक 26 मई को दिखती है, जब सोशल मीडिया पर गृहमंत्री ने पोस्ट किया, लिखा, घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी के साथ अमित शाह ने एक हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया, जो पूरे भारत में हो रहे अप्राकृतिक डेमोग्राफिक चेंज के बारे में जमीनी रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर इसका समाधान भी देगी।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: एक साल में केंद्र सरकार की बनाई कमेटी रिपोर्ट देने वाली है, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अचानक किसी धर्म की आबादी कम होकर दूसरे धर्म की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उसके कारण समझकर फैसला होगा। मई के महीने में चार चीजें ऐसी होती हैं जो बताती हैं कि सरकार पश्चिम बंगाल जीतने के बाद अब पूरे देश में एक मिशन के रूप में जुट चुकी है, मिशन घुसपैठिया बाहर जाओ, जहां बंगाल में 600 एकड़ सीमा से सटी जमीन बीएसएफ को सौंप दी जाती है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है, अनेचुरल डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी बना दी जाती है और फिर बॉर्डर मिशन पर खुद अमित शाह जाना शुरू कर देते हैं। दशकों तक देश में नक्सल मुक्त भारत के जिस सपने को नामुमकिन माना गया उसे मुमकिन करने के बाद गृहमंत्री अब घुसपैठियों की एंट्री बंद और वर्षों से भारत में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों को आउट करने के रण में उतर चुके हैं, जिसका लक्ष्य लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल तय किया।
2: षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा।
0: प्रधानमंत्री के इसी बयान के 9 महीने के भीतर पूरे देश में एक्शन शुरू होता है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बॉर्डर इकट्ठा होकर बस किसी तरह वापस बांग्लादेश वापसी का इंतजार करने लगे।
3: बांग्लादेश मैं बांग्लादेश से आया था, मेरे पास सभी पहचान पत्र हैं। मैं यहाँ काम की तलाश में आया था। अब मैं वापस बांग्लादेश जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ सरकार अब पहले जैसी नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड भी है।
4: बोल रहा हूँ, 8 बजे आगे, 8-7-8 बजे आगे।
3: मैं यहाँ 7-8 साल पहले आया था, लेकिन अब सरकार बदल गई है। मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। मैं सीमा पार करके यहाँ आया था। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारे पास सभी दस्तावेज हैं। अब हम कैसे रहेंगे यहाँ?
0: होल्डिंग सेंटर में वो संदिग्ध लाकर रखे जा रहे हैं जो घुसपैठ करके पहले भारत में घुसे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बांग्लादेश से सटी सीमा के पास ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि कोई घुसपैठिया अगर भीतर तक पहुंचा है तो ड्रोन से नजर रखकर तुरंत उसे रोकने के लिए पुलिस एक्शन में आ सके। इन सब के साथ ही आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर बंगाल से घुसपैठिए तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन देश भर में छिपे घुसपैठिए कैसे निकलेंगे? तो जवाब है, मोदी शाह की डेमोग्राफी चेंज का सच समझने के लिए बनी हाई लेवल कमेटी, जो घुसपैठ या किसी दूसरी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में आबादी के ढांचे में आए बदलाव का हिसाब करेगी, देखेगी कि जो धर्म या सामाजिक समुदाय में जनसंख्या का अनुपात बदला है उसका कोई खास तरीका या पैटर्न तो नहीं, बदलाव के पीछे असली वजह क्या है उसकी तह तक जाएगी। पड़ताल के बाद ये कमेटी तय समय में सुधार वाला रास्ता बताएगी और ये भी बताएगी कि क्या नया कानून, नई नीति लानी पड़ सकती है। कमेटी को 1 साल में रिपोर्ट देना है, लेकिन उससे पहले ही हलचल देश के मुस्लिम नागरिकों के बीच बढ़ चुकी है।
5: अभी एक तरह का नैरेटिव चला है कि मुस्लिम के वजह से बन रहा है, अभी एक कमेटी भी बनी है उसके लिए करके। मगर आप बताइए कि यहाँ पर जितने हम लोग खड़े हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं। अब बताइए कि यह आबादी, हम लोग तो भारत सरकार के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम दो, हमारे 2 के साथ चल रहे हैं, लगभग लोगों की फैमिली आजकल वही है, 2-3, तो हमारे वजह से कैसे चेंज हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेसी मुस्लिम की वजह से क्यों बदलेगी? मुस्लिम की वजह से रीजन क्या है जो मुस्लिम की वजह से बदलेगी? मुस्लिम क्या यहाँ पे मतलब के बोझ है क्या देश के अंदर में? हम इस देश के है ना, मतलब के क्या बोलते हैं उसको, बाय च्वाइस, क्या बोलते हैं, इन च्वाइस नहीं, बाय च्वाइस हम इस देश में रहते हैं, वरना हम तो पटिशन के समय हम भी चले जाते ना, लेकिन हमको हमारे देश से मोहब्बत है तो हम बाय बर्थ यहीं पे है।
6: ये राजनीतिक जुमला है, और जो है यहाँ पे हिंदू का आबादी भी बढ़ रहा है तो मुसलमान का भी आबादी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये आप बाढ़ देख रहे हैं, बाढ़ में मुस्लिम का आबादी ज्यादा है, तो इसके बाद अगर आप हमें भुई क्लास एरिया में जाइएगा तो वहाँ बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू, जब से ज्यादा बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू वहाँ भी रह रहा है, ठीक है, वहाँ भी आबादी बढ़ रहा है, यहाँ भी आबादी बढ़ रहा है। जब यहाँ 44,000 वोट है तो वहाँ का भी 43,000-42,000 वोट है, इसका वजह से आबादी का इसमें कोई इशू उठना नहीं चाहिए।
7: अब सवाल यह आता है कि क्या वाकई भारत में डेमोग्राफी अप्राकृतिक रूप से बदल रही है? डेमोग्राफी के असामान्य रूप से बदलने, यानी कि जहां पर हिंदू पहले ज्यादा रह रहे थे वहां पर अचानक मुस्लिम, या फिर जहां सिख या ईसाई ज्यादा रहे वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे क्या कोई खास वजह है, और क्या इसकी वजह से राष्ट्र की सुरक्षा तक को खतरा हो सकता है? पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद ने जो रिपोर्ट 2014 में दी है वो रिपोर्ट बताते हैं कि 1950 से 2015 के बीच कुल आबादी में हिंदू आबादी का 7% तक घटा है और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है।
8: घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा, मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा।
9: लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, देश के 6 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी के आधार पर हिंदू की संख्या कम है, हिंदू अल्पसंख्यक नजरिए से यहाँ देखे जाते हैं। सवाल है कि और कितने राज्यों में हिंदू आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक होने वाले हैं?
8: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है।
9: क्या घुसपैठ की वजह से असम में हिंदुओं की आबादी अल्पसंख्यक जैसी हो जाएगी?
10: कांग्रेस पार्टी ने सालों तक असम को घुसपैठ का मुख्य द्वार बनाया, असम के 9 जिले घुसपैठिया बहुल हो गए। मैं आज हीलाकांडी की इस पवित्र भूमि से कहकर जाता हूं, ये भारत की भूमि है, यहाँ कोई घुसपैठियों की जगह नहीं है।
9: क्या घुसपैठ के साथ लव जिहाद भी डेमोग्राफी बदलने की बड़ी वजह है?
11: डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है लव जिहाद के नाम पर, हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है।
9: क्या भारत की डेमोग्राफी बदल रही है? क्या भारत में हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है? मुसलमानों की आबादी के बढ़ने की वजह क्या सिर्फ घुसपैठ ही है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार हाई लेवल कमेटी का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयानों से साफ है कि आने वाले चुनावों में डेमोग्राफी में आता बदलाव ही उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिसके लिए बीजेपी नेता अक्सर घुसपैठ और मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे पैदा करने को इसकी वजह बताते हैं।
12: एक चीफ मिनिस्टर ये क्यों बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि आसाम में असम इज अंडर थ्रेट, और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैंस दैट बैंस एम्पावर असम गवर्नमेंट इन 24 आवर्स टू एविक्ट पीपल। मैं तो एक रुपया का बात बोला हूं, सुप्रीम कोर्ट बोला है 26 घंटा में उनको बाहर भगाओ।
9: घुसपैठ का जिक्र आते ही असम और पश्चिम बंगाल का नाम लिया जाने लगता है, जहां बांग्लादेश से सटे जिलों का आबादी का हुलिया बदल गया है। पिछले साल अक्टूबर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने एक ग्राफ शेयर किया और दावा किया कि असम में दशकों से हो रही अवैध घुसपैठ के कारण बड़े पैमाने पर डेमोग्राफी बदल चुकी है। इस ग्राफ में हिमंत बिस्व शर्मा की तरफ से बताया गया कि 1971 में असम की आबादी में 24.5% मुस्लिम थे, जो बढ़कर 38% से ज्यादा हो गए। वहीं 1971 में 72.51% हिंदू, जो तेजी से घटकर 57% पर रह गए।
12: जो लोग बांग्लादेशी मुसलमान के लिए रोते हैं, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, बट हमारे असमिया लोगों के लिए भी तो रो, बराबर करो, बैलेंस करो। एक समाज के लिए आप रोते हैं बिकॉज यू आर सेकुलर, बट जो एक एथेनिक कम्युनिटी टूवर्ड्स एक्सटिंक्शन जा रहा है, हमें असम का 30% भूभाग से बाहर निकाला गया है, तो हमारे लिए कोई नहीं रोएगा।
9: असम के चुनाव में हिमंता का बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यह कड़ा रुख जनता को पसंद आया और बीजेपी पहली बार अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन सवाल है कि क्या भविष्य में हिंदू असम में आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं?
13: मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है।
9: हिमंता की तरफ से मुस्लिमों की आबादी 40% बताए जाने की वजह साल 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की प्रजनन दर का ज्यादा होना है, जिसके हिसाब से अनुमान है कि 2037 में होने वाली संभावित जनगणना में मुस्लिम आबादी का अनुपात 44.52% और 2047 की जनगणना में 49.31% हो जाएगा। यानी असम में मुस्लिम जनसंख्या की वर्तमान विकास दर बरकरार रही तो 2047 तक राज्य में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। हालांकि इसमें घुसपैठ भी एक बहुत बड़ी वजह होगी, जिसके आधार पर हिमंता लगातार ये कहते सुने जाते रहे कि अगले 20 सालों में डेमोग्राफी में बदलाव ही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा।
12: वी डू नॉट फाइट विद द इंडियन एंड असमिस मुस्लिम, हमारा जो लड़ाई है ये बांग्लादेशी मुसलमान से है। अगर कोई बाकी सीएम होते थे बोलता है रिक्शा वाला को धक्का मार के बांग्लादेश भेजो, लेकिन मैं इतना मेरा बड़ा डील है, मैं बोला यार 5 रुपया का जगह में 100 रुपया दे दो।
9: अमित शाह डेमोग्राफी में बदलाव के लिए सबसे बड़ी वजह में से एक को घुसपैठ मानते हैं। पिछले साल अक्टूबर में अमित शाह ने सोशल मीडिया पर आबादी को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए, इसमें 1951 से 2011 तक की जनसंख्या के आंकड़े बताए गए, जिसमें कहा गया कि 1951 में
0: 84.1% हिंदू थे जो 2011 में घटकर 79% हो गए। वहीं इस दौरान 9.8% मुस्लिम आबादी 2011 तक बढ़कर 14.2% हो गई। शाह ने दावा किया कि 2001 से 2011 में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर 16.8% थी और मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। अमित शाह ने कहा कि 1951 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर में जो असमानता दिखती है उसका कारण घुसपैठ है।
8: ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे।
0: बीजेपी और मोदी सरकार की तरफ से डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर झारखंड का भी हवाला दिया जाता है।

0: शुभेंदु के कुर्सी संभालने के 20 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं।
1: दामाद है
2: शुभेंदु,
0: किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे, भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकलकर भागने लगेंगे।
3: क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है? इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही चल जा रहे हैं।
4: झमेला चल रहा है मतलब कैसा?
3: और कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा, हम लोग चल जा रहे हैं।
4: आप रहने वाले कहाँ से हो?
3: हम लोग बंगाल का है।
4: बंगाल के? तो आप बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश से आए थे या यही के हो वहाँ जा रहे?
3: नहीं, बांग्लादेश से आए थे।
4: कब आए थे?
3: हो गया 2-3 साल हो गया।
0: तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं।
4: कैसे आए थे?
3: ओए, हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था।
4: लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का?
3: यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते हैं अब तुम अपना काम धाम करेगा।
4: आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब भी बनाया था?
3: नहीं,
4: कुछ भी। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में?
3: यहाँ हम लोग हावड़ा जिला।
4: जी, क्या काम करते थे?
3: हम बाइक मैकेनिक है।
0: हावड़ा से लेकर सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा।
5: ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा, जो साधारण लोगों का, जनता और सिटीजन को, नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया।
0: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जा रहा है।
6: इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया में हैं, जहाँ पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पोथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर, ये भवन उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है, और हकीमपुर जो बॉर्डर है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है।
7: यहाँ पर ON6 और एक दोनों कैंप चरघट मिलन मंदिर स्कूल 83 और दोनों तीसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत है, मेदिया बस्तोहरा गर्ल्स स्कूल इनसाइड ये पोतोशाती है, वहाँ पर 83 है, वहाँ पर 52।
0: इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है।
8: ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी को

0: को ऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है, शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस थर्ड फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले। और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है, प्रशासन बीडीओ लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो ओसी है वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है। और इस थर्ड फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है।
1: फिलहाल इसको जहाँ पे लालगुला से लेके भानगुला सूती से लेके जो भी बड़ा इलाका आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से उसको कैसे यहाँ से निकालना है, उसको ट्रांसफर करना है, रिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है।
2: पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं।
3: 1991 में पश्चिम बंगाल की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 19.5% थी जो 2011 में 27% हो गए, जबकि दावा किया जाता है कि इसी दौरान बंगाल में हिंदू आबादी 8% तक घटी है। जबकि 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का हिस्सा 2% घटकर 71% हो गया है और मुस्लिमों का हिस्सा 2% बढ़ गया है, 27% हो गया है। तो क्या इसकी वजह बांग्लादेश से सटी रही पश्चिम बंगाल की वो खुली सीमा रही जिसे अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से लेफ्ट, कांग्रेस और फिर टीएमसी ने कभी बंद करने की चिंता ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश से घुसपैठ जारी रहे, आबादी का संतुलन बंगाल में बिगड़ता रहा।
4: क्या प्रॉब्लम
5: प्रॉब्लम तो बहुत हो रहा है ना, वो जो हमारी ही राशि है ना, हमारी जो काज है वो उसके छीन कर ले जाते हैं। डेमोग्राफी का भी बहुत चेंज हो रहा है, इसलिए इस भीड़ को जो है निकल के बाहर कर देना चाहिए। तो इस घुसपैठियों को निकल देने से देश का ही अच्छा है। अगर अभी से इस घुसपैठियों को नहीं निकालना चाहता तो इंडिया का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। जो काम हो रहा है बॉर्डर में फेंसिंग दे रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है।
2: जिन लोगों को लगता है कि घुसपैठियों पर एक्शन का मतलब मुस्लिमों पर कार्रवाई है उनकी आंखें शायद मालदा के मुस्लिम नागरिकों की बात सुनकर खुल गई हों, लेकिन अगर ना खुली हों तो वो सुन ले, घुसपैठिए किसी और नहीं बल्कि बंगाल के आम नागरिकों का ही हक खाते रहे जिसका सबूत खुद मुख्यमंत्री देते हैं। ये बताते हुए कि लक्ष्मी भंडार योजना का पैसा जिन 2,10,00,000 बैंक खातों में डाला जा रहा था उनमें कुल 30,00,000 बैंक खाते या तो फर्जी हैं या घुसपैठियों के हैं।
6: যে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে, স্থায়ীভাবে নাম বাদ গেছে এবং ট্রাইব্যুনালে বা সিএতে অ্যাপ্লিকেশন করেননি এমন অন্তত 30,00,000 কাছাকাছি অ্যাপ্রক্স বলছি, সংখ্যাটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফর্মগুলো ফেরত এলে, তারাও লক্ষীর ভান্ডারের টাকা পাচ্ছেন।
2: চন্দ রুপায় মে দস্তাবেজ বনওয়াকর জো ঘুসপেঠিয়ে আম বঙ্গালী ভারতীয় নাগরিকো কা হক খাতে রহে ক্যা ওহি আব বঙ্গাল কে বর্ডার পর ইন্তজার কর রহে হ্যায় কি কাইসে ওয়াপস বাংলাদেশ ভাগা জা সকে। জেসে ইস চেহরে কো দেখি, নাম হ্যায় রোজনী বিবি, বাংলাদেশ সে ঘুসপেঠ করকে আই মহিলা জো কলকাতা মে কাম করতি রহি, আব ইয়ে ওয়াপস বাংলাদেশ জানে কে লিয়ে उत्तर 24 परगना में हाकिमपुर बॉर्डर पर मिलती है।
7: एक साल बाद में आया था,
4: एक साल पहले आया था।
7: किस वजह से आए थे यहाँ पर?
4: इधर फिर एक दोस्त से था, घूमने गया था। दूसरा दोस्त का मेरा देश का एक लड़का था, घूमने गया था, उसको साथ में यहाँ में आया था। हम बोला मैं गरीब आदमी है, हम पेट के लिए खाटने जाता है, तो तुम्हारा देश में की काम होगा? बोले हाँ होगा, बर्तन धोआ काम, बासाबाड़ी काम मिलेगा। हम तो यदि मिलेगा तो हम वो काश करेगा, उसलिए उधर से बांग्लादेश से आया, हमारे बासाबाड़ी काम दिया, हम काम किया।
7: यहाँ कोलकाता में कहाँ रहते थे आप?
4: मीठापुर करवाला।
7: तो कितने दिन से है?
4: एक साल। परिवार माँ है, एक बच्चा है, मेरा भाई भाजी है, छेले है, हमारे भाई बहन सब है।
7: बच्चा भी है?
4: मेरा बच्चा 18 साल।
2: क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर इतने आराम से घुसपैठिए कैसे केवल बंगाल ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्से तक पहुंचते रहे? तो समझिए, जैसे इस महिला और पुरुष को देखिएगा, ये दोनों घुसपैठिए हैं। ये पुरुष तो कुछ साफ नहीं बोलता, बस पकड़े जाने पर गलती मानता है।
8: पता है बड़ी बांग्लादेशी है? कतदिन आगे এসেছে?
9: আমি এসেছি আলোকে 1950 সালে।
8: কোথায় থাকতেন? কোথায়?
2: लेकिन अब इस महिला घुसपैठिए को सुनिएगा तो बंगाल में अब तक चलता रहा घुसपैठ का सारा खेल खुलकर सामने आ जाएगा।
10: 3,000 কলকাতা থেকে কাজ
11: করি এখানে এসে আধার কার্ড তৈরি করে
10: আধার কার্ড এখানে আমার স্বামী আছে এখানে জেলে ওনার জন্য আধার কার্ড করে নিয়েছিলাম একটা লোক দিয়ে উনি করে দিয়েছিল না বাংলাদেশ একটা লোক করে দিয়েছিল সে নেই এখানে নেই
11: কত টাকা নিয়েছিল
10: 2,000 টাকা মতো নিয়েছিল
2: আখির ইয়ে ঘুসপাইটিয়ে কেসে ইতনি আসানি সে আতে রহে क्यों बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद घुसपैठ पर बड़ा प्रहार होना शुरू हो पाया, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आज आप देख सकें, समझ सकें। इसीलिए कूच बिहार और मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से सटी उस सीमा तक हम पहुंचते हैं जहां से अब तक घुसपैठ का रास्ता खुला रहता था। क्या इस बॉर्डर के पास रहने वाले भारतीय मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो घुसपैठ पर होती सख्ती से खुश है? क्या वो मानते हैं कि घुसपैठिए सबसे बड़ा खतरा आम नागरिकों के लिए ही बन रहे थे? इसीलिए सबसे पहले कूच बिहार आपको लेकर चलते हैं। ये बांग्लादेश से सटा वो इलाका है जहाँ सिंहवार
12: बांग्लादेश की मुगल हाट होके लालमनि हाट जाएगा। बांग्लादेश में घुसने से पहले जो मुगल हाट होके जाएगा ये रिवर का उसी तरफ इंडिया का दो गांव है, दोरीबर्स और जारीदल्ला। वो जो दो दोरीबर्स जारीदल्ला दो गाँव है, उसी गाँव का आगे कोई फेंसिंग नहीं है। इसी रिवर के आस पास BSF ने ड्यूटी करते हैं और इसलिए 10-20 मीटर का दूरी में रिवर की जो दोनों साइड है, दोनों साइड में BSF की पोस्ट बना हो चुका है। रात को इसी जगह में, दिन भर रात भर इसी जगह में BSF ड्यूटी करते हैं। यही है इंडिया का बंगाल का आखिरी डोमिनेशन लाइन जहां पे BSF डोमिनेट करते हैं। पहले कैसे था?
13: पहले तो खूब खतरनाक में था सर।
12: कैसे खतरनाक था?
13: जो TMC का अंबल था सर, जो मेंबर वगैरह सर सारे लूट करके सर खाता है।
12: तो TMC के जमाने में कैसे कैसे होता था, कैसे कारतस्करी होता था, कैसे
13: कैसे तो सारे चूरी वगैरह करके सर आता था सर। TMC में मेंबर था, उन लोगों का अंबल था, उन लोग सारे किया था सर, जो है वही करते था।
12: उन लोग कैसे कैसे करता था बताइए।
13: सोलर था हमारा गांव में, जो सरकार ने दिया था, और सारे चूरी करके बिक के खा लिया सर।
12: कहाँ? बांग्लादेश में बेच दिया
13: सारे?
12: बांग्लादेश में बेच दिया।
13: बांग्लादेश
2: जहाँ TMC राज में पहले घुसपैठ की अंधेर गर्दी चलती रही, वहाँ इस जगह से बांग्लादेश का लालमनिरहाट हवाई अड्डा केवल 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ दावा है कि घुसपैठ से ही आबादी का संतुलन बिगाड़ा गया, क्योंकि घुसपैठियों ने यहाँ महंगी जमीन खरीदी और फर्जी दस्तावेज बनाकर स्थानीय लोगों का हक छीनना शुरू कर दिया।
14: जरूर फायदा होगा।
12: कैसे कैसे फायदा होगा?
14: जैसे इधर का जो बांग्लादेश से पहले आया था वो जमीन इधर ले लिया था और जमीन का दम थोड़ा ज़्यादा रेट के ले लिया था। अभी चला जाएगा दूसरा, वो जमीन का रेट कम होगा। दो नंबर इधर का जो कृषि जमीन है ना, वो भी थोड़ा वृद्धि होगा।
15: हमारा जमीन उमीन कब्जा करके खरीद करके लेता है और खरीद करके उसका जमीन का रेट भाव बढ़ा देता है। और रेशन भी ले लेता है हमारा जो

0: इंडिया का नागरिक है उसको रेशन नहीं मिलता है, जो घुसपैठी आ गया उसको रेशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, घर मिलता है, आवास योजना का जो घर आता है ना वो सब कुछ उनको मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता है।
1: एक भी बटार में कोई भी घुसपैठिए नहीं है, सारे घुसपैठिए अंदर चला गया।
2: मतलब आप बोल रहे हैं दिल्ली बेंगलुरु में काम करने
1: चला जाता है, उधर चला जाता है, यहीं पे नहीं रुकता है, कोई भी इधर नहीं रुकता है। क्यों? वो जानता है जब बटार में कोई भी हमला हो जाता है उसको भगा देगा, इसलिए बटार में नहीं है, जो है सब बाहर गया। अब उसको बाहर से आप चिन्हित करके भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है गाँव वालों को।
3: इसी तरह मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर आज तक संवाददाता पहुंचकर अब आपको घुसपैठ के खिलाफ देश में छेड़े गए अभियान की जरूरत बताने जा रहे हैं। पद्मा नदी के किनारे का ये वो इलाका है जहां ममता राज में फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी गई थी, लेकिन अब यहां काम शुरू हो चुका है।
4: इधर ही पूरा इलाका ओपन है यही पद्मा रिवर से, और उधर चौर, ये चौर दियर पार करके ही बांग्लादेश। इधर के कोई भी फेंसिंग नहीं है, कांटा तार भी नहीं है। वोट चुनाव के बाद ही इधर फेंसिंग का थोड़ा टेम्पोररी काम हुआ है, ये भी पहले नहीं था। इधर पूरा ओपन था, ओपन ही कैटल जैसे स्मगलिंग होता था, इधर से लेकर मुर्शिदाबाद के हर एक बॉर्डर से ही कैटल स्मगलिंग होता था, और घुसपैठियों भी इधर से ही आ जा सकता था।
5: ओपन बॉर्डर है ना, जो BSF वाले नहीं रहे, तो उसके बाद बड़े बड़े लाठी है हिंसा लेके जाते थे, लेकिन अब BSF कुछ नहीं करवाते। वर्षा काल में ज्यादा होता था, हमने तो बहुत बार देखा है ना, बांग्ला के आदमी इधर आया था,
4: इधर आता
5: है, इधर आते,
4: कोई दिक्कत नहीं है,
5: कोई दिक्कत नहीं। वो थाना वाले कुछ नहीं बोलते, सबकी वो जो TMC का लीडर उसकी हेड है ना, इसलिए जो गाय तस्करी होता था वो बहुत ही ज्यादा होता था। और इधर से जितना भी बराबर हम लोग देखा पिछले 2-4 साल में बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी आके इधर से गाय तस्करी करता था, इतना हालत भी गई, पूरा हम लोग का मीठपुर का इलाका की हालत भी बहुत खराब कर दिया था गाय तस्करी कर करके। जैसे मान लीजिए मेरा घर के बगल से जमीन से रात में इतना गाय लेके जाता था, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रशासन उसके हाथ में था। हम लोग का चीफ मिनिस्टर भी जमीन जो है वो फेंसिंग के लिए पूरा दे दिया है, सरकार BSF वालों का हाथ में दे दिया है, कुछ दिन में पूरा फेंसिंग हो जाएगा तो और भी अच्छा होगा। पिछले दिन में हम लोग अच्छे में रह पाएंगे, कोई गाय तस्कर भी नहीं होगा।
3: सरकार जब घुसपैठ के खिलाफ ईमानदार और आक्रामक कोशिश करती है तो जनता भी उसका साथ देती है। कुछ बिहार जिले के माथा भंगा ब्लॉक के पास सतग्राम मानबाड़ी इलाके के 3 लोगों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ के निर्माण को सुगम बनाने के लिए अपनी मर्जी से 33 डेसिमल जमीन दान की है।
6: बहुत प्रॉब्लम होता था बिकॉज उधर से लोग आते थे और जो वो लोग का चोरी का कारोबारी है वो बहुत ज्यादा से बहुत मात्रा से होता था। अगर ये फेंसिंग हो जाए तो इंडिया का जो सिक्योरिटी है पूरी तरह से हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, और इधर का जो फार्मर है और बॉर्डर के बगल में जो लोग रहते हैं उनका भी अच्छा सिक्योरिटी है। और यह सिर्फ यहाँ का सिक्योरिटी का बात नहीं है, यह पूरा हमारा इंडिया का सिक्योरिटी का बात है, तो फेंसिंग होना चाहिए। अगर फेंसिंग हो जाए तो उधर से जो घुसपैठिया आते थे इधर वो लोग नहीं आ पाएगा और सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाएगा यहाँ का।
7: हम लोग इसीलिए जमीन दिया है जो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, अपना देश सुरक्षित रहेगा, इसलिए मान लो ये अच्छा होना चाहिए। फेंसिंग नहीं रहने का मतलब ये है, जो पहले बांग्लादेशी आदमी आता था इधर रात को आके गोरू अपना सामान सामान ले जाता था, ऐसे ही घुसपैठ भी आता था।
3: यानी जनता खुद चाहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भागे और भगाए जाएं, इसीलिए अब की बार सरकार जब सख्ती कर रही है तो बॉर्डर भागम भाग मची नजर आ रही है।
8: अब सवाल आता है कि क्या भारतीय मुस्लिमों को इस पूरी कवायद को लेकर क्या चिंता करनी चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज को समझने के लिए बनाई गई कमेटी घुसपैठ और दूसरे कारण से आबादी में आए बदलाव असंतुलन की बारीकी समझेगी, जिससे देश के मुस्लिम नागरिकों को कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जबकि SIR को लेकर विपक्ष की राजनीति ने आप याद करिए कितना हो हल्ला खड़ा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने उसी SIR पर उठते हुए सवालों को खारिज कर दिया।
3: पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव के दावों पर क्या सोचता है आम मुसलमान?
9: ये राजनीतिक जुमला है, और जो है यहाँ पे हिंदू का आबादी भी बढ़ रहा है तो मुसलमान का भी आबादी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये आप बाढ़ देख रहे हैं, बाढ़ में मुस्लिम का आबादी ज्यादा है, तो इसके बाद अगर आप हमें भुई क्लास एरिया में जाइएगा तो वहाँ बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू, जब से ज्यादा बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू वहाँ भी रह रहा है। बांग्लादेशी अपने जगह पे है, वो अपने बॉर्डर क्रॉस के आ रहे हैं, वो हम लोग का राजनीति फेलियर है ममता बनर्जी का, जो उन लोग को यहाँ रोहिंग्या बोल कर रखने के लिए छोड़ दिया कि रोहिंग्या है, या कहीं पर आकर के बर्मा से आके बस गया, उसको बांग्लादेशी आप करार दे दीजिए या बर्मा का लोग को करार दे दीजिए।
3: बांग्लादेश से लगते जिलों में मुस्लिम आबादी में विस्फोट के दावों पर क्या है बंगाल के मुस्लिम नागरिकों की राय?
10: ये एक राजनीतिक है, ये राजनीतिक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाईलाइट किया गया कि मुस्लिम का आबादी बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स ये है। ऐसा देखा जाएगा नेशन में सब यहाँ पे इक्वल है।
11: अब तो जितना लोग परिवार में जो है लोग कम आबादी लोग पहले जो तुलना में होता था 10-12, अब तो वो भी 2-3 परिवार से ज़्यादा नहीं होता है, इससे तो आबादी और कम रही है। ऐसा बात थोड़ी है कि जो आबादी बढ़ रही है।
3: क्या बंगाल में किसी साजिश के तहत आबादी का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है?
12: क्योंकि मुस्लिम का ये है कि उसको जो जनसंख्या के लिए उसका उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, वो जानबूझ के बढ़ाते हैं, इसके कारण डेमोग्राफी चेंज भी हो सकता है।
13: डेमोग्राफी बदलेगा नहीं और मुस्लिम का आबादी अब बढ़ेगा नहीं, बस समझ गए। इसलिए कि बीजेपी जो अभी देश में आया है तो ये सब मुसलमान को डरवा दिया है।
3: बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल की दश को पुरानी बीमारी को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया, लेकिन सवाल है कि क्या वोट के लिए बंगाल में अवैध घुसपैठियों को आने दिया गया?
14: कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने का रहा है।
15: बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है।
3: पश्चिम बंगाल हो या फिर असम, बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में घुसपैठ सबसे आगे रहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हर नेता ये साबित करने में लगा रहा कि ममता घुसपैठियों को बसा रही हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना वोट बैंक मानती हैं।
15: जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को, क्योंकि इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है।
3: बीजेपी ने इस बार बंगाल जीतने के लिए कई रणनीति पर काम किया, जिसमें एक रणनीति घुसपैठ से बंगाल की संस्कृति को हो रहे नुकसान की थी। इस नैरेटिव को फैलाने के लिए बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला दिया, जिसका नाम इश्तिहार रखने पर बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और इसे घुसपैठियों के बंगाल की संस्कृति पर पड़ने वाले असर से जोड़ा।
15: अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तिहार कहा जा रहा है।
3: ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने के लिए बीजेपी ने साल 1905 के लाल इश्तिहार शब्द की याद दिलाई और दावा किया कि ममता ने ऐसा सांप्रदायिक भावना पैदा करने के लिए किया है, क्योंकि उस समय ढाका के नवाब कलीमुद्दीन मुल्ला ने मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए हिंदुओं के प्रति विद्वेष फैलाने के मकसद से जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका नाम भी इश्तिहार था। बंगाली बनाम फारसी की इस जंग का बीजेपी को कहीं न कहीं फायदा हुआ। बीजेपी की जीत के बाद जिस तरह से टीएमसी के दफ्तरों से आधार कार्ड मिलना शुरू हुए, उससे सवाल उठा कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी घुसपैठियों को बसाकर उन्हें बंगाल की योजना में हकदार बनाकर उनके वोट से जीतती रही।
8: जानकार कहते हैं कि घुसपैठ अगर सबसे बड़ा कारण डेमोग्राफी बदलने का है तो रास्ते और भी हैं, जैसे लव जिहाद और धर्मांतरण, और इन सब के बीच में सरकार एक मजबूत चक्रव्यूह रच रहे हैं। जैसे उत्तराखंड गुजरात के बाद असम में समान नागरिक संहिता का कानून लाना, वहीं पश्चिम बंगाल से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घुसपैठियों के खिलाफ आक्रमणकारी नीति अपना चुके हैं और बहुत ही एग्रेसिव वो पॉलिसी है, घुसपैठियों को चिन्हित करके डिटेंशन सेंटर में लाना और फिर डिपोर्ट कर देना, या फिर जनसंख्या में धर्म समाज का अचानक असंतुलन पैदा करने वाली जो साजिश है, वो साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाना हो। यूपी के योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों को लगातार चुनौती देते हैं।
3: घुसपैठियों को हटाना, लव जिहाद के खिलाफ कानून और धर्मांतरण रोकने का कानून, एक एक कर राज्यों में यूसीसी का पास होना, इन सब के साथ क्या देश में आबादी के असंतुलन को संभालने में बीजेपी की सरकारें जुट चुकी हैं? जहां घुसपैठ को लेकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से न सिर्फ आक्रामक वार करते आए हैं बल्कि प्रशासन को भी जमीन पर सक्रिय कर चुके हैं।
15: जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे।
3: और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर योगी आदित्यनाथ पहले ही डिटेक्ट, डिपोर्ट और डिलीट वाले अभियान में जुट गए थे। दिसंबर के महीने में पिछले साल ऑपरेशन टॉर्च का अभियान चलाती उत्तर प्रदेश पुलिस नजर आई थी, जहां अलग अलग जिलों की झुग्गी झोपड़ियों में संदिग्धों और घुसपैठियों की तलाशी ली जाती देखी गई, ताकि जो लोग बांग्लादेश बॉर्डर पार करके यूपी तक पहुंचे उन्हें रोका और पकड़ा जा सके। घुसपैठ के खिलाफ योगी आदित्यनाथ 20 साल से आवाज उठाते आए हैं। 2006 में गोरखपुर से सांसद रहते भी योगी ने संसद में घुसपैठ पर तब की यूपीए और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार से कार्रवाई को कहा था। अब जबकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर आक्रामक होकर नीति अपनाते हैं, तो याद करिए हर जिले में डिटेंशन सेंटर खोले जाने का निर्देश, जिसमें तय हुआ था कि इसमें सीसीटीवी कैमरों के साथ बायोमेट्रिक की व्यवस्था होगी, जिसमें घुसपैठियों के फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बल की भी तैनाती होगी और सुरक्षा को 3 लेयर में बांटा जाएगा। हर लेयर में सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा होगा। सरकार हर घुसपैठिए को रिपोर्ट करने की एक अलग से व्यवस्था बनाएगी। असल में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आबादी के असंतुलन बढ़ने का दावा तेज हुआ। जैसे नेपाल से सटी सीमा के पास घुसपैठिए आकर जमीन खरीदते हैं, मदरसे मस्जिद बनवाते हैं। आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव नेपाल बॉर्डर से सटे महाराजगंज जिले से ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
16: महाराजगंज जिले में सुनोली बॉर्डर है, वहां पर कई नए निर्माण हुए हैं और लगातार इसमें ये दावा किया जा रहा है कि डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। ऐसे में अगर हम आपसे बात करेंगे तो आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर जो है ये एक नया कंस्ट्रक्शन बना है, ये ईदगाह टाइप बनाई गई है, जो कि किसकी है नहीं पता है, लेकिन ये ईदगाह स्ट्रक्चर बना है जो पहले नहीं था, यहाँ पर बना दिया गया है।
17: भंसार है नेपाल जो है, नेपाल का ये भंसार है बॉर्डर से सटे पूरा, और मिशलैंड का पिलर वहाँ दिखाई दे रहा है। इधर देखिए, यहाँ पे करीब करीब 50-60 मकान हो गया है, बन रहा है।
16: जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो बाहर कम्युनिटी के लोग आकर बस रहे हैं, उनका सिर्फ मकसद है कि यहाँ की जो डेमोग्राफी वो चेंज करना, अपना प्रभुत्व बढ़ाना।
18: बिल्कुल बिल्कुल यही है।
3: घुसपैठ के अलावा उत्तर प्रदेश में आबादी का संतुलन धर्मांतरण और लव जिहाद के रास्ते से कोई न बिगाड़ सके, इसलिए योगी सख्त कानून बना चुके हैं।
8: भारत के संसाधनों पर भारतीयों का हक है, वोट की राजनीति में घुसपैठ और घुसपैठियों को सहारा नहीं दिया जा सकता, यही राष्ट्रहित में जरूरी है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
22: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
23: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
24: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, complete

0: totally commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
1: Thank God I get to wake
0: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Hexa.
3: आगे आगे
4: अरे उधर
3: उधर किधर
4: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
7: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
6: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
8: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
9: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबडी कैन ड्रीम।
8: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
10: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
16: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
17: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
9: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
8: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
10: प्रधानमंत्री जी ने खुद निर्देश दिए हैं और राजनाथ सिंह जी की क्या बैठक भी हुई और ये चिंता की जा रही कि अब ना लीक हो, जरूरत पड़े तो एयरफोर्स की भी जरूरत पड़े तो एयरफोर्स की भी यूज के हवाई जहाज भी यूज किए जाएं ताकि किसी प्रकार से कोई लीकेज ना हो। परंतु अंतगत इसका सोल्यूशन है जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने शुरू हो।
11: कितनी बार सुना है आपने इस सरकार में? 12 वर्षों से मैं कम से कम 1200 बार सुन चुका हूं अलग अलग मुद्दों पे। अब तो सुना है कि सेना की मदद लेने वाले हैं। मतलब दुनिया में हम अकेला देश होंगे जहां की परीक्षाएं भी हमारी सेना कंडक्ट करेगी। अरे सेना को तो बकस दीजिए महाराज, उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। सरहद संभाल रहे हैं, इस देश को सुरक्षित रख रहे हैं। आप एक परीक्षा तक नहीं करवा रहे। ऊपर से ये भी सुना है कि स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रील बनाओ OSM के फेवर में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
3: So they were disallowed from speaking their language.
2: In-depth conversations with A-list celebrities.
4: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
2: True crime podcasts you just can't stop listening to.
5: Others escape justice to live and die in infamy. These
2: individuals. Plus the news and sports content you crave in podcast form.
6: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
2: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
9: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
8: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
9: They score!
8: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
10: अब इस हत्याकांड के एक एक आरोपी का यूपी पुलिस हिसाब कर रही है। सूर्या का कत्ल करने वाले मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। दरअसल गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की धर पकड़ में लगी है। एक दिन पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच गाजियाबाद पुलिस को खबर लगी कि मुख्य आरोपी असद अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला था। पता यह भी लगा कि पैसे लेने के बाद उसका प्लान शहर छोड़कर भागने का था। सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस ने असद को दबोचने के लिए जाल बिछाया। कुछ ही समय बाद असद एक दूसरे व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो असद ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी एक्शन में असद को गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
11: असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, इसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे चेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना कोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है, उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है।
10: सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी मारा जा चुका है। अब परिवार आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहा है।
12: ये एक मांग पूरी हुई है, वो हुई अभी मेरे आगे तस्वीर नहीं आई है। ठीक है, मुझे तस्वीर देख लेंगे तभी मुझे तसल्ली आएगी।
13: पुलिस ने कहा है कि असद को हमने उठाकर उसके एनकाउंटर कर दिया, उसको ढेर कर दिया, तो आप उससे संतुष्ट नहीं
12: है? पूरी अभी संतुष्टि संतुष्ट हैं, पर पूरी तरह नहीं। जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे। इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए।
10: सूर्या चौहान की हत्या की वारदात बेहद सनसनीखेज है। जिस तरह उसका कत्ल किया गया वो बेरहमी की इंतहा है। पुलिस आरोपियों पर एक्शन ले रही है और सूर्या के परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश में लगी है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब दुनिया के तमाम मुस्लिम देश घुसपैठियों को खदेड़ सकते हैं तो भारत में इस पर तुष्टिकरण और सियासत क्यों होती है। ये मुद्दा अगर हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो इस देश में कुछ लोग बिलबिलाते क्यों हैं जब घुसपैठियों का मुद्दा उठता है। पाकिस्तान ने इसी साल 1.5 लाख अफगानी मुसलमानों को घुसपैठिया बताकर खदेड़ दिया। ईरान ने 15 लाख लोगों को सीमा पार भगा दिया। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पर जाकर नौकरी खोजने के लिए लोग बेताब रहते हैं इस देश से जिसे अपना आदर्श मानते हैं, उस यूएई ने इसी महीने 7,500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया। सऊदी अरब से लेकर तुर्की, जॉर्डन, तमाम देशों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने मजहब के लोगों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम देश जिन्होंने मुस्लिमों को ही हटाया क्योंकि वो उनके देश के नागरिक नहीं थे। वहां किसी ने इसे सरकार का एजेंडा नहीं कहा, लेकिन भारत में जब पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर से लेकर देश के कोने कोने में फैले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन होता है तो यहां कुछ राजनीतिक दलों के पेट में दर्द होने लगता है। वो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं बीजेपी का एजेंडा बताने लगते हैं। तो आज आंकड़ों के साथ पूछेंगे कि देश के संसाधनों को दीमक की तरह चाटने वाले ये घुसपैठिए सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है या देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ा प्रहार। आज ये पूछेंगे कि क्या हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए फिक्र करने की भी इजाजत नहीं है अगर हम चाहते हैं कि इस देश के संसाधन उनके लिए सुरक्षित रहे, या अब घुसपैठियों का भी इस पर अधिकार माने जाने वाला दौर आ गया है। लेकिन इसके बाद आपको यह बताएंगे कि भारत में विपक्ष के नेता जब जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं तब भारत की आम जनता जय इसराइल के नारे लगाती है। भारत की जनता के साथ इसराइल के इस अनोखे रिश्ते पर खुद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चर्चा की है। नेतन्याहू का कहना है कि जहां आज दुनिया के कई देशों में इसराइल को आलोचना और नफरत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत के लोगों से इसराइल को जो जबरदस्त और अविश्वसनीय प्यार मिलता है वो एक मिसाल है, और यही वजह है कि आज खुद इसराइल भी भारत और भारतीयों के सम्मान में पलके बिछाए खड़ा है। आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये खबर हर किसी को परेशान कर रही है क्योंकि फिर से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक कल रात अमेरिका का एक टैंकर अपना रडार सिस्टम बंद करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जवानों ने उसे इंटरसेप्ट किया, गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में अमेरिका की नौसेना इतनी आग बबूला हुई है कि उसने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लगी ईरान की वही पोर्ट सिटी है जिस पर अमेरिका ने 3 दिन पहले भी हमला किया था। उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि ईरान बंदर अब्बास में मिसाइल ठिकाने बना रहा है, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में ये हमले किए। लेकिन आज उसने ये कहा है कि बंदर अब्बास में ईरान का सैन्य ठिकाना अमेरिकी नौसेना और हॉर्मूज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा है, इसलिए उसने ये एयर स्ट्राइक्स किए हैं। और स्पॉट सिटी के पूर्वी हिस्से में 3 बड़े धमाके हुए हैं, उसी का आप वीडियो देख रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इन मिसाइल हमलों से ईरान की सैन्य संरचनाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा सेटबैक है, लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका के ये हमले निष्क्रिय रहे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये बात कहकर भी ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमले किए हैं। उसने बकरीद के मौके पर सुबह की पहली नमाज के वक्त मुस्लिम देश कुवैत के अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, मिसाइल हमला। और जब कुवैत में अजान की आवाज गूंजनी चाहिए थी तब कुवैत में मिसाइल हमलों का सायरन अलर्ट गूंज रहा था। ईरान ने कुवैत के जिस अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए उसका नाम अली अल सलेम एयरबेस है, जहां अमेरिका के लड़ाकू विमानों की पूरी फ्लीट तैनात रहती है। इनमें भी एमक्यू रीपर ड्रोन और C-130 सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सबसे प्रमुख है। हालांकि अमेरिका ने अभी यह नहीं बताया है कि ईरान के इन हमलों में उससे कितना नुकसान हुआ है और क्या ये हमले अब रख चुके हैं।
दुनिया में मुस्लिम भाईचारे को लेकर अक्सर बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन हकीकत यही है कि इस युद्ध की शुरुआत से ही ईरान अमेरिका के हर हमलों का जवाब पड़ोसी मुस्लिम देशों पर हमले करके दे रहा है।

0: यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अमेरिका ईरान के बंदर अब्बास को लगातार निशाना क्यों बना रहा है, और दूसरा अमेरिका और ईरान की डील हो क्यों नहीं पा रही, और इसका आप पर क्या असर होने वाला है। क्योंकि इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि जब तक हॉर्मूज में युद्ध का हाहाकार रहेगा, तब तक हमारे देश में तेल का, गैस का संकट खत्म नहीं होगा। अमेरिका बार बार ईरान के बंदर अब्बास पर हमले कर रहा है और इस हमले के पीछे कुल 5 कारण है। पहला, बंदर अब्बास ईरान की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ऑयल आर्टरी यानी तेल की धमनियां कहा जाता है। अगर बंदर अब्बास नहीं होता तो ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंधक बनाना मुश्किल होता, और अभी यही वजह है कि बंदर अब्बास पर हमले करके अमेरिका हॉर्मूज पर ईरान के नियंत्रण को कमजोर करना चाहता है। दूसरा, ईरान की नौसेना का मुख्य अड्डा इसी बंदर अब्बास में है, जहां IRGC नेवी का मुख्यालय है, कई मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ड्रोन कंट्रोल स्टेशंस हैं, फास्ट अटैक बोट्स हैं, जिन्हें मच्छर बोट भी हम कहते हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया था, झुंड में जाते हैं, और यही समुद्री माइंस बिछाने वाली नावें भी ईरान से छिपा कर रखी हैं। यानी अगर ईरान किसी जहाज पर हमला करना चाहे या हॉर्मुज को बंद करके रखना चाहे तो उसका आदेश और संचालन काफी हद तक बंदर अब्बास से ही होता है। तीसरा, अमेरिका बंदर अब्बास पर इसलिए भी हमले कर रहा है क्योंकि वो ईरान की समुद्री धमकी को खत्म करना चाहता है। अमेरिका और इसराइल का मानना है कि अगर ईरान की नौसैनिक क्षमता कमजोर कर दी जाए तो वो हॉर्मूज को बंद नहीं कर पाएगा और इसलिए तेल सप्लाई सुरक्षित रहेगी, और इसीलिए अमेरिका माइंस बिछाने वाली नावों, एंटी शिप मिसाइल्स, ड्रोन सेंटर्स और नौसैनिक ठिकानों को बंदर अब्बास में टारगेट कर रहा है। एक और कारण है, बंदर अब्बास ईरान की तेल लाइफलाइन माना जाता है। इसके पास स्थित शहीद रजाई पोर्ट ईरान के कुल व्यापार का लगभग 50% और कंटेनर ट्रैफिक का 85-90% व्यापार करता है। और सबसे बड़ी बात, बंदर अब्बास ईरान के हॉर्मोजगान प्रांत की राजधानी है, जहां 7 लाख लोग रहते हैं। यह हॉर्मूज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। 26 मार्च को IRGC नेवी के पूर्व कमांडर अलीरेजा तंगसीरी इसी बंदर अब्बास में मारे गए थे, और अमेरिका की कोशिश यही है कि वो किसी भी तरह बंदर अब्बास को खत्म कर दे। हालांकि ईरान एक दूसरा गेम खेल रहा है, वो हॉर्मूज को अब आजाद नहीं करना चाहता। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की योजना बनाई है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ओमान को ही यह धमकी दी है कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ गया तो अमेरिका ईरान की तरह उसे भी उड़ाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देख,
1: nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the.
0: वैसे पूरी दुनिया को धमकियां देने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का असर अब इंसानों तक ही सीमित नहीं रहा है। ये खबर बड़ी दिलचस्प है, आपने भी शायद कहीं देखी हो, लेकिन विस्तार से सुनिए। अगली खबर बांग्लादेश से है, जहां एक विशाल भैंसा बकरीद की कुर्बानी से सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसलिए है क्योंकि इस भैंसे के माथे पर सुनहरे पीले रंग के लंबे बालों का गुच्छा है। सोशल मीडिया पर यह वायरल होने लगा। पिछले कुछ दिनों में इस भैंसे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला लिया, खुद उसे खरीद लिया, और अब इस भैंसे की मंजिल कुर्बानी का मैदान नहीं बल्कि एक चिड़ियाघर होगा। ऐसा शायद भी ही कभी किया गया हो, क्योंकि बांग्लादेश सरकार को डर था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नाम के इस भैंसे की बकरीद पर कुर्बानी दे दी गई तो इससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो सकते हैं, बांग्लादेश को नई धमकी दे सकते हैं। और देखिए, सरकार ने इंटरवीन किया, सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के जैसे दिखने वाले हैं इसलिए लोकप्रिय होने वाले एक भैंसे को खरीदा ताकि उसकी कुर्बानी ना दी जा सके। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पिछले एक साल में दुनिया के 15 देशों को धमकी दी है ना, वैसे ही बांग्लादेश को डर था कहीं टैरिफ वाली कोई धमकी ना आ जाए। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीति का एक बड़ा हथियार उनकी धमकियां ही रहे हैं, कभी टैरिफ की धमकी, कभी प्रतिबंध की धमकी, कभी युद्ध की धमकी। लेकिन बांग्लादेश में तो कहानी ही उल्टी हो गई। यहां ट्रंप नाम ने किसी को नहीं डराया, बल्कि एक भैंसे की जान बचा दी है। अब ये भैंसा चिड़ियाघर में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। शायद आने वाले दिनों में बच्चे अपने माता पिता से पूछें ये कौन है, जवाब मिलेगा ये वही ट्रंप है जिसे देखकर इस बार कुर्बानी भी अपना रास्ता बदल गई।

0: Tá, ele gasta com raio da morte.
1: कई बार दावे बहुत होते हैं, आरोप लगते हैं, फिर इधर से प्रत्यारोप भी आते हैं, सच में झूठ की मिलावट भी हो जाती है और उनमें नैरेटिव भी खूब सारे होते हैं। जिसको अपना पक्ष बोलना है वो उतना ही चीख चीख कर बोलता है, लेकिन आखिर में नंबर्स, आंकड़े ही वो आईना बनते हैं जिनमें किसी भी मुद्दे का असली निष्कर्ष दिखाई देता है। और शायद घुसपैठ के मुद्दे पर भी आज इन्हीं आंकड़ों का एक आईना दिखाना बहुत जरूरी है। शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं, जिसने इस साल अफगानिस्तान के 1,46,000 लोगों को घुसपैठिया बताकर देश से निकाल दिया। कौन थे ये लोग? ये सभी लोग इस्लाम धर्म को मानते थे, खुद को मुसलमान कहते थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसे वहां की सरकार का एजेंडा नहीं कहा। इसकी जगह यह बोला गया कि इन घुसपैठियों का पाकिस्तान के संसाधनों पर कोई हक नहीं है, घुसपैठिए आपके देश के नहीं हो सकते। इसके बाद ईरान, जून 2025 से फरवरी 2026 के बीच जानते कितने लोगों को निकाला? 15 लाख। 15 लाख लोगों को घुसपैठिया बताकर अपने देश से बाहर निकाल दिया। ईरान भी एक मुस्लिम देश है, उसने जिन लाखों घुसपैठियों को बाहर निकाला वो भी मुस्लिम ही थे और मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले थे। लेकिन ईरान में भी किसी ने ये नहीं कहा कि वहां की सरकार इन घुसपैठियों को निकालकर अपना एजेंडा चला रही है। इसके बाद यूएई ने भी इसी महीने 7,500 पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को अपने देश से निकाल दिया। इन लोगों को इतना भी समय नहीं दिया गया कि अपना सामान पैक करके अपने साथ ले जा सकते। यूएई का कहना है कि इनमें कई लोग घुसपैठिए थे और नियमों का उल्लंघन करके यूएई में ईरान की मदद कर रहे थे। और यहां भी यूएई एक मुस्लिम देश है और उसने जिन पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया वो भी मुस्लिम थे, लेकिन यूएई में भी किसी ने इसे वहां की सरकार का एजेंडा नहीं बताया और ना ही घुसपैठियों का धर्म देखा, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड लॉ ऑफ द लैंड होता है। किसी भी देश में अवैध घुसपैठियों के लिए जगह नहीं होती है और उनका अगर उनको डिपोर्ट करने का प्रावधान है तो यह हर देश कर रहा है। इसके बाद सऊदी अरब ने भी इसी साल 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच 18,836 घुसपैठियों को हथकड़ियां लगाकर अपने देश से बाहर निकाला, जिसमें 60% घुसपैठिए इथियोपिया के थे और 39% यमन के थे और इनका धर्म भी इस्लाम था। लेकिन फिर भी सऊदी अरब में किसी ने ऐसा नहीं कहा कि वो एक मुस्लिम देश होकर मुसलमानों को ही घुसपैठिया बताकर डिपोर्ट क्यों कर रहा है। और यही कहानी मुस्लिम देश तुर्की की भी है, जिसने 1 जून 2023 से 11 अप्रैल 2025 के बीच में 2,60,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला है। कल्पना कीजिए, तुर्की अपने आप को मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा झंडावरदार कहता है और चाहता है कि सारे मुस्लिम देशों का वही आका बने, उनको लीड करे, नेटो का भी सदस्य है, और उसने देखिए कितने लोगों को, 2,60,000 लोगों को हटाया है। और इसमें भी आप सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि मानवाधिकार पर बड़े बड़े लेक्चर देने वाले सारे लोगों को तुर्की से निष्कासित लोग नहीं दिखते हैं। यह अवैध घुसपैठियों का जाना तुर्की के हक में है। आप मुस्लिम देश जॉर्डन को अब देखिए, जानते हैं जॉर्डन जिसने घुसपैठ करके आए 6,75,000 मुसलमानों को अपने देश में बड़ा दिल दिखाते हुए शरण दी थी और ये कहा था कि घुसपैठिए जॉर्डन में रहकर खेती कर सकते हैं, लेकिन बाद में यही लोग जॉर्डन के लोगों की नौकरियां खाने लगे, सरकारी योजनाओं का लाभ सब्सिडी का फायदा निकलने लगे और बाद में स्थिति यह हो गई कि जॉर्डन को इनमें से 1,75,000 घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकालना पड़ा, जिनमें फिलिस्तीन, सीरिया, यमन, पाकिस्तान के घुसपैठिए ज्यादा थे। लेकिन जॉर्डन में भी किसी ने इसे एजेंडा नहीं कहा। यानी अब तक हमने आपको जितने भी देशों के नाम गिनाए वो सारे मुस्लिम देश हैं और जिन लाखों घुसपैठियों को इन्होंने अपने देश से बाहर निकाला वो भी ज्यादातर मुस्लिम थे। लेकिन फिर भी इन देशों में कोई विवाद नहीं हुआ, किसी ने इसे किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं बताया, ये देश का एजेंडा था, देश की

0: गिरफ्तार किया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि ये स्थिति आगे क्या होगी। अब ये गिरफ्तारियां बता रही हैं कि कैसे ये घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में फैल चुके हैं। पश्चिम बंगाल छोड़िए, पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए केरलम, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहां तक कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों से गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आइए आपको यहां पर बड़े मैप पर एक बार फिर से दिखाते हैं। जब आप देखेंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है तो बांग्लादेश से भारत में ये ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ अगर यहां पर बॉर्डर के इलाके में ये इस तरह से होता है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था बॉर्डर का ये पूरा इलाका, तो यहां से जो घुसपैठ होता है वो पश्चिम बंगाल से इधर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में उसके बाद से आप चले जाइए पीला से करके आपको दिखाती हूं। यहां से देखिए तो ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी होता है। वहां से फिर आप देखिए तो दिल्ली में भी घुसपैठ ये पहुंचते हैं। जहां जहां पर उनको संसाधन, नौकरी, ऐसी चीजों का लगता है कि स्कोप है वो वहां पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यहां से बिहार में तो है ही घुसपैठ की एक समस्या, झारखंड में भी आप देखिएगा तो कुछ हद तक ये समस्या है। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ये वो राज्य है जहां पर ये पहुंचते हैं, क्योंकि यहां पर पहुंचकर महाराष्ट्र जैसा कि हमने आपको बताया तो यहां से इन घुसपैठियों के आने के बाद उनको चाहिए यहां के संसाधनों पर अधिकार। कई बार तो अभी बड़ी दिलचस्प चीज हम आपको बताने वाले हैं कैसे सरकारी योजनाओं का वो फायदा लेने के लिए राज्य ढूंढते हैं कि भाई इस राज्य में अगर हम पहुंच गए तो यहां पर तो सरकारी संसाधनों में मुफ्त की जो रबड़ियां, रेबड़ियां आजकल दी जा रही हैं अलग अलग राज्यों में, तो कहीं पर फ्री बिजली, कहीं पर फ्री राशन दिया जा रहा है, तो उनको लगता है कौन से राज्य में जाएं जहां पर टिककर हमको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, सबसे ज्यादा मुफ्त का सामान मिल सकता है। अब देखिए ये तमाम राज्यों में जो इस वक्त इनफ्लो हो रहा है अवैध घुसपैठियों का, कहने का मतलब ये है कि अभी तो सिर्फ पश्चिम बंगाल के घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं जबकि हकीकत में ये घुसपैठिए कई राज्यों में फैल चुके हैं जिनकी आबादी राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ है। ऑफिशियल जानकारी जो राज्यसभा में दी गई है 2 करोड़ की है। 2 करोड़ का मतलब ये है कि न्यूजीलैंड जैसे 4 देशों की आबादी, फिर से सुनिए, 2 करोड़ का मतलब है न्यूजीलैंड जैसे 4 देशों की आबादी हमारे देश में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की हो सकती है, जो हमारे संसाधन, आपके संसाधन, हमारी नौकरियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। कैसे, उसका एक उदाहरण आपको देते हैं। इस व्यक्ति का नाम जिसको आप टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे साथ देखेंगे, इस व्यक्ति का नाम है रकीबुल शेख, जिसके बैंक खाते में टीएमसी की पिछली सरकार ने लक्खी भंडार योजना के तहत जानते कितने पैसे ट्रांसफर किए थे? 1.5 लाख रुपए। रकीबुल शेख, इनको लक्खी भंडार, जिसको लक्खी भंडार वहां कहते हैं, दरअसल मतलब है लक्ष्मी भंडार, जिसके तहत 1500 रुपए दिए जा रहे थे, 1500। ये सारा का सारा पहरा पैसा इस रकीबुल शेख के अकाउंट में जा रहा था। ये पैसा किसके लिए था? ये पैसा महिलाओं के लिए जाने वाला था, जहां पर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे थे लक्ष्मी भंडार यानी लक्की भंडार योजना के तहत। लेकिन इस शख्स के खाते से, उस लक्की भंडार योजना से आए पूरे 1.5 लाख रुपए। जब और जांच की गई तो पता चला कि चुनाव आयोग ने रकीबुल शेख और उसकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से भी हटा दिया, क्योंकि रकीबुल शेख के दस्तावेज पर्याप्त ही नहीं थे कि वो भारत में नागरिकता उसको मिले, वो वोटर बन सके। उसकी भारतीय नागरिकता संदिग्ध थी, उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए गए हैं लक्ष्मी भंडार योजना के। अब रकीबुल शेख उसी मुर्शिदाबाद में रहता है जहां मुस्लिम आबादी है 66%, जहां ममता बनर्जी की पिछली सरकार बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही थी। और ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है, आप मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सुनिए जो ये बता रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार योजना का पैसा जिन 2.1 करोड़ बैंक खातों में डाला जा रहा था उनमें कुल 30 लाख बैंक खाते या तो फर्जी है या घुसपैठियों के। सुनिए,
1: ये वोटर तालिका थे के नाम बाद गए थे, स्थायी भावे नाम बाद गए थे এবং ট্রাইব্যুনালে বা সিএ তে অ্যাপ্লিকেশন করেননি এমন অন্তত 30 লক্ষের কাছাকাছি, অ্যাপ্রক্স বলছি, সংখ্যাটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফর্মগুলো ফেরত এলে,

0: তারাও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন। তো আপনাদের একটা উদাহরণ দিই আমি, এই মুহূর্তে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন রাকিবুল শেখ, তার পিতার নাম মনসুর শেখ, তার বাড়ি হচ্ছে শিয়ালমারা, পোস্ট হচ্ছে বহরমপুরের রাদারঘাট, তিনি রাদারঘাট 1 নম্বর জিপি, তার এপিক নাম্বার হচ্ছে SAF 124-2254। অর্থাৎ যে কর্মসূচি মহিলাদের জন্য, সেই কর্মসূচিতেও ভেজাল এবং বেনজল ভেরিফিকেশন না থাকার ফলে ঢুকে বসে আছে।
1: इस बयान से आप खुद समझ जाएंगे कि बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठ करके भारत क्यों आना चाहते हैं। बांग्लादेश में सरकारी योजनाओं का दायरा बहुत सीमित है। जिस तरह भारत में मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, पानी मुफ्त, मुफ्त गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, पक्के मकान के लिए पैसा, महिलाओं को मासिक मदद, बिना गारंटी के लोन और अस्पतालों से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलता है, वैसे लाभ बांग्लादेश में लोगों को नहीं मिलते। इस वजह से बहुत सारे मुसलमान बांग्लादेश में गरीबी से निकलकर भारत में आना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो किसी तरह पश्चिम बंगाल में आ गए तो उनका आसानी से आधार कार्ड बन जाएगा और फिर इसी आधार कार्ड के सहारे वो भारत के किसी भी राज्य में रहकर अपना जीवन सुख सुविधाओं से गुजार सके। हमने आपको पहले भी बताया था, एक आधार कार्ड बनने में महज 2000 रुपए लगते हैं। ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है जिस पर टीएमसी की सरकार में कोई अंकुश नहीं लगा। ये हम नहीं कह रहे कि बल्कि बांग्लादेश से ये घुसपैठ करके आए, ये लोग खुद बता रहे हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बांग्लादेश में वापस जाने वाले ये लोग खुद बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में इनका आधार कार्ड बना, इनका राशन कार्ड बड़ी आसानी से बन जाता था। सुनिए।
2: मैं बांग्लादेश से आया था, मेरे पास सभी पहचान पत्र हैं, मैं यहाँ काम की तलाश में आया था। अब मैं वापस बांग्लादेश जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ सरकार अब पहले जैसी नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड भी है। मैं यहाँ 7-8 साल पहले आया था, लेकिन अब सरकार बदल गई है। मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। मैं सीमा पार करके यहाँ आया था। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारे पास सभी दस्तावेज हैं। अब हम कैसे रहेंगे यहाँ?
1: अब ये तो बीजेपी के लोग हैं नहीं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ये खुद बता रहे हैं कि पिछली सरकार में इन्हें कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था और इनके लिए पश्चिम बंगाल में रहना पूरी तरह सुरक्षित था। अगर हम इस बात को छोड़ भी दें तब भी ये सवाल बना रहेगा कि अगर टीएमसी सरकार में इन घुसपैठियों पर मेहरबानी नहीं होती थी तो फिर उस वक्त सरकार ने बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन क्यों नहीं दी? पश्चिम बंगाल की 2216 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जिसमें से 569 किलोमीटर लंबी सीमा पर बीएसएफ इसलिए बॉर्डर फेंसिंग नहीं कर पाई क्योंकि ममता बनर्जी ने इसके लिए जमीन नहीं दी थी। 2017 से 25 के बीच कुल 88 बार इस मुद्दे पर टकराव हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जताई, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की पूर्व सरकार ने उस वक्त जरूरी कदम नहीं उठाए तो नहीं उठाए, लटका रहा मामला और बॉर्डर पर बाढ़ नहीं होने से घुसपैठियों का भारत में आना जारी रहा। और सोचिए, इस काम के लिए हमें सरकार बदलने का इंतजार करना पड़ा। आज बांग्लादेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने के सिर्फ 20 दिनों में शुभेंदु अधिकारी की, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद आप देख रहे हैं सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग के लिए जरूरी जमीन बीएसएफ को दे दी है, जिससे यह सवाल उठता है कि जो मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का था उसे ममता बनर्जी की सरकार में बीजेपी का मुद्दा क्यों माना गया? सुनिए।
3: हमारी सुरक्षा सबसे बड़ी कमी थी बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग। भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन बॉर्डर फेंस बन सकती है वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि पहले हर दिन 5 से 10 हजार घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आते थे, लेकिन अब हर दिन इतने ही घुसपैठिए अपने देश वापस जा रहे हैं। सुनिए,
4: बंगाल में तो अजी बंगाल ना मुख्यमंत्री शपथ लीधा छे, अजी तो खाली शपथ लीधा छे, पहला रोज 5-10 हजार नी घुसणखोरी थती थी, हवे रोज 5-10 हजार पाछा जवाना चालू थया छे।
1: आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि जब हम अपने घर पर किसी बाहरी व्यक्ति का कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर इन घुसपैठियों को अपने देश में हमारे और आपके संसाधनों पर कब्जा करने कैसे दे सकते हैं? खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस माफिया का जिक्र किया जो जीप पर पिस्तौल लहराते हुए हिंदुओं को धमकी देता था। सुनिए,
5: अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है।
1: यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस माफिया की बात कर रहे हैं वो माफिया मुख्तार अंसारी है, जिसकी 2024 में मौत हो गई थी। तो देखिए ये तस्वीरें, साल 2005, वर्ष 2005 में जब मऊ में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तब आरोप लगता है कि उन दंगों में मुख्तार अंसारी ऐसे ही खुली जीप में घूमकर हिंदुओं पर हमले कर रहा था। उसके खिलाफ तत्कालीन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, हाथ में हथियार तो आपको दिख ही रहा होगा, और कोई ये पुलिस वाला या सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो है नहीं, यह है मुख्तार अंसारी। और मुख्तार अंसारी ऐसे अपना दबदबा कायम करता था। साल 2005 में देखिए कैसे ये घूम रहा है, पीछे संरक्षण है इसे मिला हुआ। अब मुख्तार अंसारी की हनक ऐसी थी कि उसे कई राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिला, और इस संरक्षण के ही कारण उसके लिए गाजीपुर जेल में एक बैडमिंटन कोर्ट तक बनाया गया, और उस कोर्ट में मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए गाजीपुर के तत्कालीन डीएम खुद आया करते थे। और ऐसी सिर्फ एक कहानी नहीं है, उस वक्त मुख्तार अंसारी को ताजा मछलियां बड़ी पसंद थी, जिसके लिए जेल में एक तालाब बनाया गया ताकि उसे मछली बनाकर खिलाई जा सके, और मुख्तार अंसारी के लिए एक स्पेशल कुक रखा जाता था जो सिर्फ उसके लिए खाना बनाता था। यानी पिछली सरकारों का पूरा संरक्षण इस अपराधी को मिला हुआ था। और अब जब साल 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया गुंडों की पूरी कुंडली खोल रहे हैं, और यह भी बता रहे हैं कि इस बार यूपी का चुनाव एक नए एम फैक्टर पर लड़ा जाएगा, और वो है माफिया फैक्टर। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि योगी राज से पहले उत्तर प्रदेश के लोग भी ये कल्पना नहीं करते थे कि मुख्तार और अतीक अहमद जैसे माफियाओं का साम्राज्य कभी मिट्टी में भी मिल सकता है। वरना सोचिए ना, जो इस तरह की हनक के साथ, पहरेदारों के साथ, हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों के साथ ओपन जिप्सी पर लोगों को डराता था, उनका अंत होगा। लेकिन ऐसा हुआ, और अब जब वो बातें याद की जाती हैं तो सोचकर हैरानी होती है कि माफिया उस वक्त खुले कैसे घूमते थे। उदाहरण के लिए मुख्तार अंसारी ने ही साल 1996 से 2017 के बीच 5 बार विधानसभा चुनाव जीता और इनमें भी वो 3 बार जेल से चुनाव लड़कर विधायक बना, लेकिन उस समय किसी भी विपक्षी दल को भारत का लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया और किसी को भारत के संविधान की तब चिंता नहीं हुई। संविधान लेकर कोई नहीं घूमा। मऊ के जिन सांप्रदायिक दंगों में 7 लोग मारे गए थे, उन दंगों में मुख्तार अंसारी की भूमिका होते हुए भी सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए मायावती ने 2007 में मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और 2009 में मुख्तार अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर जेल से लोकसभा का चुनाव लड़ा। यानी मायावती तो मुख्तार अंसारी पर इतनी मेहरबान थी कि वो उसे जेल से ही विधायक से माननीय सांसद बनाना चाहती थी, लेकिन वाराणसी के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया और मुख्तार अंसारी को लगभग 17,000 वोटों से हरा दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव की सरकारों में ऐसा चमत्कार हुआ कि जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी की संपत्ति 21 करोड़ रुपए बढ़ गई। जेल में रहते हुए साल 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तब मुख्तार अंसारी की कुल संपत्ति थी लगभग 82 लाख रुपए, लेकिन साल 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद से हटे तब तक मुख्तार अंसारी की यही संपत्ति लगभग 22 करोड़ रुपए की हो चुकी थी। यानी जो व्यक्ति 2005 से कभी जेल से बाहर आया ही नहीं था उसकी संपत्ति बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकारों में जेल में रहते रहते 21 करोड़ रुपए बढ़ गई और ये इतना बड़ा चमत्कार हो गया। और सोचे ये कितनी गंभीर बात है कि जिस व्यक्ति पर साल 1988 में पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था उसे पहली बार किसी मामले में सजा साल 2022 में हुई, यानी पहला फैसला आने में ही 34 साल लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरोप लगता है कि पहले की सरकारें मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस को किसी मामले में ठीक से जांच नहीं करने देती थी। जो गवाह होते थे उन्हें मुख्तार अंसारी जेल से मरवा देता था। खैर, इस भरोसे से आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि कैसे अमेरिका में भारत के लोगों को लेकर इंडोफोबिया बढ़ता जा रहा है। इंडोफोबिया का मतलब है वो नफरत जो अमेरिकी धरती पर भारतीयों को निशाना बनाने का लाइसेंस बन गई है। इस वक्त अमेरिका में सोशल मीडिया के बंद कमरों से निकलकर अब सड़कों पर भारतीयों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इस पूरी नफरत के पीछे जो नाम और वजह सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। इस नफरत का सिलसिला शुरू होता है एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर जो खुद को अपने बायोडेटा में फैश वेव प्रोपेगेंडिस्ट लिखता है, वो एक भारतीय कपल का रास्ता रोकता है और वो कैमरे के सामने चिल्लाता है और कहता है तुम भारत में क्यों नहीं रहते, मेरे देश से दफा हो जाए। पहले आप इस वीडियो को देखिए।
6: आर यू फ्रॉम इंडिया? या, यू लाइक अमेरिका? Which better, America or India?
7: Both of them has both.
6: India
7: has family.
6: India is so incredible. Why don't you just stay in India? Why do you have to come to America?
7: To explore world.
6: No, we don't want you here. You got to go home.
7: Okay.
6: Are you from India?
7: Yeah.
6: Yeah, you like America?
7: Yeah.
6: Which better, America or India?
7: Both of them has both. India has family.
6: India is so incredible. Why don't you just stay in India? Why do you have to come to America?
7: To explore world.
6: No, we don't want you here. You got to go home.
1: देखा आपने? सवाल यह है कि अचानक अमेरिकी समाज के एक हिस्से में भारतीयों के प्रति इतनी कड़वाहट कहां से आई? सालों से अमेरिका भारतीयों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहा, लेकिन इस साल 22 अप्रैल को कुछ ऐसा हुआ जिससे इस नफरत को मानो लेजिटिमाइज यानी जायज ठहरा दिया। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट को शेयर किया था जिसमें भारत को हेल होल यानी नरक कहा गया था। ट्रंप के इस एक रीपोस्ट ने जैसे अमेरिका में बैठे भारत विरोधियों को एक नया हौसला दिया। एक्सपर्ट्स इसे ट्रंप हेलो कह रहे हैं जिसके साए में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को खुली छूट मिल गई है। इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी ओसिन टीम ने जब इस नफरत की गहराई को मापा तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इस दौरान एक्स को ऐसे एक दर्जन अकाउंट्स का विश्लेषण किया गया जो लगातार लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप की उस हेल होल वाली पोस्ट के बाद ऐसे 8 बड़े अकाउंट्स की रीच, उनका एंगेजमेंट बिजली की रफ्तार से उछल गया है। इन 8 अकाउंट्स पर ट्रंप की पोस्ट से पहले कुल एंगेजमेंट्स यानी लाइक्स, रीपोस्ट, कमेंट्स सिर्फ 1031 थी, लेकिन ट्रंप के भारत को नर्क यानी हेल होल बताने के बाद इनकी कुल एंगेजमेंट बढ़कर 35,469 हो गया, यानी इसमें 34 गुना उछाल आया। सोचिए, जो नफरत पहले सोशल मीडिया के किसी कोने में दबी थी, उसे अचानक 34 गुना ज्यादा लोग देखने लगे, बढ़ावा देने लगे। अब देखिए कि अकाउंट्स किस हद तक भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। एक्स पर एक अकाउंट है मिसेस बी, ये अकाउंट लगातार भारत और डेवलपिंग कंट्रीज को गाली देता है। 8 अप्रैल को इस अकाउंट में लिखा गया था कि उसने भारत देखा है, ये एक ओपन एयर लैंडफिल यानी कचरे का ढेर है। तब इस पोस्ट पर सिर्फ 450 लाइक्स और कमेंट्स थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट के ठीक 1 महीने बाद इसी अकाउंट ने दोबारा जहर उगला और लिखा, भारत इस प्लैनेट को बर्बाद कर रहा है। और इस बार इस नफरत को 14,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। इतना ही नहीं, हाल ही में बने कुछ नए अकाउंट्स तो सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। ऐसा ही एक अकाउंट है डॉक्टर NTX न्यूज, जो आप देख रहे हैं, नॉट टेक्सस न्यूज के नाम से। पिछले 7 दिनों में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया गया, हैशटैग रिटर्न टू इंडिया। इस हैशटैग के तहत 9,500 से ज्यादा पोस्ट की गई, जिसे ये अकाउंट लगातार प्रमोट कर रहा था। हैरानी और शर्म की बात देखिए, इस अकाउंट ने टेक्सस में खेल रहे मासूम भारतीय मूल के बच्चों का एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, स्प्रेडिंग लाइक अ वायरस, यानी वायरस की तरह फैल रहे थे। ये सीधे सीधे डेमोग्राफिक चेंज के नाम पर अमेरिकी समाज में डर और नफरत पैदा करने की कोशिश थी। ये सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैध रूप से वहां पर रहना शुरू किया है। ये कोई इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, ये वो लोग हैं जो भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन जिन्होंने अब अमेरिका को अपने देश के रूप में अपनाया है, वहां पर उनका अपना योगदान दे रहे हैं, वहां के टैक्सेस दे रहे हैं, वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। लेकिन इस पर अमेरिका में कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब भारत के बहुत सारे विपक्षी नेता जय फिलिस्तीन कहते नहीं थकते, तब भारत के लोग जय इसराइल का समर्थन क्यों करते हैं? ये बात इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद जॉर्डन वैली में एक कार्यक्रम में पूरी दुनिया के सामने रखी। उनका कहना है कि इसराइल को दुनिया के कई देशों में आलोचनाओं का, नफरत का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत में स्थिति अलग है। भारत में इसराइल के लिए अविश्वसनीय और जबरदस्त प्यार देखने को मिलता है, और इसलिए वो भी हमारे देश का बहुत आदर सम्मान करते हैं। सुन,
8: आप जिन बातों की बात कर रहे हैं वो इनको और बड़े स्तर तक बढ़ाने की बात है, और वो जो स्तर है वो है एक बहुत बड़ी ताकत यानी भारत के साथ खास रिश्ते। मैं कह रहा हूँ कि हमें दुनिया में वैलिडेशन को लेकर समस्या है, मैं जानता हूँ, लेकिन भारत में नहीं। सच तो यह है कि भारत में इसराइल के लिए काफी समर्थन है, ये सच है, बहुत है, और वो भी काफी हद तक। मुझे लगता है भारत में मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, किसी भी और जगह से ज्यादा, लेकिन यह अच्छी बात है। उनके पास लगभग 140 करोड़ लोग हैं, और भारत और इस क्षेत्र के बाकी देशों के बारे में जिनका आपने जिक्र किया है मैं उनके डिटेल में ज्यादा नहीं जाना चाहता।
1: ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हमारे देश में ज्यादातर विपक्षी नेता जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, इसराइल का विरोध करते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग फिलिस्तीन के मुद्दे पर इसराइल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते रहे और बार बार ये कहते हैं कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ इसराइल सही नहीं कर रहा। इसी आधार पर बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि भारत फिलिस्तीन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, वो इसराइल का विरोध करता है, लेकिन भारत के बाकी लोग ऐसा नहीं मानते। ये 4 अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे देश में आज भी ज्यादातर लोग इसराइल को पसंद करते हैं, जिसके कारण प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बयान दिया। और अगर आपको विश्वास न हो तो आप अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर का ये पिछले साल का सर्वे देखिए, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देशों के मुकाबले भारत के लोग इसराइल को नापसंद कम करते हैं और पसंद ज्यादा करते हैं। भारत में इसराइल को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या 29% है, पसंद करने वाले लोगों की संख्या 34% है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि बाकी देशों में अगर आप देखें तो इसराइल को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या 50-60-80% तक है। जैसे कनाडा में नापसंद करने वाले 60% हैं, अमेरिका में 53% है, स्पेन में 75% है, इंडोनेशिया में 80% है, जापान में 79% है जो इसराइल को नापसंद करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। सिर्फ इसराइल ही नहीं, भारत के लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पसंद करते हैं। जब दुनिया के लगभग सभी देशों में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या औसतन 60-80% है, तब भारत में सिर्फ 28% लोग उन्हें नापसंद करते हैं, जबकि इससे 6% ज्यादा 34% लोग उन्हें पसंद करते हैं। और ये स्थिति भी तब है जब इसराइल के लोग खुद ये नहीं मानते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके देश का पर्याप्त सम्मान होता है। इसराइल के 58% लोगों को लगता है कि वैश्विक स्तर पर उनके देश की साख अच्छी नहीं है, जबकि 39% मानते हैं कि अब ये साख बेहतर हो रही है। और यहां सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत के लोग ही इसराइल को पसंद करते हैं, इसराइल के लोग भी पूरी दुनिया में भारत को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसराइल के 27% लोग भारत को नापसंद करते हैं, लेकिन 60% लोग ये कहते हैं कि उन्हें भारत अच्छा लगता है, वो भारत को प्यार करते हैं। और यही है इसराइल और भारत के गहरे होते संबंधों की सबसे मजबूत नींव, जिसका प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिक्र किया है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और चाहत दौलत या सेहत की नहीं, अच्छी किस्मत की करो, क्योंकि जब किस्मत रूठती है तो सेहत और दौलत दोनों दगा दे जाती है।
9: I drive my bus in a busy city. That's why road safety is so important to me. I know that I must slow down and be extra careful when I make a wide turn. Buses need more room than cars. Everyone can help keep our roads safe. Next time you're driving, remember to give buses plenty of time and space to finish turning before driving ahead. Let's all plan to share the road safely. Learn how at www.sharetheroadsafely.gov.
10: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
11: Oh, ouch.
10: However you make money work, we can work with that.
12: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
14: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
15: It's your boy,
14: just
15: Jay-Z.
14: Search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
16: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
17: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
18: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
16: मतलब
18: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
16: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
18: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
19: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
20: कूल फैंस, जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
19: कूल फैंस, स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
21: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
22: सिक्योरिटी!
11: Hey Priya, कैसा लगा मेरा स्टंट?
15: विक्रम, एक हिंट तो देते।
22: विक्रम!
15: हिंट।
11: बड़े आराम से।
23: ये थर्ड नहीं, 13 डिग्री का केस है।
24: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
23: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
25: समर कूल कूलर,
23: हवा अच्छी है ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
2: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
3: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
4: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
3: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
5: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
6: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
7: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
6: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
0: Vimal, bolo zuba kesri.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साईकुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
1: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
0: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान। पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक। सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर भी महामंथन। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा स्टूडेंट्स के साथ बड़ा धोखा। पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल। 12वीं के छात्रों से की बात। बंगाल में सियासी घमासान। अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला। सिर में चोट लगने का दावा। बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर। पिता समेत तीन और गिरफ्तार। पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। दिल्ली के मेहरूली में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 6। मलबे से निकाले गए 8 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। तपती जमीन और आग बरसते आसमान की कठिनाइयों के साथ मई का महीना विदा लेने को है, लेकिन जाते जाते ये महीना ये ऐलान कर रहा है कि चुनौतियां अभी और भी हैं। 47 डिग्री तापमान पर जलते चुभते दिन और 30 डिग्री से ऊपर के तापमान में उबलती रातों के बीच वैज्ञानिकों की ओर से संकेत ये भी मिल रहे हैं कि राहत के दिन करीब हैं, लेकिन मौसम विज्ञान एक अनुमान ये भी लगा रहा है कि आंधी तूफान के साथ आफत और भी बढ़ सकती है, यानी सावधानी का अलर्ट जारी है।
1: धूल भरी आंधियों ने शहर को अपने आगोश में ले लिया। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर उसमें समाया हुआ है। पास की वस्तु भी उस आंधी में दिखाई नहीं दे रही थी। पूरी तरह से शहर पीले पड़ गए थे, आसमान में कालापन हो गया था।
2: मौसम ने ऐसी करवट बदली है कि ऐसे ऐसे मंजर दिख रहे हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान हैं। कहीं अचानक ओलों की बरसात, कहीं आसमानी बिजली से तबाही, कहीं भयंकर तूफान और बारिश, तो कहीं कई कई फीट ऊंचे उठते पूरे शहर को अपने अंदर समेटते धूल के बवंडर। आसमान से पानी नहीं रेत बरसती देखिए।
3: इतना अनुमान नहीं था कि ऐसी आंधी आएगी। हमने तो जिंदगी में पहली बार ऐसी आंधी देखी है कि दिन के अंदर 2 बजे के टाइम में रात हो जाना, ये पहली बार देखा है।
2: सूरज की रोशनी की जगह धूल का धुंधलका,
4: बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था।
2: घर, मकान, मोहल्ला, शहर, पूरा प्रदेश जैसे धूल के पवंडर ने निगल लिया।
5: एक बार तो ऐसा माहौल हो गया था जैसे कि फुल काला काला, पूरा अच्छा घना अंधेरा हो गया था।
2: राजस्थान के चुरू और सरदारनगर में सामान्य गर्मी जैसा ही दिन था, लेकिन दोपहर के 2 बजते सूरज को धूल ने अपनी आगोश में ले लिया। ये ना अंधेरा था ना उजाला, लेकिन 2 कदम भी देख पाना मुमकिन नहीं था। गाड़ियों की लाइट्स जलानी पड़ी।
6: तूफान आंधी आई कि दिन में भी रात का सा नजारा देखने को मिल रहा था और दिन में ही गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ी।
2: और जोधपुर में तो मंजर और भी जुदा था। रेत की एक दीवार उठी और उठती चली गई। ये दीवार इतनी ऊंची उठी कि पूरा जोधपुर इसके सामने खिलौना लगने लगा।

0: राजधानी जयपुर, बीकानेर, नोखा, कुलायत और खाजुवाला में तेज हवाओं के साथ काले बादलों और धूल के गुबार ने भी दिन में ही रात जैसा मंजर दिखा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे रेत के तूफान पूरे राजस्थान को लपेट लेना चाहते हैं। इसीलिए एक के बाद दूसरे इलाकों में रेत का तूफान आगे बढ़ता रहा। ये तस्वीरें देखिए फतेहपुर शेखावटी की और अंदाजा लगाइए ये मौसम का कैसा मंजर है।
1: दिन में ही क्या हो गया, रात का जैसा माहौल हो गया जिसके कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त रहा।
2: यही था एकदम से बिल्कुल काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात होगी होती एकदम से, इतनी तेज अंधेरी थी।
0: सीकर चूरू में भी ऐसे ही रेतीले तूफान देखने को मिले। पाकिस्तान की तरफ से तूफान करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया और आधे घंटे तक पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तूफान रुका तो तबाही के निशान भी दिखे, कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं होर्डिंग्स ही पत्ते की तरह उड़ गए।
2: पर जो दरखत है छोटे छोटे वो इन्हें लगे, कुछ दरखत है वो टूट भी गए थे और जो काफी जैसे बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, होर्डिंग लगी होती है, वो भी टूट के नीचे आ गए थे।
0: तूफान के बाद गिरे ओले और बारिश से लोगों को राहत की सांस मिली। तापमान एकदम से कई डिग्री गिर गया।

0: स्थानीय लोगों में से कई ने दावा किया कि उन्होंने ऐसा भयावह रेतीला तूफान पहले कभी नहीं देखा था। घर के अंदर रखे सामान पर भी धूल की मोटी परतें जम गई।
1: हम आपको अब देश भर का मौसम कैलेंडर दिखाते हैं। कहीं हीट वेव से राहत का पैगाम लेकर बादल आए, कहीं तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। आंधी तूफान की दस्तक परेशानियां भी खड़ी कर रही हैं, तो कहीं प्री मॉनसून की बौछार से लोगों ने चैन की सांस ली है।
0: भीषण गर्मी से बेहाल देश को आखिरकार मौसम ने राहत की सौगात दे दी है। दिल्ली में झमाझम बारिश ने तपिश कम कर दी, तो पहाड़ों पर मई के आखिरी दिनों में भी बर्फबारी और बर्फीले नजारों ने लोगों को हैरान कर दिया। राजधानी से लेकर हेमकुंड साहिब और रोहतांग तक मौसम का बदला मिजाज लोगों को राहत भी दे रहा है और रोमांच भी। 46 से 47 डिग्री तापमान से पसीने छोड़ती दिल्ली के लिए मई खत्म होते होते राहत के दिन आ गए। बारिश की फुहारों ने दिल्ली को सराबोर कर दिया। बादल बरसे तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशगवार बना दिया।
2: से जो है तापमान जो है कम से कम 4-5 डिग्री गिर गया, तो अब ये होगा कि अब ये 40 से नीचे ही रहेगा, 40 से ऊपर नहीं रहेगा, तो हीट वेव से आपको निजात मिल गई, तो वो एक बहुत बड़ा रेस्पाइट है। और आने वाले दिनों में छुटपुट होगी, वो ज्यादा तो नहीं, छुटपुट डस्ट स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म जारी रह सकता है, कहीं कहीं हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। तो ये छुटपुट भी रहेगा तो थोड़ा सा रेस्पाइट रहेगा, जैसे कि मैंने कहा तापमान में गिरावट आएगी। मैं यदि सोचेंगे कि एकदम बिल्कुल कूल हो जाएगा, वैसा तो अभी टाइम लगेगा जब मानसून आएगा उस समय तक, पर कुछ दिन के लिए अभी ये कह सकते हैं आने वाले 3-1 दिन के अंदर छुटपुट ये रह सकती है एक्टिविटी और 40 से नीचे तापमान रहेगा।
0: दिल्ली को सुकून देती है बारिश, लेकिन कई पहाड़ी इलाकों में मुसीबत का कारण भी बन रही है। उत्तराखंड के चकराता में बारिश के कारण हुए भूस्खलन से मलबा पहाड़ी से सड़क पर आ गया और घंटों तक जाम के कारण हालात बद से बदतर होते चले गए। हालांकि तुरंत प्रशासन ने मलबा हटाने की कवायद भी शुरू कर दी। उत्तराखंड के चंपावत में श्री रेठा साहिब गुरुद्वारा में मेले के दौरान अचानक हुई बारिश से लदिया और रतिया नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे 50 से अधिक श्रद्धालु नदी के बीच फंस गए। पहले से तैनात SDRF टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस और प्रशासन की कोशिशों से यातायात भी सुचारू रूप से शुरू किया जा सका। राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। बदले मौसम से पहले हालात की एक और तस्वीर हेमकुंड साहिब से आई है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। रास्तों पर बर्फ और पाले की मोटी परत जम गई है, जिससे यात्रा चुनौतीपूर्ण बन गई है। हालांकि श्रद्धालुओं की आस्था के आगे मौसम की मुश्किलें छोटी पड़ती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर बिछी है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडी हवाएं, धुंध और बर्फीले नजारों के बीच पर्यटक गर्मी से राहत का आनंद ले रहे हैं।
3: फर्स्ट स्नो है ये, मैं पहली बार स्नो देख रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। ऑल्दो सुबह से इतना ट्रैफिक था कि हम थोड़े से परेशान शुरू में हो रहे थे, बट हम जब से मस्ती करते हुए आ रहे हैं तब से हमें बहुत मजा आ रहा है।
4: अच्छा माहौल है एकदम, मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो तुम नेचर से एक्सपेक्ट करते हो, मतलब वही, कभी स्नोफॉल हो रही है, कभी बारिश हो रही है।
0: मैदानी इलाकों में अब भी कई इलाके गर्मी की गिरफ्त में हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश का मौसम बदल रहा है। देश के कई हिस्सों से बिजली गिरने के कारण भी नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। ओडिशा के सुबर्णपुर जिले के कई हिस्सों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ आए शक्तिशाली तूफान ने व्यापक तबाही मचाई और लोगों में दहशत फैला दी। इस तूफान के दौरान सबसे चौंकाने वाली घटना एक पेट्रोल पंप पर देखने को मिली, जहां तेज हवाओं के कारण ढांचे का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तूफान अचानक आया और अपने साथ मूसलाधार बारिश, बिजली की कड़क और बेहद तेज हवाएं लेकर आया। घटनास्थल से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में मुड़ी तुड़ी लोहे की चादरें और परिसर में बिखरा मलबा दिखाई दिया, जो तूफान की भयावहता को बयां कर रहा था। झारखंड के गढ़वा में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इसी तरह से बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक से भी बिजली गिरने के कारण लोगों के मारे जाने की खबरें आई। मई महीने के अंत में बारिश का दौर भले ही शुरू हो गया है, लेकिन आने वाले दिन संकट के ही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों और इस साल के मॉनसून को लेकर कई पूर्वानुमान जताए हैं जो चिंता बढ़ाने वाले हैं।
5: पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतुनिष्ठ वर्षा दीर्घावधि औसत का 90% होने की संभावना है, जिसमें मॉडल त्रुटि प्लस माइनस 4% है। इसका अर्थ है कि 2026 के मानसून ऋतु यानी जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है।
0: मौसम की चुनौतियां अभी और बढ़ने का अनुमान लगाए जा रहे हैं, लिहाजा बेहद सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
1: बेतहाशा गर्मी के बाद बारिश हो जाए तो राहत जरूर मिलती है, लेकिन इसे मॉनसूनी बारिश समझने की गलती मत करिए। यह फौरी तौर पर थोड़ी राहत लेकर जरूर आती है, लेकिन धरती पर ऐसे पड़ती है मानो तपते तवे पर पानी के कुछ छींटे मार दिए गए।
0: मई महीने के आखिरी दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली और पिछले कुछ दिनों से जो भारत के नक्शे का रंग लाल था वो हल्का हो गया। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई जिलों में तेज आंधी बारिश की वजह से जो तापमान 45 पार कर गया था वो 35 के पास पहुंच गया और 1 जून तक मौसम विभाग के मुताबिक यही स्थिति रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा। पिछले कई हफ्तों से झुलसा देने वाली गर्मी और लू का सामना कर रहे थे उत्तर भारत के लोग। घर से बाहर निकलने की हालत नहीं थी, लेकिन जैसे ही राहत की बारिश हुई कई सवाल भी सामने आए। क्या प्री मॉनसून गतिविधियां तेज होंगी? क्या कुछ ही दिनों में मॉनसून दस्तक देगा? लेकिन मौसम विभाग के ताजा अनुमान इन उम्मीदों पर पूरी तरह मुहर नहीं लगाते। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी जो बारिश हो रही है वो स्थानीय मौसम प्रणालियों और पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव का नतीजा है। ये बारिश कुछ समय के लिए तापमान जरूर कम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी का संकट खत्म हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार जून महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। कई इलाकों में अधिकतम तापमान औसत से ऊपर रह सकता है। हीट वेव की घटनाएं भी सामान्य से ज्यादा देखने को मिल सकती है। यानी मई के आखिर में हुई बारिश के बावजूद जून का महीना लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है।
5: June 26 above north, the temperature also it is most of places is maximum temperature expected most of the places and except some parts of central and northwest east India the temperature will be maximum that is more than normal.
0: विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश के बाद तापमान में जो गिरावट आती है वो अक्सर अस्थायी होती है। जैसे ही आसमान साफ होता है और धूप निकलती है जमीन फिर तेजी से गर्म होने लगती है। कई बार बारिश के बाद नमी बढ़ने से उमस भी बढ़ जाती है, जिससे लोगों को और ज्यादा परेशानी महसूस होती है। मौसम विभाग की चिंता सिर्फ तापमान को लेकर ही नहीं है, बारिश को लेकर भी अनुमान बहुत बेहतर नहीं है। जून महीने में देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। कम बारिश का मतलब है कि जमीन को पर्याप्त ठंडक नहीं मिलेगी, इससे तापमान लंबे समय तक ऊंचा बना रह सकता है।
5: मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप भारत में लॉन्ग पीरियड एवरेज की 94% से लेस यानी सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है और उत्तर पश्चिम भारत में 92% से कम यानी वहां भी सामान्य से कम बारिश होने का ज्यादा संभावना है।
0: असली टेंशन मॉनसून के पूरे सीजन को लेकर है, क्योंकि खेती से लेकर पेयजल, बिजली उत्पादन और अर्थव्यवस्था तक सबकी नजर मॉनसून पर टिकी रहती है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। अनुमान के मुताबिक जून से सितंबर के बीच देश में औसत का लगभग 90% बारिश हो सकती है, यानी बारिश सामान्य स्तर से नीचे रहने का अनुमान है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में हर जगह सूखे जैसे हालात बन जाएंगे, लेकिन ये जरूर संकेत है कि कई क्षेत्रों में बारिश असामान्य रह सकती है।
5: मात्रात्मक रूप से देखें पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतुनिष्ठ वर्षा दीर्घावधि औसत का 90% होने की संभावना है, जिसमें मॉडल त्रुटि प्लस माइनस 4% है। इसका अर्थ है कि 2026 के मानसून ऋतु यानी जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है।
0: यानी अभी राहत की जो फुहारें महसूस हो रही हैं, वो स्थायी नहीं है। कुछ दिनों की राहत के बाद सूरज फिर से तेवर दिखा सकता है, इसलिए आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी और मौसम के बदलते मिजाज दोनों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि फिलहाल मौसम का संदेश साफ है, बारिश आई है लेकिन गर्मी अभी गई नहीं है।
1: मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से परेशान होकर लोग भागते हैं पहाड़ों की ओर, लेकिन उस चक्कर में पहाड़ों के ऊपर किस तरह का प्रेशर बन रहा है, किस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में गाड़ियां एक एक दिन में इन पहाड़ के डेस्टिनेशंस पर पहुंच रही हैं, उससे स्थिति और विकट होती जा रही है।

0: रोहतांग के पास बर्फ से लदी पहाड़ियों के बीच रास्तों पर गाड़ियों का ट्रैफिक जमा है। ORR ये हाल चमोली जोशीमठ का है, जहां दिन रात गाड़ियां चलती नहीं बल्कि रेंगती हुई नजर आती हैं। पहाड़ों में संसाधन सीमित होते हैं, कई छोटे शहरों की आबादी जितनी है उससे कई गुना ज्यादा पर्यटक वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे में पानी की सप्लाई चरमरा जाती है, स्थानीय लोगों को घंटों पानी का इंतजार करना पड़ता है, होटलों में पानी की खपत बढ़ जाती है।
1: नैनीताल और जो आसपास के शहर हैं वहाँ पार्किंग कैपेसिटी बहुत कम है। सीजन के समय पे गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं, इस समय काफी संख्या में जब टूरिस्ट आते हैं तो जो अंदर की जब पार्किंग फुल हो जाती है उसके बाद जो आउटर पेरिफेरीज में रूसी वन और रूसी टू दो डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस है, उन जगहों पे टूरिस्ट को रोका जाता है, वहां से जो स्थानीय शटल सेवा है उसके माध्यम से नैनीताल शहर के अंदर प्रवेश किया जाता है। ये व्यवस्था पूरे पर्यटक सीजन में रहेगी और सभी पर्यटकों से ये अपील की जाती है कि वो इसमें पुलिस का सहयोग करें।
0: इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक अगर छोटे से पहाड़ी स्टेशन पर रुकते हैं तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। बड़ी संख्या में कूड़ा कचरा और अव्यवस्थाओं से पहाड़ों का सिस्टम ही फेल होने लगता है।
2: 30 साल से रोहतांग में काम कर रहा हूँ, ट्रैफिक लगने के कारण मैंने कि पार्किंग नहीं होने के कारण मढ़ी से लेके ग्रामपुर के बीच में कोई पार्किंग नहीं है। अब गाड़ियां रोड में लगेगी, लोग रोहतांग पास घूमने आ रहे हैं तो गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, अब रोड में खड़ी करेंगे तो ट्रैफिक लग रहा है, नहीं खड़े को तो फिर वापस जाना पड़ रहा है, वहीं से फोटो 2 मिनट फोटो खींच के वहां से भाग रहे हैं।
0: निश्चित तौर पर पर्यटक बढ़ने से टूरिज्म बढ़ता है, स्थानीय आय बढ़ती है, लेकिन अब सैलानियों की संख्या और उनके कारण गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण इस स्तर पर पहुंच चुका है कि पहाड़ों का दम घुटने लगा है। स्थानीय लोग परेशान होकर शासन प्रशासन से अपीलें करने लगे हैं।
3: तो मैं घर से निकल गए थे भाई साहब 3 बजे, अभी मेरे को हो गया इधर 4:30 हो गया, तो 1.5 घंटा लगा मेरे को उधर से इधर आने में। यहाँ चौक पे तो इतना जाम है कि आदमी बीच में फंस गया तो ना इधर का ना उधर का कहीं नहीं जा सकता, वो बहुत बुरे हाल है।
4: काफी प्रॉब्लम आ रही है, रोड से निकलने में प्रॉब्लम हो रही है काफी, स्कूल वगैरह में जा रहे हैं, किसी काम से भी जा रहे हैं, काफी प्रॉब्लम आ रही है, पूरा रश हो रखा है, पूरा जाम हो रखा है सारे में यहाँ पे।
0: प्रकृति और पर्यटन के बीच अगर संतुलन नहीं बनाया गया तो पहाड़ी सुकून भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और ऐसे हालात में पहले से उत्पन्न पर्यावरण का संकट और बढ़ जाएगा।

0: commercial free. So you get more of today's hits. More Country Roads.
1: Thank God I get to wait.
0: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Sokudo.
3: आगे आगे
4: अरे उधर
3: उधर किधर
4: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
4: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
5: विक्रम, एक हिंट तो देते।
6: विक्रम!
5: हिंट।
7: बड़े आराम से।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट।
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
12: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
14: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
15: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
16: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
14: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
17: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
15: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
14: जहां खबर वहां खबरदार।
18: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: गंगा के तट पर बसा शहर समेटे संस्कृति, संघर्ष और स्वाभिमान, जहां उद्योग की ताकत भी है और राजनीति की गूंज भी। क्रांति की विरासत से लेकर आधुनिक विकास तक, जहां गूंजेगी विकसित यूपी की ऐतिहासिक बैठक। विकसित यूपी बैठक कानपुर, सिर्फ यूपी तक पर।
16: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था, दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है, सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान। पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक। सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर भी महामंथन। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा स्टूडेंट्स के साथ बड़ा धोखा। पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल। 12वीं के छात्रों से की बात। बंगाल में सियासी घमासान। अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला। सिर में चोट लगने का दावा। बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्य हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर। पिता समेत तीन और गिरफ्तार। पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। दिल्ली के मेहरौली में मारे ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 6। मलबे से निकाले गए 8 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने।

एक तो गर्मी और ऊपर से जंगलों में लगती हुई आग की चुनौती। किस तरीके से ये आग फैल रही है और कैसे उस पर काबू करने के प्रयास हो रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं।

0: पहाड़ों पर मौसम का मिजाज इन दिनों हैरान करने वाला है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं बर्फबारी हो रही है और कहीं जंगल धधक रहे हैं।
1: आज ग्राम सभा सिवरी के खपोगी गांव में बहुत जोरों शोरों से आग लगती हुई और
0: उत्तराखंड और हिमाचल के जंगलों में लगी आग ने प्रशासन से लेकर स्थानीय लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। हर साल गर्मियों में जंगलों में आग की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस बार कई इलाकों में हालात ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर जंगल की आग कब बुझेगी? देवभूमि उत्तराखंड के कई जिलों से इन दिनों जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चिंता बढ़ाने वाली है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ समेत कई जिले जंगल की आग की चपेट में हैं। दूर दूर तक धधकती लपटें दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों की ढलान पर फैला धुआं साफ बता रहा है कि बढ़ती गर्मी और सूखा मौसम जंगलों के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है।
2: आग की वजह से और जनता परेशान हो गई है ये धुआं से, और विभाग जो है इतना परेशान है, हर व्यक्ति को नजर रखना चाहिए। हर व्यक्ति और विभाग तो नजर रख ही रहा, लेकिन हर व्यक्ति को नजर रखना चाहिए कि जंगल में आग न लगाए।
0: कई इलाकों में आग इतनी तेजी से फैल रही है कि स्थानीय लोग भी असहाय नजर आ रहे हैं। वन विभाग की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पहुंचना आसान नहीं है। कई स्थानों पर आग बस्तियों के करीब पहुंच चुकी है, जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।

0: बहुत ज्यादा है, पूरे दो दो साइड से आई है आग, एक ही साइड से नहीं। इतनी तेजी से आग लग रखी है, इस जो धुआं है, इस धुएं के कारण से हम लोगों बीमार पड़ रहे हैं और गर्मी बढ़ रही है। और हम सुबह से आ रखे हैं यहाँ पे आग बुझाने के लिए, पर अभी तक आग का नाम बुझने का कहीं से नहीं। जब तक हम एक तरफ से आग बुझा रहे हैं, तब तक दूसरी तरफ से लग रहे हैं।
1: वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में चल रहे फायर सीजन के दौरान अब तक जंगल में आग लगने की 394 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। इन घटनाओं में 331 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। आग की वजह से वन संपदा को नुकसान पहुंचा है और कई स्थानों पर जानमाल का भी खतरा मंडराया है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि उस पर्यावरणीय संकट की कहानी है जो धीरे धीरे गंभीर रूप लेता जा रहा है।
2: यहाँ की जो आबो हवा है उसमें इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स और इस तरीके के प्रदूषण का होना यहाँ के इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है। और हमने लगातार देखा है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर एपिसोड्स हैं वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं और पूरी गढ़वाल घाटी में धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से वायु की गुणवत्ता खराब होने के कारण यहाँ पर स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही यहाँ की आबो हवा, यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में आग की बड़ी वजह चीड़ के जंगल है। राज्य के कुल सुरक्षित वन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा चीड़ के पेड़ों से ढका हुआ है। गर्मियों में इन पेड़ों से गिरने वाली सूखी पत्तियां जंगल की जमीन पर कालीन की तरह बिछ जाती हैं। ये पत्तियां बेहद ज्वलनशील होती हैं और थोड़ी सी चिंगारी भी इन्हें आग का ईंधन बना देती है। राज्य में लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा सुरक्षित वन क्षेत्र है। इनमें करीब 3,890 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीड़ के जंगलों का है। चीड़ की सूखी पत्तियां आग को तेजी से फैलाने का काम करती है। जंगलों की आग का असर सीधे पेड़ों तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर पर्यावरण, जंगल में रहने वाले जानवर और इंसानों पर दिखने लगता है। लेकिन इस संकट के बीच राहत की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि भी हुई है। हालांकि इसके बावजूद उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। अगले 3 दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना जताई गई है। उम्मीद की जा रही है कि मौसम का बदला हुआ मिजाज जंगलों की आग को काबू में लाने में मदद करेगा। हिमाचल प्रदेश के जंगल भी इन दिनों आग की मार झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा सोलन जिले के कसौली इलाके की हो रही है। यहाँ जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना तक को मोर्चा संभालना पड़ा है। कसौली के जंगलों में लगी आग इतनी भयावह है कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के जरिए झीलों से लगातार पानी भरकर जंगलों में गिराया जा रहा है। लेकिन गर्म हवाओं और सूखे मौसम के कारण कई जगह आग फिर सुलग उठी है। सोलन के अलावा मंडी, धर्मशाला, सिरमौर और दूसरे वन क्षेत्रों में भी जंगलों की आग लगातार चुनौती बनी हुई है।
3: पेड़ जल रहे हैं, चील का जंगल है, बाहरी चलारूप गिरा है, गर्मी ज्यादा तप रही है, इस कारण आग ज्यादा लग रही है। नहीं, कंट्रोल लगातार लगे हैं, देखते हैं कितना समय लगता है, ये मुझे पता नहीं है अभी कितना समय लग पाएगा।
1: राज्य के 11 आरक्षित वन क्षेत्रों में इस वर्ष अब तक 248 आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 241 घटनाएं 15 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच हुई है। मंडी वन क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, जहां 81 घटनाएं दर्ज की गई हैं। धर्मशाला वन क्षेत्र में 59 घटनाएं सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश में जंगलों की आग का दायरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल अब तक करीब 3,000 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में आग की घटनाओं से 23,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इस साल अब तक करीब 3,000 हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित हो चुके हैं।
4: ये जंगलों में आग देने की घटनाएं, ये जो है हर साल आप जब भी मौसम में जो है परिवर्तन होता है या ज्यादा गर्मी पड़ती है उस समय ये ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं। इसमें अभी तक जो है कोई 263 केसेस जो है रिपोर्ट की गई है और जो लैंड जिसको इफेक्ट हुआ है कोई जो है अगर हेक्टर के हिसाब से लें तो 3,000 3,500 हेक्टर के करीब जो लैंड जो है इससे प्रभावित हुआ है।
1: सरकार और वन विभाग इस चुनौती से निपटने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी उम्मीद आसमान से है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। माना जा रहा है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होती है तो जंगलों में धधक रही आग को काबू में करने में बड़ी मदद मिलेगी।
5: इस बार गर्मी से केवल भारत में लोग परेशान नहीं है, यूरोप की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहां पर गर्मी सालों के दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ रही है।

0: कहीं 37 तो कहीं 30 और कहीं कहीं 40 के तापमान को छूते आंकड़े चिंता की बात है, क्योंकि पश्चिमी देशों का बुनियादी स्ट्रक्चर इतनी गर्मी सहने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटेन में मई के आखिरी सप्ताह में तापमान सामान्यतः 20 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन फिलहाल 35 डिग्री को भी पार करता दिख रहा है, यानी सामान्य से करीब 15 डिग्री अधिक। इतना बदलाव वाकई चिंता की बात है। फ्रांस का हाल भी गर्मी से बुरा है। फ्रांस उबल रहा है और यहाँ भी तापमान सामान्य से 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ्रांस में इस तपती गर्मी को तेज और लंबे समय तक रहने वाली गर्मी बताया जा रहा है। स्पेन में हल्की गर्मी की शुरुआत जुलाई से होती थी, लेकिन इस बार मई में ही मौसम के बेहद गर्म मिजाज ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। 40 डिग्री से ऊपर जाता तापमान लोगों को परेशान कर रहा है। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं, लेकिन आसमान से जैसे आग बरस रही है। इस बार की गर्मी जर्मनी के लिए भी चौंकाने वाले संकेत दे रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मई के महीने में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। लोग वॉर पार्क्स या नदी झीलों के किनारे राहत की उम्मीद में जा रहे हैं, लेकिन गर्मी का प्रकोप झेल पाना आसान नहीं हो रहा।
1: Disons qu'on n'a pas trop le choix de le vivre en fait, mais pour le coup, ouais, c'est compliqué quoi. Rien que dans le tram, c'est chaud. Des fois, il y a pas la clim qui fonctionne aussi dans le tram, donc très vite, on peut étouffer. C'est assez étouffant en fait.
2: À mon époque, il y avait des étés, il y avait des printemps, des automnes et des hivers. Là, il y en a plus. Il y a 15 jours, on avait la petite laine, et puis là, il faudrait être en maillot quoi. Ça fait peur.
3: Yes, we were very careful to walk around in the shade, and we did less walking than we would normally do in the city on holidays.
4: Maybe unprecedented. It's this hot, this early in the year, and like I think we see more and more each and every year. So it's just a little concerning.
0: इटली के रोम में 38 डिग्री सेल्सियस का ऐलान करता ये बोर्ड लोगों की परेशानी का सबब है। हर तरफ लोगों को पानी की तलाश है। पानी बूंदें थोड़ी राहत तो देती हैं, लेकिन फिर गर्मी बरसाता सूरज हाल बेहाल कर देता है। पूरा यूरोप ही धधकती हुई भट्टी में तब्दील हो चुका है। वैज्ञानिक तरह तरह के इसके कारण और निष्कर्ष तक पहुँच रहे हैं और यूरोप के बदलते मौसमी व्यवहार से सख्ते में है।
5: Die größte Herausforderung ist, dass sich die Gerätschaften aufheizen. Ne? Jetzt hier so eine Brechstange, die in der Sonne liegt, die ist kaum noch zu halten. Und dann natürlich, dass die Sonne auf einen runterbrutzelt, man viel trinken muss. Da muss man schon auch drauf achten, das vergisst der ein oder andere Mal und wundert sich dann, dass er Kopfschmerzen hat. Das sind an solchen Tagen die größten Herausforderungen.
0: बढ़ती गर्मी यूरोप की पूरी जीवन शैली के लिए कठिन हालात बनाती जा रही है। 1990 के बाद से यूरोप सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन गया है और एशिया भी उससे ज्यादा पीछे नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बढ़ता हुआ औसत तापमान अब उन इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी योजनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है, जिन्हें पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हल्के मौसम के हिसाब से बनाया गया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी यूरोप के कई हिस्सों में अब भूमध्य सागरीय इलाकों जैसी गर्मी पड़ने लगी है, जबकि वहां के घर, दफ्तर और सरकारी इमारतें इतनी ज्यादा और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी को झेलने के हिसाब से कभी बनाई ही नहीं गई थी।
6: Cet épisode qui s'apparente de plus en plus à une vague de chaleur est particulièrement exceptionnel parce qu'il arrive à la fin du mois de mai, ce qui veut dire qu'on n'est même pas encore dans le début de l'été météorologique. C'est des températures qu'on n'a jamais observées au mois de mai et de jour en jour, en fait, on dépasse petit à petit les valeurs records qui datent finalement de la veille ou de l'avant-veille et on va toujours plus haut avec des températures souvent 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu au mois de mai.
0: सवाल ये उठ रहा है कि जो यूरोप मौसम के हिसाब से लुभावना समझा जाता है, वहाँ इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? इसके पीछे के मुख्य वैज्ञानिक और भौगोलिक वजहें बताई जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है हीट डोम का बनना। इस बार यूरोप में आई समय से पहले और तेज हीट वेव का सबसे बड़ा कारण हीट डोम ही है। जब वायुमंडल में अधिक दबाव का मजबूत क्षेत्र बन जाता है तो वो गर्म हवा को एक जगह पर रोक लेता है। ये बिल्कुल किसी पतीले पर रखे ढक्कन की तरह काम करता है। उत्तर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से उठी अत्यधिक गर्म हवाएं जब यूरोप के ऊपर पहुंची, तो इस उच्च दबाव वाले क्षेत्र ने उन्हें वहीं पर कैद कर लिया। इससे हुआ ये कि दबाव गर्म हवा को नीचे की ओर ढकेलता है, जिससे हवा और भी ज्यादा संकुचित होकर गर्म हो जाती है। इसके कारण आसमान साफ रहता है और तेज धूप सीधे जमीन को तपाती है। गर्मी से त्रस्त यूरोप की तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कार्बन उत्सर्जन पर जल्द ही वैश्विक स्तर पर लगाम नहीं लगाई गई, तो आने वाले सालों में यूरोप में मई का महीना ही नहीं बल्कि पूरा साल इसी तरह से जानलेवा मौसम का गवाह बनेगा, और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है।
7: संयुक्त राष्ट्र की नई जलवायु रिपोर्ट ने दुनिया को आने वाले खतरे को लेकर चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 सालों में पृथ्वी लगातार रिकॉर्ड गर्मी झेल सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोयला, तेल और गैस के बढ़ते इस्तेमाल से तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इससे बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2026 से 2030 के बीच तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने की आशंका 75% तक पहुंच गई है, जो मानव जीवन के लिए सीधी चुनौती है।

0: गर्मी का ये प्रकोप अब सिर्फ एक मौसम की बात नहीं रह गई है, बल्कि दक्षिण एशिया सहित पूरी दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी है। महासंकट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब कम समय बचा है संभल जाने के लिए। 2010 में जहां दुनिया की 23% आबादी अत्यधिक गर्मी से प्रभावित थी, वहीं 2050 तक ये आंकड़ा 41% तक पहुंच सकता है। इसका सीधा मतलब है कि करीब 3.79 अरब लोग, खासकर दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में भीषण गर्मी का सामना करेंगे। अगर सिर्फ अभी के हिसाब से भारत में देखें तो भारत की करीब 76% से 80% आबादी भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के 57% जिलों में अत्यधिक गंभीर स्तर यानी हाई टू वेरी हाई लेवल हीट का रिस्क है, जहां 3/4 भारतीय निवास करते हैं। बेतहाशा गर्मी का मौसम अपने साथ कई तरह की ऐसी आशंकाओं को बढ़ा रहा है जिनके बारे में मौसम वैज्ञानिकों ने पहले भी कई बार चेताया है। यहाँ तापमान बाकी दुनिया की तुलना में करीब 3.5 गुना तेजी से बढ़ रहा है। 2026 से 2030 तक आर्कटिक का तापमान औसतन 1.66 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है। समुद्री बर्फ पिघल रही है, बर्फ कम होने से सूरज की किरणें समुद्र में ज्यादा सोखी जाती हैं, जिससे और गर्मी पड़ती है। ये एक साइकिल बन गया है। सर्दियों में आर्कटिक पहले से भी ज्यादा गर्म रहेगा, जो पूरे विश्व के मौसम को प्रभावित करेगा। अमेजन पृथ्वी का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर मौसम को नियंत्रित रखता है। अगले 5 साल में अमेजन में असामान्य सूखा पड़ सकता है, इससे जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर अमेजन सूखा और जल गया तो वह कार्बन सोखने की बजाय खुद कार्बन छोड़ने लगेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो जाएगी और लोगों के लिए पानी की समस्या बढ़ेगी। पिछले 30 वर्षों में वर्षा के पैटर्न में भी बड़े बदलाव देखे गए हैं। IMD ने राज्यों और जिलों के स्तर पर वर्षा की परिवर्तनशीलता का विश्लेषण किया है, जिससे ये समझने में मदद मिलती है कि जलवायु परिवर्तन का असर केवल तापमान ही नहीं बल्कि वर्षा और कृषि पर भी पड़ रहा है। कुल मिलाकर बढ़ती गर्मी एक मौसमीय समस्या नहीं बल्कि वैश्विक संकट बनती जा रही है, जिसके लिए सरकार, वैज्ञानिक और आम जनता सभी को मिलकर काम करना होगा। देर हो चुकी है, लेकिन अब अगर समय रहते उचित समाधान नहीं किए गए तो जीवन ही संकट में पड़ जाएगा।
1: हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
4: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
5: प्रधानमंत्री जी ने खुद निर्देश दिए हैं और राजनाथ सिंह जी की क्या बैठक भी हुई और ये चिंता की जा रही कि अब ना लीक हो, जरूरत पड़े तो एयरफोर्स की भी जरूरत पड़े तो एयरफोर्स की भी यूज के हवाई जहाज भी यूज किए जाए ताकि किसी प्रकार से कोई लीकेज ना हो। परंतु अंतगत इसका सोल्यूशन है जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने शुरू हो।
6: कितनी बार सुना है आपने इस सरकार में? 12 वर्षों से मैं कम से कम 1200 बार सुन चुका अलग अलग मुद्दों पे। अब तो सुना है कि सेना की मदद लेने वाले हैं। मतलब दुनिया में हम अकेला देश होंगे जहां की परीक्षाएं भी हमारी सेना कंडक्ट करेगी। अरे सेना को तो बकस दीजिए महाराज, उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। सरहद संभाल रहे हैं, इस देश को सुरक्षित रख रहे हैं। आप एक परीक्षा तक नहीं करवा रहे। ऊपर से ये भी सुना है कि स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रील बनाओ ओएसएम के फेवर में।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान। पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक। सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर भी महामंथन। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा स्टूडेंट्स के साथ बड़ा धोखा। पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल। 12वीं के छात्रों से की बात। बंगाल में सियासी घमासान। अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला। सिर में चोट लगने का दावा। बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर। पिता समेत तीन और गिरफ्तार। पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। दिल्ली के मेहरूली में मारे ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 6। मलबे से निकाले गए 8 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने।
1: आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। 1992 यानी आज 34 साल पहले 40 साल की एक महिला गायब हो जाती है। उसके घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाते हैं। फिर धीरे धीरे वो मामला कहीं खो जाता है क्योंकि खुद घर वालों को पता नहीं था कि वो गुम कहाँ हुई, किस शहर में हुई, कहाँ होगी। लेकिन चूंकि वो मुंबई की रहने वाली थी इसलिए फैमिली ने मुंबई में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने भी ढूंढा लेकिन कुछ कामयाबी हाथ लगी नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, चीजें बदल दी गई। 92 के बाद 93 हो गया, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट, दाऊद इब्राहिम वाला, तो बहुत सारी चीजें बदली। फिर पुलिस एक महिला की गुमशुदगी के केस को कितना तवज्जो देती, वक्त के साथ वो सब कुछ भुला बैठी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इधर मुंबई से दूर अहमदाबाद में एक घर, और उस घर में एक भरा पूरा परिवार रहता है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। घर का जो मुखिया वो एक छोटा मोटा बिल्डर जो छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के काम करता था, नाम शमसुद्दीन। शमसुद्दीन की पत्नी, उसके बच्चे, उसके भाई भाभियाँ, पूरा भरा पूरा परिवार था। लेकिन 2010 के बाद अचानक इस फैमिली में कुछ अजीब सा एक चीज़ महसूस करते हैं पूरे फैमिली वाले। कभी कोई बीमार पड़ जाता, कभी अचानक कोई अजीब हरकतें करने लगता, रात को लोगों को घर के अंदर डर लगने लगता, कुछ लोगों को सपना आता कि कोई भूत है वो उन्हें मार देगा। पर बाकी घर वालों को जब ये बताया गया तब सबने कहा कि ये सब वहम है, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वक्त बीता लेकिन घर वालों का डर दूर नहीं गया। उन्हें हमेशा एक सपना आता कि एक कोई लड़की है या महिला है जो उनसे बदला लेना चाहती है, उन्हें मारना चाहती है, और वही इस घर के अंदर अजीब अजीब हरकत कर रही है। कई लोगों को तो घर के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। अब घर के अंदर मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, जब घर के अंदर बातें होती तो बच्चों तक पहुंची, अब बच्चे भी डरने लगे। अंधेरा होते ही पूरा घर ही अपने घर के अंदर ही डरने लगा। पर फिर भी अभी तक वो वहम मान रहे थे। लेकिन 2012 के बाद कुछ और चीज़ें हुई। 2012 के बाद अचानक घर में एक बीमार पड़ा, उसकी मौत हो गई। उसके कुछ वक्त के बाद उसी घर में एक और मौत हो गई। फिर 2015 एकदम ठीक ठाक हट्टा कट्टा घर का मालिक शमसुद्दीन एक रात सोया, सुबह उठा तो लोगों ने देखा, मतलब वो क्या उठा, उठा ही नहीं। जब देर हो गई उठा नहीं तो घर वालों ने जाकर उसे जगाने की कोशिश की, कोई हरकत नहीं। डॉक्टर के पास ले गए, पता चला शमसुद्दीन की भी मौत हो गई। शमसुद्दीन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। शमसुद्दीन की एक और रिलेटिव जो बराबर में रहती थी, एक रोज अचानक उसकी मौत हो गई। शमसुद्दीन का एक दोस्त, वो भी ठीक ठाक हट्टा कट्टा, उसकी मौत हो गई। अब 2 साल के अंदर जब 4-5 मौत हो गई इस घर और घर के जानने वालों की, तो घर वालों को लगा कुछ गड़बड़। सपना वैसे ही उन्हें आ रहा था, अब क्या करें। तो शमसुद्दीन के मौत के बाद घर वालों ने कहा कि इस घर को छोड़ देते हैं क्योंकि इस घर से अजीब अजीब आवाज आती है, रात को डर महसूस होता है, और सपने आ रहे हैं कि तुम वो सभी को इस घर में रहने वालों को एक एक कर मार देंगे। तो अपना घर, ठीक ठाक घर, इस दहशत और उस भूत के वहम की वजह से घर वालों ने छोड़कर बराबर में एक दूसरा घर ले लिया और इस घर को खाली कर दिया। अब वो दूसरे घर में रहने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन वो सपना और वो जो सारी बातें थी वो अब तक गई नहीं। इधर इस घर को छोड़ा वो अब खंडर होता गया, और जिस दूसरे घर में रह रहे हैं वहां वो भूत और वो ख्वाब पीछा नहीं छोड़ रहा है। परेशान हो गए। अब 2025-26 का साल आ चुका है, मतलब 15-20 बरस हो चुके हैं, और सपना और डर की बात 10 साल से ऊपर हो चुका है। 4-5 मौतें हो चुकी हैं, कई लोग अचानक बीमार पड़े हैं, कई अजीब अजीब हरकतें करने लगे हैं। घर वालों को पक्का लगा कि कुछ भूत का साया है उस घर में और उससे अब छुटकारा पाना चाहिए। तो घर के लोगों ने तय किया कि किसी तांत्रिक मौलाना या किसी ओझा इनको बुलाते हैं और पता करते हैं कि मामला क्या और कैसे ये डर और वो वहम दूर हो। तो उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तांत्रिक आया, उन्होंने पूछा, सवाल जवाब होता रहा, उन्होंने बताया किस तरह का डर, किस तरह के सपने, ये सारी बातें होते रही। वो जवाब देते रहे, फिर वो जैसा कहता रहा वो लोग करते रहे, तंत्र मंत्र, जादू टोना, दुआएं सब होती रही। फिर इसी दौरान एक दिन एक तांत्रिक ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, क्या इस घर में कभी कुछ ऐसा हुआ है, किसी के साथ जुल्म, किसी के साथ ज्यादती, कोई ना इंसाफी, या आपको लगता है कि कोई ऐसा दुश्मन जो आपसे बदला ले रहा या ले सकता है। और उसने कहा कि सच बताना, क्योंकि फिर तभी इसका इलाज कर पाएंगे, हम उसका फिर हल बताएंगे। घर के एक शख्स ने तांत्रिक से कहा, हाँ हुआ है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा असल में एक कत्ल हुआ था, लेकिन कत्ल कहीं और हुआ था, पर लाश इसी घर में दफन, इस घर के सेप्टिक टैंक में एक लड़की की लाश दफन है, और उसको हमारे भाई ने मारा था। और इस बात को तो बरसों बीत गए, 34 साल हो गए। अब उसने सिर्फ इस उम्मीद में कि तांत्रिक को ये बात बताएगा और तांत्रिक उसका हल बताएगा, और वो भी जो भी उस आंगन में सेप्टिक टैंक में जिसे मार कर दफनाया गया है वो उसका इलाज करेगा, ताकि वो घर वालों का पीछा छोड़ दे। और फिर इस उम्मीद में भी कि जिसने कत्ल किया वो 2015 में उसकी खुद मौत हो गई है, तो अब तो पीछा छोड़ दे, जिस कातिल ने कत्ल किया उससे तो बदला ले लिया, जो उसका एक दोस्त जो इस कत्ल में शामिल था उसकी भी मौत हो गई, तो उसको भी भाई अब तो बख्श दो। जिस घर में कत्ल किया गया था उस घर की जो मालकिन है उसका भी, उसकी भी मौत हो गई है, तो उसके कत्ल से जुड़े जितने कैरेक्टर थे एक को छोड़कर सभी की मौत हो चुकी, लेकिन पूरा घर परेशान है। सिर्फ एक भाई है जो अभी तक बचा है, हालांकि उसने कत्ल नहीं किया, लेकिन कत्ल के बाद लाश को छुपाने में उसने मदद की थी। तो ये बात उसने तांत्रिक को बताया। इस दौरान में हुआ यह कि जब तंत्र मंत्र घर के अंदर होने लगा, एक मोहल्ले में इस तरह की चीजें, कोई तांत्रिक आया और इस तरह की चीजें हों तो आस पड़ोस के लोगों की भी नजर पड़ती है, और ये तंत्र मंत्र ऐसी चीजें हैं जो रात के अंधेरे में की जाती है, तो वो धूप बत्ती और बाकी सारी चीजें, तो कुछ पड़ोसियों को भी शक हुआ, और उन्हीं पड़ोसियों में एक मुखबिर भी था जो पुलिस को जानता था, पुलिस के लिए काम करता था। उसने पुलिस से कहा कि अचानक हमारे पड़ोस के घर में एक अजीब तरह की तंत्र मंत्र की चीजें चल रही हैं और लोग डरे हुए हैं, और इस परिवार में कई मौत हो चुकी है, वो मौत भी अब शक के घेरे में है, तो इसकी आपको जांच करनी चाहिए। अब अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच को यह खबर मिली उस मुखबिर से। क्राइम ब्रांच की टीम को भी अजीब लगा कि एक पढ़ी लिखी बस्ती में इस तरह के तंत्र मंत्र की चीजें चल रही है, तो मामला है क्या। अब सादी वर्दी में पुलिस वालों ने उस घर के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। जब नजर रखनी शुरू की तो उन्होंने पाया कि मुखबिर की खबर सही थी, यहां कोई तांत्रिक आता है और कुछ अजीब तरीके के तंत्र मंत्र करता है। फिर एक रोज मौका देखते ही पुलिस ने उस तांत्रिक को बुलाया पूछताछ के लिए, और उसने कहा कि सच सच बताओ कि इस घर में ये तंत्र मंत्र, जादू टोना तुम किस लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो और क्या वजह है जो कर रहे हो। तांत्रिक सच बोल बैठा। उसने कहा साहब, इस घर के एक शख्स ने मुझे बताया कि यहां एक लाश दफन है और 34 साल पुरानी बात है, 34 साल से इस घर के आंगन के सेप्टिक टैंक में एक लाश दफन है और इस घर के लोगों को पिछले कुछ सालों से अजीब अजीब सपने आ रहे हैं और ये डर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मरने वाली उनके सामने खड़ी है। तो यहाँ तक कि रात को लोग अपने बेडरूम से बाहर निकलने से भी डरते हैं, वॉशरूम तक जाने से डरते हैं। और फिर इस घर में कई ऐसी चीज़ें हुई, कुछ बीमार पड़ गया, कोई ठीक ठाक था, अचानक उसकी मौत हो गई। तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ होने लगी तो उन्हें यकीन हो गया कि कुछ तो है और कोई बदला लेना चाह रहा, और वो भाई भूत है जिसका कत्ल हुआ। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चली तांत्रिक से, तो अब सवाल ये कि सिर्फ तांत्रिक के कहने पर कैसे यकीन किया जाए। और दूसरा, भूत प्रेत कानून की किताबों में तो कहीं जिक्र नहीं है। तीसरा, 34 साल पहले पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पता करना शुरू किया, भाई आस पड़ोस में कोई लड़की गायब है, कोई महिला गायब है, तो बताओ पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए 1992 के, बट उस वक्त ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली। इस परिवार के लोगों के रिश्तेदारों की भी पूरी कुंडली चुपचाप से निकाली गई, क्योंकि कोई ऐसी मौत हुई हो जिसको दबाया गया या कोई गायब हुआ, कहीं पुलिस में कंप्लेंट, कोई कामयाबी नहीं मिली। मतलब कहीं कोई गायब नहीं, कोई गुम नहीं, कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं, लेकिन तांत्रिक बता रहा कि 34 साल से इस घर के अंदर एक लाश दफन है। तब पुलिस ने आखिरकार इस घर में रहने वाले इकबाल नाम के एक शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया। इकबाल शमसुद्दीन का छोटा भाई था, वही शमसुद्दीन जिसकी 2015 में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और उसने उससे पूछा कि ये तुम तंत्र मंत्र क्यों कर रहे हो। इकबाल घबरा गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस तक ये बात पहुंचेगी। उसने फिर यही कहा कि साहब हम लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, अजीब अजीब तरह से घर के लोगों को कोई डरा रहा है, हमें खुद पता नहीं, तो हमने इसीलिए तांत्रिक तंत्र मंत्र और झाड़ फूक करा कर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। यहाँ तक कि इस डर और दहशत की वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा और वो घर कई सालों से खाली है, अब लोग उसे भूत बंगला तक कहने लगे। तो घर है अब भूत बंगले के चक्कर में खाली है, तो एक बार वहां से वो दहशत और डर दूर हो जाए तो हम सब वापस अपने उस घर में लौट आए। बस इसीलिए तांत्रिक को बुला रहे हैं। फिर पुलिस ने कहा कि नहीं, तांत्रिक से तो तुमने ये कहा कि यहाँ एक लाश दफन है, क्योंकि तुम लोगों को उसका उपाय करना था और उसके लिए तुमने सच बोल दिया। तब पहली बार इकबाल घबराया और उसने कहा हाँ ये सच है, घर के आंगन में एक लाश दफन है। अब इकबाल के कहने पर भी एक कत्ल का केस दर्ज तो हो नहीं सकता, क्योंकि 34 साल पुराना मामला है, लाश या लाश के सबूत भी मिलने जरूरी है। ये बात अभी पिछले महीने 30 अप्रैल के आसपास की है। तो जब खुद इकबाल ने यह माना, तांत्रिक बोल चुका है, घर में कई हादसे हो चुके हैं, आज के दौर में कोई सिर्फ वहम की खातिर अपना अच्छा खासा घर छोड़ दे, घर को वीरान छोड़ दे, ये बात भी खटक रही थी, तो पुलिस ने तय किया कि चलो इस घर की खुदाई करते हैं। जेसीबी मशीन मंगाई गई और इस घर के आंगन की खुदाई की गई जहां पर सेप्टिक टैंक हुआ करता था। कई घंटे तक खुदाई चली। कई घंटे की खुदाई के बाद मिट्टी से पुलिस को कुछ सबूत मिले, 5 इंसानी दांत और हड्डियों के चंद टुकड़े। दांत देखकर साफ पता चल रहा था कि इंसानों के दांत हैं। हड्डियों के टुकड़े भी पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया। अब यह तो तय था कि यहां पे कोई लाश थी, क्योंकि सबूत अंदर से बाहर आ चुके थे। लेकिन यह लाश किसकी है, कौन है वो, ये कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि जिसे मारा गया पहले उसकी आइडेंटिटी तो हो कि वो है कौन, और बिना डीएनए के कैसे पता करेंगे। तो फिर पूछताछ हुई, तब इकबाल ने कहानी सुनाई, और जो पूरी कहानी थी वो कुछ यूं थी। 1987-88 का दौर रहा होगा, 1987-88। अहमदाबाद का रहने वाला शमसुद्दीन, जो एक छोटा मोटा बिल्डर था, तब मुंबई में नौकरी किया करता था, बल्कि नौकरी किया यही अपना काम किया करता था, कंस्ट्रक्शन का। और मुंबई में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था फरजाना। फरजाना भी थी गुजरात की, अहमदाबाद की, लेकिन फैमिली सेटल हो गई मुंबई, तो वो भी चली गई। तो मुंबई में दोनों की मुलाकात हुई। शमसुद्दीन और फरजाना की। मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हो गया। अब चूंकि शमसुद्दीन मुंबई में ही रहता था, वहीं काम करता था, तो उसने अपना किराए पर एक अपार्टमेंट ले रखा था। कुछ वक्त के बाद अब फरजाना उसी के साथ उसी अपार्टमेंट में लिव इन में रहने लगी। 1987-88 की बात है, तब भी लिव इन हुआ करता था। हालांकि शमसुद्दीन की शादी हो चुकी थी और उसकी वाइफ अहमदाबाद में थी और ये बात फरजाना को मालूम थी। अब दोनों लिव इन में रहने लगे। करीब 4 साल इनके रिश्ते को हो गए। इन 4 सालों में अब फरजाना ने, जो कि एक बीवी की तरह रह रही थी शमसुद्दीन के साथ, धीरे धीरे उसने अपने बीवी होने का हक मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा, जो कुछ तुमने अपनी पहली बीवी को जो प्रॉपर्टी या बाकी चीजें दी है, उसके नाम की है, जो जेवर दिए है, मैं भी हकदार हूं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी बीवी बीवी की तरह रहती हूं, तो मुझे भी प्रॉपर्टी में वो हिस्सा चाहिए। शुरू में शमसुद्दीन उसको टरकाता रहा, लेकिन ये बात बनी नहीं और अब जब भी मिलते दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होता। अब शमसुद्दीन फरजाना से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फरजाना अड़ी हुई थी कि मुझे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए जो तुम्हारी पहली बीवी को मिला है। 1992 जुलाई या अगस्त के महीने की बात थी, और यह भी बताया उसने कि उस रोज बारिश हो रही थी। फरजाना अचानक मुंबई से अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद पहुंचने से पहले उसने शमसुद्दीन को खबर कर दी थी कि मैं अहमदाबाद आ रही हूं, तुमसे मिलूंगी और इस बार फाइनल है कि तुम कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे जो तुम्हारी जिस तरीके से पहली बीवी के तुमने नाम कर रखा है, और वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी, हंगामा कर दूंगी। शमसुद्दीन डर गया। उसने कहा, अच्छा तुम आओ। वो गया स्टेशन, उसे लेने आए। लेने के बाद अब वो उसे अपने घर ले जाने की बजाय अपने एक दोस्त के घर वहां ले गया। वहां ले जाने के बाद उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फरजाना इस बार ठान कर आई थी कि वो फाइनल बात करके जाएगी और अपना हिस्सा लेकर जाएगी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के दौरान गुस्से में शमसुद्दीन ने फरजाना का गला घोंट दिया। फरजाना की मौत हो गई। अब जब मौत हो गई तो शमसुद्दीन घबराया, क्या करे। जिस दोस्त का घर था वो एक महिला थी, शलिया बीवी नाम, तो घबरा गया क्या करे। तब उसने अपने भाई इकबाल और अपने एक दोस्त अब्दुल को इस बारे में खबर दी। उसने उन दोनों को घर बुलाया जहां उसने कत्ल किया और बोला, इस तरीके से मेरे हाथ से ये कत्ल हो गया क्योंकि ये आ गई थी, मेरे घर पहुंच जाती, मेरा घर टूट जाता, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी, तो अब ये बताओ कि क्या करें। फिर ये तय हुआ कि उस वक्त उसके घर के ज्यादातर लोग कहीं और थे, किसी फंक्शन में गए हुए थे, तो उसने कहा कि चलो अपने घर में इसे दफना देते हैं। घर के आंगन में एक सेप्टिक टैंक बनाना था जो रुका हुआ था। उसने उसी रात मजदूरों को बुलाया और कहा, घर के अंदर गड्ढा खोद दो सेप्टिक टैंक के लिए। मजदूर आके उन्होंने गड्ढा खोद दिया। इसके बाद अब्दुल इकबाल और शमसुद्दीन तीनों ने मिलकर फरजाना की लाश उस घर से निकाली और अपने घर ले गए। अपने घर ले जाने के बाद उन्होंने उसे उसी सेप्टिक टैंक में घर के आंगन में दफना दिया, मट्टी वट्टी बराबर कर दी और फिर सब अपने अपने रास्ते हो गए। इधर मुंबई में फरजाना जब गई और लौटी नहीं, एक दो दिन हो गए, तो घर वालों को फिक्र हुई। उन्होंने मुंबई के पुलिस स्टेशन में जहां वो रहते थे रिपोर्ट लिखा दी। अब मुंबई पुलिस उसे मुंबई में ढूंढ रही, और कोई खबर नहीं। उस वक्त मोबाइल और सीसीटीवी कैमरे ये सब तो होते नहीं थे कि जिससे सुराग मिले। और दूसरा कि फरजाना और शमसुद्दीन के रिश्ते के बारे में या शमसुद्दीन के बारे में फरजाना के घर वालों को भी कोई जानकारी नहीं थी। तो जब शमसुद्दीन के जानकारी नहीं, तो ये भी पता नहीं कि वो कहां रहता, उसका घर कहां है। तो इसी वजह से मुंबई पुलिस ने कभी अहमदाबाद का रुख ही नहीं किया। वो मुंबई में ढूंढती रही, हर जगह उसने तस्वीरें सर्कुलेट कर दिया, लेकिन फरजाना मिली नहीं। और धीरे धीरे वक्त बीता, फरजाना को पुलिस भूल गई। अब इधर फरजाना शमसुद्दीन के आंगन में दफन है। अब शमसुद्दीन अपने परिवार के साथ उसी घर में रह रहा है। शमसुद्दीन और उसके भाई को यह पता है कि इस आंगन में एक लाश है। फिर धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी, आवाजें आने लगी, लोग डरने लगे, सपने आने लगे। तो इसी बीच में शमसुद्दीन ने अपने घर के कुछ लोगों से भी ये बात शेयर की कि इस तरीके से इस घर में एक लाश दफन है, पर कोई किसी को बताएगा नहीं। तब तक सभी खामोश थे, लेकिन फिर एक एक कर जब घर में और रिश्तेदारों में मौत होने लगी, जिस घर में कत्ल हुआ उस घर में शलिया बीवी उसकी मौत, जो दोस्त था अब्दुल उसकी मौत, और फिर 2015 में खुद शमसुद्दीन की मौत, इसके अलावा एक दो करीबी रिश्तेदारियों की मौत, और सबकी मौत एकदम अजीब तरीके से, मतलब एकदम ठीक ठाक सब कुछ। हालांकि हो सकता है ठीक ठाक आदमी को भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है, लेकिन जब एक सारे मौत होने लगे और घर के लोग बीमार होने लगे और अजीब अजीब सपने आने लगे, तब लोगों को लगा कि शायद ये सब कुछ उस आंगन में दफन लाश की वजह से हुए जो भूत बनकर बदला ले रही। और ये बात खासतौर पर शमसुद्दीन का भाई

0: साल पुराने सारे सबूत, राज, एविडेंस आपको कलेक्ट करने हैं और एक मजबूत केस भी तैयार करना है। तो वो पांच दांत और चंद हड्डियां, उनके सहारे डीएनए, और डीएनए से ये मिलान कि ये फरजाना ही है, और उसके बाद कत्ल का मकसद और कत्ल के बाद लाश को छुपाने में मदद करने के गुनहगार, जो फिलहाल एक ही बचा है। तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सामने ये एक चुनौती है केस, और इसी चुनौती का इस वक्त वो सामना कर रहे हैं, और इस केस की जांच अभी जारी है। तो ये थी कहानी उस फरजाना की, जो 34 साल तक एक आंगन में दफन होकर भी कम से कम उस घर वालों की नज़र में उन्हें वो डराती रही, और आखिर में अपने ही कत्ल का खुलासा कुछ इस अंदाज में कर दी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Hey Buena.
4: La Que Buena.
3: ESPN Radio.
5: We know LeBron has to be the best player on the planet to
3: get The Daily.
6: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान। पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक। सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर भी महामंथन। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा स्टूडेंट्स के साथ बड़ा धोखा। पीएम मोदी की चुप। तो आज सीबी एक बार फिर से चैंपियन बन गए हैं और एक बार फिर से विराट कोहली क्रीज पर खड़े थे और जीत के साथ आरसीबी दूसरी बार चैंपियन बन गए हैं। आरसीबी वो जीत महज इत्तेफाक नहीं थी, 18 सालों के बाद जो आई थी, लंबे इंतजार के बाद जो आई थी, और विक्रांत चैंपियन बन गए हैं, महज इत्तेफाक नहीं है।
1: मैं
0: टैलेंट बहुत था।
1: नहीं, मैं तो ये कहता हूँ राजीव, इनको पहला टाइटल जीतना था जो लास्ट ईयर जीत गए, उसके बाद आप इनको रोक नहीं सकते। और आप देखें, आपने लीग टॉप किया, आपने क्वालिफायर वन जीता, और जो क्वालिफायर वन जीतता है ना, वो तो आपको आंकड़ों के जरिए भी पता है कि चैंपियन वही होता है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि फाइनल एक तरफा हुआ है। गुजरात जो कि नंबर दो टीम थी, अपने घर पे खेल रही थी। आई थिंक कहीं ना ये मानना होगा, शुभमन गिल के आउट होते ही उन्होंने हथियार डाल दिए। अगर फाइनल मैच 40 ओवर का होता है, तीसरे ओवर में अगर आप हथियार डाल दो, अपने बैटिंग ऑर्डर को बदल दो, आपने सिर्फ 155 रन बनाए, भले ही आपको विकेटें मिल गई हो, भले ही वो पिच इतनी आसान नहीं थी, लेकिन विराट कोहली खड़े थे ना, और एंड में क्या हुआ, उन्होंने छक्का मार के इस मैच को जीता। 75 नॉट आउट, 75 नॉट आउट। लेकिन बड़ी बात, जैसे राजीव ने कहा, बैक टू बैक आरसीबी की दो टाइटल्स। मैं तो ये कहता हूं कि आज के मैच को देखकर आईपीएल की आरसीबी है ऑस्ट्रेलिया ऑफ ओल्ड, पुराने जमाने का ऑस्ट्रेलिया होता ना, बड़ा मैच है तो हम ही जीतेंगे। और गुजरात को यह कहना होगा कि गुजरात शायद इंडिया ऑफ ओल्ड है, कि बड़ा मैच है और बड़े मैच में हमारे हाथ पर भूल गए।
0: मतलब आरसीबी नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाला, मतलब
1: पुरानी ऑस्ट्रेलिया, नई इंडिया, और गुजरात जो है वो पुरानी इंडिया की तरह खेला। लेकिन इस वक्त जो आप माहौल देख रहे हैं, मतलब पिछली बार तो खैर बहुत ज्यादा इमोशनल था राजीव, विराट रो रहे थे। इस बार क्या होता ना, एक बार हम जीत चुके हैं भाई, इस बार नहीं जीतेंगे तो वो मतलब शॉकिंग होगा।
0: लेकिन आप क्या विक्रांत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इतना वन साइडेड हो जाएगा?
1: नहीं, फाइनल कभी वन साइडेड आप एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन आपको याद होगा राजीव, 2024 का फाइनल भी ऐसे ही था। हैदराबाद ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली थी उस साल, लेकिन वो फाइनल में 113 ऑल आउट हो गए और कोलकाता नाइट राइडर्स ने आराम से चेज कर दिया। ये मैं आपकी बात मानता हूं कि आईपीएल का मतलब है एक्साइटमेंट, और इस साल तो एक्साइटिंग क्रिकेट हुई है। लेकिन भाई आज जो है ना, आज का मैच वाकई बड़ा बोरिंग हुआ है।
0: बहुत, इसमें तो कुछ रहा। नितिन के पास चलते हैं जो कि इस समय ग्राउंड के बाहर मौजूद है। नितिन, आरसीबी के फैंस चाहते थे कि वो जीते और आरसीबी जीत गई है, और एक तरफा जीत गई, डोमिनेट करते हुए, ध्वस्त करते हुए जीत गई है।
1: मुझे नहीं लगता कि दर्शकों के इस शोरगुल, इस जश्न के बीच नितिन को हमारी आवाज आ रही। नितिन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नितिन, क्या आपको आवाज आ रही है? नहीं नहीं नहीं नहीं, 130,000 लोग हैं उस मैदान में, और वो लोग बाहर आना शुरू हो चुके राजीव। वहां पर तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीती है। और देखिए, गुजरात का मैच था, गुजरात का स्टेडियम था, 80% लोग आज जर्सीज जो है वो आरसीबी की पहन के गए थे, 18 नंबर विराट कोहली की पहन के गए।
0: लेकिन विक्रांत, मैच क्या आरसीबी वहीं पर हार गई थी जब शुभमन गिल आउट हुए, या मैच में उसके बाद भी थे?
1: बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने हार मान ली थी। मतलब मैं हैरान हूं, क्योंकि आजकल आप क्या होता है ना, T20 में आपको दूसरी पारी तो मिलती नहीं है, आपको T20 में कोई दूसरी इनिंग नहीं मिलनी है, ये नहीं है कि रीबिल्ड करें। मुझे हैरानी हुई, उन्होंने बैटिंग ऑर्डर बदल दिया, उन्होंने निशांत सिंधु को भेज दिया। तीसरे ओवर में अगर शुभमन गिल आउट हो गए हैं तो आप हथियार नहीं डाल सकते। नितिन भाई, आपकी प्रेडिक्शन सही, बिल्कुल आरसीबी जीत गया एक तरफा।
2: देखिए, आरसीबी जरूर जीत गया है, आरसीबी ने टाइटल भी किया है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि आरसीबी ने जैसा खेला वो एक्चुअली डिजर्व करते थे। और यहाँ पर इस वक्त जो फैंस आपको नजर आ रहे हैं, इन सबको सुबह से इस बात का यकीन था कि अगर कोई टीम इस मैदान पर टाइटल जीत सकती है वो है आरसीबी। आप यकीन मानिए कि यहाँ पर लगभग 130,000 के आसपास के फैंस उमड़े थे इस मैच को देखने के लिए, जिसमें से लगभग 1,00,000 लोग आरसीबी के समर्थक थे। और ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि आरसीबी का असली मैदान शायद बेंगलुरु नहीं, अब अहमदाबाद के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जब जब अहमदाबाद के अंदर में फाइनल मैच होता है और वहां पर होती है आरसीबी, सामने चाहे कोई भी टीम हो, विजेता आरसीबी होती है। ये जस्ट इस बात की गवाही है और इस मैदान को हमेशा याद रखा जाएगा कि पहली बार एक ऐसी टीम निकल के आई जिसके पास ट्रॉफी का सूखा था, जीत ही नहीं पा रहे थे और अब लगातार बैक टू बैक दो ट्रॉफी इस टीम ने अपने नाम कर ली है। मैं फैन से बात करता हूँ, ये कितनी बड़ी, क्योंकि दो बार लगा था, दो बार
3: भी दो साल हमने
2: ये विराट कोहली ने जैसे मैच को फिनिश किया है, आपको
3: बोले आरसीबी
4: चकला कोई डालो आज ना बना, आरसीबी कोई डालो आज ना बना, चकलियो
2: विराट कोहली ने जो आज पारी खेली है, मतलब विराट कोहली कह रहे हैं एक मिनट विराट कोहली ये कह रहे हैं कि एज गई साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूँ यहाँ
5: कम कम तू सारा कम
2: भुवनेश्वर कुमार को क्या कहोगे भाई, इस यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा रोल है।
5: इस साला कम नम दू दो
3: विराट कोहली वकीलों को क्रेज पसंद है और विराट कोहली को जेल पसंद है। आरसीबी
5: जीती की चकलियों नहीं आ सकते आरसीबी के पास, जीती की चकलियों नहीं आ सकते।
6: विराट कोहली जिंदाबाद, आरसीबी जिंदाबाद,
3: जिंदाबाद है,
7: किंग सिर्फ एक ही है, विराट कोहली सिर्फ एक ही किंग है, विराट कोहली।
3: ए बाप बाप होता है, बेटा बेटा है, जीती नहीं चकलियो
6: गुजरात, यहीं पे गुजरात टाइटन घोरा का आरसीबी चैंपियन,
7: क्रिकेट का एक ही बाप है विराट कोहली।
2: देखिए यहाँ पर
8: आरसीबी
2: जीत गई। सो देखिए बहुत साफ है,
3: होम ग्राउंड पढ़ाइया जीटे नुड़ाइया कोई भी जगह जो ले जो आरसीबी या दूजो अभी
8: लॉलीपॉप लेता जैसे लॉलीपॉप लेता जैसे भूलता नहीं।
2: सिंपल सा कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन आरसीबी विराट कोहली इस साल कप नाम दे, मतलब इस साल कप फिर नाम दे।
0: 2025 में पंजाब को पीटा था और इस कारना को आगे बढ़ाया और गुजरात को 2026 में भी हरा दिया है। और इंटरेस्टिंग ये है कि एक बार फिर विराट कोहली वहीं पर थे, यानी कि कभी एक ट्रॉफी के लिए विक्रांत तरसने वाली टीम, मतलब 2018 में जीत गई और 18 सालों के बाद जीत गई और एक बार फिर से जीत गई है, बैक टू बैक जो है जीती है। इस जीत में विराट कोहली को क्रेडिट दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा भुवनेश्वर कुमार के बारे में बात करें।
1: भुवनेश्वर देखिए अनफॉर्चुनेटली उनको पर्पल कैप नहीं मिली क्योंकि रबाडा उनसे एक विकेट आगे चले गए, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना आप, और ये आपको आंकड़े भी बताते हैं कि ऑरेंज कैप जिसको मिलता है आमतौर पर उसकी टीम आईपीएल नहीं जीतती है, लेकिन पर्पल कैप वाले की टीम अमूमन आईपीएल जीत जाती है। यानी कि रबाडा ने आज 30 विकेट लिए हैं, रबाडा तो खैर आगे चले गए, लेकिन अगर आप देखें भुवनेश्वर कुमार बस एक विकेट पीछे, लेकिन पर्पल कैप छोड़िए उन्होंने मतलब यह बताया कि मेरे में अभी भी दम है। बाय द वे वो हैदराबाद के साथ भी आईपीएल जीते हुए हैं, वो 2016 में आईपीएल हैदराबाद के साथ जीते थे, अब दो मर्तबा वो बैक टू बैक जीत चुके हैं आरसीबी के साथ। लेकिन विराट कोहली अब देखिए आज भी उनकी आंखें थोड़ी सी नमी आंखों में आज भी दिख रही है, मतलब पिछली बार तो ही एक्चुअली क्राइड वो रोना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी मैं तस्वीर जो देख रहा हूं या तो पसीना बड़ा आ रहा है, गर्मी में एफर्ट है, 75 रन की पारी खेली है और इस साल आरसीबी ने क्रिकेट ही ऐसी खेली लगातार, जहां पर आपको किसी स्टेज पर देखिए पूरा आईपीएल जो था वो टॉपसी टर्वी था, राजीव पंजाब खेल रहा है, पंजाब जीत रहा है, फिर दिल्ली जीत रहा है, लेकिन आपने क्या देखा, नीचे से गुजरात आया, हैदराबाद आया, राजस्थान भी नीचे से आया, एक टीम कॉन्स्टेंट थी जिसका नाम था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और मैं फिर वही कहता हूं कि आरसीबी जो पिछले साल टाइटल खेलने के बाद वो पुराने जमाने की ऑस्ट्रेलिया हो गई, हम चैंपियन है, अच्छा देख लेना यार फाइनल में कौन आएगा। और कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली गुजरात के लिए वो पुराने जमाने की इंडिया की तरह खेलती है, बड़ा मैच उनके हाथ पर फूल गए। आज गुजरात के पास मौका था, लेकिन वो जो आपने बोला ना भुवनेश्वर कुमार हेजलवुड, वो हुआ था वो राजीव हुआ था, उन्होंने क्या किया, उनका कप्तान आउट हुआ, उन्होंने तीसरे ओवर में निशांत सिद्धू को भेज दिया, यानी कि उन्होंने शटर डाउन कर दिया, उन्होंने सामने वाली टीम आरसीबी को यह मैसेज दे दिया हमसे ना हो पाएगा। और अंत में क्या हुआ, अगर 20 रन और होते तो शायद आरसीबी इस मुकाबले को ना जीतता, बट 20 रन गुजरात ने बनाने थे वो बनाए नहीं।
0: इसमें तो कोई दो राय नहीं कि गुजरात टाइटंस बहुत बहुत पीछे रह गए, और लोग तो सोशल मीडिया पे विक्रांत ये भी लिख रहे हैं कि इससे बेहतर तो वहां आरआर होती, आरआर होती तो एक अच्छा गेम देखने को मिलता, वैभव सूर्यवंशी इतना जल्दी हार नहीं मानते, मतलब वो बहुत मतलब लास्ट गेम जो उनका में देखने को जो मेच्योरिटी देखने को,
1: गुजरात ने उनको हराया था। वो देखिए, अब मैं कहूं पंजाब होता, हैदराबाद होता, राजस्थान होता, लेकिन हकीकत यह है कि गुजरात इसलिए वहां पर था बिकॉज इन्होंने बाकी टीमों को हराया था, और अब अनफॉर्चुनेटली उनको अगले साल फिर तैयार होकर आना पड़ेगा। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। नितिन इस वक्त मैदान में है, मैदान के बाहर है, और मैदान के बाहर आप जानते हैं ये मैदान कहां पर है, ये अहमदाबाद में है, गुजरात में है, गुजरात टाइटंस होम टीम है, लेकिन यहां पर तो ऐसा जश्न मनाया जा रहा है जैसे मुकाबला अहमदाबाद नहीं बैंगलोर में हो रहा है। नितिन,

0: देखिए किस तरीके से जो फैंस हैं ये आरसीबी की लगातार दूसरी जीत का जश्न मना रहे हैं। ढोल यहाँ पर बज रहा है, ताशा यहाँ पर बज रहा है और थिरक रहे हैं पैर किसके, आरसीबी के फैंस के। और लगातार ये इसी बात को कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, आरसीबी डर करती थी और आरसीबी भाई भाई भाई भाई सुनो सुनो अरे कुछ
1: नेवर डिसअपॉइंटेड इन 90 इयर्स ऑलवेज ऑल लव फॉर अब आरसीबी विराट कोहली
2: आरसीबी जीतकर आरसीबी विनर आरसीबी।
0: ये है जस्ट विराट कोहली को क्या कहोगे भाई, उसने मैच
1: विराट कोहली को भगवान है, हमारे लिए भगवान
0: भगवान है,
1: कोहले किंग कोहले, इस साल कब नम दो।
3: हम बहुत खुश है कि आरसीबी दोबारा जीता, विराट कोहली
2: गुजरात को हरा दिया, आरसीबी ने
0: गुजरात में आके गुजरात को हरा दिया किंग कोहली ने। ये है शब्द आरसीबी के फैंस के। और ये जस्ट मैं बता दूं आपको, ये ऐसे ही चलता रहेगा।
1: रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है विराट कोहली लीजेंड।
0: ये देखिए ये मैं आपका थोड़ा
1: 49 49।
0: ओके वो एक अलग बात है, लेकिन आज जस्ट देखिए ये इधर देखिए तस्वीर, इस तस्वीर को देखिए आप, यहाँ पर ये चल रहा है डांस क्योंकि यहाँ दूसरी बार बैक टू बैक आरसीबी ने इस
4: देखिए आप मैदान के बाहर जश्न देख रहे हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि विराट कोहली ने क्या बोला है जीत के बाद, विराट ने कहा है कि इस साल
0: पर ये चल रहा है डांस क्योंकि यहाँ दूसरी बार बैक टू बैक आरसीबी ने इस
4: देखिए आप मैदान के बाहर जश्न देख रहे हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि विराट कोहली ने क्या बोला है जीत के बाद, विराट ने कहा है कि इस साल उतना दबाव नहीं था जितना पिछले साल था। उन्होंने कहा हम जब एक दो मैच हारे भी तो हम ब्रेक लेकर आए और ब्रेक के बाद हमें पता था कि हम वापस आ जाएंगे, लेकिन पूरी की पूरी जो तारीफ है इस जीत की विराट ने गेंदबाजों की है, उन्होंने हेजलवुड की है, भुवनेश्वर की है, रसिक सलाम के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमारी टीम के पास वो बैलेंस था गेंद और बल्ले की लड़ाई। लेकिन ये है जी किस तरह क्वालिफायर जीतने वाली टीम हमेशा चैंपियन होती है। 2018 से आप उठा के देख लें आज तक आपको आंकड़ों के जरिए, गुजरात जब 2022 में जीता था वो भी क्वालिफायर वन ही जीत कर आए थे, लेकिन ये एक सिलसिला ऐसा है क्योंकि क्वालिफायर वन जो टीम जीतती है वो सीधा फाइनल में आती है, ये एडवांटेज तो है ही है। और ये ना भूलें कि गुजरात ने परसों जिस तरह मुल्लापुर में जीत दर्ज की, वो कल रात 11:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे थे। आसान नहीं होता कि 11:30 कल आप ट्रैवल करके रात को पहुंचे हैं अहमदाबाद और उसके बाद आपको ये बड़ा मैच खेलना था, बट ये कोई बहाना कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है क्योंकि आज का जो मुकाबला था शायद आरसीबी ने टॉस बड़ा अच्छा जीता और उन्होंने पिच को अच्छी तरह से रीड किया, उसको समझा, वो जानते थे कि ये विकेट बैटिंग के लिए बड़ी आसान नहीं है, वो जानते थे कि जो पहले 15-20 मिनट होंगे T20 मुकाबले में वो दबाव नर्व्स का आ जाता है कि कौन अपनी सांस को कंट्रोल करता है। और वहीं पर शुभमन गिल ने वो खराब शॉट खेला, साई सुदर्शन ने वो खराब शॉट खेला और गुजरात टाइटंस ने एक तरह से हथियार ही डाल दिए। जब आप हथियार डाल देते हैं दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है, सामने वाले खेमे में ये मैसेज चले जाता है कि ये लोग यानी कि गुजरात तंबू में हार मान चुके हैं। और अंत में क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ 155 रन बोर्ड पर लगाए। 155 रन में आप खेलने आ सकते हैं, गेंद करने आ सकते हैं, जीतना आसान नहीं होता। 175 होते तो शायद ये और क्लोज मुकाबला होता। विराट कोहली एक विकेट था, विराट कोहली खड़े रहे, 75 नॉट आउट। एंड में उन्होंने कह दिया कि इस बार पिछले साल के मुकाबले कम दबाव था। सुनील गावस्कर मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं। सनी भाई, लोग तो ये कह रहे हैं कि मजा आ गया, आरसीबी जीत गया, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब ये हुआ कि फाइनल जैसा फाइनल नहीं हुआ।
5: जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह से दोनों टीमों ने फाइनल में एंट्री की थी और इतने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, तो ऐसा नहीं लगा कि एक तरफी फाइनल होगा। मुझे लगा कि फाइनल काफी दिलचस्प होगा, आखिरी ओवर तक जाएगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास अच्छे बल्लेबाज थे, अच्छे गेंदबाज भी थे, नया गेंद इस्तेमाल करने वाले अच्छे गेंदबाज थे और इस पिच में थोड़ी सी जान भी थी, जहां से आपने देखा होगा कि बाउंसर गेंद काफी यूजफुल और विकेट टेकिंग गेंद ठहर रही थी, तो इससे मुझे लगा कि शायद गेम और भी ज्यादा दिलचस्प होगा।
4: बिल्कुल।
6: और आपसे मतलब विराट, जब हम बात करें आरसीबी के मैच की, वो चैंपियन बने और विराट कोहली की बात ना हो, क्योंकि एक बार फिर से आरसीबी को चैंपियन बनाने में विराट कोहली का कितना बड़ा रोल, नॉट आउट जिता करीब वापस गए हैं कप के साथ।
5: देखिए वो तो चेस मास्टर है ना, उनको तो ऐसी ऐसी सिचुएशन चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि हम कितने हमारे पास कितनी काबिलियत है चेस करने के लिए। शायद वो ये भी चाहते होंगे कि 155 के बदले अगर 255 होते तो उनका खुद का शतक भी बन जाता, तो यही तो मतलब इसी की वजह से तो उनको तो चेस मास्टर कहा जाता है, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है, वो आत्मविश्वास है और वो एक जिद है कि दिखाने के लिए कि जब कोई चेस करना हो, कोई भी स्कोर चेस करना हो तो उनके बल्ले से सारे रन बन सकते।
4: मैं तो बल्कि राजीव इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूं कि विराट कोहली जैसा प्लेयर आईपीएल में आके अपने आप को मोटिवेटेड रखता है। मतलब कई ऐसे खिलाड़ी हैं, कई ऐसी टीमें जहां पर आप सुनते हैं कि खेमों में बट रही हैं, यहां पर एक विराट कोहली आके अपने आप को इतना मोटिवेट कर रहे हैं कि मुझे एक और आईपीएल की टाइटल चाहिए। लेकिन सनी भाई, गुजरात नो डाउट गुजरात ने क्रिकेट पूरे आईपीएल में अच्छी खेली थी, आज ऐसा क्या हुआ, कहां कहां उन्होंने गलतियां की हैं?
5: हाँ, गुजरात को मुझे लगता है कि देखिए कल रात को वो पहुंचे चंडीगढ़ में, बरसात हुई थी उसकी वजह से उनकी फ्लाइट डिले हुई थी, और फ्लाइट जब डिले होती तो आप अपने या तो वेटिंग लाउंज में होते हैं या तो अपने होटल के कमरे में होते हैं, और वो एक मानसिक टेंशन भी तनाव भी बन जाता है क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि क्या आपकी फ्लाइट कब निकलने वाली है, और इसी की वजह से जब वो लेट भी आए तो शायद वो पूरी तरह से उनको विश्राम नहीं मिला होगा, क्योंकि जो हमने शुरुआत में जो उनके दो दो बल्लेबाजों के दो तीन शॉट देखे वैसा लगा कि थोड़े मतलब थके हुए, मेंटली थके थके थकी हुई टीम लग रही थी, पर इसे मैं ये कोई बहाना नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि आरसीबी के बॉलर्स ने एक बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की थी। जॉस हेजलवुड ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की, तो अब तो श्रेय उनको भी देना चाहूंगा, पर शायद शायद वो जो फ्लाइट डिले होगी उसी की वजह से शायद थोड़ा सा तनाव था गुजरात की टीम पर।
4: कभी कभी ये भी होता ना राजीव, वो एक एक हल्की सी एडजस्टमेंट, शायद वहीं पर गुजरात आज रह गया। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि ये आईपीएल यादगार होगा, यादगार उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ऑब्वियसली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इस आईपीएल की सबसे फेमस सबसे ज्यादा पॉपुलर टीम, बैक टू बैक दो आरसीबी टाइटल्स हो गए। ये ना भूले कि रजत पाटीदार दो आईपीएल टाइटल जीतने वाले कप्तान बन गए हैं, मतलब धोनी, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर और उसके बाद रजत पाटीदार उनके साथ है, मतलब जॉइंट एक तरह से थर्ड है गौतम।
6: यादगार वैभव सूर्यवंशी,
4: वैभव सूर्यवंशी
6: 776 रन सबसे, मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, अब नाम ले लीजिए, मतलब इंडिया के इंटरनेशनल प्लेयर उन सब में ये 15 साल।
4: आज से 5, 10, 15, 20 साल बाद जब भी पीछे मुड़ेंगे, जैसे हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं ना कि 1988 वो इंडिया के लिए तो 89 में खेले थे, 88, 89 हम उन सालों को याद करते हैं, विराट कोहली के लिए याद करते हैं, आप 2026 का आईपीएल सिर्फ इस बच्चे के लिए याद रखेंगे। सॉरी मैं बच्चा कह रहा हूं, बच्चा नहीं, बेबी बॉस, 15 साल की उम्र है, उन्होंने 776 रन ही नहीं बनाए हैं सिर्फ, उन्होंने 237 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, 72 छक्के मारे हैं। और यहां से आप देखें, मतलब कहीं ना मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट इसको टर्निंग पॉइंट मानेगी कि यार यहां 30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, 72 छक्के मारे हैं। और यहां से आप देखें, मतलब कहीं ना मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट इसको टर्निंग पॉइंट मानेगी कि यार यहां से इस लड़के ने आपको बता दिया। तो 2026 में आरसीबी और वैभव, हाँ। बिल्कुल कमाल किया
6: है, ऐसे ही नहीं है ना, इसीलिए मुरीद है क्योंकि लड़के ने ऐसे करके दिखाया। अच्छा मैं ये कह रहा था कि भाई जो सहवाग है वो ये कह रहे हैं कि जो राजस्थान रॉयल्स थी इन पर डिपेंडेंट थी, 15 साल के बच्चे पर पूरी टीम डिपेंडेंट दिखी, हालांकि इन्होंने खेला लेकिन पूरी टीम वैसे नहीं।
4: और मुझे लगता है कि लास्ट जो दो मैच हुए ना, मतलब 96 और 97 जो उन्होंने बनाए लास्ट लीग मुकाबले में, फिर यहाँ पे यार वो इनिंग्स वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गए, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दो इनिंग्स खेल गए हैं नॉकआउट्स में, इन दो पारियों ने तो मुझे लगता है कि ज्यादा आपको ना सबूत दे दिया है कि नहीं ये लड़का तैयार, और ये इंडिया खेलने के लिए तैयार है। सुनील गावस्कर अभी वहां पर शायद प्रेजेंटेशन में चले गए हैं, वापिस जुड़ेंगे, लेकिन उन्होंने परसों ये बोल दिया था कि इंग्लैंड जो टीम जा रही है आपकी, आयरलैंड और इंग्लैंड, उस टीम में ये होंगे, ये इस साल खेलेंगे और ये यंगेस्ट इंडियन बनेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले।
6: बिल्कुल,
4: ये मतलब जस्ट अ मैटर ऑफ डेज, अब तो ये आप महीने या साल नहीं कह रहे हैं, सिर्फ दिनों की बात है कि वैभव सूर्यवंशी आपको खेलते थे।
6: अच्छा, ब्रॉडकास्टर का भी एक प्रेशर होगा क्योंकि वो भी चाहेंगे, क्योंकि वो नंबर्स भी तो लेकर आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बीच में जो खिलाड़ी खड़ा है, जिसको लेकर शायद लोग ये सोच रहे थे कि आप हो चुका है, खत्म हो गया, शायद वो ना कोई बात करता था, लेकिन एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार ने शायद मतलब वो स्विंग जो पहले वो करते थे उसके बिल्कुल अलग इस बार
4: सचिन ने आज ना बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा है कि भुवी का क्या था, उनकी स्विंग ज्यादा होती है,
6: ज्यादा
4: इन स्विंग ज्यादा है, आउट स्विंग ज्यादा है। इस बार वो क्या कर रहे हैं, वो सीम आउट स्विंग वाली या इन स्विंग वाली नहीं डाल रहे, वो सीधा सीम डाल रहे हैं। उससे क्या होता है, बॉल थोड़ा वॉबल होता है, इतनी सी स्विंग होगी या अंदर या बाहर। और मैं मतलब इन तीनों की गेंदबाजी देखकर रबाडा, भुवनेश्वर, आर्चर, इनफैक्ट इसमें हेजलवुड को भी अगर मैं जोड़ दूं, एक्सप्रेस फास्ट बोलिंग, इस आईपीएल में अगर वैभव सूर्यवंशी ने वो बार बैटिंग का ऊपर किया है तो इन्होंने फास्ट बोलिंग का, क्योंकि मैच आपको बैट्समैन जिता देगा, टूर्नामेंट आपको फास्ट बॉलर या बॉलर जिताते हैं। और इन तीनों ने स्लो
6: फ्लैट पिचेस पे
4: उस तरह की बॉलिंग नहीं की, कटर कर लो, स्लो कर लो, इन्होंने तेज बॉल डाला है, नया बॉल इन्होंने टेस्ट मैचों की तरह डाला है।
6: अच्छा, एक बार फिर से नितिन के पास चल लेते हैं, नितिन वहां पर हमारे साथ हैं। अच्छा नितिन, एक बार फिर से दिखा चुके हैं, मैच खत्म हो गया है, सेरेमनी भीतर चली रही होगी, लेकिन आपके इर्द गिर्द तो मुझे बहुत सारे फैंस दिख रहे हैं और सब आरसीबी वाले हैं।
7: बिल्कुल बिल्कुल आरसीबी वाले हैं, क्योंकि जीटी वाले तो मिड इनिंग के बाद ही चले गए थे, तो इस वक्त ग्राउंड से जो भी बाहर आ रहा है वो आरसीबी का फैन है और सब आतुर है इस बात को कहने के लिए कि भाई आरसीबी अगर जीती है तो उसकी वजह क्या है। क्या वजह?
8: विराट कोहली।
7: विराट कोहली,
9: विराट कोहली,
10: विराट कोहली,
11: जितना विराट कोहली है उतना भुवनेश्वर कुमार भी है।
12: चेस मास्टर विराट कोहली,
13: चेस मास्टर विराट कोहली,
14: कैप्टन सीनियर भाई रजत पाटीदार
15: और पूरी पाटीदार पूरी टीम का भी सपोर्ट है, एक साथ होकर खेली और आज आज फाइनली अटैच कोई बोल रहा था एक वर्ल्ड एक एक ट्रॉफी जीत पा रहे, अब दो दो
7: आरसीबी का जीत का श्रेय जो है ये जो फैंस हैं ये दे रहे हैं विराट कोहली को और ये दे रहे हैं भुवनेश्वर कुमार को, जो कि बनता भी है। अगर आप देखिए जिस तरीके से विराट कोहली ने खेला, जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने पूरे सीजन में गेंदबाजी की है, आज की सबसे बड़ी वजह रही कि आरसीबी एक कंप्लीट टीम बनते हुए नजर आई। जीटी में मानता हूँ कि इस होम ग्राउंड पर उनको बेहतर करना चाहिए था और वो इनिशियल स्टेज पर थोड़े से परेशान थे लेकिन बाद में उन्होंने वो बेहतर करना शुरू किया था। मेरा खुद का ऐसा मानना था कि शायद हो सकता है यहाँ पर गुजरात वो कंपटीशन थे वो बेहतर टीम बनकर आए, लेकिन आरसीबी ने पूरी तरीके से गुजरात को साइडलाइन किया और अहमदाबाद के इस मैदान पर एक बार फिर ये साबित करके बताया कि आईपीएल की बेस्ट टीम कौन थी। 10 टीमें रेस में थी, 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं, 2 टीमें नंबर 1 और 2 बनती हैं और उसके बाद बारी आती है फाइनल की। यहाँ पर नंबर 1 बन के आई आरसीबी और इस मैदान पर इस बात को हमेशा याद रखा जाएगा कि आरसीबी ने यहाँ पर लगातार 2 बार ट्रॉफी जीती थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ग्राउंड आरसीबी को सूट करता है, ये ग्राउंड आरसीबी के प्लेयर्स को सूट करता है और खासतौर पर रजत पाटीदार का जो मैंने कल बॉडी लैंग्वेज देखा था, जो उनकी बात थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि यहाँ एक या दो खिलाड़ी नहीं बल्कि 11 के 11 का अपना रोल है, वो अपना रोल निभाते हैं, जस्टिफाई करते हैं और उसका रिजल्ट होता है जीत।
4: जी पिछले साल भी इसी मैदान पर, आज भी उसी मैदान पर, मतलब मैदान कोई भी हो, अब आरसीबी ने यह ठान लिया है कि हमने हार माननी नहीं है। लेकिन वो तस्वीरें जिसके लिए 2 महीने ही आईपीएल होता है, टीमें लड़ती हैं।
6: आरसीबी ने तो अब कह सकते हैं कि इतने सारे मीम्स, 18 सालों की मेहनत, इतना कुछ सुना, इतना कुछ झेला, कहते थे टैलेंट बहुत है पर ट्रॉफी नहीं है, अब ऐसी ट्रॉफी। अनुष्का शर्मा उनके चेहरे की मुस्कुराहट, मतलब ये जीत मतलब कितना मायने रखती है। विराट कोहली की ये जो भूख है वो दर्शाता है कि विराट कोहली हर मैच को इतना मतलब इतना सीरियसली ऐसे लेते थे, जैसे पहला मैच विराट कोहली खेल रहे हो, मतलब विराट कोहली की एज, विराट कोहली का इतना लंबा करियर और पहले मैच की भूख और अभी के मैच की भूख सेम,
4: इसीलिए अब वो चैंपियन है। मतलब ये चीज सचिन तेंदुलकर में भी थी, आज ये विराट में आपको दिखती है कि मैच कोई भी हो, मुकाबला कोई भी हो, मुझे अपने 101% देना है। और अगर आप आईपीएल के मुकाबलों में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत सी ऐसी टीमें हैं जिनके बारे में आप सुनते हैं कि यार वो खेमे जो है बट गए, यार वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। विराट इस वक्त अगर मैं उस ड्रेसिंग रूम में बात करूं जिसमें 19 साल के बच्चे भी बैठे हैं, बाय द वे इसी आरसीबी में 19 साल के कनिष्ठ चौहान नाम का एक लड़का है जो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया है, उसमें विराट कोहली है, भुवनेश्वर है, हेजलवुड है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा जीत की भूख वो विराट कोहली।
6: अच्छा, अगर आज के मैच में विराट कोहली की ये पारी ना होती तो मैच फंसता
4: शायद। मुझे लगता 20 रन और होने चाहिए थे राजीव, 20 रन और होते तो गुजरात के पास वो शायद एक मौका रहता। अब हुआ ये ना कि जो वेंकटेश अय्यर ने तेज रन शुरू में बना दिए, विकेटें गिरती भी रही, बावजूद इसके आई थिंक वो किसी वक्त भी उन पर दबाव नहीं हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि इस 2026 आईपीएल को आप दो कारणों से याद रखेंगे, मैं तो कहता हूं तीन कारणों से, क्योंकि एक तो वैसा है जो राजीव ने अभी मुझे कहा, ए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बैक टू बैक एक और टाइटल, दूसरा वैभव सूर्यवंशी जो अब इंडियन क्रिकेट की तस्वीर बदलेंगे, और कहीं ना कहीं जो वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल में खेल कर गए, गुजरात आज ठीक उससे उल्टा कर रहा था फाइनल में, और तीसरी बात जो है द कमबैक ऑफ फास्ट बॉलर्स, मतलब वो डिबली डॉबली स्लो कटर्स वाले बॉलर, स्पिनर्स नहीं। आपने देखा है रबाडा, आपने देखा आर्चर, आपने देखा भुवनेश्वर, आपने देखा हेजलवुड, तेज गेंदबाज, तेज गेंदबाजी करके जो है अपनी टीमों को जिता।
6: अभी नितिन केरदगर हमें कुछ जीटी के फैंस पे दिख रहे हैं। नितिन, अब जीटी के फैंस क्या कह रहे हैं, उनकी टीम कहां आ रही है, उनको क्या लगता है?
4: नितिन को खींच के लाना पड़ा,
7: यही पूछ रहा था क्योंकि ये थोड़ा लेट आए और क्योंकि ये जा रहे थे घर, इनको लगा कि यार अब तो क्या ही बचा है। लेकिन यू नो आज जब मैच शुरू हुआ तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जीटी इस तरीके से हार जाएगी, लेकिन आप एज अ फैन जीटी के पूरे सीजन को कैसे देखते हैं और जीटी ने आज क्या गलत कर दिया जिसका रिजल्ट ये कि आरसीबी
15: आज पूरे उनके पूरे पूरी टीम के बॉडी लैंग्वेज में जीत दिखाई नहीं दे रही थी। सब जैसे जीटी के प्लेयर, वहां के माइक वाले सब आरसीबी जीतेगा, आरसीबी जीतेगा, ऐसा ही अनाउंसमेंट भी ऐसे ही हो रहा था, आरसीबी आरसीबी आरसीबी वी वांट आरसीबी, ऐसे ही। तो हमको कोई एक भी एंगल से किसी का भी सपोर्ट, जीटी को सपोर्ट ही नहीं था।
7: क्यों? ये तो गुजरात है, ये अहमदाबाद है, गुजरात का होम ग्राउंड है, क्यों नहीं जीटी का सपोर्ट?
15: एक व्यक्ति के कारण बस, वो है विराट कोहली। विराट कोहली के कारण सब आरसीबी को प्यार करते हैं।
7: दूसरी चीज, चलो आपने विराट का नाम,
15: विराट कोहली जीटी में रहता तो अभी सब लोग जीटी को सपोर्ट करते।
7: चाहते हैं विराट कोहली जीटी में?
15: हाँ 100% हमें कुछ भी करके जीटी को जिताना है।
7: मुझे ये बताइए कि आज क्या ये
15: हमारे हार्दिक पंड्या को ले लिए, ठीक है, मुंबई वालों ने ले लिया, उसकी वजह से भी जीटी को फटका पड़ा, ठीक है। अगर वो हार्दिक पंड्या रहता तो अभी सबको उड़ा के वो जिता देता।
7: मुंबई में क्यों नहीं जीता
15: के ज्यादा?
7: हार्दिक पंड्या मुंबई को क्यों नहीं?
15: उनको सेट नहीं हो रहा है, गुजरात जैसा मजा ना आए कहीं पे भी।
7: अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि वो वापस आ जाए?
15: हाँ, मैं तो चाहता हूँ सबसे पहले हार्दिक पंड्या वापस आए, तो फिर कोहली की भी जरूरत नहीं है।
7: हार्दिक का केस अलग है, जब वो आएंगे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इस वक्त क्या गुजरात यहाँ पर यू नो उनके पास वक्त कम था, वो लेट आए, उनको टाइम नहीं मिला, ट्रेनिंग नहीं, प्रैक्टिस
4: जी,
7: थकी हुई टीम थी, क्या ये लग रहा है?
15: बहुत बहुत दिल, वो सब जाने दो, दिल तोड़ के जा रहे हैं, बस
7: दिल तोड़ के जा रहे हैं।
15: जीटी हारा है, दिल नहीं टूटा है, वहाँ पर सब लोगों ने आरसीबी को सपोर्ट किया, इसलिए हमको
6: हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकला।
4: मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि मुझे याद है कि आईपीएल शुरू होने से पहले राजीव ने कहा था कि इस बार आरसीबी ही जीतेगा। आमतौर पर हम कहते हैं जीतेगा तो इंडिया ही, लेकिन अब आईपीएल में क्योंकि पिछले साल आरसीबी जीत गया, हर कोई ये कहता है कि जीतेगा तो आरसीबी ही। फिलहाल इस शो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे आईपीएल को आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन आपके इस आईपीएल से इंडियन क्रिकेट को एक नई दिशा और दशा भी मिलनी है। वैभव सूर्यवंशी, कई और खिलाड़ी, उन पर भी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल मेरी नजर जो है वो मैं चाहता हूं कि आपकी भी वहीं पर रहे, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर। राजीव, मैं भाग के जा रहा हूं
6: बिल्कुल,
4: क्योंकि वहां पर जुड़ना है, जीत का जश्न मनाना है, और मैं चाहता हूं कि वो आरसीबी की जीत का जश्न मनाने आप भी हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर फटाफट से।
6: मैं खुद से स्पोर्ट्स तक देखने वाला हूं जैसे पहुंचेंगे वहां पर, तो आप लोगों को पहुंचना, छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए। आज
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: आईपीएल का चैंपियन बना बेंगलुरु, लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा। फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, जीत के हीरो बने विराट कोहली। दस राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान, पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक, सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर महामंथन भी। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, 12वीं के छात्रों से भी बात। बंगाल में सियासी घमासान, अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद, एनकाउंटर में ढेर, पिता समेत 3 और गिरफ्तार, पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। तो आरसीबी एक बार फिर से चैंपियन बन गए हैं और एक बार फिर से विराट कोहली क्रीज पर खड़े थे और जीत के साथ आरसीबी दूसरी बार चैंपियन बन गए हैं। आरसीबी वो जीत महज इत्तेफाक नहीं थी, 18 सालों के बाद जो आई थी, लंबे इंतजार के बाद जो आई थी, और विक्रांत चैंपियन बन गए हैं, महज इत्तेफाक नहीं है।
1: मैं
0: टैलेंट बहुत था।
1: नहीं, मैं तो ये कहता हूँ राजीव, इनको पहला टाइटल जीतना था जो लास्ट ईयर जीत गए, उसके बाद आप इनको रोक नहीं सकते। और आप देखें, आपने लीग टॉप किया, आपने क्वालिफायर 1 जीता, और जो क्वालिफायर 1 जीतता है ना, वो तो आपको आंकड़ों के जरिए भी पता है कि चैंपियन वही होता है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि फाइनल एक तरफा हुआ है। गुजरात जो कि नंबर 2 टीम थी, अपने घर पे खेल रही थी, आई थिंक कहीं ना ये मानना होगा, शुभमन गिल के आउट होते ही उन्होंने हथियार डाल दिए। अगर फाइनल मैच 40 ओवर का होता है, तीसरे ओवर में अगर आप हथियार डाल दो, अपने बैटिंग ऑर्डर को बदल दो, आपने सिर्फ 155 रन बनाए, भले ही आपको विकेटें मिल गई हो, भले ही वो पिच इतनी आसान नहीं थी, लेकिन विराट कोहली खड़े थे ना, और एंड में क्या हुआ, उन्होंने छक्का मार के इस मैच को जीता, 75 नॉट आउट, 75 नॉट आउट। लेकिन बड़ी बात, जैसे राजीव ने कहा, बैक टू बैक आरसीबी की 2 टाइटल्स। मैं तो ये कहता हूं कि आज के मैच को देखकर आईपीएल की आरसीबी है ऑस्ट्रेलिया ऑफ ओल्ड, पुराने जमाने का ऑस्ट्रेलिया होता ना, बड़ा मैच है तो हम ही जीतेंगे। और गुजरात को यह कहना होगा कि गुजरात शायद इंडिया ऑफ ओल्ड है, कि बड़ा मैच है और बड़े मैच में हमारे हाथ
0: पैर फूल गए। मतलब आरसीबी नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाला, मतलब
1: पुरानी ऑस्ट्रेलिया, नई इंडिया, और गुजरात जो है वो पुरानी इंडिया की तरह खेला। लेकिन इस वक्त जो आप माहौल देख रहे हैं, मतलब पिछली बार तो खैर बहुत ज्यादा इमोशनल था राजीव, विराट रो रहे थे। इस बार क्या होता ना, एक बार हम जीत चुके हैं भाई, इस बार नहीं जीतेंगे तो वो मतलब शॉकिंग होगी।
0: लेकिन आप क्या विक्रांत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इतना वन साइडेड हो जाएगा?
1: नहीं, फाइनल कभी वन साइडेड आप एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन आपको याद होगा राजीव, 2024 का फाइनल भी ऐसे ही था, हैदराबाद ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली थी उस साल, लेकिन वो फाइनल में 113 ऑल आउट हो गए और कोलकाता नाइट राइडर्स ने आराम से चेज कर दिया। ये मैं आपकी बात मानता हूं कि आईपीएल का मतलब है एक्साइटमेंट, और इस साल तो एक्साइटिंग क्रिकेट हुई है। लेकिन भाई आज जो है ना, आज का मैच वाकई बड़ा बोरिंग हुआ है।
0: बहुत, इसमें तो कुछ रहा। नितिन के पास चलते हैं जो कि इस समय ग्राउंड के बाहर मौजूद है। नितिन, आरसीबी के फैंस चाहते थे कि वो जीते और आरसीबी जीत गई है, और एक तरफा जीत गई, डोमिनेट करते हुए, ध्वस्त करते हुए जीत गई है।
1: वहां पर तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। और देखिए, गुजरात का मैच था, गुजरात का स्टेडियम था, 80% लोग आज जर्सीज जो है वो आरसीबी की पहन के गए थे, 18 नंबर विराट कोहली की पहन के गए।
0: लेकिन विक्रांत, मैच क्या आरसीबी वहीं पर हार गई थी जब शुभमन गिल आउट हुए, या मैच में उसके बाद भी थे?
1: बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने हार मान ली थी। मतलब मैं हैरान हूं, क्योंकि आजकल आप क्या होता है ना, T20 में आपको दूसरी पारी तो मिलती नहीं है, आपको T20 में कोई दूसरी इनिंग नहीं मिलनी है, ये नहीं है कि रीबिल्ड करें। मुझे हैरानी हुई, उन्होंने बैटिंग ऑर्डर बदल दिया, उन्होंने निशांत सिंधु को भेज दिया, तीसरे ओवर में अगर शुभमन गिल आउट हो गए हैं तो आप हथियार नहीं डाल सकते। नितिन भाई, आपकी प्रेडिक्शन सही, बिल्कुल आरसीबी जीत गया एक तरफा।
2: देखिए, आरसीबी जरूर जीत गया है, आरसीबी ने टाइटल भी किया है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि आरसीबी ने जैसा खेला वो एक्चुअली डिजर्व करते थे। और यहाँ पर इस वक्त जो फैंस आपको आ रहे हैं, इन सबको सुबह से इस बात का यकीन था कि अगर कोई टीम इस मैदान पर टाइटल जीत सकती है वो है आरसीबी। आप यकीन मानिए, कि यहाँ पर लगभग 130,000 के आसपास के फैंस उमड़े थे इस मैच को देखने के लिए, जिसमें से लगभग 1,00,000 लोग आरसीबी के समर्थक थे। और ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि आरसीबी का असली मैदान शायद बेंगलुरु नहीं, अब अहमदाबाद के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जब जब अहमदाबाद के अंदर में फाइनल मैच होता है और वहां पर होती है आरसीबी, सामने चाहे कोई भी टीम हो, विजेता आरसीबी होती है। ये जस्ट इस बात की गवाही है और इस मैदान को हमेशा याद रखा जाएगा कि पहली बार एक ऐसी टीम निकल के आई जिसके पास ट्रॉफी का सूखा था, जीत ही नहीं पा रहे थे, और अब लगातार बैक टू बैक दो ट्रॉफी इस टीम ने अपने नाम कर ली है। मैं फैन से बात करता हूँ, ये कितनी बड़ी, क्योंकि दो बार लगातार दो बार
3: भी दो इस साल हमारा दिन भारतीय हो रही है, दो साल इस साल इस बार हमने
2: ये विराट कोहली ने जैसे मैच को फिनिश किया है, आपको लगता
3: है बोले आरसीबी
4: चकला कोई डालो बाज ना बना, चकला कोई डालो बाज ना बना, टीम चकलियो
5: आरसीबी
2: विराट कोहली ने जो आज पारी खेली है, मतलब विराट कोहली कह रहे हैं एज, एक मिनट विराट कोहली ये कह रहे हैं कि एज गई साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूँ यहाँ
5: कम कम तू सारा कम
2: भुवनेश्वर कुमार को क्या कहोगे भाई, इस यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा रोल है।
5: इस साला कम नम दू दो, दो।
3: आरसीबी जीतेगा भाई, जीतेगा विराट कोहली जीतेगा।
4: विराट कोहली वकीलों को केस पसंद है और विराट कोहली को जेल पसंद है।
3: आरसीबी
5: जीती के चक्लो नहीं आ सकते आरसीबी के पास, जीती के चक्लो नहीं आ सकते।
4: विराट कोहली जिंदाबाद, आरसीबी
3: जिंदाबाद, जिंदाबाद है, किंग सिर्फ एक ही है, विराट कोहली सिर्फ एक ही किंग है, विराट कोहली।
4: ए बाप बाप होता है, बेटा बेटा है, जीती नहीं चकलियो।
6: गुजरात यहीं पे गुजरात टाइटन घोड़ा का आरसीबी चैंपियन,
3: क्रिकेट का एक ही बाप है विराट कोहली।
0: 2025 में पंजाब को पीटा था और इस कारवां को आगे बढ़ाया और गुजरात को 2026 में भी हरा दिया है। और इंटरेस्टिंग ये है कि एक बार फिर विराट कोहली वहीं पर थे, यानी कि कभी एक ट्रॉफी के लिए विक्रांत तरसने वाली टीम, मतलब 2018 में जीत गई और 18 सालों के बाद जीत गई और एक बार फिर से जीत गई है, बैक टू बैक जो है जीती है। इस जीत में विराट कोहली को क्रेडिट दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा भुवनेश्वर कुमार के बारे में बात करें।
1: भुवनेश्वर देखिए अनफॉर्चुनेटली उनको पर्पल कैप नहीं मिली क्योंकि रबाडा उनसे एक विकेट आगे चले गए, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना आप, और ये आपको आंकड़े भी बताते हैं कि ऑरेंज कैप जिसको मिलता है आमतौर पर उसकी टीम आईपीएल नहीं जीतती है, लेकिन पर्पल कैप वाले की टीम अमूमन आईपीएल जीत जाती है। यानी कि रबाडा ने आज 30 विकेट लिए हैं, रबाडा तो खैर आगे चले गए, लेकिन अगर आप देखें भुवनेश्वर कुमार बस एक विकेट पीछे, लेकिन पर्पल कैप छोड़िए, उन्होंने मतलब ये बताया कि मेरे में अभी भी दम है। बाय द वे वो हैदराबाद के साथ भी आईपीएल जीते हुए हैं, वो 2016 में आईपीएल हैदराबाद के साथ जीते थे, अब दो मर्तबा वो बैक टू बैक जीत चुके हैं आरसीबी के साथ। लेकिन विराट कोहली अब देखिए आज भी उनकी आंखें थोड़ी सी नमी आंखों में आज भी दिख रही है, मतलब पिछली बार तो ही एक्चुअली क्राइड, वो रोना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी मैं तस्वीर जो देख रहा हूं या तो पसीना बड़ा आ रहा है, गर्मी में एफर्ट है, 75 रन की पारी खेली है। और इस साल आरसीबी ने क्रिकेट ही ऐसी खेली लगातार, जहां पर आपको किसी स्टेज पर देखिए पूरा आईपीएल जो था वो टॉपसी टर्वी था, राजीव पंजाब खेल रहा है, पंजाब जीत रहा है, फिर दिल्ली जीत रहा है, लेकिन आपने क्या देखा, नीचे से गुजरात आया, हैदराबाद आया, राजस्थान भी नीचे से आया, एक टीम कांस्टेंट थी जिसका नाम था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और मैं फिर वही कहता हूं कि आरसीबी जो पिछले साल टाइटल खेलने के बाद वो पुराने जमाने की ऑस्ट्रेलिया हो गई, हम चैंपियन है, अच्छा देख लेना यार फाइनल में कौन आएगा। और कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली गुजरात के लिए वो पुराने जमाने की इंडिया की तरह खेलती है, बड़ा मैच उनके हाथ तक फूल गए। आज गुजरात के पास मौका था, लेकिन वो जो आपने बोला ना भुवनेश्वर कुमार हेजलवुड, वो हुआ था, वो राजीव हुआ था, उन्होंने क्या किया, उनका कप्तान आउट हुआ, उन्होंने तीसरे ओवर में निशांत सिद्धू को भेज दिया, यानी कि उन्होंने शट डाउन कर दिया, उन्होंने सामने वाली टीम आरसीबी को यह मैसेज दे दिया हमसे ना हो पाएगा। और अंत में क्या हुआ, अगर 20 रन और होते तो शायद आरसीबी इस मुकाबले को ना जीतता, बट 20 रन गुजरात ने बनाने थे वो बनाए नहीं।
0: इसमें तो कोई दो नहीं कि गुजरात टाइटंस बहुत बहुत पीछे रह गए और लोग तो सोशल मीडिया पे विक्रांत ये भी लिख रहे हैं कि इससे बेहतर तो वहां आरआर होती, आरआर होती तो एक अच्छा गेम देखने को मिलता। वैभव सूर्यवंशी इतना जल्दी हार नहीं मानते, मतलब वो बहुत, मतलब लास्ट गेम जो उनका में देखने को, जो मेच्योरिटी देखने को,
1: गुजरात ने उनको हराया था। देखिए अब मैं कहूं पंजाब होता, हैदराबाद होता, राजस्थान होता, लेकिन हकीकत यह है कि गुजरात इसलिए वहां पर था बिकॉज इन्होंने बाकी टीमों को हराया था और अब अनफॉर्चुनेटली उनको अगले साल फिर तैयार होकर आना पड़ेगा। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। नितिन इस वक्त मैदान में है, मैदान के बाहर है, और मैदान के बाहर आप जानते हैं ये मैदान कहां पर है, ये अहमदाबाद में है, गुजरात में है, गुजरात टाइटंस होम टीम है, लेकिन यहां पर तो ऐसा जश्न मनाया जा रहा है जैसे मुकाबला अहमदाबाद नहीं बैंगलोर में हो रहा है। सुनील गावस्कर मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं। सनी भाई, लोग तो ये कह रहे हैं कि मजा आ गया, आरसीबी जीत गया, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब ये हुआ कि फाइनल जैसा फाइनल नहीं हुआ।
7: जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह से दोनों टीमों ने फाइनल में एंट्री की थी और इतने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, तो ऐसा नहीं लगा कि एक तरफ ही फाइनल होगा। मुझे लगा कि फाइनल काफी दिलचस्प होगा, आखिरी ओवर तक जाएगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास अच्छे बल्लेबाज थे, अच्छे गेंदबाज भी थे, नया गेंद इस्तेमाल करने वाले अच्छे गेंदबाज थे, और इस पिच में थोड़ी सी जान भी थी, जहां से आपने देखा होगा कि बाउंसर गेंद काफी यूजफुल और विकेट टेकिंग गेंद ठहर रही थी, तो इसे मुझे लगा कि शायद गेम और भी ज्यादा दिलचस्प होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आपसे मतलब विराट, जब हम बात करें आरसीबी के मैच की, वो चैंपियन बने और विराट कोहली की बात ना हो, क्योंकि एक बार फिर से आरसीबी को चैंपियन बनाने में विराट कोहली का कितना बड़ा रोल, नॉट आउट जिता कर ही वापस गए हैं कप के साथ।
7: देखिए वो तो चेस मास्टर है ना, उनको तो ऐसी सिचुएशन चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहां पे वो दिखा सकते हैं कि हम कितने हमारे पास कितनी काबिलियत है चेस करने के लिए। शायद वो ये भी चाहते होंगे कि 155 के बदले अगर 255 होते तो उनका खुद का शतक भी बन जाता, तो यही तो मतलब इसी की वजह से तो उनको तो चेस मास्टर कहा जाता है, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है, वो आत्मविश्वास है और वो एक जिद है दिखाने के लिए कि जब कोई चेस करना हो, कोई भी स्कोर चेस करना हो, तो उनके बल्ले से सारे रन बन सकते हैं।
0: आइस मियानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सूर्या के दोस्त ही थे, जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर पर बुलाया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे और अब पुलिस ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है।
8: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला, मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी, मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत, मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद खोड़ा वापस लौटा था, ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी, जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
9: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी का भी अभियान चलाया गया था। उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
8: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां नहीं, बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
10: ये मार्किंग्स की हुई हैं यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे, और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है, और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है, जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस पांचवें आरोपी की तलाश कर रही है जो एफआईआर में नामजद है।
8: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये है वो तीनों। असद फरार था। असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
11: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। और जो 6 युवक है उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए, और 6 के 7 के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
8: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
12: असद भी यहीं रहता है, और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं, इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए। और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती, और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
13: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, जैसे अन्य प्रदेशों में घटना हुई होगी, लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल का हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा।
8: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
10: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त, और पिछले 2 दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
8: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी आरोपी भी उसके दोस्त ही थे, और इसीलिए जब असद

0: सुने अपने ही दोस्त सूर्य चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरे की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे। और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये। ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्य चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो।
2: सूर्यप्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्यप्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्यप्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्यप्रताप को घेरा जाता है। फरहान असद को चाकू देता है तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्यप्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
1: यानी जिस बाप को यह अपराध रोकना था उसी ने अपने बेटे को हत्या करने के लिए कहा और फिर सब ने मिलकर सूर्य चौहान का गला रेत दिया।
3: देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहां पर सूर्य चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्य चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्य चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था, उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा।
1: सूर्य चौहान को मारने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और असद को उसके अपराध की सजा मिल गई। लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो सवाल खड़े करता है कि असद जैसे युवकों के दिमाग में इतना जहर कहां से भरा जा रहा है कि वो अपने ही दोस्त की हत्या करते हैं, वो भी बेवजह। अरविंद ओझा, अंशुल सिंह के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद आज तक।
4: योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी। अब असद का एनकाउंटर हो गया है तो यूपी की सियासत उबल रही है।

0: हत्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है, क्या तने कभी देखी है? और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कू से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस में फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में बहुत दिन नहीं लगे।
1: उधर असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा सूर्या चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें

0: ली और भरोसा भी दिया कि सरकार परिवार के साथ है, हर संभव मदद मिलेगी।
1: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरशद ने पुलिस पर हमला किया और मुठभेड़ में मारा गया।
2: सर सूर्या की नृशंस हत्या की गई थी, उसी का
1: मैंने बताया ना, उसने नृशंस हत्या की, उसे चाहिए था कि पुलिस के सामने सरेंडर करता, उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए उसका इलाज।
0: बीजेपी बार बार कह रही है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़े या अपराध छोड़े, वरना अंजाम यही होगा।
3: देखिए, अपराध हो या अपराधी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है और उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंदर सुरक्षा और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। और जो अपराधी हो या जो अराजक तत्व हो या जो अपराध कर करके अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित घूमते रहे हों, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी कार्रवाई है वो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए जरूरी है।
0: योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह इसमें भी खोट नजर आता है।
4: तो एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
0: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपी में पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है।
5: फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में अभिगाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या, अभिगाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है, विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
0: विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ खुला ऐलान पहले ही कर रखा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों से निपटने के लिए हिंसा भी जरूरी है।
6: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
0: यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को मात दी थी और इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी। अपराध के खिलाफ योगी की सख्ती ही उनके दल की ताकत है। जाहिर सी बात है कि 27 के समर में ये मुद्दा फिर से रफ्तार भी पकड़ेगा और धारदार भी होगा। आज तक ब्यूरो।
7: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: आईपीएल का चैंपियन बना बेंगलुरु, लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा। फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, जीत के हीरो बने विराट कोहली। दस राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान, पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक, सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर महामंथन भी। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, 12वीं के छात्रों से भी बात। बंगाल में सियासी घमासान, अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद, एनकाउंटर में ढेर, पिता समेत 3 और गिरफ्तार, पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। इस मियानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सूर्या के दोस्त ही थे, जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर पर बुलाया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे और अब पुलिस ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है।
1: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला, मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी, मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत, मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद घोड़ा वापस लौटा था, ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी, जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
2: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी का भी अभियान चलाया गया था। उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
1: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां नहीं, बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
3: ये मार्किंग्स की हुई हैं यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है जो FIR में नामजद है।
1: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, ये है वो तीनों। असद फरार था, असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
4: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया और जो 6 युवक है उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
1: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
5: असद को जो क्या नाम, असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए, और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती, और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
6: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, जैसे अन्य प्रदेशों में घटना हुई होगी, लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल का हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा।
1: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
3: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त, और पिछले 2 दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
1: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी आरोपी भी उसके दोस्त ही थे, और इसीलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर पर बुलाया तो उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके लिए कैसी कातिलाना साजिश रची गई है।
1: दहला देने वाली ये तस्वीरें बकरीद के दिन की हैं। असद और उसके दोस्त आतिफ, नवाब, फरहान और उसका एक साथी सब मिलकर सूर्या चौहान पर टूट पड़े थे, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर रहे थे। लेकिन सूर्या चौहान की हत्या के पीछे की जो साजिश है वो दहशत में डालने वाली है। बिल्कुल जानबूझकर असद ने सूर्या चौहान को घर बुलाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक था।
7: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्या चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरी की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे, और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्या चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो।
8: सूर्य प्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्य प्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्य प्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्य प्रताप को घेरा जाता है। फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्य प्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
1: यानी जिस बाप को यह अपराध रोकना था उसी ने अपने बेटे को हत्या करने के लिए कहा, और फिर सब ने मिलकर सूर्या चौहान का गला रेत दिया।
2: देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहाँ पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद वो फरार था, उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा।
1: सूर्या चौहान को मारने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और असद को उसके अपराध की सजा मिल गई, लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो सवाल खड़े करता है कि असद जैसे युवकों के दिमाग में इतना जहर कहां से भरा जा रहा है कि वो अपने ही दोस्त की हत्या करते हैं, वो भी बेवजह। अरविंद ओझा, अंशुल सिंह के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद आज तक।
0: योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी। अब असद का एनकाउंटर हो गया है तो यूपी की सियासत उबल रही है।

0: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है क्या तने कभी देखी है, और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कू से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस पे फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, इस तरह इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में बहुत दिन नहीं लगेगा।
1: उधर असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा सूर्या चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी और भरोसा भी दिया कि सरकार परिवार के साथ है, हर संभव मदद मिलेगी।
3: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरसद ने पुलिस पर हमला किया और मुठभेड़ में मारा गया।
4: सर, सूर्या की नृशंस हत्या की गई, उसी बात
3: मैंने बताया ना, उसने नृशंस हत्या की, उसे चाहिए था कि पुलिस के सामने सरेंडर करता, उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए तो उसका इलाज।
1: बीजेपी बार बार कह रही है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़े या अपराध छोड़े, वरना अंजाम यही होगा।
5: देखिए, अपराध हो या अपराधी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, और उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंदर सुरक्षा और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। और जो अपराधी हो या जो अराजक तत्व हो या जो अपराध कर करके अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित घूमते रहे हों, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई है वो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए जरूरी है।
1: योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह इसमें भी खोट नजर आता है।
6: तो एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
1: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपी में पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है।
7: फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में, अभिगाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या, अभिगाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है। विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
1: विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ खुला ऐलान पहले ही कर रखा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों से निपटने के लिए हिंसा भी जरूरी है।
8: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को मात दी थी और इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी। अपराध के खिलाफ योगी की सख्ती ही उनके दल की ताकत है। जाहिर सी बात है कि 27 के समर में ये मुद्दा फिर से रफ्तार भी पकड़ेगा और धारदार भी होगा। आज तक ब्यूरो।
9: बात ईरान अमेरिका तनातनी की, जो किसी भी वक्त अब महायुद्ध की शक्ल ले सकता है, इसका इशारा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। ट्रंप का योद्धा अवतार सामने आया जो कि यह बता रहा है कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिका हमले के लिए तैयार है।
10: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये नया अवतार दुनिया के लिए एक संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए, जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये एआई रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है। तो क्या ये माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी।
11: Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our president who's makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. Iran is the clear aggressor.
10: हेगसेथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेच फंसा है और मुझ पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर, जिस पर ईरान टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुख करते हैं युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की ओर, इसराइल और लेबनान के, जहां पर युद्ध तेज होता दिख रहा है। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला तो किया है, हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं।
12: बेरूत, ये लेबनान पर इजरायली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनान पर इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इजरायल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्ला ने इजरायल पर अपने हमले रोके। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनान की सीमा के अंदर कूच कर सकती है।
13: लेबनन के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना। कृपया ध्यान दें, हिजबुल्लाह द्वारा बार बार युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनन के सभी निवासियों से हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्लाह लेबनन में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनन के निवासियों को ज़हरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
14: इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनन की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं।
15: इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनन में रहते हुए हिजबुल्लाह लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा, वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती हैं, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।
14: अमेरिका की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को लेबनन और इसराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसे बाद में शांति वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर ये युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो।
9: UEFA चैंपियनशिप लीग फाइनल में PSG ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद पेरिस की सड़कों पर लाखों प्रशंसकों का जश्न देखने को मिला और कई जगहों पर लोगों का पागलपन भी।
16: एफिल टावर PSG के रगों में रोशन, पेरिस पर चढ़ा PSG का रंग, ट्रोकाडेरो शहर में गजब की आतिशबाजी, जश्न मनाती झूमती प्रशंसक, यादगार बनी पेरिस की रात। PSG यानी पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब की ऐतिहासिक जीत के बाद पेरिस पूरी रात जश्न में डूबा रहा। एफिल टावर को क्लब के नीले और लाल रंगों से रोशन किया गया, जबकि हजारों प्रशंसक ट्रोकाडेरो और शहर के कई इलाकों में जमा होकर आतिशबाजी और नारों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, पार्क दे प्रिंसेस स्टेडियम, ये बड़ी स्क्रीन पर मैच खुशी से झूमती समर्थक। पार्क द प्रिंसेस स्टेडियम में मैच देख रहे हजारों समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैच के बाद पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं, जरा ये देखिए कैसे प्लेयर्स जलाए, झंडे लहराए गए और समर्थकों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। PSG ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया। चैंपियंस लीग फाइनल, आर्सेनल 1 PSG 1, पेनल्टी शूटआउट PSG 4 आर्सेनल 3। जैसे ही जीत की पुष्टि हुई, पेरिस की सड़कों पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई लोग चलती गाड़ियों पर चढ़कर जश्न मनाते दिखे। कहीं स्पाइडरमैन की वेशभूषा में समर्थक नजर आए,
17: तो कहीं हजारों की भीड़ पटाखों और नारों के बीच जीत का उत्सव मनाती दिखाई दी। एक खेल के लिए इतना पागलपन, शाम तक तो ठीक था, लेकिन रात बढ़ने के साथ कुछ इलाकों में हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई और पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर झड़पें देखने को मिली। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ पीएसजी ने लगातार दूसरी बार यूरोप का सबसे बड़ा क्लब खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, तो दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर फुटबॉल का जुनून कई जगहों पर बेकाबू भी नजर आया। जश्न, आतिशबाजी और पुलिस कार्रवाई के बीच पेरिस की ये रात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आज तक क्यों?
9: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: आईपीएल का चैंपियन बना बेंगलुरु, लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा। फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, जीत के हीरो बने विराट कोहली। दस राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान, पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक। सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर महामंथन भी। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा। पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, 12वीं के छात्रों से भी बात। बंगाल में सियासी घमासान, अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद, एनकाउंटर में ढेर, पिता समेत 3 और गिरफ्तार, पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। इस मियानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सूर्या के दोस्त ही थे, जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर पर बुलाया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे और अब पुलिस ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है।
1: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला, मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी, मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत, मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद घोड़ा वापस लौटा था, ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी, जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
2: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
1: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां नहीं, बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
3: ये मार्किंग्स की हुई है यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है जो FIR में नामजद है।
1: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, ये है वो तीनों। असद फरार था, असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
4: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया और जो 6 युवक है उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
1: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
5: असद को जो क्या नाम, असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए, और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती, और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
6: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, इसे अन्य प्रदेशों में घटना हुई होगी लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल का हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा।
1: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
3: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त, और पिछले 2 दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
1: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी आरोपी भी उसके दोस्त ही थे, और इसीलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर पर बुलाया तो उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके लिए कैसी कातिलाना साजिश रची गई है।
1: दहला देने वाली ये तस्वीरें बकरीद के दिन की हैं। असद और उसके दोस्त आतिफ, नवाब, फरहान और उसका एक साथी सब मिलकर सूर्या चौहान पर टूट पड़े थे, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर रहे थे। लेकिन सूर्या चौहान की हत्या के पीछे की जो साजिश है वो दहशत में डालने वाली है। बिल्कुल जानबूझकर असद ने सूर्या चौहान को घर बुलाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक था।
7: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्या चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरे की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे, और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्या चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो। सूर प्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर प्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर प्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर प्रताप को घेरा जाता है, फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर प्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
8: यानी जिस बाप को यह अपराध रोकना था उसी ने अपने बेटे को हत्या करने के लिए कहा और फिर सब ने मिलकर सूर्या चौहान का गला रेत दिया।
2: देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहां पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद वो फरार था, उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा।
8: सूर्या चौहान को मारने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और असद को उसके अपराध की सजा मिल गई, लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो सवाल खड़े करता है कि असद जैसे युवकों के दिमाग में इतना जहर कहां से भरा जा रहा है कि वो अपने ही दोस्त की हत्या कर दें, वो भी बेवजह। अरविंद ओझा, अंशुल सिंह के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद आज तक।
0: योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी। अब असद का एनकाउंटर हो गया है तो यूपी की सियासत उबल रही है।

0: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है, क्या तने कभी देखी है? और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कुओं से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस में फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में दिक्कत बहुत दिन नहीं लगे।
1: उधर असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा सूर्या चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी और भरोसा भी दिया कि सरकार परिवार के साथ है, हर संभव मदद मिलेगी।
3: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरसद ने पुलिस पर हमला किया और मुठभेड़ में मारा गया।
4: सूर्या की नृशंस हत्या की गई,
3: मैंने बताया ना, उसने नृशंस हत्या की, उसे चाहिए था कि पुलिस के सामने सरेंडर करता, उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए तो उसने उसका इलाज।
1: बीजेपी बार बार कह रही है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़े या अपराध छोड़े, वरना अंजाम यही होगा।
5: देखिए, अपराध हो या अपराधी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, और उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंदर सुरक्षा और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। और जो अपराधी हो या जो अराजक तत्व हो या जो अपराध कर करके अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित घूमते रहे हों, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई है वो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए जरूरी है।
1: योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह इसमें भी खोट नजर आता है।
6: तो एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई, इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
1: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपी में पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है।
7: फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में अभिगाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या, अभिगाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है, विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
1: विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ खुला ऐलान पहले ही कर रखा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों से निपटने के लिए हिंसा भी जरूरी है।
8: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को मात दी थी और इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी। अपराध के खिलाफ योगी की सख्ती ही उनके दल की ताकत है। जाहिर सी बात है कि 27 के समर में ये मुद्दा फिर से रफ्तार भी पकड़ेगा और धारदार भी होगा। आज तक ब्यूरो
9: गाजियाबाद से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां 24 वर्षीय पैरालंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य पैरा एथलीट को हिरासत में लिया है। पूछताछ में हत्या की बात भी उसने कबूल की है। अब पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
10: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साईकुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
11: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
10: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
9: बात ईरान अमेरिका तनातनी की, जो किसी भी वक्त अब महायुद्ध की शक्ल ले सकता है। इसका इशारा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। ट्रंप का योद्धा अवतार सामने आया जो कि यह बता रहा है कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिका हमले के लिए तैयार है।
12: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह नया अवतार दुनिया के लिए एक संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए, जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये एआई रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है। तो क्या यह माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी।
13: Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. Iran is the clear aggressor.
12: हेक्सिथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेज

0: मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुख करते हैं युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की ओर, इजराइल और लेबनान के, जहां पर युद्ध तेज होता दिख रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला तो किया है, हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं।
2: धुआं बेरूत, ये लेबनन पर इसराइली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनन की राजधानी बेरूत पर इसराइल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनन पर इसराइली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनन और इसराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इसराइल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्ला ने इसराइल पर अपने हमले रोके। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनन की सीमा के अंदर कूच कर सकती है।
3: लेबनन के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। हिजबुल्ला द्वारा बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनन के सभी निवासियों से हिजबुल्ला के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्ला लेबनन में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनन के निवासियों को जहरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
2: इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनन की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं।
4: इजरायल का कहना है कि हिजबुल्ला को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनन में रहते हुए हिजबुल्ला लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा, वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्ला के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती हैं, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।
2: अमेरिका की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को लेबनन और इसराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसे बाद में शांति वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर यह युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो।
1: UEFA चैंपियनशिप लीग फाइनल में PSG ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद पेरिस की सड़कों पर लाखों प्रशंसकों का जश्न देखने को मिला और कई जगहों पर लोगों का पागलपन भी।
5: एफिल टावर PSG के रगों में रोशन, पेरिस पर चढ़ा PSG का रंग, ट्रोकाडेरो शहर में गजब की आतिशबाजी, जश्न मनाती झूमती प्रशंसक, यादगार बनी पेरिस की रात। PSG यानी पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब की ऐतिहासिक जीत के बाद पेरिस

0: पूरी रात चश्म में डूबा रहा। एफिल टावर को क्लब के नीले और लाल रंगों से रोशन किया गया, जबकि हजारों प्रशंसक ट्रोकाडेरो और शहर के कई इलाकों में जमा होकर आतिशबाजी और नारों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, पार्क दे प्रिंसेस स्टेडियम, ये बड़ी स्क्रीन पर मैच खुशी से झूमती समर्थक। पार्क द प्रिंसेस स्टेडियम में मैच देख रहे हजारों समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैच के बाद पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं, जरा ये देखिए कैसे प्लेयर्स जलाए, झंडे लहराए गए और समर्थकों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। पीएसजी ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया। चैंपियंस लीग फाइनल, आर्सेनल 1 पीएसजी 1, पेनल्टी शूटआउट पीएसजी 4 आर्सेनल 3। जैसे ही जीत की पुष्टि हुई, पेरिस की सड़कों पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई लोग चलती गाड़ियों पर चढ़कर जश्न मनाते दिखे। कहीं स्पाइडरमैन की वेशभूषा में समर्थक नजर आए तो कहीं हजारों की भीड़ पटाखों और नारों के बीच जीत का उत्सव मनाती दिखाई दी। एक खेल के लिए इतना पागलपन शाम तक तो ठीक था, लेकिन रात पड़ने के साथ कुछ इलाकों में हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई और पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर झड़पें देखने को मिली। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ पीएसजी ने लगातार दूसरी बार यूरोप का सबसे बड़ा क्लब खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, तो दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर फुटबॉल का जुनून कई जगहों पर बेकाबू भी नजर आया। जश्न, आतिशबाजी और पुलिस कार्रवाई के बीच पेरिस की ये रात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आज तक क्यों?
1: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: आईपीएल का चैंपियन बना बेंगलुरु, लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा। फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, जीत के हीरो बने विराट कोहली। दस राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान, पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक। सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर महामंथन भी। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा। पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, 12वीं के छात्रों से भी बात। बंगाल में सियासी घमासान, अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद, एनकाउंटर में ढेर, पिता समेत 3 और गिरफ्तार, पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। इस मियानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सूर्या के दोस्त ही थे, जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर पर बुलाया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे और अब पुलिस ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है।
1: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला, मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी, मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत, मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद घोड़ा वापस लौटा था, ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी, जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
2: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
1: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां नहीं, बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
3: ये मार्किंग्स की हुई हैं यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है जो FIR में नामजद है।
1: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, ये है वो तीनों। असद फरार था, असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
4: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने और मीडिया ने जो ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया और जो 6 युवक है उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
1: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
5: असद को जो क्या नाम, असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए, और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती, और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
6: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, जैसे अन्य प्रदेशों में घटना हुई होगी, लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल का हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा।
1: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
3: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त, और पिछले 2 दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
1: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी आरोपी भी उसके दोस्त ही थे, और इसीलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर पर बुलाया तो उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके लिए कैसी कातिलाना साजिश रची गई है।
1: दहला देने वाली ये तस्वीरें बकरीद के दिन की हैं। असद और उसके दोस्त आतिफ, नवाब, फरहान और उसका एक साथी सब मिलकर सूर्या चौहान पर टूट पड़े थे, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर रहे थे। लेकिन सूर्या चौहान की हत्या के पीछे की जो साजिश है वो दहशत में डालने वाली है। बिल्कुल जानबूझकर असद ने सूर्या चौहान को घर बुलाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक था।
7: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्या चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरी की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे। और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्या चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो।
8: सूर्य प्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्य प्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्य प्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्य प्रताप को घेरा जाता है, फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्य प्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
1: यानी जिस बाप को यह अपराध रोकना था उसी ने अपने बेटे को हत्या करने के लिए कहा और फिर सब ने मिलकर सूर्या चौहान का गला रेत दिया।
2: देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहाँ पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था, उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा।
1: सूर्या चौहान को मारने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और असद को उसके अपराध की सजा मिल गई, लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो सवाल खड़े करता है कि असद जैसे युवकों के दिमाग में इतना जहर कहां से भरा जा रहा है कि वो अपने ही दोस्त की हत्या कर दें, वो भी बेवजह। अरविंद ओझा, अंशुल सिंह के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद आज तक।
0: योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी। अब असद का एनकाउंटर हो गया है तो यूपी की सियासत उबल रही है।

0: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है क्या तने कभी देखी है, और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कू से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस में फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में बहुत दिन नहीं लगे।
1: उधर असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा सूर्या चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी और भरोसा भी दिया कि सरकार परिवार के साथ है, हर संभव मदद मिलेगी।
3: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरसद ने पुलिस पर हमला किया और मुठभेड़ में मारा गया।
4: सर, सूर्या की नृशंस हत्या की गई,
3: मैंने बताया ना, उसने नृशंस हत्या की, उसे चाहिए था कि पुलिस के सामने सरेंडर करता, उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए तो उसने उसका इलाज।
1: बीजेपी बार बार कह रही है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़े या अपराध छोड़े, वरना अंजाम यही होगा।
5: देखिए, अपराध हो या अपराधी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, और उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंदर सुरक्षा और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। और जो अपराधी हो या जो अराजक तत्व हो या जो अपराध कर करके अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित घूमते रहे हों, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई है वो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए जरूरी है।
1: योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह इसमें भी खोट नजर आता है।
6: तो एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
1: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपी में पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है।
7: फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में अभिगाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या हुई, गाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है, विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
1: विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ खुला ऐलान पहले ही कर रखा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों से निपटने के लिए हिंसा भी जरूरी है।
8: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को मात दी थी और इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी। अपराध के खिलाफ योगी की सख्ती ही उनके दल की ताकत है। जाहिर सी बात है कि 27 के समर में ये मुद्दा फिर से रफ्तार भी पकड़ेगा और धारदार भी होगा। आज तक ब्यूरो।
9: बात ईरान अमेरिका तनातनी की, जो किसी भी वक्त अब महायुद्ध की शक्ल ले सकता है, इसका इशारा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। ट्रंप का योद्धा अवतार सामने आया जो कि यह बता रहा है कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिका हमले के लिए तैयार है।
10: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये नया अवतार दुनिया के लिए संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए, जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये AI रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है। तो क्या यह माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है कि ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी।
11: Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. Iran is the clear aggressor.
10: हेक्सिथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेच फंसा है। हॉर्मुज पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर जिस पर ईरान तस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुख करते हैं युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की ओर, इसराइल और लेबनान के, जहां पर युद्ध तेज होता दिख रहा है। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला तो किया है, हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं।

0: धुआं धुआं बेरूत। ये लेबनन पर इसराइली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनन की राजधानी बेरूत पर इसराइल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनन पर इसराइली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनन और इसराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इसराइल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्ला ने इसराइल पर अपने हमले रोके। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनन की सीमा के अंदर कूच कर सकती है।
1: लेबनन के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। हिजबुल्ला द्वारा बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनन के सभी निवासियों से हिजबुल्ला के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्ला लेबनन में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनन के निवासियों को जहरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
0: इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनन की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं।
2: इजरायल का कहना है कि हिजबुल्ला को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनन में रहते हुए हिजबुल्ला लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा। वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्ला के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती हैं, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।
0: अमेरिका की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को लेबनन और इसराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसे बाद में शांति वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर यह युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो।
3: UEFA चैंपियनशिप लीग फाइनल में PSG ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद पेरिस की सड़कों पर लाखों प्रशंसकों का जश्न देखने को मिला और कई जगहों पर लोगों का पागलपन भी।
4: एफिल टावर PSG के रगों में रोशन, पेरिस पर चढ़ा PSG का रंग, रुका डेरो शहर में गजब की आतिशबाजी, जश्न मनाती झूमती प्रशंसक, यादगार बनी पेरिस की रात। PSG यानी पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब की ऐतिहासिक जीत के बाद पेरिस पूरी रात जश्न में डूबा रहा। एफिल टावर को क्लब के नीले और लाल रंगों से रोशन किया गया, जबकि हजारों प्रशंसक ट्रोकाडेरो और शहर के कई इलाकों में जमा होकर आतिशबाजी और नारों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, पार्क दे प्रिंसेस स्टेडियम, ये बड़ी स्क्रीन पर मैच खुशी से झूमती समर्थक। पार्क द प्रिंसेस स्टेडियम में मैच देख रहे हजारों समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैच के बाद पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं, जरा ये देखिए कैसे फ्लेयर्स जलाए, झंडे लहराए गए, और समर्थकों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। पीएसजी ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया। चैंपियंस लीग फाइनल आर्सेनल 1 पीएसजी 1 पेनल्टी शूटआउट पीएसजी 4 आर्सेनल 3। जैसे ही जीत की पुष्टि हुई पेरिस की सड़कों पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई लोग चलती गाड़ियों पर चढ़कर जश्न मनाते दिखे। कहीं स्पाइडरमैन की वेशभूषा में समर्थक नजर आए तो कहीं हजारों की भीड़ पटाखों और नारों के बीच जीत का उत्सव मनाती दिखाई दी। एक खेल के लिए इतना पागलपन शाम तक तो ठीक था, लेकिन रात बढ़ने के साथ कुछ इलाकों में हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई और पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर झड़पें देखने को मिली। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ पीएसजी ने लगातार दूसरी बार यूरोप का सबसे बड़ा क्लब खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, तो दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर फुटबॉल का जुनून कई जगहों पर बेकाबू भी नजर आया। जश्न, आतिशबाजी और पुलिस कार्रवाई के बीच पेरिस की ये रात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आज तक यूरोप।
3: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: आईपीएल का चैंपियन बना बेंगलुरु, लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा। फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, जीत के हीरो बने विराट कोहली। दस राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान, पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक, सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर महामंथन भी। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, 12वीं के छात्रों से भी बात। बंगाल में सियासी घमासान, अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद, एनकाउंटर में ढेर, पिता समेत 3 और गिरफ्तार, पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। इस मियानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सूर्या के दोस्त ही थे, जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर पर बुलाया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे और अब पुलिस ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है।
1: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला, मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी, मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत, मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद घोड़ा वापस लौटा था, ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी, जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
2: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
1: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां नहीं, बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
3: ये मार्किंग्स की हुई है यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है जो FIR में नामजद है।
1: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, ये है वो तीनों। असद फरार था, असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
4: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया और जो 6 युवक हैं उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
1: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
5: असद को जो क्या नाम, असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए। और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती, और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
6: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, इसे अन्य प्रदेश में घटना हुई होगी लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल का हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा।
1: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
3: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त, और पिछले 2 दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
1: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी आरोपी भी उसके दोस्त ही थे, और इसीलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर पर बुलाया तो उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके लिए कैसी कातिलाना साजिश रची गई है।
1: दहला देने वाली ये तस्वीरें बकरीद के दिन की हैं। असद और उसके दोस्त आतिफ, नवाब, फरहान और उसका एक साथी सब मिलकर सूर्या चौहान पर टूट पड़े थे, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर रहे थे। लेकिन सूर्या चौहान की हत्या के पीछे की जो साजिश है वो दहशत में डालने वाली है। बिल्कुल जानबूझकर असद ने सूर्या चौहान को घर बुलाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक था।
7: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्या चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरे की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे। और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्या चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो। सूर्यप्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्यप्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्यप्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्यप्रताप को घेरा जाता है, फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्यप्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
8: यानी जिस बाप को यह अपराध रोकना था उसी ने अपने बेटे को हत्या करने के लिए कहा और फिर सब ने मिलकर सूर्या चौहान का गला रेत दिया।
2: देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहाँ पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद वो फरार था, उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा।
8: सूर्या चौहान को मारने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और असद को उसके अपराध की सजा मिल गई, लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो सवाल खड़े करता है कि असद जैसे युवकों के दिमाग में इतना जहर कहां से भरा जा रहा है कि वो अपने ही दोस्त की हत्या करते हैं, वो भी बेवजह। अरविंद ओझा, अंशुल सिंह के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद आज तक।
0: योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी। अब असद का एनकाउंटर हो गया है तो यूपी की सियासत उबल रही है।

0: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है, क्या तने कभी देखी है? और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कू से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस में फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में बहुत दिन नहीं लगे।
1: उधर असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा सूर्या चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी और भरोसा भी दिया कि सरकार परिवार के साथ है, हर संभव मदद मिलेगी।
3: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरसद ने पुलिस पर हमला किया और मुठभेड़ में मारा गया।
4: सर, सूर्या की नृशंस हत्या की गई थी, उसी बात
3: मैंने बताया ना, उसने नृशंस हत्या की, उसे चाहिए था कि पुलिस के सामने सरेंडर करता, उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए तो उसका इलाज।
1: बीजेपी बार बार कह रही है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़े या अपराध छोड़े, वरना अंजाम यही होगा।
5: देखिए, अपराध हो या अपराधी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, और उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंदर सुरक्षा और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। और जो अपराधी हो या जो अराजक तत्व हो या जो अपराध कर करके अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित घूमते रहे हों, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई है वो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए जरूरी है।
1: योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह इसमें भी खोट नजर आता है।
6: तो एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
1: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपी में पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है।
7: फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में, अभिगाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या, अभिगाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है, विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
1: विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ खुला ऐलान पहले ही कर रखा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों से निपटने के लिए हिंसा भी जरूरी है।
8: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को मात दी थी और इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी। अपराध के खिलाफ योगी की सख्ती ही उनके दल की ताकत है। जाहिर सी बात है कि 27 के समर में ये मुद्दा फिर से रफ्तार भी पकड़ेगा और धारदार भी होगा। आज तक ब्यूरो।
9: गाजियाबाद से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां 24 वर्षीय पैरालंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य पैरा एथलीट को हिरासत में लिया है। पूछताछ में हत्या की बात भी उसने कबूल की है। अब पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
10: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साईकुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
11: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
10: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
9: बात ईरान अमेरिका तनातनी की, जो किसी भी वक्त अब महायुद्ध की शक्ल ले सकता है। इसका इशारा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। ट्रंप का योद्धा अवतार सामने आया जो कि यह बता रहा है कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिका हमले के लिए तैयार है।
12: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये नया अवतार दुनिया के लिए एक संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए, जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये एआई रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है। तो क्या ये माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है कि ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी।
13: Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. Iran is the clear aggressor.
12: हेक्सिथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेच फंसा है। हॉर्मुज पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर जिस पर ईरान तस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुख करते हैं युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की ओर, इजराइल और लेबनान के, जहां पर युद्ध तेज होता दिख रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला तो किया है, हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं।
14: बेरूत, ये लेबनान पर इजरायली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनान पर इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन ना तो इजरायल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रुके।

0: के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना। कृपया ध्यान दें, हिजबुल्लाह द्वारा बार बार युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनान के सभी निवासियों से हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में तबाही मचा रहा है करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनान के सभी निवासियों से हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनान के निवासियों को ज़हरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
1: इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनान की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं।
2: इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनान में रहते हुए हिजबुल्लाह लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा, वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती हैं, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।
1: अमेरिका की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को लेबनान और इसराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसे बाद में शांति वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर यह युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो।
3: UEFA चैंपियनशिप लीग फाइनल में PSG ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद पेरिस की सड़कों पर लाखों प्रशंसकों का जश्न देखने को मिला और कई जगहों पर लोगों का पागलपन भी।
4: एफिल टावर PSG के रगों में रोशन, पेरिस पर चढ़ा PSG का रंग, ट्रोकाडेरो शहर में गजब की आतिशबाजी, जश्न मनाती झूमती प्रशंसक, यादगार बनी पेरिस की रात। PSG यानी पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब की ऐतिहासिक जीत के बाद पेरिस पूरी रात जश्न में डूबा रहा। एफिल टावर को क्लब के नीले और लाल रंगों से रोशन किया गया, जबकि हजारों प्रशंसक ट्रोकाडेरो और शहर के कई इलाकों में जमा होकर आतिशबाजी और नारों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, पार्क दे प्रिंसेस स्टेडियम, ये बड़ी स्क्रीन पर मैच खुशी से झूमती समर्थक। पार्क द प्रिंसेस स्टेडियम में मैच देख रहे हजारों समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैच के बाद पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं, जरा ये देखिए कैसे प्लेयर्स जलाए, झंडे लहराए गए और समर्थकों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। PSG ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया। चैंपियंस लीग फाइनल, आर्सेनल 1 PSG बढ़कर जश्न मनाते दिखे। जीत की पुष्टि हुई पेरिस की सड़क।

0: को पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई लोग चलती गाड़ियों पर चढ़कर जश्न मनाते दिखे। कहीं स्पाइडरमैन की वेशभूषा में समर्थक नजर आए तो कहीं हजारों की भीड़ पटाखों और नारों के बीच जीत का उत्सव मनाती दिखाई दी। एक खेल के लिए इतना पागलपन शाम तक तो ठीक था, लेकिन रात पड़ने के साथ कुछ इलाकों में हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई और पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर झड़पें देखने को मिली। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ पीएसजी ने लगातार दूसरी बार यूरोप का सबसे बड़ा क्लब खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, तो दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर फुटबॉल का जुनून कई जगहों पर बेकाबू भी नजर आया। जश्न, आतिशबाजी और पुलिस कार्रवाई के बीच पेरिस की ये रात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आज तक क्यों?
1: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: आईपीएल का चैंपियन बना बेंगलुरु, लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा। फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, जीत के हीरो बने विराट कोहली। दस राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान, पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक। सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर महामंथन भी। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, 12वीं के छात्रों से भी बात। बंगाल में सियासी घमासान, अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद, एनकाउंटर में ढेर, पिता समेत 3 और गिरफ्तार, पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। इस मियानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सूर्या के दोस्त ही थे, जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर पर बुलाया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे और अब पुलिस ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है।
1: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला, मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी, मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत, मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद घोड़ा वापस लौटा था, ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी, जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
2: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
1: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां नहीं, बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
3: ये मार्किंग्स की हुई है यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है जो FIR में नामजद है।
1: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, ये है वो तीनों। असद फरार था, असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
4: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया और जो 6 युवक हैं उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बुलडोजर चलने चाहिए घर पे।
1: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
5: असद को जो क्या नाम, असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए, और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती, और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
6: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं, इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, इसे अन्य प्रदेश में घटना हुई होगी लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल का हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा।
1: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
3: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त, और पिछले 2 दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
1: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी आरोपी भी उसके दोस्त ही थे, और इसीलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर पर बुलाया तो उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके लिए कैसी कातिलाना साजिश रची गई है।
1: दहला देने वाली ये तस्वीरें बकरीद के दिन की हैं। असद और उसके दोस्त आतिफ, नवाब, फरहान और उसका एक साथी सब मिलकर सूर्या चौहान पर टूट पड़े थे, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर रहे थे। लेकिन सूर्या चौहान की हत्या के पीछे की जो साजिश है वो दहशत में डालने वाली है। बिल्कुल जानबूझकर असद ने सूर्या चौहान को घर बुलाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक था।
7: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्य चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरे की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे, और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्या चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो। सूर्यप्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्यप्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्यप्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्यप्रताप को घेरा जाता है, फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्यप्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
8: यानी जिस बाप को यह अपराध रोकना था उसी ने अपने बेटे को हत्या करने के लिए कहा और फिर सब ने मिलकर सूर्या चौहान का गला रेत दिया।
2: देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहाँ पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था, उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा।
8: सूर्या चौहान को मारने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और असद को उसके अपराध की सजा मिल गई, लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो सवाल खड़े करता है कि असद जैसे युवकों के दिमाग में इतना जहर कहां से भरा जा रहा है कि वो अपने ही दोस्त की हत्या करते हैं, वो भी बेवजह। अरविंद ओझा, अंशुल सिंह के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद आज तक।
0: योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी। अब असद का एनकाउंटर हो गया है तो यूपी की सियासत उबल रही है।

0: हत्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है, क्या तने कभी देखी है? और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कू से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस में फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में बहुत दिन नहीं लगेगा।
1: उधर असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा सूर्या चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी और भरोसा भी दिया कि सरकार परिवार के साथ है, हर संभव मदद मिलेगी।
3: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरशद ने पुलिस पर हमला किया और मुठभेड़ में मारा गया।
4: सूर्या की नृशंस हत्या की गई थी, उसी बात
3: मैंने बताया ना, उसने नृशंस हत्या की, उसे चाहिए था कि पुलिस के सामने सरेंडर करता, उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए तो उसका इलाज।
1: बीजेपी बार बार कह रही है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़े या अपराध छोड़े, वरना अंजाम यही होगा।
5: देखिए, अपराध हो या अपराधी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, और उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंदर सुरक्षा और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। और जो अपराधी हो या जो अराजक तत्व हो या जो अपराध कर करके अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित घूमते रहे हों, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई है वो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए जरूरी है।
1: योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह इसमें भी खोट नजर आता है।
6: तो एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
1: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपी में पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है।
7: फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में अभी गाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या हुई, गाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है, विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
1: विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ खुला ऐलान पहले ही कर रखा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों से निपटने के लिए हिंसा भी जरूरी है।
8: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को मात दी थी और इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी। अपराध के खिलाफ योगी की सख्ती ही उनके दल की ताकत है। जाहिर सी बात है कि 27 के समर में ये मुद्दा फिर से रफ्तार भी पकड़ेगा और धारदार भी होगा। आज तक ब्यूरो।
9: बात ईरान अमेरिका तनातनी की, जो किसी भी वक्त अब महायुद्ध की शक्ल ले सकता है, इसका इशारा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। ट्रंप का योद्धा अवतार सामने आया जो कि यह बता रहा है कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिका हमले के लिए तैयार है।
10: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये नया अवतार दुनिया के लिए एक संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये AI रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है। तो क्या ये माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है कि ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी।
11: Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. Iran is the clear aggressor.
10: हेक्सिथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेज फंसा है। हॉर्मुज पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर जिस पर ईरान टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक देरो।
9: अब रुख करते हैं युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की ओर, इजराइल और लेबनान की, जहां पर युद्ध तेज होता दिख रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला तो किया है, हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं।

0: धुआं धुआं बेरूत। ये लेबनन पर इसराइली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनन की राजधानी बेरूत पर इसराइल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनन पर इसराइली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनन और इसराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इसराइल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्ला ने इसराइल पर अपने हमले रोके। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनन की सीमा के अंदर कूच कर सकती है।
1: लेबनन के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। हिजबुल्ला द्वारा बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनन के सभी निवासियों से हिजबुल्ला के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्ला लेबनन में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनन के निवासियों को ज़हरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
0: इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनन की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं।
2: इजरायल का कहना है कि हिजबुल्ला को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनन में रहते हुए हिजबुल्ला लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा, वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्ला के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती हैं, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।
0: अमेरिका की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को लेबनन और इसराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसे बाद में शांति वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर यह युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो।
3: UEFA चैंपियनशिप लीग फाइनल में PSG ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद पेरिस की सड़कों पर लाखों प्रशंसकों का जश्न देखने को मिला और कई जगहों पर लोगों का पागलपन भी।
4: एफिल टावर PSG के रगों में रोशन, पेरिस पर चढ़ा PSG का रंग, रुका डेरो शहर में गजब की आतिशबाजी, जश्न मनाती झूमती प्रशंसक, यादगार बनी पेरिस की रात। PSG यानी पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब की ऐतिहासिक जीत के बाद पेरिस पूरी रात जश्न में डूबा रहा। एफिल टावर को क्लब के नीले और लाल रंगों से रोशन किया गया, जबकि हजारों प्रशंसक ट्रोकाडेरो और शहर के कई इलाकों में जमा होकर आतिशबाजी और नारों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए पार्क दे प्रिंसेस स्टेडियम, ये बड़ी स्क्रीन पर मैच खुशी से झूमती समर्थक। पार्क द प्रिंसेस स्टेडियम में मैच देख रहे हजारों समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैच के बाद पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं, जरा ये देखिए कैसे फ्लेयर्स जलाए, झंडे लहराए गए, और समर्थकों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। पीएसजी ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया। चैंपियंस लीग फाइनल आर्सेनल 1 पीएसजी 1 पेनल्टी शूटआउट पीएसजी 4 आर्सेनल 3। जैसे ही जीत की पुष्टि हुई पेरिस की सड़कों पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई लोग चलती गाड़ियों पर चढ़कर जश्न मनाते दिखे। कहीं स्पाइडरमैन की वेशभूषा में समर्थक नजर आए तो कहीं हजारों की भीड़ पटाखों और नारों के बीच जीत का उत्सव मनाती दिखाई दी। एक खेल के लिए इतना पागलपन शाम तक तो ठीक था, लेकिन रात बढ़ने के साथ कुछ इलाकों में हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई और पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर झड़पें देखने को मिली। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ पीएसजी ने लगातार दूसरी बार यूरोप का सबसे बड़ा क्लब खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, तो दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर फुटबॉल का जुनून कई जगहों पर बेकाबू भी नजर आया। जश्न, आतिशबाजी और पुलिस कार्रवाई के बीच पेरिस की ये रात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आज तक यूरोप।
3: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: आईपीएल का चैंपियन बना बेंगलुरु, लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा। फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, जीत के हीरो बने विराट कोहली। दस राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान, पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक। सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर महामंथन भी। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा। पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, 12वीं के छात्रों से भी बात। बंगाल में सियासी घमासान, अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद, एनकाउंटर में ढेर, पिता समेत 3 और गिरफ्तार, पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। इस मियानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सूर्या के दोस्त ही थे, जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर पर बुलाया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे और अब पुलिस ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है।
1: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला, मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी, मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत, मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद घोड़ा वापस लौटा था, ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी, जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
2: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
1: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां नहीं, बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
3: ये मार्किंग्स की हुई हैं यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है जो FIR में नामजद है।
1: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, ये है वो तीनों। असद फरार था, असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
4: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया और जो 6 युवक है उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
1: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
5: असद को जो क्या नाम, असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए, और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती, और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
6: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, जैसे अन्य प्रदेशों में घटना हुई होगी, लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल का हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा।
1: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
3: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त, और पिछले 2 दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
1: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी आरोपी भी उसके दोस्त ही थे, और इसीलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर पर बुलाया तो उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके लिए कैसी कातिलाना साजिश रची गई है।
1: दहला देने वाली ये तस्वीरें बकरीद के दिन की हैं। असद और उसके दोस्त आतिफ, नवाब, फरहान और उसका एक साथी सब मिलकर सूर्या चौहान पर टूट पड़े थे, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर रहे थे। लेकिन सूर्या चौहान की हत्या के पीछे की जो साजिश है वो दहशत में डालने वाली है। बिल्कुल जानबूझकर असद ने सूर्या चौहान को घर बुलाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक था।
7: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्या चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरे की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे, और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्या चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो।
8: सूर्य प्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्य प्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्य प्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्य प्रताप को घेरा जाता है, फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्य प्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
1: यानी जिस बाप को यह अपराध रोकना था उसी ने अपने बेटे को हत्या करने के लिए कहा और फिर सब ने मिलकर सूर्या चौहान का गला रेत दिया।
2: देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहाँ पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद वो फरार था, उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा।
1: सूर्या चौहान को मारने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और असद को उसके अपराध की सजा मिल गई, लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो सवाल खड़े करता है कि असद जैसे युवकों के दिमाग में इतना जहर कहां से भरा जा रहा है कि वो अपने ही दोस्त की हत्या करते हैं, वो भी बेवजह। अरविंद ओझा, अंशुल सिंह के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद आज तक।
0: योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी। अब असद का एनकाउंटर हो गया है तो यूपी की सियासत उबल रही है।

0: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है क्या तने कभी देखी है, और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कू से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस पे फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में बहुत दिन नहीं लगे।
1: उधर असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा सूर्या चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी और भरोसा भी दिया कि सरकार परिवार के साथ है, हर संभव मदद मिलेगी।
3: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरसद ने पुलिस पर हमला किया और मुठभेड़ में मारा गया।
4: सर, सूर्या की नृशंस हत्या की गई, उसी बात
3: मैंने बताया ना, उसने नृशंस हत्या की, उसे चाहिए था कि पुलिस के सामने सरेंडर करता, उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए तो उसने उसका इलाज।
1: बीजेपी बार बार कह रही है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़े या अपराध छोड़े, वरना अंजाम यही होगा।
5: देखिए, अपराध हो या अपराधी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, और उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंदर सुरक्षा और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। और जो अपराधी हो या जो अराजक तत्व हो या जो अपराध कर करके अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित घूमते रहे हों, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई है वो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए जरूरी है।
1: योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह इसमें भी खोट नजर आता है।
6: तो एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
1: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपी में पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है।
7: फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में, अभिगाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या, अभिगाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है, विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
1: विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ खुला ऐलान पहले ही कर रखा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों से निपटने के लिए हिंसा भी जरूरी है।
8: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को मात दी थी और इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी। अपराध के खिलाफ योगी की सख्ती ही उनके दल की ताकत है। जाहिर सी बात है कि 27 के समर में ये मुद्दा फिर से रफ्तार भी पकड़ेगा और धारदार भी होगा। आज तक ब्यूरो।
9: गाजियाबाद से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां 24 वर्षीय पैरालंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य पैरा एथलीट को हिरासत में लिया है। पूछताछ में हत्या की बात भी उसने कबूल की है। अब पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
10: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साईकुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
11: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
10: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
9: बात ईरान अमेरिका तनातनी की, जो किसी भी वक्त अब महायुद्ध की शक्ल ले सकता है, इसका इशारा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। ट्रंप का योद्धा अवतार सामने आया जो कि यह बता रहा है कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिका हमले के लिए तैयार है।
12: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह नया अवतार दुनिया के लिए संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए, जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये एआई रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है, तो क्या यह माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है कि ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी।
13: Oh, Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. Iran is the clear aggressor.
14: हेक्सिथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेच फंसा है और हॉर्मुज पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर जिस पर ईरान टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक देरो।
9: अब रुख करते हैं युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की ओर, इसराइल और लेबनान के, जहां पर युद्ध तेज होता दिख रहा है। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला तो किया है, हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं।

0: धुआं धुआं बेरूत। ये लेबनान पर इजरायली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनान पर इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इसराइल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्ला ने इसराइल पर अपने हमले रोके। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनान की सीमा के अंदर कूच कर सकती है।
1: लेबनान के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। हिजबुल्ला द्वारा बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनान के सभी निवासियों से हिजबुल्ला के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्ला लेबनान में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनान के निवासियों को ज़हरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
0: इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनान की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं।

0: काम करना है। यानी जिस तरह से लेबनन में रहते हुए हिजबुल्ला लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा। वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्ला के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती है, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।
1: अमेरिका की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को लेबनन और इसराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ था जिसे बाद में शांति वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर ये युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो।
2: यूईएफए चैंपियनशिप लीग फाइनल में पीएसजी ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद पेरिस की सड़कों पर लाखों प्रशंसकों का जश्न देखने को मिला और कई जगहों पर लोगों का पागलपन भी।
3: एफिल टावर पीएसजी के रगों में रोशन, पेरिस पर चढ़ा पीएसजी का रंग, प्रोका डेरो शहर में गजब की आतिशबाजी, जश्न मनाती झूमती प्रशंसक, यादगार बनी पेरिस की रात। पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब की ऐतिहासिक जीत के बाद पेरिस पूरी रात जश्न में डूबा रहा। एफिल टावर को क्लब के नीले और लाल रंगों से रोशन किया गया जबकि हजारों प्रशंसक ट्रोकाडेरो और शहर के कई इलाकों में जमा होकर आतिशबाजी और नारों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए पार्क दे प्रिंसेस स्टेडियम, ये बड़ी स्क्रीन पर मैच खुशी से झूमती समर्थक। पार्क द प्रिंसेस स्टेडियम में मैच देख रहे हजारों समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैच के बाद पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं, जरा ये देखिए कैसे प्लेयर्स जलाए, झंडे लहराए गए और समर्थकों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। पीएसजी ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया। चैंपियंस लीग फाइनल आर्सेनल 1 पीएसजी 1, पेनल्टी शूटआउट पीएसजी 4 आर्सेनल 3। जैसे ही जीत की पुष्टि हुई पेरिस की सड़कों पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई लोग चलती गाड़ियों पर चढ़कर जश्न मनाते दिखे। कहीं स्पाइडरमैन की वेशभूषा में समर्थक नजर आए तो कहीं हजारों की भीड़ पटाखों और नारों के बीच जीत का उत्सव मनाती दिखाई दी। एक खेल के लिए इतना पागलपन शाम तक तो ठीक था लेकिन रात पड़ने के साथ कुछ इलाकों में हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई और पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर झड़पें देखने को मिली। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ पीएसजी ने लगातार दूसरी बार यूरोप का सबसे बड़ा क्लब खिताब जीतकर इतिहास रच दिया तो दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर फुटबॉल का जुनून कई जगहों पर बेकाबू भी नजर आया। जश्न आतिशबाजी और पुलिस कार्रवाई के बीच पेरिस की ये रात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
2: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: आईपीएल का चैंपियन बना बेंगलुरु, लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा। फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, जीत के हीरो बने विराट कोहली। दस राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान, पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक। सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर महामंथन भी। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा। पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, 12वीं के छात्रों से भी बात। बंगाल में सियासी घमासान, अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद, एनकाउंटर में ढेर, पिता समेत 3 और गिरफ्तार, पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। इस मियानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सूर्या के दोस्त ही थे, जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर पर बुलाया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे और अब पुलिस ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है।
1: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला, मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी, मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत, मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद घोड़ा वापस लौटा था, ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी, जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
2: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
1: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां नहीं, बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
3: ये मार्किंग्स की हुई हैं यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है जो FIR में नामजद है।
1: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, ये है वो तीनों। असद फरार था, असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
4: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने जो ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया और जो 6 युवक है उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
1: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
5: असद को जो क्या नाम, असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए, और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती, और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
6: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, जैसे अन्य प्रदेश में घटना हुई होगी, लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल का हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा।
1: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
3: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त, और पिछले 2 दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
1: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी आरोपी भी उसके दोस्त ही थे, और इसीलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर पर बुलाया तो उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके लिए कैसी कातिलाना साजिश रची गई है।
1: दहला देने वाली ये तस्वीरें बकरीद के दिन की हैं। असद और उसके दोस्त आतिफ, नवाब, फरहान और उसका एक साथी सब मिलकर सूर्या चौहान पर टूट पड़े थे, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर रहे थे। लेकिन सूर्या चौहान की हत्या के पीछे की जो साजिश है वो दहशत में डालने वाली है। बिल्कुल जानबूझकर असद ने सूर्या चौहान को घर बुलाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक था।
7: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्या चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरे की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे, और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्या चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो।
8: सूर्य प्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्य प्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्य प्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्य प्रताप को घेरा जाता है, फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्य प्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
1: यानी जिस बाप को यह अपराध रोकना था उसी ने अपने बेटे को हत्या करने के लिए कहा और फिर सब ने मिलकर सूर्या चौहान का गला रेत दिया।
2: देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहाँ पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद वो फरार था, उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा।
1: सूर्या चौहान को मारने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और असद को उसके अपराध की सजा मिल गई, लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो सवाल खड़े करता है कि असद जैसे युवकों के दिमाग में इतना जहर कहां से भरा जा रहा है कि वो अपने ही दोस्त की हत्या करते हैं, वो भी बेवजह। अरविंद ओझा, अंशुल सिंह के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद आज तक।
0: सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी। अब असद का एनकाउंटर हो गया है तो यूपी की सियासत उबल रही है।

0: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है क्या तने कभी देखी है, और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कू से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस पे फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में बहुत दिन नहीं लगे।
1: उधर असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा सूर्या चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी और भरोसा भी दिया कि सरकार परिवार के साथ है, हर संभव मदद मिलेगी।
3: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरसद ने पुलिस पर हमला किया और मुठभेड़ में मारा गया।
4: सर, सूर्या की नृशंस हत्या की गई, उसी बात
3: मैंने बताया ना, उसने नृशंस हत्या की, उसे चाहिए था कि पुलिस के सामने सरेंडर करता, उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए तो उसने उसका इलाज।
1: बीजेपी बार बार कह रही है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़े या अपराध छोड़े, वरना अंजाम यही होगा।
5: देखिए, अपराध हो या अपराधी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, और उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंदर सुरक्षा और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। और जो अपराधी हो या जो अराजक तत्व हो या जो अपराध कर करके अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित घूमते रहे हों, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई है वो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए जरूरी है।
1: योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह इसमें भी खोट नजर आता है।
6: तो एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
1: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपी में पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है।
7: फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में अभिगाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या, अभिगाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है, विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया है, जंगल राज चल रहा है।
1: विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ खुला ऐलान पहले ही कर रखा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों से निपटने के लिए हिंसा भी जरूरी है।
8: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को मात दी थी और इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी। अपराध के खिलाफ योगी की सख्ती ही उनके दल की ताकत है। जाहिर सी बात है कि 27 के समर में ये मुद्दा फिर से रफ्तार भी पकड़ेगा और धारदार भी होगा। आज तक ब्यूरो।
9: बात ईरान अमेरिका तनातनी की, जो किसी भी वक्त अब महायुद्ध की शक्ल ले सकता है, इसका इशारा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। ट्रंप का योद्धा अवतार सामने आया जो कि यह बता रहा है कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिका हमले के लिए तैयार है।
10: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये नया अवतार दुनिया के लिए संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए, जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये एआई रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है। तो क्या ये माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है कि ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी।
11: Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. Iran is the clear aggressor.
10: हेक्सिथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेच फंसा है। हॉर्मुज पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर जिस पर ईरान तस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुख करते युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की ओर, इसराइल और लेबनान की, जहां पर युद्ध तेज होता दिख रहा है। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला तो किया है, हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं।
12: बेरूत, ये लेबनान पर इजरायली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनान पर इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इजरायल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्ला ने इजरायल पर अपने हमले रोके। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनान की सीमा के अंदर कूच कर सकती है।
13: लेबनन के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना। कृपया ध्यान दें, हिजबुल्लाह द्वारा बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनन के सभी निवासियों से हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्लाह लेबनन में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनन के निवासियों को ज़हरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
14: इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनन की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं।
15: इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनन में रहते हुए हिजबुल्लाह लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा, वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती हैं, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।
14: अमेरिका की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को लेबनन और इसराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसे बाद में शांति वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर ये युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो।
9: UEFA चैंपियनशिप लीग फाइनल में PSG ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद पेरिस की सड़कों पर लाखों प्रशंसकों का जश्न देखने को मिला और कई जगहों पर लोगों का पागलपन भी।
16: एफिल टावर PSG के रगों में रोशन, पेरिस पर चढ़ा PSG का रंग, ट्रोकाडेरो शहर में गजब की आतिशबाजी, जश्न मनाती झूमती प्रशंसक, यादगार बनी पेरिस की रात। PSG यानी पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब की ऐतिहासिक जीत के बाद पेरिस पूरी रात जश्न में डूबा रहा। एफिल टावर को क्लब के नीले और लाल रंगों से रोशन किया गया, जबकि हजारों प्रशंसक ट्रोकाडेरो और शहर के कई इलाकों में जमा होकर आतिशबाजी और नारों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए पार्क दे प्रिंसेस स्टेडियम, ये बड़ी स्क्रीन पर मैच खुशी से झूमती समर्थक। पार्क द प्रिंसेस स्टेडियम में मैच देख रहे हजारों समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैच के बाद पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं, जरा ये देखिए कैसे फ्लेयर्स जलाए, झंडे लहराए गए और समर्थकों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। PSG ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया। चैंपियंस लीग फाइनल आर्सेनल 1 PSG 1, पेनल्टी शूटआउट PSG 4 आर्सेनल 3। जैसे ही जीत की पुष्टि हुई पेरिस की सड़कों पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई लोग चलती गाड़ियों पर चढ़कर जश्न मनाते दिखे। कहीं स्पाइडरमैन की वेशभूषा में समर्थक नजर आए,
17: तो कहीं हजारों की भीड़ पटाखों और नारों के बीच जीत का उत्सव मनाती दिखाई दी। एक खेल के लिए इतना पागलपन शाम तक तो ठीक था, लेकिन रात बढ़ने के साथ कुछ इलाकों में हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई और पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर झड़पें देखने को मिली। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ पीएसजी ने लगातार दूसरी बार यूरोप का सबसे बड़ा क्लब खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, तो दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर फुटबॉल का जुनून कई जगहों पर बेकाबू भी नजर आया। जश्न, आतिशबाजी और पुलिस कार्रवाई के बीच पेरिस की ये रात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आज तक क्यों?
9: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: आईपीएल का चैंपियन बना बेंगलुरु, लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा। फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, जीत के हीरो बने विराट कोहली। दस राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान, पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक। सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर महामंथन भी। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, 12वीं के छात्रों से भी बात। बंगाल में सियासी घमासान, अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद, एनकाउंटर में ढेर, पिता समेत 3 और गिरफ्तार, पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। इस मियानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सूर्या के दोस्त ही थे, जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर पर बुलाया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे और अब पुलिस ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है।
1: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला, मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी, मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत, मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद घोड़ा वापस लौटा था, ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी, जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
2: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
1: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां नहीं, बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
3: ये मार्किंग्स की हुई है यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है जो FIR में नामजद है।
1: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, ये है वो तीनों। असद फरार था, असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
4: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया और जो 6 युवक है उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
1: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
5: असद को जो क्या नाम, असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए, और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती, और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
6: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं, इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, इसे अन्य प्रदेशों में घटना हुई होगी लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल का हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा।
1: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
3: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त, और पिछले 2 दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
1: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी आरोपी भी उसके दोस्त ही थे, और इसीलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर पर बुलाया तो उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके लिए कैसी कातिलाना साजिश रची गई है।
1: दहला देने वाली ये तस्वीरें बकरीद के दिन की हैं। असद और उसके दोस्त आतिफ, नवाब, फरहान और उसका एक साथी सब मिलकर सूर्या चौहान पर टूट पड़े थे, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर रहे थे। लेकिन सूर्या चौहान की हत्या के पीछे की जो साजिश है वो दहशत में डालने वाली है। बिल्कुल जानबूझकर असद ने सूर्या चौहान को घर बुलाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक था।
7: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्या चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरे की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे, और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्या चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो। सूर्यप्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्यप्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्यप्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्यप्रताप को घेरा जाता है, फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्यप्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
8: यानी जिस बाप को यह अपराध रोकना था उसी ने अपने बेटे को हत्या करने के लिए कहा और फिर सब ने मिलकर सूर्या चौहान का गला रेत दिया।
2: देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहाँ पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था, उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा।
8: सूर्या चौहान को मारने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और असद को उसके अपराध की सजा मिल गई, लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो सवाल खड़े करता है कि असद जैसे युवकों के दिमाग में इतना जहर कहां से भरा जा रहा है कि वो अपने ही दोस्त की हत्या कर दें, वो भी बेवजह। अरविंद ओझा, अंशुल सिंह के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद आज तक।
0: योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी। अब असद का एनकाउंटर हो गया है तो यूपी की सियासत उबल रही है।

0: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है, क्या तने कभी देखी है? और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कुओं से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस में फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में बहुत दिन नहीं लगे।
1: उधर असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा सूर्या चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी और भरोसा भी दिया कि सरकार परिवार के साथ है, हर संभव मदद मिलेगी।
3: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरसद ने पुलिस पर हमला किया और मुठभेड़ में मारा गया।
4: सर, सूर्या की नृशंस हत्या की गई
3: उसी बात मैंने बताया ना, उसने नृशंस हत्या की, उसे चाहिए था कि पुलिस के सामने सरेंडर करता, उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए तो उसने उसका इलाज।
1: बीजेपी बार बार कह रही है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़ें या अपराध छोड़ें, वरना अंजाम यही होगा।
5: देखिए, अपराध हो या अपराधी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, और उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंदर सुरक्षा और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। और जो अपराधी हो या जो अराजक तत्व हो या जो अपराध कर करके अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित घूमते रहे हों, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई है वो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए जरूरी है।
1: योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह इसमें भी खोट नजर आता है।
6: तो एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था? पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
1: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपी में पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है।
7: फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में अभिगाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या, अभिगाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है, विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
1: विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ खुला ऐलान पहले ही कर रखा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों से निपटने के लिए हिंसा भी जरूरी है।
8: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को मात दी थी और इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी। अपराध के खिलाफ योगी की सख्ती ही उनके दल की ताकत है। जाहिर सी बात है कि 27 के समर में ये मुद्दा फिर से रफ्तार भी पकड़ेगा और धारदार भी होगा। आज तक ब्यूरो।
9: गाजियाबाद से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां 24 वर्षीय पैरालंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य पैरा एथलीट को हिरासत में लिया है। पूछताछ में हत्या की बात भी उसने कबूल की है। अब पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
10: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साईकुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
11: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
10: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
9: बात ईरान अमेरिका तनातनी की, जो किसी भी वक्त अब महायुद्ध की शक्ल ले सकता है। इसका इशारा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। ट्रंप का योद्धा अवतार सामने आया जो कि यह बता रहा है कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिका हमले के लिए तैयार है।
12: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये नया अवतार दुनिया के लिए एक संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए, जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये एआई रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है। तो क्या ये माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है कि ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी।
13: Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran
14: which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. Iran is the clear aggressor.
12: हेक्सिथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेच फंसा है और हॉर्मुज पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर जिस पर ईरान टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक देरो।
9: अब रुख करते युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की ओर, इसराइल और लेबनान की, जहां पर युद्ध तेज होता दिख रहा है। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला तो किया है, हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं।

0: धुआं धुआं पेरू। ये लेबनान पर इजरायली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनान पर इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इसराइल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्ला ने इसराइल पर अपने हमले रोके। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनान की सीमा के अंदर कूच कर सकती है।
1: लेबनान के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। हिजबुल्ला द्वारा बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनान के सभी निवासियों से हिजबुल्ला के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनान के निवासियों को ज़हरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
0: इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनान की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं।
2: इजरायल का कहना है कि हिजबुल्ला को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनान में रहते हुए हिजबुल्ला लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा, वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्ला के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती है, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये

0: वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर ये युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो।
1: यूईएफए चैंपियनशिप लीग फाइनल में पीएसजी ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद पेरिस की सड़कों पर लाखों प्रशंसकों का जश्न देखने को मिला और कई जगहों पर लोगों का पागलपन भी।
2: एफिल टावर पीएसजी के रगों में रोशन, पेरिस पर चढ़ा पीएसजी का रंग, रुका डेरू शहर में गजब की आतिशबाजी। जश्न मनाती झूमती प्रशंसक, यादगार बनी पेरिस की रात। पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब की ऐतिहासिक जीत के बाद पेरिस पूरी रात जश्न में डूबा रहा। एफिल टावर को क्लब के नीले और लाल रंगों से रोशन किया गया, जबकि हजारों प्रशंसक ट्रोकाडेरो और शहर के कई इलाकों में जमा होकर आतिशबाजी और नारों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, पार्क दे प्रिंसेस स्टेडियम। ये बड़ी स्क्रीन पर मैच खुशी से झूमती समर्थक। पार्क द प्रिंसेस स्टेडियम में मैच देख रहे हजारों समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैच के बाद पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं, जरा ये देखिए कैसे फ्लेयर्स जलाए, झंडे लहराए गए और समर्थकों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। पीएसजी ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया। चैंपियंस लीग फाइनल, आर्सेनल 1 पीएसजी 1, पेनल्टी शूटआउट पीएसजी 4 आर्सेनल 3। जैसे ही जीत की पुष्टि हुई, पेरिस की सड़कों पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई लोग चलती गाड़ियों पर चढ़कर जश्न मनाते दिखे। कहीं स्पाइडरमैन की वेशभूषा में समर्थक नजर आए तो कहीं हजारों की भीड़ पटाखों और नारों के बीच जीत का उत्सव मनाती दिखाई दी। एक खेल के लिए इतना पागलपन, शाम तक तो ठीक था, लेकिन रात बढ़ने के साथ कुछ इलाकों में हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई और पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर झड़पें देखने को मिली। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ पीएसजी ने लगातार दूसरी बार यूरोप का सबसे बड़ा क्लब खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, तो दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर फुटबॉल का जुनून कई जगहों पर बेकाबू भी नजर आया। जश्न, आतिशबाजी और पुलिस कार्रवाई के बीच पेरिस की ये रात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आज तक क्यों।
1: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: पीएससी आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, बारहवीं के छात्रों से भी बात। बंगाल में सियासी घमासान, अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद, एनकाउंटर में ढेर, पिता समेत तीन और गिरफ्तार, पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। इस मियानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सूर्या के दोस्त ही थे, जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर पर बुलाया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे और अब पुलिस ने तीन आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है।
1: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला, मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी, मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत, मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद घोड़ा वापस लौटा था, ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी, जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
2: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग का भी अभियान चलाया गया था। उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
1: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां नहीं, बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
3: ये मार्किंग्स की हुई है यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस पांचवें आरोपी की तलाश कर रही है जो FIR में नामजद है।
1: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, ये है वो तीनों। असद फरार था, असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
4: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया और जो 6 युवक हैं उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
1: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
5: असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होना चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए। और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती, और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
6: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, इसे अन्य प्रदेश में घटना हुई होगी लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल का हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा।
1: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
3: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त, और पिछले दो दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
1: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी आरोपी भी उसके दोस्त ही थे, और इसीलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर पर बुलाया तो उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके लिए कैसी कातिलाना साजिश रची गई है।
1: दहला देने वाली ये तस्वीरें बकरीद के दिन की हैं। असद और उसके दोस्त आतिफ, नवाब, फरहान और उसका एक साथी सब मिलकर सूर्या चौहान पर टूट पड़े थे, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर रहे थे। लेकिन सूर्या चौहान की हत्या के पीछे की जो साजिश है वो दहशत में डालने वाली है। बिल्कुल जानबूझकर असद ने सूर्या चौहान को घर बुलाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक था।
7: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्या चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरे की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे। और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्या चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो। सूर्यप्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्यप्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्यप्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्यप्रताप को घेरा जाता है, फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्यप्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
8: यानी जिस बाप को यह अपराध रोकना था उसी ने अपने बेटे को हत्या करने के लिए कहा और फिर सब ने मिलकर सूर्या चौहान का गला रेत दिया।
2: देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहां पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें से तीन आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था। उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा।
8: सूर्या चौहान को मारने वाले तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और असद को उसके अपराध की सजा मिल गई। लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, वो सवाल खड़े करता है कि असद जैसे युवकों के दिमाग में इतना जहर कहां से भरा जा रहा है कि वो अपने ही दोस्त की हत्या करते हैं, वो भी बेवजह। अरविंद ओझा, अंशुल सिंह के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद आज तक।
0: योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी। अब असद का एनकाउंटर हो गया है तो यूपी की सियासत उबल रही है।

आईपीएल का चैंपियन बना बेंगलुरु, लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा। फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, जीत के हीरो बने विराट कोहली। दस राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान, पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक, सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर महामंथन भी।

0: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है, क्या तने कभी देखी है? और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कुओं से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस में फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में बहुत दिन नहीं लगे।
1: उधर असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा सूर्या चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी और भरोसा भी दिया कि सरकार परिवार के साथ है, हर संभव मदद मिलेगी।
3: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरसद ने पुलिस पर हमला किया और मुठभेड़ में मारा गया।
4: सर, सूर्या की नृशंस हत्या की गई थी, उसी बात
3: मैंने बताया ना, उसने नृशंस हत्या की, उसे चाहिए था कि पुलिस के सामने सरेंडर करता, उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए तो उसका इलाज।
1: बीजेपी बार बार कह रही है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़े या अपराध छोड़े, वरना अंजाम यही होगा।
5: देखिए, अपराध हो या अपराधी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, और उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंदर सुरक्षा और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। और जो अपराधी हो या जो अराजक तत्व हो या जो अपराध कर करके अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित घूमते रहे हों, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई है वो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए जरूरी है।
1: योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह इसमें भी खोट नजर आता है।
6: तो एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई, इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
1: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपी में पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है।
7: फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी, जौनपुर में अभी गाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या हुई, गाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है, विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की, तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
1: विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ खुला ऐलान पहले ही कर रखा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों से निपटने के लिए हिंसा भी जरूरी है।
8: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को मात दी थी और इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी। अपराध के खिलाफ योगी की सख्ती ही उनके दल की ताकत है। जाहिर सी बात है कि 27 के समर में ये मुद्दा फिर से रफ्तार भी पकड़ेगा और धारदार भी होगा। आज तक ब्यूरो।
9: बात ईरान अमेरिका तनातनी की, जो किसी भी वक्त अब महायुद्ध की शक्ल ले सकता है, इसका इशारा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। ट्रंप का योद्धा अवतार सामने आया जो कि यह बता रहा है कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिका हमले के लिए तैयार है।
10: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह नया अवतार दुनिया के लिए संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये एआई रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है। तो क्या यह माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है कि ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी।
11: Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. Iran is the clear aggressor.
10: हेक्सेथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेज फंसा है, हॉर्मुज पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर, जिस पर ईरान टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुख करते हैं युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की ओर, इजराइल और लेबनान के, जहां पर युद्ध तेज होता दिख रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला तो किया है, हिजबुल्ला ने भी उत्तर इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं।
12: बेरूत, ये लेबनन पर इजरायली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनन की राजधानी बेरूत पर इजरायल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनन पर इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनन और इजरायल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इजरायल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्ला ने इजरायल पर अपने हमले रोके। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनन की सीमा के अंदर कूच कर सकती है।
13: लेबनन के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। हिजबुल्लाह द्वारा बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनन के सभी निवासियों से हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्लाह लेबनन में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनन के निवासियों को ज़हरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
14: इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनन की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं।
15: इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनन में रहते हुए हिजबुल्लाह लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा, वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती हैं, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।
14: अमेरिका की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को लेबनन और इसराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसे बाद में शांति वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर ये युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो।
9: UEFA चैंपियनशिप लीग फाइनल में PSG ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद पेरिस की सड़कों पर लाखों प्रशंसकों का जश्न देखने को मिला और कई जगहों पर लोगों का पागलपन भी।
16: एफिल टावर PSG के रगों में रोशन, पेरिस पर चढ़ा PSG का रंग, रोका डेरो शहर में गजब की आतिशबाजी, जश्न मनाती झूमती प्रशंसक, यादगार बनी पेरिस की रात। PSG यानी पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब की ऐतिहासिक जीत के बाद पेरिस पूरी रात जश्न में डूबा रहा। एफिल टावर को क्लब के नीले और लाल रंगों से रोशन किया गया, जबकि हजारों प्रशंसक ट्रोकाडेरो और शहर के कई इलाकों में जमा होकर आतिशबाजी और नारों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए पार्क दे प्रिंसेस स्टेडियम, ये बड़ी स्क्रीन पर मैच खुशी से झूमती समर्थक। पार्क द प्रिंसेस स्टेडियम में मैच देख रहे हजारों समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैच के बाद पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं, जरा ये देखिए कैसे प्लेयर्स जलाए, झंडे लहराए गए और समर्थकों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। PSG ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया। चैंपियंस लीग फाइनल आर्सेनल 1 PSG 1, पेनल्टी शूटआउट PSG 4 आर्सेनल 3। जैसे ही जीत की पुष्टि हुई पेरिस की सड़कों पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई लोग चलती गाड़ियों पर चढ़कर जश्न मनाते दिखे। कहीं स्पाइडरमैन की वेशभूषा में समर्थक नजर आए तो कहीं हजारों की भीड़ पटाखों और नारों के बीच जीत का उत्सव मनाती दिखाई दी। एक खेल के लिए इतना पागलपन शाम तक तो ठीक था, लेकिन रात पड़ने के साथ कुछ इलाकों में हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई और पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर झड़पें देखने को मिली। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ पीएसजी ने लगातार दूसरी बार यूरोप का सबसे बड़ा क्लब खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, तो दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर फुटबॉल का जुनून कई जगहों पर बेकाबू भी नजर आया। जश्न, आतिशबाजी और पुलिस कार्रवाई के बीच पेरिस की ये रात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आज तक यूरोप।
9: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: आईपीएल का चैंपियन बना बेंगलुरु, लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा। फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, जीत के हीरो बने विराट कोहली। दस राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान, पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक। सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर महामंथन भी। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा। पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, 12वीं के छात्रों से भी बात। बंगाल में सियासी घमासान, अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद, एनकाउंटर में ढेर, पिता समेत 3 और गिरफ्तार, पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। इस मियानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सूर्या के दोस्त ही थे, जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर पर बुलाया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे और अब पुलिस ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है।
1: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला, मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी, मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत, मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद घोड़ा वापस लौटा था, ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी, जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
2: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी का भी अभियान चलाया गया था। उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
1: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां नहीं, बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
3: ये मार्किंग्स की हुई हैं यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है जो FIR में नामजद है।
1: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, ये है वो तीनों। असद फरार था, असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
4: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया और जो 6 युवक है उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
1: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
5: असद को जो क्या नाम, असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होना चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए, और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगें करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती, और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
6: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, जैसे अन्य प्रदेश में घटना हुई होगी, लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल का हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा।
1: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
3: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त, और पिछले 2 दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
1: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी आरोपी भी उसके दोस्त ही थे, और इसीलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर पर बुलाया तो उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके लिए कैसी कातिलाना साजिश रची गई है।
1: दहला देने वाली ये तस्वीरें बकरीद के दिन की हैं। असद और उसके दोस्त आतिफ, नवाब, फरहान और उसका एक साथी सब मिलकर सूर्या चौहान पर टूट पड़े थे, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर रहे थे। लेकिन सूर्या चौहान की हत्या के पीछे की जो साजिश है वो दहशत में डालने वाली है। बिल्कुल जानबूझकर असद ने सूर्या चौहान को घर बुलाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक था।
7: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्या चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरे की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे, और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्या चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो।
8: सूर्य प्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्य प्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्य प्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्य प्रताप को घेरा जाता है, फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्य प्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
1: यानी जिस बाप को यह अपराध रोकना था उसी ने अपने बेटे को हत्या करने के लिए कहा और फिर सब ने मिलकर सूर्या चौहान का गला रेत दिया।
2: देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहाँ पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद वो फरार था, उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा।
1: सूर्या चौहान को मारने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और असद को उसके अपराध की सजा मिल गई, लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो सवाल खड़े करता है कि असद जैसे युवकों के दिमाग में इतना जहर कहां से भरा जा रहा है कि वो अपने ही दोस्त की हत्या करते हैं, वो भी बेवजह। अरविंद ओझा, अंशुल सिंह के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद आज तक।
0: सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी। अब असद का एनकाउंटर हो गया है तो यूपी की सियासत उबल रही है।

0: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है क्या तने कभी देखी है, और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कू से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस पे फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में बहुत दिन नहीं लगेंगे।
1: उधर असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा सूर्या चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी और भरोसा भी दिया कि सरकार परिवार के साथ है, हर संभव मदद मिलेगी।
3: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरशद ने पुलिस पर हमला किया और उन्हें फिर मारा गया।
4: सर, सूर्या की नृशंस हत्या की गई, उसी का
3: मैंने बताया ना, उसने नृशंस हत्या की, उसे चाहिए था कि पुलिस के सामने सरेंडर करता, उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए तो उसने उसका इलाज।
1: बीजेपी बार बार कह रही है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़े या अपराध छोड़े, वरना अंजाम यही होगा।
5: देखिए, अपराध हो या अपराधी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, और उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंदर सुरक्षा और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। और जो अपराधी हो या जो अराजक तत्व हो या जो अपराध कर करके अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित घूमते रहे हों, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई है वो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए जरूरी है।
1: योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह इसमें भी खोट नजर आता है।
6: तो एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
1: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपी में पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है।
7: फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में, अभी गाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या हुई, गाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है, विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
1: विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ खुला ऐलान पहले ही कर रखा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों से निपटने के लिए हिंसा भी जरूरी है।
8: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को मात दी थी और इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी। अपराध के खिलाफ योगी की सख्ती ही उनके दल की ताकत है। जाहिर सी बात है कि 27 के समर में ये मुद्दा फिर से रफ्तार भी पकड़ेगा और धारदार भी होगा। आज तक ब्यूरो
9: गाजियाबाद से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां 24 वर्षीय पैरालंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य पैरा एथलीट को हिरासत में लिया है। पूछताछ में हत्या की बात भी उसने कबूल की है। अब पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
10: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साईकुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
11: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
10: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
9: बात ईरान अमेरिका तनातनी की, जो किसी भी वक्त अब महायुद्ध की शक्ल ले सकता है, इसका इशारा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। ट्रंप का योद्धा अवतार सामने आया जो कि यह बता रहा है कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिका हमले के लिए तैयार है।
12: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये नया अवतार दुनिया के लिए संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए, जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये एआई रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है, क्योंकि ये माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी।
13: Oh, Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. Iran is the clear aggressor.
12: हेक्सिथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेज फंसा है। हॉर्मुज पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर जिस पर ईरान टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुख करते हैं युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की ओर, इजराइल और लेबनान की, जहां पर युद्ध तेज होता दिख रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला तो किया है, हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं।
14: बेरूत, ये लेबनान पर इजरायली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनान पर इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इजरायल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्ला ने इजरायल पर अपने हमले रोके। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनान की सीमा के अंदर कूच कर सकती है।
15: लेबनान के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। हिजबुल्ला द्वारा बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनान के सभी निवासियों से हिजबुल्ला के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्ला लेबनान में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनान के निवासियों को ज़हरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
14: इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनान की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं।
16: इजरायल का कहना है कि हिजबुल्ला को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनान में रहते हुए हिजबुल्ला लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा, वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्ला के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती हैं, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।
14: अमेरिका की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को लेबनान और इसराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसे बाद में शांति वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर ये युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा।
17: क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो।
9: यूईएफए चैंपियनशिप लीग फाइनल में पीएसजी ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद पेरिस की सड़कों पर लाखों प्रशंसकों का जश्न देखने को मिला और कई जगहों पर लोगों का पागलपन भी।
18: एफिल टावर पीएसजी के रगों में रोशन, पेरिस पर चढ़ा पीएसजी का रंग। प्रोका डेरो शहर में गजब की आतिशबाजी, जश्न मनाती झूमती प्रशंसक, यादगार बनी पेरिस की रात। पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब की ऐतिहासिक जीत के बाद पेरिस पूरी रात जश्न में डूबा रहा। एफिल टावर को क्लब के नीले

0: जमा होकर आतिशबाजी और नारों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए पार्क दे प्रिंसेस स्टेडियम, ये बड़ी स्क्रीन पर मैच खुशी से झूमती समर्थक। पार्क द प्रिंसेस स्टेडियम में मैच देख रहे हजारों समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैच के बाद पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं, जरा ये देखिए कैसे फ्लेयर्स जलाए, झंडे लहराए गए और समर्थकों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। पीएसजी ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया। चैंपियंस लीग फाइनल आर्सेनल 1 पीएसजी 1, पेनल्टी शूटआउट पीएसजी 4 आर्सेनल 3। जैसे ही जीत की पुष्टि हुई, पेरिस की सड़कों पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई लोग चलती गाड़ियों पर चढ़कर जश्न मनाते दिखे। कहीं स्पाइडरमैन की वेशभूषा में समर्थक नजर आए तो कहीं हजारों की भीड़ पटाखों और नारों के बीच जीत का उत्सव मनाती दिखाई दी। एक खेल के लिए इतना पागलपन शाम तक तो ठीक था, लेकिन रात पड़ने के साथ कुछ इलाकों में हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई और पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर झड़पें देखने को मिली। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ पीएसजी ने लगातार दूसरी बार यूरोप का सबसे बड़ा क्लब खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, तो दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर फुटबॉल का जुनून कई जगहों पर बेकाबू भी नजर आया। जश्न, आतिशबाजी और पुलिस कार्रवाई के बीच पेरिस की ये रात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आज तक क्यों?
1: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: Soros. Soros aa gaya isme beech mein. Pakistan, Soros, yes. Everybody has come.
1: They started calling us anti-national and Pakistani.
0: 17 saal ke deep state agents. Bhaiya dikhao terrorist ke chehre dikhao zara.
2: जब मैं शीट देखता हूँ फिजिक्स की, उसका मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसे मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके उस पर हमारे साथ ऑप्शन था कि अगर आपको अपने नंबर कम आते हैं तो आप करते हैं बुलाए फोटोकॉपी के लिए। लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटोकॉपी, यहाँ मेरी हैंडराइटिंग थी। लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे एक बार, खोलता हूँ फोटोकॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंडराइटिंग होती है। तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पर। लोगों का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है।
1: बट जब इस पे पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट एजेंट्स दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट इन इंडिया।
0: 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई?
1: सोरोस इज
0: सोरोस। सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी हैज कम।
1: दे स्टार्टेड कॉलिंग अस एंटी नेशनल एंड पाकिस्तानी, देन आफ्टर दैट
0: दैट्स क्रेजी।
1: दैट इज वेरी क्रेजी,
0: यू नो,
1: दैट इज नॉट राइट।
0: And your students, I mean, you've got nothing to do with anything. You're asking for your answer sheet. That's all. Now suddenly you've become anti-nationals. You have to accept the problem if you want to solve the problem.
1: Right.
0: You're just refusing to accept that the problem, you're blaming the poor kids and saying, you know, you're deep state, you're spies or terrorists.
1: Then we are trying to get
0: the
1: best in India.
0: Terrorists, bola. Shabash.
3: अभी निकल के आना दो घंटे।
4: परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर एनटीए के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। सीयूईटी यूजी परीक्षा के केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:23 पर शुरू हुई। वहीं एनटीए ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम भी बदल दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों और अभिभावक परेशान नजर आए।
5: बच्चों का पेपर 1 घंटे 11 शुरू हो रहा है,
6: 1 घंटा जोड़ लें। किन बच्चों का पेपर

0: दो घंटा जोड़ रहे हैं, जिन बच्चों का पेपर तीन घंटे का था वो तीन घंटा जोड़ रहे हैं।
1: अब एनटीए इस पर माफी मांग रहा है तो वहीं विपक्ष एक बार फिर एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। चार परीक्षाएं, एक करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
2: ये देखने में आ रहा है कि एनटीए ने CUET टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। CUET टेस्ट में करीब

0: आईपीएल का चैंपियन बना बेंगलुरु, लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा। फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, जीत के हीरो बने विराट कोहली। दस राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर जीत का बीजेपी ने बनाया प्लान, पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक, सरकार के 12 साल के बेमिसाल सफर पर महामंथन भी। सीबीएसई आंसर शीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, 12वीं के छात्रों से भी बात। बंगाल में सियासी घमासान, अभिषेक बैनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद, एनकाउंटर में ढेर, पिता समेत 3 और गिरफ्तार, पुलिस का दावा फरहान ने दिया था चाकू। इस मियानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सूर्या के दोस्त ही थे, जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर पर बुलाया और फिर उसका गला रेत दिया। हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे और अब पुलिस ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है।
1: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला, मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी, मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत, मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद घोड़ा वापस लौटा था, ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी, जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
2: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
1: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां नहीं, बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
3: ये मार्किंग्स की हुई हैं यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे और अगर आप यहाँ तस्वीरों में